0: बंगला सुनाई दे रही है। मतलब ये कि वायरल वीडियो का संबंध पश्चिम बंगाल से हो सकता है, लेकिन सर्च के दौरान हमें हाल फिलहाल में ऐसी कोई प्रमाणिक रिपोर्ट नहीं मिली जो वायरल दावे की पुष्टि कर सके, बता सके कि वाकई यह खबर सही है। साथ ही साथ विपक्षी पार्टियां इससे मुद्दा भी बनाती अगर इस तरह का कोई मामला वहां पर हुआ होता, लेकिन कहीं भी ऐसा कुछ भी नहीं मिला। लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा, जिसमें पहला सवाल हमारा यही कि वायरल हो रहा वीडियो कब का है, कहां का है। हमारा दूसरा सवाल, कहीं किसी और घटना से संबंधित वीडियो को जानबूझकर धार्मिक एंगल देकर वायरल तो नहीं किया जा रहा, सच और झूठ क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में।
1: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने वायरल वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें इस वीडियो का लंबा वर्जन एक बांग्लादेशी फेसबुक पेज पर मिला। इस वीडियो को 16 दिसंबर 2025 को शेयर किया गया था। यहां दी गई जानकारी के मुताबिक युवती को पैसे चुराने के आरोप में पकड़ा गया था। युवती ने मीरपुर कॉलेज मार्केट की एक दुकान से कैश चुराने की कोशिश की थी। असली वीडियो में जय श्री राम के नारे वाला ऑडियो मौजूद नहीं है। इस मिली जानकारी के आधार पर हमने और सर्च किया। इस दौरान हमें ये वीडियो एक बांग्लादेशी न्यूज के फेसबुक पेज पर मिला। वीडियो को 17 सितंबर 2025 को शेयर किया गया था। बांग्ला भाषा में मौजूद जानकारी के अनुसार युवती पर कैश चुराने का आरोप लगा था। महिला का नाम अनीता था, वो एक गारमेंट फैक्ट्री में काम करती थी, लेकिन उसकी चाची सास ने उसे कहा कि उसकी सैलरी काफी कम है और चोरी करके इससे ज्यादा पैसे कमाए जा सकते हैं। ऐसे में महिला ने चोरी करना शुरू कर दिया। इस वीडियो में भी जय श्री राम के नारे वाला ऑडियो मौजूद नहीं है। इसके बाद यह स्पष्ट हो गया कि वायरल वीडियो को एडिट कर इसमें ऑडियो अलग से लगाया गया है। असली वीडियो को सुनने पर हमने पाया कि 1 मिनट 30 सेकंड पर महिला से उसके एड्रेस के बारे में पूछा जा रहा है। फिर वो कहती है कि बारिशाल के उजीरपुर से है। सर्च करने पर हमने पाया कि उजीरपुर बांग्लादेश के बारिशाल जिले में पड़ता है। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल हो रहा दावा झूठा साबित हुआ। मुस्लिम महिला से जबरन जय श्री राम बुलवाने के दावे से वायरल हो रहे वीडियो को लेकर गलत दावा किया जा रहा है। असल में ये वीडियो भारत का नहीं बल्कि बांग्लादेश में हुई एक घटना का है। लड़की को दुकान में चोरी के आरोप में पकड़ा गया था। इस घटना के वीडियो को एडिट कर जय श्री राम के नारे के ऑडियो को इसमें जोड़ा गया है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
0: सोशल मीडिया पर बांग्लादेश का बताकर ये वीडियो तेजी से वायरल किया जा रहा है और इस वीडियो के जरिए कुछ यूजर्स ये दावा कर रहे हैं कि ये बांग्लादेश का वीडियो जहां पर हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ गया है। ये एक नया वीडियो है जहां हिंदुओं को पत्थर मार के मौत के घाट उतारा जा रहा है। क्या है इसकी सच्चाई, देखिए इस रिपोर्ट में।
1: सोशल मीडिया पर यह हैरान कर देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ लोग एक शख्स को गंदे नाले में फेंक कर उस पर पत्थर और डंडा चलाते नजर आ रहे हैं। वीडियो में साफ साफ नजर आ रहा है कि एक युवक के पीछे भीड़ खड़ी है, तभी एक व्यक्ति युवक को लात मारता है। दो आदमी युवक को पकड़कर गंदे नाले में फेंक देते हैं, उसके बाद लोग पत्थर मारने लगते हैं। कुछ लोग इस वीडियो को बांग्लादेश का बताते हुए वायरल करते हुए ये दावा कर रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं को पानी में डुबाकर उन पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं और उन्हें मौत की सजा दी जा रही है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
0: दरअसल सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में कुछ लोग एक शख्स को गंदे नाले में फेंककर उस पर पत्थर और डंडे चलाते नजर आ रहे हैं। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते दावा ये कर रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं को पानी में डुबोकर उन पर पत्थर बरसाए गए और उन्हें मौत की सजा दी जा रही है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। ऐसे में इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की और फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान बैकग्राउंड से आ रही आवाजों पर हमारा ध्यान गया। जब हमने इसे गौर से सुना तो सामने आया कि ये बांग्ला है। इसके अलावा वीडियो में कई लोग इस्लामिक वेशभूषा में भी नजर आ रहे हैं। मतलब ये कि वायरल वीडियो बांग्लादेश का

0: सकता है। इसके अलावा वीडियो में कुछ गाड़ियां भी दिख रही हैं। जब हमने इसके नंबर प्लेट्स को जूम करके देखा तो साफ हुआ कि वायरल हो रहा वीडियो बांग्लादेश का ही है, क्योंकि इसमें बांग्ला नंबर प्लेट लिखे हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सर्च के दौरान हमें हाल फिलहाल में बांग्लादेश से ऐसी कोई भी रिपोर्ट नहीं मिली जो वायरल दावे की पुष्टि कर सके। लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा। पहला सवाल ये कि अगर दावा सच्चा है तो फिर वायरल हो रहा वीडियो बांग्लादेश के किस हिस्से का है। हमारा दूसरा सवाल ये कि कहीं किसी और घटना से संबंधित वीडियो को जानबूझकर नया एंगल देकर वायरल तो नहीं किया जा रहा। देखिए सच और झूठ क्या है।
1: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक की टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी। सर्च के दौरान हमें जून 2026 के एक ऐसे ही पोस्ट मिले जिसमें बांग्लादेशी यूजर्स ने इस घटना की निंदा की थी। कुछ स्थानीय न्यूज चैनलों ने मिलते जुलते वीडियो को शेयर करते हुए बताया था कि ये घटना ढाका के जात्राबारी की है, जहां मोबाइल चोरी के आरोप में एक युवक के साथ मारपीट की गई थी। भीड़ के हमले से बचने के लिए युवक कथित तौर पर एक नाले में कूद गया था। 16 जून की ग्राउंड से की गई वीडियो रिपोर्टिंग में भी घटना की विस्तृत जानकारी देते हुए यही बताया गया कि जात्राबारी इलाके में एक युवक मोबाइल छीनते हुए पकड़ा गया था, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने उसे घेर लिया। घटना से जुड़े कुछ वीडियो में युवक को नाले से बाहर निकलने के बाद कान पकड़कर माफी मांगते हुए देखा जा सकता है। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल दावा झूठा साबित हुआ। ये वीडियो बांग्लादेश के ढाका जिले के जात्राबारी का है। 16 जून 2026 को मोबाइल चोरी के आरोप में भीड़ ने एक युवक के साथ मारपीट की थी, जिसमें वह घायल हो गया था। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
0: फैक्ट चेक में फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
3: A burst pipe, a dead water heater, the AC calling it quits. Who do you call? HomeServe is an easy way to handle unexpected home repairs with plans covering stuff basic homeowners insurance usually won't. Instead of scrambling for a contractor, you make one call to get the repair process started. Join the millions of customers who trust HomeServe right now. Go to homeserve.com/audio for 50% less your first year. That's homeserve.com/audio. Savings compared to renewal price void in Florida.
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
0: फैक्ट चेक के आखिरी सफर का आपको दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हैं।
4: सोशल मीडिया पर बाप बेटी की एक बहुत भावुक वीडियो ने इंटरनेट पर हर किसी को भावुक कर दिया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि घर में माँ मौजूद नहीं है, ऐसे में घर की छोटी सी मासूम बेटी ने अपनी माँ की कमी को बिल्कुल महसूस होने ही नहीं दिया। बच्ची बहुत ही प्यारे तरीके से एक प्यारी सी साड़ी पहनी हुई है और वो बिल्कुल अपनी माँ की तरह घर का ख्याल रख रही है। जब उसके पापा काम कर रहे हैं तो ये नन्ही बच्ची एक प्लेट में पानी का ग्लास लेकर पापा के पास पहुँचती है। अपनी इतनी छोटी सी बेटी को साड़ी पहने और हाथ पे पानी का ग्लास लिए सामने खड़ा देखकर पिता भावुक हो जाते हैं। पिता बेटी का ये इमोशनल बॉन्ड देखकर इंटरनेट यूजर्स भी भावुक हो रहा है। कहते हैं कि दोस्तों का रिश्ता दिल से बनता है और दिल की भाषा समझने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं होती। शायद यही वजह है कि इंसान और जानवर के बीच एक ऐसा गहरा रिश्ता बन जाता है जो बड़े बड़े रिश्तों को भी पीछे छोड़ देता है। ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे देखकर हर कोई उसे रियल लाइफ डिज्नी प्रिंसेस कह रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि एक हरे भरे खेत की मेड़ में एक छोटी सी बच्ची खेलती हुई नजर आ रही है, लेकिन वो अकेली नहीं होती। उसकी गोद में एक ऊदबिलाव और उसके पीछे पीछे बड़े ही इत्मीनान से एक साही चल रहा होता है। तीनों को देखकर ऐसा लग रहा होता है जैसे कि दोस्ती काफी गहरी है। बच्ची डरने के बजाय खुश है और साही उसे नुकसान पहुंचाने की बजाय उसके साथ कदम से कदम मिला रही है। साही को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वो उस बच्ची से कह रहा हो, जहाँ जहाँ तुम जाओगी मैं पीछे पीछे आऊंगा। वीडियो में बच्ची की आवाज भी सुनाई दे रही है, जिसपे वो सिंहली भाषा में कुछ कह रही है। उसकी बोली में जो मासूमियत है वो इस पूरी घटना को और भी जादुई बना देती है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग मुस्करा रहे हैं। इस वीडियो में कोलकाता की एक ट्यूशन टीचर ने अपने छात्रों के साथ बिताए कुछ खास पल दिखाए हैं। आमतौर पर ट्यूशन क्लास में पढ़ाई, होमवर्क और रिवीजन की बातें होती हैं, लेकिन इस वीडियो में बच्चों को अपनी

0: टीनेजर के प्रति प्यार और अपनापन देखने को मिलता है। वीडियो में अलग अलग घरों में पढ़ाई के दौरान बच्चे टीचर को बड़े प्यार से खाने की चीजें ऑफर करते हुए नजर आते हैं। कोई उन्हें चाउमीन देता है तो कोई इडली सांभर खिलाता है। इसके अलावा वीडियो में चाइनीज फूड, फ्रेंच फ्राइज और जूस, पॉपकॉर्न, पकौड़े, चीला, चाय और मूंगफली जैसी कई चीजें भी बच्चे उन्हें देते हुए नजर आते हैं। वीडियो में बच्चों और टीचर के बीच की अच्छी बॉन्डिंग साफ नजर आती है। कई जगह बच्चे उन्हें मुस्कुराकर हाय करते हैं और फिर अपनी पढ़ाई में लग जाते हैं। यही छोटे छोटे पल लोगों को काफी पसंद आ रहे हैं। कभी कभी कुछ मुलाकातें ऐसी होती हैं जो बिना कुछ कहे दिल छू जाती है। सोशल मीडिया पर इन दिनों ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दो बुजुर्ग दोस्त पूरे 78 साल बाद एक दूसरे से मिलते हैं। जैसे ही दोनों आमने सामने आते हैं, कुछ पल के लिए चुप हो जाते हैं और फिर एक दूसरे को गले लगाते हैं। ये भावुक पल देखकर लाखों लोगों की आंखें नम हो गई। वीडियो को लेकर बताया जा रहा है कि ये दोनों दोस्त बचपन में साथ रहते थे, लेकिन समय के साथ हालात बदल गए और दोनों अलग हो गए। कई दशक गुजर गए, जिंदगी अपनी रफ्तार से चलती रही, लेकिन दिल में दोस्ती की याद हमेशा बनी रही। करीब 78 साल बाद जब दोनों का आमना सामना हुआ तो इसे बयां करने के लिए शब्द कम पड़ गए। दोनों कुछ पल तक एक दूसरे को देखते रहे और फिर गले लगाकर अपनी एक बार फिर से दोस्ती को यादगार बना दिया। कभी कभी जिंदगी आपको ऐसे चौंकाती है कि आप मुस्कुराने के साथ साथ आंखों में खुशी के आंसू का भी अनुभव करते हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर यूजर्स के चेहरे पर प्यारी से मुस्कान आ गई। वीडियो में एक महिला जिस फ्लाइट में एयर होस्टेस थी, उसी में उसका पति यात्रा करने पहुंचता है और अपनी पत्नी को देखकर दंग रह जाता है। ये प्यारा सा सरप्राइज वीडियो अब इंटरनेट पर खूब पसंद किया जा रहा है। आज के समय में भारी भरकम काम के लिए आमतौर पर मशीनों की मदद ली जाती है, लेकिन इस वायरल वीडियो में मजदूरों ने बिना किसी आधुनिक उपकरण के ऐसा काम करके दिखाया जो इंसानों के लिए नामुमकिन था। वीडियो में देखा जा सकता है कि कई मजदूर एक ट्रक के आसपास खड़े नजर आ रहे हैं। ट्रक में लोहे की लंबी और भारी सरिया भी भरी हुई है। इन्हें उतारने के लिए किसी मशीन या क्रेन का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। इसके वजह सभी मजदूर एक कतार बनाकर खड़े हैं और एक दूसरे को तेजी से सरिया पकड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे खास बात इसमें यह है कि कोई भी मजदूर जल्दबाजी या अफरा तफरी नहीं करता। हर व्यक्ति अपने काम को पूरी समझदारी और सही तरीके से करता हुआ नजर आ रहा है। इसी वजह से भारी भरकम सरियों का भी पूरा बंडल कुछ ही पलों में खड़े ट्रक में लोड हो जाता है। मजदूरों का ये तालमेल इतना शानदार है कि देखने वाले उनके इस कारनामे को देखकर हैरान रह गए। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। एक लड़की ने कॉकरोच को पकड़कर उसका पूरा मेकअप कर दिया। जिस कॉकरोच को देखकर घिन आती है, उसी कॉकरोच को देखकर लोग क्यूट बुलाने लगे। लड़की ने कॉकरोच को गुलाबी रंग से रंगा, नेल पेंट लगाए और उसे पिंक बैडी बना दिया। वीडियो देखने वाले पहले तो डर गए, फिर हंस कर लोटपोट हो गए। वीडियो में लड़की कॉकरोच को बिना डरे हाथ में लेकर मेकअप करते हुए नजर आ रही। वो पहले उसे गुलाबी पेंट से रंगती है, फिर छोटे छोटे डिटेल्स ऐड करती है। कॉकरोच शुरू में हिलता डुलता है, लेकिन लड़की उसे पकड़े रखती है। आखिरकार वो एक खूबसूरत पिंक बैडी में बदल जाता है। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक बहुत ही प्यारा वीडियो लोगों का दिल जीत रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक हाथी का जन्मदिन बड़े ही खास अंदाज में मनाया जा रहा है। हाथी के लिए एक बड़े लकड़ी के टेबल पर तरबूज, आम, पपीता, केला और कई दूसरे फलों को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया है। पूरा माहौल किसी बर्थडे पार्टी जैसा नजर आ रहा है। आसपास मौजूद लोग इस खास पल का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो का सबसे प्यारा हिस्सा तब आता है जब हाथी को सरप्राइज देने के लिए उसे पीजे की तरफ चलते हुए बूफे तक लाया जाता है। जैसे ही वो मुड़कर सामने रखे फलों को देखता है, उसकी खुशी साफ तौर पर नजर आती है। वो तुरंत अपनी सूंड बढ़ाकर फल उठाने लगता है और बड़े चाव से उन्हें खाने लगता है। हाथी भी पूरे आराम और खुशी के साथ अपनी पसंदीदा दावत का आनंद लेता है।
1: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक नन्हे हाथी का बेहद प्यारा सा वीडियो लोगों का दिल जीत रहा है। वीडियो में बेबी हाथी पानी और कीचड़ से भरे गड्ढे में मस्ती करता दिख रहा है। उसकी मासूम हरकतें देख लोग मुस्कुराने पर मजबूर हैं। वहीं पास खड़ी उसकी माँ पूरे समय अपने बच्चे पर नजर रखती दिखाई देती है। इस वीडियो पर कमेंट कर लोग खूब प्यार लुटा रहे हैं। वीडियो में बेबी एलिफेंट पानी और कीचड़ से भरे गड्ढे में लेटकर लोटपोट हो रहा है। वो पूरे मजे के साथ उछल कूद करता है और कीचड़ में खेलते हुए अपनी खुशी जाहिर भी करता नजर आ रहा है। उसकी मस्ती देख ऐसा लग रहा है कि उसे इस पल का भरपूर आनंद मिल रहा है। वीडियो में बेबी हाथी की माँ उसके पास खड़ी नजर आ रही है। वो हर समय अपने बच्चे पर निगाह बनाए हुए है, जिससे साफ पता चल रहा है कि खेलते समय भी वो उसकी सुरक्षा का पूरा ख्याल रख रही है। माँ और बच्चे का ये खूबसूरत रिश्ता लोगों को काफी पसंद आ रहा है। सोशल मीडिया पर दक्षिण अफ्रीका के लायन सैंड्स गेम रिजर्व का ये वीडियो खूब तेजी से वायरल है। 12 सेकंड की इस क्लिप में तेंदुए का रिएक्शन स्पीड देखने लायक है। वो इतनी फुर्ती से दूसरी और काफी दूरी पर मौजूद चट्टान पर कूदा कि हवा में तैरता हुआ नजर आया। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बूढ़ा तेंदुआ नदी के बीच पत्थरों पर चढ़कर खाने की तलाश में भटक रहा है। वो बिल्कुल शांत और बेबस नजर आ रहा था, लेकिन दबी पानी के अंदर घात लगाए बैठे एक भारी भरकम मगरमच्छ ने अचानक ऊपर की तरफ झपट्टा मारा। देखने वालों को लगा कि तेंदुआ मगरमच्छ का निवाला बन जाएगा, लेकिन तभी जो हुआ उस पर यकीन करना मुश्किल है। तेंदुए ने चमत्कारिक रूप से एक जबरदस्त छलांग लगाई और मगरमच्छ के जबड़े से बाल बाल बच निकला। वीडियो में इस पूरी घटना को स्लो मोशन में दर्शाया गया है, जिसे देख नेटिजन्स दांतों तले उंगली दबा रहे हैं।
0: जंगल से सामने आए एक वीडियो ने सोशल मीडिया पर लोगों का खूब मनोरंजन किया। वीडियो में एक विशालकाय टाइगर पेड़ के नीचे आराम से बैठा दिखाई देता है, जबकि उसी पेड़ पर एक लंगूर चढ़ा हुआ है। कुछ ही देर बाद लंगूर धीरे धीरे पेड़ से नीचे उतरता है और टाइगर के सामने आकर ऐसी हरकतें करने लगता है मानो उसे जानबूझकर चिढ़ा रहा हो। सबसे दिलचस्प बात यह है कि टाइगर इस दौरान बिल्कुल शांत रहता है और सिर्फ उसे गौर से देखता है। ऐसा लगता है कि टाइगर को अच्छी तरह से पता है कि लंगूर बहुत फुर्तीले और शरारती होते हैं। अगर वो उसे पकड़ने के लिए दौड़ेगा तो लंगूर एक छलांग में फिर पेड़ पर चढ़ जाएगा। शायद यही वजह है कि टाइगर बिना जल्दबाजी किए आराम से बैठा रहता है और सिर्फ उसकी हरकतों पर नजर रखता है। वहीं लंगूर भी कुछ पल नीचे रुकने के बाद फिर से सुरक्षित दूरी बना लेता है।
2: गुड न्यूज़ टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
3: When your business grows, communication can get messy fast. Calls come in, texts stack up, and suddenly your team is working in different places without the full picture. That's where Quo comes in. Quo gives your business one shared number, so every call and text lives in one place. Your whole team can see the entire history. Everything stays connected, and nothing falls through the cracks. Money is on the line. Always say hello with Quo. Get started free, plus get 20% off your first 6 months at Quo.com/tunein. That's Quo.com/tunein.
4: Need a good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you nonstop stand-up bits by the best comics in the game. From all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today.
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
0: अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू हो रही है, तो भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। भगवान जगन्नाथ के महास्नान के साथ ही रथ यात्रा के अनुष्ठानों की औपचारिक शुरुआत हो चुकी है। अब इंतजार रथ यात्रा का है।
5: धाम से निकलेगी भगवान जगन्नाथ की पावन रथ यात्रा। भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ जब रथ पर सवार होंगे जगन्नाथ, तो भक्तों के हृदय भाव विह्वल होंगे। भगवान की एक झलक पाने को लोग आतुर होंगे। उस पल का सबको इंतजार है जब भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों को दिव्य दर्शन देंगे। सूरत के इस्कॉन मंदिर में भी इस बार तैयारी खास है। पहली बार मुंबई से रथ आया है, सारी सुविधाओं और नई तकनीक से लैस। वहीं इसकी सजावट भी खास है, इसके एक ओर हरे राम अंकित है तो दूसरी ओर हरे कृष्णा।
6: ये रथ यात्रा में विशेष जो आप लोगों को आकर्षण का केंद्र है वो है हमारे नया रथ जो बॉम्बे से बनके तैयार एकदम आ चुका है। और ये रथ जो है इसमें पावर स्टीयरिंग है, पावर व्हील है और हाइड्रोलिक सिस्टम लगा हुआ है ताकि आवश्यकता के अनुसार इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। क्योंकि मेट्रो का काम चालू है इसलिए ये सारे सिस्टम हम लोगों ने बनाए है। पिछले रथ पुराना था और इसकी वजह से ये रथ नया है और ये स्ट्रॉन्ग है ताकि भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का रथ अच्छी तरह से चल सके, लोग दर्शन कर सके, इसके लिए सारे व्यवस्था की गई है।
5: रथ ही नहीं इस बार भगवान की पोशाक भी खास है। भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा 16 जुलाई को रथ यात्रा के लिए जो पोशाक पहनेंगे वो वृंदावन से तैयार होकर आया है। इसमें प्योर सिल्क के कपड़े पर जरी का काम है। इस डिजाइनर पोशाक की कीमत 3 लाख रुपए बताई जा रही है।
6: रथ नया है और जो ड्रेस है वो बहुत ही सुंदर ड्रेस है जो वृंदावन से बन के आ चुकी है। इसका कीमत 3 लाख रुपया और ये 15 कारीगर 1.5 महीना तक ये जो ड्रेस बनाए हैं और ये ड्रेस जो है प्योर सिल्क के ऊपर जरी का काम किया गया है।
5: सूरत में भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा 16 जुलाई को दोपहर 3 बजे स्कॉन मंदिर जहांगीरपुरा से निकाली जाएगी। ये यात्रा सूरत रेलवे स्टेशन से शुरू होकर रिंग रोड, अथवा गेट और गुजरात गैस सर्कल से होते हुए रात 9 बजे जहांगीरपुरा पहुंचेगी। सोमवार को भगवान जगन्नाथ की स्नान यात्रा से रथ यात्रा के अनुष्ठानों की औपचारिक शुरुआत हो गई है। 15 जुलाई तक भगवान एकांतवास में है। 16 जुलाई को जगन्नाथ अपने भक्तों को दिव्य दर्शन देंगे और इसी दिन निकलेगी भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
7: जम्मू कश्मीर की गुरेज घाटी की कभी पहचान रहा हॉर्स पोलो 50 साल बाद एक बार फिर से लौट आया है। भारतीय सेना की पहल पर गुरेज में हॉर्स पोलो का खेल आयोजित किया गया जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया और अपनी खोई संस्कृति से रूबरू हो सके।
5: करीब 50 साल के लंबे अंतराल के बाद जम्मू कश्मीर की गुरेज घाटी में पारंपरिक हॉर्स पोलो खेल लौटा तो यहाँ के बाशिंदों के चेहरे खुशी से खिल उठे। भारतीय सेना की राणा बटालियन ने हाल ही में गुरेज के बगतूर गांव के बगतूर हाई ग्राउंड पर इस ऐतिहासिक पोलो मैच का आयोजन किया जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया।
8: इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तरी कश्मीर जिला बांडीपुरा की गुरेज घाटी में जहां पर इंडियन आर्मी की जानिब से एक इनिशिएटिव ले लिया गया है हॉर्स पोलो को रिवाइव करने के हवाले से। दरअसल हॉर्स पोलो खेल जो है वो गुरेज वादी का पुराना खेल माना जाता था। जो ही समय बीता गया ये खेल अपनी शिनाख्त खो बैठा गुरेज वादी के अंदर। तो इसी हवाले से गुरेज वादी के अंदर आज इंडियन आर्मी की जानिब से इनिशिएटिव लिया गया है, एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया है। यहाँ के मुकामी जो लोकल्स हैं, नौजवान जो है उनको इन्वॉल्व किया गया है इस टूर्नामेंट के अंदर। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये हॉर्स पोलो खेल जो है तकरीबन यहाँ पे 50 साल के बाद फिर से इसी ग्राउंड में खेला जा रहा है।
5: इस मैच को देखने पहुंचे बुजुर्गों के लिए ये लम्हा बेहद भावुक था क्योंकि उन्होंने तकरीबन आधी सदी के बाद अपनी सरजमी पर घोड़ों को पोलो के मैदान में दौड़ते देखा था।
9: जहां पे ये खेल यहां पर बहुत मशहूर है गुरेज में, ये खेल बनी है गुरेज में। उसके बाद जो पुराने हमारे थे वो जब नहीं रहे, हमारी जो नई जनरेशन है लोगों ने उसमें जान नहीं दी तो ज्यादा ये क्रिकेट वगैरह में गए। तो अभी हमारे यहाँ 17 मराठे की सीओ साहब ने इस गेम को यहाँ पर फिर निकाल दिया है और हमें बहुत हम धन्यवाद दे रहे हैं 17 मराठे।
5: 1950 और 1960 के दशक तक हॉर्स पोलो का ये खेल गुरेज घाटी में बेहद लोकप्रिय था। तब इसे टप्पा के नाम से जाना जाता था और स्थानीय दर्द शना संस्कृति और बाल्टी समुदाय का एक बेहद लोकप्रिय हिस्सा हुआ करता था। लेकिन गुजरते वक्त के साथ बदलती परिस्थितियों और संसाधनों की कमी के कारण ये खेल यहाँ के सांस्कृतिक परिदृश्य से पूरी तरह गायब हो गया था।
10: हॉर्स पोलो इससे पहले हुआ करता था, हमने देखा नहीं है, पहले सुनने में आया है कि हमारे जो बुजुर्ग लोग थे वो खेले थे यहाँ पे। अब आर्मी ने इसको यहाँ फिर से जिंदा किया यहाँ इस खेल को, इस खेल की वजह से हम लोग बहुत खुश है। इससे क्या है, हॉर्स पोलो की वजह से कल को ये जब ये इसके जो यहाँ के वीडियो बाहर देखेंगे उससे ज्यादा यहाँ फ्लो बढ़ने की कोशिश हो जाएगी, वो अभी लोग कुछ और देखेंगे, इससे अच्छा है, टूरिज्म के लिए बहुत अच्छा है।
5: भारतीय सेना के पहल से अब एक बार फिर ऐतिहासिक हॉर्स पोलो ग्रेस की संस्कृति में लौट आया है। इस आयोजन के जरिए यहाँ के युवाओं को न सिर्फ अपनी पुरानी सांस्कृतिक जड़ों से दोबारा जोड़ने का मौका मिला है, बल्कि एडवेंचर टूरिज्म को भी इससे काफी बढ़ावा मिलने की संभावना है। ग्रेस से सज्जाद सोफी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
11: Hey, it's Billy Bush. Tune into my show Hot Mics Monday to Thursday at noon Eastern, 9 a.m. Pacific for the latest in politics, entertainment, tech, sports, pop culture and much more. Just tell your device to play Hot Mics on TuneIn to listen.
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो

दो मिनट आओ, नाम संकीर्तन गा ले, इसको तेज कर, हम स्लो हैं, तुम तेज हो जाओ, थोड़ा तेज कर, दो मिनट नाम संकीर्तन गा लेते हैं, इसके बाद में जो भी भगवान हमको प्रेरणा देंगे हम आपको भाव पूर्वक

त्रेता युग में बहुत साल पहले हनुमान जी लंका आए थे और हम उनके दास होने के नाते श्रीलंका आए थे। हनुमान जी की लंका की यात्रा में हनुमान जी ने माता जानकी जी की खोज की थी। माता जानकी जी हैं भक्ति, तो वो लंका की यात्रा में भक्ति की खोज में आए थे, हम श्रीलंका की यात्रा में भक्त की खोज में आए। हमारा मन बहुत प्रसन्न है, पहली बार हम आए। बहुत लोगों को हम समझ सकते कि भाषा की प्रॉब्लम है, बट आई कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश बट अंडरस्टैंड योर फीलिंग। दो चार बातें हम कहना चाह रहे, ना समझ में आए तो बगल वाले से समझना, और बगल वाले को भी समझ में नहीं आए तो जब लोग हंसे तो तुम हंसना, लोग ताली बजाएं तो तुम बजाना, और लोग थोड़ा सैड मूवमेंट में जाएं तो तुम भी जाना, ताकि हमको ये नहीं लगना चाहिए कि तुम्हें समझ नहीं आया। हमें यही लगे कि किसी को भले ही समझ नहीं आया पर आपको पूरा समझ में आया है, तो इसलिए भले ही ना समझ में आए पर ये हमें फील ना होने देना, क्योंकि यहाँ ये तो समस्या है। एक अंग्रेजी का शब्द है माइंडसेट। क्या? माइंडसेट। अच्छा, जिसका माइंडसेट हो जाता है उसकी लाइफ सेट हो जाती है। कुछ लोगों का माइंड अपसेट है। अच्छा, लेकिन विचित्र बात देखना, नेपाल वाले दूतावास वाले सर कि कितनी विचित्र बात, लोगों के घरों में किचन सेट होता, टी सेट होता, सोफा सेट होता, टीवी सेट होता, बस माइंड अपसेट होता। अच्छा, लोग बताओ कितने विचित्र हैं, सब सेट है, चार्जर सेट, साड़ी सेट, सूट सेट, ग्लास सेट, गाड़ी सेट, लेकिन माइंड अपसेट। अब बताइए, इतने सेट रख रखे पर ये सेट नहीं रखा। हमारा मानना है घर में ये सेट हो या ना हो, माइंड सेट हो जाए तो लाइफ सेट हो जाती है। यदि श्रीमद् भगवत गीता का उदाहरण उठाया जाए, भगवान कृष्ण का उदाहरण उठाया जाए, भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता के संपूर्ण 18 अध्यायों में अर्जुन का कुछ नहीं किया, माइंड सेट किया। अर्जुन ने जब कहा सेनयो मध्ये रथम गत्वा, सेना के मध्य में जब रथ गया तो जैसे ही रथ पर बैठ करके अर्जुन ने संपूर्ण युद्ध में बैठे खड़े हुए सैनिकों को देखा, परिवारजनों को देखा, कौरवों की सेना को देखा, अपने चाचा ताऊ अंकल परिवारजन, वो गुरुजन जिन्होंने पढ़ाया लिखाया, उनको देखा तो तुरंत डीमोटिवेट हो गए, मनहीन हो गया कि जिन्होंने हमें खिलाया हम उनको मारेंगे तो भला नहीं होगा, हमारा कल्याण नहीं होगा। परंतु भगवान कृष्ण ने समझ लिया, इनका माइंड अपसेट हो गया, अब ये युद्ध नहीं जीत सकते। तब भगवान को 18 अध्यायों के श्लोकों की गीता सुनानी पड़ी और अर्जुन का माइंड सेट करना पड़ा। अर्जुन का माइंड सेट हुआ, महाभारत हो गई, धर्म और अधर्म की लड़ाई थी, धर्म जीत गया, अधर्म हार गया। इससे एक सिद्ध होता है, कौरवों के पास भीड़ थी, पांडवों के पास भगवान था। और कितना अच्छा उदाहरण है मेरे पागलों, जिनके पास भीड़ हो जरूरी नहीं उनकी विजय हो, विजय उनकी होती है जिनके पास भगवान होता है। लेकिन बैठे श्रीलंका में तो यहां भी एक माइंड सेट हुआ विभीषण का। श्रीलंका में भी विभीषण का माइंड सेट हुआ, और किसने किया? राम दूत।

0: तो लेते बल धामा। हनुमान जी ने माइंड सेट किया और क्या गजब का माइंड सेट हनुमान जी ने किया। जैसे विभीषण ने हनुमान जी को देखा, हनुमान जी ने विभीषण को देखा, तो तुरंत हनुमान जी को देख करके विभीषण कहते हैं, आज हम आपको देख करके मन बड़े प्रसन्न, हमारा मन बहुत प्रसन्न है। हनुमान जी बोले, कैसा प्रसन्न है? तो विभीषण ने कहा कि तुम राम दीन अनुरागी आयो मोहि करण बड़ भागी। आप या तो राम जी हो, ये राम जी के दास हो, आपको देख करके हमारा मन बहुत प्रसन्न है। कि तुम राम दीन अनुरागी आयो मोहि करण बड भागी, किस लिए आए हो? हमारे भाग को जगाने आए हो। हनुमान जी बोले, सही पहचाना। इतने में जब तब हम विभीषण से भगवान ने पूछा, हनुमान जी ने, क्या हाल है तुम्हारे, माइंड सेट का हाल बताओ। तब तो विभीषण ने जो बताया वो बड़ा विचित्र, बोले क्या? बोले जिमि दसनन मोह जीव विचारी, जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती वैसे हम रह रहे, ये माइंड अपसेट। हाँ, क्या हुआ? बोले दांतों के बीच में जैसे जीभ फंसी वैसे हम फंसे। जीने का कोई उद्देश्य नहीं है, जीवन में कोई प्रसन्नता नहीं है। हमारा भाई बहुत आतताई है, क्रूर है, अत्याचारी है। विभीषण की बातों को सुनकर के हनुमान जी समझ गए, इनको माइंड सेट की आवश्यकता है। तो धीरे से बोले, तुम्हारी पार्टी गलत है। तुम प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर बनने की योग्य हो। तो विभीषण बोले, आप प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहे, हम मिनिस्टर नहीं, प्राइम मिनिस्टर क्या खाक बनेंगे? हनुमान जी बोले, नहीं नहीं, बनने के पूरे लक्षण है, बस पार्टी गलत। तो विभीषण कहते हैं, कौन सी पार्टी वो अपनाए? हनुमान जी बोले, हमारी वाली में आ जाओ। आपकी कौन सी है? बोले राम जी वाली। हमारी वाली पार्टी में आ जाओ, मिनिस्टर भी बनोगे, प्राइम मिनिस्टर भी बनोगे। और क्या गजब का संकेत, हनुमान जी से कोई राजनीति सीखे। क्या गजब की राजनीति, हमारे बजरंग बली ने इतने दूर लंका में आकर के भी डंका राम नाम का बजाया कि विभीषण का माइंड सेट किया, तो अधर्म अपसेट हो गया और सनातन धर्म सेट हो गया। तो यहां बैठे हुए उपस्थित लोगों से हम यही कहेंगे, आज की कथा का यही विचार लेके जाओ, माइंड सेट कर लो, लाइफ सेट हो जाएगी। एक माइंड सेट आपके जीवन को बदल सकता। एक कुम्हार जो मटका बनाता, मिट्टी के बर्तन बनाता, एक कुम्हार मटका बनाते बनाते उसके मन में सूझी, वो चिलम बना रहा था। चिलम बनाते बनाते जैसे उसने चिलम का मिट्टी लिया और बनाना प्रारंभ किया, बनाते बनाते प्रारंभ करते करते उसके मन में आया, इस मिट्टी से चिलम बनाने की बजाय सुराही बनाई जाए। मिट्टी की चिलम को मिटा दिया, सुराही बनाने लगा। मिट्टी बोल पड़ी, कुम्हार तेरा लाख लाख धन्यवाद है, करोड़ करोड़ धन्यवाद है। कुम्हार ने कहा, क्या हुआ? बोले तेरा तो विचार बदला, मेरी तो जिंदगी बदल गई। तुम्हारा तो विचार बदला, मेरी तो जिंदगी बदल गई। तो कुम्हार ने कहा, कैसे जिंदगी बदली? उस मिट्टी ने कहा, अरे कुम्हार, तू यदि चिलम बनाता मैं खुद भी जलती, दूसरों को भी जलाती। अब मैं सुराही बनूंगी, खुद भी ठंडी रहूंगी और दूसरों को भी ठंडी करूंगी, दूसरों को भी शीतलता दूंगी, दूसरों को भी मैं ठंडक में ले जाऊंगी। ये जीवन का सिद्धांत है। जो अपने जीवन में माइंड सेट कर लेता, अपने जीवन में जो बुद्धि से एक बात विचार कर लेता, इस जिंदगी में सुखम चा दुखम चा भवा भवौ चा लाभा लाभु जया जयु, संसार में सब कुछ घटने वाला है, सुख आएगा तो दुख आएगा, दिन होगा तो रात होगी, पाप होंगे तो पुण्य भी होगा, धर्म होगा तो अधर्म भी होगा, और तुम्हारा सम्मान होगा तो अपमान भी होगा। हमसे ही सीख लो, जितने लोग हमें ताली बजाकर स्वागत करते, माला पहनाते, उतने ही भारत में कई गाली देते। अब हम सोचे, वाह, हमको माला भर पहनाई जाए, हमको गालियां ना पहनाई जाए, तो ऐसा संभव ही नहीं है। तालियां मिलेंगी तो गालियां भी मिलेंगी। तुम जिंदा रहोगे तो निंदा भी खाओगे, और निंदा कोई नहीं करेंगे, पड़ोसी पड़ोसन करेंगे, घर वाले ही करेंगे। तो जिंदा रहोगे तो निंदा पाओगे। इस माइंड सेट के साथ जीना कि दोनों का ही भेद है। कभी तुमने देखा होगा झूला पर झूलते हुए, झूला जितना पीछे तक जाता है उतने ही आगे तक आता है। ऐसे ही जीवन है, दुख का झूला जितना पीछे तक जाएगा, सुख का झूला उतना ही आगे आएगा। इसलिए श्रीलंका के प्रियजनों, यहां रहने वाले हम सभी समस्त लोगों को एक सूत्र आज के विचार में कहना चाह रहे, माइंड सेट करो, लाइफ सेट करो। माइंड सेट करो, लाइफ सेट। जीवन में आपको सिद्धांत को एक पकड़ना पड़ेगा कि हमको वो विचार नहीं करना जो हम पर है नहीं, वो विचार करना जो है। और हम लोग परेशान क्यों? पूछो क्यों है? पूछो पूछो। जो हो नहीं वो तुम दिखना चाहती,
1: जो हो नहीं वो दिखना चाहते और जो हो वो दिखना नहीं चाहते, यही परेशानी है। अच्छा उपाय क्या है सुखी होने का? अब उपाय सुनो सुखी होने का। सुखी होने का यही मंत्र है, हम जो हैं वही दिखने लगे, जैसे हैं वैसे रहने लगे तो हमें लगता है जीवन में दुखी नहीं रहेंगे, हमेशा सुखी ही सुखी रहेंगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। इसको एक छोटे से उदाहरण से समझो, जो पीछे बैठे वो आगे बैठना चाहते क्योंकि एक दूसरे की खपड़िया परेशान कर रही। अच्छा जो आगे बैठे वो मंच पे बैठना चाहे इधर, जो इधर बैठे ताकि हम इन्हें भी देखें और इधर भी दिखें। अच्छा जो इधर बैठे वो कभी इधर बैठना चाहते, और जो इधर आ जाते हैं वो इधर बैठना चाहते हैं। इसी को कहते हैं जीवन। जीवन में कभी कुछ भी चीज घटती नहीं, हमेशा मन की फैंटेसी बढ़ती जाती, मन की विचारधारा बढ़ती जाती, मन के नए नए संकल्प विकल्प बढ़ते ही जाते, मन नया नया विचार निरंतर करता ही रहता, मन नया नया संकल्प मन को देता ही रहता, और जीवन में हम लोग उसको पाने की चेष्टा में बढ़ते चले जाते, और एक समय ऐसा आता कि शमशान तक पहुंच पाते कहीं नहीं पहुंच पाते। अच्छा शमशान के बाहर बड़ा गजब का शब्द लिखा था, तेरी मंजिल ही इधर है, ध्यान के इधर है। एक शमशान के बाहर लिखा था, तेरी मंजिल इधर है पर ध्यान के इधर है। और हम लोगों का ध्यान संसार नश्वरता के मध्य में है पर मंजिल कहाँ है? मंजिल भगवान के चरणों में है। हम यही बात अंत में आपको मेरे प्रियजनों मध्य में यही बात हम कहना चाह रहे, इस सिद्धांत को आपको जीवन में अपनाना है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। अभी जो हमको मिला इसी में प्रसन्न रहना सीखो, इसी का नाम माइंडसेट। हम कल की चिंता में आज की खुशियों को ना खोएं। आदमी परेशान क्यों? सबको कल की टेंशन है। एक हमारे यहां एक बहुत लोकप्रिय कथा है, एक बहुत अमीर आदमी था, उसने अपने मुनीम से कहा कि जरा चेक करो कि हमारे पास कितना धन है। उसने चेक किया तो बताया कि आपकी आने वाली 9 पीढ़ियां बैठ करके खाएंगी, इतना धन है, कोई काम भी ना करें तो 9 पीढ़ियों का भोजन व्यवस्था है। और वो अमीर आदमी धीरे धीरे बीमार पड़ गया, और उसको बीमारी इतनी खतरनाक होने लगी कि कमजोर पड़ गए। तो डॉक्टरों को चेकअप करवाया, वैद्य बुलाया कि क्या बात है, आप बीमार क्यों पड़ गए? बोले इनको कुछ बीमारी नहीं है, चिंता है, टेंशन। तो वैद्य ने कहा, सेठ जी कोई बड़ी टेंशन हो तो हमें बताओ। तो जो मुनीम था उसने कहा कि अभी तो आप ठीक थे, अब कुछ दिनों से आप बीमार क्यों पड़ रहे हो, टेंशन क्या है? बोले हमको एक ही टेंशन है कि 9 पीढ़ियां तो बैठ के खाएंगी, 10वीं का क्या होगा, इसीलिए हम चिंता में। और कितनी विचित्र बात है, वो कहता है कि 10वीं का क्या होगा। तब फिर मुनीम ने समझाया, अरे आप अपनी सोचो, आने वाली पीढ़ी वो अपनी सोचेगी, तुम इसी चिंता में आज का सुख खत्म कर रहे हो, ये सेठ कोई और नहीं हम और तुम है, जो आने वाली पीढ़ी की टेंशन में वर्तमान का सुख खत्म कर रहे। मेरे प्रिय जनों, मेरे पागलों, हम आपको यही कहना चाहते, आने वाले सुख के लिए वर्तमान का सुख खत्म नहीं करना, जो अभी मिला है इसी में आनंद से जीना है। हनुमान जी ने यही विभीषण को समझाया। विभीषण ने कहा कि आप जहां आए हैं हमारी यहां हालत खराब है। क्या हालत? अच्छा विचित्र देखना, विभीषण कहां रहता था? लंका में, जहां हम लोग श्रीलंका में बैठे। विभीषण वहां किसके साम्राज्य में? रावण के साम्राज्य। रावण घोर राम जी का विरोधी, कट्टर दुश्मनी, परम शिव भक्त था लेकिन राम जी का घोर विरोधी था। अच्छा विचित्रता देखना, रावण की इकलक पूत सवालक नाती दिया धरेना रावण बाती। रावण के पास इतना बड़ा साम्राज्य, स्वर्ण के सिंहासन पर बैठता, नवग्रहों को उल्टा लटका के रखता, शनि को तो उल्टा ही लटकाए, बाकी ग्रहों को सीधा, शनि को उल्टा। तो किसी ने पूछा कि शनि को उल्टा क्यों लटकाए? रावण बोला यही खतरनाक, इसकी दृष्टि पड़ जाएगी गड़बड़, इसलिए सीधा रखो ही मत, उल्टा कर दो। हनुमान जी जब लंका आए थे तो पर्वत, हम जब कल गए वहां रंबोड़ा तो हेलीकॉप्टर से उड़न खटोला से गए, जब गए तो हम देख रहे थे
2: क्या लकड़ी के फर्नीचर का प्रयोग करने से सूर्य मजबूत होता है, क्या जरा सा तीखा खाने से मंगल और सूर्य पर असर पड़ता है, क्या परफ्यूम लगाने से बुध बेहतर हो जाता है, नवग्रहों को बेहतर करने के कौन से हैं छोटे छोटे उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
3: Summer Hits blends old school jams with fresh favorites so you can get the party started. Listen to your summer soundtrack made for sunshine, vibes, and summer heat. Hear all your favorites and more right here on TuneIn. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Summer Hits and start listening now.
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: Less interruption, more listening. With TuneIn Premium, get less ads on all music, news, and sports, so you can get back to what really matters. Listen to all your favorite stations on over 200 devices, so you never miss a second of airtime. Plus, enjoy commercial-free news, ESPN Radio, and more. With Premium Upgrade to TuneIn Premium, and start listening now.
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
3: ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
4: अमरनाथ के लिए कल जम्मू बेस कैंप से रवाना होगा पहला जत्था। ऑपरेशन शिवा की सुरक्षा में होगी अमरनाथ यात्रा, 57 दिन तक चलेगी यात्रा। हिमाचल प्रदेश के डेरा देवी शक्तिपीठ धाम में बड़ी भक्तों की तादाद, 3 दिन में करीब 1,00,000 श्रद्धालु पहुंचे। दिल्ली NCR में छाए बादल, मानसून का इंतजार जल्द होगा खत्म, अगले 2 से 3 दिन में आ सकता है मानसून, उमस भरी गर्मी से मिलेगी जल्द राहत। मुंबई और आसपास के इलाकों में आज हो सकती है भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। आज से बदले कई वित्तीय नियम, आधार में ईमेल अपडेट करना फ्री, कमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम 183 रुपए घटे, कई अन्य नियमों में भी बदलाव। आज भारत इंग्लैंड के बीच 5 मैच की T20 सीरीज का आगाज, चेस्टरली स्ट्रीट में भारतीय समय के अनुसार आज 10 बजे शुरू होगा मैच।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
4: जम्मू कश्मीर में 57 दिनों तक चलने वाले आसा के महोत्सव की तैयारी पूरी, कल जम्मू बेस कैंप से रवाना होगा पहला जत्था। अमरनाथ यात्रा में शामिल होने के लिए बेस कैंप से बड़ी संख्या में पहुंचने लगे हैं तीर्थयात्री, 3 जुलाई से बालटाल और पहलगाम बेस कैंप से शुरू होगी यात्रा। अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू में टोकन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन जारी, तीर्थयात्रियों के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। अमरनाथ यात्रा होगी आसान, जम्मू श्रीनगर हाईवे पर 3.5 किलोमीटर लंबी टनल तैयार। श्रद्धालुओं के सुरक्षित और आसान सफर के लिए पहलगाम और बालटाल रूट पर ट्रैक को किया गया चौड़ा, खूनी डाला और पंथियाल जैसे सबसे जोखिम भरे इलाकों से अब यात्रियों को नहीं गुजरना पड़ेगा। ऑपरेशन शिवा की सुरक्षा में होगी अमरनाथ यात्रा, जमीन से लेकर आसमान तक बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था तैनात। हर पड़ाव और हर रास्ते से लेकर सभी संवेदनशील इलाकों पर सुरक्षा एजेंसीज की पैनी निगाह, बिना किसी भय के बाबा के दर्शन कर सकेंगे भक्त। NH-44 पर वैली QAT यानी वैली क्विक एक्शन टीम के जवान तैनात, इसी रास्ते से होकर गुजरेगी अमरनाथ यात्रा के यात्री। ऊंचे पहाड़ी इलाकों और जंगलों में ड्रोन के जरिए भी की जा सकती है निगरानी, करीब 670 से ज्यादा अर्धसैनिक बलों की कंपनीज भी तैनात। अमरनाथ यात्रा से पहले सभी व्यवस्थाएं, चाक चौबंद बालटाल रूट पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने फायर एंड इमरजेंसी सर्विस और दूसरी संबंधित एजेंसीज के साथ मिलकर की मॉक ड्रिल। उत्तराखंड में भगवान केदारनाथ के दर्शन के लिए भारी संख्या में उमड़ रहे हैं भक्त, अभी तक 13,61,000 से अधिक यात्री दर्शन कर चुके हैं। यात्रा शुरू होने के 2 महीने 8 दिन के अंदर इतनी बड़ी संख्या में आकर भक्तों ने कायम किया नया रिकॉर्ड, 22 अप्रैल को खुले थे बाबा केदार के कपाट। भले ही मानसून सीजन शुरू हो गया है, बावजूद इसके हर रोज 7,000 से 8,000 के बीच भक्त बाबा केदार के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। वाराणसी में सावन को लेकर तैयारियां तेज, पुलिस कमिश्नर ने काशी विश्वनाथ मंदिर का किया निरीक्षण। सावन में होने वाली भीड़ को लेकर प्रशासन ने की खास तैयारी, सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन से होगी मेले की निगरानी। हिमाचल प्रदेश के नैना देवी शक्तिपीठ धाम में आस्था का महाउत्सव, दर्शन पूजन के लिए भारी तादाद में पहुंच रहे श्रद्धालु। पिछले तीन दिन के दौरान करीब 1,00,000 श्रद्धालु नैना देवी मंदिर पहुंचे, सुबह से ही मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले की खूबसूरत वादियों में है नैना देवी शक्तिपीठ धाम, दर्शन गर्मी की छुट्टियों के चलते श्रद्धालुओं की संख्या में बड़ी बढ़ोतरी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली समेत कई राज्यों से नैना देवी धाम पहुंचे श्रद्धालु, दर्शन पूजन के साथ साथ शिवालिक पर्वत के सुहाने मौसम का भी ले रहे हैं आनंद। नैना देवी शक्तिपीठ धाम में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए किए गए इंतजाम, आगामी दिनों में भी श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने की संभावना। महाराष्ट्र के वाशिम में गजानन महाराज की पारंपरिक शोभा यात्रा का उत्सव, जयकारों के साथ हुआ आगमन। गजानन महाराज की पालकी के दर्शन के लिए हजारों की तादाद में पहुंचे श्रद्धालु, जगह जगह शोभा यात्रा का किया गया स्वागत। गजानन महाराज की पालकी के दर्शन के लिए पहुंचे भक्तों के लिए किया गया महाप्रसाद का आयोजन, बेसन के 40,000 लड्डू बनाए गए। हजारों श्रद्धालुओं के लिए महाप्रसाद बनाने के लिए होती है विशेष तैयारी, बेसन रोटी और चावल के साथ दिया जाता है लड्डू का प्रसाद। बुल्ढाना के शेगांव से निकलती है गजानन महाराज की पालकी, 750 किलोमीटर का सफर तय करते हुए आषाढ़ी एकादशी पर पहुंचती है पंढरपुर। मुंबई में हुआ गणेशोत्सव की तैयारियों का शुभारंभ, सितंबर के महीने की 14 तारीख से शुरू होगा महाराष्ट्र का सबसे बड़ा त्यौहार गणेशोत्सव। गणेश जी की प्रतिमा बनाने वाले कार्यशालाओं की बड़ी रंगत, बप्पा की विशाल मूर्तियां अभी से लेने लगी हैं आकार। राज्य भर के बड़े गणेश पंडालों में अभी से दिए गए गणपति की भव्य विशाल प्रतिमाओं के ऑर्डर, हर साल अलग अलग थीम लेकर बनाए जाते हैं पंडाल। बोधगया में विश्व का अनोखा शांति स्तूप, असलहों के अवशेषों से बना यह स्तूप श्रीलंका से लाया गया भारत। पीतल की परत से ढका स्तूप विश्व को शांति का दे रहा है संदेश, 33 सालों तक श्रीलंकाई सेना और लिट्टे के बीच स्तूप के लिए हुआ था गृह युद्ध। आज से बदल जाएंगे आम आदमी की जेब और खर्चों से जुड़े 6 प्रमुख वित्तीय नियम, पासपोर्ट फीस में बढ़ोतरी, आधार ईमेल अपडेट, क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड लाउंज एक्सेस शामिल। आज से नए डिजिटल प्लेटफॉर्म ईपीएफओ 3.0 के लॉन्च की उम्मीद, इस सुविधा से ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स यूपीआई के जरिए निकाल सकेंगे अपने पीएफ का पैसा। आज से 31 दिसंबर 2026 तक आधार कार्ड में रजिस्टर ईमेल आईडी अपडेट कराना भी होगा फ्री, पहले इस काम के लिए लगता था ₹75 का शुल्क। अब पासपोर्ट बनवाना होगा महंगा, आज से 36 पेज वाले सामान्य पासपोर्ट की फीस ₹1,500 से बढ़कर होगी ₹2,500, तत्काल पासपोर्ट बनवाने के लिए लगेंगे ₹5,000। रेलवे यात्रा के नियम भी हो सकते हैं सख्त, इसके तहत बिना टिकट यात्रा करने वालों पर लगाया जा सकता है पहले से ज्यादा जुर्माना। मॉनसून का इंतजार कर रहे दिल्ली वालों के लिए राहत की खबर, अगले 2 से 3 दिनों में आ सकता है मॉनसून, उमस और गर्मी से मिलेगी राहत। मौसम विभाग के मुताबिक मॉनसून ने रफ्तार पकड़ी, गुजरात, मध्य प्रदेश, यूपी, दमन के कई हिस्सों को पार किया, दिल्ली के साथ उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर में भी देगा दस्तक। मॉनसून का दस्तक के साथ ही हिमाचल के लिए आईएमडी ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट, राज्य में 6 जुलाई तक बारिश जारी रहने की संभावना। मुंबई और आसपास के इलाकों में आज हो सकती है भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। गुजरात के सूरत में मॉनसून की जबरदस्त बारिश, लोगों को गर्मी से राहत मिली। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अरुणाचल प्रदेश के केई पान्योर जिले में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, राहत और बचाव कार्यों की जानकारी ली। उत्तराखंड के बागेश्वर में आज भारी बारिश का रेड अलर्ट, प्रशासन ने स्कूल्स और आंगनबाड़ी केंद्रों में छुट्टी घोषित की। बिहार में मेहरबान हुआ मॉनसून, दरभंगा में झमाझम बारिश होने से लोगों को गर्मी से मिली राहत। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में मॉनसून की बारिश का दौर, सतना में जमकर बरसे बादल। मध्य प्रदेश के सीहोर में बरसे बादल, भारी बरसात के बाद रिहायशी इलाकों में भरा पानी। आज से इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज का होगा आगाज, भारत और इंग्लैंड के बीच सीरीज में खेले जाएंगे 5 टी20 मैच। चेस्टरली स्ट्रीट में भारतीय समय के अनुसार रात 10 बजे होगा मैच। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में पहली बार टी20 आई सीरीज जीतने पर होगी इंडिया की नजरें, तिलक वर्मा है टीम के उप कप्तान। इंग्लैंड दौरे पर एक बार फिर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू पर सबकी नजरें, आयरलैंड दौरे पर नहीं मिला था वैभव को प्लेइंग 11 में हिस्सा। हार्दिक पांड्या ने करियर के लिए लिया बड़ा फैसला, मुंबई छोड़कर बेंगलुरु में बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को अपना स्थायी ट्रेनिंग बेस बनाया, यहां मिलेंगी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने 2027 से 2028 के लिए अपना नया वर्ल्ड टूर कैलेंडर जारी किया, टीवी पर लाए दिखाए जाने वाले मैचों की संख्या बढ़ाई, खिलाड़ियों को भी मिलेगी ज्यादा सुविधा। एशियन गेम्स के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम घोषित, सितंबर से जापान में आयोजित होगा टूर्नामेंट। एशियन गेम्स के लिए हरमनप्रीत को मिली टीम की कमान, स्मृति मंधाना को बनाया गया उप कप्तान। खराब फॉर्म से जूझ रही विकेटकीपर यासिका भाटिया को टीम से किया गया ड्रॉप, उनकी 17 साल युवा विकेटकीपर जी कमलिनी को दिया गया है मौका। स्पिन ऑलराउंडर श्रेयंका पाटिल को फिटनेस क्लियरेंस मिलने के बाद टीम में जगह मिली, टी20 वर्ल्ड कप में नीदरलैंड के खिलाफ रखने में चोट के कारण पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गई थी श्रेयंका। आईसीसी रैंकिंग में टॉप टीमों में शामिल होने के कारण भारतीय महिला टीम को सीधे क्वार्टर फाइनल या नॉकआउट स्टेज में एंट्री मिलने की उम्मीद। मंजू नयाल ने रचा इतिहास, बनी भारत की पहली 3-स्टार इंटरनेशनल महिला कुराश रेफरी। कई राज्य और राष्ट्रीय स्तर की कुराश प्रतियोगिताओं का सफल आयोजन भी कर चुके हैं मंजू, 22 वर्षों से ज्यादा के अनुभव के साथ कुराश और स्पोर्ट्स एजुकेशन के क्षेत्र में किया है काम। अब तक देश की कोई महिला नहीं कर सकी है ये करिश्मा, फिलहाल गाजियाबाद के गुरुकुल द स्कूल में सीनियर कोऑर्डिनेटर के पद पर कार्यरत है मंजू नयाल। वाराणसी भ्रमण पर निकली 40 ग्रामीण महिलाएं और बच्चे, बाबा विश्वनाथ समेत कई मंदिरों में किए दर्शन पूजन, मिशन शक्ति फेज 5.0 के तहत पुलिस के सहयोग से आयोजित किया गया ये टूर। मॉनसून के दौरान संभावित प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए उत्तराखंड सरकार की तैयारियां तेज, 2 जुलाई को सभी 13 जनपद में आयोजित की जाएगी मॉक ड्रिल। अंतरिक्ष से सामने आई शानदार तस्वीर, नासा के अंतरिक्ष यात्री क्रिस विलियम्स और जेसिका मे ने पूरा किया 7 घंटे 20 मिनट का स्पेस वॉक। इंटरनेशनल अंतरिक्ष स्टेशन के रोबोटिक आर्म की मरम्मत के लिए किया गया यह स्पेस वॉक, 27 मई को सामान्य कामकाज के दौरान समस्या का पता चला था। अंतरिक्ष स्टेशन के मेंटेनेंस के लिए की जाने वाली ये 280वीं स्पेस वॉक थी, दोनों अंतरिक्ष यात्रियों ने स्पेस वॉक के दौरान स्पेयर पार्ट को बदलने का काम पूरा किया। अंतरिक्ष यात्री जेसिका मेर की 5वीं स्पेस वॉक थी, जबकि क्रिस विलियम्स दूसरी बार स्पेस वॉक मिशन को उन्होंने अंजाम दिया। नासा के मुताबिक 25 साल से ज्यादा समय तक लगातार काम करने के बाद रोबोटिक आर्म की मरम्मत सामान्य प्रक्रिया, समय समय पर किया जाता है रखरखाव। वडोदरा में भारतीय वायुसेना का अनोखा प्रयास, इंडस्ट्री आउटरीच 2026 का भव्य आयोजन। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत एफओ स्टेशन पर हुआ आयोजन, इस कार्यक्रम में लगभग 200 कंपनीज ने हिस्सा लिया। भविष्य के युद्ध को ध्यान में रखते हुए ड्रोन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी स्वदेशी तकनीकों पर की गई चर्चा, रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा दिलाना मकसद। हरियाणा में 4 और 5 जुलाई को होगी हरियाणा टीईटी परीक्षा, जिला कलेक्टर ने धारा 163 लागू करने के निर्देश दिए। केंद्र ने फिल्म उद्योग को मजबूत करने के लिए समिति का गठन किया, प्रसून जोशी करेंगे अध्यक्षता। प्रधानमंत्री मोदी की सभी विभागों की सचिवों के साथ उच्च स्तरीय बैठक, 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य पर चर्चा। स्वास्थ्य मंत्री नड्डा दिल्ली में करेंगे डेंगू की रोकथाम के लिए किए गए प्रयासों की समीक्षा। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री, एनडीएमसी और एमसीडी के अधिकारी रहेंगे मौजूद। दिल्ली में 75 स्मारकों के कायाकल्प के लिए रेखा सरकार ने कसी कमर। स्मारक मित्र बनकर निजी कंपनियां, एनजीओ ट्रस्ट और पीएसयू इन 75 स्मारकों को ले सकेंगे गोद। गुलमर्ग में भी ट्रैकर कंट्रोल के लिए दिल्ली जैसा ऑड इवन सिस्टम किया जाएगा। बढ़ते ट्रैफिक की समस्या से निजात पाने के लिए योजना। रेल यात्रियों के लिए गुड न्यूज, रेलवे ने 5 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के परिचालन अवधि में किया विस्तार। भारतीय सेना को मिला नया नेतृत्व, जनरल धीरज सेठ ने संभाला सेना प्रमुख का पदभार, 31 अगस्त 2028 तक रहेगा कार्यकाल। एयर मार्शल नागेश कपूर ने भारतीय वायुसेना के वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ के पद से रिटायर हुए, छोड़ा कार्यभार। इस मौके पर नेशनल वॉर मेमोरियल में श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन हुआ। उन्होंने देश के वीर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। वडोदरा में वाइब्रेंट गुजरात समापन समारोह का आयोजन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हुए इसमें शामिल। बरेली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पंडित राधेश्याम कथावाचक की प्रतिमा के अनावरण समारोह में हुए शामिल, जनसभा को भी संबोधित किया।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: क्या लकड़ी के फर्नीचर का प्रयोग करने से सूर्य मजबूत होता है? क्या जरा सा तीखा खाने से मंगल और सूर्य पर असर पड़ता है? क्या परफ्यूम लगाने से बुध बेहतर हो जाता है? नव ग्रहों को बेहतर करने के कौन से हैं छोटे छोटे उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: ट्यून इन रेडियो ब्रिंग्स द वर्ल्ड ऑफ रेडियो स्ट्रेट टू यू। म्यूजिक, न्यूज, स्पोर्ट्स, पॉडकास्ट एंड लाइव रेडियो फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, ऑल इन वन प्लेस। From what's happening now to what you want to hear next, enjoy it all on TuneIn. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices, at home, in the car, or on the go. Listen to everything and more on TuneIn.
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मौड़ धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मौड़ धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: You may already think of TuneIn as your go-to audio app, but it's also your go everywhere audio app. Because TuneIn works on just about every device you already use. Smart speakers? Yep. In your car? Absolutely. Phone or tablet? Yeah, of course. Wherever you are, your audio comes with you. And if you want to go hands-free, just say open TuneIn Live on your Alexa-enabled device and follow the interactive prompts to find the station you're looking for. No tapping, no searching. Just press play with your voice.
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आषाढ़ के महीने का आरंभ होने जा रहा है और आज हम आपको बताएंगे आषाढ़ महीने की महिमा के बारे में। अब जान लेते हैं दिनांक 1 जुलाई 2026 दिन बुधवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य विद्यमान है मिथुन राशि में, शुक्र बुध और बृहस्पति कर्क राशि में, केतु सिंह राशि में, चंद्रमा धनु राशि में, राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में और मंगल फिलहाल संचरण कर रहे हैं वृषभ राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। हम आज बात कर रहे हैं आषाढ़ के महीने की। देखिए, हिंदू पंचांग का चौथा महीना आषाढ़ का महीना है। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ और आषाढ़, ये संधि काल का महीना है। ग्रीष्म ऋतु का अंत होता है और वर्षा ऋतु की शुरुआत होती है। इस महीने में रोगों का संक्रमण सर्वाधिक होता है क्योंकि मौसम बदलने से बीमारियां फैलती हैं और इस महीने से वातावरण में थोड़ी सी नमी आनी शुरू हो जाती है। आषाढ़ के महीने को शास्त्रों में कामना पूर्ति का महीना भी कहा जाता है। इसका नाम आषाढ़ इसलिए है क्योंकि आषाढ़ महीने की पूर्णिमा तिथि को पूर्वाषाढ़ा या उत्तराषाढ़ा नक्षत्र सामान्यतः रहता है। इस बार आषाढ़ का महीना 1 जुलाई से आरंभ हो रहा है और ये 29 जुलाई तक रहेगा। आषाढ़ पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब आपको बताते हैं कि आषाढ़ के महीने में कौन कौन से व्रत आते हैं, पर्व आते हैं, त्योहार आते हैं। आषाढ़ मास के पहले दिन किसी निर्धन व्यक्ति को या ब्राह्मण को खड़ाऊ, छाता, नमक या आंवले का दान किया जाता है। इसी महीने में भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा भी निकाली जाती है। आषाढ़ के महीने में सूर्य देव की पूजा होती है और आषाढ़ शुक्ल पक्ष में गुप्त नवरात्रि का पर्व भी मनाते हैं, यानी देवी की उपासना करते हैं। तो आषाढ़ शुक्ल पक्ष में तंत्र साधना के लिए और शक्ति उपासना के लिए गुप्त नवरात्रि भी मनाई जाती है और आषाढ़ शुक्ल एकादशी को देवशयनी एकादशी आती है, जब भगवान विष्णु शयन के लिए या योग निद्रा में चले जाते हैं और आषाढ़ शुक्ल एकादशी से
अगले 4 महीने तक शुभ कार्यों की वर्जना होती है, शुभ कार्य मना होते हैं। आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा का महान उत्सव भी मनाया जाता है। तो आषाढ़ का जो महीना है इसमें पर्व त्योहार बड़े महत्वपूर्ण हैं, और सबसे बड़ा जो पर्व है वो गुरु पूर्णिमा का पर्व है। आषाढ़ की पूर्णिमा को मनाया जाता है। आषाढ़ पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब आपको बताते हैं कि आषाढ़ के महीने में किन किन देवी देवताओं की उपासना करना अच्छा होता है। देखिए, आषाढ़ के महीने में सबसे ज्यादा फल देने वाली उपासना अपने गुरु की होती है। आपके जो भी गुरु हैं उनकी उपासना आषाढ़ के महीने में करिए, और अगर गुरु नहीं हैं तो भगवान शिव या भगवान कृष्ण को गुरु मानकर उनकी उपासना करिए। इसके अलावा आषाढ़ में गुप्त नवरात्रि में माता दुर्गा की, देवी की उपासना करना भी शुभ होगा। श्री हरि विष्णु की अगर आषाढ़ के महीने में उपासना करें तो संतान प्राप्ति का वरदान आपको मिलेगा। आषाढ़ के महीने में अगर आप जल देव की, वरुण देव की उपासना करें तो धन की प्राप्ति सरल हो जाएगी। और अगर आप आषाढ़ के महीने में मंगल और सूर्य ग्रह की उपासना करते हैं तो ऊर्जा का स्तर बना रहता है, और आषाढ़ में सूर्य देव की उपासना करने से भक्ति का वरदान प्राप्त होता है। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। देखिए, आषाढ़ महीने का संबंध है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र से या उत्तराषाढ़ा नक्षत्र से। ऐसी स्थिति में जिन लोगों का जन्म पूर्वाषाढ़ा में या उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में हुआ है उन्हें आषाढ़ के महीने में नियमित रूप से सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए, और साथ ही साथ नियमित रूप से देवी की उपासना करनी चाहिए। अगर आपका जन्म पूर्वाषाढ़ा या उत्तराषाढ़ा में हुआ है, धनु या मकर राशि है आपकी, तो ऐसी सिचुएशन में आप देवी के मंत्र का जप करें और सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, आपके नक्षत्र को शक्ति मिलेगी और जीवन की बाधाएं दूर होंगी। तो आज हमने बात की आषाढ़ मास के महिमा के बारे में। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप। अगर आप पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं और चाहते हैं कि साझेदारी चले, पार्टनरशिप चलती रहे, तो हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी को गुलाब का फूल अर्पित करके प्रार्थना करिएगा, आपको लाभ होगा। अब जान लेते हैं दिनांक 1 जुलाई 2026 दिन बुधवार का
सक्सेस मंत्र क्या है? प्रातः काल भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करिएगा, घर से निकलते समय उसमें से थोड़ी सी दूर्वा अपने पास रख लीजिएगा। अगर आप प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
3: Sage University, transforming your passion into profession. TIT Bhopal, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
4: जम्मू कश्मीर में 57 दिनों तक चलने वाले आस्था के महोत्सव की तैयारी पूरी, कल जम्मू बेस कैंप से रवाना होगा पहला जत्था, ऑपरेशन शिवा की सुरक्षा में होगी अमरनाथ यात्रा। हिमाचल प्रदेश की नैना देवी शक्तिपीठ धाम में बड़ी भक्तों की तादाद, 3 दिन में करीब 1,00,000 श्रद्धालु पहुंचे। दिल्ली एनसीआर में छाए बादल, मॉनसून का इंतजार जल्द होगा खत्म, अगले 2 से 3 दिन में आ सकता है मॉनसून। मुंबई और आसपास के इलाकों में आज हो सकती है भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। आज से बदल जाएंगे कई वित्तीय नियम, आधार में ईमेल अपडेट करना होगा फ्री, पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा महंगा, कई अन्य नियमों में भी बदलाव। आज भारत इंग्लैंड के बीच 5 मैच की T20 सीरीज का आगाज, चेस्टरली स्ट्रीट में भारतीय समय के अनुसार रात 10 बजे शुरू होगा मैच।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे अच्छी।

0: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंत श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में।
1: नमस्कार।
0: तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज हम बात करने वाले हैं नौ ग्रहों के बारे में, यानी कि अगर नौ ग्रहों की स्थितियां आपकी कुंडली में मजबूत ना हो तो कैसे छोटे छोटे उपायों के जरिए उन्हें बेहतर किया जा सकता है, उन्हें मजबूत किया जा सकता है, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले पंडित जी से जान लेते हैं आज का गुड लक मंत्र क्या है।
1: अगर आप अपनी कुंडली के चंद्रमा की खराब स्थिति से काफी परेशान हैं तो एक चांदी का गिलास ले लें या चांदी का लोटा ले लें और चांदी के पात्र से शिवलिंग पर जल चढ़ाएं हर सोमवार को। ऐसा करने से चंद्रमा की नकारात्मक स्थिति में सुधार होगा।
0: तो चलिए बातचीत का सिलसिला हम शुरुआत उसकी करेंगे, लेकिन उससे पहले पंडित जी से जान लेते हैं 1 जुलाई 2026 यानी दिन बुधवार का पंचांग क्या है।
1: दिनांक 1 जुलाई 2026 दिन बुधवार, तिथि है आषाढ़ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि, प्रातः 7:38 चंद्रमा धनु 38 मिनट तक, नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र सुबह 6:51 तक, चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं दोपहर 1:31 तक, राहु काल का समय दोपहर 12:00 से 1:30 तक, उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
0: तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और हमेशा की तरह पंडित जी से यहाँ पर बेहद ही सरल सवाल से आज के कार्यक्रम की शुरुआत हम करेंगे। नौ ग्रहों के बारे में पंडित जी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, नौ ग्रहों की स्थिति अगर किसी की कुंडली में मजबूत ना हो, तमाम ग्रह जो हैं डेबिलिटेटेड हो, किस तरीके से मजबूत किया जा सकता है इनको कुंडली में, उसके बारे में बताएं
1: जी। हम आज आपको बता रहे हैं कि छोटे छोटे उपायों से, घरेलू नुस्खों से आप नौ ग्रहों को मजबूत कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखिए, हर ग्रह की मानव जीवन में एक भूमिका होती है, एक विशेष महत्व होता है। जब कोई ग्रह कमजोर होता है तो व्यक्ति के जीवन में उस ग्रह से संबंधित शारीरिक या मानसिक समस्या आ जाती है। ग्रहों को मजबूत जब आप करते हैं तो आप उस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। और इसके लिए आपको जरूरी नहीं है कि आप कठोर तपस्या करें, आप जान दे दें अपनी, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी जीवनचर्या में, अपने रूटीन में, अपने खान पान में और अपने स्वभाव में छोटे छोटे बदलाव करिएगा। इन बदलावों से बहुत जल्दी आप अपने ग्रहों को मजबूत कर सकते हैं। वैसे तो देखिए, उपाय बहुत सारे हो सकते हैं, मंत्र जप करने के, दान करने के, रत्न पहनने के, लेकिन हम जो आपको छोटे छोटे उपाय बताएंगे उनको

0: बना हुआ है। वृषभ राशि, बेवजह की चिंता हो सकती है, जल्दबाजी में काम करने से बचिएगा, दोपहर के बाद स्थितियों में सुधार होगा। अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। मेहनत ज्यादा होगी, जितनी मेहनत करेंगे उतना ही लाभ होगा। मिथुन राशि, कारोबार की स्थिति में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रिश्तों में समस्या हो सकती है, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: तो चलिए अब बात करते हैं सूर्य की, यानी सूर्य को मजबूत करने के घरेलू नुस्खे आखिर कौन से हैं, आइए पंडित जी से जानते हैं।
0: देखिए, सूर्य ग्रहों का राजा है। अगर कुंडली में आप सूर्य को मजबूत कर लें तो कुंडली की बहुत सारी समस्याओं को ठीक कर सकते हैं। सूर्य को कैसे मजबूत करेंगे? रोज सवेरे सूर्य की रोशनी में कुछ देर बैठिए। इसीलिए कहा जाता है कि उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाइए। शाम को सूरज की रोशनी रहते रहते ही सूर्यास्त के पहले भोजन कर लीजिएगा। तांबे का एक गिलास खरीदें या तांबे का एक लोटा ले आएं और उसी से पानी पीजिएगा। सामान्यतः जीवन में लकड़ी के फर्नीचर का प्रयोग करिएगा, लकड़ी की मेज का और कुर्सी का। थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा ही, अपने भोजन में जरूर खाइएगा।
1: अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा वीक है, कमजोर है, तो किस तरीके से उसे मजबूत किया जा सकता है, क्या छोटे छोटे उपाय हैं, आइए पंडित जी से जानते हैं।
0: देखिए, चंद्रमा आपका मन है। अगर आप अपने मन को मजबूत करना चाहते हैं, मन को बेहतर करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? चंद्रमा को कैसे मजबूत करेंगे? रात में ठंडी चीजें खाना बंद कर दीजिए। भोजन हमेशा ताजा खाइए। जहां तक संभव हो बासी भोजन से परहेज करिएगा। रस वाले फल, संतरा, मौसमी, कीवी, इसको खाइए, और कच्ची सब्जियां और कच्चा सलाद खाइए। किसी भी हाल में पानी की बर्बादी मत करिएगा, पानी बर्बाद होने से बचाइए। अगर आपकी माँ हैं तो सप्ताह में एक दिन या जब भी मौका मिले माँ के हाथ से कुछ खाइए, मिठाई खाइए, या माँ अपने हाथ से पानी दे वो पानी पीजिए। अगर ऐसा करेंगे तो चंद्रमा आपका मजबूत होगा।

0: तो चलिए इसी क्रम में अब आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं मंगल ग्रह की। मार्स के बारे में यहाँ पर बात करेंगे, और अगर मार्स डेबिलिटेटेड है, कमजोर है आपकी कुंडली में, तो मंगल को किस तरीके से मजबूत किया जा सकता है, ये पंडित जी से जानते हैं।
1: देखिए, मंगल का मतलब होता है आपका साथ।
0: मंगल ग्रह की मार्स के बारे में यहाँ पर बात करेंगे, और अगर मार्स डेबिलिटेटेड है, कमजोर है आपकी कुंडली में, तो मंगल को किस तरीके से मजबूत किया जा सकता है, ये पंडित जी से जानते हैं।
1: देखिए, मंगल का मतलब होता है आपका साहस और आपका आत्मविश्वास। तो मंगल को कैसे मजबूत करें कि साहस बढ़े, आत्मविश्वास बढ़े, रोग बीमारी जल्दी ना पकड़े? जमीन पर सोने का प्रयास करिए, या अगर लो फ्लोर की पलंग है तो उस पर सोइएगा। सप्ताह में एक दिन कोशिश करिए मंगलवार को नमक मत खाइएगा। अपने भोजन में गुड़ का और दलिये का सेवन जरूर करिएगा। अगर मंगल बहुत कमजोर है और आप मंगल को ताकतवर बनाना चाहते हैं, तो लाल रंग के अंडर गारमेंट्स, लाल रंग के अंतः वस्त्र जरूर धारण करिए, या लाल रंग का रुमाल अपने साथ में रखना शुरू कर दीजिए।
0: तो बातचीत का यह सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं कर्क सिंह और कन्या राशि का राशिफल क्या कुछ कहता है।
1: कर्क राशि, स्वास्थ्य के मामले में मन में आपके सुधार होगा, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संतान पक्ष की उन्नति होगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, करियर में समस्या हो सकती है, वाहन सावधानी से चलाएं, दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा, हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: तो चलिए इसी के साथ फिलहाल समय हो गया है आपके सवाल का, तो बिना देर किए पंडित जी से ही जान लेते हैं कि आज का पहला सवाल वो किसका ले रहे हैं।
1: आज का पहला प्रश्न मनीषा जी ने हमें लिखा है, और मनीषा जी हमें सहारनपुर उत्तर प्रदेश से मेल लिखती हैं। 3 जून 1990 का जन्म है। रात में 11 बजे जन्म स्थान है देहरादून। मनीषा कह रही हैं कि मैं पीएचडी कर रही हूं अभी, क्या मुझे आगे शिक्षा क्षेत्र में अच्छी नौकरी मिल सकेगी? मनीषा, आपकी कुंडली के हिसाब से आप उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, हायर एजुकेशन के क्षेत्र में बढ़िया नौकरी पाएंगी साल 2027 के जून के बाद। लेकिन ऐसी स्थिति में आपको सहारनपुर छोड़ना पड़ सकता है, आपका चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है। शिक्षा क्षेत्र में आपका करियर अच्छा है और आपकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर दिख रही है। एक पीला पुखराज लगभग 5-6 रत्ती सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में बृहस्पतिवार को प्रातः धारण करें। रोज सुबह और रोज शाम 27-27 बार गायत्री मंत्र का जप करें, आपको लाभ होगा।
0: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और आज का दूसरा सवाल भी ले लेते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को याद दिला दूं कि अगर आप भी पंडित जी से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हमारी ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है। इस ईमेल आईडी पर आप हमें अपने प्रश्न लिख करके भेज सकते हैं। याद रखें कि आप अपनी बर्थ डिटेल जरूर लिखें। तो चलिए पंडित जी से ही जान लेते हैं कि आज का अगला सवाल वो किसका ले रहे हैं।
1: जी, अगला प्रश्न मोहित जी ने हमें लिखा है और मोहित जी हमें मेल लिखते हैं दिल्ली से। इनकी जन्म की तारीख है 9 जून 1998। जन्म का समय रात में 10:45, जन्म स्थान है मधुबनी बिहार। मोहित जी कह रहे हैं कि मैं कंप्यूटर के क्षेत्र में नौकरी करता हूं और मैं नौकरी छोड़ करके व्यापार करना चाहता हूं, क्या मेरे लिए व्यापार करना बेहतर होगा? मोहित जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपको व्यापार में अभी नहीं जाना चाहिए, अभी आप नौकरी करिए 2030 तक। 2030 के बाद आपके व्यापार के बारे में सोचा जा सकता है। वैसे आपकी कुंडली ज्यादातर आपको नौकरी में तरक्की देगी। इधर उधर भटकने से बचिए वरना करियर में मुश्किलें आ सकती हैं। एक मूंगा बनवा के पहनिए, 8-10 रत्ती का मूंगा, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में मंगलवार को प्रातः मूंगा धारण करें। सुबह और शाम दोनों समय एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपको लाभ होगा।
0: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगर आपकी कुंडली में बुध जो है वो कमजोर है, आप उसे मजबूत करना चाहते हैं तो कौन से छोटे छोटे उपाय हैं इसे मजबूत करने के, आइए जानते हैं।
1: देखिए, बुध का मतलब होता है आपकी बुद्धि, आपका ब्रेन, चीजों को समझने की क्षमता। तो अगर बुध कुंडली में कमजोर है और आप बुध को मजबूत करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? भोजन में हरी सब्जियां जरूर ग्रहण करिए, भोजन में हरी सब्जियां जरूर खाइए रेगुलर। सौंदर्य प्रसाधन का, कॉस्मेटिक्स का प्रयोग कम से कम करिएगा। कोई ना कोई संगीत, जैसा भी म्यूजिक आपको अच्छा लगता है वैसा संगीत सुनने की आदत डालिए। नियमित रूप से स्नान करिए और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखिए। परफ्यूम जरूर लगाइए और अगर छात्र हैं तो चंदन की सुगंध का नियमित रूप से प्रयोग करना अच्छा होगा।
0: तो चलिए इसी क्रम में अब बात कर लेते हैं बृहस्पति के बारे में। बृहस्पति को मजबूत करना है तो घरेलू नुस्खे कौन से हैं, पंडित जी से जानते हैं।
1: देखिए, बृहस्पति का मतलब होता है ज्ञान, धर्म और ईश्वर की कृपा। अगर आप बृहस्पति को मजबूत करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? भोजन में हल्दी का प्रयोग जरूर करिएगा। सात्विक भोजन यानी मांस मदिरा से मुक्त सात्विक भोजन ग्रहण करिए। बाल बहुत लंबे और बड़े मत रखिए, बाल छोटे रखिए। गले में चंदन की, तुलसी की, रुद्राक्ष की माला पहने और अपने माथे पर या कंठ पर तिलक लगाएं। सोने का या पीतल का एक छल्ला तर्जनी उंगली में, इंडेक्स फिंगर में अवश्य धारण करें। अगर आप ये उपाय करें तो बृहस्पति मजबूत होगा। और अगर बृहस्पति मजबूत होगा तो जीवन में ईश्वर की कृपा का अनुभव ज्यादा होगा।
0: तो चलिए अब बात करते हैं शुक्र यानी वीनस की। अगर आप शुक्र को मजबूत करना चाहते हैं अपनी कुंडली में, आपकी कुंडली में डेबिलिटेटेड है, कमजोर है शुक्र ग्रह, घरेलू नुस्खे कौन से हैं, आइए पंडित जी से जानते हैं।
1: देखिए, शुक्र का मतलब होता है जीवन का सुख, हैप्पीनेस और हार्मनी। अगर आप शुक्र को मजबूत करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? रोज स्नान करने के बाद सुगंध लगाइए, हल्की सी खुशबू, साफ सुथरे और सुंदर रंग के वस्त्र धारण करिए। दोपहर के भोजन में थोड़ा सा ही सही, लेकिन दही जरूर खाइए। अपने बालों को हमेशा संवार कर रखिए। दाढ़ी मूछ रखते हैं तो बिखरी हुई दाढ़ी मूछ मत रखिए, उनको सेट रखिए। चमकदार सफेद रंग का, ब्राइट वाइट कलर का जीवन में प्रयोग करें। चमकदार सफेद रंग का एक रुमाल अपने पास हमेशा रखिएगा।
0: तो बातचीत हमारा ये जो सिलसिला है यूं ही जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं तुला वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल क्या कुछ कहता है।
1: तुला राशि, रुका हुआ काम आपका पूरा होगा, धन की समस्या हल होगी, यात्रा में सावधानी बनाए रखें। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, धन लाभ के उत्तम योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, महत्वपूर्ण काम बन जाएंगे, धन लाभ के उत्तम योग बन रहे हैं, करियर में बड़ी सफलता मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85% बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: तो चलिए इसी क्रम में अब बात कर लेते हैं शनि ग्रह के बारे में। अगर आप अपनी कुंडली में शनि को मजबूत करना चाहते हैं तो शनि को मजबूत करने के घरेलू नुस्खे कौन से हैं, आइए आपको बताते हैं।
1: देखिए, शनि का मतलब होता है आपके जीवन की मेहनत और आपके जीवन का संघर्ष। तो अगर आप शनि को मजबूत करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, भोजन के लिए, शरीर की मालिश के लिए सरसों के तेल का प्रयोग करिए। अंधेरे में मत रहिए, ज्यादा से ज्यादा जीवन में प्रकाश का प्रयोग करें। बाल बड़े रख सकते हैं, दाढ़ी बड़ी रख सकते हैं, लेकिन उसको सेट करके रखिएगा। भोजन के लिए प्रयोग करने के लिए स्टील के बर्तनों का प्रयोग करना अच्छा होगा। शनि को अगर प्रबल करना चाहते हैं तो जूते, चप्पल, पर्स और बेल्ट, ये काले रंग की अगर आप धारण करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
0: तो चलिए बात करते हैं छाया ग्रहों के बारे में, यानी राहु केतु। राहु केतु को कुंडली में आखिर कैसे मजबूत किया जा सके, कौन से वो अचूक उपाय हैं, आइए पंडित जी से जानते हैं।
1: देखिए, राहु केतु का मतलब जीवन की आकस्मिकता है। जीवन में अचानक लाभ और अचानक हानि राहु केतु से होती है। बीमारियां हो जाने पर उनका डायग्नोसिस ना हो पाए, इसके पीछे भी राहु केतु होते हैं। तो राहु केतु को कैसे मजबूत करेंगे, रोज सवेरे स्नान करिए, स्नान करना आवश्यक है। सुबह खाली पेट तुलसी के दो पत्ते ग्रहण करें। फास्ट फूड खाना बिल्कुल बंद कर दें। सप्ताह में एक दिन धर्म स्थान पर या मंदिर जाएं, अपने गुरु के आश्रम में जाएं या किसी भी देवी देवता के मंदिर में जाकर प्रार्थना करें। चंदन का तिलक नियमित रूप से लगाएं या चंदन की सुगंध लगाएं तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
0: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं मकर कुंभ और मीन राशि का दैनिक राशिफल क्या है।
1: मकर राशि, महत्वपूर्ण काम अभी टाल दीजिए, लिखा पढ़ी में सावधानी रखेंगे, दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा। अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। शिक्षा में सफलता के योग हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर में बड़ी सफलता मिलेगी। काम की रुकावट दूर होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। गणेश जी की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: तो चलिए इसी क्रम में अब आगे बढ़ते हैं और आज का अंतिम सवाल भी ले लेते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को याद दिला दूं कि अगर आप भी पंडित जी से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हमारी ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है। इस ईमेल आईडी पर आप हमें अपने प्रश्न लिख करके भेज सकते हैं। तो चलिए पंडित जी से जान लेते हैं आज का अंतिम प्रश्न किसका ले रहे हैं पंडित जी, उसके बारे में बताएं।
1: जी, आज का अंतिम प्रश्न किसलय ने हमें लिखा है और किसलय हमें मुंबई से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 22 दिसंबर सन 2001। जन्म का समय सुबह के 7 बजे और जन्म का स्थान है मुंबई। किसलय कह रही हैं कि मैं आगे की पढ़ाई करने के लिए विदेश जाना चाहती हूं, क्या इस समय विदेश जाना मेरे लिए बेहतर होगा? किसलय, आपकी कुंडली के हिसाब से संभवतः आप मीडिया, लैंग्वेज या कला के क्षेत्र की कोई पढ़ाई करना चाहती हैं, लेकिन अभी आपके विदेश जाने का उपयुक्त समय नहीं है। आप भारत में ही रहकर अपनी पढ़ाई करिए। 2028 तक अगर स्थितियां ठीक रहीं तो 2028 के अंत में आपको विदेश भेजने का विचार करेंगे। दूसरी बात देखिए, आपकी कुंडली में ये है कि आपको इस समय भावनात्मक समस्याओं से, प्रेम आदि की दिक्कतों से बचना होगा, क्योंकि इमोशनली प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। एक पन्ना बनवा करके पहनिए, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण करें। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
0: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जिनका जन्मदिन है, आप सभी को जन्मदिन के पहले तो बहुत बहुत बधाई हो, हैप्पी बर्थडे। तो चलिए जल्दी से आपको बर्थडे गिफ्ट दे देते हैं, यानी पंडित जी से जान लेते हैं कि आप सभी का आने वाला साल, आने वाला वर्ष कैसा रहने वाला है।
1: जिन लोगों का जन्मदिन 1 जुलाई को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में रोजगार की समस्याएं हल होंगी, धन की स्थिति में धीरे धीरे सुधार होगा, स्वास्थ्य की स्थिति लगातार बेहतर होती चली जाएगी। परिवार और घर से दूर जाने के योग बन रहे हैं। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर हनुमान जी की उपासना करें तो अच्छा होगा।
0: तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब फिलहाल पंडित जी से ये जानने का समय हो गया है कि आज के कार्यक्रम की जिज्ञासा क्या है, वो सवाल क्या है जो आप सभी के जहन में है और उस जिज्ञासा का समाधान क्या है।
1: बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि किसी व्यक्ति के ऊपर देवी आ गई, देवता आ गए। क्या किसी व्यक्ति के ऊपर देवी देवता आते हैं? देखिए, ये दरअसल एक विचित्र तरह की मानसिक स्थिति है और ये कमजोर मानसिक स्थिति का परिणाम है। किसी व्यक्ति के ऊपर कभी भी कोई देवी देवता नहीं आते, ये एक तरह की साइकोलॉजिकल समस्या है।
0: तो चलिए अब पंडित जी से जान लेते हैं शुभ पहर का समय और उसका उपाय आखिर क्या है।
1: दिनांक 1 जुलाई 2026, दिन बुधवार। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में भगवान गणेश की कपूर से आरती करिएगा। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 1 जुलाई बुधवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में।
0: तो चलिए अब आगे बढ़ते हुए पंडित जी से ही जान लेते हैं कि आज की भाग्यशाली राशि यानी आज की गुड लक राशि कौन सी है।
1: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों की विशिष्टताएं क्या होती हैं। आज की गुड लक राशि है मीन। ये लोग बुद्धिमान और ज्ञानवान होते हैं, लेकिन ज्यादा बोलने के चक्कर में अक्सर समस्या के शिकार हो जाते हैं।
0: तो चलिए कार्यक्रम यहाँ पर खत्म होने वाला है, लेकिन उससे पहले पंडित जी से ही जान लेते हैं कि आज का महा उपाय हमारे दर्शकों के लिए क्या है। जी।
1: आज के महा उपाय में आपको बताते हैं कि अगर आप किसी बड़ी सर्जरी के लिए जा रहे हो तो क्या करेंगे। सर्जरी के एक दिन पहले हनुमान जी को अपनी उम्र के बराबर लड्डू अर्पित करें या एक जटा वाला नारियल भी अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद एक बार सुंदर कांड का पाठ कर लें और याद रखें, जब भी हॉस्पिटल में एडमिट होने जा रहे हैं सर्जरी के लिए लाल वस्त्र पहनकर मत जाइएगा।
0: पंडित जी, हमें तमाम जानकारी देने के लिए हमेशा की तरह आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: धन्यवाद।
0: तो आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जीएनटी के साथ।

0: TuneIn Radio brings the world of radio straight to you. Music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world. All in one place. From what's happening now to what you want to hear next. Enjoy it all on TuneIn. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices. At home, in the car, or on the go. Listen to everything and more on TuneIn.
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: Whatever you're in the mood for, there's always something to listen to on TuneIn. Music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world. All in one place. Enjoy over 100,000 stations, from local favorites to global voices, so you never miss a beat. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices, at home, in the car, or on the go. Hear it all and more right here on TuneIn.
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं, अविश्वास में विश्वास बसता है, जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: और चलिए बात उस जेल की कर लेते हैं जहां सजा के साथ अब सुधार की भी नई शुरुआत हो रही है। पंजाब के फरीदकोट की केंद्रीय मॉडर्न जेल में उजाला रेडियो की शुरुआत हुई है। इस रेडियो का मकसद साफ है, कैदी अपनी सोच बदले, मन की बात कहें और नई राह चुने। तो देखिए कैसे एक रेडियो ने जेल की सलाखों के पीछे उम्मीद की नई किरण जगाई है।
2: सलाखों के पीछे अक्सर सन्नाटा बोलता है, लेकिन पंजाब के फरीदकोट केंद्रीय मॉडर्न जेल में अब उम्मीद की आवाज सुनाई दे रही है। पहली नजर में यह जगह आपको एफएम रेडियो स्टेशन जैसी लग सकती है, लेकिन ये फरीदकोट मॉडर्न सेंट्रल जेल का रेडियो उजाला है। इस रेडियो उजाला को कैदी सुनेंगे भी और अपनी सुना भी सकेंगे। इस रेडियो स्टेशन से सिर्फ गाने ही नहीं बजेंगे, बल्कि हौसला, कानूनी जानकारी, स्वास्थ्य सलाह, प्रेरक कहानियां और कैदियों की अपनी आवाज गूंजेगी, ताकि सलाखों के पीछे भी उम्मीद जिंदा रहे।
3: करीब 5 लाख रुपए का बजट हमें इसके लिए दिया गया, जिससे हमने हर बैरिक में स्पीकर्स इंस्टॉल करवाए गए, जेल में सारी जेल के अंदर वायरिंग की गई, प्रॉपर एक रूम तैयार किया गया रेडियो जॉकी के लिए, और इसमें जो हमारे प्रिजनर्स हैं वही आरजे का रेडियो जॉकी का काम करेंगे। तो इससे प्रिजनर्स का मनोरंजन होगा, वो अपनी फरमाइश के अनुसार कोई सॉन्ग सुनना चाहें सॉन्ग सुन सकते हैं। सुबह और शाम के समय पे हम उनको गुरबानी का प्रसारण करेंगे।
2: करीब 5 लाख रुपए की लागत से बने इस रेडियो स्टूडियो की धमक हर बैरक तक पहुंचेगी। रेडियो से गूंजने वाली आवाज से हर कैदी आपस में जुड़ेगा, कुछ नया सीखेगा और जेल से बाहर जाकर एक बेहतर इंसान बन सकेगा। इस जेल में केवल रेडियो उजाला की आवाज नहीं, बल्कि किताबें भी कैदियों की जिंदगी के पन्ने पलटेंगी। यहाँ बनी नई लाइब्रेरी में 1500 से ज्यादा किताबें लाई गई हैं, ताकि सजा के साथ साथ कैदियों की सोच भी बदल सके।
3: हमारी जेल में एक करीब 1000 के करीब हमें बुक्स पंजाबी साहित्य एकेडमी न्यू दिल्ली से डोनेशन करवाई। इसके अलावा और भी हमें सपोर्ट की, और वो विशेष तौर पे यहाँ पे पधारे, उन्होंने आके यहाँ पे खुद अपने हाथों से, जिस दिन मिनिस्टर साहब ने इसका उद्घाटन किया था हमारे रेडियो उजाला का, उसी दिन श्री कुलतार सिंह संधवा जी माननीय स्पीकर पंजाब विधानसभा विशेष तौर पे आए और उन्हें लाइब्रेरी का उद्घाटन किया।
2: जाहिर है कभी जेल की पहचान सिर्फ सजा से होती थी, लेकिन फरीदकोट मॉडर्न जेल अब सुधार और नई शुरुआत की मिसाल बन रही है। यहाँ रेडियो उजाला जहाँ कैदियों की आवाज को पहचान दे रहा है, तो वहीं लाइब्रेरी उनकी सोच को नई दिशा दे रही है। प्रेम कुमार, फरीदकोट, गुड न्यूज टुडे।
1: यूरोप के लोगों को इन दिनों तेज गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। कई देशों में तापमान सामान्य से काफी ऊपर पहुंच गया है। ऐसे में लोग खुद को गर्मी से बचाने के लिए अलग अलग तरीके अपना रहे हैं। कोई कूलिंग सेंटर का सहारा ले रहा है, तो कोई फव्वारों, स्विमिंग पूल और ठंडी जगहों पर राहत तलाश रहे हैं। लोगों से सतर्क रहने और जरूरी एहतियात बरतने की अपील भी की जा रही है।
4: गर्मी से जल रहे यूरोप की ये तस्वीरें देखकर दुनिया हैरान है। इस बार हीट वेव यहाँ जिंदगी पर कहर बनकर टूटा है। तमाम शहरों में गर्मी से हाहाकार मचा है। हीट वेव से बचने के जुगाड़ खोजे जा रहे हैं। ये सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड है। यहाँ पारा 39 डिग्री छू चुका है, जो कि यहाँ के मौसम के लिहाज से बहुत ज्यादा है। ऐसे में लोगों ने फव्वारों, झीलों और कैफे के कूलिंग फैन की शरण ले रखी है। हीट वेव ने यूरोप के जिस मुल्क को सबसे ज्यादा परेशान किया है, वो है फ्रांस। यहाँ गर्मी का कहर जानलेवा हो चुका है। हाल ये है कि हीट वेव से बचने के सारे जुगाड़ यहाँ करीब करीब दम तोड़ चुके हैं। लोग मेट्रो और बसों में भी हाथ के पंखे लेकर चल रहे हैं। शहर में मौजूद नहरें स्विमिंग पूल बन गई हैं। सड़कों के किनारे पानी का छिड़काव किया जा रहा है। जहाँ पानी है वहाँ राहत के लिए लोगों का मेला लग गया है। अब जरा हंगरी की तस्वीरें भी देख लीजिए। राजधानी बुडापेस्ट में गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। शहर में लगे तमाम डिस्प्ले बोर्ड बता रहे हैं कि यहाँ पारा 38 डिग्री के पार चला गया है। गर्मी से बचने के लिए लोग अस्थायी वाटर स्टेशन और मिस्टिंग पॉइंट्स पहुंच रहे हैं। यूरोप में पड़ रही गर्मी लोगों को इसलिए भी हैरान कर रही है क्योंकि यहाँ पहले कभी भी इतनी गर्मी नहीं पड़ी।
5: Huszonnyolc fok, még a drága nagymamám, ő törülgette, 28 fok. Ez volt a nyár. Hát ez most nem tudom mi. És jól nézünk ki, mi vár ránk ezek után.
4: Ye Poland hai, jahan ke Sopot shahar mein subah ke sirf 9 baje hain. Lekin yahan suraj ki tapash dopahar jaisi mehsoos ho rahi hai. बीच पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ चुकी है और इसके साथ लाइफगार्ड जोआना की 11 घंटे की लंबी ड्यूटी शुरू हो चुकी है। जोआना का कहना है कि हीट वेव की खबर ने उन्हें भी परेशान कर दिया है। उनका वॉच टावर बिना किसी छत के है, लिहाजा तेज धूप में लगातार ड्यूटी देना बड़ी चुनौती है। 28 जून को पोलैंड में पारा 40.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच चुका है, जिसे यहाँ गर्मी का रिकॉर्ड कहा जा रहा है।
6: It's really important because it's really dangerous to sit with the head without a hat. I need to care for my water, of course. We need to stay hydrated.
4: फिलहाल इस बार की गर्मी ने मौसम को लेकर यूरोप का नजरिया बदल दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अब यूरोप इस भीषण गर्मी में ठंडक पाने के नए नए तरीकों को अपना रहा है। ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस में एयर कंडीशनर की ऑनलाइन खोज रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं, जबकि जून के दौरान कुछ बाजारों में कूलिंग अप्लायंसेस से जुड़े विज्ञापनों की संख्या 50 गुना तक बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: और चलिए अब आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे वीडियो जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं, क्योंकि इनमें से कुछ आपको हंसाएंगे, कुछ आपको गुदगुदाएंगे तो कुछ आपको इमोशनल कर जाएंगे।
7: सोशल मीडिया पर वायरल ये तस्वीरें बता रही हैं कि आस्था उम्र से नहीं, सेवा के प्रति आपके जुनून से आंकी जाती है। इस सेवादार का जुनून भी उनकी आस्था की तस्दीक कर रहा है। वो धर्म की राह पर निकले लोगों की राह में जिस खुशी से फूल बिछा रहे हैं, वो साबित करता है कि उनकी आस्था की पैंट कितनी गहरी है। सोशल मीडिया पर फूल बरसाने और बिछाने का ये अंदाज यूजर्स को भावुक कर रहा है। इस बच्ची का एक्शन देखकर कौन कहेगा कि इसमें टैलेंट नहीं। इसके एक्शन सोशल मीडिया पर वायरल है। उसका बैकग्राउंड बता रहा है कि कैसी परिस्थितियों के बावजूद उसने अपनी प्रतिभा को जीवित रखा है और वो अभ्यास कर रही है। इस बच्ची का जुनून देखकर लोग इस पर अपना प्यार बरसा रहे हैं। सोशल मीडिया पर चैन की एक घड़ी होटल में सीनियर सिटीजन्स की हर पल का आनंद लेते हुए तस्वीर लोगों को खूब पसंद आ रही है। शांत सुंदर जगह पर होटल के ये सीनियर गेस्ट जिंदगी का जश्न मना रहे हैं। हर तरफ उनके हंसी मजाक, संगीत और यादगार पल होटल में एक अजब माहौल पैदा करता है। उनके आराम और मस्ती भरे पलों को देख हर किसी को आनंद आ रहा है। इन तस्वीरों में ये बच्ची दुनिया को सिखा रही है प्यार की भाषा। खुद ही देखिए कैसे वो इस बेजुबान डॉग को भाव विभोर होकर प्यार से बुलाते हुए बैठ जाती है और डॉगी भी बिना किसी संचय के उसकी ओर चला आता है, उसकी गोद में सिर रख लेता है। दोनों का ये अबोला प्रेम बता रहा है कि सिर्फ एक ही भाषा हर कोई समझता है और वो है प्यार की भाषा। अब इन वायरल तस्वीरों को देखिए, जिन्हें देख हर कोई इनका फैन बन गया है। बैंड बाजे की धुन पर लग रहा है मानो किसी बतख की बारात है, जिसमें दूल्हा बतख को एक शख्स ने हाथ में ऊपर उठाया हुआ है और बाकी बतखें बैंड बाजे की धुन पर एक सीध में इस बारात में चली जा रही हैं। बतखों की ये बारात देख हर किसी को शोर में भी इनका अनुशासन भा रहा है। जाहिर है इंसानों की बारातें कम से कम इन बतखों से सड़क पर चलने की सीख ले ही सकती है।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
8: Stay on top of the MLB season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league. Schwarber.
9: to right field, and it will leave.
8: From the first pitch of the season to the stretch run,
9: and that's the ball game.
8: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch select live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
10: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
11: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
10: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
12: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
11: अविश्वास में विश्वास बसता है,
10: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। टीआईटी भोपाल, जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स।
3: अमरनाथ के लिए कल जम्मू बेस कैंप से रवाना होगा पहला जत्था। ऑपरेशन शिवा की सुरक्षा में होगी अमरनाथ यात्रा, 57 दिन तक चलेगी यात्रा। हिमाचल प्रदेश के नैना देवी शक्तिपीठ धाम में बड़ी भक्तों की तादाद, 3 दिन में करीब 1,00,000 श्रद्धालु पहुंचे। दिल्ली एनसीआर में छाए बादल, मॉनसून का इंतजार जल्द होगा खत्म, अगले 2 से 3 दिन में आ सकता है मॉनसून, उमस भरी गर्मी से मिलेगी जल्द राहत। आज से बदले कई वित्तीय नियम, आधार में ईमेल अपडेट करना फ्री, कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम 183 रुपए घटे, कई अन्य नियमों में भी बदलाव। जम्मू कश्मीर में पीर की गली बनी सैलानियों की पहली पसंद, बड़ी संख्या में पहुंच रहे सैलानी और श्रद्धालु, प्रकृति के बीच कुदरत का कर रहे हैं दीदार। आज भारत इंग्लैंड के बीच 5 मैच की T20 सीरीज का आगाज, चेस्टरली स्ट्रीट में भारतीय समय के अनुसार रात 10 बजे शुरू होगा मैच।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
3: उम्मीदों भरे पहर की खुशी भरी शुरुआत, सुप्रभात, मैं हूँ आपके साथ गीतिका पंत, नई सुबह नई आशा, गुड न्यूज का मॉर्निंग डोज लेकर। तो बिना रुके बिना थमे अगले 1 घंटे में गुड न्यूज की मैराथन दौड़ होगी, लेकिन सबसे पहले नजर आज की 5 उन खबरों पर जिनमें इंडिया के लिए शुभ समाचार।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम।
3: अमरनाथ यात्रा शुरू होने में अब सिर्फ 2 दिन बाकी हैं, लेकिन आस्था का सैलाब अभी से उमड़ने लगा है। जम्मू के तवी रिवर फ्रंट पर देश के अलग अलग हिस्सों से पहुंचे श्रद्धालु जुटने लगे हैं, रजिस्ट्रेशन काउंटर्स पर लंबी कतारें हैं और बाबा बर्फानी के दर्शन को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। कैसी है यात्रा से पहले यात्रा बेस कैंप की रौनक, आगे आपको दिखाएंगे। तो अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का जोश देखते ही बन रहा है, ऐसे में श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा दोनों पर खास जोर दिया जा रहा है। यात्रा पर निकलने से पहले नियम और सावधानियां जानना जितना जरूरी है, क्या है यात्रा से जुड़े नियम ये भी आगे जानेंगे। तो सुरक्षित यात्रा का महासंकल्प, जी हां, सुरक्षा एजेंसीज पूरी तरह से तैयार हैं। इसके लिए सुरक्षा एजेंसीज ने जमीन से लेकर आसमान तक अभेद सुरक्षा कवच तैयार कर दिए हैं। घाटी के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती है, बुलेट प्रूफ वाहनों के साथ सीआरपीएफ के कमांडर्स लगातार गश्त कर रहे हैं, और क्या है खास उस पर भी आगे हम करेंगे बात। तो फैन सवाल पूछ रहे हैं कि क्या आज टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में सबसे बड़ा सरप्राइज देखने को मिलेगा, क्या करोड़ों क्रिकेट फैंस का इंतजार जो है आज खत्म होगा। असल में फैंस ये जानना चाह रहे हैं कि वैभव सूर्यवंशी आज भारत और इंग्लैंड के बीच पहला T20 मुकाबला खेलेंगे या नहीं, इस पर भी हम करेंगे आगे मंथन। तो दिल्ली समेत आसपास के शहर भीषण गर्मी से जूझ रहे हैं, लेकिन लोगों को जल्द राहत मिलने वाली है क्योंकि दिल्ली एनसीआर में मॉनसून का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब शनिवार तक मॉनसून के पहुंचने की संभावना है और उससे पहले प्री मॉनसून बारिश का मौसम दिल्ली में बन चुका है। मौसम की आगे हम करेंगे चर्चा, लेकिन अभी वक्त हो चला है फटाफट अंदाज में सुबह 9 बजे की 9 गुड न्यूज का। आज यानी 1 जुलाई से आम आदमी की जेब और खर्चों से जुड़े 6 मुख्य वित्तीय नियम बदल जाएंगे। इनमें क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड, लाउंज एक्सेस, पासपोर्ट फीस में बढ़ोतरी और आधार ईमेल अपडेट जैसे नियम शामिल हैं। आज से नए डिजिटल प्लेटफॉर्म

0: मंदिरों में दर्शन पूजन कराए गए। इन ग्रामीण महिलाओं का ये पहला वाराणसी भ्रमण कार्यक्रम था। महिलाओं ने मंदिर दर्शन के साथ मॉल्स में शॉपिंग की और खाने का लुत्फ भी उठाया। देवदार के जंगलों और प्राकृतिक खूबसूरती से भरी ये वादी जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में स्थित है। यहाँ बानी और सरथल के प्राकृतिक नजारे पर्यटकों को अपनी ओर खूब आकर्षित कर रहे हैं। प्राकृतिक सुंदरता की वजह से इसे मिनी कश्मीर भी कहा जाता है। मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी के बावजूद ये इलाका ठंडा बना रहता है। जापान में होने वाले एशियन गेम्स के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया है। चयनकर्ताओं ने एशियन गेम्स के लिए भी हरमनप्रीत कौर को कप्तान और स्मृति मंदाना को उपकप्तान बनाया। शेफाली वर्मा, जेमिमा रॉड्रिग्स, दीप्ति शर्मा जैसे खिलाड़ी भी टीम में शामिल हैं। एशियन गेम्स में क्रिकेट इवेंट T20 फॉर्मेट में होंगे। चीन के गुआंगडोंग में रेनी नाइट ड्रैगन बोट रेस का आयोजन किया गया। इस ड्रैगन बोट को लेकर यहाँ लोगों को जमकर क्रेज देखता ही बनता है। बारिश वाली रात में भी नाव का रोमांच देखने वाला था। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय टीमें संयुक्त रूप से पानी में बोट्स पर उतरी। बोट रेस में चीन, हांगकांग, मकाउ, ताइवान की टीमें साथ उतरी। इस पारंपरिक ड्रैगन बोट रेस ने सबको लुभाया। यहाँ का डीए जियाओ ड्रैगन बोट रेस के लिए जबरदस्त हॉटस्पॉट बन गया। आलिया भट्ट, शर्वरी वाघ, बॉबी देओल, अनिल कपूर स्टारर फिल्म अल्फा का नया प्रोमो रिलीज किया गया, जिसमें आलिया और शर्वरी का स्वैग देखने लायक है। प्रोमो में दोनों अभिनेत्रियों का एक शानदार और वायरल डायलॉग भी है। यशराज फिल्म स्पाई यूनिवर्स की एक्शन एंटरटेनर फिल्म 3 जुलाई को सिनेमाघरों में दस्तक देगी।
1: मरना है? नहीं ना, तुम मार दे।
0: तो शुभ समाचार की शुरुआत एक शुभ खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नायरा एनर्जी ने पेट्रोल डीजल के दाम घटा दिए हैं। पेट्रोल 5 रुपए, डीजल 3 रुपए प्रति लीटर सस्ता हुआ। दिल्ली में 19 किलो वाला एलपीजी कमर्शियल सिलेंडर भी सस्ता हुआ। दाम में 183.50 रुपए की कमी की गई है। दिल्ली में अब कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 2930 प्रति लीटर जो सिलेंडर है वो हो गई है। तो देखिए, देशभर में नायरा ने 7000 पेट्रोल पंप हैं और जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें हैं वो घटा दी गई हैं। 19 किलो वाला एलपीजी कमर्शियल सिलेंडर जो है वो अब सस्ता हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 2930 रुपए हो गई है। तो आपको बता दें कि नायरा एनर्जी ने पेट्रोल डीजल के दाम घटा दिए हैं। पेट्रोल 5 रुपए और डीजल 3 रुपए प्रति लीटर सस्ता हुआ है। जी हाँ, दिल्ली में 19 किलो वाला एलपीजी कमर्शियल सिलेंडर अब सस्ता हो गया है और इसके दाम में भी घटोतरी हुई है। 183.50 रुपए की कमी की गई है। और शुभ खबर के बाद आइए आपको ले चलते हैं अमरनाथ यात्रा की ओर।

बम बम भोले बम बम भोले। जी हाँ, शुभ समाचार की शुरुआत आज बम बम भोले के जय घोष के साथ होगी। बाबा बर्फानी के पावन धाम की ओर आस्था का सबसे बड़ा कारवां निकलने को तैयार है। शुक्रवार से शुरू हो रही पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर पूरे जम्मू कश्मीर में उत्साह जो है वो चरम पर है। देश के कोने कोने से श्रद्धालु जम्मू पहुंचने लगे हैं, कोई माथे पर तिलक लगाए हैं तो कई हाथों में तिरंगा और भोलेनाथ का ध्वज दिखाई दे रहा है। जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से लेकर बालटाल और पहलगाम मार्ग तक हर तरफ सिर्फ एक ही रंग दिखाई दे रहा है, भोले की भक्ति का रंग। लंगरों में सेवा का भाव है, शिव भक्तों में अपार उत्साह है और हर चेहरे पर बाबा बर्फानी के दर्शन की अधीर प्रतीक्षा साफ दिखाई दे रही है। मान्यता है कि बाबा अमरनाथ के दर्शन से जीवन धन्य हो जाता है। यही वजह है कि कठिन पर्वतीय रास्ता, मौसम की चुनौतियां और लंबी यात्रा भी श्रद्धालुओं के उत्साह को कम नहीं कर पाती। इस बार यात्रा सिर्फ आस्था का ही नहीं बल्कि सुरक्षा और व्यवस्थाओं का भी बड़ा उदाहरण बनने जा रही है। यात्रियों की सुरक्षा के लिए अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। यात्रा मार्ग से लेकर बेस कैंप तक, सड़क से लेकर आसमान तक और संवेदनशील इलाकों से लेकर पवित्र गुफा तक सुरक्षा एजेंसी

0: 24 घंटे अलर्ट मोड पर हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस वर्ष यात्रा पर आने वाले हर पंजीकृत श्रद्धालु को 10 लाख रुपए का बीमा कवर भी दिया जा रहा है।
1: एक बार जयकारा हो जाए भोले बाबा का जोर से इनके नाम पर।

0: बाबा बर्फानी के दर्शन की शुभ घड़ी में बस कुछ घंटों का वक्त बचा है। श्रद्धालुओं ने अमरनाथ यात्रा के लिए कमर कस ली है। बाबा के दर्शनों के सौभाग्य का सुख अभी से यहां महसूस किया जा रहा है। जम्मू के इस यात्री निवास भवन से बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए पहला जत्था रवाना होगा, लिहाजा भक्तों का जोश हाई है।
1: आप देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं में खासा उत्साह है। श्यामाना जी की यात्रा को लेकर यहाँ पर बम बम भोले का जयघोष हो रहा है, हर हर महादेव का जयघोष हो रहा है। देश के अलग अलग भागों से श्रद्धालु जो है यहाँ जम्मू शहर पहुँच रहे हैं और आप देख सकते हैं कि बम बम भोले का जयघोष हो रहा है, हर हर महादेव का जयघोष हो रहा है और जो श्रद्धालु है काफी व्याकुल है भगवान भोलेनाथ के दर्शनों के लिए। हम सीधा यहाँ पर श्रद्धालुओं से बात करते हैं। जी आप बताए, आप कहते
2: हैं अंकित उपलाउदिया,
1: कहाँ के रहने वाले?
2: शाजापुर के।
1: मुझे बताए मन में कितनी प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि आप इस यात्रा के लिए आए हैं?
2: जी जी बहुत हो रही है, बहुत उत्साहित है जाने के लिए बाबा बर्फानी के। यहाँ पे
3: बहुत अच्छा लगता है, सुविधा भी बहुत बढ़िया है, सब आइए, सुरक्षा भी बहुत है, कुछ नहीं होता है।
0: अमरनाथ यात्रा के लिए प्रशासन की ओर से सभी तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी है। यात्रा के लिए निर्धारित बैंकों से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पहले से ही हो रहे हैं, लेकिन जिन श्रद्धालुओं ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है उनके लिए जम्मू के तवी रिवर फ्रंट पर तत्काल रजिस्ट्रेशन काउंटर बनाए गए हैं।
1: तो पंजीकरण की जो व्यवस्था है वो कई महीनों से चल रही है, ऑनलाइन ये सुविधा रखी गई थी, लेकिन जो श्रद्धालु ऑनलाइन ये पंजीकरण नहीं करा पाए थे और जो अब पंजीकरण कराना चाहते हैं तो उनके लिए भी सुविधा रखी गई है, ऑफलाइन की सुविधा। यहाँ अगर हम देखें जो तवी रिवर फ्रंट है वहां पर फ्रेश रजिस्ट्रेशन की सुविधा रखी गई है कि जो श्रद्धालु अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए हैं उनको रजिस्ट्रेशन करने की वहाँ सुविधा रखी गई है।
0: यात्रा को सुरक्षित और सुचारू बनाने के लिए जम्मू और श्रीनगर के यात्री निवास भवनों पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं, साथ ही यात्रा मार्ग और जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की भारी तैनाती की गई है। कोशिश यही है कि हर बार की तरह इस बार भी श्रद्धालुओं को बाबा बर्फानी के दर्शन सकुशल हो सके।
1: इस समय हम मौजूद है जम्मू शहर के भगवती नगर इलाके में स्थित यात्री निवास भवन के बाहर और श्री अमरनाथ जी की यात्रा जो है शुक्रवार को शुरू होने जा रही है। बृहस्पतिवार को यात्रियों का पहला जत्था यही जम्मू के यात्री निवास भवन से रवाना होगा। अगर हम देखें यात्री निवास भवन में जो है सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, चप्पे चप्पे पर पहरा है, चाहे केंद्रीय सशस्त्र बल हो, केंद्रीय बल जो है, साथ ही में जम्मू कश्मीर पुलिस हो, भारतीय सेना हो, चप्पे चप्पे पर पहरा है और यहाँ की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। और ये जो यात्री निवास भवन है अगर हम देखें तो इसको सीआरपीएफ के हवाले कर दिया गया है और खासतौर पर जो सीआरपीएफ के जवान हैं वो भारी संख्या में यहाँ पर तैनात है। प्राथमिकता यही है कि यहाँ पर जो सुरक्षा है वो चाक चौबंद रहे।
0: इस बार अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा का चक्रव्यूह कितना मजबूत है अब जरा इसकी एक और तस्वीर देख लीजिए। बालटाल जाने वाले रास्ते पर ये जम्मू कश्मीर पुलिस की मॉक ड्रिल है। आपात स्थिति में फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज को कैसे रिएक्ट करना है और दूसरे विभागों से कैसे तालमेल बैठाना है इसका अभ्यास भी किया गया।
4: इस बार अमरनाथ यात्रा श्राइन बोर्ड की तरफ से विशेष इंतजाम किए गए हैं श्रद्धालुओं के लिए, जहां पर हर श्रद्धालु को जो है वो उनको हर तरह की सुविधा जो है अमरनाथ यात्रा के अलग अलग पड़ावों के साथ अमरनाथ गुफा में भी मिलेगी, जिसमें रहने और रुकने और वहाँ पर जो है सभी तरह के इंतज़ाम किए गए हैं। यहाँ तक कि अब की बार अमरनाथ यात्रा में सफाई का स्वच्छ भारत अभियान के तहत विशेष जो है ध्यान रखा जा रहा है और विशेष टीमें लगाई गई हैं जो अमरनाथ यात्रा के रास्तों से प्लास्टिक और दूसरा कचरा साथ साथ जमा करेंगे और उसको रिसाइकिल किया जाएगा। अशरफानी, गुड न्यूज़ टुडे, श्रीनगर।
5: इस बार से सुरक्षा ही नहीं बल्कि श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा दोनों पर खास जोर दिया गया। यात्रा पर निकलने से पहले नियम और सावधानियां जानना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी ये जानना है कि इस बार प्रशासन ने श्रद्धालुओं के लिए क्या क्या नई व्यवस्थाएं की हैं।

0: बाबा के भक्तों का ये उत्साह यूं ही नहीं है। बाबा बर्फानी के दर्शनों की महिमा अपरंपार बताई गई है। भोले के भक्तों के लिए अमरनाथ यात्रा एक ऐसी कठिन साधना है जिसे आप शिवत्व को साधने की सबसे कड़ी तपस्या कह सकते हैं। बस कुछ घंटों बाद बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए पहला जत्था रवाना हो जाएगा। भक्त तैयार हैं तो प्रशासन ने भी यात्रा को सकुशल संपन्न करने की पूरी तैयारी कर रखी है। इस बार केवल सुरक्षा के कड़े इंतजाम ही नहीं किए गए हैं, बल्कि अमरनाथ यात्रा के दौरान सुविधाएं बढ़ाई गई हैं और कुछ नए नियम भी लागू किए गए हैं। अगर आप भी इस साल बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जा रहे हैं तो पहले जान लीजिए कि इस बार यात्रा में क्या बदला है और किन नियमों का पालन करना जरूरी है। अगर यात्रा के दौरान सुविधाओं की बात करें तो इस बार बालटाल से पवित्र गुफा तक पूरे रास्ते पर बिजली और लाइट की व्यवस्था की गई है, ताकि खराब मौसम या रात के समय भी श्रद्धालुओं को परेशानी न हो। ट्रैकिंग रूट को भी पहले से ज्यादा बेहतर बनाया गया है, जिससे कठिन चढ़ाई कुछ आसान हो सके। यात्रियों की सुविधा के लिए पोनी, पालकी और पोर्टर की प्री पेड बुकिंग शुरू की गई है, यानी अब तय किराए पर ही ये सेवाएं मिलेंगी। रहने की व्यवस्था भी पहले से बेहतर हुई है। बालटाल, नुनवान, श्रीनगर और चंद्रकोट के यात्री निवासों का विस्तार किया गया है। वहीं जम्मू में बने नए सेंटर में करीब 4,000 भक्तों को ठहरने की व्यवस्था की गई है।
1: जहां तक सुविधाओं की बात है तो यात्री निवास भवन में पीने का ठंडा पानी रखा गया है, फ्रिज लगे हुए हैं, साथ ही में बिजली जो है 2400 घंटों वहां है, शौचालय की व्यवस्था है, क्योंकि जम्मू में इस समय उमस भरी गर्मी है, इसीलिए जो एसीज हैं यात्री निवास भवन के कमरों के अंदर उनको सर्विसिंग उनकी कराई गई है। पंखे भी चेक किए गए हैं कि किसी पंखे में कोई दिक्कत तो नहीं है, तो उन पंखों की मरम्मत भी की गई है। यात्री निवास भवन में जो कमरे हैं उनकी साफ सफाई भी हो चुकी है, रंग रोगन भी हो चुका है, और जो श्रद्धालु यहां जम्मू शहर में अब पहुंच रहे हैं काफी व्याकुल हैं भगवान भोलेनाथ के दर्शनों के लिए।
0: अगर कोई श्रद्धालु ज्यादा थक गया है या बीमार है या फिर किसी कारण से रुकना पड़ रहा है तो यहां पर आराम कर सकता है। ये पूरी तरह से निःशुल्क होगा। जम्मू के तवी रिवर फ्रंट पर नया इंटीग्रेटेड फैसिलिटेशन सेंटर बनाया गया है। यहाँ रजिस्ट्रेशन, मेडिकल जांच, हेल्थ सर्टिफिकेट और दस्तावेजों की जांच जैसे सभी जरूरी प्रक्रियाएं एक ही जगह पूरी की जा रही हैं। इस बार अमरनाथ यात्रा के दौरान हर रजिस्टर्ड श्रद्धालु को RFID कार्ड दिया जा रहा है। इस कार्ड की मदद से प्रशासन यात्रा के दौरान हर यात्री की लोकेशन पर नजर रख सकेगा। किसी भी आपात स्थिति में तुरंत राहत और बचाव टीम मौके पर पहुंच सकेगी। एक तरफ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं बढ़ाई गई हैं, तो वहीं श्रद्धालुओं को भी कुछ नियमों का पालन करना होगा। मसलन अमरनाथ यात्रा के लिए पहले से रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। यात्रा में वही श्रद्धालु शामिल हो सकते हैं जिनकी उम्र 13 से 70 वर्ष के बीच हो। इस बार अधिकृत डॉक्टर से जारी कंपल्सरी हेल्थ सर्टिफिकेट यानी CHC भी जरूरी है। इसे श्रद्धालुओं को अपने साथ ही रखना होगा। बड़ी बात यह है कि रजिस्ट्रेशन कराने वाले सभी श्रद्धालुओं को इस बार 10 लाख तक का बीमा कवर दिया जाएगा। साथ ही अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की ओर से पंजीकृत यात्रियों को दुर्घटना बीमा कवर भी मिलेगा। जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए देशभर से श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि यात्रा पूरी तरह सुरक्षित और निर्बाध कैसे रहे। इसी चुनौती से निपटने के लिए सुरक्षा एजेंसीज ने जमीन से लेकर आसमान तक अभेद सुरक्षा कवच तैयार कर दिए हैं। घाटी के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती हो गई है।

0: नजर दुश्मन पर, उंगली ट्रिगर पर। एक पल की ढील नहीं, एक कदम की चूक नहीं। अगर किसी ने घुसपैठ की कोशिश की तो जवाब पल भर में मिलेगा। बाल टाल हो या पहलगाम, बाबा बर्फानी के धाम तक जाने वाले हर रास्ते पर सीआरपीएफ के कमांडो पूरी ताकत के साथ तैनात हैं। कदम से कदम मिलाकर हर मोर्चे पर एक जैसी रफ्तार, एक जैसा तालमेल और एक ही लक्ष्य, यात्रा की अभेद्य सुरक्षा। सड़क से जंगल तक, पहाड़ से आसमान तक, हर दिशा पर सुरक्षा बलों की पैनी नजर है। इन जवानों की मुस्तैदी ही अमरनाथ यात्रा की सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि घाटी में शुरू हो चुका है ऑपरेशन शिवा।
1: गृह मंत्रालय ने अलग अलग स्थानों पर मीटिंग करके जो तैयारी की है उसके मुताबिक 670 से ज्यादा अर्धसैनिक बलों की कंपनियां जो बालटाल रूट और पहलगाम रूट में तैनात की गई हैं। वहीं दूसरी तरफ वैली क्यूएटी के जो कमांडोज हैं वो आप सड़कों पर देख सकते हैं कि सुरक्षा के किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं। ये कमांडोज जो खतरनाक हथियार हैं उससे तो लैस ही हैं, साथ ही अगर किसी भी तरीके की आतंकी घटना होती है तो उससे निपटने के लिए ये तमाम कमांडो जो हैं वो एक्शन में इस वक्त दिखाई पड़ रहे हैं। 3 जुलाई से चलने वाली ये अमरनाथ यात्रा 28 अगस्त तक चलेगी और इसके लिए जो कड़े इंतजाम किए गए हैं उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के तमाम कमांडो आप देखिए कि सड़कों पर लगे हुए हैं और हर एक गाड़ियों की चेकिंग भी होती है और इसके साथ साथ सुरक्षा के कड़े इंतजाम इनके द्वारा किए गए हैं।
0: इस बार अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा अभूतपूर्व है। 670 से ज्यादा अर्धसैनिक बलों की कंपनियां सुरक्षा में तैनात हैं। किसी भी खतरे से निपटने के लिए कमांडो लगातार गश्त कर रहे हैं। उनके साथ हैं अत्याधुनिक बुलेट प्रूफ वाहन जो हर चुनौती का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं।
1: किस तरीके की तैयारियां इस बार अमरनाथ यात्रा को लेकर के की गई?
2: अमरनाथ यात्रा को ध्यान में रखते हुए वैली क्यूएटी पूरी तरह से कृत संकल्पित है और यहाँ पे जितने भी एंटी टेररिज्म ऑपरेशन, काउंटर फिदाइन ऑपरेशन, स्मॉल टीम ऑपरेशन, कोवर्ट ऑपरेशन, ये सभी तरह के ऑपरेशन वैली क्यूएटी के द्वारा संपादित की जा रही है ताकि किसी भी तरह की अनहोनी घटना न हो और किसी भी आतंकवादी संबंधी घटना को निगेट किया जा सके, और इसके लिए पूरी तरह से वैली क्यूएटी कृत संकल्पित है।
0: पहाड़ों की ऊंचाई, जंगलों की आड़, आतंकियों की यही पुरानी रणनीति रही है, लेकिन इस बार सुरक्षा बल उससे भी दो कदम आगे हैं। वैली क्वेट ड्रोन के जरिए जंगलों, पहाड़ियों और सुनसान इलाकों पर लगातार नजर रखी जा रही है, यानी खतरा दिखने से पहले ही उसे पहचानने और खत्म करने की तैयारी पूरी है।
1: बालटाल और पहलगाम रूट के जो ऊंचे पहाड़ी इलाके हैं उन इलाकों में इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के जरिए भी नजर रखी जा रही है। जी हाँ, इस ड्रोन का इस्तेमाल इस वक्त पहाड़ी इलाकों में किया जा रहा है जिससे ये पता चल सके कि ऊंची पहाड़ियों में किस तरीके से कोई संदिग्ध व्यक्ति तो वहां पर मौजूद नहीं है। इसके साथ ही कमांडोज को भी यहां सड़कों पर तैनात किया गया है जिसका सीधा मकसद यह है कि ऐसे एक तरफ इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के जरिए जहां नजर रखी जाए तो वहीं दूसरी तरफ सड़कों पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में कमांडोज मौजूद हों जिससे कि सुरक्षा का एहसास लोगों के बीच में हो सके। तो वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी व्यवस्था इस बार ये की गई है कि सीसीटीवी कैमरे हर एक अमरनाथ यात्रा रूट पर लगाए गए हैं। अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति उस इलाके में पहुंचता है तो उसको फेसियल रिकॉग्निशन के जरिए नजर रखी जा सके और कंट्रोल रूम से सीधे वहां पर इंफॉर्मेशन आ सके।
3: ड्रोन को हम 500 मीटर हाइट पे और 5 किलोमीटर जो है दूरी पे इसकी मदद से नजर रखा जा सकता है।
1: इसके साथ ही इसको जो ऑपरेट आप करते हो तो इसके फुटेज भी आप लोग सेव करके रखते हो कि अगर बाद में कहीं संदिग्ध गतिविधि दिखी तो उस पर नजर रखी जा सके?
3: जी सर, इसको जो है इसमें सर फोटो क्लिक और जो है वीडियो रिकॉर्डिंग दोनों होती है सर, जो बाद में हमें किसी भी जरूरत के समय पे हमें हेल्प करता है सर।
0: अमरनाथ यात्रा के दोनों मार्गों पर सुरक्षा का पहरा 24 घंटे जारी है, लेकिन निगरानी सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं है। श्रीनगर और खासकर डल झील पर भी सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट हैं। सीआरपीएफ की वाटर विंग जलमार्गों पर लगातार गश्त कर रही है ताकि किसी भी साजिश को पनपने का मौका न मिले।
1: सीआरपीएफ डल लेक की भी सुरक्षा यहां पर करती है, क्योंकि अमरनाथ यात्रा करने वाले जो यात्री हैं वो यात्रा करने के बाद श्रीनगर के कई इलाकों में घूमने के लिए निकल जाते हैं, खासतौर पर डल लेक में। इसलिए जो सीआरपीएफ के कमांडोज हैं ये पूरी तरीके से, आप चारों तरफ देख रहे हैं कि डल लेक की सुरक्षा के लिए बड़े स्तर पर यहां पर व्यवस्था की गई है। यहां सीआरपीएफ के कमांडो 2400 घंटे निगरानी करते हैं, क्योंकि यहां खतरा काफी रहता है, टूरिस्ट बहुत ज्यादा संख्या में आते हैं, साथ ही अमरनाथ यात्रा करने वाले यात्री भी इस पूरे इलाके में पहुंचते हैं। इस वजह से यहां पर जो सीआरपीएफ के कमांडोज हैं वो ऐसे ही डल लेक में गश्त मारते हैं, और गश्त के दौरान किसी भी संदिग्ध स्थिति को नजर उनके द्वारा रखा जाता है।
2: 24x7 लगातार पेट्रोलिंग चलती है, डल डोमिनेशन चलता है
1: जी।
2: डल में चूंकि बहुत तरह के हाउस बोट यहाँ पे लगे हुए रहते हैं, जिसमें सुरक्षा थ्रेट भी रहता है, जिस कारण से हम इस पूरे एरिया को डोमिनेट करते हैं, और हमारी ये जो ये वाटर बोट है और वाटर विंग के द्वारा और ये कमांडोज के द्वारा इसका लगातार डोमिनेशन किया जाता है, ताकि किसी भी तरह की अनहोनी घटना न हो।
0: लक्ष्य सिर्फ एक, अमरनाथ यात्रा का हर श्रद्धालु सुरक्षित रहे, दुश्मन की हर साजिश नाकाम हो, इसी संकल्प के साथ जम्मू कश्मीर का हर जवान 2400 घंटे मोर्चे पर डटा है। सुरक्षा के लिए अडिग, जवाबी कार्रवाई के लिए हर पल तैयार, यही है ऑपरेशन शिवा की ताकत।

0: अब बुलेटिन में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए मानसून के लिए अब दिल्ली दूर नहीं।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
2: TuneIn is bringing people together through radio. Listen to all of your favorite music, news, sports, and more all in one place. Hear all of the audio you love, whether you're a music lover, interested in what's going on around the world.
3: We know that Hamas has agreed to a deal at some point.
2: Or want to catch your team's live play-by-play. It's all right here on TuneIn. Just sit back, relax, and listen.
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: ज्वाइन SRM ISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट srmup.in।

0: कई वित्तीय नियम, आधार में ईमेल अपडेट करना हुआ फ्री, कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम 183 रुपए घटे, कई अन्य नियमों में भी बदलाव। अमरनाथ के लिए कल जम्मू बेस कैंप से रवाना होगा पहला जत्था, ऑपरेशन शिवा की सुरक्षा में होगी अमरनाथ यात्रा, 57 दिन तक चलेगी यात्रा। दिल्ली एनसीआर में छाए बादल, मॉनसून का इंतजार जल्द होगा खत्म, अगले 2 से 3 दिन में आ सकता है मॉनसून, उमस भरी गर्मी से मिलेगी जल्द राहत। जम्मू कश्मीर में पीर की गली बनी सैलानियों की पहली पसंद, बड़ी संख्या में पहुंच रहे सैलानी और श्रद्धालु, प्रकृति के बीच कुदरत का ले रहे हैं दीदार। आज भारत इंग्लैंड के बीच 5 मैच की T20 सीरीज का आगाज, चेस्टरली स्ट्रीट में भारतीय समय के अनुसार रात 10 बजे शुरू होगा मैच।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
0: अब ब्रेक के बाद स्वागत है आपका शुभ समाचार में। दिल्ली में मौसम का मिजाज बदलने लगा है, जी हां, भीषण गर्मी और लू के लंबे दौर के बाद अब हल्की राहत महसूस की जा रही है, आसमान में बादलों की आवाजाही बढ़ गई है, हवाओं में नमी है, क्या ये प्री मॉनसून की दस्तक है जिसने मौसम को सुहाना बना दिया है। मौसम विभाग के अनुसार अगर परिस्थितियां अनुकूल रही तो शनिवार तक दिल्ली में मॉनसून की एंट्री भी हो सकती है। उधर गर्मियों की लंबी छुट्टियों के बाद आज से राजधानी के स्कूल भी खुल गए हैं, ऐसे में बच्चों को तपती धूप नहीं बल्कि सुहाने मौसम के बीच स्कूल लौटने का मौका मिला, यानी दिल्ली में एक साथ बदला है मौसम भी और रूटीन भी। अब सवाल यही है कि मॉनसून की पहली बारिश कब होगी और आने वाले दिनों में मौसम कितना राहत देने वाला है।

0: मंगलवार शाम को मौसम जरा सा खुशगवार हुआ तो इंडिया गेट पर चहल पहल बढ़ गई। पिछले कई दिनों की गर्मी और उमस से परेशान लोग लुत्फ उठाने के लिए इंडिया गेट पहुंच गए। खुशी की बात यह है कि ऐसा नजारा अब अक्सर देखने को मिल सकता है, क्योंकि राजधानी दिल्ली के मौसम में बदलाव की घड़ी अब करीब आ गई है। दिल्ली NCR समेत उत्तर भारत के लोगों को भीषण गर्मी और उमस से जल्द राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग के मुताबिक मॉनसून की आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। कई मौसम प्रणालियों के एक साथ सक्रिय होने से मॉनसून ने दोबारा रफ्तार पकड़ ली है। बंगाल की खाड़ी से नमी भरी हवाएं तेजी से आगे बढ़ रही हैं। अरब सागर से आने वाली तेज हवाएं भी बड़ी मात्रा में नमी लेकर आ रही हैं। लिहाजा पूरी संभावना है कि 2 जुलाई तक मॉनसून उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के शेष हिस्सों में सक्रिय हो जाएगा। 3 से 4 जुलाई तक दक्षिण पश्चिमी मॉनसून दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और पूरे उत्तर प्रदेश को कवर कर लेगा। 5 जुलाई तक मॉनसून पश्चिमी राजस्थान और गुजरात के सभी बचे हुए जिलों को कवर कर लेगा। मध्य प्रदेश और झारखंड के बाकी हिस्सों में भी अगले 2 दिनों में ये पूरी तरह फैल जाएगा। मंगलवार दोपहर को मॉनसून ने जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में एंट्री कर ली। मॉनसून ने देश में अब तक 26 राज्यों को कवर कर लिया है।
1: हिमाचल प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में मॉनसून वर्ष 2026 का आगमन हो चुका है। इसमें अगर हम क्षेत्रों की बात करें तो मॉनसून ने पूरे किन्नौर डिस्ट्रिक्ट को कवर कर लिया है और कुल्लू और लाहौल स्पीति के बहुत से क्षेत्रों में मॉनसून ने दस्तक दे दी है। साथ में जो डिस्ट्रिक्ट हमारे हैं सिरमौर है, यहाँ पे कुछ एक क्षेत्रों में जो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा है, जो बड़ा बंगाल एरिया, वहाँ पे मॉनसून का आगमन हो चुका है। सिरमौर की बात करें, जो डिस्ट्रिक्ट शिमला के आसपास क्षेत्र जो चूड़धार एरिया है, वहाँ पे आगमन हो चुका है। साथ में जो हमारे शिमला डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें जो नारकंडा और जिसके जो ऊपर जितने भी क्षेत्र हैं, वहाँ पे मॉनसून की दस्तक हो चुकी है। और जो संभावना ये है कि आगामी 2 से 3 दिनों के भीतर में जो शेष जो क्षेत्र बचे हैं हिमाचल प्रदेश के, जिसमें ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, सोलन है, कांगड़ा का बहुत सा क्षेत्र है, चंबा डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ पे संभावना है कि आगामी 2 से 3 दिनों के भीतर मॉनसून का अराइवल हो सकता है।
0: मौसम विभाग के मुताबिक पूरी संभावना है कि राजस्थान के अंतिम छोर जैसलमेर और बाड़मेर तक पहुंचकर मॉनसून 8 जुलाई तक पूरे देश को कवर कर लेगा। पहले देश के अंतिम छोर तक मॉनसून पहुंचने की सामान्य तारीख 15 जुलाई मानी जाती थी, लेकिन इस बार मॉनसून पूरे देश को करीब एक हफ्ते पहले ही कवर कर सकता है। हालांकि पूरे देश में मॉनसून के आगमन की खबर के साथ एक टेंशन वाली बात यह है कि इस बार जुलाई में बारिश सामान्य से कम हो सकती है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक प्रशांत महासागर में अलनीनो के लगातार मजबूत होने की वजह से जुलाई के महीने में देश के ज्यादातर हिस्सों में सामान्य से कम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की माने तो मध्य, पश्चिमी और उत्तरी भारत के बड़े हिस्सों समेत देश के ज्यादातर इलाकों में सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है। हालांकि उत्तर पश्चिम भारत जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल और पूर्वोत्तर राज्यों में जुलाई में सामान्य या सामान्य से अधिक बारिश हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: और अब बात क्रिकेट की कर लेते हैं, तो क्या आज टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में सबसे बड़ा सरप्राइज देखने को मिलेगा? क्या करोड़ों क्रिकेट फैंस का इंतजार आज खत्म होगा? क्योंकि हर किसी की नजर सिर्फ एक नाम पर टिकी है, वैभव सूर्यवंशी। आज भारत और इंग्लैंड के बीच पहला T20 मुकाबला खेला जाएगा, लेकिन मैच से पहले सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि क्या वैभव को डेब्यू का मौका मिलेगा। सोशल मीडिया पर फैंस लगातार मांग कर रहे हैं कि जिस खिलाड़ी ने अपनी प्रतिभा से सबका दिल जीता है। और इंग्लैंड के बीच पहला T20 मुकाबला खेला जाएगा, लेकिन मैच से पहले सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि क्या वैभव को डेब्यू का मौका मिलेगा। सोशल मीडिया पर फैंस लगातार मांग कर रहे हैं कि जिस खिलाड़ी ने अपनी प्रतिभा से सबका दिल जीता है, उसे अब मैदान पर भी मौका मिलना चाहिए।
0: आयरलैंड के खिलाफ घुटने टेकने के बाद टीम इंडिया सवालों के बाउंसर झेल रही है। जो सवाल टीम मैनेजमेंट के लिए चुनौती बना है वो ये कि क्या आज वैभव सूर्यवंशी को टीम इंडिया का कैप पहनने का मौका मिलेगा। फिलहाल तो करोड़ों फैंस की निगाहें आज स्कोर बोर्ड से ज्यादा टीम इंडिया के प्लेइंग 11 पर रहने वाली है, क्योंकि वैभव को आयरलैंड के खिलाफ ना खिलाए जाने का मलाल अभी भी फैंस को कचोट रहा है।
3: हमको उम्मीद लगता है कि अभी तो वैभव सूर्यवंशी के खौफ से सामने वाले टीम की हालत खराब हो जाती है, और खिलाने से हम उम्मीद करते थे कि इंडिया मैच जीतता।
4: गौतम गंभीर से मांग करता हूं कि ऐसे उभरते हुए खिलाड़ी को अगर पानी पिलाने के लिए रखते हैं तो ये क्रिकेट जगत के लिए बहुत बड़ा धब्बा है।
5: लेकिन वैभव जैसे हीरे को तराशने के लिए उन्हें मैदान पर खिलाना बहुत जरूरी है। ये तो टीम मैनेजमेंट का अपना फैसला है, लेकिन पूरी दुनिया के लोग उन्हें मैदान पर, उस नन्हे सितारे को मैदान पर खेलते हुए देखना चाहते हैं।
0: करोड़ों क्रिकेट फैंस वैभव को आज मैदान में देखने के लिए बेताब हैं। वजह उनके वो रिकॉर्ड्स हैं जिन्होंने उन्हें 15 साल की उम्र में क्रिकेट का करिश्मा बना दिया है। आईपीएल में वैभव दुनिया के सबसे खतरनाक माने जाने वाले बुमराह और पैट कमिंस जैसे गेंदबाजों की पहली गेंद को बाउंड्री पार भेजकर अपना लोहा मनवा चुके हैं। वैभव ने आईपीएल के बीते सीजन में सबसे ज्यादा छक्कों का क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ा है और करीब करीब हर गेंदबाज के खिलाफ आक्रामक बल्लेबाजी से अपनी अलग पहचान बनाई है। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर वैभव के लिए लगातार आवाजें उठ रही हैं। फैंस का कहना है कि वैभव सूर्यवंशी को अब मौका नहीं मिलेगा तो फिर कब मिलेगा। आयरलैंड सीरीज में भारतीय बल्लेबाजों ने जिस तरह घुटने टेके हैं उसके बाद तो वैभव के इंटरनेशनल डेब्यू की डिमांड और तेज हो गई है। हालांकि वैभव को लेकर टीम इंडिया का ड्रेसिंग रूम सोच अलग है। असिस्टेंट कोच रयान टेन डोशेट साफ कह चुके हैं कि वैभव को भी बाकी खिलाड़ियों की तरह चयन की पूरी प्रक्रिया से गुजरना होगा। उनका कहना है कि सिर्फ प्रतिभा के दम पर किसी को प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिल सकती। कप्तान श्रेयस अय्यर भी टीम मैनेजमेंट के फैसले के साथ खड़े हैं। श्रेयस का मानना है कि टीम में मौजूद हर खिलाड़ी ने प्रदर्शन के दम पर जगह बनाई है और जिन्होंने भारत को T20 वर्ल्ड कप जिताया उन पर भरोसा बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। वहीं वैभव को लेकर पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर की राय बिल्कुल अलग है। गावस्कर का मानना है कि वैभव जैसे टैलेंट को जितनी जल्दी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का अनुभव मिलेगा उतना ही फायदा भारतीय क्रिकेट को होगा।
6: एक महीने पहले से मैं कह रहा था कि ये आयरलैंड की जो दो मैचेस है वहां पे जिस तरह के वैभव सूर्यवंशी का फॉर्म था तो उसको दोनों मैचेस में खिलाया जा सकता था, क्योंकि एक मैच में आप अभिषेक शर्मा को लेते और सूर्य के साथ ओपनिंग करने के लिए, और दूसरे मैच में आप अभिषेक को ड्रॉप कर दिया नीचे करके सैमसन को लेते, वैसा आप कर सकते थे पर वैसा हुआ नहीं।
0: ऐसे में आज इंग्लैंड के खिलाफ फैंस की नजरें सिर्फ टॉस पर नहीं होंगी बल्कि टीम इंडिया की प्लेइंग 11 पर सबकी नजर होगी। देखना होगा कि क्या टीम इंडिया आयरलैंड की तरह फिर अनुभव को तवज्जो देगी या फिर पिछले सीरीज में मिली हार से सबक लेकर वैभव सूर्यवंशी को इंटरनेशनल क्रिकेट में हाथ आजमाने का मौका देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: भारत इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का पहला मुकाबला आज चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार मुकाबला रात 10 बजे शुरू होगा। हालांकि मुकाबले पर बारिश का साया भी है, यहां करीब 80% बारिश की संभावना है। आयरलैंड के खिलाफ 2-0 से सीरीज गंवाने के बाद टीम इंडिया इस मुकाबले में जरूर अपनी धमक दिखाना चाहेगी। इस सीरीज में श्रेयस अय्यर की कप्तानी पर भी नजर रहेगी। आयरलैंड से सीरीज गंवाने के बाद प्रेशर वर्ल्ड चैंपियंस पर है, लेकिन टीम इंडिया दबाव भूलकर नई ऊर्जा और ताकत के साथ मैदान पर उतरना चाहती है। देखिए मैच से पहले टीम इंडिया के फुर्सत के कुछ पल। तस्वीरों के जरिए टीम इंडिया की जर्नी आपको दिखाते हैं। बेलफास्ट टू डरहम पर जब बढ़े ब्लू ब्रिगेड के कदम।

0: भारत की बेटियां अब सिर्फ खेल के मैदान में ही नहीं बल्कि खेलों के संचालन और फैसलों की सबसे बड़ी जिम्मेदारियों में भी नया इतिहास लिख रही हैं। उत्तर प्रदेश की मंजू नयाल ने ऐसा मकाम हासिल किया जो अब तक देश की कोई महिला नहीं कर सकी थी। मंजू नयाल भारत की पहली 3-स्टार इंटरनेशनल महिला कुराश रेफरी बन गई है और अंतर्राष्ट्रीय खेल जगत में देश का नाम रोशन कर रही है।
1: बरसों की साधना और कठिन परिश्रम से हासिल ये अवार्ड और मेडल्स कामयाबी की कहानी खुद ब खुद बयां करने के लिए मुकम्मल है। गाजियाबाद के वैशाली की रहने वाली मंजू नयाल ने अपनी प्रतिभा के दम पर हासिल इन तमगों के साथ अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत का मान अब और बढ़ा दिया है। मंजू नयाल ने देश की पहली महिला 3-स्टार इंटरनेशनल कुराश रेफरी बनकर इतिहास रच दिया है।
2: मैम, देश की पहली 3-स्टार रेफरी कुराश गेम में, सुनकर कैसा लग रहा है? देश की पहली महिला रेफरी।
3: सर, बहुत अच्छा लग रहा है, प्राउड मूवमेंट हो रही है कि देश की पहली महिला रेफरी बनी हूँ, तो काफ़ी लोगों की विशेस भी आ रही हैं और मतलब सपोर्ट भी मिला काफ़ी, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है पहली 3-स्टार रेफरी बन के कुराश की।
1: 2023 में 1-स्टार इंटरनेशनल कुराश रेफरी, 2025 में 2-स्टार इंटरनेशनल रेफरी और अब पिछले दिनों जून महीने में मंजू ने उज्बेकिस्तान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय रेफरी परीक्षा पास की और भारत की पहली 3-स्टार अंतर्राष्ट्रीय महिला कुराश रेफरी बनने का मुकाम हासिल किया।
3: पहले स्टेट रेफरी का एग्जाम दिया कुराश के अंदर, फिर नेशनल रेफरी का, फिर अब इंटरनेशनल रेफरी में, तो फिर वही, फिर 1-स्टार, 2-स्टार, अब मैं 3-स्टार हो गई हूँ। तो ये बिग अचीवमेंट्स है इंडिया के अंदर। मैं अभी तक 3-स्टार रेफरी कोई वुमेन नहीं थी, 1st रेफरी मैं बनी हूँ इस बार, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है इस चीज के लिए।
1: मंजू नयाल ने ये उपलब्धि कैसे हासिल की, आगे उनका क्या लक्ष्य है, ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कुराश खेल क्या है। कुराश मध्य एशिया से जुड़ी एक प्राचीन और लोकप्रिय कुश्ती शैली है जिसकी उत्पत्ति करीब 3500 साल पहले उज्बेकिस्तान में हुई थी। इस खेल में दो खिलाड़ी एक दूसरे को पकड़कर पीठ के बल जमीन पर गिराने का प्रयास करते हैं। कुराश अब एक वैश्विक खेल बन चुका है जिसे 130 से अधिक देशों में खेला जाता है। इसे 2018 के एशियाई खेलों में भी शामिल किया गया था जहाँ भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पदक जीते थे। मंजू नयाल फिलहाल गाजियाबाद में गुरुकुल द स्कूल के शारीरिक शिक्षा विभाग की कोऑर्डिनेटर हैं और कई बड़े अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में रेफरी की भूमिका निभा चुके हैं।
3: वैसे मैं जूडो में भी नेशनल रेफरी हूँ थी, तो वहाँ पर हमारे सर थे रवि कपूर सर, जो दिल्ली के जनरल सेक्रेटरी थे, तब उन्होंने स्विच करा कुराश के अंदर, तो अब उनका साथ था, उन्हें जानते थे दिल्ली के अंदर, बाकी को नहीं इतना हमारा वो था, जब उन्होंने स्विच करा तो उनके साथ साथ हमने कुराश में भी स्विच कर लिया था उन्हीं के उससे।
1: मंजू ने कजाकिस्तान में नोमैड गेम्स 2024, रूस के याकुत्स में चिल्ड्रन ऑफ एशिया गेम्स 2024, बहरीन में तीसरे एशियन यूथ गेम्स 2025 में रेफरी की भूमिका निभाई है। उज्बेकिस्तान में जूनियर एशियन इंटरनेशनल कुराश कप 2026 और जापान ओपन कुराश चैंपियनशिप जैसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में रेफरी के रूप में जिम्मेदारी निभाई है। 2015 में चीनी ताइपे में आयोजित जूनियर एशियन कुराश चैंपियनशिप में भारतीय टीम की कोच के रूप में भी मंजू ने देश का प्रतिनिधित्व किया है। मंजू नयाल का लक्ष्य अब इसी साल सितंबर में होने जा रहे एशियन गेम्स में रेफरी के तौर पर भारत का प्रतिनिधित्व करने का है।
3: एशियन गेम्स जो अब सितंबर में होने वाले हैं 22 से, उसमें अभी हम दिल्ली इंडिया से गए थे और वहाँ ट्रायल इवेंट्स देखने गए थे कि क्या क्या कमियाँ हैं, क्या क्या होना वाला है, तो उसका एक रन थ्रू था वहाँ पर, तो वहाँ पे मैं एज ए इंडिया से रिप्रेजेंट करा था मैंने वहाँ पर, और काफ़ी चीज़ें वहाँ मुझे सीखने को भी मिली, बहुत सारी चीज़ें देखी, क्या कमियाँ थी, क्या है, ये सारी चीज़ें हम वहाँ देख के आए हैं, और अब हम सितंबर में अगर हुआ तो सितंबर में हम वहाँ जाएंगे।
1: मंजू नयाल की ये उपलब्धि न सिर्फ उनके लंबे अनुभव और मेहनत का परिणाम है बल्कि देश के उन महिलाओं के लिए प्रेरणा भी है जो
3: क्या है, ये सारी चीजें हम वहाँ देख के आए हैं, और अब हम सितंबर में अगर हुआ तो सितंबर में हम वहाँ जाएंगे।
1: मंजू नयाल की ये उपलब्धि न सिर्फ उनके लंबे अनुभव और मेहनत का परिणाम है बल्कि देश के उन महिलाओं के लिए प्रेरणा भी है जो खेलों में कुछ अलग पहचान बनाना चाहती है। गाजियाबाद से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: अगर आप तीर्थ यात्रा करने में सक्षम नहीं है या फिर भीड़ में भगवान के दर्शन कर संतुष्टि नहीं मिलती तो आपके लिए एक खास विकल्प मौजूद है। इसका नाम है दुर्लभ दर्शन। ये एक आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म है जिसमें 6D VR टेक्निक के जरिए देश के प्रमुख मंदिरों के दर्शन का एक अनूठा अनुभव उपलब्ध कराया जाता है। आशुतोष राणा को देश के पहले 6D मंदिर दर्शन सेवा टेक्निक का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है।
4: आशुतोष राणा और मैं आपको लेकर चल रहा हूं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या।
1: अब दुर्लभ मंदिरों के दर्शन भी सुलभ होंगे।
4: मन में तुलसी की सुगंध लिए हम अपने आराध्य प्रभु श्री राम के धाम की ओर चलते हैं।
1: घर बैठे ही तीर्थों की यात्रा होगी। देर तक निहार सकेंगे आराध्य
4: दर्शनार्थ उनके विग्रह या मूर्ति के समक्ष उपस्थित होते हैं तो
1: दूर रहकर भी गर्भगृह की पूजा में शामिल हो सकेंगे।
5: इसमें है 50 से ज्यादा तीर्थ यात्रा
1: और ये सब संभव है दुर्लभ दर्शन। दुर्लभ दर्शन एक ऐसा पिटारा जिसमें हर धाम समाया है
4: बल्कि अनुभूत भी कर सकते हैं।
1: भगवान समाये हैं एक खास एहसास के साथ।
4: आपके और परमात्मा के बीच में कोई नहीं, वहां पर घटित होने वाली समस्त क्रियाकलापों में आप सहभागी होंगे। ऐसी अनुभूति हमारी करवाने का मन था कि अगर मान लीजिए पानी गिर रहा है, अगर हमने जल चढ़ाया, जलाभिषेक किया तो पानी के छींटे हमारे ऊपर आते हैं तो वो भी आपको अनुभूत हो। अगर आपने उनको सुगंधिम पुष्टिवर्धनम की बात, अगर हम सुगंध उनको लगा रहे हैं अभिषेक करते समय तो सुगंध भी आपको महसूस होगी। यदि हवा की बात है तो हवा भी आपको महसूस होगी। तो इस तरीके से पूरा इस अनुभव को बिल्कुल एक जो दुर्लभ अनुभव है उसको सुलभ करने के लिए हमने ये किया।
1: लाखों असल में दुर्लभ दर्शन एक आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म जिसमें 6D VR टेक्निक के जरिए देश के प्रमुख मंदिरों के दर्शन का एक अनूठा अनुभव उपलब्ध कराया जाता है। इसमें वर्चुअल रियलिटी के साथ साथ जल, वायु, सुगंध और पौराणिक कथाओं के मेल से साक्षात गर्भगृह में होने का एहसास कराया जाता है। यूं कहिए कि यहाँ आस्था और तकनीक के मेल से एक सुंदर आध्यात्मिक वातावरण का निर्माण किया जाता है। यहाँ एक और भगवान राम और उनकी अयोध्या की कहानी है तो काशी विश्वनाथ का इतिहास भी है और माँ वैष्णो देवी की आरती भी। बस इसे आँखों पर लगाइए और यात्रा पर निकल पड़िए। अभिनेता आशुतोष राणा आपको धर्मस्थलों की कहानी सुनाते भी नजर आएंगे।
4: हमें तो अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए। क्यों होता है ऐसा? वो इसलिए कि जब हम भाव विभोर होकर भगवान के दर्शन।
1: फिलहाल ये सुविधा अयोध्या, काशी समेत देश के 11 प्रसिद्ध मंदिरों में उपलब्ध है, जहां आप सुकून से बैठकर अपने आराध्य देव को करीब से महसूस कर सकेंगे,
4: ध्यान में लीन हो सकते हैं। और यदि किसी कारणवश
1: अभिनेता आशुतोष राणा को देश के पहले 6D मंदिर दर्शन सेवा तकनीक का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है।
4: 50 से अधिक और अनेक सिद्ध और दिव्य मंदिरों के दैनिक दर्शन कर सकते।
0: और अब वक्त हो गया इंस्टा स्टोरीज का, तो चलिए आपको उन कलाकारों की इंस्टा रील दिखाते हैं जो अभिनय की दुनिया में तो कमाल कर ही रहे हैं, साथ ही साथ सोशल मीडिया पर अपने फैंस को हंसाने और गुदगुदाने में भी पीछे नहीं है। देखिए रोहित सुचांती की फनी इंस्टा स्टोरी।

0: भैया भैया थोड़ा हाथ लगा दो ना प्लीज, थोड़ा हाथ लगा। अरे मुझे नहीं, स्कूटी पे हाथ लगा दो।
1: ओ भाई नई गाड़ी ले ली, एक ड्राइव तो बनती है।
2: नहीं यार मैं नहीं दे रहा, पागल है क्या?
1: जिंदगी भर तो मेरी स्कूटी में घुमा है, आज के पास गाड़ी आ गई तो तेवर ही बदल गए।
2: कुछ भी बोलती है।
3: तो शुभ समाचार में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन बाकी तमाम पॉजिटिव और अच्छी खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: Flowers fade, cards get tossed, but a personalized song, that lasts forever. Surprise someone you love with a custom song made just for them with Joybox. Visit joybox.com to get started on your personalized song today. Don't just say I love you, sing it with Joybox.
6: Hey, it's Harry Douglas for Freddie and Harry. Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
7: Third period comes to an end, game two. To overtime.
6: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and nonstop sports talk so you don't miss a second of the action.
7: They score!
6: Search ESPN Radio or tear your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
8: Good news today. Achhi khabar, sachi khabar.
9: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
10: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
9: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
11: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
9: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
13: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
14: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। टीआईटी भोपाल, जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स।
15: महंगाई के मोर्चे पर राहत की खबर, नायरा एनर्जी ने पेट्रोल डीजल के दाम घटाए, पेट्रोल 5 रुपए, डीजल 3 रुपए प्रति लीटर हुआ सस्ता। आज से बदले कई वित्तीय नियम, आधार में ईमेल अपडेट करना हुआ फ्री, कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम 183 रुपए घटे, कई अन्य नियमों में भी बदलाव। अमरनाथ के लिए कल जम्मू बेस कैंप से रवाना होगा पहला जत्था, ऑपरेशन शिवा की सुरक्षा में होगी अमरनाथ यात्रा, 57 दिन तक चलेगी यात्रा। दिल्ली एनसीआर में छाए बादल, मॉनसून का इंतजार जल्द होगा खत्म, अगले 2 से 3 दिन में आ सकता है मॉनसून, उमस भरी गर्मी से मिलेगी जल्द राहत। जम्मू कश्मीर में पीर की गली बनी सैलानियों की पहली पसंद, बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं सैलानी और श्रद्धालु, प्रकृति के बीच कुदरत का ले रहे हैं दीदार।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आषाढ़ के महीने का आरंभ होने जा रहा है और आज हम आपको बताएंगे आषाढ़ महीने की महिमा के बारे में। इसके अलावा बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 1 जुलाई 2026 दिन बुधवार, तिथि है आषाढ़ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि, प्रातः 7:38 तक। नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, प्रातः 6:51 तक। चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं दोपहर 1:31 तक। राहु काल का समय दोपहर 12 से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 1 जुलाई 2026 दिन बुधवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य विद्यमान है मिथुन राशि में, शुक्र बुध और बृहस्पति कर्क राशि में, केतु सिंह राशि में, चंद्रमा धनु राशि में, राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में और मंगल फिलहाल संचरण कर रहे हैं वृषभ राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशि फल कैसा रहने वाला है। हम आज बात कर रहे हैं आषाढ़ के महीने की। देखिए, हिंदू पंचांग का चौथा महीना आषाढ़ का महीना है। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ और आषाढ़, ये संधि काल का महीना है। ग्रीष्म ऋतु का अंत होता है और वर्षा ऋतु की शुरुआत होती है। इस महीने में रोगों का संक्रमण सर्वाधिक होता है क्योंकि मौसम बदलने से बीमारियां फैलती हैं और इस महीने से वातावरण में थोड़ी सी नमी आनी शुरू हो जाती है। आषाढ़ के महीने को शास्त्रों में कामना पूर्ति का महीना भी कहा जाता है। इसका नाम आषाढ़ इसलिए है क्योंकि आषाढ़ महीने की पूर्णिमा तिथि को पूर्वाषाढ़ा या उत्तराषाढ़ा नक्षत्र सामान्यतः रहता है। इस बार आषाढ़ का महीना 1 जुलाई से आरंभ हो रहा है और ये 29 जुलाई तक रहेगा। आषाढ़ पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में।
अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, करियर में सफलता मिलेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य में सुधार होगा, गणेश जी की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, जल्दबाजी में काम करने से बचें, दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा, हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मिथुन राशि, कारोबार की स्थिति में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रिश्तों में समस्या हो सकती है, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा।

पक्ष में तंत्र साधना के लिए और शक्ति उपासना के लिए गुप्त नवरात्रि भी मनाई जाती है और आषाढ़ शुक्ल एकादशी को देवशयनी एकादशी आती है, जब भगवान विष्णु शयन के लिए या योग निद्रा में चले जाते हैं और आषाढ़ शुक्ल एकादशी से अगले 4 महीने तक शुभ कार्यों की वर्जना होती है, शुभ कार्य मना होते हैं। आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा का महान उत्सव भी मनाया जाता है। तो आषाढ़ का जो महीना है, इसमें पर्व त्योहार बड़े महत्वपूर्ण हैं और सबसे बड़ा जो पर्व है वो गुरु पूर्णिमा का पर्व है। आषाढ़ की पूर्णिमा को मनाया जाता है। आषाढ़ पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संतान पक्ष की उन्नति होगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, करियर में समस्या हो सकती है, वाहन सावधानी से चलाएं, दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा, हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, रुका हुआ काम पूरा होगा, धन की समस्या हल होगी, यात्रा में सावधानी बनाए रखें, भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, धन लाभ के उत्तम योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब आपको बताते हैं कि आषाढ़ के महीने में किन किन देवी देवताओं की उपासना करना अच्छा होता है। देखिए, आषाढ़ के महीने में सबसे ज्यादा फल देने वाली उपासना अपने गुरु की होती है। आपके जो भी गुरु हैं उनकी उपासना आषाढ़ के महीने में करिए, और अगर गुरु नहीं हैं तो भगवान शिव या भगवान कृष्ण को गुरु मानकर उनकी उपासना करिए। इसके अलावा आषाढ़ में गुप्त नवरात्रि में माता दुर्गा की, देवी की उपासना करना भी शुभ होगा। श्री हरि विष्णु की अगर आषाढ़ के महीने में उपासना करें तो संतान प्राप्ति का वरदान आपको मिलेगा। आषाढ़ के महीने में अगर आप जल देव की, वरुण देव की उपासना करें तो धन की प्राप्ति सरल हो जाएगी।

और अगर आप आषाढ़ के महीने में मंगल और सूर्य ग्रह की उपासना करते हैं तो ऊर्जा का स्तर बना रहता है, और आषाढ़ में सूर्य देव की उपासना करने से भक्ति का वरदान प्राप्त होता है। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, महत्वपूर्ण काम आपके बन जाएंगे, धन लाभ के उत्तम योग बन रहे हैं, करियर में बड़ी सफलता मिलेगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें, दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा, हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, शिक्षा में सफलता मिलेगी, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अगर अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, करियर में बड़ी सफलता मिलेगी, काम की रुकावट दूर होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, आषाढ़ महीने का संबंध है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र से या उत्तराषाढ़ा नक्षत्र से। ऐसी स्थिति में जिन लोगों का जन्म पूर्वाषाढ़ा में या उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में हुआ है, उन्हें आषाढ़ के महीने में नियमित रूप से सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए और साथ ही साथ नियमित रूप से देवी की उपासना करनी चाहिए। अगर आपका जन्म पूर्वाषाढ़ा या उत्तराषाढ़ा में हुआ है, धनु या मकर राशि है आपकी, तो ऐसी सिचुएशन में आप देवी के मंत्र का जप करें और सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, आपके नक्षत्र को शक्ति मिलेगी और जीवन की बाधाएं दूर होंगी। तो आज हमने बात की आषाढ़ मास के महिमा के बारे में। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप। अगर आप पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं और चाहते हैं कि साझेदारी चले, पार्टनरशिप चलती रहे, तो हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी को गुलाब का फूल अर्पित करके प्रार्थना करिएगा, आपको लाभ होगा। अब जान लेते हैं दिनांक 1 जुलाई 2026 दिन बुधवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करिएगा, घर से निकलते समय उसमें से थोड़ी सी दूर्वा अपने पास रख लीजिएगा।
अगर आप प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

दो मिनट आओ, नाम संकीर्तन गा ले, इसको तेज करो, हम स्लो हैं, तुम तेज हो जाओ, थोड़ा तेज करो। दो मिनट नाम संकीर्तन गा लेते हैं, इसके बाद में जो भी भगवान हमको प्रेरणा देंगे हम आपको भाव पूर्वक

त्रेता युग में बहुत साल पहले हनुमान जी लंका आए थे और हम उनके दास होने के नाते श्रीलंका आए थे। हनुमान जी की लंका की यात्रा में हनुमान जी ने माता जानकी जी की खोज की थी। माता जानकी जी हैं भक्ति, तो वो लंका की यात्रा में भक्ति की खोज में आए थे, हम श्रीलंका की यात्रा में भक्त की खोज में आए। हमारा मन बहुत प्रसन्न है, पहली बार हम आए। बहुत लोगों को हम समझ सकते कि भाषा की प्रॉब्लम है, बट आई कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश बट अंडरस्टैंड योर फीलिंग। दो चार बातें हम कहना चाहें, ना समझ में आए तो बगल वाले से समझना, और बगल वाले को भी समझ में ना आए तो जब लोग हंसे तो तुम हंसना, लोग ताली बजाएं तो तुम बजाना, और लोग थोड़ा सैड मूवमेंट में जाएं तो तुम भी जाना, ताकि हमको ये नहीं लगना चाहिए कि तुम्हें समझ नहीं आया। हमें यही लगे कि किसी को भले ही समझ नहीं आया पर आपको पूरा समझ में आया है, तो इसलिए भले ही ना समझ में आए पर ये हमें फील ना होने देना, क्योंकि यहाँ ये तो समस्या है। एक अंग्रेजी का शब्द है माइंडसेट। क्या? माइंडसेट। अच्छा, जिसका माइंडसेट हो जाता है उसकी लाइफ सेट हो जाती है। कुछ लोगों का माइंड अपसेट है। अच्छा, लेकिन विचित्र बात देखना, नेपाल वाले दूतावास वाले सर कि कितनी विचित्र बात, लोगों के घरों में किचन सेट होता, टी सेट होता, सोफा सेट होता, टीवी सेट होता, बस माइंड अपसेट होता। अच्छा, लोग बताओ कितने विचित्र हैं। सब सेट है, चार्जर सेट, साड़ी सेट, सूट सेट, ग्लास सेट, गाड़ी सेट, लेकिन माइंड अपसेट। अब बताइए, इतने सेट रख रखे पर ये सेट नहीं रखा। हमारा मानना है घर में ये सेट हो या ना हो, माइंड सेट हो जाए तो लाइफ सेट हो जाती है। यदि श्रीमद् भगवत गीता का उदाहरण उठाया जाए, भगवान कृष्ण का उदाहरण उठाया जाए, भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता के संपूर्ण 18 अध्यायों में अर्जुन का कुछ नहीं किया, माइंड सेट किया। अर्जुन ने जब कहा सैन्यो मध्य रथम गत्वा, सेना के मध्य में जब रथ गया तो जैसे ही रथ पर बैठ करके अर्जुन ने संपूर्ण युद्ध में बैठ खड़े हुए सैनिकों को देखा, परिवारजनों को देखा, कौरवों की सेना को देखा, अपने चाचा ताऊ अंकल परिवारजन, वो गुरुजन जिन्होंने पढ़ाया लिखाया, उनको देखा तो तुरंत डीमोटिवेट हो गए, मनहीन हो गया कि जिन्होंने हमें खिलाया हम उनको मारेंगे तो भला नहीं होगा, हमारा कल्याण नहीं होगा। परंतु भगवान कृष्ण ने समझ लिया, इनका माइंड अपसेट हो गया, अब ये युद्ध नहीं जीत सकते। तब भगवान को 18 अध्यायों के श्लोकों की गीता सुनानी पड़ी और अर्जुन का माइंड सेट करना पड़ा। अर्जुन का माइंड सेट हुआ, महाभारत हो गई, धर्म और अधर्म की लड़ाई थी, धर्म जीत गया, अधर्म हार गया। इससे एक सिद्ध होता है, कौरवों के पास भीड़ थी, पांडवों के पास भगवान था। और कितना अच्छा उदाहरण है मेरे पागलों, जिनके पास भीड़ हो जरूरी नहीं उनकी विजय हो, विजय उनकी होती है जिनके पास भगवान होता है। लेकिन बैठे श्रीलंका में तो यहां भी एक माइंड सेट हुआ विभीषण का। श्रीलंका में भी विभीषण का माइंड सेट हुआ, और किसने किया? राम दूत अतुलित बल धामा, हनुमान जी ने माइंड सेट किया। और क्या गजब का माइंड सेट हनुमान जी ने किया, जैसे विभीषण ने हनुमान जी को देखा, हनुमान जी ने विभीषण को देखा तो तुरंत हनुमान जी को देख करके विभीषण कहते हैं, आज हम आपको देख करके मन बड़े प्रसन्न, हमारा मन बहुत प्रसन्न है। हनुमान जी बोले कैसा प्रसन्न है, तो विभीषण ने कहा कि तुम राम दीन अनुरागी आयो मोहि करण बड़ भागी, आप या तो राम जी हो या राम जी के दास हो, आपको देख करके हमारा मन बहुत प्रसन्न है कि तुम राम दीन अनुरागी आयो मोहि करण बड़ भागी, किस लिए आए हो, हमारे भाग को जगाने आए हो। हनुमान जी बोले सही पहचाना। इतने में जब तब हम विभीषण से भगवान ने पूछा, हनुमान जी ने क्या हाल है तुम्हारे, माइंड सेट का हाल बताओ, तब तो विभीषण ने जो बताया वो बड़ा विचित्र, बोले क्या, बोले जिमि दसनन मो जीव विचारी, जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती वैसे हम रह रहे, ये माइंड अपसेट। हाँ, क्या हुआ,
बोले दांतों के बीच में जैसे जीभ फंसी वैसे हम फंसे, जीने का कोई उद्देश्य नहीं है, जीवन में कोई प्रसन्नता नहीं है, हमारा भाई बहुत आतताई है, क्रूर है, अत्याचारी है। विभीषण की बातों को सुनकर के हनुमान जी समझ गए इनको माइंड सेट की आवश्यकता है, तो धीरे से बोले तुम्हारी पार्टी गलत है, तुम प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर बनने की योग्य हो। तो विभीषण बोले आप प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहे हैं, हम मिनिस्टर नहीं, प्राइम मिनिस्टर क्या खाक बनेंगे। हनुमान जी बोले नहीं नहीं बनने के पूरे लक्षण है, बस पार्टी गलत। तो विभीषण कहते हैं कौन सी पार्टी वो अपनाए, हनुमान जी बोले हमारी वाली में आ जा। आपकी कौन सी है, बोले राम जी वाली, हमारी वाली पार्टी में आ जाओ, मिनिस्टर भी बनोगे प्राइम मिनिस्टर भी बनोगे। और क्या गजब का संकेत, हनुमान जी से कोई राजनीति सीखे, क्या गजब की राजनीति, हमारे बजरंग बली ने इतने दूर लंका में आकर के भी डंका राम नाम का बजाया कि विभीषण का माइंड सेट किया, तो अधर्म अपसेट हो गया और सनातन धर्म सेट हो गया। तो यहां बैठे हुए उपस्थित लोगों से हम यही कहेंगे आज की कथा का यही विचार लेके जाओ, माइंड सेट कर लो, लाइफ सेट हो जाएगी। एक माइंड सेट आपके जीवन को बदल सकता। एक कुम्हार जो मटका बनाता, मिट्टी के बर्तन बनाता, एक कुम्हार मटका बनाते बनाते उसके मन में सूझी, वो चिलम बना रहा था, चिलम बनाते बनाते जैसे उसने चिलम का मिट्टी लिया और बनाना प्रारंभ किया, बनाते बनाते प्रारंभ करते करते उसके मन में आया इस मिट्टी से चिलम बनाने की बजाय सुराही बनाई जाए, मिट्टी की चिलम को मिटा दिया, सुराही बनाने लगा। मिट्टी बोल पड़ी, कुम्हार तेरा लाख लाख धन्यवाद है, करोड़ करोड़ धन्यवाद है। कुम्हार ने कहा क्या हुआ, बोले तेरा तो विचार बदला, मेरी तो जिंदगी बदल गई। तुम्हारा तो विचार बदला, मेरी तो जिंदगी बदल गई। तो कुम्हार ने कहा कैसे जिंदगी बदली, उस मिट्टी ने कहा अरे कुम्हार तू यदि चिलम बनाता मैं खुद भी जलती दूसरों को भी जलाती, अब मैं सुराही बनूंगी खुद भी ठंडी रहूंगी और दूसरों को भी ठंडी करूंगी, दूसरों को भी शीतलता दूंगी, दूसरों को भी मैं ठंडक में ले जाऊंगी। ये जीवन का सिद्धांत है, जो अपने जीवन में माइंड सेट कर लेता, अपने जीवन में जो बुद्धि से एक बात विचार कर लेता, इस जिंदगी में सुखम चा दुखम चा भवा भवौ चा लाभा लाभु जया जयु, संसार में सब कुछ घटने वाला है, सुख आएगा तो दुख आएगा, दिन होगा तो रात होगी, पाप होंगे तो पुण्य भी होगा, धर्म होगा तो अधर्म भी होगा, और तुम्हारा सम्मान होगा तो अपमान भी होगा। हमसे ही सीख लो, जितने लोग हमें ताली बजाकर स्वागत करते माला पहनाते उतने ही भारत में कई गाली देते। अब हम सोचें वाह हमको माला भर पहनाई जाए, हमको गालियां ना पहनाई जाए, तो ऐसा संभव ही नहीं है, तालियां मिलेंगी तो गालियां भी मिलेंगी। तुम जिंदा रहोगे तो निंदा भी खाओगे, और निंदा कोई नहीं करेंगे, पड़ोसी पड़ोसन करेंगे, घर वाले ही करेंगे। तो जिंदा रहोगे तो निंदा पाओगे। इस माइंडसेट के साथ जीना कि दोनों का ही भेद है। कभी तुमने देखा होगा झूला पर झूलते हुए, झूला जितना पीछे तक जाता है उतने ही आगे तक आता है, ऐसे ही जीवन है, दुख का झूला जितना पीछे तक जाएगा सुख का झूला उतना ही आगे आएगा। इसलिए श्रीलंका के प्रियजनों, यहां रहने वाले हम सभी समस्त लोगों को एक सूत्र आज के विचार में कहना चाह रहे, माइंड सेट करो लाइफ सेट करो, माइंड सेट करो लाइफ सेट। जीवन में आपको सिद्धांत को एक पकड़ना पड़ेगा कि हमको वो विचार नहीं करना जो हम पर है नहीं, वो विचार करना जो है। और हम लोग परेशान क्यों, पूछो क्यों है, पूछो पूछो, जो हो नहीं वो तुम दिखना चाहते, जो हो नहीं वो दिखना चाहते, और जो हो वो दिखना नहीं चाहते, यही परेशानी है। अच्छा उपाय क्या है सुखी होने का, अब उपाय सुनो सुखी होने का। सुखी होने का यही मंत्र है, हम जो हैं वही दिखने लगे, जैसे हैं वैसे रहने लगे तो हमें लगता है जीवन में दुखी नहीं रहेंगे, हमेशा सुखी ही सुखी रहेंगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो सीताराम, और जोर से बोलो सीताराम। इसको एक छोटे से उदाहरण से समझो, जो पीछे बैठे वो आगे बैठना चाहते क्योंकि एक दूसरे की खपड़िया परेशान कर रही, अच्छा जो आगे बैठे वो मंच पे बैठना चाहे इधर, जो इधर बैठे ताकि हमें भी देखें और इधर भी दिखें।
अच्छा जो इधर बैठे वो कभी इधर बैठना चाहते, और जो इधर आ जाते हैं वो इधर बैठना चाहते हैं। इसी को कहते हैं जीवन। जीवन में कभी कुछ भी चीज घटती नहीं, हमेशा मन की फैंटेसी बढ़ती जाती, मन की विचारधारा बढ़ती जाती, मन के नए नए संकल्प विकल्प बढ़ते ही जाते, मन नया नया विचार निरंतर करता ही रहता, मन नया नया संकल्प मन को देता ही रहता, और जीवन में हम लोग उसको पाने की चेष्टा में बढ़ते चले जाते, और एक समय ऐसा आता कि शमशान तक पहुंच पाते, कहीं नहीं पहुंच पाते। अच्छा, शमशान के बाहर बड़ा गजब का शब्द लिखा था, तेरी मंजिल ही इधर है, ध्यान के इधर है। एक शमशान के बाहर लिखा था, तेरी मंजिल इधर है पर ध्यान के इधर है। और हम लोगों का ध्यान संसार नश्वरता के मध्य में है, पर मंजिल कहाँ है? मंजिल भगवान के चरणों में है। हम यही बात अंत में आपको, मेरे प्रियजनों मध्य में यही बात हम कहना चाह रहे, इस सिद्धांत को आपको जीवन में अपनाना है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। अभी जो हमको मिला इसी में प्रसन्न रहना सीखो, इसी का नाम माइंडसेट। हम कल की चिंता में आज की खुशियों को ना खोएं। आदमी परेशान क्यों? सबको कल की टेंशन है। एक हमारे यहां एक बहुत लोकप्रिय कथा है, एक बहुत अमीर आदमी था, उसने अपने मुनीम से कहा कि जरा चेक करो कि हमारे पास कितना धन है। उसने चेक किया तो बताया कि आपकी आने वाली 9 पीढ़ियां बैठ करके खाएंगी, इतना धन है, कोई काम भी ना करें तो 9 पीढ़ियों का भोजन व्यवस्था है। और वो अमीर आदमी धीरे धीरे बीमार पड़ गया, और उसको बीमारी इतनी खतरनाक होने लगी कि कमजोर पड़ गए। तो डॉक्टरों को चेकअप करवाया, वैद्य बुलाया कि क्या बात है, आप बीमार क्यों पड़ गए? बोले इनको कुछ बीमारी नहीं है, चिंता है, टेंशन। तो वैद्य ने कहा, सेठ जी कोई बड़ी टेंशन हो तो हमें बताओ। तो जो मुनीम था उसने कहा कि अभी तो आप ठीक थे, अब कुछ दिनों से आप बीमार क्यों पड़ रहे हो, टेंशन क्या है? बोले हमको एक ही टेंशन है कि 9 पीढ़ियां तो बैठ के खाएंगी, 10वीं का क्या होगा, इसीलिए हम चिंता में। कितनी विचित्र बात है, वो कहता है कि 10वीं का क्या होगा। तब फिर मुनीम ने समझाया, अरे आप अपनी सोचो, आने वाली पीढ़ी वो अपनी सोचेगी, तुम इसी चिंता में आज का सुख खत्म कर रहे हो, ये सेठ कोई और नहीं, हम और तुम है, जो आने वाली पीढ़ी की टेंशन में वर्तमान का सुख खत्म कर रहे। मेरे प्रिय जनों, मेरे पागलों, हम आपको यही कहना चाहते, आने वाले सुख के लिए वर्तमान का सुख खत्म नहीं करना, जो अभी मिला है इसी में आनंद से जीना है। हनुमान जी ने यही विभीषण को समझाया। विभीषण ने कहा कि आप जहां आए हैं हमारी यहां हालत खराब है। क्या हालत? अच्छा विचित्र देखना, विभीषण कहां रहता था? लंका में, जहां हम लोग श्रीलंका में बैठे। विभीषण वहां किसके साम्राज्य में? रावण के साम्राज्य। रावण घोर राम जी का विरोधी, कट्टर दुश्मनी, परम शिव भक्त था लेकिन राम जी का घोर विरोधी था। अच्छा विचित्रता देखना, रावण की इकलक पूत सबालक नाती दिया धरई ना रावण बाती। रावण के पास इतना बड़ा साम्राज्य, स्वर्ण के सिंहासन पर बैठता, नवग्रहों को उल्टा लटका के रखता, शनि को तो उल्टा ही लटकाए, बाकी ग्रहों को सीधा, शनि को उल्टा। तो किसी ने पूछा कि शनि को उल्टा क्यों? लटनाती दिया धरई ना रावण बाती। रावण के पास इतना बड़ा साम्राज्य, स्वर्ण के सिंहासन पर बैठता, नवग्रहों को उल्टा लटका के रखता, शनि को तो उल्टा ही लटकाए, बाकी ग्रहों को सीधा, शनि को उल्टा। तो किसी ने पूछा कि शनि को उल्टा क्यों लटकाए? रावण बोला यही खतरनाक, इसकी दृष्टि पड़ जाएगी गड़बड़, इसलिए सीधा रखो ही मत, उल्टा करो। हनुमान जी जब लंका आए थे तो पर्वत, हम जब कल गए वहां रंबोड़ा तो हेलीकॉप्टर से उड़न खटोला से गए, जब गए तो हम देख रहे थे पहाड़ों को, और देख करके हम बहुत गदगद हो रहे थे, हमारे प्रभु भी यहीं से गए, और बड़े अद्भुत तरीके से गए होंगे, देख रहे होंगे उन पहाड़ों को, हम भी ऊपर से देख रहे थे हमारे सरकार। तो कल जब हम वहां पहुंचे अशोक वाटिका सीतामन, आहा हमारा तो मन बड़ा गदगद हो गया। कल हम बहुत भावुक भी हो गए उस जगह को देखकर कि हमारी माताजी ने कई वर्ष यहाँ पर कई महीनों तक बैठकर प्रभु श्री राम की याद में समय व्यतीत किया, कैसे दिन कटे होंगे, कैसे पल व्यतीत हुआ होगा। और हमारा सौभाग्य है, इस पीढ़ी का सौभाग्य है कि हमने अपनी आंखों से उस भूमि को देखा जहां माता जानकी जी विराजमान, जहां हमारे हनुमान दादा आए थे,
उस भूमि को देखा जहां कभी हमारे प्रभु श्री राम जी आए थे, उस मिट्टी को आज भी वहां के वो पत्थर पर्वत गवाए हैं, वहां के वो शिलाएं गवाए हैं, हनुमान जी का वहां चरण विशाल बना हुआ है, विशाल चरण वो गवाए है कि यहाँ पर प्रभु श्री हनुमान जी महाराज आए थे, प्रभु श्री राम जी आए थे। उसको देख करके मन एकदम भावुक हो गया कि बताओ कितना दूर, कितनी दूर माता जानकी जी को बीहड़ वन में एकांत में लाया गया, क्या बीती होगी। हम लोग बताओ सब टेक्नोलॉजी होने के बाद भी सोचते हैं कब भारत जाएंगे, और उस समय का विचार करो, कल्पना करो क्या बीती होगी। पर धन्य है हनुमान जी महाराज, क्या गजब की प्रतिभा, क्या गजब की बुद्धि, क्या गजब का बल और क्या गजब की मेधा थी वीर बजरंग बली के पास, न मैप न दिशा, और इतने बीहड़ वन में भी माता जानकी जी को खोज लिया, इसी को हनुमान कहते हैं।

0: Pepsi Prebiotic Cola in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
1: Want to hear something funny? Check out Just for Laughs Radio, your destination for all things comedy. Enjoy nonstop stand-up from your favorite comics, plus the ones you haven't discovered yet. Get your daily dose of laughter on Just for Laughs Radio, now on TuneIn.
2: Hi, everyone. Super Bowl champ Vernon Davis here from Legal Help Center. If you've been injured in an accident and think you deserve compensation, listen up, because we have legal professionals standing by right now to answer your questions for free. You can find out if you have a case and how much it's potentially worth.
3: Thanks, Vernon. You heard it, folks. If you've been injured, call and find out how much you qualify for. Call 800-702-1400. Advertisement sponsored by Legal Help Center. May not be available in all states. Not available in California.
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है. इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर.
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं. खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर. खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है. खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है. ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे.

0: अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी जोड़ों का दर्द है, यानी घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे का दर्द, तो ये शो आपकी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जिनकी उम्र 70 साल से 100 साल तक है, और इस उम्र में भी इन लोगों को जरा भी जोड़ों का दर्द नहीं है। यानी ये लोग इस उम्र में भी कहीं जाने के लिए, उठने बैठने के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं है। एक लाइन में कहें तो ये लोग इस उम्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर है।
1: मैं पिछले एक साल से आयुर्वेदिक महाशक्तिशाली फॉर्मूला ले रहा हूँ, फौजी 360 इसका नाम है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में, यानी घुटने, कमर, कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
2: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
3: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैनू जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है। अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
0: फौजी 360 को अब तक जितने भी लोगों ने इस्तेमाल किया है, उन सभी लोगों को जोड़ों के पुराने से पुराने दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे के दर्द से पूरी तरह आजादी मिली है। और ये दावा हम नहीं, वो लोग खुद कर रहे हैं जो फौजी 360 इस्तेमाल कर चुके हैं।
4: इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं, और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
5: और सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि इसे हर बंदा ले सकता है, डायबिटीज वाला मरीज ले सकता है, ब्लड प्रेशर वाला मरीज ले सकता है, और मेरा खुद का दर्द खत्म हुआ यार। इसीलिए मैं खुल के बताता हूँ कि ये फौजी गजब की चीज है।
0: फौजी 360 के सिर्फ एक कोर्स के बाद 80-90 साल के बुजुर्ग भी जवानों की तरह सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पोते पोतियों को गोदी में लिए घंटों उनके साथ खेल रहे हैं।
6: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने।
0: ये बात सुनने में बड़ी हैरान करने वाली है, पर इन बुजुर्गों ने इंटरनेट पर प्रूफ के साथ वीडियोस भी अपलोड करे हैं, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। और जोड़ों के दर्द के तेल और स्प्रे बेचने वाले दुकानदार परेशान है, क्योंकि फौजी 360 लेने के बाद कोई भी व्यक्ति कभी भी इन जोड़ों के दर्द को ठीक करने वाली दवाएं, जैसे तेल, गोली और स्प्रे के चक्कर में दोबारा कभी नहीं फंसेगा।
7: 3 साल से आंटी जी के घुटनों में इतना दर्द था कि इनका घुटना मुड़ता भी नहीं था, जरा भी नहीं मुड़ता था। और आज की स्थिति देखते हैं आप, ये देखिए इनका पूरा घुटना मुड़ रहा है, हॉस्पिटल खुद चल के आई हैं, और ये सब कमाल हुआ है फौजी 360 से। हम रिपोर्ट से समझते हैं, देखिए इनके पुरानी रिपोर्ट है, पूरी घुटने जकड़ चुके थे, जाम हो चुके थे, जिसके कारण घुटनों में पूरी तरीके से मूवमेंट खत्म हो गया था। और आज की डेट है, जब से इन्होंने फौजी 360 यूज करना शुरू किया है, उसके बाद उनके घुटनों में एक तरीके से नई जान आई है। और हमें इतना अच्छा लगता है जब हम देखते हैं कि लोगों के पैसे बच रहे हैं और लोगों को फौजी 360 जैसे नेचुरल प्रोडक्ट से आराम मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जिन भी लोगों को जोड़ों से संबंधित कोई भी समस्या है, एक बार फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
0: फौजी 360 के इफेक्ट्स और रिजल्ट्स को जानने के लिए हमने बहुत से एक्सपर्ट से बात करी, और लगभग सभी का यही कहना था कि फौजी 360 जोड़ों के दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे के दर्द के लिए राम बाण की तरह काम करता है।
8: किट में मिलने वाले जो दूसरे प्रोडक्ट होते हैं, जैसे तेल, स्प्रे, ये सिर्फ ऊपरी और टेम्परेरी राहत देते हैं, और वहीं फौजी 360 शरीर के अंदर जाकर जोड़ों को, हड्डियों को, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
9: ये साहिल जी हैं, 2 महीने पहले आए थे, कह रहे थे मेरे दोनों घुटने बदल दो क्योंकि बहुत परेशानी हो रही थी इन्हें चलने फिरने में। मैंने कहा हम पैसे बर्बाद नहीं करेंगे, आप फौजी 360 का एक कोर्स लेके देखिए, फिर मिलते हैं। आज आए हैं, बताइए सर कैसे रिजल्ट मिले आपको, क्या स्थिति है अभी?
8: पहले तो जितना धन्यवाद आपको दूं उतना का मैं डॉक्टर साहब, क्योंकि पूरा चल लेता हूं मैं मोटरसाइकिल चलाने लगा हूं वापस से अपनी, अब बिल्कुल भी बुरी स्थिति नहीं है, एकदम बिल्कुल दर्द खत्म हो चुका है। अब तो आप मुझे बोलो 5 किलोमीटर चले जाओ, मैं बिल्कुल चले जाऊंगा, अभी भी सीढ़ी चढ़ के आया हूँ हॉस्पिटल में।
0: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें, और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
6: 2 साल से घुटने और कमर के कारण पलंग पकड़ लिया था, सब पलंग पे ही हो रहा था, अगना मुतना भी पलंग पे हो रहा था, जरा भी नहीं चल पाता था। 3 महीने से ये फौजी 360 पाउडर ले रहा हूँ, अब
10: खुद से उठ जाता हूँ, बाथरूम हो जाता हूँ, चल फिर लेता हूँ, बहुत आराम है, बहुत राहत है।
0: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
4: रोज 150 सीढ़ी चढ़कर मैं मेरे भोले बाबा के मंदिर जाती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है मेरे घुटनों में। और ये कमाल किसी तेल या स्प्रे से नहीं हुआ है, क्योंकि उनसे कुछ होता ही नहीं है। मुझे तो फायदा हुआ है फौजी 360 से। अरे कमाल का ट्रीटमेंट है। इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं है और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
0: दुनिया के किसी भी तेल या स्प्रे के साथ कभी भी कोई गारंटी नहीं मिलती, यानी दर्द खत्म होगा या नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं, लेकिन फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है। यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
11: 15 साल पहले चिकनगुनिया हुआ था, तब से शरीर के हर कोने में दर्द बना रहता था। होम्योपैथी, फिजियोथेरेपी, ये तेल, वो स्प्रे, सब ट्राई कर लिया, मगर आराम मिला 3 महीने पहले इस फौजी 360 से। अब कसम खा के बता रहा हूँ, जरा भी दर्द नहीं है शरीर में।
4: घुटने के दर्द के कारण मैं चल भी नहीं पाती थी, पर ये जब से फौजी 360 लिया है ना, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। अब आप देखो, मैं घर का पूरा काम खुद कर लेती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है।
12: 5 साल से तो मैंने नमाज भी अदा नहीं की थी, क्योंकि घुटना मेरा मुड़ता ही नहीं था। अब घुटने बदलवाने के लिए जितने पैसे भी नहीं थे कि घुटने बदलवा लें इस उम्र में, फिर ये फौजी 360 जब से लेना शुरू किया है, अब मैं खुद चल लेता हूँ, खुद का काम पूरी तरीके से कर लेता हूँ, और जो मैंने पलंग पकड़ लिया था ना, वो वहाँ से बच गया हूँ मैं। अब ये तो ताकत है फौजी 360 की, ये अल्लाह की दुआ से कम नहीं है फौजी 360। अब खुद का काम मैं खुद से करता हूँ बिल्कुल।
13: हमारे नेपाल में पहाड़ी इलाका है तो चलना फिरना बहुत होता है, जोड़ों में बहुत दर्द का प्रॉब्लम शाप को रहता है, पर हमने कभी तेल या स्प्रे नहीं लगाते, कुछ नहीं होता उससे। सारे लोग मेरी उम्र के यहाँ फौजी 360 लेते हैं, बहुत कमाल का दवाई है, बिल्कुल भी जोड़ों में दर्द नहीं है इसको लेने से।
0: अगर आप चाहते हैं कि आपके जोड़ों का दर्द अंदर से पूरी तरह ठीक हो सके और आपको पूरी तरह आराम मिल सके, तो सिर्फ एक कॉल करके इस कमाल के आयुर्वेदिक फॉर्मूले फौजी 360 को अपने घर मंगा सकते हैं और जोड़ों के दर्द से पूरी तरह आजादी पा सकते हैं।
14: बॉलीवुड का एक गाना है ना, लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान। तो मेरी कहानी भी ऐसी है कि मैं दुनिया के लगभग बहुत से बड़े बड़े देशों में रहा हूँ और मैंने सब जगह ये जोड़ों के दर्द, स्पेशली घुटने के दर्द का इलाज कराया, बट कहीं भी वैसा रिजल्ट नहीं मिला। 2 years back when we shifted to India, तब ये फौजी 360 के बारे में पता पड़ा, we started using it। मुझे और मेरी वाइफ दोनों को इतना कमाल का रिलीफ मिला कि ऐसा रिलीफ किसी भी ट्रीटमेंट से आज तक नहीं हुआ था।
0: फौजी 360 के बारे में और डिटेल में जानने के लिए हमारी टीम उस आयुर्वेदिक आश्रम तक पहुंची जहां फौजी 360 बनाया जाता है और उन एक्सपर्ट से बात करी और वो सीक्रेट जानने की कोशिश करी कि कैसे सिर्फ एक फॉर्मूले से लोगों के जोड़ों का दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, पूरी तरह ठीक हो रहा है।
15: इसमें कुछ ऐसी औषधियां हैं जो आपकी बोन्स को मजबूत बनाता है, जो आपके लिगामेंट में जो फ्लूइड की कमी हो गई है, ये उसे दोबारा रिस्टोर करने में मदद करता है। और साथ ही दूसरी दवाओं से ये बेहतर इसीलिए है कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसे डायबिटिक पेशेंट ले सकता है, इसे ब्लड प्रेशर का मरीज ले सकता है, क्योंकि ये पूरी तरह सुरक्षित है और आपको पहले दिन से फायदा दिखने लगेगा। ये ताकत है फौजी 360 की। बस यही कारण था कि हमने सोचा कि अब समय आ चुका है लोगों की, जनता की सेवा करने का और घर घर इसे भिजवाने का। तो जो आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, आप इस पर फोन कर सकते हैं, हमारे केंद्र पर डायरेक्ट फोन होगा, आप अपनी समस्या बताइए। अगर आपको बात सही लगती है, फौजी 360 आपको लगता है कि हाँ अब समय है कि जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक करना है, तो आप इसे मंगा सकते हैं। और साथ ही इसमें कुछ ऐसी औषधियां भी हैं जो आपको पूरे समय आपके शरीर में चुस्ती बनाए रखता है।
0: फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है, यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
7: फौजी 360 मार्केट में मिलने वाले दूसरे जो पेन किलर ऑयल्स होते हैं, स्प्रे होते हैं, उनसे कैसे अलग है, मैं आपको साइंटिफिकली समझाता हूँ कि ऐसा क्या है इस ट्रीटमेंट में जो इसके रिजल्ट्स बहुत ही शानदार है। देखिए, कोई भी तेल या स्प्रे कैसे काम करता है सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ। आपके दर्द वाले हिस्से पे जब आप तेल लगाते हैं तो ये बाहर से आपके उस पर्टिकुलर एरिया को सुन्न कर देता है, मतलब आपके बॉडी के अंदर दर्द तो रहता है, उस जोड़ के अंदर दर्द तो है, और वहीं फौजी 360 जो है ये अंदर से काम करता है, क्योंकि जब आप इसे कंज्यूम करते हैं बॉडी को वो सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है जो जोड़ों को मजबूत बनाता है अंदर से, जो जोड़ों की चिकनाहट कम हो गई है ना ये उसको दोबारा लौटाता है। तो ये एक अंदर से काम करने वाली चीज है, यानी ये पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से ठीक करता है, और वहीं तेल और स्प्रे सिर्फ टेम्परेरी राहत देते हैं। तो आप अगर अभी भी जोड़ों के दर्द के लिए तेल या स्प्रे यूज कर रहे हैं तो आप आज से ही वो सब बंद कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ पैसे बर्बाद करने की बात है और टेम्परेरी रिलीफ की बात है। अगर आप पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से मजबूत बनाना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, तो आप एक बार ये फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
16: पिछले महीने मैं बाथरूम में स्लिप हो गई थी तो बहुत दर्द रहता था पेट में। डॉक्टर ने कहा कुछ L1 L2 का कुछ तो बताया था, पर इन्होंने फौजी 360 लाके दिया और उससे इतना आराम हुआ है कि अब जरा भी दर्द नहीं है। मम्मी पापा जी ने भी लेना शुरू किया है और उनको भी जो घुटनों में दर्द था उन्हें भी राहत मिली है। तो हर घर में मुझे लगता है ये फौजी 360 होना ही चाहिए।
2: मैं तो 12 महीने ही केदारनाथ बाबा के चरणों में ही रहता हूँ, और यहाँ इतनी ठंड पड़ती है कि ठंड के चक्कर में पूरे समय शरीर अकड़ा हुआ रहता है, सारे जोड़ में बड़ा दर्द बना रहता था। पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता। बर्फ में भी चल लेता हूँ, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। ये ताकत है इस आयुर्वेदिक फौजी 360 की।
0: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है, और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
4: टीवी पे फौजी के बारे में देखा तो मैंने फोन करके फौजी 360 को सीधा घर मंगा लिया, क्योंकि 3 साल से कमर में इतना भयंकर दर्द था कि घर के सारे कामों के लिए मैं पूरी तरीके से बाइयों पे निर्भर हो चुकी थी। सिर्फ 15 दिन हुए हैं और अब बिल्कुल भी दर्द नहीं है, कमर में जरा भी दर्द नहीं है। इतना शक्तिशाली है ये फौजी 360।
17: बिना सहारे के मैं 2 कदम भी नहीं चल पाती थी, पूरे समय बहू और बेटे की मदद ही लेनी पड़ती थी। पर जब से ये फौजी 360 लिया है, कमर में घुटने में जरा भी दर्द नहीं है। अब सीढ़ियां चढ़ जाती हूँ, उतर जाती हूँ, चल लेती हूँ आराम से, इधर का सारा काम कर लेती हूँ। अब दर्द में पूरी तरीके से राहत है।
18: मेरी उम्र 88 साल है, रोज 5 किलोमीटर पैदल चलता हूँ, लेकिन फिर भी जरा भी दर्द नहीं है। ये शक्ति है फौजी 360 की।
0: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
1: 1 साल पहले दोनों घुटने बदलने के लिए बोन दिया था, मगर मैंने घर बैठे आयुर्वेद के एक फॉर्मूले से अपने घुटने और जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक किया है, और अब मैं वो सब कर सकता हूँ जो जवान आदमी भी नहीं कर सकता। आप में दम हो, आप करके बताओ। जोड़ों के दर्द के लिए जो भी लोग तेल या स्प्रे लगाते हैं ना, उन्हें आज से ही ये सब बकवास चीजें बंद करना चाहिए। इससे कुछ नहीं होता है, क्योंकि जोड़ों के दर्द का इलाज अंदर से होता है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में, यानी घुटने, कमर, कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
0: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है, और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है, और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
2: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
3: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैंने जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है। अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
0: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
6: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने का।
0: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 अपने घर मंगा सकते हैं।
19: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
20: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
21: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
22: Sage University, transforming your passion into profession. TIT Bhopal, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
23: महंगाई के मोर्चे पर राहत की खबर, नायरा एनर्जी ने पेट्रोल डीजल के दाम घटाए, पेट्रोल 5 रुपए, डीजल 3 रुपए प्रति लीटर हुआ सस्ता, आज से कई वित्तीय नियम भी बदले। अमरनाथ के लिए कल जम्मू बेस कैंप से रवाना होगा पहला जत्था, ऑपरेशन शिवा की सुरक्षा में

0: मुंबई में जमकर बरस रहे मानसूनी बादल, शहर से ज्यादा निचले इलाकों में बरस रहा पानी, दक्षिण मुंबई के कई इलाकों में भरा पानी। जम्मू कश्मीर में पीर की गली बनी सैलानियों की पहली पसंद, बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं सैलानी और श्रद्धालु, प्रकृति के बीच कुदरत का कर रहे हैं दीदार।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
0: बाबा बर्फानी की पवित्र यात्रा की तैयारियां पूरी, 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा का हो रहा है शुभारंभ। जम्मू से कल रवाना होगा बाबा बर्फानी के भक्तों का पहला जत्था, एलजी मनोज सिन्हा दिखाएंगे हरी झंडी। अमरनाथ यात्रा को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह, बड़ी संख्या में अमरनाथ बेस कैंप पहुंचे श्रद्धालु, जमकर लगाए जयकारे। अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए लगाए गए 650 सुरक्षा बल की कंपनियां। इस बार 57 दिनों तक चलेगी अमरनाथ यात्रा, 28 अगस्त तक हो सकता है समापन। ऑपरेशन शिवा की सुरक्षा में होगी अमरनाथ यात्रा, जमीन से लेकर आसमान तक बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था तैनात। हर पड़ाव और हर रास्ते से लेकर सभी संवेदनशील इलाकों पर सुरक्षा एजेंसियों के पैनी निगाह, बिना किसी भय के बाबा के दर्शन कर सकेंगे भक्त। NH-44 पर Valley Q-80 यानी वैली क्विक एक्शन टीम के जवान तैनात, इसी रास्ते से होकर गुजरेगी अमरनाथ यात्रा के यात्री। ऊंचे पहाड़ी इलाकों और जंगलों में ड्रोन के जरिए भी की जा रही है निगरानी, करीब 670 से ज्यादा अर्धसैनिक बलों की कंपनियां भी तैनात। अमरनाथ यात्रा से पहले सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद, बालताल रूट पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने फायर एंड इमरजेंसी सर्विस और दूसरी संबंधित एजेंसियों के साथ मिलकर की मॉकड्रिल। हिमाचल प्रदेश के नैना देवी शक्तिपीठ धाम में आस्था का महाउत्सव, दर्शन पूजन के लिए भारी तादाद में पहुंच रहे श्रद्धालु। पिछले 3 दिन के दौरान करीब 1 लाख श्रद्धालु नैना देवी मंदिर पहुंचे, सुबह से ही मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले की खूबसूरत वादियों में है नैना देवी शक्तिपीठ धाम, दर्शन गर्मी की छुट्टियों के चलते श्रद्धालुओं की संख्या में बड़ी बढ़ोतरी। पंजाब हरियाणा दिल्ली समेत कई राज्यों से नैना देवी धाम पहुंचे श्रद्धालु, दर्शन पूजन के साथ साथ शिवालिक पर्वत के सुहाने मौसम का भी ले रहे हैं आनंद। नैना देवी शक्तिपीठ धाम में श्रद्धालु की सुविधा के लिए किए गए हैं खास इंतजाम, आगामी दिनों में भी श्रद्धालु की संख्या बढ़ने की संभावना। मुंबई में हुआ गणेश उत्सव की तैयारियों का शुभारंभ, सितंबर महीने की 14 तारीख से शुरू होगा महाराष्ट्र का सबसे बड़ा त्यौहार गणेश उत्सव। गणेश जी की प्रतिमा बनाने वाले कार्यशालाओं की बड़ी रंगत, बप्पा की विशाल मूर्तियां अभी से लेने लगी हैं आकार। राज्य भर के बड़े गणेश पंडालों ने अभी से दिए गणपति के भव्य और विशाल प्रतिमाओं के ऑर्डर, हर साल अलग अलग थीम लेकर बनाए जाते हैं ये पंडाल। बौद्ध गया में विश्व का अनोखा शांति स्तूप असलहु के अवशेषों से बना है ये स्तूप, श्रीलंका से लाया गया है भारत। पीतल के परत से ढका स्तूप विश्व को शांति का दे रहा है संदेश, 33 सालों तक श्रीलंकाई सेना और लिट्टे के बीच स्तूप के लिए हुआ था गृह युद्ध। महाराष्ट्र के वाशिम में गजानन महाराज की पारंपरिक शोभा यात्रा का उत्सव, जयकारों के साथ हुआ आगमन। गजानन महाराज की पालकी के दर्शन के लिए हजारों की तादाद में पहुंचे श्रद्धालु, जगह जगह शोभा यात्रा का किया गया स्वागत। गजानन महाराज की पालकी के दर्शन के लिए पहुंचे भक्तों के लिए किया गया महाप्रसाद का आयोजन, बेसन के 40,000 लड्डू बनाए गए। हजारों श्रद्धालुओं के लिए महाप्रसाद बनाने के लिए होती है विशेष तैयारी। बेसन रोटी और चावल के साथ दिया जाता है लड्डू का प्रसाद। बुल्डाना के शेगांव से निकलती है गजानन महाराज की पालकी। 750 किलोमीटर का सफर तय करते हुए आषाढ़ी एकादशी पर पहुंचते हैं पंडरपुर। उज्जैन में बाबा महाकाल की उतारी गई विशेष भस्म आरती। बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए इसमें शामिल। जलाभिषेक के बाद भगवान महाकाल का किया गया भव्य दिव्य श्रृंगार। भक्तों ने लगाए हर हर महादेव के जयकारे।

0: पेट्रोल 5 रुपए, डीजल 3 रुपए प्रति लीटर हुआ सस्ता। देश में कमर्शियल सिलेंडर की कीमतें 183 रुपए तक घटी, 5 किलो का छोटू सिलेंडर भी हुआ सस्ता। आज से बदल गए आम आदमी की जेब और खर्चों से जुड़े 6 प्रमुख वित्तीय नियम। पासपोर्ट फीस में हुई बढ़ोतरी, आधार ईमेल अपडेट, क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड लाउंज एक्सेस शामिल। आज से नए डिजिटल प्लेटफॉर्म ईपीएफओ 3.0 के लॉन्च की उम्मीद। इस सुविधा से ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स यूपीआई के जरिए निकाल सकेंगे अपने पीएफ का पैसा। आज से 31 दिसंबर 2026 तक आधार कार्ड में रजिस्टर्ड ईमेल आईडी अपडेट कराना हुआ फ्री। पहले इस काम के लिए लगता था 75 रुपए का शुल्क। अब पासपोर्ट बनवाना हुआ महंगा। आज से 36 पेज वाले सामान्य पासपोर्ट की फीस 1500 रुपए से बढ़ाकर हुई 2500 रुपए। तत्काल पासपोर्ट बनवाने के लिए लगेगी 5000 रुपए की फीस। रेलवे यात्रा के नियम भी अब हो सकते हैं सख्त। इसके तहत बिना टिकट यात्रा करने वालों पर लगाया जा सकता है पहले से ज्यादा जुर्माना। सैलानियों से गुलजार हुआ पुंज, बड़ी संख्या में पीर के गले पहुंचे सैलानी। गांधीनगर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन की नई इमारत के शिलान्यास हुआ, सीएम भूपेंद्र पटेल ने किया भूमि पूजन। उज्जैन में महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय के 6ठे दीक्षांत समारोह का हुआ आयोजन, राज्यपाल मंगूभाई पटेल इसमें हुए शामिल। कन्नूर में सांसद शफी परम्पिल ने स्नेह विदु की चाबियां लाभार्थियों को सौंपी, लोगों के चेहरे खिले। अगरतला में साइबर सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने पर राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित, बड़ी संख्या में लोग हुए इसमें शामिल। बड़गांव रेलवे स्टेशन पर एसडीआरएफ और सुरक्षा बलों ने आपातकालीन तैयारियों के लिए किया मॉक ड्रिल। आतंकवादी हमले, आपात स्थिति, आपदा से निपटने के लिए बलों ने तैयारी को परखा, मॉक ड्रिल में जवानों ने आपसी तालमेल को परखा। पुंछ में आगामी मॉनसून के मौसम को लेकर सुरक्षा बलों ने किया मॉक ड्रिल, आपदा की तैयारियों को जांचने के लिए किया गया यह अभ्यास। अचानक आई बाढ़, भूस्खलन और हादसों के समय लोगों को सुरक्षित निकालना है इसका मकसद, त्वरित राहत पहुंचाने की क्षमता को जवानों ने परखा। बाढ़ के दौरान पानी में फंसे लोगों को रस्सी और विशेष उपकरणों की मदद से सुरक्षित बाहर निकालने का किया अभ्यास, एसडीआरएफ सीआरपीएफ पुलिस के जवानों इसमें शामिल।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
2: सास बहू और बेटियां में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में शादी में लगेगा ट्विस्ट का तड़का। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

सभी भाइयों और बहनों को बाबा रवि गिरी का स्नेहिल आशीर्वाद। तो भाइयों और बहनों, मेरा नाम बाबा रवि गिरी है। मैं 78 साल का हूं और पिछले 50 वर्षों से सिर्फ एक ही कार्य कर रहा हूं, प्राकृतिक शुद्ध और गारंटेड इलाज देना। मैंने जीवन के पूरे 78 साल देखे हैं और उनमें से 50 साल केवल एक ही सेवा में लगे हैं, आयुर्वेद के माध्यम से रोगों का इलाज करना। आज हम एक ऐसी पीड़ा पर चर्चा करेंगे जो न बोले तो भीतर से जलाती है

0: और बोले तो लोग हंसते हैं, और उसका नाम क्या है? बवासीर। अरे भाई और बहनों, ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये शरीर का रोग है। और जैसे सिर में दर्द होता है, वैसे ही गुदा में भी रोग हो सकता है। और सबसे ज़्यादा लोग मेरे पास में बवासीर की बीमारी के लिए ही आते हैं, क्योंकि ये रोग न तो उम्र देखता है, न पैसा देखता है, न पद या ओहदा देखता है। बस जब होता है तो इंसान को नाक में दम कर देता है। जलन, दर्द, खून आना, बैठ भी ना पाए, मैंने खुद देखा है लोगों को रोते हुए। और तभी मैंने ठान लिया था बवासीर का इलाज निकालूंगा, ऐसा इलाज जो बवासीर वापस ना हो। मैंने जड़ी बूटियों को परखा, हजारों नुस्खे आजमाए, और फिर तैयार की एक ऐसी औषधि जो आज मैं गर्व से कहता हूँ गारंटी से बवासीर को ठीक करती है। तो भाइयों और बहनों, आपने पाइल्स के बहुत सारे इलाज कराए होंगे, कई दवाइयाँ खाई होंगी, लेकिन आपकी बवासीर ठीक नहीं हुई होगी। मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूँ कि आपकी पुरानी से पुरानी पाइल्स ठीक होगी, और ये मेरी गारंटी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको खूनी बवासीर है या बादी बवासीर। एक हफ्ते में आराम और 21 दिन में बीमारी जड़ से खत्म, ना ऑपरेशन ना साइड इफेक्ट। मैंने ये दवा उन्हीं जड़ी बूटियों से बनाई है जिन्हें हमारे ऋषि मुनियों ने आजमाया था, और आज देश भर से लोग फोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बाबा जी, आपने तो हमें एक नया जीवन दान दे दिया है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ, इलाज चाहिए तो आयुर्वेद अपनाओ, और अगर गारंटी इलाज चाहिए तो मेरे 50 वर्षों के अनुभव लो। नहीं फायदा हुआ तो पैसे वापिस, इतना भरोसा है मुझे अपने इलाज पर। तो भाई और बहनों, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि बवासीर क्या होती है और क्यों होती है। बवासीर क्या है? हमारे मल द्वार या एनस जिसको बोलते हैं, एनस के अंदर या फिर बाहर छोटे छोटे रक्त वाहिकाएं या ब्लड वेसल होती है, जो कभी कभी सूज जाती है, फूल जाती है और धीरे धीरे मांस जैसा बाहर निकलने लगता है। इसी को हम आम भाषा में कहते हैं बवासीर या पाइल्स। अगर इन सूजी हुई नसों से खून निकलने लगे तो उसे कहते हैं खूनी बवासीर, और अगर सिर्फ मांस बाहर निकलता है, जलन, दर्द और खुजली होती है, तो वो कहलाती है बादी बवासीर। अब सवाल आता है कि ये होती क्यों है? तो सुनिए, इसके मुख्य कारण है कब्ज। अगर पेट साफ नहीं होता, मल सख्त आता है और रोज जोर लगाना पड़ता है, तो धीरे धीरे नसें फूल जाती है। दूसरा, लंबे समय तक बैठना। जो लोग घंटों बैठे रहते हैं ऑफिस में गाड़ी चलाते हुए या फिर मोबाइल पर, तो उनमें रक्त संचार घटता है और नसों पर दबाव पड़ता है। तीसरा कारण है तीखा और भारी खाना खाना। बहुत ज़्यादा लोग क्या होते हैं कि मिर्ची मसाले, तली चीज़ें और कम पानी, ये शरीर को गर्म करते हैं और अंदर जलन पैदा करते हैं। चौथा कारण होता है वंशानुगत कारण, जिसको जेनेटिक्स बोलते हैं। अगर आपके घर में माता पिता को बवासीर रही है तो संभावना बढ़ जाती है कि आपको भी हो सकती है। यह रोग सिर्फ शरीर को नहीं, इंसान की आत्मा तक को थका देता है। लेकिन इसके अलावा भी कई कारण हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जिसका आहार संतुलित नहीं है, उसका कुछ भी संतुलित नहीं हो सकता। आयुर्वेद के अनुसार आहार ही सभी रोगों की जड़ का मुख्य कारण है। फिर जीवन शैली और पाइल्स यानी बवासीर तो मुख्य रूप से आहार से संबंधित है। आहार और विचार दोनों आपके शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विचार से अभिप्राय है, जीवन शैली से है, पर लोगों की इसी अनियमितता को देखते हुए मैंने कुछ खास जड़ी बूटियों का मिश्रण तैयार किया है बवासीर यानी पाइल्स के लिए। बवासीर के मेरे पास बहुत से मरीज आते हैं, कई तो दो तीन बार ऑपरेशन करवा चुके होते हैं फिर भी कोई आराम नहीं होता। वो इतनी आस लेकर आते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। बवासीर का मेरे पास एक बहुत ही कारगर फार्मूला है जो मैंने अब कुडोस आयुर्वेदा से बनवाया है। बवासीर एक बहुत ही कॉमन आम समस्या बन गई है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है पाइल्स होने के चांसेस भी एक व्यक्ति में बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम अपना पूर्ण रूप से ध्यान नहीं रख पाते हैं। और एक बात याद रखो, तनाव भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे गुस्सा आना, काम का तनाव, नींद पूरी ना होना, ये सब पेट को खराब करते हैं और पेट की गड़बड़ी बवासीर को बुलाती है। मैंने देखा है लोग बवासीर से पीड़ित होते हैं पर डॉक्टर के पास जाने में डरते हैं। औरतें तकलीफ सहती है पर परिवार से भी नहीं कह पाती, और फिर जब हालात गंभीर हो जाते हैं तो ऑपरेशन कराना पड़ता है। पर संतों का ये कहना है, रोग को समझो, शरीर की पुकार सुनो और जीवन शैली सुधारो। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे बताए हुए नुस्खे अपनाओ और बवासीर को जड़ से खत्म करो। ये मेरी गारंटी है कि आपको जल्दी आराम मिलेगा, ये कोई मामूल। लेकिन उससे पहले इसका सही पहचानना जरूरी है। अगर ये लक्षण आपको दिखें, खून आना, सूजन होना, खुजली या जलन, मांस का टुकड़ा सा बाहर निकल आना, तो समझ लीजिए ये बवासीर की दस्तक है और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बाबा रविगिरी हूं ना, आयुर्वेद में ऐसे ऐसे नुस्खे हैं जिनसे बवासीर जड़ से ठीक हो जाती है। पर पहले रोग को जानो, स्वीकार करो, फिर उपचार करो। ये लाइलाज नहीं है और आयुर्वेद में इसका स्थायी समाधान है। मैंने खुद देखा है हजारों लोगों को इससे मुक्ति पाते हुए। तो भाइयों और बहनों, यहां मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जिसे बहुत ध्यान से सुनना है। हर रोग का है समाधान जब हो मन में विश्वास का ध्यान। आयुर्वेद की राह पकड़ो, बिना डर के जीवन जियो। तो भाइयों और बहनों, मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पाइल्स की दिक्कतों को मैं जड़ से खत्म कर सकता हूं। अगर मेरे बताए गए नुस्खे अपनाते हो तो खुद आप बदलाव महसूस करोगे। अब हम बात करेंगे इलाज की। मेरे ये योगों में हरड़, जीरा, काली मिर्च, पीपली, मूल, चित्रक, छव्य, सूर्णकंद, अपामार्ग, अमलतास और बहुत कुछ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं हरड़ के फायदे। ये हरड़ है, औषधीय गुणों से भरपूर है। हरड़ के आयुर्वेद में चमत्कारिक फायदे बताए गए हैं। सेलेनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, विटामिन, प्रोटीन, जीवाणु रोधी, एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर है ये हरड़। बवासीर की बीमारी को दूर करने में बेहद असरदार साबित हुई है। जीरा जो छोंक में यूज करते हैं, ये वही जीरा है। ये कब्ज हो चाहे बवासीर हो, इन सब में बहुत कारगर है। बवासीर का असली कारण खाना अच्छी तरह से न पचना और कब्ज का हो जाना होता है। जीरा लीवर से एंजाइम्स बनाकर खाने को पचवाता है, अपच को दूर करता है और सख्त लैटिन को मुलायम करता है। अगला है काली मिर्च, जो पाचन क्रिया को मजबूत करती है। इसके बाद में है पीपली मूल, ये आंतों में अगर कीड़े हैं तो उनको खत्म करता है, आंतों में सूजन को खत्म करता है। इसके बाद में है चित्रक, चित्रक की रेचिन प्रकृति मानी गई है, यह एक नेचुरल लैक्सेटिव है जो रेटिन को धक्का मारता है, आंतों में पड़ा नहीं रहने देता, रेचन करने वाला है। इसके बाद में है सूरन कंद, यह है सूरन कंद, ये एक प्रोबायोटिक है और पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है। और यह है अपामार्ग, क्षार सूत्र की असली जड़ी बूटी है ये, इसमें सूजन घटाने वाले तत्व है जो बवासीर के मसों को शरीर से काट देते हैं। इसके बाद में है ये अमलतास, अमलतास पर बड़े शोध हुए हैं बड़ी बड़ी लेब में, और पता चला है कि इसमें प्रस्तुत है एंथ्राक्विनोनेज जो बवासीर पर काम करता है, पाचन शक्ति को मजबूत और जड़ पर काम करती है और बवासीर को जड़ से खत्म कर देती है। इसके बाद में है लज्जालू, लज्जालू पर जनरल ऑफ आयुर्वेद ने बताया है कि खूनी बवासीर पर चमत्कारित काम करता है, चाहे कोई भी डिग्री का बवासीर हो सब पर ये काम करता है। इसके बाद में है कचनार, कचनार की छाल काम दिया करती है, ये सूजन को घटाता है, बवासीर में कब्ज को काटता है, आंतों की सूजन को घटाता है, शरीर को विष हरण करता है और शुद्ध करता है। ये है निर्गुंडी, ये वातनाशक है, वात बढ़ने के कारण सूजन हो जाती है मसों में, ये निर्गुंडी जो है ये वात को शमन करके सूजन को घटाता है और मसों का नाश कर देता है। आखिर में यह है इंद्रायन, यह है इंद्रायन की जड़, इसके अंदर फ्लेवोनाइड्स, बेंजोइक एसिड, गैलिक एसिड, ये सारे गुण इसमें होते हैं जो बवासीर में आराम देते हैं। तो ये जितनी भी मैंने जड़ी बूटियां आप देख रहे हो मैंने बताई है, ये सब मिलाकर मैंने बवासीर के लिए एक नुस्खा तैयार किया है और मैंने हजारों लोगों को इस पीड़ा से मुक्ति दिलाई है, बिना ऑपरेशन, बिना किसी साइड इफेक्ट, सिर्फ शुद्ध और आयुर्वेदिक नुस्खों से। मेरे बताए नुस्खे अपनाओ, रोज नियम से इन्हें निभाओ, बवासीर को जड़ से मिटाओ, फिर लौट के कभी ना आए वो दर्द पुराना। और हाँ, खान पान में संयम जरूर रखिए, मिर्च मसाले कम, पानी ज़्यादा। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर आपने मेरे बताए हुए नुस्खे नियम से अपनाए तो बवासीर जड़ से ख़त्म हो जाएगी और फिर दोबारा लौट कर नहीं आएगी। तो अब ऑपरेशन नहीं, अपनाओ रविगिरी के नुस्खे और कहो बवासीर तुझे जड़ से अलविदा। अब देर मत करो, मुझे तुरंत संपर्क करो और ये आयुर्वेदिक दवाई मंगवाओ ताकि बवासीर को हमेशा के लिए अलविदा कह सको। अब मैं भी आपसे इजाजत चाहूंगा, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम।
1: Hey, it's Stormy, and previously on my show, Riley Green shared that he's motivated to make more music as he sees his audience size grow while he's on tour.
2: You know, when I started out, I was very southeastern. You know, I was down there in Alabama, and I've gone to a lot of places that I've never been. It's kind of motivation for me to keep writing music and keep traveling because there's country music fans everywhere.
1: Listen to the Stormy Warren Show on the Big 615 weekdays 7 a.m. to 1 p.m. Central right here on TuneIn.
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.IN।
10: दिल्ली नगर निगम को हाईकोर्ट का आदेश, नालों और खुले में कचरा फेंकने वालों पर 500 रुपए का जुर्माना नाकाफी, 5000 करने का दिया प्रस्ताव, कहा कार्रवाई करने में ना हिचकिचाएं। नए आर्मी चीफ धीरज सेठ को साउथ ब्लॉक में दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर, वॉर मेमोरियल पर जाकर शहीदों को किया याद। महंगाई के मोर्चे पर राहत की खबर आई सामने, नायरा एनर्जी के 7000 पंपों पर पेट्रोल 5 रुपए और डीजल 3 रुपए सस्ता, कमर्शियल सिलेंडर की कीमतें 183 रुपए तक घटी। चमोली स्थित फूलों की घाटी में पहुंचे रिकॉर्ड पर्यटक, अब तक 7000 से अधिक सैलानियों ने किया इसका दीदार, पिछले साल के मुकाबले 1.5 गुना बड़ी संख्या।

मुंबई में जमकर बरस रहे मानसूनी बादल, शहर से ज्यादा निचले इलाकों में बरस रहा पानी, दक्षिण मुंबई के कई इलाकों में भरा पानी। अमरनाथ के लिए कल जम्मू बेस कैंप से रवाना होगा पहला जत्था, ऑपरेशन शिवा की सुरक्षा में होगी अमरनाथ यात्रा, 57 दिन तक चलेगी ये यात्रा।

नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और जीएनटी स्पेशल की शुरुआत बम बम भोले के जय घोष के साथ। देखिए, बाबा बर्फानी के पावन धाम की ओर आस्था का सबसे बड़ा कारवां निकलने को तैयार है। इस शुक्रवार से शुरू हो रही पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर पूरे जम्मू कश्मीर में उत्साह अपने चरम पर है। देश के कोने कोने से श्रद्धालु जम्मू पहुंचने लगे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से श्रद्धालुओं में उत्साह जो है वो देखते ही बन रहा है। कोई माथे पर तिलक लगाए हैं तो कोई हाथों में तिरंगा और भोलेनाथ का ध्वज लिए बाबा के दर्शन की आस में आगे बढ़ रहा है। जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से लेकर बालटाल और पहलगाम मार्ग तक हर तरफ सिर्फ एक ही रंग दिखाई दे रहा है, भोले की भक्ति का रंग। लंगरों में सेवा का भाव है, शिव भक्तों में अपार उत्साह है और हर चेहरे पर बाबा बर्फानी के दर्शन की अधीर प्रतीक्षा साफ नजर आ रही है। देखिए, मान्यता है कि बाबा अमरनाथ के दर्शन से जीवन धन्य हो जाता है। यही वजह है, यही कारण है कि कठिन पर्वतीय रास्ता, मौसम की चुनौतियों, उसकी दुश्वारियों और लंबी यात्रा भी श्रद्धालुओं के उत्साह को कम नहीं कर पाती है। इस बार यात्रा सिर्फ आस्था का ही नहीं बल्कि सुरक्षा और व्यवस्थाओं का भी बड़ा उदाहरण बनने जा रही है। देखिए, यात्रियों की सुरक्षा के लिए अभूतपूर्व इंतजाम किए जा रहे हैं। यात्रा मार्ग से लेकर बेस कैंप तक, सड़क से लेकर आसमान तक, लू को 10 लड़क से लेकर आसमान तक और संवेदनशील इलाकों से लेकर पवित्र गुफा तक सुरक्षा एजेंसियां 2400 घंटे अलर्ट मोड पर हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस वर्ष यात्रा पर आने वाले हर पंजीकृत श्रद्धालु को 10 लाख रुपए का बीमा कवर भी दिया जा रहा है। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए देश भर से श्रद्धालुओं का उत्साह अपने चरम पर है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि यात्रा पूरी तरह सुरक्षित और निर्बाध कैसे रहे। इसी चुनौती से निपटने के लिए सुरक्षा एजेंसियों ने जमीन से लेकर आसमान तक अभेद सुरक्षा कवच तैयार कर दिया है, यानी घाटी के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती है।

0: नजर दुश्मन पर, उंगली ट्रिगर पर। एक पल की ढील नहीं, एक कदम की चूक नहीं। अगर किसी ने घुसपैठ की कोशिश की तो जवाब पल भर में मिलेगा। बालटाल हो या पहलगाम, बाबा बर्फानी के धाम तक जाने वाले हर रास्ते पर सीआरपीएफ के कमांडो पूरी ताकत के साथ तैनात हैं। कदम से कदम मिलाकर हर मोर्चे पर एक जैसी रफ्तार, एक जैसा तालमेल और एक ही लक्ष्य, यात्रा की अभेद्य सुरक्षा। सड़क से जंगल तक, पहाड़ से आसमान तक, हर दिशा पर सुरक्षा बलों की पैनी नजर है। इन जवानों की मुस्तैदी ही अमरनाथ यात्रा की सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि घाटी में शुरू हो चुका है ऑपरेशन शिवा।
1: गृह मंत्रालय ने अलग अलग स्थानों पर मीटिंग करके जो तैयारी की है उसके मुताबिक 670 से ज्यादा अर्धसैनिक बलों की कंपनियां जो बालटाल रूट और पहलगाम रूट में तैनात की गई हैं। वहीं दूसरी तरफ वैली क्यूएटी के जो कमांडोज हैं वो आप सड़कों पर देख सकते हैं कि सुरक्षा के किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं। ये कमांडोज जो खतरनाक हथियार हैं उससे तो लैस ही हैं, साथ ही अगर किसी भी तरीके की आतंकी घटना होती है तो उससे निपटने के लिए ये तमाम कमांडो जो हैं वो एक्शन में इस वक्त दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ मैं श्रीनगर में मौजूद हूँ और जो ये रास्ता बालटाल के लिए जाता है, इस रास्ते में ऐसे ही चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ मार्क्समैन जो व्हीकल है उसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है, बुलेट प्रूफ गाड़ी है और 360 इससे चारों तरफ जो कमांडो इसमें बैठे हुए हैं वो देख सकते हैं। इसका सीधा मकसद यह है कि सुरक्षा का कड़े इंतजाम इस बार सिक्योरिटी फोर्सेज ने अमरनाथ यात्रा को लेकर के किया है। 3 जुलाई से चलने वाली ये अमरनाथ यात्रा 28 अगस्त तक चलेगी और इसके लिए जो कड़े इंतजाम किए गए हैं उसमें सिक्योरिटी फोर्सेज के तमाम कमांडो आप देखिए कि सड़कों पर लगे हुए हैं और हर एक गाड़ियों की चेकिंग भी होती है और इसके साथ साथ सुरक्षा के कड़े इंतजाम इनके द्वारा किए गए हैं।
0: इस बार अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा अभूतपूर्व है। 670 से ज्यादा अर्धसैनिक बलों की कंपनियां सुरक्षा में तैनात हैं। किसी भी खतरे से निपटने के लिए कमांडो लगातार गश्त कर रहे हैं। उनके साथ हैं अत्याधुनिक बुलेट प्रूफ वाहन जो हर चुनौती का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और अर्धसैनिक बलों के बीच बेहतरीन तालमेल है। हाईवे से लेकर रेलवे स्टेशन, बेस कैंप से लेकर संवेदनशील इलाकों तक हर जगह सुरक्षा का मजबूत घेरा बनाया गया है। रोज यात्रा शुरू होने से पहले पूरे रूट का सैनिटाइजेशन होगा और चप्पे चप्पे की गहन तलाशी ली जाएगी।
1: किस तरीके की तैयारियां इस बार अमरनाथ यात्रा को लेकर के की गई?
2: अमरनाथ यात्रा को ध्यान में रखते हुए वैली क्यूएटी पूरी तरह से कृत संकल्पित है और यहां पे जितने भी एंटी टेररिज्म ऑपरेशन, काउंटर फिदाइन ऑपरेशन, स्मॉल टीम ऑपरेशन, कोवर्ट ऑपरेशन, ये सभी तरह के ऑपरेशन वैली क्यूएटी के द्वारा संपादित की जा रही है ताकि किसी भी तरह की अनहोनी घटना न हो और किसी भी आतंकवादी संबंधी घटना को निगेट किया जा सके, और इसके लिए पूरी तरह से वैली क्यूएटी कृत संकल्पित है।
1: इसके साथ ही ड्रोन से भी निगरानी जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर किया जा रहा है, साथ ही फेसियल रिकॉग्निशन कैमरे भी अलग अलग जगहों पर लगाए गए, तो उसके लिए क्या तैयारियां की?
2: ड्रोन के द्वारा जो हमारे महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान हैं, जो NH44 के दोनों तरफ के जो एरिया हैं, जो संवेदनशील अति संवेदनशील एरिया हैं, उसको ड्रोन के द्वारा निगरानी की जा रही है। साथ ही साथ जो फेस रिकॉग्निशन कैमरा है, जो ऐसे जगहों पे जहां पे यात्रियों की भीड़ ज्यादा होती है वहां पे फेस रिकॉग्निशन कैमरा के माध्यम से उनकी पहचान की जाती है ताकि उनकी एक्चुअल पहचान स्थापित की जा सके, वेरीफाई किया जा सके। तो हर तरह से जो है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और इसकी स्पेशल कमांडो यूनिट वैली क्यूएटी कृत संकल्पित है कि ये किसी भी तरह की अनहोनी घटना न हो और इस बार अमरनाथ यात्रा बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से, अच्छे तरीके से सम्पन्न हो सके।
0: पहाड़ों की ऊंचाई, जंगलों की आड़, आतंकियों की यही पुरानी रणनीति रही है, लेकिन इस बार सुरक्षा बल उससे भी दो कदम आगे हैं। वैली क्वेट ड्रोन के जरिए जंगलों, पहाड़ियों और सुनसान इलाकों पर लगातार नजर रखी जा रही है, यानी खतरा दिखने से पहले ही उसे पहचानने और खत्म करने की तैयारी पूरी है।
1: बालटाल और पहलगाम रूट के जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ी इलाके हैं, उन इलाकों में इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के जरिए भी नजर रखी जा रही है। जी हाँ, इस ड्रोन का इस्तेमाल इस वक्त पहाड़ी इलाकों में किया जा रहा है, जिससे ये पता चल सके कि ऊंची ऊंची पहाड़ियों में किस तरीके से कोई संदिग्ध व्यक्ति तो वहां पर मौजूद नहीं है। इसके साथ ही कमांडोज को भी यहां सड़कों पर तैनात किया गया है, जिसका सीधा मकसद यह है कि ऐसे एक तरफ इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के जरिए जहां नजर रखी जाए, तो वहीं दूसरी तरफ सड़कों पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में कमांडोज मौजूद हों, जिससे कि सुरक्षा का एहसास लोगों के बीच में हो सके। तो वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी व्यवस्था इस बार ये की गई है कि सीसीटीवी कैमरे हर एक अमरनाथ यात्रा रूट पर लगाए गए हैं। अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति उस इलाके में पहुंचता है तो उसको फेशियल रिकॉग्निशन के जरिए नजर रखी जा सके और कंट्रोल रूम से सीधे वहां पर इंफॉर्मेशन आ सके।
2: ड्रोन को हम 500 मीटर हाइट पे और 5 किलोमीटर जो है दूरी पे इसकी मदद से नजर रखा जा सकता है।
1: इसके साथ ही इसको जो ऑपरेट आप करते हो, तो इसके फुटेज भी आप लोग सेव करके रखते हो कि अगर बाद में कहीं संदिग्ध गतिविधि दिखी तो उस पर नजर रखी जा सके।
2: जी सर, इसको जो है इसमें सर फोटो क्लिक और जो है वीडियो रिकॉर्डिंग दोनों होती है सर, जो बाद में हमें किसी भी जरूरत के समय पे हमें हेल्प करता है सर।
0: अमरनाथ यात्रा के दोनों मार्गों पर सुरक्षा का पहरा 24 घंटे जारी है, लेकिन निगरानी सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं है। श्रीनगर और खासकर डल झील पर भी सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट हैं। सीआरपीएफ की वाटर विंग जलमार्गों पर लगातार गश्त कर रही है ताकि किसी भी साजिश को पनपने का मौका न मिले।
1: सीआरपीएफ डल लेक की भी सुरक्षा यहां पर करती है, क्योंकि अमरनाथ यात्रा करने वाले जो यात्री हैं, वो यात्रा करने के बाद श्रीनगर के कई इलाकों में घूमने के लिए निकल जाते हैं, खासतौर पर डल लेक में। इसलिए जो सीआरपीएफ के कमांडोज हैं, ये पूरी तरीके से आप चारों तरफ देख रहे हैं कि डल लेक की सुरक्षा के लिए बड़े स्तर पर यहां पर व्यवस्था की गई है। यहां सीआरपीएफ के कमांडो 24 घंटे निगरानी करते हैं, क्योंकि यहां खतरा काफी रहता है, टूरिस्ट बहुत ज्यादा संख्या में आते हैं, साथ ही अमरनाथ यात्रा करने वाले यात्री भी इस पूरे इलाके में पहुंचते हैं। इस वजह से यहां पर जो सीआरपीएफ के कमांडोज हैं, वो ऐसे ही डल लेक में गश्त मारते हैं और गश्त के दौरान किसी भी संदिग्ध स्थिति को नजर उनके द्वारा रखा जाता है, जिससे कि किसी भी तरीके के जो यहां पर अगर कोई आतंकी घटना करने की कोशिश करता है या फिर किसी और तरीके की यहां पर स्थिति पैदा होती है, उससे बचाने के लिए तमाम सीआरपीएफ के कमांडो यहां पर मौजूद रहते हैं।
2: 24/7 लगातार पेट्रोलिंग चलती है, डल डोमिनेशन चलता है। डल में चूंकि बहुत तरह के हाउस बोट यहाँ पे लगे हुए रहते हैं, जिसमें सुरक्षा थ्रेट भी रहता है, जिस कारण से हम इस पूरे एरिया को डोमिनेट करते हैं। और हमारी ये जो ये वाटर बोट है और वाटर विंग के द्वारा और ये कमांडोज के द्वारा इसका लगातार डोमिनेशन किया जाता है, ताकि किसी भी तरह की अनहोनी घटना न हो।
0: लक्ष्य सिर्फ एक, अमरनाथ यात्रा का हर श्रद्धालु सुरक्षित रहे, दुश्मन की हर साजिश नाकाम हो, इसी संकल्प के साथ जम्मू कश्मीर का हर जवान 24 घंटे मोर्चे पर डटा है। सुरक्षा के लिए अडिग, जवाबी कार्रवाई के लिए हर पल तैयार, यही है ऑपरेशन शिवा की ताकत।

देखिए, इस बार से सुरक्षा ही नहीं बल्कि श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा दोनों पर ही खास जोर दिया गया है। यात्रा पर निकलने से पहले नियम और सावधानियां जानना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है ये जानना कि इस बार प्रशासन ने श्रद्धालुओं के लिए क्या क्या नई व्यवस्थाएं की हैं।

0: बाबा के भक्तों का ये उत्साह यूं ही नहीं है। बाबा बर्फानी के दर्शनों की महिमा अपरंपार बताई गई है। भोले के भक्तों के लिए अमरनाथ यात्रा एक ऐसी कठिन साधना है जिसे आप शिवत्व को साधने की सबसे कड़ी तपस्या कह सकते हैं। बस कुछ घंटों बाद बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए पहला जत्था रवाना हो जाएगा। भक्त तैयार हैं तो प्रशासन ने भी यात्रा को सकुशल संपन्न करने की पूरी तैयारी कर रखी है। इस बार केवल सुरक्षा के कड़े इंतजाम ही नहीं किए गए हैं, बल्कि अमरनाथ यात्रा के दौरान सुविधाएं बढ़ाई गई हैं और कुछ नए नियम भी लागू किए गए हैं। अगर आप भी इस साल बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जा रहे हैं तो पहले जान लीजिए कि इस बार यात्रा में क्या बदला है और किन नियमों का पालन करना जरूरी है। अगर यात्रा के दौरान सुविधाओं की बात करें तो इस बार बालटाल से पवित्र गुफा तक पूरे रास्ते पर बिजली और लाइट की व्यवस्था की गई है, ताकि खराब मौसम या रात के समय भी श्रद्धालुओं को परेशानी न हो। ट्रैकिंग रूट को भी पहले से ज्यादा बेहतर बनाया गया है, जिससे कठिन चढ़ाई कुछ आसान हो सके। यात्रियों की सुविधा के लिए पोनी, पालकी और पोर्टर की प्री पेड बुकिंग शुरू की गई है, यानी अब तय किराए पर ही ये सेवाएं मिलेंगी। रहने की व्यवस्था भी पहले से बेहतर हुई है। बालटाल, नुनवान, श्रीनगर और चंद्रकोट के यात्री निवासों का विस्तार किया गया है। वहीं जम्मू में बने नए सेंटर में करीब 4,000 भक्तों को ठहरने की व्यवस्था की गई है।
1: जहां तक सुविधाओं की बात है तो यात्री निवास भवन में पीने का ठंडा पानी रखा गया है, फ्रिज लगे हुए हैं, साथ ही में बिजली जो है 2400 घंटों वहां है, शौचालय की व्यवस्था है, क्योंकि जम्मू में इस समय उमस भरी गर्मी है, इसीलिए जो एसीज हैं यात्री निवास भवन के कमरों के अंदर उनको सर्विसिंग उनकी कराई गई है। पंखे भी चेक किए गए हैं कि किसी पंखे में कोई दिक्कत तो नहीं है, तो उन पंखों की मरम्मत भी की गई है। यात्री निवास भवन में जो कमरे हैं उनकी साफ सफाई भी हो चुकी है, रंग रोगन भी हो चुका है, और जो श्रद्धालु यहां जम्मू शहर में अब पहुंच रहे हैं काफी व्याकुल हैं भगवान भोलेनाथ के दर्शनों के लिए।
0: अगर कोई श्रद्धालु ज्यादा थक गया है या बीमार है या फिर किसी कारण से रुकना पड़ रहा है तो यहां पर आराम कर सकता है। ये पूरी तरह से निःशुल्क होगा। जम्मू के तवी रिवर फ्रंट पर नया इंटीग्रेटेड फैसिलिटेशन सेंटर बनाया गया है। यहाँ रजिस्ट्रेशन, मेडिकल जांच, हेल्थ सर्टिफिकेट और दस्तावेजों की जांच जैसे सभी जरूरी प्रक्रियाएं एक ही जगह पूरी की जा रही हैं। इस बार अमरनाथ यात्रा के दौरान हर रजिस्टर्ड श्रद्धालु को RFID कार्ड दिया जा रहा है। इस कार्ड की मदद से प्रशासन यात्रा के दौरान हर यात्री की लोकेशन पर नजर रख सकेगा। किसी भी आपात स्थिति में तुरंत राहत और बचाव टीम मौके पर पहुंच सकेगी। एक तरफ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं बढ़ाई गई हैं, तो वहीं श्रद्धालुओं को भी कुछ नियमों का पालन करना होगा। मसलन अमरनाथ यात्रा के लिए पहले से रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। यात्रा में वही श्रद्धालु शामिल हो सकते हैं जिनकी उम्र 13 से 70 वर्ष के बीच हो। इस बार अधिकृत डॉक्टर से जारी कंपल्सरी हेल्थ सर्टिफिकेट यानी CHC भी जरूरी है। इसे श्रद्धालुओं को अपने साथ ही रखना होगा। बड़ी बात यह है कि रजिस्ट्रेशन कराने वाले सभी श्रद्धालुओं को इस बार 10 लाख तक का बीमा कवर दिया जाएगा। साथ ही अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की ओर से पंजीकृत यात्रियों को दुर्घटना बीमा कवर भी मिलेगा। जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: तो चलिए इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए GNT के साथ।

0: There's a wild world waiting on Earth Day 365. Hunt with predators. Dive with sharks. Explore the unexplored. From nature, science, and space. To premiere original series and exclusive IMAX theatre documentary films. Watch Earth Day 365 free now on the Roku channel.
1: I'm Pamela Anderson. Explore your world every day on Earth Day 365.
2: तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
8: तो चलिए इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं और अब आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे वीडियोस जो कि सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो आपको हंसाएंगे, कुछ गुदगुदाएंगे और कुछ आपको भावुक भी कर जाएंगे।
9: सोशल मीडिया पर वायरल ये तस्वीरें बता रही हैं कि आस्था उम्र से नहीं, सेवा के प्रति आपके जुनून से आंकी जाती है। इस सेवादार का जुनून भी उनकी आस्था की तस्दीक कर रहा है। वो धर्म की राह पर निकले लोगों की राह में जिस खुशी से फूल बिछा रहे हैं, वो साबित करता है कि उनकी आस्था की पैंट कितनी गहरी है। सोशल मीडिया पर फूल बरसाने और बिछाने का ये अंदाज यूजर्स को भावुक कर रहा है। इस बच्ची का एक्शन देखकर कौन कहेगा कि इसमें टैलेंट नहीं। इसके एक्शन सोशल मीडिया पर वायरल है। उसका बैकग्राउंड बता रहा है कि कैसी परिस्थितियों के बावजूद उसने अपनी प्रतिभा को जीवित रखा है और वो अभ्यास कर रही है। इस बच्ची का जुनून देखकर लोग इस पर अपना प्यार बरसा रहे हैं। सोशल मीडिया पर चैन की एक घड़ी होटल में सीनियर सिटीजन्स की हर पल का आनंद लेते हुए तस्वीर लोगों को खूब पसंद आ रही है। शांत सुंदर जगह पर होटल के ये सीनियर गेस्ट जिंदगी का जश्न मना रहे हैं। हर तरफ उनके हंसी मजाक, संगीत और यादगार पल होटल में एक अजब माहौल पैदा करता है। उनके आराम और मस्ती भरे पलों को देख हर किसी को आनंद आ रहा है। इन तस्वीरों में ये बच्ची दुनिया को सिखा रही है प्यार की भाषा। खुद ही देखिए कैसे वो इस बेजुबान डॉग को भाव विभोर होकर प्यार से बुलाते हुए बैठ जाती है और डॉगी भी बिना किसी संचय के उसकी ओर चला आता है, उसकी गोद में सिर रख लेता है। दोनों का ये अबोला प्रेम बता रहा है कि सिर्फ एक ही भाषा हर कोई समझता है और वो है प्यार की भाषा। अब इन वायरल तस्वीरों को देखिए जिन्हें देख हर कोई इनका फैन बन गया है। बैंड बाजे की धुन पर लग रहा है मानो किसी बतख की बारात है जिसमें दूल्हा बतख को एक शख्स ने हाथ में ऊपर उठाया हुआ है और बाकी बतखें बैंड बाजे की धुन पर एक सीध में इस बारात में चली जा रही हैं। बतखों की ये बारात देख हर किसी को शोर में भी इनका अनुशासन भा रहा है। जाहिर है इंसानों की बारातें कम से कम इन बतकों से सड़क पर चलने की सीख ले ही सकती है।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
10: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में शादी में लगेगा ट्विस्ट का तड़का। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।
11: Hey, this is Harry Douglas from Freddie and Harry. Stay on top of the MLB season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league. Right field, and it will... From the first pitch of the season to the stretch run.
12: And that's the ball game.
11: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch selective live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
5: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर। जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
12: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
12: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
12: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुन्नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे
13: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। टीआईटी भोपाल, जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स।
8: दिल्ली नगर निगम को हाईकोर्ट का आदेश, खुले में कचरा फेंकने वालों पर जुर्माना 5,000 करने का दिया प्रस्ताव, कहा 500 का जुर्माना नाकाफी, कार्रवाई करने में ना हिचकिचाए निगम। स्पोर्ट्स हब बनाने की तैयारी, श्रीनाथपुरम स्टेडियम को 4.47 करोड़ रुपए की सौगात, लोकसभा अध्यक्ष ने किया इसका उद्घाटन, बच्चों के साथ खेला बास्केटबॉल।
12: महंगाई के मोर्चे पर राहत की खबर, नारा एनर्जी के 7,000 पंपों पर पेट्रोल 5 रुपए और डीजल 3 रुपए सस्ता, कमर्शियल सिलेंडर की कीमतें 183 रुपए तक घटी।
8: चमोली स्थित फूलों की घाटी में पहुंचे रिकॉर्ड पर्यटक, अब तक 7,000 से अधिक सैलानियों ने किया दीदार, पिछले साल के मुकाबले 1.5 गुना बड़ी संख्या।
12: मुंबई में जमकर बरस रहे मानसूनी बादल, शहर से ज्यादा निचले इलाकों में बरस रहा पानी, दक्षिण मुंबई के कई इलाकों में भर गया पानी।

0: 57 दिन तक चलेगी ये यात्रा।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम
2: सज गए हैं खबरों की प्लेट, तैयार है गुड न्यूज का मेन्यू। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव।
0: नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव। तो खबरों की रफ्तार वही है, बस परिभाषाएं नहीं है। हम आपको ट्रेंडिंग न्यूज से लेकर वायरल न्यूज तक हर अहम खबर दिखाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 अच्छी खबरों के साथ।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
2: बाबा बर्फानी की पवित्र यात्रा की तैयारियां पूरी, 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा का हो रहा शुभारंभ। जम्मू से कल रवाना होगा बाबा बर्फानी के भक्तों का पहला जत्था, एलजी मनोज सिन्हा दिखाएंगे हरी झंडी। अमरनाथ यात्रा को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह, बड़ी संख्या में अमरनाथ बेस कैंप पहुंचे श्रद्धालु, जमकर लगाए जयकारे। अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा की पुख्ता इंतजाम, श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए लगाए गए 650 सुरक्षा बल कंपनियां। इस बार 57 दिनों तक चलेगी अमरनाथ की यात्रा, 28 अगस्त तक हो सकता है इसका समापन।
0: मुंबई में हुआ गणेश उत्सव की तैयारियों का शुभारंभ, सितंबर महीने की 14 तारीख से शुरू होगा महाराष्ट्र का सबसे बड़ा त्यौहार गणेश उत्सव। गणेश जी की प्रतिमा बनाने वाले कार्यशालाओं की बड़ी रंगत, बप्पा की विशाल मूर्तियां अभी से लेने लगी है आकार। हिमाचल प्रदेश के नैना देवी शक्तिपीठ धाम में आस्था का महाउत्सव, दर्शन पूजन के लिए भारी तादाद में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। महाराष्ट्र के वाशिम में गजानन महाराज की पारंपरिक शोभा यात्रा का उत्सव, जयकारों के साथ हुआ आगमन। गजानन महाराज की पालकी के दर्शन के लिए हजारों की तादाद में पहुंचे श्रद्धालु, जगह जगह शोभा यात्रा का किया गया स्वागत।
2: उज्जैन में बाबा महाकाल की उतारी गई विशेष भस्म आरती, बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। उज्जैन के बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचे ओडिशा हरियाणा के मंत्री, बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह ने भी किए बाबा के दर्शन। आज से बदल गए आम आदमी की जेब और खर्चों से जुड़े हुए 6 प्रमुख वित्तीय नियम, पासपोर्ट फीस में बढ़ोतरी, आधार ईमेल अपडेट, क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड लाउंज एक्सेस शामिल इसमें। महंगाई के मोर्चे पर राहत की खबर, नायरा एनर्जी ने पेट्रोल डीजल के दाम घटाए, पेट्रोल 5 रुपए, डीजल 3 रुपए प्रति लीटर सस्ता हुआ। देश में कमर्शियल सिलेंडर की कीमतें 183 रुपए तक घटी, 5 किलो का छोटू सिलेंडर भी सस्ता।
0: सैलानियों से गुलजार हुआ पुंज, बड़ी संख्या में पीर की गली पहुंचे सैलानी। गांधीनगर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन की नई इमारत के शिलान्यास के लिए पहुंचे सीएम भूपेंद्र पटेल, किया भूमि पूजन। उज्जैन में महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय के 6ठे दीक्षांत समारोह का हुआ आयोजन, राज्यपाल मंगूभाई पटेल हुए इसमें शामिल। कन्नूर में सांसद शफी परम्पिल ने स्नेह विदु की चाबियां लाभार्थियों को सौंपी, लोगों के खिले चेहरे। अगरतला में साइबर सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने पर राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित, बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल।
2: फिल्म जय हिंद जय सिंध का फर्स्ट लुक जारी, फिल्म में महेश मांजरेकर, जया प्रदा, जरीना वहां समेत तमाम एक्टर्स आपको नजर आएंगे, अक्टूबर में फिल्म रिलीज होगी। फिल्म अल्फा का नया प्रोमो रिलीज हो गया है, 3 जुलाई को ये फिल्म रिलीज होगी, फिल्म का आज से एडवांस बुकिंग शुरू कर दी गई है।
3: मरना है नहीं ना, तुम मार दे।
2: फिल्म तेरा यार हूं मैं का दूसरे गाना तुम ही से प्यार रिलीज हो गया है, 24 जुलाई को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। फिल्म भाई तेरा स्टार है का फर्स्ट लुक जारी कर दिया गया है, फिल्म में राघव जुयाल के साथ मुख्य भूमिका में निहारिका एनएम आएंगे आपको। देहरादून में बाबा नीम करौली पर आधारित फिल्म हनुमान अंश के निर्माताओं ने फिल्म के प्रचार के लिए देश भर में सामुदायिक भंडारे आयोजित किए, बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।

0: और चलिए लंच टाइम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे फिल्म वाराणसी की, जिसका इंतजार दर्शकों को काफी लंबे समय से है। अब राजामौली की इस फिल्म को लेकर एक नया अपडेट आया है। फिल्म की शूटिंग के मुख्य हिस्से की शूटिंग तो पूरी हो गई है, लेकिन अब भी लगभग 80 दिन का शूट बाकी है।
1: बिल्कुल शगुफ्ता, और इस फिल्म को लेकर दर्शकों में काफी ज्यादा एक्साइटमेंट भी है और इस फिल्म को लेकर लगातार जो तैयारी है वो भी की जा रही है। ये जानकारी खुद फिल्म के निर्देशक राजामौली ने एक इवेंट में दी। फिल्म अगले साल रिलीज होने वाली है।
2: तो

RRR और बाहुबली जैसी धमाकेदार फिल्मों से सिनेमा के पर्दे पर अपनी धाक जमाने वाले SS राजामौली अपनी फिल्म वाराणसी को लेकर चर्चाओं में। अलग अलग स्टार्स के साथ फिल्मी पर्दे पर धमाका करने वाले राजामौली इस बार एक नई स्टार कास्ट के साथ लौट रहे हैं और इस बार फिल्म का स्केल भी बड़ा है और फिल्म की तैयारी भी। फिल्म वाराणसी की चर्चा पिछले कुछ समय से होती रही है, चाहे उसको लेकर सोशल मीडिया में बस बना हुआ हो या फिर वाराणसी में हुआ मेगा इवेंट। लेकिन अब फिल्म से जुड़ा एक नया अपडेट सामने आया है।

खबरें हैं कि इस एपिक टाइम ट्रैवल एडवेंचर फिल्म की शूटिंग अभी भी जारी है। हालांकि शूटिंग का एक बड़ा हिस्सा लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन अभी भी 80 दिन का शूट बाकी है। ये जानकारी किसी और ने नहीं बल्कि फिल्म के निर्देशक राजामौली ने दी है। फ्रांस में आयोजित फिल्म RRR के रिलीज कार्यक्रम के दौरान निर्देशक राजामौली ने इस बात का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि वाराणसी फिल्म के सारे एक्शन सीन शूट किए जा चुके हैं, फिल्म के छोटे मोटे हिस्सों को ही शूट करना रह गया है। इसे लगभग 80 दिनों में पूरा कर लिया जाएगा। मतलब ये कि फिल्म वाराणसी की शूटिंग का काम इसी साल के सितंबर या अक्टूबर महीने तक कंप्लीट हो जाएगा।

दिन वाराणसी में महेश बाबू समेत पृथ्वीराज, सुकुमारन और प्रियंका चोपड़ा जोनस लीड रोल्स में हैं। टाइम ट्रैवल पर आधारित इस फिल्म की कहानी एक ऐसे शिव भक्त की है जो असीम शक्ति वाली ब्रह्मांडीय कलाकृति को खोजने के लिए समय के पार एक खतरनाक यात्रा पर निकलता है।

0: वाराणसी 7 अप्रैल 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। रिपोर्ट गुड न्यूज टुडे।
1: से आगे बढ़ते हैं और अब लंच टाइम में बात फिल्म अल्फा की कर लेते हैं जो इसी शुक्रवार को रिलीज होने वाली है। तो शगुफ्ता, कितने एक्साइटेड हो आप अल्फा के लिए?
2: मैं बहुत ज्यादा तो नहीं, बट आई थिंक
1: वन टाइम वॉच है। तो चलिए, तो आप सभी को जो इंतजार है वो फ्राइडे को खत्म हो जाएगा, लेकिन फिल्म को लेकर चर्चाओं का जो दौर है वो लगातार जारी है। फिल्म में आलिया के एक्शन की जबरदस्त तारीफ हो रही है।
2: और देखिए, अब फिल्म की स्टारकास्ट से जुड़ी हुई एक और कहानी और अपडेट भी सामने आया है। वो ये है कि रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि 100 करोड़ के मेगा बजट वाली इस फिल्म के लिए सबसे ज्यादा फीस आलिया भट्ट ने ही ली है।
3: पिता आज लंका खुद जलाने आई। हाय बॉयज।
4: पलक झपकते ही दुश्मन को धूल चटा देना, हाथों में बंदूक थामे बेखौफ दुश्मनों के बीच घुस जाना,
3: शुरू करो अग्नि परीक्षा।
4: आलिया भट्ट इस शुक्रवार सिल्वर स्क्रीन पर राज करने आ रही है। सामने आए अल्फा के ट्रेलर में आलिया पावर पैक एक्शन करती नजर आएगी। हर पंच और हथियार चलाने का स्वैग ये बता रहा है कि पर्दे पर एक नए एक्शन स्टार का जन्म होने वाला है।
5: ये क्या है?
6: अल्फा।
5: अल्फा मतलब
6: सीक्रेट प्रोग्राम है इंडिया के नेक्स्ट जनरेशन सोल्जर्स तैयार करने के लिए।

0: आलिया ने 2012 में स्टूडेंट ऑफ द ईयर जैसी ग्लैमरस और बेहद स्टाइलिश फिल्म से डेब्यू किया था, लेकिन अब बड़े पर्दे पर उनका एक अलग अवतार देखने को मिलेगा।
1: तो भी वही है हमारी इकलौती
2: अल्फा।
0: कल तक पर्दे पर अपनी मासूमियत, रोमांस और इमोशन से दर्शकों को रुलाने वाली आलिया अब अपनी रफ्तार और एक्शन से स्क्रीन पर कोहराम मचाने के लिए तैयार है।
1: इसकी माँ का नाम जानकी था, हम इसे सीता बुलावेंगे।
0: एक तरफ अल्फा में आलिया के एक्शन सीक्वेंस की चर्चा है, तो दूसरी तरफ फिल्म की स्टार कास्ट की फी को लेकर भी बाजार में चर्चाओं का दौर है।
3: वो धोखे से राज करता था और झूठ से जीतता था।
0: रिपोर्ट्स की मानी जाए तो 1000 करोड़ के बजट वाली इस मेगा स्टार फिल्म में आलिया ने सबसे ज्यादा फी चार्ज की है।
3: Hi boys.
0: दावा किया जा रहा है कि स्पाई थ्रिलर फिल्म के लिए आलिया भट्ट ने तकरीबन 25 करोड़ रुपए की भारी भरकम फी चार्ज की है, यानी फिल्म के पूरे बजट का 1/4 हिस्सा सिर्फ और सिर्फ आलिया के नाम रहा, जबकि आलिया की को स्टार शर्वरी ने 3 करोड़ रुपए की फी चार्ज की है। दूसरी तरफ बॉबी देओल फिल्म में विलेन के रोल में नजर आने वाले हैं और उन्हें इसके लिए करीब 6 करोड़ रुपए मिले हैं। वहीं फिल्म में एक अहम भूमिका निभाने वाले अनिल कपूर को भी तकरीबन 6 करोड़ रुपए मिले हैं। बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर फिल्में देने के बाद आलिया आज बॉलीवुड की सबसे भरोसेमंद फीमेल स्टार्स में से एक हो चुकी है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं है कि आलिया की ही कंधों पर इस 100 करोड़ बजट वाली फिल्म का भार है।
3: It really means a lot to me.
1: चौथीसवां फ्लोर, 3418।
3: मैं समझी नहीं बाबा, वहाँ करना क्या है?
1: वही जिसके लिए मैंने तुझे ट्रेनिंग दी है।
0: अब देखना यह है कि 25 करोड़ की फी लेने वाली अल्फा गर्ल आलिया इस शुक्रवार बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ की कमाई कर पाती है।
1: दुनिया में सिर्फ दो तरह के लोग हुए हैं, वुल्फ और शीप। मैं वुल्फ हूँ, तो क्या है?
3: वुल्फ की बेटी वुल्फ ही होती है सर।
0: ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
4: चलिए फिल्मी दुनिया की बात तो हमने कर ली, अब जरा खेल की दुनिया की तरफ आपको लेकर चलते हैं और बात करते हैं आज होने वाले सरप्राइज की। आज देखिए टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच में T20 सीरीज का आगाज होगा, लेकिन क्या प्लेइंग 11 में आपको कोई सरप्राइज देखने के लिए मिल सकता है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्या करोड़ों क्रिकेट फैंस का इंतजार आज खत्म होगा, क्योंकि हर किसी की नजरें हैं सिर्फ एक नाम पर और वो नाम है वैभव सूर्यवंशी का। आज इंडिया और इंग्लैंड के बीच में पहला T20 मैच खेला जाएगा, लेकिन मैच से पहले सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात की है कि क्या वैभव को डेब्यू का मौका मिलेगा। सोशल मीडिया फैंस लगातार यही मांग कर रहे हैं कि जिस खिलाड़ी ने अपनी प्रतिभा से सबका दिल जीत लिया, उसे अब मैदान पर खेलने का मौका जरूर मिलना चाहिए।
5: आयरलैंड के खिलाफ घुटने टेकने के बाद टीम इंडिया सवालों के बाउंसर झेल रही है। जो सवाल टीम मैनेजमेंट के लिए चुनौती बना है वो ये कि क्या आज वैभव सूर्यवंशी को टीम इंडिया का कैप पहनने का मौका मिलेगा। फिलहाल तो करोड़ों फैंस की निगाहें आज स्कोर बोर्ड से ज्यादा टीम इंडिया के प्लेइंग 11 पर रहने वाली है, क्योंकि वैभव को आयरलैंड के खिलाफ ना खिलाए जाने का मलाल अभी भी फैंस को कचोट रहा है।
6: हमको उम्मीद लगता है कि अभी तो वैभव सूर्यवंशी के खौफ से सामने वाले टीम की हालत खराब हो जाती है, और खिलाने से हम उम्मीद करते थे कि इंडिया मैच जीतता।
7: गौतम गंभीर से मांग करता हूं कि ऐसे उभरते हुए खिलाड़ी को अगर पानी पिलाने के लिए रखते हैं तो ये क्रिकेट जगत के लिए बहुत बड़ा धब्बा है।
8: लेकिन वैभव जैसे हीरे को तराशने के लिए उन्हें मैदान पर खिलाना बहुत जरूरी है। ये तो टीम मैनेजमेंट का अपना फैसला है, लेकिन पूरी दुनिया के लोग उन्हें मैदान पर, उस नन्हे सितारे को मैदान पर खेलते हुए देखना चाहते हैं।
5: करोड़ों क्रिकेट फैंस वैभव को आज मैदान में देखने के लिए बेताब हैं। वजह उनके वो रिकॉर्ड्स हैं जिन्होंने उन्हें 15 साल की उम्र में क्रिकेट का करिश्मा बना दिया है। IPL में वैभव दुनिया के सबसे खतरनाक माने जाने वाले बुमराह और पैट कमिंस जैसे गेंदबाजों की पहली गेंद को बाउंड्री पार भेजकर अपना लोहा मनवा चुके हैं। वैभव ने IPL के बीते सीजन में सबसे ज्यादा छक्कों का क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ा है और करीब करीब हर गेंदबाज के खिलाफ आक्रामक बल्लेबाजी से अपनी अलग पहचान बनाई है। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर वैभव के लिए लगातार आवाजें उठ रही हैं। फैंस का कहना है कि वैभव सूर्यवंशी को अब मौका नहीं मिलेगा तो फिर कब मिलेगा। आयरलैंड सीरीज में भारतीय बल्लेबाजों ने जिस तरह घुटने टेके हैं उसके बाद तो वैभव के इंटरनेशनल डेब्यू की डिमांड और तेज हो गई है। हालांकि वैभव को लेकर टीम इंडिया का ड्रेसिंग रूम सोच अलग है। असिस्टेंट कोच रयान टेन डोशेट साफ कह चुके हैं कि वैभव को भी बाकी खिलाड़ियों की तरह चयन की पूरी प्रक्रिया से गुजरना होगा। उनका कहना है कि सिर्फ प्रतिभा के दम पर किसी को प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिल सकती। कप्तान श्रेयस अय्यर भी टीम मैनेजमेंट के फैसले के साथ खड़े हैं। श्रेयस का मानना है कि टीम में मौजूद हर खिलाड़ी ने प्रदर्शन के दम पर जगह बनाई है और जिन्होंने भारत को T20 वर्ल्ड कप जिताया उन पर भरोसा बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। वहीं वैभव को लेकर पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर की राय बिल्कुल अलग है। गावस्कर का मानना है कि वैभव जैसे टैलेंट को जितनी जल्दी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का अनुभव मिलेगा उतना ही फायदा भारतीय क्रिकेट को होगा।
2: एक महीने पहले से मैं कह रहा था कि ये आयरलैंड की जो दो मैचेस है वहां पे जिस तरह के वैभव सूर्यवंशी का फॉर्म था तो उसको दोनों मैचेस में खिलाया जा सकता था, क्योंकि एक मैच में आप अभिषेक शर्मा को लेते और सूर्य के साथ ओपनिंग करने के लिए, और दूसरे मैच में आप अभिषेक को ड्रॉप कर दिया नीचे करके सैमसन को लेते, वैसा आप कर सकते थे पर वैसा हुआ नहीं।
5: ऐसे में आज इंग्लैंड के खिलाफ फैंस की नजरें सिर्फ टॉस पर नहीं होंगी बल्कि टीम इंडिया की प्लेइंग 11 पर सबकी नजर होगी। देखना होगा कि क्या टीम इंडिया आयरलैंड की तरह फिर अनुभव को तवज्जो देगी या फिर पिछली सीरीज में मिली हार से सबक लेकर वैभव सूर्यवंशी को इंटरनेशनल क्रिकेट में हाथ आजमाने का मौका देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: तो देखिए, आयरलैंड से सीरीज गंवाने के बाद जो प्रेशर है वो वर्ल्ड चैंपियंस पर है, लेकिन टीम इंडिया दबाव भूलकर नई ऊर्जा और ताकत के साथ मैदान पर उतरना चाहती है। देखिए, मैच से पहले टीम इंडिया की फुर्सत के कुछ पल तस्वीरों के जरिए टीम इंडिया की जर्नी अब आपको दिखाते हैं। बेलफास्ट टू डरहम, जब बड़े ब्लू ब्रिगेड के कदम।

0: क्रिकेट के बाद अब बात फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप की कर लेते हैं, जिसका क्रेज हर तरफ दिखाई दे रहा है, जिसमें फ्रांस के स्टार स्ट्राइकर किलियन एम्बापे ने शानदार खेल दिखाया। लियोनेल मेसी के रिकॉर्ड को कड़ी चुनौती वो दे दी है उन्होंने, और गोल्डन बूट की दौड़ को दिलचस्प बना दिया है। फ्रांस के स्टार स्ट्राइकर किलियन ने स्वीडन के खिलाफ राउंड ऑफ 32 मुकाबले में दमदार खेल भी दिखाया। अब मैच में स्टार स्ट्राइकर एम्बापे ने 2 गोल किए हैं और फ्रांस को 3-0 की आसान जीत दिला दी। इस शानदार प्रदर्शन के दम पर फ्रांस ने प्री क्वार्टर फाइनल यानी राउंड ऑफ 16 में अपनी जगह पक्की कर ली है।
1: बिल्कुल, यहां पर उनका सामना पराग्वे से होगा, लेकिन इस मुकाबले की सबसे बड़ी कहानी देखिए सिर्फ जीत नहीं बल्कि एम्बापे का रिकॉर्ड तो शो रहा, जिन्होंने इस विश्व कप में अपने गोलों की संख्या 6 कर ली और इसी के साथ उन्होंने अर्जेंटीना के दिग्गज लियोनेल मेसी की बराबरी कर ली है, जिनके नाम भी इस विश्व कप में अब तक 6 गोल दर्ज है।
0: हालांकि देखिए गोल्डन बूट की इस दौड़ में एम्बापे फिलहाल मेसी से काफी आगे हैं। वजह है कि उनके नाम 6 गोलों के अलावा 2 असिस्ट भी शामिल हैं। साथ ही एम्बापे ने विश्व कप नॉकआउट चरण में अपने गोलों की संख्या 10 कर ली, जो अब तक सबसे ज्यादा है। अब तक फुटबॉल वर्ल्ड कप में एम्बापे के नाम 18 मैचों में 18 गोल दर्ज है।
1: वो विश्व कप इतिहास में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर है, और इसी लिस्ट में पहले नंबर पर है जिनके नाम फिलहाल 19 गोल दर्ज है। भारत की बेटी अब सिर्फ खेल के मैदान में ही नहीं बल्कि खेलों के संचालन और फैसलों की सबसे बड़ी जिम्मेदारियों में भी नया इतिहास लिख रही हैं। देखिए उत्तर प्रदेश की मंजू नयाल ने ऐसा मुकाम हासिल किया है जो अब तक देश की कोई महिला नहीं कर सकी है। मंजू नयाल भारत की पहली 3-स्टार इंटरनेशनल महिला कुराश रेफरी बन गई है और अंतर्राष्ट्रीय खेल जगत में देश का नाम रोशन कर रही है।
2: बरसों की साधना और कठिन परिश्रम से हासिल ये अवार्ड और मेडल्स कामयाबी की कहानी खुद ब खुद बयां करने के लिए मुकम्मल है। गाजियाबाद के वैशाली की रहने वाली मंजू नयाल ने अपनी प्रतिभा के दम पर हासिल इन तमगों के साथ अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत का मान अब और बढ़ा दिया है। मंजू नयाल ने देश की पहली महिला 3-स्टार इंटरनेशनल कुराश रेफरी बनकर इतिहास रच दिया है।
3: मैम, देश की पहली 3-स्टार रेफरी कुराश गेम में सुनकर कैसा लग रहा है? देश की पहली महिला रेफरी।
4: सर बहुत अच्छा लग रहा है, प्राउड मूवमेंट हो रही है कि देश की पहली महिला रेफरी बनी हूँ, तो काफ़ी लोगों की विशेज भी आ रही हैं और मतलब सपोर्ट भी मिला काफ़ी, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है पहली 3-स्टार रेफरी बन के कुराश की।
2: 2023 में 1-स्टार इंटरनेशनल कुराश रेफरी, 2025 में 2-स्टार इंटरनेशनल रेफरी और अब पिछले दिनों जून महीने में मंजू ने उज्बेकिस्तान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय रेफरी परीक्षा पास की और भारत की पहली 3-स्टार अंतर्राष्ट्रीय महिला कुराश रेफरी बनने का मुकाम हासिल किया।
4: पहले स्टेट रेफरी का एग्जाम दिया कुराश के अंदर, फिर नेशनल रेफरी का, फिर अब इंटरनेशनल रेफरी में, तो फिर वही, फिर 1-स्टार, 2-स्टार, अब मैं 3-स्टार हो गई हूँ। तो ये बिग अचीवमेंट्स है इंडिया के अंदर। मैं अभी तक 3-स्टार रेफरी कोई वुमेन नहीं थी, 1st रेफरी मैं बनी हूँ इस बार, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है इस चीज के लिए।
2: मंजू नयाल ने ये उपलब्धि कैसे हासिल की, आगे उनका क्या लक्ष्य है, ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कुराश खेल क्या है। कुराश मध्य एशिया से जुड़ी एक प्राचीन और लोकप्रिय कुश्ती शैली है, जिसकी उत्पत्ति करीब 3500 साल पहले उज्बेकिस्तान में हुई थी। इस खेल में 2 खिलाड़ी एक दूसरे को पकड़कर पीठ के बल जमीन पर गिराने का प्रयास करते हैं। कुराश अब एक वैश्विक खेल बन चुका है, जिसे 130 से अधिक देशों में खेला जाता है। इसे 2018 के एशियाई खेलों में भी शामिल किया गया था, जहाँ भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पदक जीते थे। मंजू नयाल फिलहाल गाजियाबाद में गुरुकुल द स्कूल के शारीरिक शिक्षा विभाग की कोऑर्डिनेटर हैं और कई बड़े अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में रेफरी की भूमिका निभा चुके हैं।
4: वैसे मैं जूडो में भी नेशनल रेफरी हूँ थी, तो वहाँ पर हमारे सर थे रवि कपूर सर, जो दिल्ली के जनरल सेक्रेटरी थे, तब उन्होंने स्विच करा कुराश के अंदर, तो अब उनका साथ था, उन्हें जानते थे दिल्ली के अंदर, बाकी को नहीं इतना हमारा वो था। जब उन्होंने स्विच करा तो उनके साथ साथ हमने कुराश में भी स्विच कर लिया था उन्हीं के उससे।
2: मंजू ने कजाकिस्तान में नोमैड गेम्स 2024, रूस के याकुत्स में चिल्ड्रन ऑफ एशिया गेम्स 2024, बहरीन में तीसरे एशियन यूथ गेम्स 2025 में रेफरी की भूमिका निभाई है। उज्बेकिस्तान में जूनियर एशियन इंटरनेशनल कुराश कप 2026 और जापान ओपन कुराश चैंपियनशिप जैसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में रेफरी के रूप में जिम्मेदारी निभाई है। 2015 में चीनी ताइपे में आयोजित जूनियर एशियन कुराश चैंपियनशिप में भारतीय टीम की कोच के रूप में भी मंजू ने देश का प्रतिनिधित्व किया है। मंजू नयाल का लक्ष्य अब इसी साल सितंबर में होने जा रहे एशियन गेम्स में रेफरी के तौर पर भारत का प्रतिनिधित्व करने का है।
4: एशियन गेम्स जो अब सितंबर में होने वाले हैं 22 से, उसमें अभी हम दिल्ली इंडिया से गए थे और वहाँ ट्रायल इवेंट्स देखने गए थे कि क्या क्या कमियाँ हैं, क्या क्या होना वाला है, तो उसका एक रन थ्रू था वहाँ पर। तो वहाँ पे मैं एज ए इंडिया से रिप्रेजेंट करा था मैंने वहाँ पर, और काफ़ी चीज़ें वहाँ मुझे सीखने को भी मिली, बहुत सारी चीज़ें देखी, क्या कमियाँ थी, क्या है, ये सारी चीज़ें हम वहाँ देख के आए हैं। और अब हम सितंबर में अगर हुआ तो सितंबर में हम वहाँ जाएंगे।
2: मंजू नयाल की ये उपलब्धि न सिर्फ उनके लंबे अनुभव और मेहनत का परिणाम है, बल्कि देश के उन महिलाओं के लिए प्रेरणा भी है जो खेलों में कुछ अलग पहचान बनाना चाहती हैं। गाजियाबाद से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: और चलिए इसी के साथ रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, लंच टाइम के उस पर आपको दिखाएंगे ऑपरेशन शिवाय।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
6: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में शादी में लगेगा ट्विस्ट का तड़का। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।
7: Pepsi Prebiotic Cola in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
8: Jazz fans, rejoice. Stingray Jazz offers riveting concert films and documentaries from the world's most prestigious stages. Whether you're a lifelong connoisseur or just getting up to tempo, Stingray Jazz, now available for free on Pluto TV. Stream now, pay never.
5: Good news today is really good. This is the news of the news. And chilla chilli nahi hai. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
11: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
10: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
12: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
11: अविश्वास में विश्वास बसता है,
10: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
13: गुड न्यूज टुडे।
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
2: दिल्ली में 75 ऐतिहासिक स्मारकों को गोद ले सकेंगी प्राइवेट कंपनियां। संरक्षण कार्यों के लिए 2 करोड़ रुपए का मिलेगा अनुदान। सरकार ने 2 संरक्षण योजनाओं को दी मंजूरी।
3: दिल्ली नगर निगम को हाईकोर्ट का आदेश, खुले में कचरा फेंकने वालों पर जुर्माना 5,000 करने का प्रस्ताव दिया। कहा 500 का जुर्माना नाकाफी, कार्रवाई करने में ना हिचकिचाए नगर निगम।
2: स्पोर्ट्स हब बनाने की तैयारी। श्रीनाथपुरम स्टेडियम को 4.47 करोड़ रुपए की सौगात। लोकसभा अध्यक्ष ने किया उद्घाटन। बच्चों के साथ खेला बास्केटबॉल।
3: महंगाई के मोर्चे पर राहत की खबर। नारा एनर्जी के 7,000 पंपों पर पेट्रोल 5 रुपए और डीजल 3 रुपए सस्ता। कमर्शियल सिलेंडर की कीमतें 183 रुपए तक घटी।
2: चमोली स्थित फूलों की घाटी में पहुंचे रिकॉर्ड पर्यटक। अब तक 7,000 से अधिक सैलानियों ने किया इसका दीदार। पिछले साल के मुकाबले 1.5 गुना बड़ी संख्या।
3: मुंबई में जमकर बरस रही मानसूने बादल। शहर से ज्यादा निचले इलाकों में बरस रहा पानी। दक्षिण मुंबई के कई इलाकों में भर गया पानी।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
3: और चलिए अब बात कर लेते हैं बम बम भोले के जयघोष के साथ इस खबर की। बाबा बर्फानी के पावन धाम की तरफ आस्था का सबसे बड़ा कारवां निकलने को तैयार है। इस शुक्रवार को शुरू होने जा रही पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर पूरे जम्मू कश्मीर में उत्साह अपने चरम पर है। देश के कोने कोने से श्रद्धालु जम्मू पहुंचने लगे हैं। कोई माथे पर तिलक लगाए है तो कोई हाथों में तिरंगा और भोलेनाथ का ध्वज लिए बाबा के दर्शन की आस में लगातार आगे बढ़ता जा रहा है।
2: बिल्कुल देखिए, जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से लेकर बालटाल और पहलगाम मार्ग तक हर तरफ सिर्फ एक ही रंग दिखाई दे रहा है और वो है भोले की भक्ति का रंग। लंगरों में सेवा का भाव है, शिव भक्तों में अपार उत्साह है और हर चेहरे पर बाबा बर्फानी के दर्शन की अधीर प्रतीक्षा साफ नजर आ रही है। मान्यता है कि बाबा अमरनाथ के दर्शन से जीवन धन्य हो जाता है और यही वजह है कि कठिन पर्वतीय रास्ता, मौसम की चुनौती और लंबी यात्रा भी श्रद्धालुओं के उत्साह को कम नहीं कर पाती। इस बार यात्रा सिर्फ आस्था का ही नहीं बल्कि सुरक्षा और व्यवस्थाओं का भी बड़ा उदाहरण बनने जा रही है।
3: और देखिए, यात्रियों की सुरक्षा के लिए अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। यात्रा मार्ग से लेकर बेस कैंप तक, सड़क से लेकर आसमान तक और संवेदनशील इलाकों से लेकर पवित्र गुफा तक सुरक्षा एजेंसियां 24 घंटे अलर्ट मोड पर लगी हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि इस वर्ष यात्रा पर आने जाने वाले हर पंजीकृत श्रद्धालु को 10 लाख रुपए का बीमा कवर भी दिया जा रहा है।
4: ओम नमो पार्वती पते।
3: और देखिए, अमरनाथ यात्रा शुरू होने में अब सिर्फ 2 दिन ही बाकी हैं, लेकिन आस्था का सैलाब अभी से उमड़ने लगा है। जम्मू के तवी रिवर फ्रंट पर देश के अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालु पहुंचने लग गए हैं।
2: बिल्कुल देखिए, रजिस्ट्रेशन काउंटरों पर लंबी कतारें लगी हुई हैं और बाबा बर्फानी के दर्शन को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। 3 जुलाई से पवित्र अमरनाथ यात्रा का विधिवत शुभारंभ होगा। आखिर ग्राउंड पर किस तरह का माहौल है, श्रद्धालु में कितना जोश है, कितनी एक्साइटमेंट है और यात्रा को लेकर क्या क्या खास इंतजाम किए गए हैं, चलिए अब आपको दिखाते हैं।

0: बाबा बर्फानी के दर्शन की शुभ घड़ी में बस कुछ घंटों का वक्त बचा है। श्रद्धालुओं ने अमरनाथ यात्रा के लिए कमर कस ली है। बाबा के दर्शनों के सौभाग्य का सुख अभी से यहां महसूस किया जा रहा है। जम्मू के इस यात्री निवास भवन से बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए पहला जत्था रवाना होगा, लिहाजा भक्तों का जोश हाई है।
1: आप देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं में खासा उत्साह है। श्यामानाथ जी की यात्रा को लेकर यहाँ पर बम बम भोले का जय घोष हो रहा है, हर हर महादेव का जय घोष हो रहा है। देश के अलग अलग भागों से श्रद्धालु जो है यहाँ जम्मू शहर पहुँच रहे हैं और आप देख सकते हैं कि बम बम भोले का जय घोष हो रहा है, हर हर महादेव का जय घोष हो रहा है और जो श्रद्धालु है काफी व्याकुल है भगवान भोलेनाथ के दर्शनों के लिए। हम सीधा यहाँ पर श्रद्धालुओं से बात करते हैं। जी आप बताए, आप करते
2: अंकित उपलाउदिया,
1: कहाँ के रहने वाले?
2: शाजापुर के।
1: मुझे बताएं मन में कितनी प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि आप इस यात्रा के लिए आए हैं?
2: जी जी बहुत हो रही है। अच्छा, बहुत उत्साहित है जाने के लिए बाबा बर्फानी के यहाँ पे।
3: बहुत अच्छा लगता है, सुविधा भी बहुत बढ़िया है, सब आइए, सुरक्षा भी बहुत है, कुछ नहीं होता है।
0: अमरनाथ यात्रा के लिए प्रशासन की ओर से सभी तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी है। यात्रा के लिए निर्धारित बैंकों से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पहले से ही हो रहे हैं, लेकिन जिन श्रद्धालुओं ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है उनके लिए जम्मू के तवी रिवर फ्रंट पर तत्काल रजिस्ट्रेशन काउंटर बनाए गए हैं।
1: तो पंजीकरण की जो व्यवस्था है वो कई महीनों से चल रही है, ऑनलाइन ये सुविधा रखी गई थी, लेकिन जो श्रद्धालु ऑनलाइन ये पंजीकरण नहीं करा पाए थे और जो अब पंजीकरण कराना चाहते हैं तो उनके लिए भी सुविधा रखी गई है, ऑफलाइन की सुविधा। यहाँ अगर हम देखें जो तवी रिवर फ्रंट है वहां पर फ्रेश रजिस्ट्रेशन की सुविधा रखी गई है कि जो श्रद्धालु अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए हैं उनको रजिस्ट्रेशन करने की वहां सुविधा रखी गई है।
0: यात्रा को सुरक्षित और सुचारू बनाने के लिए जम्मू और श्रीनगर के यात्री निवास भवनों पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं, साथ ही यात्रा मार्ग और जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की भारी तैनाती की गई है। कोशिश यही है कि हर बार की तरह इस बार भी श्रद्धालुओं को बाबा बर्फानी के दर्शन सकुशल हो सके।
1: इस समय हम मौजूद हैं जम्मू शहर के भगवती नगर इलाके में स्थित यात्री निवास भवन के बाहर और श्री अमरनाथ जी की यात्रा जो है शुक्रवार को शुरू होने जा रही है। बृहस्पतिवार को यात्रियों का पहला जत्था यही जम्मू के यात्री निवास भवन से रवाना होगा। अगर हम देखें यात्री निवास भवन में जो है सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, चप्पे चप्पे पर पहरा है, चाहे केंद्रीय सशस्त्र बल हो, केंद्रीय बल जो है, साथ ही में जम्मू कश्मीर पुलिस हो, भारतीय सेना हो, चप्पे चप्पे पर पहरा है और यहाँ की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। और ये जो यात्री निवास भवन है अगर हम देखें तो इसको सीआरपीएफ के हवाले कर दिया गया है और खासतौर पर जो सीआरपीएफ के जवान हैं वो भारी संख्या में यहाँ पर तैनात है। प्राथमिकता यही है कि यहाँ पर जो सुरक्षा है वो चाक चौबंद रहे।
0: इस बार अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा का चक्रव्यूह कितना मजबूत है अब जरा इसकी एक और तस्वीर देख लीजिए। बालटाल जाने वाले रास्ते पर ये जम्मू कश्मीर पुलिस की मॉक ड्रिल है। आपात स्थिति में फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज को कैसे रिएक्ट करना है और दूसरे विभागों से कैसे तालमेल बैठाना है इसका अभ्यास भी किया गया।
4: इस बार अमरनाथ यात्रा श्राइन बोर्ड की तरफ से विशेष इंतजाम किए गए हैं श्रद्धालुओं के लिए, जहां पर हर श्रद्धालु को जो है वो उनको हर तरह की सुविधा जो है अमरनाथ यात्रा के अलग अलग पड़ावों के साथ अमरनाथ गुफा में भी मिलेगी, जिसमें रहने और रुकने और वहाँ पर जो है सभी तरह के इंतज़ाम किए गए हैं। यहाँ तक कि अब की बार अमरनाथ यात्रा में सफाई का स्वच्छ भारत अभियान के तहत विशेष जो है ध्यान रखा जा रहा है और विशेष टीमें लगाई गई हैं जो अमरनाथ यात्रा के रास्तों से प्लास्टिक और दूसरा कचरा साथ साथ जमा करेंगे और उसको रिसाइकल किया जाएगा। अशरफानी, गुड न्यूज़ टुडे, श्रीनगर।
5: तो देखिए इस बार से सुरक्षा ही नहीं बल्कि श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा दोनों पर ही खास जोर दिया गया है। यात्रा पर निकलने से पहले नियम और सावधानियां जानना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है ये जानना कि इस बार प्रशासन ने श्रद्धालुओं के लिए क्या क्या नई व्यवस्थाएं की हैं।

0: बाबा के भक्तों का ये उत्साह यूं ही नहीं है। बाबा बर्फानी के दर्शनों की महिमा अपरंपार बताई गई है। भोले के भक्तों के लिए अमरनाथ यात्रा एक ऐसी कठिन साधना है जिसे आप शिवत्व को साधने की सबसे कड़ी तपस्या कह सकते हैं। बस कुछ घंटों बाद बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए पहला जत्था रवाना हो जाएगा। भक्त तैयार हैं तो प्रशासन ने भी यात्रा को सकुशल संपन्न करने की पूरी तैयारी कर रखी है। इस बार केवल सुरक्षा के कड़े इंतजाम ही नहीं किए गए हैं, बल्कि अमरनाथ यात्रा के दौरान सुविधाएं बढ़ाई गई हैं और कुछ नए नियम भी लागू किए गए हैं। अगर आप भी इस साल बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जा रहे हैं तो पहले जान लीजिए कि इस बार यात्रा में क्या बदला है और किन नियमों का पालन करना जरूरी है। अगर यात्रा के दौरान सुविधाओं की बात करें तो इस बार बालटाल से पवित्र गुफा तक पूरे रास्ते पर बिजली और लाइट की व्यवस्था की गई है, ताकि खराब मौसम या रात के समय भी श्रद्धालुओं को परेशानी न हो। ट्रैकिंग रूट को भी पहले से ज्यादा बेहतर बनाया गया है, जिससे कठिन चढ़ाई कुछ आसान हो सके। यात्रियों की सुविधा के लिए पोनी, पालकी और पोर्टर की प्री पेड बुकिंग शुरू की गई है, यानी अब तय किराए पर ही ये सेवाएं मिलेंगी। रहने की व्यवस्था भी पहले से बेहतर हुई है। बालटाल, नुनवान, श्रीनगर और चंद्रकोट के यात्री निवासों का विस्तार किया गया है। वहीं जम्मू में बने नए सेंटर में करीब 4000 भक्तों को ठहरने की व्यवस्था की गई है।
1: जहाँ तक सुविधाओं की बात है तो यात्री निवास भवन में पीने का ठंडा पानी रखा गया है, फ्रिज लगे हुए हैं, साथ ही में बिजली जो है 2400 घंटों वहाँ है, शौचालय की व्यवस्था है, क्योंकि जम्मू में इस समय उमस भरी गर्मी है, इसीलिए जो एसीज हैं यात्री निवास भवन के कमरों के अंदर उनको सर्विसिंग उनकी कराई गई है। पंखे भी चेक किए गए हैं कि किसी पंखे में कोई दिक्कत तो नहीं है, तो उन पंखों की मरम्मत भी की गई है। यात्री निवास भवन में जो कमरे हैं उनकी साफ सफाई भी हो चुकी है, रंग रोगन भी हो चुका है, और जो श्रद्धालु यहां जम्मू शहर में अब पहुंच रहे हैं काफी व्याकुल हैं भगवान भोलेनाथ के दर्शनों के लिए।
0: अगर कोई श्रद्धालु ज्यादा थक गया है या बीमार है या फिर किसी कारण से रुकना पड़ रहा है तो यहां पर आराम कर सकता है। ये पूरी तरह से निःशुल्क होगा। जम्मू के तवी रिवर फ्रंट पर नया इंटीग्रेटेड फैसिलिटेशन सेंटर बनाया गया है। यहाँ रजिस्ट्रेशन, मेडिकल जांच, हेल्थ सर्टिफिकेट और दस्तावेजों की जांच जैसे सभी जरूरी प्रक्रियाएं एक ही जगह पूरी की जा रही हैं। इस बार अमरनाथ यात्रा के दौरान हर रजिस्टर्ड श्रद्धालु को RFID कार्ड दिया जा रहा है। इस कार्ड की मदद से प्रशासन यात्रा के दौरान हर यात्री की लोकेशन पर नजर रख सकेगा। किसी भी आपात स्थिति में तुरंत राहत और बचाव टीम मौके पर पहुंच सकेगी। एक तरफ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं बढ़ाई गई हैं, तो वहीं श्रद्धालुओं को भी कुछ नियमों का पालन करना होगा। मसलन अमरनाथ यात्रा के लिए पहले से रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। यात्रा में वही श्रद्धालु शामिल हो सकते हैं जिनकी उम्र 13 से 70 वर्ष के बीच हो। इस बार अधिकृत डॉक्टर से जारी कंपल्सरी हेल्थ सर्टिफिकेट यानी CHC भी जरूरी है। इसे श्रद्धालुओं को अपने साथ ही रखना होगा। बड़ी बात यह है कि रजिस्ट्रेशन कराने वाले सभी श्रद्धालुओं को इस बार 10 लाख तक का बीमा कवर दिया जाएगा। साथ ही अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की ओर से पंजीकृत यात्रियों को दुर्घटना बीमा कवर भी मिलेगा। जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: चलिए अब बात मौसम की जरा कर लेते हैं। देखिए, भीषण गर्मी और उमस से जूझ रहे दिल्ली NCR के लोगों को जल्द राहत मिलने वाली है। मॉनसून का काउंटडाउन शुरू हो गया है और दिल्ली में 4 जुलाई तक मॉनसून के पहुंचने की संभावना है। उसके पहले प्री मॉनसून बारिश दिल्ली NCR के मौसम को सुहाना बना सकती है। मौसम और मॉनसून अब तक 26 राज्यों में दस्तक दे चुका है। मौसम विभाग का यह अनुमान है कि 5 जुलाई तक मॉनसून पूरे देश को कवर कर सकता है।

0: मंगलवार शाम को मौसम जरा सा खुशगवार हुआ तो इंडिया गेट पर चहल पहल बढ़ गई। पिछले कई दिनों की गर्मी और उमस से परेशान लोग लुत्फ उठाने के लिए इंडिया गेट पहुंच गए। खुशी की बात यह है कि ऐसा नजारा अब अक्सर देखने को मिल सकता है, क्योंकि राजधानी दिल्ली के मौसम में बदलाव की घड़ी अब करीब आ गई है। दिल्ली NCR समेत उत्तर भारत के लोगों को भीषण गर्मी और उमस से जल्द राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग के मुताबिक मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। कई मौसम प्रणालियों के एक साथ सक्रिय होने से मॉनसून ने दोबारा रफ्तार पकड़ ली है। बंगाल की खाड़ी से नमी भरी हवाएं तेजी से आगे बढ़ रही हैं। अरब सागर से आने वाली तेज हवाएं भी बड़ी मात्रा में नमी लेकर आ रही हैं। लिहाजा पूरी संभावना है कि 2 जुलाई तक मॉनसून उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के शेष हिस्सों में सक्रिय हो जाएगा। 3 से 4 जुलाई तक दक्षिण पश्चिमी मॉनसून दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और पूरे उत्तर प्रदेश को कवर कर लेगा। 5 जुलाई तक मॉनसून पश्चिमी राजस्थान और गुजरात के सभी बचे हुए जिलों को कवर कर लेगा। मध्य प्रदेश और झारखंड के बाकी हिस्सों में भी अगले 2 दिनों में ये पूरी तरह फैल जाएगा। मंगलवार दोपहर को मॉनसून ने जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में एंट्री कर ली। मॉनसून ने देश में अब तक 26 राज्यों को कवर कर लिया है।
1: हिमाचल प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में मॉनसून वर्ष 2026 का आगमन हो चुका है। इसमें अगर हम क्षेत्रों की बात करें तो मॉनसून ने पूरे किन्नौर डिस्ट्रिक्ट को कवर कर लिया है और कुल्लू और लाहौल स्पीति के बहुत से क्षेत्रों में मॉनसून ने दस्तक दे दी है। साथ में जो डिस्ट्रिक्ट हमारे हैं सिरमौर है, यहाँ पे कुछ एक क्षेत्रों में जो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा है, जो बड़ा बंगाल एरिया है, वहाँ पे मॉनसून का आगमन हो चुका है। सिरमौर की बात करें, जो डिस्ट्रिक्ट शिमला के आसपास क्षेत्र जो चूड़धार एरिया है, वहाँ पे आगमन हो चुका है। साथ में जो हमारे शिमला डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें जो नारकंडा और जिसके जो जितने भी क्षेत्र हैं, वहाँ पे मॉनसून की दस्तक हो चुकी है। और जो संभावना ये है कि आगामी 2 से 3 दिनों के भीतर में जो शेष जो क्षेत्र बचे हैं हिमाचल प्रदेश के, जिसमें ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, सोलन है, कांगड़ा का बहुत सा क्षेत्र है, चंबा डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ पे संभावना है कि आगामी 2 से 3 दिनों के भीतर मॉनसून का अराइवल हो सकता है।
0: मौसम विभाग के मुताबिक पूरी संभावना है कि राजस्थान के अंतिम छोर जैसलमेर और बाड़मेर तक पहुंचकर मॉनसून 8 जुलाई तक पूरे देश को कवर कर लेगा। पहले देश के अंतिम छोर तक मॉनसून पहुंचने की सामान्य तारीख 15 जुलाई मानी जाती थी, लेकिन इस बार मॉनसून पूरे देश को करीब एक हफ्ते पहले ही कवर कर सकता है। हालांकि पूरे देश में मॉनसून के आगमन की खबर के साथ एक टेंशन वाली बात यह है कि इस बार जुलाई में बारिश सामान्य से कम हो सकती है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक प्रशांत महासागर में अलनीनो के लगातार मजबूत होने की वजह से जुलाई के महीने में देश के ज्यादातर हिस्सों में सामान्य से कम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की माने तो मध्य, पश्चिमी और उत्तरी भारत के बड़े हिस्सों समेत देश के ज्यादातर इलाकों में सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है। हालांकि उत्तर पश्चिम भारत जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल और पूर्वोत्तर राज्यों में जुलाई में सामान्य या सामान्य से अधिक बारिश हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: तो लंच टाइम में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, फौरन हाजिर होंगे।
3: सास बहू और बेटियां में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में शादी में लगेगा ट्विस्ट का तड़का। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।
4: From the biggest names in sports talk to the biggest moments in sports, this is NBC Sports Radio. Get your daily football fix with Mike Florio. Spend your mornings with Dan Patrick and the Danettes, and dive deep with Dan Le Batard. Live, unfiltered, and always on, Monday through Friday. Then when the games are on, we've got you covered with live events from NBC Sports. Search NBC Sports Radio or tell your device to play NBC Sports Radio on TuneIn to listen.
5: Good news today.
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
9: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
10: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: चलिए अब बात एक ऐसे इनोवेशन की करते हैं जो भविष्य में आग बुझाने के तरीकों को बदल सकता है। गुजरात के सूरत में एक छात्र ने AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित स्मार्ट फायर फाइटिंग वाहन तैयार किया है। ये वाहन आग लगने पर खुद उसकी पहचान करता है, बिना किसी इंसानी मदद के उसे बुझाने की कोशिश भी करता है। दावा यह है कि यह तकनीक आपात स्थिति में तेजी से कार्रवाई करने और नुकसान को कम करने में मददगार साबित हो सकती है। फिलहाल ये एक प्रोटोटाइप है, लेकिन आने वाले वक्त में इसे और बेहतर बनाया जा सकता है। तो चलिए फिलहाल लंच टाइम में समय हो गया आप सभी से अलविदा कहने का, और चलिए हम दोनों को इजाजत दीजिए। अच्छे पॉजिटिव खबरें दिन भर जारी हैं, आप देखते रहिए JNT।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: म्यूजिक फॉर एवरी मूड लिव्स ऑन TuneIn। Whether you want to relax, focus or turn things up, you'll find the right station. Hear from the top stations like today's hits, classic rock, coffee house, and more. Stream non-stop music from stations you know and new favorites waiting to be discovered. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
3: Zindagi par hai asar. Jaanne ke liye dekhiye News Pat. Raah Sachchai ki raat 9 baje.
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। TIT भोपाल Gen Z's gateway to unbeatable placements।
1: बद्रीनाथ में भगवान विष्णु के भक्तों ने अब तक के सारे रिकॉर्ड किए ध्वस्त, 14 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन, हर रोज 15 से 20 हजार श्रद्धालु कर रहे हैं दर्शन।

0: अनुदान, सरकार ने दो संरक्षण योजनाओं को दी मंजूरी। दिल्ली नगर निगम को हाईकोर्ट का आदेश, खुले में कचरा फेंकने वालों पर जुर्माना 5,000 करने का दिया प्रस्ताव, कहा 500 का जुर्माना नाकाफी, कार्रवाई करने में ना हिचकिचाए निगम। कोटा को स्पोर्ट्स हब बनाने की तैयारी, श्रीनाथपुरम स्टेडियम को 4.47 करोड़ रुपए की सौगात, लोकसभा अध्यक्ष ने किया उद्घाटन, बच्चों के साथ खेला बास्केटबॉल। चमोली स्थित फूलों की घाटी में पहुंचे रिकॉर्ड पर्यटक, अब तक 7,000 से अधिक सैलानियों ने किया दीदार, पिछले साल के मुकाबले 1.5 गुना बड़ी संख्या। मुंबई में जमकर बरस रहे मानसूनी बादल, शहर से ज्यादा निचले इलाकों में बरस रहा है पानी, दक्षिण मुंबई के कई इलाकों में भरा पानी।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
0: दिल्ली एनसीआर में छाए बादल, मानसून का इंतजार, जल्द होगा खत्म। अगले 2 से 3 दिन में आ सकता है मानसून, उमस भरी गर्मी से मिलेगी जल्द राहत। उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी, रुद्रप्रयाग में अगले 4 दिनों तक होगी जोरदार बारिश। मूसलाधार बारिश को लेकर प्रशासन अलर्ट, लोगों से नदियों नालों और भूस्खलन की आशंका वाले इलाकों में जाने से बचने की अपील। मुंबई के अंधेरी सबवे में भारी बारिश से भरा पानी, आवाजाही पर लगी रोक। मुंबई में लगातार बारिश का दौर जारी, कई इलाकों में सुबह सुबह हुई जोरदार बारिश। मुंबई में लगातार बारिश से गिरा तापमान, लोगों को गर्मी से राहत मिली। मुंबई में भारी बारिश से कई इलाकों में भरा पानी, आवाजाही हुई प्रभावित। मुंबई में भारी बारिश से सड़क पर गिरा पेड़, ट्रैफिक पुलिस ने सड़क से पेड़ हटाकर आवाजाही फिर से चालू की। मुंबई में अगले 6 जुलाई तक बारिश का ऑरेंज अलर्ट, आईएमडी के पूर्वानुमान के मुताबिक मुंबई में शुक्रवार तक भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना। रुद्रप्रयाग में बदला मौसम का मिजाज, केदारनाथ में हुई बारिश। चारधाम यात्रा को लेकर प्रशासन सख्त, बद्रीनाथ और केदारनाथ हाईवे के स्लाइडिंग जोन्स पर सुरक्षा जवान तैनात। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से की मौसम देखकर यात्रा करने की अपील, मौसम बदलते ही कम हुई भक्तों की संख्या। हिमाचल प्रदेश में मानसून ने दी दस्तक, कई इलाकों में हुई मूसलाधार बारिश। भारी बारिश से फसलों को मिली संजीवनी, तापमान में आई भारी गिरावट। हरिद्वार में सुबह सुबह हुई भारी बारिश, कई जगहों पर भरा पानी। चंडीगढ़ में सुबह सुबह हुई जोरदार बारिश, लोगों को गर्मी से राहत मिली। भारी बारिश से कई जगहों पर जलजमाव, वाहनों की धीमी हुई रफ्तार। एमपी के सीहोर में मूसलाधार बारिश, सड़कें बनी सैलाब। भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, पानी के तेज बहाव में बहने लगे वाहन। पठानकोट में भारी बारिश, कई रिहायशी इलाकों में जलभराव। सड़कों पर करीब 2 फीट तक भरा पानी, वाहनों के साथ साथ पैदल चलने वाले लोगों को भी भारी परेशानी। जम्मू कश्मीर में जोरदार बारिश, शापत नाले में आई अचानक बाढ़। भारी बारिश से सड़कों पर आया मलबा, जंस्कर करगिल सड़क बंद, रास्ते को साफ करने में जुटे लोग। सिक्किम के सिंगथम में जबरदस्त भूस्खलन, सड़कों पर आया मलबा, कई गाड़ियां फंसी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अरुणाचल प्रदेश के केई पान्योर जिले में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, राहत और बचाव कार्यों की जानकारी ली। उत्तराखंड के बागेश्वर में आज भारी बारिश का रेड अलर्ट, प्रशासन ने स्कूल्स और आंगनबाड़ी केंद्रों में आज छुट्टी घोषित की। बिहार में मेहरबान हुआ मानसून, दरभंगा में झमाझम बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में मानसून की बारिश का दौर, सतना में जमकर बरसे बादल। मध्य प्रदेश के सीहोर में बरसे बादल, भारी बरसात के बाद रिहायशी इलाकों में भरा पानी। बाबा बर्फानी की पवित्र यात्रा की तैयारियां पूरी, 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा का हो रहा शुभारंभ। जम्मू से कल रवाना होगा बाबा अरफानी के भक्तों का पहला जत्था। एलजी मनोज सिन्हा दिखाएंगे हरी झंडी। अमरनाथ यात्रा को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह। बड़ी संख्या में अमरनाथ बेस कैंप पहुंचे श्रद्धालु, जमकर लगाए जयकारे। अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए लगाए गए 650 सुरक्षा बल कंपनीज। इस बार 57 दिनों तक चलेगी अमरनाथ यात्रा। 28 अगस्त तक हो सकता है समापन। ऑपरेशन शिवा की सुरक्षा में होगी अमरनाथ यात्रा। जमीन से लेकर आसमान तक बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था तैनात। हर पड़ाव और हर रास्ते से लेकर सभी संवेदनशील इलाकों पर सुरक्षा एजेंसी की पैनी निगाह। बिना किसी भय के बाबा के दर्शन कर सकेंगे भक्त। NH-44 पर वैली QAT यानी वैली क्विक एक्शन टीम के जवान तैनात। इसी रास्ते से होकर गुजरेगी अमरनाथ यात्रा के यात्री। ऊंचे पहाड़ी इलाकों और जंगलों में ड्रोन के जरिए भी की जा रही है निगरानी। करीब 670 से ज्यादा अर्ध सैनिक बलों की कंपनीज भी तैनात। अमरनाथ यात्रा से पहले सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद। बालटाल रूट पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने फायर एंड इमरजेंसी सर्विस और दूसरी संबंधित एजेंसी के साथ मिलकर की मॉकड्रिल। हिमाचल प्रदेश के नैना देवी शक्तिपीठ धाम में आस्था का महाउत्सव। दर्शन पूजन के लिए भारी तादाद में पहुंच रहे श्रद्धालु। पिछले 3 दिन के दौरान करीब 1 लाख श्रद्धालु नैना देवी मंदिर पहुंचे। सुबह से ही मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले की खूबसूरत वादियों में है नैना

श्रीलंकाई सेना और लिट्टे के बीच सूप के लिए हुआ गृह युद्ध। महाराष्ट्र के वाशिम में गजानन महाराज की पारंपरिक शोभा यात्रा का उत्सव, जयकारों के साथ हुआ आगमन। गजानन महाराज की पालकी के दर्शन के लिए हजारों की तादाद में पहुंचे श्रद्धालु, जगह जगह शोभा यात्रा का किया गया स्वागत। गजानन महाराज की पालकी के दर्शन के लिए पहुंचे भक्तों के लिए किया गया महाप्रसाद का आयोजन, बेसन के 40,000 लड्डू बनाए गए। हजारों श्रद्धालुओं के लिए महाप्रसाद बनाने के लिए होती है विशेष तैयारी, बेसन रोटी और चावल के साथ दिया जाता है लड्डू का प्रसाद। बुल्ढाना के शेगांव से निकलती है गजानन महाराज की पालकी, 750 किलोमीटर का सफर तय करते हुए आषाढ़ी एकादशी पर पहुंचती है पंढरपुर। उज्जैन में बाबा महाकाल की उतारी गई विशेष भस्म आरती, बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। जलाभिषेक के बाद भगवान महाकाल का किया गया भव्य श्रृंगार, भक्तों ने लगाए हर हर महादेव के जयकारे। उज्जैन के बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचे ओडिशा और हरियाणा के मंत्री, बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह ने भी किए बाबा महाकाल के दर्शन। महंगाई के मोर्चे पर राहत की खबर, नायरा एनर्जी ने पेट्रोल डीजल के दाम घटाए, पेट्रोल 5 रुपए, डीजल 3 रुपए प्रति लीटर हुआ सस्ता। देश में कमर्शियल सिलेंडर की कीमतें 183 रुपए तक घटी, 5 किलो का छोटा सिलेंडर भी सस्ता। आज से बदल गए आम आदमी की जेब और खर्चों से जुड़े 6 प्रमुख वित्तीय नियम, पासपोर्ट फीस में बढ़ोतरी, आधार ईमेल अपडेट, क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड, लाउंज एक्सेस शामिल। आज से नए डिजिटल प्लेटफॉर्म ईपीएफओ 3.0 के लॉन्च की उम्मीद, इस सुविधा से ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स यूपीआई के जरिए निकाल सकेंगे अपने पीएफ का पैसा। आज से 31 दिसंबर 2026 तक आधार कार्ड में रजिस्टर्ड ईमेल आईडी अपडेट कराना भी होगा फ्री, पहले इस काम के लिए लगता था 75 रुपए का शुल्क। अब पासपोर्ट बनवाना होगा महंगा, आज से 36 पेज वाले सामान्य पासपोर्ट की फीस 1500 रुपए से बढ़कर होगी 2500 रुपए, तत्काल पासपोर्ट बनवाने के लिए लगेंगे 5000 रुपए। रेलवे यात्रा के नियम भी हो सकते हैं सख्त, इसके तहत बिना टिकट यात्रा करने वालों पर लगाया जा सकता है पहले से ज्यादा जुर्माना। चमोली स्थित फूलों की घाटी में पहुंचे रिकॉर्ड पर्यटक, अब तक 7000 से अधिक सैलानियों ने दीदार किया। 34 विदेशी सैलानियों ने फूलों की घाटी का दीदार किया, पिछले साल के मुकाबले 1.5 गुना बड़ी संख्या। दिल्ली के चितरंजन पार्क में मैंगो फेस्टिवल का आयोजन, पश्चिम बंगाल के 12 किस्म के आमों की लगी प्रदर्शनी। हिमसागर, लंगड़ा, लखनभोग, फजली, कृष्णभोग, अमितभोग, आम्रपाली की लगी प्रदर्शनी, 5 जुलाई तक चलेगा फेस्टिवल। मैंगो फेस्टिवल के साथ साथ हैंडलूम और हैंडक्राफ्ट से बनी चीजों की भी लगी प्रदर्शनी, बड़ी संख्या में लोग कर रहे हैं खरीदारी। नए आर्मी चीफ धीरज सेठ को साउथ ब्लॉक में दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर, वॉर मेमोरियल पर जाकर शहीदों को किया याद। हैदराबाद में राइट टू भरोसा कार्यक्रम का आयोजन, सीएम रेवंत रेड्डी हुए शामिल। ईटानगर में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने किया पौधारोपण, लोगों से की पौधा लगाने की अपील। विजयवाड़ा में इंजीनियरिंग कॉलेज में युवा सांसद कार्यक्रम, डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने शिरकत की। बिहार के 18 जिलों में केंद्रीय विद्यालय में खोलने की केंद्र सरकार ने दी अनुमति, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने दी जानकारी। सैलानियों से गुलजार हुआ पुंछ, बड़ी संख्या में पीर की गली पहुंचे सैलानी। गांधीनगर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन की नई इमारत का शिलान्यास, सीएम भूपेंद्र पटेल ने किया भूमि पूजन। उज्जैन में महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय के 6ठे दीक्षांत समारोह का आयोजन, राज्यपाल मंगू भाई पटेल भी हुए शामिल। कनूर में सांसद शफी परमपिल ने स्नेह विदू की चाबियां लाभार्थियों को सौंपी, लोगों के खिले चेहरे। अगरतला में साइबर सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने पर राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित, बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल।
मड़गाम रेलवे स्टेशन पर एसडी

0: सीआरएफ और सुरक्षा बलों ने आपातकालीन तैयारियों के लिए मॉक ड्रिल किया। आतंकवादी हमले, आपात स्थिति, आपदा से निपटने के लिए बलों ने तैयार को परखा। मॉक ड्रिल में जवानों ने आपसी तालमेल को परखा। पुंछ में आगामी मानसून के मॉनसून को लेकर सुरक्षा बलों ने किया मॉक ड्रिल। आपदा की तैयारियों को जांचने के लिए किया अभ्यास। अचानक आई बाढ़, भूस्खलन और हादसों के समय लोगों को सुरक्षित निकालने मकसद, त्वरित राहत पहुंचाने की क्षमता को जवानों ने परखा। बाढ़ के दौरान पानी में फंसे लोगों को रस्सी और विशेष उपकरणों की मदद से सुरक्षित बाहर निकालने का किया गया अभ्यास। एसडीआरएफ, सीआरपीएफ, पुलिस के जवान हुए शामिल। फिल्म जय हिंद जय सिंध का फर्स्ट लुक जारी। फिल्म में महेश मांजरेकर, जया प्रदा, जरीना वहा, विक्रम कोचर का अहम रोल। अक्टूबर को रिलीज होगी ये फिल्म। फिल्म अल्फा का नया प्रोमो रिलीज। 3 जुलाई को फिल्म सिनेमा घरों में देगी दस्तक। फिल्म का आज से एडवांस बुकिंग शुरू। फिल्म तेरा यार हूं मैं का दूसरे गाना तुम ही से प्यार प्लीज प्यार रिलीज। 24 जुलाई को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। फिल्म भाई तेरा स्टार का फर्स्ट लुक जारी। फिल्म में राघव जुयाल के साथ मुख्य भूमिका में निहारिका, एनएम आएंगे नजर। संजय कपूर, निखी वालिया, विवान भटेना और बरखा सिंह का भी अहम रोल। देहरादून में बाबा नीम करौली पर आधारित फिल्म हनुमान अंश के निर्माताओं ने फिल्म के प्रचार के लिए देशभर में सामुदायिक भंडारे आयोजित किए। बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। बेबी डू डाई डू का नया ट्रेलर रिलीज। बिना शोर हुमा कुरैशी ने मचाया कोहराम। 3 जुलाई को फिल्म होगी रिलीज। वेब सीरीज रक्तांचल का फर्स्ट लुक जारी। यूपी के पूर्वांचल में 80 के दशक के माफिया और टेंडर राज पर आधारित है ये फिल्म। फराह खान और रितेश देशमुख के साथ लॉकअप 2 में एंट्री करेंगी कंगना रनौत। जनता की आवाज के तौर पर आएंगी नजर। डॉन 3 विवाद के बीच अब प्रलय की शूटिंग शुरू करेंगे रणवीर सिंह। दिखाएंगे ज़ॉम्बीज़ की दुनिया। वेलकम टू द जंगल पर हो रही है नोटों की बरसात। फिल्म ने चौथे दिन की 9.5 करोड़ की कमाई। फिल्म ने अब तक 82 करोड़ का कलेक्शन किया। अंतरिक्ष से सामने आई शानदार तस्वीर। नासा के अंतरिक्ष यात्री क्रिस विलियम्स और जेसिका मीर ने पूरा किया 7 घंटे 20 मिनट का स्पेस वॉक। इंटरनेशनल अंतरिक्ष स्टेशन के रोबोटिक आर्म की बरामद के लिए किया गया ये स्पेस वॉक। 27 मई को सामान्य कामकाज के दौरान समस्या का पता चला था। अंतरिक्ष स्टेशन के मेंटेनेंस के लिए की जाने वाली ये 280वीं स्पेस वॉक थी। दोनों अंतरिक्ष यात्रियों ने स्पेस वॉक के दौरान स्पेयर पार्ट को बदलने का काम पूरा किया। अंतरिक्ष यात्री जेसिका मीर की ये 5वीं स्पेस वॉक थी, जबकि क्रिस विलियम्स दूसरी बार स्पेस वॉक मिशन को उन्होंने अंजाम दिया। नासा के मुताबिक 25 साल से ज्यादा समय तक लगातार काम करने के बाद रोबोटिक आर्म की मरम्मत सामान्य प्रक्रिया, समय समय पर किया जाता है रखरखाव।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
2: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में शादी में लगेगा ट्विस्ट का तड़का। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।
3: Tunein's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
4: Looking for your favorite local radio stations? Look no further. Tunein has got you covered. Not only can you stream all the best music, news, sports from all around the world, but you can also listen to all your local radio stations. Just head to the radio page on TuneIn to listen, and you can explore our interactive map to find all the local stations you know and love. Are you ready to dive in? Start listening today.
1: Good news today is really good. It's in this, na, those khabron ki maar dhaad aur chilla chilli nahi hai. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
6: रख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
0: और चलिए अब आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे वीडियो जिन्हें सोशल मीडिया पर बेहद पसंद किया जा रहा है, क्योंकि इनमें से कुछ आपको हंसाएंगे, कुछ गुदगुदाएंगे तो कुछ आपको इमोशनल कर जाएंगे।
7: सोशल मीडिया पर वायरल ये तस्वीरें बता रही हैं कि आस्था उम्र से नहीं, सेवा के प्रति आपके जुनून से आंकी जाती है। इस सेवादार का जुनून भी उनकी आस्था की तस्दीक कर रहा है। वो धर्म की राह पर निकले लोगों की राह में जिस खुशी से फूल बिछा रहे हैं, वो साबित करता है कि उनकी आस्था की पैंट कितनी गहरी है। सोशल मीडिया पर फूल बरसाने और बिछाने का ये अंदाज यूजर्स को भावुक कर रहा है। इस बच्ची का एक्शन देखकर कौन कहेगा कि इसमें टैलेंट नहीं। इसके एक्शन सोशल मीडिया पर वायरल है। उसका बैकग्राउंड बता रहा है कि कैसी परिस्थितियों के बावजूद उसने अपनी प्रतिभा को जीवित रखा है और वो अभ्यास कर रही है। इस बच्ची का जुनून देखकर लोग इस पर अपना प्यार बरसा रहे हैं। सोशल मीडिया पर चैन की एक घड़ी होटल में सीनियर सिटीजन्स की हर पल का आनंद लेते हुए तस्वीर लोगों को खूब पसंद आ रही है। शांत सुंदर जगह पर होटल के ये सीनियर गेस्ट जिंदगी का जश्न मना रहे हैं। हर तरफ उनके हंसी मजाक, संगीत और यादगार पल होटल में एक अजब माहौल पैदा करता है। उनके आराम और मस्ती भरे पलों को देख हर किसी को आनंद आ रहा है।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।

0: If you're serious about sports, NBC Sports Radio is the place for you. Start your day with NFL updates from Mike Florio. Then join Dan Patrick and the Danettes for in-depth discussions and the biggest guests in sports. Plus, don't miss Dan Le Batard at the intersection of sports and pop culture. Then when the games are on, tune in for live events and highlights from NBC Sports. Search NBC Sports Radio or tell your device to play NBC Sports Radio on TuneIn to listen.
1: पक रही होती खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
9: ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
10: बद्रीनाथ में भगवान विष्णु के भक्तों ने अब तक के सारे रिकॉर्ड किए ध्वस्त। 14 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन, हर रोज 15 से 20,000 श्रद्धालु कर रहे हैं दर्शन। दिल्ली में 75 ऐतिहासिक स्मारकों को गोद ले सकेगी प्राइवेट कंपनी। संरक्षण कार्यों के लिए 2 करोड़ तक का मिलेगा अनुदान, सरकार ने 2 संरक्षण योजनाओं को मंजूरी दी। दिल्ली नगर निगम को हाईकोर्ट का आदेश, खुले में कचरा फेंकने वालों पर जुर्माना 5,000 करने का दिया प्रस्ताव, कार्रवाई करने में ना हिचकिचाए निगम। कोटा को स्पोर्ट्स हब बनाने की तैयारी, श्रीनाथपुरम स्टेडियम को 4.47 करोड़ रुपए की सौगात, लोकसभा अध्यक्ष ने किया उद्घाटन, बच्चों के साथ खेला बास्केटबॉल। चमोली स्थित फूलों की घाटी में पहुंचे रिकॉर्ड पर्यटक, अब तक 7,000 से अधिक सैलानियों ने किया दीदार, पिछले साल के मुकाबले 1.5 गुना बढ़ी संख्या। मुंबई में जमकर बरस रहे हैं मानसूनी बादल, शहर से ज्यादा निचले इलाकों में बरस रहा है पानी, दक्षिण मुंबई के कई इलाकों में पानी भरा।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
11: बारिश का ये मौसम होता है ना कितना प्यारा, कितना सुहाना, बिल्कुल आपके और हमारे इस रिश्ते की तरह। तो आज तो इस सुहाने मौसम के आसपास ही हम करेंगे एंटरटेनमेंट की बातें और उसके साथ साथ चर्चा होगी एंटरटेनमेंट की दुनिया से हर खबर पर। गुड आफ्टरनून, नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त पारुल चौधरी, लेकर हाजिर हैं हम सास बहू और बेटियां यानी एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज। तो चलिए फिर फटाफट शुरू करते हैं एंटरटेनमेंट का ये सिलसिला हेडलाइंस के साथ।
12: सास बहू और बेटियां की एंटरटेनमेंट से भरी गुड न्यूज में आज देखिए, संपन्न होगा वीर और राधिका का शुभ विवाह, लौटेगी रूही की याददाश्त, एक होंगे रूही और नाहर,

मेहंदी की रस्म में झूमकर नाचेंगे घर वाले, जगधात्री बनाएगी मास्टर प्लान। बदलेगा सूरज का अंदाज, आईएएस ऑफिसर से बनेंगे बाहुबली। और अवार्ड्स नाइट पर लगेगा सितारों का मेला, साथ साथ होगी अनुपमा और नागिन। देखेंगे ये नजारे सिर्फ और सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: बचपन की वो अमीरी ना जाने कहाँ चली गई, वरना बारिश के पानी में हमारे भी जहाज चला करते थे। वाह वाह वाह वाह, क्या बात है। ओहो, बचपन के वो दिन थे ना दी बेस्ट। और आज बचपन के दिनों को याद कर रही हैं यहाँ पर हमारी रूहानी। वैसे रूहानी, मैं जानती हूँ आप काफ़ी परेशान हैं, स्पेशली जब से तेजू आई हैं आप दोनों की ज़िंदगी में, और क्रिएट कर रही हैं यहाँ पर बस कन्फ्यूजन्स और गलत फहमियाँ। तो क्या कुछ हो रहा है इस कहानी में आज? क्या फिर से आया है यहाँ पर कोई एंटरटेनिंग ट्विस्ट? लेकर चलते हैं आप सबको इस जुनूनी के सेट पर।
1: हमारे पापा को हाथ लगाने से पहले ना हमसे निपटना होगा। और गुरु चौधरी के कहर के आगे ना वो डीजीपी बचेगा और ना ही तुम।
2: गुरु और गौतम की टशनेबाजी।
3: तुम्हारे जिद के चक्कर में तुम्हारे बाप की जिंदगी चली जाएगी। तुम काहे गौतम की बात नहीं मान लेते?
1: फैसला कर लिया तुमने गुरु चौधरी, एक बार अपने पापा से पूछ तो लेते गौतम सिंह क्या चीज है।
2: गौतम ने चली नई चाल।
1: पापा रहना हमारे हाथ में, तुम्हारा और तुम्हारे पूरे खानदान का नाम निशान मिटा देंगे।
2: शुरू हुआ नागेश्वर का सुसाइड ड्रामा।
1: पापा नहीं, पापा
4: नहीं,
1: पापा छोड़ चल।
2: टीवी के सीरियल इश्क जुनूनी में हो रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां गौतम इस बात पर तुला हुआ है कि उसे अपनी बहन तेजू की शादी जैसे तैसे गुरु से करवानी है। इसीलिए वो नागेश्वर को धमकियां दे रहा है, जिस बात से गुरु भड़क गया है। और देखिए कैसे गुरु गौतम को खरी खोटी सुना रहा है। ऐसे में दोनों के बीच की टशन आज देखने लायक है।
1: हमारे पापा को हाथ लगाने से पहले ना हमसे निपटना होगा। और गुरु चौधरी के कहर के आगे ना वो डीजीपी बचेगा और ना ही तुम। फैसला कर लिया तुमने गुरु चौधरी, एक बार अपने पापा से पूछ तो लेते कि गौतम सिंह क्या चीज है। तुम्हें पावर है ना हमारे हाथ में, तुम्हारा और तुम्हारे पूरे खानदान का नाम निशान मिटा देंगे।
5: मेरा समाचार दे ठंडा
1: तब से देख रहे हैं हम, ये मीठी मीठी बातें बोलकर धमकी पे धमकी दिए जा रहे हो, डरा रहे हो हमारे परिवार को। डर का कारोबार करते हैं हम, तुमको कहाँ लगता है हा? ये हमें खोखली धमकियां देकर हम राजी हो जाएंगे तुम्हारी ये बहन से शादी करने के लिए?
2: भाई गुरु चाहे कितना भी चिल्ला ले, लगता है गौतम की चाल कामयाब हो चुकी है, क्योंकि नागेश्वर गौतम से डर चुका है। तभी तो वो पहुंच गया है अपने कमरे में सुसाइड करने के लिए। ऐसे में नागेश्वर की बीवी उसे देख लेती है और सभी घर वालों को इकट्ठा कर लेती है, और सही समय पर गुरु और उसका भाई अपने पापा को बचा लेते हैं और बड़ा हादसा होने से टल जाता है। सबके बाद दादी का गुस्सा गुरु पर ही फूटता है, क्योंकि गुरु और रूहानी के प्यार की वजह से ही ये सारा तमाशा हो रहा है, जहां नागेश्वर को अपनी जान तक देने की नौबत आ गई। ऐसे में बेचारा गुरु फंस चुका है, एक तरफ है उसके पापा तो दूसरी तरफ उसका प्यार।
3: कैसे जानते हैं हम घर में हमारे बेटे का हितैषी कौन है और कौन नहीं है? ठीक हो ना?
5: जल्दी से थोड़ा पानी दे। वैसे राजनीति ने हमें सहना सिखा दी, लेकिन इस बार हमारे सबर का बांध क्या है? हमारी बहन की इज्जत इस लड़के और बहन के ताव पर लगा दी। खैर अभी यह समय नहीं है सब बातें करने, आप आराम कीजिए।
2: अब तो गौतम भी आकर दोबारा धमकी देकर जा चुका है बड़े ही प्यार से। ऐसे में गुरु करे तो क्या करे, ऊपर से दादी है जो गुरु पर ही इल्जाम डाल रही है और गुरु को देखिए कैसे लाठी से पीट रही है। वह इन सब तमाशे का इल्जाम भी रूहानी पर आ गया है।
1: गौतम सिंह से डरने की जरूरत नहीं है, बाहुबली है, पूरे सुल्तानपुर में एक पत्ता नहीं हिलता हमारी इजाजत के बिना। बनना आसान नहीं है अम्मा, हमने कितने पापड़ देखे, कितने लोगों से सहारा मांगा, कितने लोगों से मदद मांगा। राजनेता है ना, हम जैसे बाहुबलियों का स्थान तो पहचान, अरे सारी शक्ति सारी सत्ता ही नहीं क्या हाथों में है।
4: असल में वो उसने दिखा दिया कि वो एक राजनेता है और वो कैसे बाहुबली को ख़त्म कर देगा। तो उसने एक अभियान चलाया हुआ है कि जितने भी गैंगस्टर हैं जितने बाहुबली उनको ख़त्म करने का। तो नोइंगली और अननोइंगली वो हमें थ्रेट देने आया है और उसकी बात में पक्का थ्रेट होता है कि भाई क्योंकि ये तो सबको पता है कि वो अपनी बहन की शादी कराना चाहता है गुरु के साथ और गुरु मान नहीं रहा है। तो वो हमें थ्रेटन देता है कि भाई डीजीपी से बात कर रहा था फ़ोन पे, तो डीजीपी कहता है कि सर आपने जो आदेश दिया था पूरा हो रहा है, बस एक आदमी बचा है नागेश्वर चौधरी, तो उसका भी हम वेट कर रहे हैं क्योंकि उसके सर पर आपका हाथ है। तो वो कहता है कि लो हमने अपना जो हाथ है उसके सर से हटा लिया है। तो फिर डीजीपी कहता है कि ठीक है सर, तो फिर हम तैयारी करते हैं उसको मारने की और उसे मतलब बुरी तरह से उसको हम मतलब उसके साथ कुछ बुरा ही करेंगे। तो ये हम सुन रहे होते हैं और हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं होती कि वो हमारे साथ ऐसा करेगा, क्योंकि बार बार ये कहता है कि आप हमारे पिताजी के मित्र हैं, आपका बहुत सम्मान करते हो, हमें नहीं पता था वो इस लेवल तक चला जाएगा। तो वहाँ हमें शौक लगता है, तो हमें लगता है कि जितनी भी हमारी सत्ता है जितनी भी हमारी सल्तनत है वो सब मिट्टी मिलने वाली, तो हमारे दिमाग में वो विचार चल रहा होता है। तो बस फिर हम मनी मन को डिसीजन लेते हैं, तो इतने में गुरु उसको पकड़ लेता है कि भाई तुमने हमारे पापा को धमकी कैसे दी। तो इतने में हम वहाँ से कुछ अपने ही मन में कुछ सोचते हम चले जाते हैं, तो कहाँ जा रहे हैं किसी को नहीं पता होता। तो बाद में फिर कुसुम जी चिल्लाती हैं तो जहाँ पे हम अपने आप को फांसी लगा रहे हैं लेकिन बच्चे आगे में बचा लेते हैं। तो उसके पीछे रीज़न ये है कि भाई अब ये सब कुछ ख़त्म होने वाला है और इससे पहले पुलिस के हम हाथों पड़े हम खुद ही अपनी जान दे देते हैं। तो ये एक सीन चल रहा है।
2: तो भाई इन सब के बाद अब गुरु अपने पिता और परिवार को चुनेगा या अपने प्यार रूहानी को, ये देखना होगा, क्योंकि उसे तो मजबूर किया जा रहा है कि गुरु तेजू से शादी करे। अब देखना होगा कि इनकी शादी होती है या फिर गुरु सिचुएशन को संभालते हैं। मुंबई से कैमरामैन अजय उग्रेजा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
0: मौसम है बारिश का और याद तुम्हारी आती है, बारिश के हर कतरे में आवाज तुम्हारी आती है। क्या कुछ ऐसा ही है यहाँ पर नाहर और रूही के दिल का हाल। अब देखिए ये हो गए हैं एक दूसरे से अलग, ऑब्वियसली याद तो आती होगी, करते होंगे ये एक दूसरे को मिस, तो बस आम दोनों के हाथों में ही तो है कि करना इन कन्फ्यूजन्स को दूर, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को खत्म, और आना एक दूसरे के पास एक बार फिर एंड रहना फॉरएवर एक दूसरे के साथ। तो चलिए लेकर चलते हैं आप सबको मनसुंदर के सेट पर और देखते हैं किस तरह आगे बढ़ रही है आज ये कहानी।
6: जन्म जन्म जन्म साथ चलना यूं कसम तुम्हें कसम।
2: लौट आई रूही की याददाश्त,
6: यही एक जान
2: हुआ रूही और नाहर का मिलन,
6: बदन हो जुदा मेरी,
2: एक हुआ रूही का परिवार।
6: मेरी सुबह हो तुम्हीं।
2: दंगल टीवी के सीरियल मन सुंदर में नाहर ने सुहानी और जूही के जन्मदिन पर सुहानी की याददाश्त वापस लाने का पूरा खेल खेला है। ठीक वही सिनेरियो पैदा किया है जो पहले रूही के साथ हुआ था। घर में अंधेरा कर दिया है और रूहान का रोना शुरू करवा दिया, जिसे सुनकर रूही की हालत खराब हो रही है और उसे बीते दिनों की याद आने लगी है। और दौर जैसे ही उसकी नजर पड़ी रूहान पर, तो देखे कैसे वो रूहान पुकारते हुए सीधा अपने बेटे के गले जा लगी। ये देखकर चूही और नाहर दोनों ही खुश हो रहे हैं, क्योंकि उनके मन में उम्मीद जो जाग उठी है। रूही ने तो रूहान को संभाल लिया और नाहर उसकी आंखें नम हो गई ये देखकर कि उसकी रूही वापस जो लौट आई है। लेकिन तभी अचानक सुहानी को हिचकिचाहट महसूस होती है, सर में दर्द होता है, उसकी धुंधली यादें और भी ताजा होने लगती हैं और उसके अंदर एंजाइटी इतनी बढ़ जाती है कि जिसके चलते रूही हो जाती है बेहोश। खैर रूही के इस तरह तबीयत बिगड़ने पर दादी घर में बवाल करती हैं। ऐसे में नाहर और जूही दादी को संभालते हैं।
7: कैसे लेकिन जाने जाने में याद है जैसे कि मैं फाइल कर रखता
8: हूँ और जैसे कि किचन में कौन सा सामान कहाँ रखा
7: है। दादी इसलिए मेरे डॉक्टर से बात की, 5 साल पहले रूही के साथ जो भी हुआ था उसे वापस याद दिलाने की कोशिश की, इसलिए लेकिन एक
2: माँ। अब जूही और नाहर दोनों ने एक कोशिश की और वो कोशिश रंग ले आई। तभी तो देखिए कैसे रूही को अचानक होश आ गया और वो आकर सीधा अपने नाहर के गले जा लगी। ऐसे में नाहर की खुशी का ठिकाना नहीं है, क्योंकि उसे उसका प्यार जो मिल गया है।

0: मुझे मुझे सब याद आ गए।
1: हाँ हम बदलने लगे, गिरने संभलने लगे,
2: भाई नाहर ने तो अपनी रूही को अपने गले लगा लिया और बेहद खुश भी हो रहा है। ऐसे में जूही भी अपनी बहन को वापस पाकर बहुत खुश है और तो और ननद भी अपनी भाभी को पाकर खुशी से फूली नहीं समा रही। खैर रूही का पूरा परिवार एक हो गया है, लेकिन देखना होगा कि अब रूही को ये पता चल पाएगा कि रूही के साथ जो भी हुआ है वो उसकी दादी सास ने करवाया था। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
3: कभी तो जी भर के बरसना, कभी बूंद बूंद के लिए तरसना, ए बारिश तेरी आदतें मेरे यार से हैं। ओह माय गॉड, कुछ ऐसा ही कह रहे हैं यहाँ पर सूरज। ईशा, क्या आप सुन रही हैं सूरज की बातें? वैसे कहानी में काफी उलट पुलट हो गया है, कहानी में हमने जैसा सोचा था उससे एकदम अलग हो गया है, लेकिन क्या फिर भी कहानी में हो जाएगा सब कुछ ठीक। वो कहते हैं ना, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। लेकर चलते हैं आप सबको पति ब्रह्मचारी के सेट पर।
4: लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर नॉट रेडी फॉर दिस। गेट रेडी।

0: गले में चेन, हाथों में घड़ी और अंगूठियाँ, शॉल पहनकर, आंखों में गुस्सा लेकर बदल गया है सूरज का अंदाज। जी हाँ, सूरज अब आईएएस ऑफिसर नहीं बल्कि बन गया है बाहुबली और करता है अपनी ही अदालत में सभी का इंसाफ। दंगल टीवी के सीरियल पति ब्रह्मचारी में कहानी में बड़ा ट्विस्ट आ गया है। भाई, जिस ईशा के लिए सूरज आईएएस ऑफिसर बना था वो अब पूरी तरह से बदल चुका है। अब वो बन गया है दबंग गुंडा यानी बाहुबली, जो अपनी ही अदालत लगाता है और लोगों की मदद करता है, अच्छों को इंसाफ दिलाता है। और देखिए तो कैसे उसका पूरा का पूरा अंदाज ही बदल चुका है। अब सूरज पूरी तरह पहले जैसा बन चुका है और आंखों में उसके गुस्सा है। और आज फिर एक बार लग चुकी है सूरज की अदालत, क्योंकि सूरज अब बाबू भाई है और इंसाफ लेने के लिए यहाँ दो लोग पहुँचे हैं, एक बूढ़ा जिसने पैसे लिए हैं और ये शख्स जिसने उसे पैसे दिए हैं। लेकिन सूरज सभी की बातें सुनता है और फिर लेता है फैसला। ऐसे में उसे पता चल गया कि पैसे देने वाला गलत है, क्योंकि उसने इस बुजुर्ग की लड़की के साथ गलत किया था। तो देखिए कैसे वो उस शख्स को सबक सिखाता है।
1: पैसे लिए थे, वापस नहीं कर रहा। दादा भाई, मैंने अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए पैसे लिए, लेकिन उसे लौटाने के लिए उस दिन और मांगे, तो ये मेरी बेटी का रास्ता रोककर उसे बदतमीजी कर रहा है।
0: इतना ही नहीं, वो इस बुजुर्ग के साथ भी इंसाफ करता है और उसे खुद पैसे देता है ताकि वो अपना कर्ज चुका पाए और उसे आगे कोई मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। तो देखा आपने, सूरज की इस अदालत में सिर्फ और सिर्फ इंसाफ होता है, वो भी सूरज के स्टाइल में।
1: दादा भाई जिंदाबाद, दादा भाई जिंदाबाद, दादा भाई जिंदाबाद।
2: मैं भारत और संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा रखूंगा।
3: मेरी निष्ठा सिर्फ आम लोगों के लिए है।
2: मैं कानून की रक्षा करूंगा।
3: हर नागरिक की सुरक्षा ही मेरा कानून है।
0: तो आखिरकार सूरज आईएएस ऑफिसर की पदवी छोड़कर बाहुबली क्यों बना, क्या है इसके पीछे का राज, आइए सूरज से ही जानते हैं।
4: शॉक भी हो गया और डर भी गया। रीजन ये है कि क्या होता है कि वेरिएशंस लेने पड़ते हैं कैरेक्टर में, जब यू नो चीज़ों के हिसाब से होता है। बिकॉज मैं तो ऐसे ही हूँ, मैं तो अपने डायरेक्टर सर अमन सर से बहुत सारी बातें करता हूँ कि सर ये कैरेक्टर को अब कैसे करें, क्योंकि इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है एंड दूसरी चीज़ उसके साथ इतना बड़ा आप बीती हो चुकी है ऑलरेडी पास्ट में, कि लाइक आरव गुजर गया है, पापा कोमा में है एंड जो वो आईएएस के पद पे था उसको आईएएस के पद पर धमकी दी जा रही थी कि तुझे किसी भी तरह हटा देंगे, तुझे अपने जूती तले रगड़ देंगे जितने भी पॉलिटिशियंस थे। इन शॉर्ट जो सिस्टम में खामियां होती है वो सब सूरज पर हावी हो चुकी थी और वो हावी होने की वजह से सूरज कहीं ना कहीं अपनी बहन के पति आरव को खो दिया एंड अपने पापा को इन शॉर्ट खो ही दिया है, क्योंकि वो कोमा में है पिछले एक साल से। एंड ईशा जी जो है, ईशा जी को कानों कान खबर नहीं है कि एक्चुअली क्या हुआ है वहाँ घर पर, क्योंकि सूरज ने उन्हें प्रॉमिस दे दिया था और वादा कर लिया था कि आप अब छुट्टियों में खो ही दिया है क्योंकि वो कोमा में है पिछले एक साल से। एंड ईशा जी जो है, ईशा जी को कानों कान खबर नहीं है कि एक्चुअली क्या हुआ है वहाँ घर पे, क्योंकि सूरज ने उन्हें प्रॉमिस दे दिया था और वादा कर लिया था कि आप अब छुट्टियों में भी घर नहीं आएंगे और आप मुझसे वादा कीजिए कि आप जब आईपीएस की वर्दी में होंगी, लाल बत्ती की गाड़ी में होंगी, तभी मेरे सामने आएंगी। और ईशा जी उसे मान भी लेती हैं, क्योंकि सूरज बोलता है कि ये मुझसे प्रॉमिस करो ईशा जी, वादा करो, और ईशा जी बोलती है ठीक है। तो अब एक साल हो गया है, अब ईशा जी नियर अबाउट आने वाली है, लेकिन पिछले एक साल में जब काव्या बहुत ज़्यादा गुस्से में थी तो काव्या ने माथा पीट पीट के कहीं ना कहीं गुस्से में बोला था अपने भाई को कि इससे अच्छे तो आप तब थे कि जब आप गुंडे थे, कम से कम पूरा इंदौर शहर आपसे डरता था। अब आप आईएएस होने के बाद, आपके हाथ में पावर होने के बाद भी आप कुछ चंद नेताओं के नीचे यू नो जूती तले रगड़ रहे हो, तो दिस इज़ नॉट डन। तो काव्या ने ये बात बोल दी थी सूरज को और सूरज ने सोचा समझा बहुत ज़्यादा और ये रौद्र रूप उसने अपनाया, क्योंकि अब से वो सिर्फ बाबू भाई है एंड बाबू भाई जो है वो लोगों का कर्ता धरता है। इन शॉर्ट लोगों की परेशानियां दूर करता है, किसी को पैसे की जरूरत है, किसी की कुछ भी एक्स वाई जेड। ये एक्चुअली जो ये ऊपर से शॉल दिया है, ये जब भी दरबार में मतलब इन शॉर्ट अदालत में बैठेगा तभी पहनेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट नॉर्मल ये वी कैन से लाइक सरकार लुक।
0: तो भाई अपने परिवार के लिए सूरज को ये कदम उठाना पड़ा, लेकिन इन सब बातों से अनजान है ईशा। जब ईशा यहाँ आएगी तो उसे जोर का झटका लगने वाला है, क्योंकि वो तो आईपीएस ऑफिसर बन चुकी होगी और सूरज को फिर एक बार वो गुंडा बना देख शौक में रह जाएगी। खैर, ये तो है सीरियल में आने वाला ट्विस्ट। फिलहाल तो घर में सूरज के पिताजी व्हीलचेयर पर हैं और उनकी ये हालत देखकर घर वाले काफी दुखी हो रहे हैं। लेकिन अब सूरज है ना जो सब कुछ संभाल लेगा। लेकिन इन सब का सूरज और ईशा के रिश्ते पर क्या असर पड़ेगा, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। मुंबई से शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
5: कभी बरस पड़ी कभी गुमसी है, ये बारिश ना तुमसी है, कुछ ऐसा ही है यहाँ पर मन्नत के दिल का हाल। लेकिन क्या हो गया है मन्नत की इस कहानी में? अब विक्रांत की याददाश्त चली गई है, मन्नत पूरी कोशिश कर रही है कि किस तरह उनकी याददाश्त वापस आ जाए। वो बन गए हैं अभिमन्यु। देखिए, कहानी को जितना सुलझना चाहिए ना उतनी ही वो उलझती जा रही है, लेकिन अंत में हो ही जाएगा इस कहानी में भी सब कुछ ठीक। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको मन्नत के पास और देखते हैं ऐसा क्या हो रहा है इनकी कहानी में आज।
6: धूप से निकल के छांव से फिसल के हम मिले जहां पर।
0: मन्नत और विक्रांत का आमना सामना।
7: आसमां पिघल के शीशे में ढल के जम गया तो तेरा।
0: पास होकर भी बढ़ गई दूरियां।
6: दुनिया भुला के तुमसे मिला हूँ, निकली है दिल से ये दुआ।
0: मन्नत और विक्रांत की मजबूरियां।
6: रंग

के सीरियल मन्नत में अभिमन्यु पहुंच गया है मुंबई के मरीन ड्राइव पर और वहां पर उसे मिल गया है बच्चों का साथ। जरा देखिए कैसे उन बच्चों संग समय बिता रहा है, उनके साथ हंस खेल रहा है। लेकिन अनजाने में वहां पर पहुंच गई है मन्नत भी और उसे अपने विक्रांत के होने का हो रहा है एहसास।

मन्नत और विक्रांत एक ही जगह पर एक दूसरे के सामने मौजूद हैं, लेकिन एक दूसरे को देख नहीं पा रहे। ऐसे में किस्मत देती है इनका साथ, दोनों एक ही जगह पर आकर खड़े भी हो जाते हैं रंग बिरंगे गुब्बारों को देखने के लिए। और देखिए कैसे चलती है हवा और नीले रंग की पन्नी उड़कर इनके ऊपर गिर जाती है और दोनों के बीच चुनरी वाला समा बन जाता है।

की नजरें टकरा जाती हैं और मन्नत वो तो खुश है क्योंकि उसका विक्रांत आखिरकार उसके सामने आ गया है, लेकिन विक्रांत उसे तो अपने अतीत के बारे में कुछ याद ही नहीं है।

0: जन्नत को देखकर अभिमन्यु को अपनेपन का एहसास तो हो रहा है, लेकिन उसकी नजर के सामने उसकी मान्यता खड़ी है। ऐसे में वो मन्नत का साथ छोड़ आगे की ओर बढ़ जाता है। ये देख मन्नत हैरान है, क्योंकि उसका विक्रांत उसके पास होकर भी पास नहीं है। खैर, ये तो आने वाला ट्विस्ट है। देखना होगा कि कैसे मन्नत अभिमन्यु को उसके बीते दिनों की याद दिलाएगी। लेकिन विक्रांत के मिलने से पहले मन्नत अपनी बेटी के लिए परेशान हो रही है। असल में हाल ही में दुआ गुंडों से बचकर घर में आई है। ऐसे में धैर्य उसका ख्याल तो रख ही रहा है, लेकिन मन्नत भी पहुंच जाती है अपनी बेटी पर प्यार जताने। हालांकि दुआ चैन की नींद सो रही है, लेकिन अचानक नींद में उसे वो गुंडे दिखाई देते हैं और वो डर के मारे उठ भी जाती है और तभी अपनी माँ को बताती है कि उसने अपने पापा को देखा था।
1: Thank you.

0: अब मन्नत को पूरा यकीन हो चला है कि अभिमन्यु ही उसका विक्रांत है। देखना होगा कि अब मन्नत कैसे अपने पूरे परिवार को एक करेगी। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
1: बारिश का ये मौसम, जिसके साथ साथ हमारा खाना पीना भी हो जाता है मजेदार, कुछ ना कुछ खास। तो ऐसा क्या है आज आपकी रसोई में? गर्मा गर्म पकौड़े, भजिया, समोसे, पाव भाजी या फिर वड़ा पाव? ओ माय गॉड, यहाँ तो आ रहा है मेरे मुंह में पानी। वैसे खास से याद आया, अभी तो सवाल कर रखी है हमने आपके लिए स्पेशल स्टोरी, स्पेशली फॉर यू। तो चलिए फिर फटाफट लेकर चलते हैं आप सबको इसकी ओर।
2: रेड कार्पेट पर लगा सितारों का मेला, दिखा सितारों का फैशन टशन।
3: आज की रात मजा उसका, आँखों से लीजिए।
2: अवार्ड्स की शाम रही शानदार, बीती शाम हुए आइकॉनिक गोल्ड स्ट्रीमिंग अवार्ड्स 2026, जिसमें नजर आए कई सारे सितारे। अवार्ड्स की नाइट बन गई काफी रॉकिंग, क्योंकि सितारे जमीन पर जो उतर आए हैं, तो सास बहू और बेटियां आपके लिए लेकर आया है इस अवार्ड नाइट के सभी नजारे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस अवार्ड नाइट में टीवी और बॉलीवुड की ये हसीनाएं अपने फैशन का जलवा लेकर कैसे पहुंची। तो भाई यहां पहुंची हैं आप सबकी प्यारी अनुपमा यानी कि रूपाली गांगुली, जिन्होंने इंडियन अटायर चुना। जी हाँ, ये पहन कर आई है ये साड़ी और उस पर ये टैसल्स वाला जैकेट। भाई इनके लुक में तो

इसके बाद बारी नागिनों की। यहाँ शामिल हुई प्रियंका चहर चौधरी, जो अपने हुस्न का काला जादू चला रही हैं। जी हाँ, इन्होंने पहनी है हाफ शोल्डर ब्लैक ड्रेस।

साथी गोल्डन परी बनकर पहुंची कनिका मान और इन्होंने चुनी गोल्डन साड़ी। इसके अलावा यहाँ पर पहुंची है राधिका मदान जो ऑफ व्हाइट कलर के आउटफिट में कयामत ढा रही है

तो वही गोल्ड अवार्ड्स है, तो गोल्डन ट्यूब ड्रेस में यहाँ नजर आई अपने हुस्न का जलवा बिखेरती हुई शहनाज गिल। अपने हुस्न का जलवा बिखेरती हुई शहनाज गिल।

इन सभी हसीनाओं ने अपने फैशन का टशन दिखाया। करते हैं बॉलीवुड और टीवी के हैंडसम हंक्स की, तो यहाँ पर पहुँचे रणदीप हुड्डा।

नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो सभी सूट बूट में इस अवार्ड नाइट में हुए शामिल। इसके अलावा देखिए कैसे अवार्ड लेकर ये सभी काफी खुश हैं और अपने अवार्ड को कर रहे हैं फ्लॉन्ट। इसके अलावा बाकी सितारे भी इस अवार्ड नाइट में हुए शो में और सभी ने इस अवार्ड नाइट की शान बढ़ाई। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।

बारिश का ये मौसम यानी टेम्पटेशन का मौसम हम सबकी भूख पड़ जाती है। मेरा तो हर समय मन करता है कुछ ना कुछ चटपटा खाने का। वैसे आपको एक बात बताऊं, इतनी ही चटपटी है हमारी ये अगली खबर जिसमें है एंटरटेनमेंट का मसाला। अब आपके पेट में हो गया है दर्द, तो चलिए फटाफट लेकर चलते हैं आपको इसकी ओर। लेट्स चेक इट आउट।

0: के सीरियल तू ही रे दिल में आज वृंदा बहुत खुश है भाई। उसकी हल्दी की रस्म है और उसकी शादी संजय से होने वाली है, ऐसे में तो खुशी साफ साफ झलकेगी। लेकिन उसे ये नहीं पता कि धोखे से उसकी शादी धनकोर कराना चाहती है नरेंद्र से। खैर वृंदा ही नहीं बल्कि दादी भी अनजान है, इसीलिए तो देखिए कैसे नाच गाना हो रहा है। सभी बहुत खुश हैं, लेकिन इसी बीच वहाँ पर पहुँच जाता है नरेंद्र हाथों में लेकर हल्दी, क्योंकि वो हल्दी खुद अपने हाथों से लगाना चाहता है। ऐसे में वृंदा की दादी उसे रोक लेती है। बस फिर क्या, चिढ़न के मारे नरेंद्र पहुँच जाता है अपने कमरे में बवाल मचाने के लिए। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, धनकोर और विपुल भी कमरे में पहुँच जाते हैं और सारे दरवाजे खिड़की बंद कर देते हैं, क्योंकि नरेंद्र हल्ला गुल्ला जो कर रहा है।
1: आप बताइए विपुल भाई,
2: इनको हल्दी इसलिए लगा क्योंकि एक रिचुअल होता है जिसमें कहा जाता है कि जो पहली हल्दी होती है वो लड़के वालों की तरफ से आती है। तब इनकी नजरिए में तो यही लड़के हैं जिनसे शादी होनी है, तो इनको लाइक बोल सकते हैं, इनको जलन हो रही है।
1: नहीं नहीं, ऑब्वियसली मतलब जलन तो हो ही रही है। अब इतना वक्त हो गया है, तैयारी कर रहा हूँ, कैसे सबको मना रहा हूँ कि कैसे भी शादी करी जाए, और सपने बुन रहा हूँ कि मैं ही शादी करूँ। अब मेरे सामने किसी और लड़के के बारे में बात हो रही है और उसकी सहेलियाँ जो हैं वृंदा की कह रही हैं कि नहीं जीजू हल्दी लगाएंगे, ये लगाएंगे, तो मुझे बड़ा ख़राब लगता है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं जाके हल्दी लगा दूँ, और जब मुझे दादी रोक देती हैं तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, और उसके बाद जो मैं करता हूँ वो विपुल भाई बताएंगे।
2: वो ऐसा दर्द है जो बयां भी नहीं हो सकता, दिखाया भी नहीं जा सकता, छुपाया भी नहीं जा सकता।
1: अब बच्चों की तरह फूट फूट के रोता हूँ, क्योंकि मतलब अब तक शादीशुदा मतलब नहीं हूँ मैं, मैं चाहता था कुंवारा ही हूँ मैं, कभी सोचा भी नहीं था कि मैं शादी करूँगा। अब मौका मिल रहा शादी करने का, 40 साल

0: लाइफ में मुझे पता है कि मैं अभी चुनाव जीता हूँ उसकी वजह से, तो मैं चाहता हूँ कि अब वो मेरे जीवन में रहे, जो कि मैं पहले नहीं चाहता था। खासकर मेरी फूई ने ज़बरदस्ती मुझसे कहा कि अगर ये लड़की रहेगी तुम्हारे जीवन में, जैसा आपने पहले देखा भी होगा, तो तुम हर चीज़ अचीव कर सकते हो। तो ये जानने के बाद तो मुझे लगता है कि अगर ये मैं सुबह उठ के उसका चेहरा ही देख कर दिन की शुरुआत करता हूँ, तो जीवन भर मेरे साथ रहेगी तो हर वक्त उसका चेहरा देखूंगा। तो बस यही है, और
1: जीवन मंगलमय हो जाएगा, क्योंकि अभी हमारी नज़र में तो संजय नाम का कोई इंसान है ही नहीं,
0: हमें पता ही
1: नहीं करता है। मतलब खाली एक फोटो मिली और कुंडली मिली, हमें लगा हाँ भाई इसे करते हैं, ये प्लानिंग बिठाते हैं। अब हमें क्या पता कि भाई वो पर्दे के पीछे वही है।
0: हाँ, मतलब कि वही आ जाएगा,
1: वही
0: मतलब
1: आ जाएगा सरप्राइज सरप्राइज।
0: जी
2: भाई, प्रेमलता को तो इनकी प्लानिंग और प्लॉटिंग पता चल गई। ऐसे में धनकोर का गुस्सा उसके ऊपर ना फूटे। देखिए कैसे वो सभी के सामने करने लगी बवाल, और तो और देने लगी मरने की धमकी भी। बस फिर क्या, जैसे तैसे विपुल उसे रोक लेता है, और बाहर वालों को इस ड्रामे के बारे में पता ना चले इसलिए विपुल और नरेंद्र तो बाहर निकल जाते हैं। लेकिन प्रेमलता उसकी शुरू हो जाती है नौटंकी। जरा देखिए कैसे वो पेट दर्द का बहाना करने लगती है, क्योंकि उसके मन में तो लालच ही लालच है।
3: क्या हो? क्या हो? क्या खा लिया? तो क्या है ये बात पेट में बचानी है ने? पेट के अंदर कुछ तो जाना चाहिए ने? ससुमा, क्या आपको तो पता है ना मेरा मेरे पेट में ज्यादा देर बाद पचती नहीं है ससुमा। तो अगर अच्छी लगेगी ससुमा, मेरे शादी का घर है अपनी कलाई में। आ ससुमा,
2: भाई धनकोर ने तो अपने दोनों सोने के कंगन प्रेमलता को दे दिए और उसकी बोलती बंद करा दी। इतना ही नहीं, उसने आदेश भी दे दिया कि सभी के सामने वो नरेंद्र की हल्दी लेकर जाए, ताकि जाने अनजाने नरेंद्र के नाम की हल्दी वृंदा को लग जाए। लेकिन उसी वक्त आता है कहानी में ट्विस्ट, क्योंकि वहाँ पर मेहमान बनकर पहुँच जाती है सरिता, जिसे वृंदा बहुत पसंद है। असल में वृंदा ने सरिता की ना सिर्फ जान बचाई है, बल्कि वक्त वक्त पर उसकी सरिता से मुलाकात भी हुई है, और आज तो सरिता उसके लिए लेकर आई है तोहफा जो वृंदा का ही है, जिसे देखकर वृंदा खुश हो जाती है।
4: ये हमारी रादर आपकी वृंदा की हल्दी हो रही है, और सरिता वहाँ पहुँच जाती है बिकॉज मंदिर में बा उन्हें कहती है कि आप ज़रूर आना, वृंदा की हल्दी है। तो सरिता पहुँच जाती है बिकॉज कुछ तो कनेक्ट उसे फील होता है, एंड वो यहाँ पहुँच जाती है वृंदा को आशीर्वाद देने के लिए।
2: भाई वृंदा ना सिर्फ अपना लॉकेट देखकर खुश होती है, बल्कि वो लॉकेट खुद सरिता उसे अपने हाथों से पहनाती है, यानी सासू माँ से नेक उसे पहले ही मिल जाता है। खैर सरिता भी अनजान है कि वृंदा संजय से शादी के सपने देख रही है, और जाने अनजाने ही सही वृंदा की दादी आकर सरिता को हल्दी देती है, ताकि वो हल्दी वृंदा को लगा सके।
4: हल्दी आ चुकी है, और हल्दी की शुरुआत मेरे हाथ से होती है। मुझे अतिथि देवो भव बोल के बा करवा देती है मेरे हाथ से। एक कुछ है, कुछ तो कनेक्ट है वृंदा के, बिकॉज वो मुझे पहले बचाती है। वो बोलती भी है सरिता के माँ अम्बे का रूप लेके आ गई है, नहीं तो मैं तो बेहोश होने वाली थी। तो मंदिर में भी पहुँच जाती है, और यहाँ मैं उसके घर पहुँच जाती हूँ। नहीं तो ऐसे तो फॉर्मेलिटी के लिए हर कोई बुलाता है, पर सरिता का इस तरह उस बात को सीरियसली लेके उसके गाँव में पहुँचना, ये थोड़ा अलग है, तो है कुछ तो कनेक्ट है सरिता और वृंदा का।
2: अब ये कनेक्शन तो आगे नजर आएगा, फिलहाल तो सरिता ने खुद अपनी

0: होने वाली बहू को हल्दी लगाई है। अब देखना होगा कि कैसे झूठ से पर्दा हटेगा और सच सभी के सामने आएगा। मुंबई से शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
1: आज तो हमारी सास बहू और बेटा की एयरलाइन भी कर रही है आपके लिए एंटरटेनमेंट की झमाझम बारिश। एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज यहाँ कर रही हैं, आप सबका इंतजार खुले हैं यहाँ पर एंटरटेनमेंट के सभी द्वार। तो आप भी कर लीजिए हमारी एयरलाइन का बोर्ड और हम लेकर चलेंगे आपको एंटरटेनमेंट की दुनिया के इस नॉन स्टॉप सफर पर, जहाँ पर हर स्टॉप है मनोरंजन से भरपूर। कैसे? ऐसे।
0: दंगल टीवी के सीरियल मन अति सुंदर में राध्या परीक्षा देने निकल तो रही थी, लेकिन उसे हार मिलनी शुरू हो गई है क्योंकि दादी जो राध्या के साथ खड़ी नहीं है। ऐसे में राध्या प्रतियोगिता के लिए निकल के आ रही थी कि दादी ने उसे रोक दिया।
2: तुम कहीं नहीं जा रही।
0: दादी ने तो अपना फरमान सभी को सुना दिया, लेकिन इसी बीच वहाँ पर प्रथम आता है। राध्या को लगता है कि प्रथम उसका साथ देगा। ऐसे में राध्या प्रथम से गुजारिश करती है साथ में चलने को, लेकिन प्रथम उसे मना कर देता है क्योंकि वो दादी की बातों में जो आ गया है। ऐसे में उसकी बातें सुनकर राध्या बेहद परेशान है। इतना ही नहीं, प्रथम तो उसका हाथ छुड़ाकर वहाँ से चला भी जाता है और तो और घर के बाकी लोग भी एक एक कर वहाँ से निकल जाते हैं। ऐसे में राध्या को लगता है कि आज उसके साथ कोई नहीं है, इसलिए देखिए कैसे वो दादी के सामने अपनी नाराजगी जताकर चुपचाप वहाँ से निकल जाती है। अब देखना होगा कि राध्या कैसे प्रथम को मनाएगी और कैसे प्रतियोगिता में हिस्सा लेगी।
3: हुसन तेरा तौबा तौबा तौबा तौबा, हुसन तेरा तौबा तौबा तौबा तौबा।
0: कलर्स का रियलिटी शो लाफ्टर शेफ अपने फिनाले राउंड में पहुंच गया है और ऐसे में फिनाले राउंड में खास मेहमान बनकर पहुंच गए हैं खतरों के खिलाड़ी सीजन 15 के सभी प्रतियोगी, जिनमें नाम शामिल है गौरव खन्ना का, जो कि यहां पर अपना स्वैग दिखा रहे हैं और तो और टशन भी। इतना ही नहीं, इन दिनों गौरव और उनकी बीवी आकांक्षा को लेकर जो कंट्रोवर्सी चल रही है उस पर भी गौरव अपनी बीवी को सपोर्ट करते हुए नजर आए। भाई गौरव खन्ना के साथ साथ तो यहाँ पर विशाल आदित्य सिंह भी दिखे, जिनका स्टाइल देखते ही बनता है। आंखों में काला चश्मा चढ़ाकर सूट बूट पहनकर ये हैंडसम तो दिख ही रहे हैं, लेकिन जैसे ही इनकी मुलाकात भारती से हुई दोनों के बीच यारियाँ देखने को मिली। इतना ही नहीं, बातों ही बातों में भारती के मुँह से कुछ राज की बात भी निकल गयी, वो भी खतरों के खिलाड़ी सीजन 15 से। भाई विशाल तो यहाँ पर सच को नकारते हुए चले गए, लेकिन इनके अलावा यहाँ पर फरहाना भट्ट भी नजर आई हैं, जिन्होंने सूट बूट पहना है और गले में टाई भी डाली है और एकदम कॉर्पोरेट लुक में लाफ्टर शेफ में पहुँची हैं।

इनके अलावा शगुन शर्मा और हर्ष गुजराल भी नजर आए, जो कि एकदम स्टाइलिश अंदाज में पहुंचे हैं और अपना टशन दिखा रहे हैं। खैर, ये तो बात थी खतरों के खिलाड़ी सीजन 15 के प्रतियोगियों की।

अब बात करेंगे लाफ्टर शेफ के सभी कलाकारों की। भाई इस बार हसीनाओं का जलवा देखने को मिला है, वो भी देसी अंदाज में। निया शर्मा जिन्होंने सफेद रंग की साड़ी पहनी है और बन गई है चांदनी। इतना ही नहीं, गले में मोतियों की माला भी डाली है और हाथों में चमचमाती चूड़ियां पहनी है और अपनी अदाएं दिखा रही है। इतना ही नहीं, वो तो अपने पति विकी के साथ कई सारी तस्वीरें भी खिंचवा रही है।

वैसे देसी अंदाज में तो भारती भी नजर आई हैं। वाइन कलर की स्पार्कलिंग साड़ी पहनकर ये भी किसी से कम नहीं लग रही, और तो और अपनी खूबसूरती ही नहीं बल्कि कॉमेडी का तड़का लगाकर ये सबको खुश कर देती है। वैसे देसी अंदाज के साथ साथ यहाँ मॉडर्न बेब भी नजर आई हैं। देख लीजिए तेजस्वी प्रकाश के इस काले रंग के ड्रेस को, जहाँ पर ये फुल स्वैग मोड में नजर आ रही हैं। इसी के साथ काले रंग का जादू चलाती हुई नजर आई हैं जन्नत जुबैर भी, जिन्होंने ब्लैक कलर का

वैसे मॉडर्न वेव तो कश्मीरा शाह भी लग रही हैं, जो पहुंची हैं अपने पति कृष्णा अभिषेक के साथ और हमेशा की तरह दोनों साथ में हंसी ठटोली करते हुए नजर आते हैं। इनके अलावा सफेदी की चमकार बिखेरते हुए

0: स्टारफिश की सीरियल उड़ने की आशा में टूट गई है तेजस की दूसरी शादी। ऐसे में घर में सभी परेशान हो रहे हैं और परेश वो तो सारा टीकरा रेणुका के ऊपर फोड़ रहा है, क्योंकि रेणुका जानबूझकर ये रिश्ता जबरदस्ती तय जो करना चाहती थी। और तो और रेणुका की सासू माँ भी रेणुका पर ही बरस रही है।
1: देख लिया ना रेनू, तेरे जल्दबाजी का क्या नतीजा है सामने। सुनती किधर है तेरी भाई को?
2: अजी ये वाली बात तो फिर भी लोग उसमें भूल जाएंगे। सुनो लाली पाउडर आई बनने वाली है, ये बात अगले 6 महीने में तो पूरी दुनिया को मालूम पड़ जाएगा।
3: मत लीजिए आजकल ऐसे फेक रिपोर्ट बनवाना, ये ठीक हो रही सत्य रोशनी फिर से उठ जाना चाहिए।
0: भाई ये शादी तो खुद रोशनी ने आकर तोड़ी है, घर वालों को ये सच बताकर कि रोशनी तेजस के बच्चे की माँ बनने वाली है। ऐसे में रिया को डाउट हो गया है कि कहीं रोशनी झूठ तो नहीं बोल रही। इस पर आकाश भी तेजस से सवाल करता है। और तो और सचिन वो तो तेजस पर नाराज होने लगता है, क्योंकि उसे पूरा यकीन है कि तेजस कोई न कोई गोलमाल जरूर कर रहा है।
4: तो अगर दादा को सब कुछ पता है तो तू हमसे क्या छुपा रहा है ये चीजें वापस?
2: बहुत हो गया तेरा, बहुत मुंह में गोंद चिपका लिया, अभी बहुत ज्यादा हो रहा है तेरा। चुपचाप इधर सबके सामने, अभी मेरे को पता कि जब से कोरट वोरट का सब मामला शुरू हुआ है तेरा और लाली पाउडर के बीच में कुछ हुआ है या नहीं?
5: ये गुमसुम महीना तेरे से बात कर रहे हो,
2: तेरा ना बहुत हो गया है मुंह में गोंद चिपका के खड़े रहना और तमाशा देखना, समझ लगा है? तेरी वजह से ना बार बार हम लोग को अपमान झेलना पड़ता है। चल बहुत हो गया, अभी तेरा मुंह खोला सबके सामने, अभी क्या अभी पता जब से ये कोरट का तामझाम शुरू हुआ है तेरे और लाली पाउडर के बीच में ऐसा कुछ हुआ है या नहीं हुआ है, अभी क्या अभी बोलेगा?
0: फिलहाल तो तेजस सचिन के कोई भी सवालों का जवाब दिए बिना ही वहाँ से चला जाता है। इस पर सचिन ही नहीं बल्कि घर में सभी को यकीन हो जाता है कि तेजस केस के दौरान भी रोशनी से मिल रहा था। अब देखना होगा जो रोशनी कह रही है वो सच है या फिर झूठ। फिलहाल तो रोशनी ने पूरा मन बना लिया है तेजस को फिर से अपनी ओर खींचने का।

तेरे प्रेम की बारिश में मैं जलमग्न हो जाऊं, तुम घटा बनकर आ जाओ और मैं बादल बन जाऊं। क्या कुछ ऐसा ही है यहाँ पर देवांश के दिल का हाल। वैसे देवांश जैसे ही होती है ना बारिश, मन ऑटोमेटिकली रोमांटिक हो जाता है। लेकिन क्या यहाँ पर है रोमांस या फिर से आया है कोई नया ड्रामा? चलिए पता कर आते हैं, लेकर चलते हैं आप सबको वसुधा के सेट पर। वैसे चंद्रिका जी कहाँ ही इन्हें फुर्सत देंगे रोमांस वोमांस करने की, क्योंकि वो तो कोई ना कोई ऐसा ट्विस्ट लेकर ही आती हैं कहानी में कि कहानी में आ जाता है एक नया मोड़। लेकर चलते हैं आपको वसुधा के सेट पर।

0: की पत्नी हुए लवशुदा। जी टीवी के सीरियल वसुधा में आज आ गया है रोमांस का मौसम और इस प्यार के लाल रंग में रंग चुके हैं देव और वसुधा।
1: तू अगर मेरी ये हवाएं तेरी, तू अगर मेरी।
0: भाई देखिए कैसे देव ने इस कमरे को सजाया है। यहाँ है ढेर सारे हार्ट शेप बलून्स, साथ है कैंडल्स।
1: मेरी ये उजाले तेरे, तू अगर मेरी। दिल हवाले तेरे, तू अगर मेरी।
0: फूलों से हार्ट बनाकर उस पर आई लव यू वसुधा लिखा है।

साथ ही पूरे कमरे में जगह जगह पर नोट्स हैं, जहां पर देव ने वसुधा से अपने प्यार का इजहार किया है। यानी कि देव ने इस कमरे को बिल्कुल रोमांटिक बना दिया है और आज फिल्मी अंदाज में इनकी आशिकी चल रही है।

वही आग बनकर देव वसुधा को इस कमरे में ले आए हैं उन्हें ये प्यारा सा सरप्राइज देने के लिए। और देखिए ये प्यार भरा सरप्राइज पाकर वसुधा भी आज काफी खुश है। भाई दोनों के बीच काफी गलत फहमियाँ थी लेकिन लगता है कि आज वो सारी दूर हो चुकी है और यहाँ चारों ओर बस प्यार ही प्यार है। आज तो देव और वसुधा का ये प्यार परवान चढ़ रहा है तभी तो दोनों एक दूसरे में खो गए हैं। भाई इतना प्यारा सरप्राइज पाकर वसुधा की खुशी का ठिकाना नहीं। उस पर से देव का उसे इस अंदाज में प्रपोज करना, ऐसे में आशिकी भला कैसे ना होती। इनका तो फिल्मी रोमांस शुरू हो चुका है।

0: कैसा लगा आपको देव और वसुधा का ये रोमांस? लेकिन आपको बता दें कि ये तो ख्याली रोमांस है। जी हाँ, अपने सपनों में वसुधा ये सब कुछ देख रही है कि किस तरह देव उन्हें सरप्राइज देंगे और अपने प्यार का इजहार करेंगे। हकीकत में तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है।
1: देव ने वसु को आई लव यू बोला है, लेकिन वसु ने अब तक देव को आई लव यू नहीं बोला। तो देव की पूरी कोशिश चल रही है, लेकिन वसु शर्मा रही है। तो देव ने प्लान किया है कि वसु उसको आई लव यू बोले। तो उसने रूम डेकोरेट किया है और बाद में पता चलता है कि वसु का ये सब थॉट है और देव पूरी कोशिश कर रहा है किस तरह आई लव यू बोलते। फैंस के पॉइंट ऑफ व्यू से और स्टोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जब भी कोई भी सीन में, जैसे अभी जो हमारा इम्पॉर्टेंट सीन चल रहा है वो चल रहा है कि वसु को हम किस तरह से बिजनेस वुमेन बनाएं, जो मेन हमारा मोटिव है कि किस तरह से मासा वसु को एक्सेप्ट करें, और वो एक टिक मार्क हो जाएगा क्योंकि जब वसु बिजनेस संभालने लगेगी, इंग्लिश बोलने लगेगी, तो वो ज़्यादा मैटर करता है। लेकिन यस, इट्स अ रिफ्रेशिंग थिंग जिसमें वसुदेव का एक रोमांटिक सीन आएगा जिसमें प्रपोजल टाइप या फिर आई लव यू की कोशिश की जा रही है।
0: लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि जल्द ही देव वसुधा से कुछ इसी फिल्मी अंदाज में अपने प्यार का इजहार करेंगे और फिर एक बार शुरू होगा इनका रोमांस।

0: रोमांस जब शुरू होगा तब होगा, फिलहाल तो ड्रामा शुरू हो चुका है। जी हाँ, दादी समर्थ को घसीटते हुए इस घर में ले आई है क्योंकि उसने फिर से वसुधा के बिजनेस में खलल डालने की कोशिश की है। ऐसे में आज दादी उस पर भड़क रही है और साथ ही शुरू हो गया है तमाशा, जहाँ देव ने अपने ही दोस्त समर्थ को तमाचा जड़ दिया है। अब समर्थ भी अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाया और उसने सभी घर वालों के सामने कर दिया खुलासा कि वसुधा के बिजनेस में जो भी मुश्किलें आ रही हैं उसके पीछे कोई और नहीं बल्कि चंद्रिका ही है, जिसने समर्थ से ऐसा सब कुछ करने को कहा था। यानी अपनी बहू वसुधा को परेशान कर रही है उसकी ही सास चंद्रिका। ये खुलासा समर्थ कर रहा है।
1: उसको इल्जाम लगाने से पहले सच तो जान ले। सच ये है, अगर तू सोच रहा है कि मैं अपनी मर्जी से यहाँ आया हूँ तो ये गलत है। मुझे यहाँ पे तुम्हारे परिवार में से किसी ने रेड कार्ड बुला के भी आया।
2: जब तू ये कहना वो झूठ बोल रहा है ना, तो ऐसा बोल कि सब विश्वास हो सके और मैं अच्छी तरह से जानूंगी तुम्हारी मसूरी की जीत से जीत भर को पचना रही
0: समर्थ की बातों पर कोई भी विश्वास करने को तैयार नहीं क्योंकि चंद्रिका ने तो पहले से ही अपने बचाव में सबूत इकट्ठा कर रखे हैं। ऐसे में समर्थ के सारे सबूत काम नहीं आए और फिर एक बार देव समर्थ पर भड़क गया।
3: समर का कहना है कि जितना कुछ भी वसु के साथ हो रहा है, जितना उस पर उसका लाइसेंस कैंसिल हुआ, उसका अचार की डिलीवरी नहीं करने दी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब तक आपको नहीं पता चली हैं, वो सब चंद्रिका सिंह चौहान का किया धरा है। और वो आके पूरे घर में ऐसे बोलता है जो हम में से कोई भी नहीं मानने को तैयार है। और जिस तरीके से फिर हम उसको घर से बाहर निकाल फेंकते हैं क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता, देव के हिसाब से मासा कभी ऐसा नहीं करेंगी, वसु के साथ बुरा नहीं करेंगी, तो वही सब सीन चल रहा है।
0: भैया ने कि इस बार भी चंद्रिका बच निकली। समर्थ के लाख चिल्लाने पर भी किसी ने समर्थ पर विश्वास नहीं किया, लेकिन समर्थ लौट कर जरूर आएगा सच का खुलासा करने के लिए। खैर, समर्थ के जाने के बाद देखिए यहाँ हैप्पी फैमिली मोमेंट देखने को मिला, जहाँ सभी फिर एक बार एकजुट हो चुके हैं।

0: वो ये है कि वसुधा की जो पैकेजिंग है ना वो लीक हो रही थी, तो मैंने उससे बोला कि जो हमारे चौहान इंडस्ट्रीज के जो वेंडर्स हैं उनमें से किसी को बता दूंगी, वो आपसे मिलके बात कर लेंगे। तो जो आते हैं उनको इंग्लिश नहीं आती है, मतलब सॉरी हिंदी नहीं आती है, इंग्लिश में बोलते हैं, और वसुधा को इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, तो वो मेरे पास आ जाती है कि आप मदद कर दो। मैं बोलती हूँ हर काम क्या मदद करके करोगी, अगर वो बोलती नहीं फिर आपका मतलब आपकी इज्जत में, बोलती मेरी इज्जत की परवाह होती तो खुद सीख लेती, बात यह है।
1: तो भाई अब देखना होगा कि कैसे समर्थ चंद्रिका के काले इरादों का खुलासा करता है, और ये सच सामने आने के बाद वसुधा और देव क्या करते हैं, क्योंकि कहानी में अभी कई सारे ट्विस्ट आने तो बाकी है। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
2: कुछ इस तरह मैं तेरे साथ हो जाऊं, तू बादल बन जाए और मैं बारिश हो जाऊं, आहाहा, कुछ ऐसा ही है यहाँ पर जगदात्री और शिवाय के दिल का हाल। अब देखिए ये बारिश किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, ऑलरेडी मूड हो जाता है एब्सोल्युटली रोमांटिक। तो कैसे आगे बढ़ रही है जगदात्री की ये कहानी, लेकर चलते हैं आपको सीधा यहाँ।
1: जगदात्री और शिवाय की मेहंदी में लगा डांस का तड़का। झूम कर नाची बहने और परिवार वाले। शिवाय का डर क्या पकड़ा जाएगा मूसा।

जी टीवी के सीरियल जगधात्री में आज है जगधात्री और शिवाई की मेहंदी की रस्म, जहां पर झूम कर नाच रही हैं जगधात्री और शिवाई की बहना यानी कि अंजलि और आदना। और तो और ये दोनों माया को भी अपने साथ डांस में खींच लेती हैं और माया भी अपने जलवे दिखाती है।

केवल अंजलि, आरना और माया ही नहीं बल्कि बाकी घर के सदस्य भी एक एक कर इस डांस में शामिल हो जाते हैं। कुछ के चेहरे पर खुशी है तो कुछ बेमन के लटके झटके दिखा रहे हैं।

लेकिन इनके बीच खुशियों में शामिल है शिवाय, जिसके मन में चल रही है हलचल, क्योंकि ये शादी तो सिर्फ और सिर्फ एक मकसद से की जा रही है और वो है मूसा को पकड़ना, जो पहुंच गया है इस मेहंदी की रस्म में भेस बदल कर, आ गया है बनकर वेटर।

0: खैर शिवाय तो डरा हुआ है ये सोचकर कि कहीं जगधात्री के ऊपर हमला ना हो, इसलिए बस वो मौका पाते ही जगधात्री से बात करना चाहता है। और तो और जगधात्री भी पहुंच जाती है शिवाय से बात करने, या यूँ कह लो मूसा को पकड़ने का प्लान बनाने। हालांकि शिवाय उसे अपना डर बताता है, लेकिन जगधात्री उसके डर को दूर करते हुए सिर्फ अपने मकसद पर ध्यान दे रही है। और तो और उसने रुद्र को अपना मोहरा भी बना लिया है। तभी तो देखिए कैसे रुद्र जगधात्री के पीछे पीछे घूम रहा है, और ये बात तपस्या को रास नहीं आ रही, इसलिए देखिए कैसे वो पहुँच गयी है अपनी बहन पर भड़कने।
1: थोड़ी करते हैं, साहिबा की शादी है, थोड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहा हूँ, इसमें क्या बड़ी बात हो गई? और वो तुम्हारे लिए रोज सुबह ब्रेकफास्ट में कॉफी और वो सब लेके आती है, तो उसका क्या?
2: तुम्हें बड़ा पता है, और जो भी है ना हमारे बीच की, तुम इस करके बेटे हो तो फिर इसे ग्लास पकड़ के कंपेंसेट करने की कोशिश क्यों कर रहे हो?
1: अरे कंपेंसेट नहीं कर रहा हूँ बेटा, उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा हूँ। तुम भी तो घर की बहू हो ना, तुम भी जाओ थोड़ी सी निभाओ, और देख चाट करो, तुम जाओ दीदी के लिए चाट लेकर।
3: हाँ सुना नहीं तुमने, चाट स्पाइसी थी, तड़क बड़ा बढ़िया चटपटी चाट लेके आओ ना। वो
2: मैं इसलिए चाट नहीं लाऊंगी, तुझे लाना है, तुझे खाना है।
1: तपस्या चाट लेके आओ, हम लोग आते हैं, चलिए ना।
0: वही तपस्या ने मना तो कर दिया, लेकिन अपने ही पति को इस तरह जगधात्री का लट्टू बना देख तपस्या हैरान है। और तो और संपदा और रेखा भी हैरान है कि आखिर रुद्र करना क्या चाहता है। फिलहाल तो सभी घर वाले इस बात से अनजान है कि घर में मूसा नाम की मुसीबत आ चुकी है। अब देखना होगा कि इस मेहंदी की रस्म में और क्या नए ट्विस्ट आएंगे।

0: मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
1: बारिश का ये मौसम होता है कितना प्यारा, कितना सुहाना, एक्चुअली मूड बन जाता है एब्सोल्युटली रोमांटिक। तो क्या रोमांस हो रहा है यहाँ पर लक्ष्मी निवास में? चलिए पता करके आते हैं, लेकर चलते हैं आप सबको आपकी फेवरेट जोड़ियों के पास और देखते हैं क्या कुछ हो रहा है इनकी कहानी में आज। वैसे आई एम श्योर हर जोड़ी के साथ हो रहा होगा कुछ ना कुछ अलग, जो लेकर आ रहा होगा हमारे लिए भरपूर एंटरटेनमेंट। लेकर चलते हैं आपको सीधा लक्ष्मी निवास के सेट पर।

0: आमिर और राधिका के साथ फेरे
1: फेरे होंगे अब हाथों में लेके हाथ जीवन
0: संपन्न हुआ वीर राधिका का विवाह
2: चौबारे तुझको भागे तेरी
0: निया आई खुशियाँ लाई जी टीवी के सीरियल लक्ष्मी निवास में फाइनली वो खड़ी आ ही गई जिसका वीर और राधिका को बेसब्री से इंतजार था। जी हाँ आज हो रही है दोनों की शादी। वैसे शादी से पहले ही राधिका को ढेर सारी खुशियाँ जो मिल गई है क्योंकि लौट आई है निया। और देखिए कैसे निया को देखते ही राधिका की खुशी का ठिकाना ही नहीं है। साथ ही साथ राधिका और निया को साथ देख वीर भी काफी खुश है।
3: ठीक होगा बेटा। आप कहाँ रह गए थे? आप सबके साथ क्यों नहीं आए?
4: मम्मा मेरा फेवरेट टॉय मना रहे हैं।

सुबह निया तो आ चुकी है और ऐसे में शुरू हो चुकी है वीर और राधिका की शादी की सभी रस्में। दिया गया वीर को शगुन। और फिर हुई वीर और राधिका की जयमाल की रस्म।

और फिर बारी आई फेरों की। ऐसे में राधिका और वीर सात जन्मों के साथ वचन ले रहे हैं और अग्नि को साक्षी मान एक दूसरे के हो रहे हैं।

0: तो भाई दोनों के साथ फेरे तो संपन्न हुए। इसके बाद बारी मांग में सिंदूर भरने की। इसके बाद बारी आई मंगलसूत्र पहनाने की। तो भाई शादी हो और ट्विस्ट ना आए, ऐसा भला कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर भी ट्विस्ट आ ही गया, क्योंकि मंगलसूत्र पहनाने की बारी के वक्त मंगलसूत्र ही गायब है। ऐसे में सभी लोग टेंशन में आ जाते हैं, लेकिन फिर निया बताती है कि मंगलसूत्र तो वहाँ पर है, और झट से वीर के दोस्त मंगलसूत्र ले आते हैं।
1: ये जाके लेके आओ।

0: अगर शादी होती है या कोई भी घर परिवार में कोई तीज त्योहार होता है या कोई बड़ा सेलिब्रेशन होता है, उसमें कुछ ना कुछ, वो कहते हैं ना कि नज़र बट्टू की तरह कुछ ना कुछ गड़बड़ तो होती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि शादी की रस्में जो हैं वो अब तेज़ी से रफ्तार पकड़ रही हैं। तो अचानक से मंगलसूत्र का डब्बा खुलता है और उसके अंदर मंगलसूत्र नहीं होता है, तो जिस वजह से नलिनी का स्ट्रेस और एंजाइटी और बढ़ जाती है। और वो ये सोचे कि अरे भाई, एक तो वैसे ही समय कम है, ऊपर से अब मंगलसूत्र गुम हो गया है, तो अब उसको ढूंढने में टाइम जाएगा। तो सब लोग एकदम शौक है, अरे मंगलसूत्र। और ये जो मंगलसूत्र का जो ड्रामा है, ये माही और अम्मा जी का किया धरा है। तो कहीं ना कहीं उनकी एक अलग कॉन्स्पिरेसी चल रही है शादी को रोकने की, बट एज यूजुअल शादी तो रुकी नहीं। तो यहाँ पर निया को जो है वो मंगलसूत्र दिख गया और फाइनली मंगलसूत्र मिल गया और शादी संपन्न हो गई।
1: माता रानी स्वयं आपके साथ ही भैया। हाँ, शादी होके रहेगी।
2: भैया गाड़ी मार के लाए हो।

0: और फिर वीर राधिका को अपने नाम का मंगलसूत्र पहनाते हैं। इसी के साथ वो निया को भी सभी के सामने एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन लगता है कि ये बात दादी को कुछ रास नहीं आई। तभी तो वो सब पर भड़क गई और शादी संपन्न होते ही वहाँ से चली गई।
1: हमने राधिका जी से शादी करके सिर्फ एक अच्छा जीवन साथी नहीं पाया बल्कि बहुत ही प्यारी बिटिया को पाया है। आज से निया की जिम्मेदारी हमारी। वचन देते
2: गुस्सा
1: कि अपने जीवन से भी ज्यादा हमारी गुड़िया का ध्यान रखेंगे। बस हो गए ना शादी अब। हाँ चलो, आप सबके सब अभी भी यही हो। अरे जाओ, निकलो निकलो अपने घर के लिए। ज्यादा फालतू का भीड़ भड़का पसंद आया, चलो निकलो। अरे तुम फोटो वाले चलो हटो यहाँ से, जाओ अपने अपने घर।
3: वीर और राधिका की शादी अब फाइनली हो गई है। नलिनी का मेजर कंसर्न ये था कि शादी जो है वो 1 बजे से पहले पहले सारी रस्में ख़त्म हो जानी चाहिए, क्योंकि पंडित जी ने स्पेसिफिकली उसे बोल दिया था कि लड़की की कुंडली में दोष है, मगर उसका प्रभाव जो है वो एक्चुअली कम हो सकता है अगर ये शादी 1 बजे से पहले पहले हो जाए। तो नलिनी मेजरली शादी में एक ही चीज़ पे फोकस कर रही थी कि जो सारी रस्में हैं वो 1 बजे से पहले ख़त्म हो जाए बस।
0: तो भाई राधिका बन गई है वीर की पत्नी और जा रही है अपने ससुराल। ऐसे में हो रही है राधिका की विदाई, और विदाई के वक्त देखिए कैसे राधिका और उसका पूरा परिवार हो रहा है इमोशनल। बाबूजी अपनी बिटिया रानी को खुशी खुशी विदा कर रहे हैं, लेकिन दुख भी है कि उनकी बेटी अब उनके साथ नहीं रहेगी।

0: से असली ड्रामा तो अब शुरू होगा शादी के बाद, क्योंकि गृह प्रवेश से ही तमाशे की शुरुआत होने वाली है। तो देखना होगा कि राधिका अपने ससुराल में कैसे सर्वाइव करेगी। मुंबई से कैमरामैन अजय उग्रेजा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
1: बारिश का ये मौसम होता है ना कितना प्यारा, कितना सुहाना होता है, एब्सोल्युटली रॉकिंग। लेकिन बारिश के मौसम के साथ साथ आते हैं बारिश के मौसम के साइड इफेक्ट्स, जैसे सर्दी, खांसी, वायरल, और हो जाता है हमारे लिए शॉकिंग। एग्जैक्टली ऐसा ही है हमारा ये अगला सेगमेंट, जहां हम दिखाते हैं आपको एंटरटेनमेंट की दुनिया के अलग अलग रंग, जो है रॉकिंग एंड शॉकिंग न्यूज।
0: बॉलीवुड ओटीटी और टीवी की रॉकिंग और शॉकिंग खबरें, बात करते हैं सीरियल शहर की। भाई शहर में कृषिता कोठारी को रिप्लेस कर दिया है भाविका ने। ऐसे में सामने आया है भाविका का बतौर शहर ये पहला लुक। आप भी डाल लीजिए इस पर एक नजर।

0: सहर होने को है।
1: इसी के साथ ऋषिता कोठारी यानी कि सहर ने शेयर किए हैं ये पिक्चर्स और वीडियोस जहां वो फैंस को कह रही है अलविदा, क्योंकि अब ऋषिता सहर के किरदार में नजर नहीं आने वाली है। तो हो जाइए तैयार नई सहर यानी भाविका को नए रूप में देखने के लिए।

इसी के साथ सीरियल में एक और चाइल्ड एक्ट्रेस की एंट्री होने वाली है। खबरों की माने सिया भाटिया, जो कि ओ माई गॉड 2 में नजर आ चुकी है, वो सीरियल शहर में लेंगी एंट्री। खबरों की माने तो कंगना रनौत जल्दी एंट्री करने वाली है लॉकअप के नए सीजन में जनता की आवाज बनकर, और उनके आने के बाद होगा फर्स्ट टर्मिनेशन। साथ ही कंगना रनौत ने शेयर की है ये पिक्चर, जहां उन्होंने बताया है कि उन्होंने क्वीन 2 का रैप अप कर लिया है, यानी कि फैंस हो जाएंगे एक्साइटेड क्वीन 2 के लिए। परिणीति चोपड़ा ने शेयर किया है ये वीडियो, जहां वो उज्जैन के महाकाल मंदिर गई है अपने हस्बैंड राघव चड्डा के साथ। ये है इनका थ्रोबैक वीडियो। साथ ही वो बता रही हैं अपने गाने के बारे में भी, जो उन्होंने खुद गाया है।

0: Emergency convoy. Multiple injuries, trauma.
1: Come on, guys, move.
0: 108 base hospital की नींव तीन बातों पर टिकी।
2: कलर्स लेकर आ रहा है नया शो जिसका नाम है 108 बेस हॉस्पिटल उरी। सामने आया है इसका प्रोमो जिसमें नजर आ रहे हैं एरिका फर्नांडिस, गश्मीर महाजनी और निखिल खुराना।
3: यहाँ पे पेशेंट्स आते हैं स्ट्रेचर पे लेकिन जाते हैं अपने पैरों पे चल के।
4: ये तो इश्क का मामला लग रहा है मेजर साहब।
5: शी इज ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, हम्बल। आई रियली लाइक हर। उसके सामने जूरी टाइगर बिल्ली बन जाता।
3: तुम नहीं चाहते थे तुम्हारी गर्लफ्रेंड आर्मी ज्वाइन करे।
6: 10 साल हो चुके उस बात को।
3: जब घाव गहरा होता है तो उसे सीना पड़ता है ताकि बच्चा कुछ दर्द भी दब जाए।

0: सफाई का अफेयर चल रहा है।
1: तारक मेहता का उल्टा चश्मा का ये नया प्रोमो देख लीजिए, जहां पर बाघा पर हो गया है शक और अब होगा बवाल।
0: बाघा भाई का अफेयर चल रहा है।
2: बावरी जैसी भोली वाली लड़की को धोखा देने वाले के लिए हमारी दुकान में कोई जगह नहीं है। बाघा को नौकरी से निकाल दो।
3: पूछते हैं ना आप कि कितना प्यार है हमें आपसे, अब गिन लीजिए इन बारिश की बूंदों को। आहा, वाह वाह वाह वाह वाह। बस हमारा और आपका प्यार यूं ही सलामत रहे, इसी तरह लेकर आए हम आपके लिए रोजाना एंटरटेनमेंट जोरदार। लेकिन क्या करें, अब तो घड़ी कर रही है इशारा कि वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का। तो मुलाकात होगी आपसे कल सेम टाइम सेम जगह, जहां फिर लेकर आएंगे हम आपके लिए एंटरटेनमेंट की दुनिया से हर अपडेट। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे सेफ, नमस्कार।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती है।

0: Sports fans, TuneIn Premium is the ultimate playbook. From live play-by-play of the biggest leagues all season long.
1: Lee looks for someone, finds the right someone.
0: To live sports talk radio to keep you in the game in between games.
2: Because people who all watch games, they hear the voice.
0: The sports action you crave comes alive with TuneIn Premium. Live games, fewer ads, endless action. Upgrade to premium to get in the game.
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। Sage University, transforming your passion into profession. TIT Bhopal, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
3: आर्थिक मोर्चे पर देश के लिए गुड न्यूज। जून में 1.94 लाख करोड़ GST कलेक्शन, पिछले साल से 14% ज्यादा, इंपोर्ट से होने वाली कमाई बढ़ी। मॉनसून के चलते केदारनाथ के लिए संचालित हेली सेवाओं पर 5 जुलाई तक लगी रोक, केदारनाथ धाम के लिए 8 हेली सेवाएं हो रही थी संचालित। बद्रीनाथ में भगवान विष्णु के भक्तों ने अब तक के सारे रिकॉर्ड्स किए ध्वस्त, 14 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन, हर रोज 15,000 से 20,000 श्रद्धालु कर रहे दर्शन। दिल्ली में 75 ऐतिहासिक स्मारकों को गोद ले सकेंगी प्राइवेट कंपनियां, संरक्षण कार्यों के लिए 2 करोड़ तक का मिलेगा अनुदान, सरकार ने 2 संरक्षण योजनाओं को दी हरी झंडी। दिल्ली नगर निगम को हाईकोर्ट का आदेश, खुले में कचरा फेंकने वालों पर जुर्माना 5,000 करने का दिया प्रस्ताव, कहा 500 का जुर्माना नाकाफी, कार्रवाई करने में ना हिचकिचाए नगर निगम। चमोली स्थित फूलों की घाटी में पहुंचे रिकॉर्ड पर्यटक, अब तक 7,000 से ज्यादा सैलानियों ने किया दीदार, पिछले साल के मुकाबले 1.5 गुना बढ़ी संख्या। मुंबई में जमकर बरस रहे मानसूनी बादल, शहर से ज्यादा निचले इलाकों में बरस रहा पानी, दक्षिण मुंबई के कई इलाकों में भर गया पानी।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
3: दिल्ली NCR में छाए बादल, मानसून का इंतजार जल्द होगा खत्म, अगले 2 से 3 दिन में आ सकता है मानसून, उमस भरी गर्मी से मिलेगी जल्द राहत। उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी, रुद्रप्रयाग में अगले 4 दिनों तक होगी जोरदार बारिश। मूसलाधार बारिश को लेकर प्रशासन अलर्ट, लोगों से नदियों नालों भूस्खलन की आशंका वाले इलाकों में जान से बचने की अपील। मुंबई के अंधेरी सबवे में भारी बारिश से भर गया पानी, आवाजाही पर लगी रोक। मुंबई में लगातार बारिश का दौर जारी, कई इलाकों में सुबह सुबह हुई जोरदार बारिश। मुंबई में लगातार बारिश से गिरा तापमान, लोगों को गर्मी से मिली राहत। मुंबई में भारी बारिश से कई इलाकों में भर गया पानी, आवाजाही प्रभावित हुई। मुंबई में भारी बारिश से सड़क पर गिरा पेड़, ट्रैफिक पुलिस ने सड़क से पेड़ हटाकर आवाजाही फिर से चालू की। मुंबई में अगले 6 जुलाई तक बारिश का ऑरेंज अलर्ट, IMD के पूर्वानुमान के मुताबिक मुंबई में शुक्रवार तक भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। रुद्रप्रयाग में बदला मौसम का मिजाज, केदारनाथ में हुई बारिश। चारधाम यात्रा को लेकर प्रशासन सख्त, बद्रीनाथ और केदारनाथ हाईवे के स्लाइडिंग जोन पर सुरक्षा जवान तैनात। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से की मौसम देखकर यात्रा करने की अपील, मौसम बदलते ही कम हुई भक्तों की संख्या। हिमाचल प्रदेश में मानसून ने दी दस्तक, कई इलाकों में हुई मूसलाधार बारिश। भारी बारिश से फसलों को मिली संजीवनी, तापमान में आई भारी गिरावट। हरिद्वार में सुबह सुबह हुई भारी बारिश, कई जगहों पर भर गया पानी। चंडीगढ़ में सुबह सुबह हुई जोरदार बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। भारी बारिश से कई जगहों पर जलभराव हुआ, वाहनों की धीमी हुई रफ्तार। MP के सीहोर में मूसलाधार बारिश, सड़कें बनी सैलाब। भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात हुए, पानी के तेज बहाव में बहने लगे वाहन। पठानकोट में भारी बारिश, कई रिहायशी इलाकों में जलभराव हुआ। सड़कों पर करीब 2 फीट तक भर गया पानी, वाहनों के साथ साथ पैदल चलने वाले लोगों को भारी परेशानी। जम्मू कश्मीर में जोरदार बारिश, यहां पर अचानक से बाढ़ आ गई। भारी बारिश से सड़कों पर आया मलबा, यहां पर सड़क हुई बंद, रास्ते को साफ करने में जुटे लोग। सिक्के में भी एक इलाके में जबरदस्त भूस्खलन हुआ, सड़कों पर आया मलबा, कई गाड़ियां फंस गई। देहरादून में हुई मूसलाधार बारिश, सड़कों पर भर गया पानी। चंबा में भारी बारिश से सड़कों पर पसरा मलबा, आवाजाही रुक गई, वाहनों की लगी कतारें। डोडा में अचानक से फट गया बादल, सड़कों पर आया मलबा। बादल फटने से फसलों को भारी नुकसान हुआ, कई सड़कें क्षतिग्रस्त हुई, कई गांवों का संपर्क टूट गया। प्रशासन ने रास्ता साफ करने और नुकसान का आंकलन करने का काम शुरू किया, लोगों से मौसम देखकर यात्रा करने की अपील। बाबा बर्फानी की पवित्र यात्रा की तैयारियां पूरी, 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा का शुभारंभ। जम्मू से कल रवाना होगा बाबा बर्फानी के भक्तों का पहला जत्था, एलजी मनोज सिन्हा दिखाएंगे हरी झंडी। अमरनाथ यात्रा को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह, बड़ी संख्या में अमरनाथ बेस कैंप पहुंचे तमाम श्रद्धालु। अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा की पुख्ता इंतजाम, श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए लगाए गए 650 सुरक्षा बल की कंपनियां। इस बार 57 दिनों तक चलेगी अमरनाथ की यात्रा, 28 अगस्त तक हो सकता है समापन। चारधाम यात्रा में उमड़ा आस्था का जनसैलाब, अब तक करीब 42 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। केदारनाथ में लगा भक्तों का मेला, अब तक 14 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा केदारनाथ में लगाई हाजिरी। बद्रीनाथ धाम में पहुंचे रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु, अब तक 14 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए बाबा बद्रीनाथ के दर्शन। चारधाम में ट्रांसपोर्ट और लोकल कारोबार को मिला बूस्ट, अब तक 4 लाख वाहन धाम पहुंचे। केदारनाथ हेली सेवाओं पर 5 जुलाई तक रोक, मानसून के चलते प्रशासन ने लिया फैसला। हिमाचल प्रदेश के नैना देवी शक्तिपीठ धाम में आस्था का महाउत्सव, दर्शन पूजन के लिए भारी तादाद में पहुंच रहे श्रद्धालु। पिछले 3 दिन के दौरान करीब 1 लाख श्रद्धालु नैना देवी मंदिर पहुंचे, सुबह से ही मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की कतारें लगी। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले की खूबसूरत वादियों में नैना देवी शक्तिपीठ धाम दर्शन, गर्मियों की छुट्टियों के चलते श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी। पंजाब हरियाणा दिल्ली समेत कई राज्यों से नैना देवी धाम पहुंचे श्रद्धालु, दर्शन पूजा के साथ शिवालिक पर्वत के सुहाने मौसम का मजा ले रहे। नैना देवी शक्तिपीठ धाम में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए किए गए इंतजाम, आगामी दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने की संभावना है। महाराष्ट्र के वाशिम में गजानन महाराज की पारंपरिक शोभा यात्रा का उत्सव, जयकारों के साथ हुआ आगमन। गजानन महाराज की पालकी के दर्शन के लिए हजारों की तादाद में पहुंचे श्रद्धालु, जगह जगह शोभा यात्रा निकाली गई। गजानन महाराज की पालकी के दर्शन के लिए पहुंचे भक्तों के लिए किया गया महाप्रसाद का आयोजन, बेसन के लड्डू भी बनाए गए। हजारों श्रद्धालुओं के लिए महाप्रसाद बनाने के लिए होती है विशेष तैयारी, बेसन रोटी चावल के साथ दिया जाता है लड्डू का प्रसाद। बुलढाणा के शेगांव से निकलती है गजानन महाराज की पालकी, 750 किलोमीटर का सफर तय करके आषाढ़ी एकादशी पर पहुंचते हैं पंढरपुर। उज्जैन में बाबा महाकाल की उतारी गई विशेष भस्म आरती, बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए इसमें शामिल। जलाभिषेक के बाद भगवान महाकाल का किया गया भव्य श्रृंगार, भक्तों ने लगाए हर हर महादेव के जयकारे। उज्जैन के बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचे ओडिशा हरियाणा के मंत्री, बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी पहुंचे। महंगाई के मोर्चे पर राहत की खबर आई, नारा एनर्जी ने पेट्रोल डीजल के दाम घटा दिए। देश में कमर्शियल सिलेंडर की कीमतें 183 रुपए तक घट गई, 5 किलो का छोटू सिलेंडर भी अब सस्ता हुआ। चमोली स्थित फूलों की घाटी में पहुंचे रिकॉर्ड पर्यटक, अब तक 7,000 से ज्यादा सैलानियों ने किया दीदार। 34 विदेशी सैलानियों ने फूलों की घाटी का दीदार किया, पिछले साल के मुकाबले 1.5 गुना बढ़ी संख्या। दिल्ली के चितरंजन पार्क में मैंगो फेस्टिवल का आयोजन, पश्चिम बंगाल के 12 किस्म के आमों की प्रदर्शनी लगी। हिमसागर लंगड़ा लखन भोग फज

0: शिरकत की। बिहार के 18 जिलों में केंद्रीय विद्यालय में खोलने की केंद्र सरकार ने दी अनुमति, यहां पर भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने दी जानकारी। दिल्ली में 75 ऐतिहासिक स्मारकों को गोद ले सकेंगी प्राइवेट कंपनियां, संरक्षण कार्यों के लिए 2 करोड़ तक का मिलेगा अनुदान। कोटा बनेगा स्पोर्ट्स हब, 100 करोड़ से जेके पवेलियन होगा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। ओम बिरला ने लगभग 5 करोड़ की खेल सुविधाएं जनता को सौंपी। सहारनपुर में सीएम योगी ने कई विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास, कहा राज्य में विकास की गंगा बह रही। संगरूर में मुख्यमंत्री मावन ध्यान सत्कार योजना का भव्य शुभारंभ हुआ, सीएम मान पहुंचे। सीतापुर में सांसद आनंद भदौरिया ने मां ललिता देवी शक्तिपीठ में की पूजा अर्चना, अखिलेश यादव के अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना की।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।

भाई और बहनों नमस्कार, मैं बाबा रवि गिरी आज जो कार्यक्रम लेके आया हूँ वो आपकी आंखें खोल देगा। क्या आप जानते हैं कि मैं 78वें वर्ष में चल रहा हूँ, लेकिन आपको शायद ये जानकर विश्वास ना हो कि मैं आज भी रोज कई किलोमीटर आराम से चलना ही नहीं बल्कि दौड़ भी लगा सकता हूँ। इस उम्र में जहाँ लोग दर्द से, खासकर जोड़ों के दर्द से परेशान रहते हैं, मैं इस उम्र में भी पूरी तरह फिट हूँ। न मुझे जोड़ों का कोई भी दर्द है और ना मेरी एनर्जी कम है। आप जानते हैं कि ऐसा कैसे संभव हो पाया? तो मैं आपको बता दूं कि मेरे बनाए नुस्खों की वजह से, जो इस उम्र में भी मुझे हाथ पैर कंधे घुटने के दर्द से दूर रखते हैं। और आज के कार्यक्रम से ये आपके साथ भी मैं साझा कर रहा हूं, आप भी अगर जोड़ों के दर्द से जूझ रहे हैं, दवाएं खाते खाते परेशान हो गए हैं, तो एक बार मेरे नुस्खों को आजमा कर देखें, आपको 100% लाभ मिलेगा। ये मेरा आपसे वादा है। और ये नुस्खे कितने कारगर हैं इसका जीता जागता साबूत मैं आपके सामने बैठा हूं। इस उम्र में भी मेरे शरीर के सारे जोड़ चुस्त हैं, दुरुस्त हैं। मैंने ये नुस्खे अपने 50 वर्षों से भी अधिक के आयुर्वेदिक अनुभवों के ज्ञान और लंबे शोध के बाद तैयार किए हैं और हजारों लोगों को मैंने ठीक भी किया है। अगर आपको कई सालों से जोड़ों के दर्द की समस्या है, कोई चोट की वजह से दर्द है, बढ़ती उम्र के साथ दर्द बढ़ रहा है, या फिर कम उम्र में ही जोड़ों में, खासकर घुटनों में दर्द रहने लगा है, जोड़ों में ग्रीस कम हो गया है, गैप आ गया है, या फिर पानी भर गया है, समस्या चाहे जो भी हो और आपकी

उम्र भी चाहे जो भी हो, आपको मेरे बनाए नुस्खे जरूर फायदा देंगे, ये मेरा आपसे वादा है। आपको बता दूं कि पुरुषों के मुकाबले जोड़ों के दर्द की समस्या महिलाओं को जल्दी और ज्यादा होती है, जिसका कारण हार्मोनल असंतुलन की वजह से, यानी मेनोपॉज भी आपको हो सकता है। लेकिन मैं बाबा रविगिरि आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी ये सभी समस्याएं मेरे नुस्खों से बिल्कुल ठीक हो सकती है, और जोड़ों के दर्द से छुटकारा पाकर आप बिना दर्द के चलना फिरना ही नहीं, दौड़ना भी शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए ये जो नंबर हैं, इन पे कॉल करना है, आपको आपकी सभी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। तो भाइयों और बहनों, अगर आपको लगता है कि बढ़ती उम्र में जोड़ों का दर्द होता ही होता है, तो मैं आपको बता दूं कि उम्र सिर्फ एक संख्या है। अगर आप ध्यान देंगे, सही दिनचर्या अपनाएंगे और अपने जोड़ों का ध्यान रखेंगे, तो आपके जोड़ आपको कभी परेशान नहीं करेंगे, बल्कि उम्र भर आपके शरीर का अच्छे से बोझ उठाएंगे और आपको चुस्त और दुरुस्त रखेंगे। और ऐसा करने में आपको मेरे नुस्खे हर तरह से मदद करेंगे। इन नुस्खों को मैंने इन्हीं सभी बातों को और समस्याओं को ध्यान में रखकर बनाया है। यदि हिम्मत और दृढ़ निश्चय हो तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। आपकी सोच और आपके प्रयास ही आपको आगे बढ़ाते हैं। जब मैं इस उम्र में भी आराम से कई किलोमीटर तक दौड़ सकता हूं, तो आप क्यों नहीं दौड़ सकते? तो आप अभी ये नीचे जो नंबर दिए गए हैं, इन पे कॉल करके मेरे नुस्खों का फायदा उठाएं और अपनी दवा बुक करें। अगर आप सुबह उठते ही अपने घुटनों या पीठ में दर्द महसूस करते हैं, तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। क्या आपको वो दिन याद है जब आप बच्चों के साथ पार्क में दौड़ा करते थे या बिना थके सीढ़ियां चढ़ लेते थे, और अब थोड़ा सा चलना भी भारी लगने लगता है? जोड़ों का दर्द ना सिर्फ हमारे शरीर को तकलीफ देता है, बल्कि हमारी जिंदगी के कई खूबसूरत पलों को भी हमसे छीन लेता है। न रोज के काम अच्छे से कर पाते हैं, और न ही हर दिन की भागदौड़ में वो आत्मविश्वास रह जाता है। जरा सी सीढ़ियां चढ़ने पर घुटनों में दर्द होने लगता है, जमीन पर बैठना मुश्किल हो गया है, और चलने में भी डर लगता है कि कहीं दर्द और ना बढ़ जाए। सच तो ये है कि जोड़ों का दर्द सिर्फ शारीरिक तकलीफ नहीं देता, ये हमारे अंदर की हिम्मत को भी गिरी पाए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये दर्द होता क्यों है? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे आम कारण है गठिया, यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये सबसे आम प्रकार है जो उम्र बढ़ने के साथ साथ जोड़ों की घिसावट की वजह से होता है। इसमें कार्टिलेज, जो हड्डियों को आपस में रगड़ने से बचाता है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है, जिससे जोड़ों में दर्द और अकड़न होती है। क्या आप जानते हैं कि गठिया के 100 से ज्यादा प्रकार हैं, जिनमें हल्के से लेकर गंभीर दर्द का सामना करना पड़ सकता है? रोमेटॉइड आर्थराइटिस जोड़ों के दर्द की ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर की इम्यून सिस्टम खुद ही जोड़ों पर हमला करने लगती है। इससे जोड़ों में सूजन, दर्द और समय के साथ हड्डियों की बनावट तक बदल सकती है। तो भाइयों और बहनों, मेरे नुस्खे इन सारी समस्याओं में असरकारक है, क्योंकि
इनमें ढेरों शक्तिशाली जड़ी बूटियों को मैंने अपने 50 साल से ज्यादा के अनुभव से अलग अलग फार्मूलेशन में मिलाया है, जो आपको आपकी समस्या के हिसाब से बनाकर दी जाती है, इसलिए ये बिल्कुल सीधा असर करती है। मैंने ये नुस्खे पुरुष हो चाहे महिला हो, उम्र चाहे 20 साल हो चाहे फिर 70-80 साल हो, चलने में दिक्कत हो, सीढ़ियां चलने में दर्द होता हो, जोड़ों से कटकट की आवाज आती हो, इन सभी समस्याओं पर गहन चिंतन और शोध के बाद ही ये नुस्खे तैयार किए हैं, जिनका असर अचूक है। चलती रहनी चाहिए जिंदगी बिना दर्द के और बिना रुकावट के। मैं बाबा रविगिरी आपको कुछ ऐसे नुस्खे और जड़ी बूटियां बताऊंगा जिससे आप अपने जोड़ों का समाधान तुरंत पा सकते हैं। जोड़ों के दर्द में प्रयोग की जाने वाली आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जो मैं बताने जा रहा हूं, उनमें सबसे पहला है तेलपर्ण। इसको तेलपर्ण क्यों कहा जाता है कि इसके पत्तों में तेल होता है, इसलिए इसको तेलपर्ण कहते हैं। वैसे आम भाषा में इसको नीलगिरी के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो है ये है सती तेल। ये सूजन को घटाता है, अंदर तक समाकर यह सूजन बढ़ाने वाले इंटरल्यूकिन स्तर को कम करता है और सूजन को घटाता है। इसके बाद में है ये तेजोवती। इसमें मौजूद लिनालूल और लिमोनेन कफ दोष शमन करके और सूजन को घटाता है। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर यानी TNF और इंटरल्यूकिन 6 के बढ़े हुए लेवल्स को घटाता है ये। इसके बाद में है ये तेज पत्ता यानी त्वक पत्थर। ये जोड़ों में जकड़न से निजात दिलाता है, जोड़ों में गतिशीलता देता है। इसके बाद में ये है ज्योतिषमती। ये वात और कफ को संतुलित करके जोड़ों के दर्द में आराम दिलाता है। ये है गंध पत्थर। ये गंधपुरा पत्थर में 85-99% तक मिथाइल सिलिसिलेट होता है, जो दर्द निवारक है। तो इससे मांसपेशियों, जोड़ों, हड्डियों के दर्द में आराम मिलता है। इसके बाद में ये है लवंग। इसमें प्रस्तुत यूजेनॉल दर्द को और सूजन को कम करता है और अंदर के इन्फेक्शंस को खत्म कर देता है। इसके बाद में यह है तिल का तेल। बहुत अच्छी चीज है ये। तिल के तेल में एंटी इंफ्लामेटरी गुण पाया जाता है, जो घुटनों में होने वाली सूजन और दर्द को कम करने में प्रभावी होता है। इसके बाद में ये तेल है ये मेजनकरी तेल। इस पौधे में औषधीय गुण होते हैं और इसका उपयोग पारंपरिक रूप से विभिन्न बीमारियों जैसे पेट दर्द और गैस्ट्रोएंटेराइटिस के साथ साथ मधुमेह, एडिमा, सर्दी, गठिया, अस्थमा और दर्दनाक चोट के इलाज के लिए किया जाता है। उसके बाद में यह है सुरंजन कटु। ये सूजन रोधी एवं दर्द निवारक प्रभावों के लिए जाना जाता है। यह एक प्रोपेरिएटरी मेडिसिन है, जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के गठिया में मसल्स और हड्डियों के समर्थन के लिए किया जाता है। इसके बाद में यह है चित्रक मूल। ये गठिया के लक्षणों को कम करने के लिए यानी चित्रक की जड़ अत्यंत फायदेमंद मानी जाती है। यह एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर है। यह दर्द निवारक, सूजन को कम करने वाली, एक बैक्टीरिया और फंगस का नाश करने वाली भी है। ये है ट्रिक टू। इसमें मौजूद बायो एक्टिव कंपाउंड जोड़ों के दर्द, सूजन, लालिमा
एवं जोड़ों की कठोरता को कम करने में मदद करता है। यह है अजवाइन। अजवाइन पाचन को दुरुस्त करता है, टॉक्सिन को बाहर निकालता है, प्रोटीन, फैट, फाइटोकेमिकल, फाइबर, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन जैसे पोषक तत्व इसमें प्रचुर मात्रा में भरे हुए हैं। आखिर में है अभ्रक भस्म। यह कफ को संतुलित करके आरए फैक्टर को कंट्रोल करता है और सर्दियों में जो जोड़ों का दर्द ठंड की वजह से बढ़ जाता है उसको नियंत्रित करता है। साइटिका से आजकल बहुत लोग परेशान है। साइटिका आप सभी जानते हैं कि एक टांग में होने वाला दर्द है जिसका उद्गम रीढ़ की हड्डी से शुरू होता है क्योंकि वहां की नस हिल जाती है। मेरे पास ऐसी अभिमंत्रित ताबीज भी है जो इस दर्द को दूर कर देगी। जोड़ों का दर्द एक असहनीय रोग है, यह एक व्यक्ति से उसकी आत्मनिर्भरता छीन लेता है। तो मेरी एक ही सलाह है, अब गोलियों से नहीं इलाज सिर्फ नुस्खों से करें क्योंकि इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और असर 100% मिलेगा। ये मेरा यानी बाबा रविगिरी का वादा है। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करना है और अपने लिए मेरे नुस्खे मंगवाने हैं। फिर देखिए दर्द कैसे खुद ब खुद भागता है, ये मेरा वादा है। तो अब मुझे आज्ञा दीजिए और तब तक आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। तो राम राम भाई और बहनों, नमस्कार।

0: Need a good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you nonstop stand-up bits by the best comics in the game. From all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today.
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
8: ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
9: आर्थिक मोर्चे पर देश के लिए गुड न्यूज, जून में 1.94 लाख करोड़ GST कलेक्शन, पिछले साल से 14% ज्यादा, इंपोर्ट से होने वाली कमाई बढ़ी। मॉनसून के चलते केदारनाथ के लिए संचालित हेली सेवाओं पर 5 जुलाई तक लगी रोक, केदारनाथ धाम के लिए 8 हेली सेवाएं हो रही थी संचालित। बद्रीनाथ में भगवान विष्णु के भक्तों ने अब तक के सारे रिकॉर्ड किए ध्वस्त, 14 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन, हर रोज 15 से 20 हजार श्रद्धालु कर रहे दर्शन। दिल्ली में 75 ऐतिहासिक स्मारकों को गोद ले सकेंगी प्राइवेट कंपनियां, संरक्षण कार्यों के लिए 2 करोड़ तक का मिलेगा अनुदान, सरकार ने 2 संरक्षण योजनाओं को दी मंजूरी। दिल्ली नगर निगम को हाईकोर्ट का आदेश, खुले में कचरा फेंकने वालों पर जुर्माना 5,000 करने का दिया प्रस्ताव, कहा 500 का जुर्माना नाकाफी है, कार्रवाई करने में ना हिचकिचाए निगम। मुंबई में जमकर बरस रहे मानसूनी बादल, शहर से ज्यादा निचले इलाकों में बरस रहा पानी, दक्षिण मुंबई के कई इलाकों में भरा पानी।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
10: नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ सरगम पंत श्रीवास्तव, और आज प्रार्थना हो स्वीकार में बात करेंगे भगवान वेंकटेश्वर की, जिन्हें भक्त कई नामों से पुकारते हैं। कोई उन्हें वेंकटेश्वर कहता है, तो कोई श्रीनिवास, तो कोई प्यार से उन्हें कहता है गोविंदा। देखिए, जिसमें भक्तों की अटूट आस्था है, भारत के कोने कोने से ही नहीं बल्कि दुनिया भर से भक्त यहाँ पर खिंचे चले आते हैं। तिरुमाला की पहाड़ियों पर विराजते हैं तिरुपति बालाजी, कहते हैं कि यहाँ पूरी भव्यता के साथ भगवान विष्णु वेंकटेश के रूप में विराजमान हैं, जो अनादि काल से यहाँ आने वाले भक्तों की सारी कामनाएं पूर्ण कर रहे हैं।

0: तिरुपति बालाजी का अद्भुत दरबार। माँ पद्मावती संग विराजे हैं वेंकटेश सरकार। वो हैं कलयुग के साक्षात ईश्वर। तिरुमला पर्वत पर विराजमान है भगवान वेंकटेश्वर। भगवान वेंकटेश्वर को माना जाता है श्री हरि का अवतार। मनोकामना पूर्ण करता है तिरुपति बालाजी का दिव्य दरबार।
1: कौसल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते।
0: कोई उन्हें वेंकटेश्वर कहता है तो कोई श्रीनिवास, तो कोई प्यार से गोविंदा।
1: कौसल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते।
0: दक्षिण भारत के मंदिरों में भगवान विष्णु का अद्भुत स्वरूप है तिरुपति बालाजी।
1: उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज।
0: मान्यता यह है कि भगवान तिरुपति बालाजी का चमत्कारिक और रहस्यमय मंदिर देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर है।
1: उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज उत्तिष्ठ कमलाकांता त्रैलोक्यम मंगल।
0: भगवान विष्णु को समर्पित इस मंदिर की वास्तुकला और शिल्पकला देखने लायक है। ये खूबसूरत मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में तिरुमला पर्वत पर मौजूद है। मान्यता यह है कि यहाँ भगवान श्री वेंकटेश्वर अपनी पत्नी पद्मावती के साथ तिरुमला में रहते हैं। माना यह जाता है कि भारत का सबसे अमीर मंदिर है।
2: भारत का सबसे समृद्ध और सबसे प्रसिद्ध, जहाँ करोड़ों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं, जिस मंदिर को कलयुग का बैकुंठ धाम बोला जाता है, वो है भगवान वेंकटेश्वर का तिरुमला पहाड़ियों में स्थित भगवान तिरुपति बालाजी का मंदिर। कलयुग में ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु का जो साक्षात स्वरूप है, जो जीवांत स्वरूप है, जो जागृत स्वरूप है, वो भगवान श्री वेंकटेश्वर के रूप में यहाँ उपस्थित है।
0: चलिए आपको बताते हैं कि कैसे भगवान का नाम वेंकटेश्वर पड़ा। माना जाता है कि तिरुमला में जिस पर्वत पर ये मंदिर बना है उसकी 7 चोटियां हैं, शेषाद्री, नीलाद्री, गरुड़ाद्री, अंजनाद्री, वृष्टाद्री, नारायणाद्री और वेंकटाद्री। इसमें से वेंकटाद्री नाम की चोटी पर भगवान विष्णु विराजमान है। यही कारण है कि यहाँ विष्णु जी को वेंकटेश्वर स्वामी के नाम से भी जाना जाता है। ये 7 चोटियाँ आदिशेष के 7 सिरों का प्रतिनिधित्व करती हैं। इसीलिए मंदिर को 7 पहाड़ियों का मंदिर भी कहा जाता है। माना जाता है कि जो भी भक्त सच्चे दिल से भगवान वेंकटेश्वर के सामने मनोकामना मांगता है उसकी हर इच्छा पूर्ण होती है। इस मंदिर के संचालन का जिम्मा तिरुमला तिरुपति देवस्थानम संभाल रहा है। आगे हम आपको तिरुपति बालाजी मंदिर से जुड़े रहस्य बताएंगे, साथ ही इस मंदिर से जुड़ी पौराणिक कथा भी आपको सुनाएंगे।
3: मान्यता है कि यहाँ मंदिर में स्थापित काले रंग की दिव्य मूर्ति किसी ने बनाई नहीं बल्कि वो खुद ही जमीन से प्रकट हुई थी। तिरुपति बालाजी से जुड़े कई ऐसी मान्यताएं हैं और कई अद्भुत रहस्य भी हैं। विज्ञान इन रहस्यों पर कुछ भी कहे लेकिन भक्त इसे भगवान का चमत्कार ही मानते हैं।

0: इसे कहते हैं कलयुग का बैकुंठ धाम। वेंकटेश रूप में अपने भक्तों का कर रहे हैं कल्याण। माना जाता है कि रानी पद्मावती के साथ तिरुमला की इन्हीं पहाड़ियों पर सदा सदा के लिए बस गए हैं भगवान विष्णु। तिरुमला भगवान के इस मंदिर को संसार के सबसे धनी मंदिरों में से एक माना जाता है। माना जाता है कि इस रहस्यमय मूर्ति की आभा ऐसी है कि आम से लेकर खास हर कोई इनके दर्शन के लिए दूर दूर से खींचा चलाता है।
1: लाखों करोड़ों श्रद्धालु दुनिया भर से यहाँ उनके आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए आते हैं। धन, वैभव, संतान, स्वास्थ्य या फिर आध्यात्मिक चेतना के लिए अगर आपको आशीर्वाद चाहिए और अपने सारे कष्टों से मुक्ति चाहिए तो भगवान श्री वेंकटेश्वर का ये मंदिर आपके लिए एक दिव्य स्थान है।
0: दुनिया के सबसे दौलतमंद भगवान कहे जाने वाले तिरुपति बालाजी मंदिर को हर महीने सिर्फ चढ़ावे से ही करोड़ों से भी ज्यादा की आमदनी होती है और हर साल भक्तों की ये श्रद्धा निरंतर बढ़ती जा रही है। हर साल लाखों लोग तिरुमला की पहाड़ियों पर स्थित इस मंदिर में भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए एकत्र होते हैं। इस मंदिर के साथ जुड़े हैं कई रहस्य, तो चलिए आपको वो भी बताते हैं। मानो या ना मानो, ये सच है, ये लोगों की अगाध आस्था है, मान्यताएं हैं, अविश्वसनीय विश्वास है जो कहता है कि ये मूर्ति नहीं साक्षात स्वयं विष्णु भगवान है। तिरुपति की इस दिव्य कही जा रही मूर्ति का स्वरूप ऐसा है कि आप इन्हें बस देखते ही रह जाएंगे और रहस्य ऐसा है कि जो भी यहाँ आया दंग रह गया। तो आइए एक एक रहस्य से अब हम पर्दा उठाते हैं और आपको बताते हैं इस अलौकिक मंदिर की महिमा। इस मंदिर से एक अनोखी परंपरा जुड़ी है। भक्त अपनी श्रद्धा के अनुसार यहाँ अपने बाल दान करते हैं। कहा जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की मूर्ति पर लगे बाल असली हैं। ये कभी उलझते नहीं है और हमेशा मुलायम रहते हैं।
1: ऐसी मान्यता है कि भगवान वेंकटेश्वर की चोट लगने से एक बार बाल झड़ गए थे। उनके बालों को देख के और उनकी चोट को देख के गंधर्व कन्या नीला देवी ने अपने केश, अपने बाल भगवान वेंकटेश्वर को काट के दे दिए, भगवान वेंकटेश्वर को दान दिए। तो भगवान वेंकटेश्वर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने ऐसा आशीर्वाद दिया कि जो मेरे मंदिर के प्रांगण में अपने केश या अपने बाल दान करेगा, मुंडन करवाएगा, उसकी मैं समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करूंगा।
0: दावा किया जाता है कि भगवान बालाजी की मूर्ति एक विशेष प्रकार के चिकने पत्थर से बनी है जो पूरी तरह से जीवंत लगती है। यहाँ हमेशा ही मंदिर के वातावरण को ठंडा रखा जाता है, लेकिन मान्यता ये भी है कि बालाजी को गर्मी लगती है। उनके शरीर पर पसीने की बूंद देखी जा सकती है और उनकी पीठ भी नम रहती है। सबसे हैरान करने वाला दावा तो यहाँ ये मिलता है कि मंदिर में बालाजी की मूर्ति पर अगर कान लगाया जाए तो उसके अंदर से समुद्र की लहरों की आवाजें सुनाई देती हैं। कहते हैं कि इसी कारण से बालाजी की मूर्ति नम रहती है।
1: भगवान विष्णु यानी कि श्री वेंकटेश्वर की मूर्ति बिल्कुल जीवांत प्रतीत होती है। एक अजब सी सुगंध, एक महक उस मंदिर के प्रांगण में फैली रहती है। अखंड दीपक जो हजार वर्षों से जल रहा है आज तक और कलयुग के अंतिम चरण तक जलेगा, ऐसी वहां पे मान्यता है। साथ साथ मंदिर के प्रांगण से मूर्ति के अंदर से समुद्र की लहरों की ध्वनि सुनाई देती है, जबकि समुद्र उस मूर्ति के और उस देवालय के प्रांगण से बहुत दूर है।
0: इस मंदिर में एक परंपरा का निर्वहन सदियों से किया जा रहा है। मान्यता यह है कि भगवान बालाजी को ठोड़ी पर चंदन लगाने की परंपरा है और इसका संबंध मंदिर की दाई ओर रखी छड़ी से है। छड़ी के बारे में कहा जाता है कि बालाजी के बाल रूप में इस छड़ी से उनकी पिटाई की गई थी और उनकी ठोड़ी पर चोट लग गई थी। मंदिर के सेवक उनकी चोट जल्दी ठीक हो जाए इसीलिए चंदन का लेप लगाते हैं। मान्यता है कि प्रत्येक गुरुवार के दिन तिरुपति बालाजी पर चंदन का लेप लगाया जाता है। लेप को जब मूर्ति से हटाते हैं तो उनके अंदर माता लक्ष्मी की प्रतिमा उभर आती है। माना यह भी जाता है कि इस चमत्कार के दर्शन सिर्फ सच्ची आस्था के साथ ही महसूस हो सकते हैं। माना यह भी जाता है कि इस मंदिर में एक दिया बिना तेल के सदियों से जल रहा है। बिना तेल के जलने वाला दिया, मंदिर में एक दिया है जिसमें कभी भी तेल नहीं डाला जाता, लेकिन तब भी दिया हमेशा जलता रहता है। दावा यह भी किया जाता है कि दीपक कभी बुझता नहीं है। इस दीपक में नहीं तेल होता है नहीं घी। ये दीपक पहली बार कैसे जला, कब जलाए गए, किसने जलाए, इसके बारे में प्रमाणिकता के साथ कुछ भी कहा नहीं जा सकता। तमिल में तिरुकार्थ श्री होता है, यानी लक्ष्मी, और धर्म ग्रंथों में भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के नाथ हैं। शायद इसी वजह से यहाँ का नाम तिरुपति पड़ा। लेकिन आखिर श्री हरि विष्णु यहाँ आए क्यों, कैसे यहाँ पर विराज गए भगवान विष्णु, ये हम आपको बताएंगे आगे। आप बने रहिए हमारे साथ।
2: संसार के सबसे धनी मंदिरों में से एक है तिरुपति बालाजी का धाम। तिरुमाला की सात पहाड़ियां जहां वेंकटेश के रूप में अपने भक्तों का कल्याण कर रहे हैं भगवान विष्णु। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान विष्णु यहां आए क्यों, आखिर ऐसा क्या हुआ कि लक्ष्मी जी रूठ कर पृथ्वी पर चली आई और भगवान उन्हें मनाने उनके पीछे पीछे चले आए। आइए आपको बताते हैं।
0: माना जाता है कि मंदिर जितना अद्भुत है उतना ही रहस्यमय। जितनी अलौकिक यहाँ की आभा है उतना ही अविश्वसनीय है यहाँ की आस्था, जो आपकी कल्पना से भी परे है। आस्था कहती है कि यहाँ माँ लक्ष्मी के साथ विराजे हैं विष्णु भगवान, जिसके साथ जुड़ी है जन जन की जुबान पर मिलने वाली कथा। कहते हैं कि देवी पद्मावती से विवाह के लिए श्री हरि ने भी कर्ज लिया था, जो कर्ज आज तक चुका रहे हैं श्री विष्णु। कथा कहती है कि भगवान विष्णु ने कुबेर से लिया था कर्ज। यहाँ भगवान वेंकटेश की श्याम वर्ण की प्रतिमा है, हाथों में शंख पद्म चक्र और गदा। कहते हैं कि लक्ष्मी जी को खोजते खोजते भगवान वैकुंठ लोक से पृथ्वी पर यहीं आए थे और कई वर्षों तक यही रहे। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि भगवान विष्णु से दूर हो गई माँ लक्ष्मी।
1: पौराणिक कथाओं के अनुसार ऋषि भृगु ने एक बार अपना पैर भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर मार दिया। उससे रूठित होकर माता लक्ष्मी पृथ्वी लोक पर बैकुंठ छोड़कर आ गईं। वहां पे बैकुंठ में भगवान विष्णु व्याकुल अवस्था में माता लक्ष्मी को ढूंढते हुए पृथ्वी लोक कर आए और श्रीनिवास के नाम से वो तिरुमला की पहाड़ियों पर वास करने लगे। माता लक्ष्मी के ही अवतार देवी पद्मावती से श्रीनिवास का विवाह हुआ। विवाह हेतु उनको धन की आवश्यकता थी, जो उन्होंने भगवान कुबेर से ऋण के रूप में लिया। आज भी मान्यता है कि तिरुपति बालाजी में श्रद्धालु ढेर सारा धन और आभूषण दान करके भगवान श्रीनिवास का ऋण चुकाते हैं।
0: कहा जाता है कि एक बार धरती पर संसार के कल्याण के लिए यज्ञ हुआ, लेकिन यज्ञ का फल किसे दिया जाए ये तय करने का काम भृगु ऋषि को सौंपा गया। भृगु ऋषि ब्रह्मा और महेश के पास गए। जब विष्णु जी के पास पहुंचे तो वो विश्राम कर रहे थे। विष्णु जी ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। अपने अपमान से आहत होकर भृगु ऋषि ने विष्णु जी के हृदय पर पैर से ठोकर मार दी। विष्णु जी क्रोधित नहीं हुए, बल्कि उन्होंने ही भृगु ऋषि से पूछा कि कहीं उनके पैर में चोट तो नहीं लगी, क्योंकि विष्णु जी के हृदय में लक्ष्मी जी रहती है। इसीलिए अपमान से दुखी होकर वो पृथ्वी पर चली आई। कथा कहती है कि भगवान विष्णु ने श्रीनिवास के रूप में धरती पर जन्म लिया और लक्ष्मी जी ने पद्मावती के रूप में। बाद में इसी वेंकटेश पर्वत पर श्रीनिवास और रानी पद्मावती का विवाह हुआ। कथा है कि पद्मावती जी से विवाह के लिए भगवान विष्णु ने कोषाध्यक्ष कुबेर से कर्ज लिया था। वो कर्ज इतना ज्यादा था कि भगवान विष्णु के भक्त उसे आज भी दान दक्षिणा के जरिए चुका रहे हैं। इसीलिए भगवान बालाजी के भक्त केवल अपनी मनोकामना के लिए ही नहीं बल्कि बालाजी का कर्ज चुकाने के लिए आज भी सोने चांदी और अन्य जेवर चढ़ाते हैं। इसके अलावा भगवान वेंकटेश के मंदिर से जुड़ी दो कथाएं और भी हैं। मान्यता ये है कि कलयुग के प्रारंभ में श्री हरि ने अपने भक्तों के बीच निवास करने और उनकी रक्षा करने का संकल्प लिया। अपने निवास के उपयुक्त स्थान के लिए उन्होंने नारद जी से परामर्श किया। कथा ये कहती है कि नारद जी ने दक्षिण भारत में स्वर्णमुखी नदी के तट पर श्री हरि को एक स्थान सुझाया। कथा है कि सर्पशेष ने शेषाचलन नामक पहाड़ियों में रूपांतरित होकर श्री हरि को वेंकटेश्वर के रूप में विलीन कर दिया और वो पहाड़ी की चोटी पर स्थित उस मंदिर में निवास करने लगे जो अब तिरुपति के नाम से प्रसिद्ध है। इसके अलावा एक और कथा स्थान को श्री हरि के वराह अवतार से जोड़ती है। कथा ये है कि वराह ने पृथ्वी को बचाने के लिए आदम सागर में छलांग लगाई और उसे शेष द्वारा निर्मित पर्वत श्रृंखला पर स्थापित किया गया। वराह वही निवास करने लगे और वो स्थान वराह क्षेत्र के नाम से जाना जाने लगा। वराह का रूप भयानक था। तब ब्रह्मा जी ने वराह से सौम्य रूप धारण करने का अनुरोध किया जिसके परिणाम स्वरूप वो वेंकटेश्वर के रूप में प्रकट हुए। तब से श्रीहरि वेंकटेश्वर के रूप में तिरुमला पर्वत पर विराजमान है। तो आप भी भगवान वेंकटेश के इस चमत्कारिक कहे जा रहे धाम के दर्शन अवश्य कीजिए जिससे आपको भी मिल सके श्री हरि का आशीर्वाद। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।

0: आषाढ़ का महीना मुख्य रूप से भगवान विष्णु, भगवान जगन्नाथ, माता दुर्गा और भगवान शिव और गुरुदेव महर्षि वेदव्यास के विशेष पूजन के लिए जाना जाता है। आषाढ़ का नाम है पूर्वाषाढ़ या उत्तराषाढ़ नक्षत्र के नाम पर पड़ा है। इस दौरान भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, इसलिए इस महीने का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। इस महीने में किए गए पूजा पाठ और जप तप का दुगना फल आपको मिलता है। इस महीने में ही भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा भी प्रारंभ होती है, इसलिए इस महीने का धार्मिक महत्व और अधिक बढ़ जाता है। इस समय को ऋषि मुनियों ने भी आत्मचिंतन के लिए सबसे उत्तम महीना माना गया है, क्योंकि इस महीने में वर्षा ऋतु का भी आगमन होता है और प्रकृति में भी ऊर्जा बनी रहती है। इस महीने में कई लोग पूजा पाठ या अपने धार्मिक अनुष्ठान का संकल्प लेते हैं और ज्योतिष शास्त्र में आषाढ़ महीना के दौरान सूर्य और मंगल देव की पूजा का अत्यंत प्रभावशाली और चमत्कारी मानी जाती है।
1: तो प्रार्थना हूँ स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही। अच्छी और सच्ची खबरों के लिए आप जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम।
3: Hey, it's Stormy, and previously on my show, Riley Green shared that he's motivated to make more music as he sees his audience size grow while he's on tour.
4: You know, when I started out, I was very southeastern. You know, I was down there in Alabama, and I've gone to a lot of places that I've never been. It's kind of motivation for me to keep writing music and keep traveling because there's country music fans everywhere.
3: Listen to the Stormy Warren Show on the Big 615 weekdays 7 a.m. to 1 p.m. Central right here on TuneIn.
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: चलिए बात मौसम की कर लेते हैं। भीषण गर्मी और उमस से जूझ रहे दिल्ली NCR के लोगों को जल्द ही राहत मिलने वाली है, क्योंकि मानसून का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। दिल्ली में 4 जुलाई तक मानसून के पहुंचने की पूरी संभावना है। उसके पहले प्री मानसून बारिश दिल्ली NCR के मौसम को सुहाना बना सकती है। मानसून अब तक 26 राज्यों में दस्तक दे चुका है। मौसम विभाग का यह अनुमान है कि 5 जुलाई तक मानसून पूरे देश को कवर कर सकता है।

0: मंगलवार शाम को मौसम जरा सा खुशगवार हुआ तो इंडिया गेट पर चहल पहल बढ़ गई। पिछले कई दिनों की गर्मी और उमस से परेशान लोग लुत्फ उठाने के लिए इंडिया गेट पहुंच गए। खुशी की बात यह है कि ऐसा नजारा अब अक्सर देखने को मिल सकता है, क्योंकि राजधानी दिल्ली के मौसम में बदलाव की घड़ी अब करीब आ गई है। दिल्ली NCR समेत उत्तर भारत के लोगों को भीषण गर्मी और उमस से जल्द राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग के मुताबिक मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। कई मौसम प्रणालियों के एक साथ सक्रिय होने से मॉनसून ने दोबारा रफ्तार पकड़ ली है। बंगाल की खाड़ी से नमी भरी हवाएं तेजी से आगे बढ़ रही हैं। अरब सागर से आने वाली तेज हवाएं भी बड़ी मात्रा में नमी लेकर आ रही हैं। लिहाजा पूरी संभावना है कि 2 जुलाई तक मॉनसून उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के शेष हिस्सों में सक्रिय हो जाएगा। 3 से 4 जुलाई तक दक्षिण पश्चिमी मॉनसून दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और पूरे उत्तर प्रदेश को कवर कर लेगा। 5 जुलाई तक मॉनसून पश्चिमी राजस्थान और गुजरात के सभी बचे हुए जिलों को कवर कर लेगा। मध्य प्रदेश और झारखंड के बाकी हिस्सों में भी अगले 2 दिनों में ये पूरी तरह फैल जाएगा। मंगलवार दोपहर को मॉनसून ने जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में एंट्री कर ली। मॉनसून ने देश में अब तक 26 राज्यों को कवर कर लिया है।
1: हिमाचल प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में मॉनसून वर्ष 2026 का आगमन हो चुका है। इसमें अगर हम क्षेत्रों की बात करें तो मॉनसून ने पूरे किन्नौर डिस्ट्रिक्ट को कवर कर लिया है और कुल्लू और लाहौल स्पीति के बहुत से क्षेत्रों में मॉनसून ने दस्तक दे दी है। साथ में जो डिस्ट्रिक्ट हमारे हैं सिरमौर है, यहाँ पे कुछ एक क्षेत्रों में जो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा है, जो बड़ा बंगाल एरिया है, वहाँ पे मॉनसून का आगमन हो चुका है। सिरमौर की बात करें, जो डिस्ट्रिक्ट शिमला के आसपास क्षेत्र जो चूड़धार एरिया है, वहाँ पे आगमन हो चुका है। साथ में जो हमारे शिमला डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें जो नारकंडा और जिसके जो ऊपर जितने भी क्षेत्र हैं, वहाँ पे मॉनसून की दस्तक हो चुकी है। और जो संभावना ये है कि आगामी 2 से 3 दिनों के भीतर में जो शेष जो क्षेत्र बचे हैं हिमाचल प्रदेश के, जिसमें ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, सोलन है, कांगड़ा का बहुत सा क्षेत्र है, चंबा डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ पे संभावना है कि आगामी 2 से 3 दिनों के भीतर मॉनसून का अराइवल हो सकता है।
0: मौसम विभाग के मुताबिक पूरी संभावना है कि राजस्थान के अंतिम छोर जैसलमेर और बाड़मेर तक पहुंचकर मॉनसून 8 जुलाई तक पूरे देश को कवर कर लेगा। पहले देश के अंतिम छोर तक मॉनसून पहुंचने की सामान्य तारीख 15 जुलाई मानी जाती थी, लेकिन इस बार मॉनसून पूरे देश को करीब एक हफ्ते पहले ही कवर कर सकता है। हालांकि पूरे देश में मॉनसून के आगमन की खबर के साथ एक टेंशन वाली बात यह है कि इस बार जुलाई में बारिश सामान्य से कम हो सकती है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक प्रशांत महासागर में अलनीनो के लगातार मजबूत होने की वजह से जुलाई के महीने में देश के ज्यादातर हिस्सों में सामान्य से कम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की माने तो मध्य, पश्चिमी और उत्तरी भारत के बड़े हिस्सों समेत देश के ज्यादातर इलाकों में सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है। हालांकि उत्तर पश्चिम भारत जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल और पूर्वोत्तर राज्यों में जुलाई में सामान्य या सामान्य से अधिक बारिश हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: अगर आप तीर्थ यात्रा करने में सक्षम नहीं हैं या फिर भीड़ में भगवान के दर्शन कर संतुष्टि नहीं मिलती, तो अब आपके लिए खास विकल्प मौजूद है। इसका नाम है दुर्लभ दर्शन। ये एक आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म है जिसमें 6T VR तकनीक के जरिए देश के प्रमुख मंदिरों के दर्शन का एक अनूठा अनुभव उपलब्ध करवाया जाता है। आशुतोष राणा को देश के पहले 6T मंदिर दर्शन सेवा तकनीक का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है।
3: आशुतोष राणा और मैं आपको लेकर चल रहा हूँ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या।
0: अब दुर्लभ मंदिरों के दर्शन भी सुलभ होंगे।
3: मन में तुलसी की सुगंध लिए हम अपने आराध्य प्रभु श्री राम के धाम की ओर चलते हैं।
0: घर बैठे ही तीर्थों की यात्रा होगी। देर तक निहार सकेंगे आराध्य
3: दर्शनार्थ उनके विग्रह या मूर्ति के समक्ष उपस्थित होते हैं तो
0: दूर रहकर भी गर्भगृह की पूजा में शामिल हो सकेंगे।
4: इसमें है 50 से ज्यादा तीर्थ यात्रा
0: और ये सब संभव है दुर्लभ दर्शन। दुर्लभ दर्शन एक ऐसा पिटारा जिसमें हर धाम समाया है
3: बल्कि अनुभूत भी कर सकते हैं।
0: भगवान समाये हैं एक खास एहसास के साथ।
3: आपके और परमात्मा के बीच में कोई नहीं, वहां पर घटित होने वाली समस्त क्रियाकलापों में आप सहभागी होंगे, ऐसी अनुभूति हमारी करवाने का मन था कि अगर मान लीजिए पानी गिर रहा है, अगर हमने जल चढ़ाया, जलाभिषेक किया, तो पानी के छींटे हमारे ऊपर आते हैं, तो वो भी आपको अनुभूत हो। अगर आपने उनको सुगंधिम पुष्टिवर्धनम की बात, अगर हम सुगंध उनको लगा रहे हैं अभिषेक करते समय, तो सुगंध भी आपको महसूस होगी। यदि हवा की बात है तो हवा भी आपको महसूस होगी। तो इस तरीके से पूरा इस अनुभव को बिल्कुल एक जो दुर्लभ अनुभव है उसको सुलभ करने के लिए हमने ये किया।
5: लाखों
2: असल में दुर्लभ दर्शन एक आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म जिसमें 6D VR तकनीक के जरिए देश के प्रमुख मंदिरों के दर्शन का एक अनूठा अनुभव उपलब्ध कराया जाता है। इसमें वर्चुअल रियलिटी के साथ साथ जल, वायु, सुगंध और पौराणिक कथाओं के मेल से साक्षात गर्भगृह में होने का एहसास कराया जाता है। यूँ कहिए कि यहाँ आस्था और तकनीक के मेल से एक सुंदर आध्यात्मिक वातावरण का निर्माण किया जाता है। यहाँ एक और भगवान राम और उनकी अयोध्या की कहानी है तो काशी विश्वनाथ का इतिहास भी है और माँ वैष्णो देवी की आरती थी। बस इसे आँखों पर लगाइए और यात्रा पर निकल पड़िए। अभिनेता आशुतोष राणा आपको धर्मस्थलों की कहानी सुनाते भी नजर आएंगे।
6: हमें तो अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए। क्यों होता है ऐसा? वो इसलिए कि जब हम भाव विभोर होकर भगवान के दर्शन,
2: फिलहाल ये सुविधा अयोध्या काशी समेत देश के 11 प्रसिद्ध मंदिरों में उपलब्ध है, जहां आप सुकून से बैठकर अपने आराध्य देव को करीब से महसूस कर सकेंगे,
6: ध्यान में लीन हो सकते हैं। और यदि किसी कारणवश
2: अभिनेता आशुतोष राणा को देश के पहले 6D मंदिर दर्शन सेवा तकनीक का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है।
6: 50 से अधिक तीर्थ यात्राएं और अनेक सिद्ध और दिव्य मंदिरों के दैनिक दर्शन कर सकते।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
8: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars NSYNC and Britney Spears, or rock artists like Sublime is what I got and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
11: Sage University, transforming your passion into profession.
12: TIT Bhopal, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
13: आर्थिक मोर्चे पर देश के लिए गुड न्यूज, जून में 1.94 लाख करोड़ जीएसटी कलेक्शन, पिछले साल से 14% ज्यादा, इम्पोर्ट से होने वाली कमाई बढ़ी। मॉनसून के चलते केदारनाथ के लिए संचालित हेली सेवाओं पर 5 जुलाई तक लगी रोक, केदारनाथ धाम के लिए 8 हेली सेवाएं हो रही थी संचालित। पहाड़ों पर मॉनसून का दिखने लगा असर, रुद्रप्रयाग में लगातार हो रही बारिश से अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ा, नदी के किनारे बनी भगवान शिव की मूर्ति तक पहुंचा पानी। केदारनाथ में, बद्रीनाथ में भगवान विष्णु के भक्तों ने अब तक के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त किए, 14 लाख से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किए, हर रोज 15,000 से 20,000 श्रद्धालु पहुंच रहे हैं दर्शन करने। दिल्ली में 75 ऐतिहासिक स्मारकों को गोद ले सकती हैं प्राइवेट कंपनियां, संरक्षण कार्यों के लिए 2 करोड़ तक मिलेगा अनुदान, सरकार ने 2 संरक्षण योजनाओं को मंजूरी दी। दिल्ली नगर निगम को हाईकोर्ट का आदेश, खुले में कचरा फेंकने वालों पर जुर्माना 5,000 करने का दिया प्रस्ताव, 500 का जुर्माना ना काफी, कार्रवाई करने में न हिचकिचाए नगर निगम। चमोली स्थित फूलों की घाटी में पहुंचे रिकॉर्ड पर्यटक, अब तक 7,000 से अधिक सैलानियों ने दीदार किया, पिछले साल के मुकाबले डेढ़ गुना बढ़ी संख्या।

0: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। स्वागत है आपका। आज नेशनल डॉक्टर्स डे है और ये दिन व्हाइट गाउन पहनने वाले योद्धाओं को सलाम करने का दिन है। वो सफेद कोट पहनने वाले जो हर दिन किसी की धड़कन बचाने, किसी परिवार की उम्मीद लौटाने और किसी मरीज को नया जीवन देने की कोशिश में जुटे रहते हैं। इलाज उनके पेशे का हिस्सा है, लेकिन सेवा उनका सबसे बड़ा धर्म है। सालों की कठिन पढ़ाई, ट्रेनिंग और दिन रात की मेहनत के बाद डॉक्टर समाज की सेवा और अच्छी सेहत के लिए तैयार होते हैं। बीमार हो, दुर्घटना हो, महामारी हो या फिर कोई भी आपदा हो, आपात स्थिति हो, हर चुनौती के समय सबसे आगे खड़े दिखाई देते हैं हमारे डॉक्टर्स। और यही वजह है कि समाज उन्हें सम्मान और विश्वास की सबसे ऊंची नजर से देखता है। राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे सिर्फ औपचारिकता मात्र नहीं है, बल्कि सभी चिकित्सकों के प्रति आभार जताने का एक अवसर भी है। हेल्थ सेक्टर में काम करने वाले लाखों कर्मी अपने स्किल, समर्पण और सेवा से अनगिनत जिंदगियों को नई उम्मीद देते हैं। लेकिन यह सवाल इन्हीं स्वास्थ्य कर्मियों की सेहत का भी है, उन डॉक्टर्स के हैप्पीनेस और हेल्थ का भी है जो समाज की अच्छी सेहत के लिए जिम्मेदार है। तो आज नेशनल डॉक्टर्स डे है। 1991 में इस परंपरा की शुरुआत हुई थी। पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री और जाने माने चिकित्सक डॉक्टर बिधानचंद रॉय के सम्मान में नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। ये डॉक्टर्स के प्रति सम्मान और आभार जताने का एक अवसर है, लिहाजा आज के दिन बहुत जरूरी हो जाता है कि हम समझें कि हमारे डॉक्टर्स और जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं किन हालात में अपना काम वो करते हैं और किन चुनौतियों के बीच अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। हमारे देश में करीब 811 मरीजों पर एक डॉक्टर है, अंदाजा लगाइए। कुछ आंकड़े आपको समझाते हैं। लंबी शिफ्ट से डॉक्टर्स की मानसिक सेहत पर भी असर पड़ता है, डॉक्टर्स और दूसरे मेडिकल स्टाफ की वर्किंग कंडीशन पर। फेडरेशन और ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने पिछले साल एक सर्वे भी किया था जिसमें चिकित्सकों की मानसिक सेहत पर एक चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया था। यह सर्वे पिछले साल 20 सितंबर से 8 अक्टूबर के बीच में किया गया था। इसमें 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 2000 से ज्यादा मेडिकल प्रोफेशनल्स शामिल हुए और स्टडी में यह पता चला कि 85% डॉक्टर्स स्ट्रेस में है, यानी तनाव में है। 87% डॉक्टर नींद की कमी से जूझ रहे हैं। आप सोचिए कि वो डॉक्टर्स जो हर दिन आपको सलाह मशवरा देते हैं कि अच्छी नींद आपकी सेहत के लिए कितनी जरूरी है, लेकिन उन्हीं का 87% आंकड़ा बताता है कि डॉक्टर्स खुद नींद की कमी से जूझते हैं। करीब 70% पोस्ट ग्रेजुएट रेजिडेंट के फिक्स्ड ड्यूटी आवर्स नहीं होते, आने का समय है, जाने का कोई समय नहीं है। 40% से ज्यादा मेडिकल छात्रों ने अपने काम के माहौल को टॉक्सिक बताया है। यहां भी स्ट्रेस सबसे बड़ा कारण होता है, क्योंकि अक्सर डॉक्टर्स ये कहते हैं कि आपका वर्किंग एनवायरनमेंट, अगर हम तमाम एमएनसीज या दूसरे इनफैक्ट ऑफिसर्स की भी बात करें, तो आपका वर्किंग एनवायरनमेंट आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत हद तक जिम्मेदार होता है। अच्छा है तो जाहिर सी बात है कि आपका आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी, लेकिन यहाँ पर 40% मेडिकल के जो छात्र हैं वो ये कहते हैं कि काम का माहौल टॉक्सिक है। और ये भी बात सामने आई है कि 50% से ज्यादा डॉक्टर्स हफ्ते में 16 घंटे से भी ज्यादा काम करते हैं। 15% के वीकली वर्किंग आवर्स 80 घंटे से ज्यादा हैं, यानी जो तय मानक हैं सरकार के उससे कहीं ज्यादा। और ज्यादातर डॉक्टर्स बहुत ज्यादा वर्क प्रेशर में भी काम करते हैं। 3 में से 1 डॉक्टर परिवार को दिन में सिर्फ 1 घंटे का समय दे पाता है। अब यहां पर यह भी समझिए कि यही वो डॉक्टर्स हैं, मनोचिकित्सक होते हैं, मनोवैज्ञानिक होते हैं, जो बार बार कहते हैं कि परिवार को समय दीजिए। हेल्थ एक्सपर्ट्स, लाइफस्टाइल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि परिवार को समय जरूर देना चाहिए, लेकिन डॉक्टर्स खुद कितना समय देते हैं, ये सर्वे की रिपोर्ट बताती है। और सर्वे की रिपोर्ट ये भी बताती है कि 10 में से 7 मेडिकल प्रोफेशनल्स काम के दौरान खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं, वो सेफ नहीं महसूस करते। और इसी सर्वे के आधार पर फेमा ने कई अहम सिफारिशें भी की थी। इसमें डॉक्टर्स के लिए ड्यूटी आवर्स कैप जरूरी बताया गया था, साथ ही साथ 24 घंटे की ड्यूटी के बाद ब्रेक जरूरी है ऐसा भी कहा गया था। और सबसे अहम यह है कि मेडिकल कॉलेजेस में 24 घंटे मेंटल हेल्थ काउंसलिंग सर्विस को जरूरी करने की सिफारिश भी दी गई थी। तो आज डॉक्टर्स डे है और इसी को लेकर तमाम डॉक्टर्स के साथ हम चर्चा करेंगे, डॉक्टर्स के दर्द को समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि हर मर्ज की दवा डॉक्टर के पास होती है, लेकिन डॉक्टर्स के इस जो आंकड़ों के हिसाब से हमने आपको बताया इस मर्ज की दवा किसके पास है, इसको लेकर भी बातचीत करेंगे। डॉक्टर संजीव बगई पद्मश्री अवॉर्डी सीनियर पेडियाट्रिशियन हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। डॉक्टर मोहसिन वली पद्मश्री अवॉर्डी हैं, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर दिलीप भानुशाली हैं, पास्ट प्रेजिडेंट IMA और सीनियर फिजिशियन भी है, जुड़ चुके हैं। मनीषा सिंगल, डॉक्टर मनीषा सिंगल क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो हैप्पी डॉक्टर्स डे आप सभी को, और गुड न्यूज टुडे की तरफ से सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि हमेशा आप अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं और पूरे देश की, हमारी, आपकी, हर किसी की जान और उनकी रक्षा की जिम्मेदारी, इनफैक्ट हमारी मेंटल हेल्थ की जिम्मेदारी का दारोमदार भी आप सभी पर होता है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आज के दिन की बहुत बहुत बधाई। चलिए शुरुआत करेंगे, डॉक्टर संजीव बगई आप ही से शुरुआत करना चाहूंगी। सर, सवाल सीधा सा सबसे पहला यही है कि क्या आज के दिन आपकी सेहत की बात करते हैं, क्या आप खुद को हेल्दी फील करते हैं? आज की तारीख में डॉक्टर होना एक ईजी है या बहुत चैलेंजिंग मुश्किल भरा काम है?
1: गुड आफ्टरनून और सबको बहुत बहुत गुड विशेस मेरी तरफ से, सारे डॉक्टर्स की तरफ से, सारे डॉक्टर्स को और पूरी कम्युनिटी को। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि डॉक्टर बनना कोई आसान काम नहीं है। अगर आप देखें 5.5 साल 6 साल MBBS की पढ़ाई और उसके पहले अनगिनत एंट्रेंस एग्जाम्स, उसके बाद MD या MS की 3 साल कठिन परिश्रम के साथ उसको क्लियर करना, उसके लिए भी अनगिनत एंट्रेंस एग्जाम्स। फिर अगर सुपर स्पेशलिस्ट बनना है तो DM या MCH करने के लिए 3 साल और उसके लिए भी अनगिनत एंट्रेंस एग्जाम। और इन 12 साल में आपका जो वर्किंग एनवायरनमेंट है वो टफ है, चैलेंजिंग है, इंड्योरिंग है, इमोशनली, सोशली, फाइनेंशियली, साइकोलॉजिकली एक्सट्रीम प्रेशर में काम करना पड़ता है। अपना थीसिस लिखना है, रिसर्च करना है, वार्ड ड्यूटीज, ICU ड्यूटीज, OTRs, और उसके बाद आप प्रैक्टिस करना शुरू करें, तो मतलब ये काफी

एक बिल्कुल ही अलग दुनिया हम जीते हैं उस टाइम पर जब हम बाहर निकलते हैं, अपने प्रैक्टिस करते हैं या गवर्नमेंट जॉब करते हैं, वो भी कोई आसान काम नहीं है। पहले हमारी ड्यूटी 36 घंटे, 48 घंटे नॉन स्टॉप होती थी। अब भी अगर आप देखें तो 12-15 घंटे आम है कंटिन्यूअस वर्क। पर जो सबसे अंडर एड्रेस्ड एरिया है, जो डॉक्टर्स के

0: घंटे आम है कंटिन्यूस वर्क, पर जो सबसे अंडर एड्रेस्ड एरिया है जो डॉक्टर्स के लिए भी, वो उनका मेंटल हेल्थ है। मेंटल हेल्थ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो हमारा ओवरऑल परफॉर्मेंस, प्रोडक्टिविटी, हैप्पीनेस क्वोशेंट सब चीज डिसाइड करती है। हमारे ईटिंग हैबिट्स खराब हो जाते हैं, स्लीप बिल्कुल डिसरप्ट हो जाता है, लॉन्ग वर्किंग आवर्स, उसके साथ हमारा जो फ्लूइड इनटेक है, न्यूट्रिशन है, उसमें असर पड़ता है, प्लस जो एक्सट्रीम प्रेशर में काम करना, जिंदगी और मौत से लड़ना, प्रोलॉन्ग लॉन्ग सर्जरीज करना, छोटे बच्चों को क्रिटिकल आईसीयू में बचाना, ये मानसिक तनाव में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है हमारे दिल पे, हमारे हार्ट ब्रेन में, हमारे साइकी पे। फैमिली में ज्यादा टाइम हम स्पेंड नहीं कर सक रहे, और जो हमारी छोटी छोटी खुशियां हैं वो तो खिड़की के बाहर बहुत साल पहले निकल गई। तो जब आप डॉक्टर की आप जिंदगी देखें, हमें कंटिन्यूस बहुत से जो यंगर जनरेशन के डॉक्टर्स हैं उनको फियर है, डॉक्टर्स असॉल्ट, एक डिस्ट्रस्ट पैदा हो गया है, तो हमें इस चीज पर बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। मेरी ये गुजारिश है, रिकमेंडेशन है कि हर हॉस्पिटल, प्राइवेट हो, टीचिंग हॉस्पिटल हो, गवर्नमेंट हो, में उसमें साइकोलॉजिकल काउंसलिंग का एक सेपरेट डिवीजन होना चाहिए। डॉक्टर्स भी ह्यूमन बींग्स हैं, डॉक्टर्स भी आम के जैसे बाकी कम्युनिटी के मेंबर हैं, उनको भी कभी कभी मदद चाहिए। हम कोई सुपर हीरो नहीं है, हम सुपरमैन नहीं है, टार्जन नहीं है, फैंटम नहीं है, हम एक आम इंसान है जो कम्युनिटी की सर्विस कर रहे हैं। मैं आखिर में एक चीज कहना चाहूंगा कि इससे बड़ा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भगवान किसी ह्यूमन बींग को दे नहीं सकता बनिस्पत फिजिशियन बनने में। और जो आदमी इस ड्यूटी को, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ठीक से निभाए, एथिकली निभाए, प्यार से निभाए, कंपैशन एम्पैथी शो करे, वो अपने लिए नहीं पूरी कम्युनिटी के लिए ये सर्विस कर रहा है। तो ये डॉक्टर्स को हमने प्रोटेक्ट रखना है, डॉक्टर्स की मानसिक स्थिति बिल्कुल ध्यान रखनी है। हमारा ओवरऑल प्रोडक्टिविटी ब्रेन के ऊपर निर्भर है, हमने अपना लाइफ, प्रोडक्टिविटी एंड मेंटल हेल्थ बचा के रखना है।
1: बिल्कुल। चलिए, मेरा अगला सवाल डॉक्टर वली आपसे है। डॉक्टर साहब, अभी ना मैं चेक कर रही थी कि डॉक्टर मोहसिन वली का टोटल एक्सपीरियंस एज अ डॉक्टर, हालांकि आज जब आप बोलेंगे, बात करते हैं, तो हमको ऐसे ही लगता है कि आप अभी भी उतने ही यंग है, लेकिन 50 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। डॉक्टर साहब, कैसी ये पूरी जर्नी रही आपकी, कहां कहां चैलेंजेस आए? अभी देखिए, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि आज की तारीख में अब वाकई जरूरत है कि डॉक्टर्स के साथ भी एक मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट रहना चाहिए, मेंटल हेल्थ काउंसलर रहना चाहिए। डॉक्टर साहब, जब आपने अपनी जर्नी शुरू की थी, क्या उस समय इतना प्रेशर होता था? कैसे समय बदला, और आज की तारीख में क्या मैं कह सकती हूं कि डॉक्टर्स बहुत खुश हैं? हैप्पीनेस, अगर हम कहें, आज हम गुड न्यूज टुडे पर बात कर रहे हैं, डॉक्टर्स की हैप्पी हेल्थ के बारे में भी जिक्र हो रहा है, अगर मैं 10 में से अगर आप आंकड़ा हमें बताएं, तो कितने परसेंट आप कहेंगे कि वाकई डॉक्टर्स बहुत खुश हैं, हैप्पी? हालांकि चिंता जरूर इससे पहले डॉक्टर साहब जता चुके हैं। डॉक्टर वली,
2: थैंक यू हमारे एड्रेस करने के लिए इशू को, इसको गुड न्यूज टुडे का बहुत बहुत धन्यवाद, और गुड न्यूज टुडे के माध्यम से तमाम डॉक्टर्स को और हमारे नर्सिंग स्टाफ को भी, जो हमारी टीम का हिस्सा होते हैं, उन सबको हैप्पी डॉक्टर्स डे। तब जो खुशी मिलती है जब कोई मरीज आके कहता है डॉक्टर साहब मैं ठीक हो गया, और वो खुशी हमको, अगर हम 40 मरीज एक दिन में देखते हैं, तो वो 40 बार मिल सकती है। ये खुशी कहीं अलग से नहीं बरसेगी, खुशी को जनरेट करना पड़ता है। जहां तक रियायतों की बात है, जब हम काम करते हैं तो हमारे सीनियर्स हमें वाउच करते हैं कि हमारा जूनियर जो है इसको ठीक से हम रखें, इसकी हम पढ़ाई का ध्यान दें, इसके हॉस्टल इसको लंच करने के लिए भेज दें। मुझे नवजोत अच्छी तरह याद है, मैं जब जूनियर था और थर्ड ईयर में था, मुझे सर्जरी में बहुत इंटरेस्ट था, तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ मेरे साथ हुआ, सबके साथ नहीं होता। तो मेरे जो सीनियर्स थे, मैं 2-2 बजे रात तक कोठी में खड़ा रहता था, 2 ऐसे ही बज जाते थे, पेशेंट देखता रहता था, ऑपरेशन में मुझे इंटरेस्ट आता था, अलग में सर्जन नहीं बना। तो मेरे जो सीनियर्स होते थे, वो जब अपने हाउस सर्जन को कम से कम डिनर के लिए भेजते थे, वो खुद नहीं जाते थे, तो मुझे कहते थे वॉशअप होके आ जाओ, ग्लव्स पहन लो, रिट्रैक्टर पकड़ लो। ये तो मेरे साथ हुआ।

0: लेकिन एक आम डॉक्टर की जिंदगी ऐसे दुखों से भरी होती है जो वो शायद किसी को बता ही नहीं पाता। आप अगर 10 डॉक्टर को भेजें जाके साइकेट्रिक काउंसलिंग कराओ अपनी, 9 नहीं जाएंगे। वो शायद उस पर कुछ समझेंगे कि ये शायद इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। हमको खुद खुशी अपने माहौल में जनरेट करनी पड़ेगी। मैं थोड़ा अलग हटके बोल रहा हूं, खुशी ना तो कहीं से मिलेगी ना खुशी कहीं कोई देगा। कोई खुशी नहीं देता, हम लोग देते हैं खुशी मरीज को, उसकी बीमारी से लड़ के, उसकी बीमारी को हर के, उसको फायदा पहुंचा के, उसकी बीमारी की जासूसी करके, जिसको हम डायग्नोसिस कहते हैं। लेकिन हम अपने लिए खुशी जनरेट कर सकते हैं और
1: एक सेकंड डॉक्टर,
0: करनी
1: एक सेकंड,
0: चाहिए।
1: मैं यहीं पे एक सवाल करूंगी। आपने कहा करनी चाहिए। आपको याद होगा मेरे इस शो में आप हमेशा बहुत बार कहते हैं कि खुद के लिए समय निकालो। मनीषा जी बैठी हैं, बहुत अच्छे से इस चीज को समझाएंगी कि अपने लिए समय कितना इंपॉर्टेंट होता है। एक डॉक्टर का कोई मी टाइम होता है क्या? आप लोग को वक्त मिलता है मी टाइम का? क्योंकि जिस सर्वे का जिक्र हमने अभी किया, इसको लेकर हम आगे चर्चा करेंगे कि 1 घंटा एक डॉक्टर एक हफ्ते में अपने परिवार को देता है।
0: डॉक्टर बगई बता चुके हैं हमारा प्रोफेशन ऐसा है, उसमें एक्सक्यूजेज नहीं है। आपके मरीज को कार्डियक अरेस्ट हुआ और आप उसको कार्डियक मसाज दे रहे हैं और आपको पेशाब आ रहा है, तो आपको पेशाब रोकना पड़ेगा। सर्जन 12 घंटे का जो कार्डियक ऑपरेशन करता है वो नहीं हिलता टेबल से। जो हम लोग वार्ड में मेडिकल ड्यूटीज करते हैं, हम नहीं जाते हैं। तो इस तरह की ट्रेनिंग शुरू से ही हो जाती है, तो कुछ एक्लिमेटाइज हो जाते हैं। लेकिन वो जो दूसरा एस्पेक्ट है, डॉक्टर हील दाई सेल्फ वाला, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। स्ट्रेस से कैसे हमको मैनेज करना है अपने घर में, फैमिली को। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं 25th एनिवर्सरी का केक काट रहा था प्रेसिडेंट स्टेट के घर में, और 9:30 बजे प्रेसिडेंट का कॉल आया और मुझे बुलाया गया। मैं वो छोड़ के मुझे जाना पड़ा, क्योंकि इट वॉज माई ड्यूटी, इट वॉज मेरा फर्ज। और 25वीं सालगिरह मेरी अब कभी नहीं आएगी, लेकिन मुझे जाना पड़ा। अब इसका रोना जो है नहीं रोया जा सकता।
1: जी
0: ये
1: जी
0: बात मैं आपसे ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, उस वक्त स्टेज पे कह रहा हूँ, ये मेरे साथ हुआ है। तो अब इसको बर्दाश्त करना, इसको अपनी जिंदगी से भूल जाना, ये एक बहुत मुश्किल काम है।
1: जी
0: डॉक्टर्स वो लोग बनते थे पहले जो जिनमें सेवा का भाव होता था, और पहले स्टेक्स इतने हाई नहीं होते थे। अब जो बच्चे बाहर से भी पढ़ के आ रहे हैं, उनको जिस कंफर्ट में वो पढ़ के आ रहे हैं उसकी आदत होती है।
1: बिल्कुल
0: हमारे यहाँ माहौल में वो कंफर्ट नहीं मिलता, या वर्क प्रेशर तो है, वो तो रहेगा,
1: ठीक है।
0: वो तो सीखना पड़ेगा उस प्रेशर के साथ। जैसे आप बैक टू बैक प्रोग्राम करती हैं और एक प्रोग्राम के ब्रेक में आप दूसरे प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग कर लेती हैं, इसको स्ट्रेस नहीं कह सकती आप। हम भी जो अपना काम है उसको स्ट्रेसफुल समझ के करेंगे तो हम डॉक्टर का फर्ज भी अदा
1: तो
0: कर
1: वो
0: रहे हैं,
1: स्ट्रेस लगेगा, लेकिन अगर
0: पर
1: उसको
0: वो
1: बिल्कुल
0: एंजॉय करना
1: हाँ
0: सीखना पड़ेगा।
1: ये लाइन
0: मेन टैगलाइन मेरी ये है कि यू मस्ट जनरेट एन एटमोसफियर ए हेलो ऑफ हैप्पीनेस अराउंड यू, अदरवाइज यू विल बी टोटल फेलियर।
1: डॉक्टर साहब आपने ये लाइन ना हमारी गुड न्यूज टुडे वाली बोल दी, आप हाफ ग्लास फुल या हाफ ग्लास एम्प्टी, ये आपकी नजर है, आप किस तरीके से उसको देख सकते हैं। डॉक्टर बघई ने बहुत अच्छे कुछ कंसर्न्स भी बताए, डॉक्टर वली ने भी बताए, लेकिन डॉक्टर भानुशाली जी मैं लौटूंगी डॉक्टर वली आपके पास, एक बार डॉक्टर भानुशाली को इंक्लूड कर लेते हैं। डॉक्टर साहब एक तो जो मेरे दोनों सवाल मैंने डॉक्टर साहब से पूछे हैं, चाहे डॉक्टर वली की बात कर लें या डॉक्टर बघई की बात कर लें, इसी के साथ साथ एक कंसर्न यहां पर और आता है, और जो सर्वे का जिक्र अगर आपने पूरा सर्वे सुना भी हो, क्या पहला सवाल तो यही कि आजकल डॉक्टर्स को क्या मी टाइम मिलता नहीं मिलता, डॉक्टर्स के लिए हैप्पीनेस मंत्रा क्या है, और दूसरी बात क्या हमारे देश में पर्याप्त डॉक्टर्स हैं या और डॉक्टर्स की जरूरत है। डॉक्टर भानुशाली
2: नमस्कार, मैं पूरी हिंदुस्तान के डॉक्टरों को आज के शुभ दिन पे नेशनल डॉक्टर्स डे की बधाई, सबको शुभकामनाएं। ये 2-3 सवाल जो आपने किए हैं कि मेरे अर्लियर स्पीकर्स ने जो बताया है कि डॉक्टर बनना, ये तो आप खुद चाहते हैं आप डॉक्टर बने, और जब आप चाहते हैं कि आप डॉक्टर बने तो आपको पता होना चाहिए कि यू हैव टू गिव सैक्रिफाइस। जिस तरीके से अर्लियर स्पीकर ने बताया कि कितनी मुश्किल से डॉक्टर बनते हैं, उसमें कितनी सैक्रिफाइस देने पड़ती हैं, वो तो सबको पता है। तो डॉक्टर को भगवान मानने के बजाय डॉक्टर को एक इंसान मानिए, पहले तो था वो एक इंसान, उसकी भी आकांक्षाएं हैं, उसकी भी मजबूरियां हैं, मगर आज के जमाने में इतना टैक्सिंग हो गया ऐसे डॉक्टर, नॉट ओनली टू ट्रीट पेशेंट बट इतने सारे डॉक्टर के अगेंस्ट वायलेंस बढ़ गया है बिकॉज डॉक्टर हैव बिकम ए सॉफ्ट आर्ट। तो उनपे जो नॉट ओनली वर्बल अब्यूजेस, फिजिकल अब्यूजेस और इतने सारे बढ़ गए हैं हॉस्पिटल में, आउट ऑफ एवरी फाइव डॉक्टर्स थ्री पीपल हैव एक्सपीरियंस वायलेंस इन देयर करियर। इस माहौल में जो डर बैठा हुआ है डॉक्टरों में, उसके वजह से डॉक्टर लोग आजकल क्या देखते हैं, हमारे हमारे हमारे फैमिली और डॉक्टर, हमारे लड़के हमारी लड़कियां ये ज्यादा पसंद नहीं करती डॉक्टर बनना। अब इसका मेन कारण है कि मल्टीपल रीजन है उसके।
1: जी जी जी डॉक्टर साहब, अपनी बात पूरी कीजिए।
2: ये तो ये इस माहौल में ऐसा हो गया है कि डिफेंसिव मेडिसिन कर रहा है डॉक्टर, वो अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को बाकी के इसमें शेयर कर रहा है, उससे इन्वेस्टिगेशन बढ़ जा रहे हैं उसके डॉक्टरों पे, पेशेंट पे प्रेशर आ रहा है, क्योंकि इतना सारा प्रेशर है डॉक्टर पे, नॉट ओनली काम के जरिए उस पर होता है, मगर उसको लगता है कि अगर मेरे से कुछ गलती हो जाती है तो उसका खामियाजा इतना बड़ा होता है। तो उसमें ऐसा हो गया कि गवर्नमेंट के इतने रूल्स है, जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में हम लोग आते हैं, आईएमए की तरफ से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लड़ने के लिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये हमने ये दलील रखी थी कि जब वकीलों को और जजेस को इस दायरे में नहीं है तो डॉक्टर को क्यों रखा गया। अनफॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट ने उस दलील नहीं मानी, और लकीली ओनली 3 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने हमारी दलील वापस ली है और उसकी हियरिंग होने वाली है और कुछ अच्छा निकलने की उम्मीद है उसमें। तो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन है कि एक लटकती तलवार है डॉक्टर के ऊपर, पहले के जमाने में ये सब नहीं थी, अब ये काफी बढ़ गया है और इसके वजह से डॉक्टर काफी भयभीत है और डिफेंसिव मेडिसिन कर रहे हैं।
1: बिल्कुल, चलिए डॉक्टर साहब लौटती हूँ, इन तमाम कंसर्न्स को लेकर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन डॉक्टर मनीषा अब आपके पास आती हूँ। देखिए, अब आपकी जरूरत हर डॉक्टर को है, मतलब अभी तक हम ये कह रहे थे कि कॉर्पोरेट में जो वर्क कल्चर होता है वहां एटलीस्ट एक मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट की जरूरत है। आजकल स्कूलों में लगा लीजिए, कॉलेजेस में लगा लीजिए, और वो जो हमारी सेहत को ठीक करते हैं अभी उनकी मेंटल हेल्थ के लिए भी आप लोगों की जरूरत महसूस हो रही है। मनीषा जी
3: धन्यवाद बहुत बहुत, एंड सभी को हैप्पी डॉक्टर्स डे। सो आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि डॉक्टर्स भी ह्यूमन है। सबसे पहली चीज हमको समझनी चाहिए कि भाई ह्यूमंस ही ह्यूमंस को ट्रीट कर रहे हैं, तो जो वो ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसमें से कुछ भी इश्यूज उनके साथ भी हो सकते हैं। और अगर डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि आपको अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, तो उन्हें भी इसी चीज की जरूरत है, मी टाइम, पर्सनल टाइम उनका, उनके हॉबीज, उनकी अपनी लाइफ जो अपार्ट फ्रॉम द वर्क हो सकता है, ये वर्क उनका पैशन है। बहुत सारे डॉक्टर्स का पैशन होता है, बहुत ही पैशनेटली डॉक्टर्स अपना काम करते हैं और इसीलिए इतने प्रोलॉन्ग्ड आवर्स के लिए वो काम कर भी पाते हैं, अदरवाइज वो सस्टेन नहीं कर पाएंगे। लेकिन उनकी जो उनका अपना पर्सनल टाइम है उसके लिए उनके पास एक्चुअली टाइम नहीं होता है, और कहीं ना कहीं वो जो बर्नआउट वाली फीलिंग है, बर्नआउट किस लिए होता है या सिनिकल रिलेशनशिप उनकी किस वजह से आती है, तो वो सडनली एक दिन में नहीं हो जाता है, वो उनके ड्यूटी आवर्स एंड स्पेशली वर्क प्लेस जनरली ऐसा होता है कि भाई वहां जाके आपको थोड़ा सा पॉजिटिविटी आती है, हॉस्पिटल्स भी पॉजिटिव होते हैं, लेकिन वहां पर जो उनका वर्क है वो बहुत ही सीवियरली सिक और इल किसी भी बीमारी के पेशेंट्स हो सकते हैं, उनको ट्रीट करना है। तो अगर वो हर दिन अपने अराउंड इस तरह का एनवायरनमेंट वो देखते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी मेंटल हेल्थ अफेक्ट होती है, जिसकी वजह से, एंड साथ में इसके केवल यही रीजन नहीं है, साथ में जो अभी सर ने बोला कि वर्बल वायलेंस तो अब बहुत छोटी सी चीज रह गई है, फिजिकल वायलेंस, तो वो जो थ्रेट्स हैं उनका जो डर होता है उनको, और अगर वो ट्रीट कर रहे हैं तो उनका जो प्रोफेशन है वो ऐसा है कि वो जो ट्रीट कर रहे हैं उसमें भी अगर कोई एरर आ गई या उसमें अगर पेशेंट यू नो नेगेटिव फीडबैक आ गया, पेशेंट खुश नहीं है, और केवल पेशेंट नहीं है, पेशेंट तो चलो लेटा हुआ है अगर वो बीमार है बहुत सीवियरली, लेकिन पेशेंट के जो अटेंडेंट्स हैं, उनके फैमिली फ्रेंड्स, जो भी साथ में आते हैं वो अगर ना खुश है तो उन सबको हैंडल करना, प्लस उसके साथ में जो एडमिनिस्ट्रेशन है जहां पे भी वो ट्रीटमेंट चल रहा है, उनकी अपनी जगह है तो बात अलग है, अगर वो कहीं कार्यरत है किसी हॉस्पिटल में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में तो वहां से उनको कितना सपोर्ट मिल रहा है और क्या फैसिलिटीज है, क्या कितना कन्वीनियंट रहता है उनके लिए पेशेंट को ट्रीट कर पाना और उनकी मजबूरी को समझ पाना. तो ये सारे जो चैलेंजेस हैं, प्रैक्टिकल चैलेंजेस हैं, वो आई थिंक मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स के साथ हैं. और इसमें डॉक्टर्स तो डॉक्टर्स को सपोर्ट कर पाते हैं, लेकिन डॉक्टर्स के अलावा जो सपोर्ट चाहिए होता है वो कहीं मिसिंग है. तो हमारे जुडिशियल सिस्टम में भी अगर थोड़ा सा इस चीज को सीरियसली लिया जाए तो डॉक्टर्स की हेल्थ को हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए, उसको प्रेफरेंस देनी चाहिए, क्योंकि उनकी अगर लाइफ हेल्दी होगी, पर्सनल लाइफ उनकी खुश होगी, तो ही वो अपने पेशेंट्स को उतना बेटर तरीके से ट्रीट कर पाएंगे.
1: बिल्कुल डॉक्टर बगई, अब आपके पास आते हैं. डॉक्टर साहब, जो जो सर्वे हुआ है मैं उसी के कुछ आंकड़ों पर चाहूंगी कि आप इस पर अपनी बात रखिए. 85% डॉक्टर्स जो हैं वो स्ट्रेस में हैं और 70% जो पोस्ट ग्रेजुएट रेजिडेंट्स हैं उनके कोई फिक्स ड्यूटी आज नहीं है. 40% मेडिकल छात्रों को काम का माहौल टॉक्सिक लगता है. 50% से ज्यादा डॉक्टर्स हफ्ते में 16 घंटे से ज्यादा काम करते हैं. वीकली वर्किंग आवर्स जो हैं वो 80 घंटे तक जाते हैं. डॉक्टर साहब, एक समय था जब हम कहते थे कि हमारे पास पर्याप्त डॉक्टर्स नहीं हैं, हॉस्पिटल्स की कमी, लेकिन आजकल देखा जाए तो हर जगह अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स भी हैं. सरकार की तरफ से भी बहुत सारे हॉस्पिटल्स आए हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं. बावजूद इसके ये प्रेशर क्यों इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है? और एक सबसे बड़ी बात डॉक्टर साहब, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा, जब एक रेजिडेंट डॉक्टर कहता है कि माहौल टॉक्सिक है, उससे हम क्या मतलब समझें?
4: तो इसमें दो पार्ट हैं. पहले आप समझ लीजिए कि जो मेडिकल एजुकेशन है, अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट, उसमें आप वार्ड छोड़ के कहीं नहीं जा सकते. वही आपका घर है, वही आपका मंदिर है. पेशेंट्स कम से कम 100 मरीज हर दिन देखने पड़ते हैं. ओपीडी का जो लोड होता है 100 से ज्यादा, कभी कभी 150 पेशेंट 3 घंटे 4 घंटे में. और जब वर्क प्रेशर होता है उसमें आपके जो सीनियर्स होते हैं, जो आपका जो लिविंग एनवायरनमेंट होता है या खाने की जो जगह होती है कैफेटेरिया, ज्यादातर कॉलेजेस में ये चीज काफी लैकिंग है. यस, हमने हॉस्पिटल्स बढ़ाए हैं पिछले 10 सालों में, डॉक्टर्स की भी गिनती बढ़ी है, एमबीबीएस सीट्स की गिनती की भी बढ़ी है, पर अभी भी 2026 में इंडिया में 1 मिलियन डॉक्टर्स की शॉर्टेज है और इक्वली 1 मिलियन हॉस्पिटल बेड्स की शॉर्टेज है. अगर आप देखें, जब हम पोस्ट ग्रेजुएट कंप्लीट कर लें या सुपर स्पेशलाइजेशन कंप्लीट कर लें, और अगर आप कोई इंटेंसिव केयर लाइन में है, जैसे न्यूबॉर्न आईसीयू या पीडियाट्रिक आईसीयू, कार्डियक या ऑर्थोपेडिक या न्यूरोसर्जरी, इसमें कम से कम हमें 20 बारी पेशेंट्स की रिपोर्ट्स दिन में आती हैं. हर जब फोन आता है या वैल्यूज आती हैं उसमें कम से कम 20 25 30 आंकड़े होते हैं जिसको हमने याद रखना है हर पेशेंट का ऑफ हैंड, मतलब एट द टॉप ऑफ योर माइंड. अगर हमने कोई चीज करेक्ट करनी है उसका फिर दोबारा वैल्यू चेक करके फोन आता है. लास्ट फोन जो आता है अक्सर कंसल्टेंट्स को रात के 1 या 2 बजे आता है, जब लास्ट आईसीयू की रिपोर्ट्स आती हैं. हम ये नहीं कह सकते कि भाई अब मैं सो रहा हूं, आप मेरे को कल सुबह फोन करिए. ये जिंदगी और मौत का सवाल है. ये टोल जो प्रेशर है ये मानसिक स्थिति पर इफेक्ट करता है और हम इसको देखा अनदेखा कर देते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि ये हमारा फर्ज है, ड्यूटी है. यस, ये हमारा फर्ज एंड ड्यूटी है, हम हमेशा करेंगे, पर इसमें भी हमें थोड़ा सा वर्क लाइफ बैलेंस करना जरूरी है. अगर आप किसी कंसल्टेंट को रात के 3 बजे इमरजेंसी के लिए बैठाएंगे, मैं अपनी एग्जांपल दे सकता हूँ, 3 या 4 मिनट में हमारा रिएक्शन टाइम होता है. हम गाड़ी में होते हैं, फॉग हो, ठंड हो, बारिश हो, उसका कोई मायने नहीं रखता
1: जी.
4: कोई त्योहार हो, फैमिली में फंक्शन हो, एनिवर्सरी हो, बर्थडे हो, वो सेकेंडरी है. हमारे लिए पेशेंट सबसे जरूरी है.
1: बिल्कुल,
4: ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप किसी कंसल्टेंट को देखें वो सुबह 9 बजे मुस्करा रहा है, उसके पीछे 40 साल 50 साल का स्ट्रगल है. अगर कोई डॉक्टर भी किसी दिन उदास है उसके कारण भी, उसके पीछे भी कारण है. इट इज नॉट इजी, ये बहुत दिक्कत की बात है कि अगर कोई मरीज मर जाए या क्रिटिकल हो, उसके पेशेंट्स रिलेटिव्स को समझाना, काउंसिल करना, हम इमोशनली, हम भी ह्यूमन बीइंग है, अगर कोई पेशेंट प्रोलॉन्ग स्टे का है हॉस्पिटल में, हम भी उसके साथ इमोशनली जुड़ जाते हैं, क्योंकि हम भी लड़ते हैं पेशेंट के साथ, हम भी एक्सप्लेन करते हैं डे टू डे, मिनट टू मिनट पेशेंट्स के रिलेटिव्स को, स्पेशली जो पेडियाट्रिक्स हैं या छोटे बच्चे हैं, उनके साथ प्यार होना लाजमी है, वो नॉर्मल है, वो नेचुरल है,
1: इमोशनल कनेक्ट हो जाता है।
4: अगर कोई चीज हो तो उसमें बहुत ज्यादा डॉक्टर्स पर असर पड़ता है, दैट इज नॉर्मल, एंड ये चीज एड्रेस करना, हॉस्पिटल्स को एड्रेस करना ये जरूरी है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट को एड्रेस करना जरूरी है। आज की डेट भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स की मानसिक स्थिति को नहीं एड्रेस किया जा रहा।
1: ठीक है सर, यहीं से हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पेशेंट की मानसिक स्थिति को डॉक्टर समझता है, लेकिन डॉक्टर की मेंटल हेल्थ को कौन समझेगा, इसी को लेकर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, रहिए हमारे साथ।

0: Hot Mics now streaming on TuneIn, your go-to show for explosive sports showdowns, bare-knuckle politics, raw Hollywood gossip, tech power plays, and pop culture chaos. Hosted by yours truly, Billy Bush. Want to catch the latest episodes on your connected device? It's easy. One, set a reminder with your smart speaker by saying, "Remind me to listen to Hot Mics Monday through Thursday at 12 p.m. Eastern, 9 a.m. Pacific." Two, when it's time, just say, "Play Hot Mics on TuneIn." And you're in for unfiltered takes, A-list guests, and the stories everyone else is too scared to touch.
1: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: ब्रेक के बाद आपका स्वागत है डॉक्टर्स डे पर। आज हम चर्चा कर रहे हैं, तमाम खास मेहमान यानी डॉक्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं। अक्सर हम जब भी स्ट्रेस में होते हैं या किसी भी बीमारी से ग्रस्त होते हैं तो डॉक्टर की एक सलाह, डॉक्टर की एक एडवाइस या फिर डॉक्टर की एक काउंसलिंग हमारी बीमारी को आधा कर देती है, ऐसा माना जाता है। और ये मेरा अपना एक्सपीरियंस भी है। डॉक्टर वली, आपके पास आना चाहूंगी। डॉक्टर काफी हद तक एक बातचीत में ही कहा जाता है कि 50% मरीज को ठीक कर देता है, लेकिन फिर भी अब सवाल यहां पर डॉक्टर की अपनी मेंटल हेल्थ को लेकर आता है। डॉक्टर बगई ने ब्रेक पर जाने से पहले बहुत सारे कंसर्न्स उठाए हैं मेडिकल स्टाफ के लिए। डॉक्टर वली, वर्क लाइफ बैलेंस क्यों जरूरी है, उनका मेंटल हेल्थ अच्छा होना कितना जरूरी है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है, कौन इसको समझेगा?
1: हाँ जी, तो डॉक्टर की बीवी की है जो उसको स्ट्रेस न दे उसके काम। अबे, एक तो मरीज के मारने से पीटने से डर लगता है, दूसरे जो हमारी जीवन का एक आधा हिस्सा है, अर्धांगिनी है, उसके फर्ज और बच्चों के फर्ज। आई एम नॉट जोकिंग, दिस इज ए फैक्ट। जो सबसे ज्यादा ब्रण डॉक्टर की मसरूफियत का बियर करता है वो उसकी अर्धांगिनी होती है, उसकी पाइप होती है। मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया अपनी वेडिंग। तो हमें वर्क लाइफ बैलेंस कहना तो बहुत आसान है, लेकिन जैसे डॉक्टर बगई ने कहा कि 3 बजे रात को कॉल आ रही है, आपको बाई बोरोड स्टील पहुंचना ही है अपनी ड्यूटी पे, अगर आप एक अच्छे डॉक्टर। अब इसके लिए ये एक बहुत बड़ी बात मैं कहने जा रहा हूं, अगर हम ये सब नहीं कर सकते तो मत बनो डॉक्टर। ये 9 to 5 का दफ्तर नहीं है डॉक्टर की पेशा जो है। दफ्तर में बड़े ऑफिसर फाइल अगर बच जाती हैं तो वो छोड़ के घर चले जाते हैं। डॉक्टर के ओपीडी में अगर 90 मरीज खड़े और टाइम पूरा हो गया तो वो नहीं जा सकता लंच करने, उसको वो 90 पेशेंट खत्म करने। और मैंने देखे हैं 80-90 पेशेंट अमनोर लोहिया हॉस्पिटल के ओपीडी में। अब आपने ये कहा कि कैसे बैलेंस, अब आपको अंदर आपके दिल में कुछ चिंता है, कुछ परेशानी है, पीड़ा है, बच्चा बीमार है, अब मरीज को इससे कोई मतलब नहीं। मरीज वॉन्ट्स कि आप उसकी बात सुने, आप उसका इलाज करें, आप उसके काम आए, आप उसके लिए पर्चा लिखें, प्रेस्क्रिप्शन लिखें और स्माइलिंग रहें उसके साथ। तो इसकी एक हम लोगों को मश्क हो जाती है, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाती है कि हम अपने अंदर के दुख को अपने चेहरे पे नहीं आने देते, यही मरीज चाहता है। मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि डॉक्टर सॉफ्ट टारगेट्स हैं। गाँव में, छोटे शहरों में, छोटे नर्सिंग होम में मरीज को अगर मर जाता है तो उन पर हिंसा होती है। अभी मेरे मावलंकर हॉल में इसका पूरा कार्यक्रम चल रहा है, डॉक्टर हर्षवर्धन वहाँ उसकी सदारत कर रहे हैं, मुझे भी जाना था, आपके प्रोग्राम की वजह से नहीं गया, अब जाऊंगा। प्रॉब्लम ये है कि जब हम अपने अधिकार मांगते हैं तो हमको ये कहा जाता है कि इस तरह के रूल्स जैसे दूसरे लोगों के लिए हैं आपके लिए भी हैं। यहां तक नीति ने हमको जवाब दे दिया है, लेकिन जो हमारी ड्यूटीज हैं जिसको हम कहते हैं बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी, वो उस तरह की। तो ये एक प्रोफेशन है और इस प्रोफेशन के कुछ तकाजे हैं, इसकी कुछ नजाकतें हैं, इसमें कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। और मैं आपको बताऊं कि अगर मेरा बच्चा बीमार हो और मैं उसको इमरजेंसी में लेके खड़ा हूं तो मैं दूसरे बंदे से जो डॉक्टर है क्या एक्सपेक्ट करूंगा। मैं लोगों से कहता हूं उसका 50% कर दीजिए, 10% कर दीजिए, आपका पेशेंट कभी नाराज नहीं होगा। ये हमको इनकल्केट करना पड़ता है और हमारे सीनियर्स ने हमको ये सिखाया है, उन्होंने खुद कुर्बानी दी है हमारे सामने। जैसे मैंने अभी बताया, सीनियर रेजिडेंट डिनर के लिए नहीं जा रहा है लेकिन वो हाउस सर्जन को भेज रहा है, ये वो कृपा कर रहा है उस पर। तो ये चीज सिखाई गई है, अब वो माहौल बदलता जा रहा है, कॉमर्शलाइजेशन हो रहा है और अंगूठे लगवाए जाते हैं। अब हम लोगों के, मैं जिस अस्पताल में जाता हूँ एक जगह, वहां सीक्रेटली टाइम नोट किया जाता है मेरी गाड़ी किस वक्त पहुंची, तो मुझे ये पता है, तो मुझे पंक्चुअल होना चाहिए। तो पंक्चुअलिटी, डेडिकेशन, सॉफ्टनेस, पोलाइटनेस, सेक्रीफाइस, ये इस पेशेंट से जुड़ी हुई चीजें हैं। और अगर हम में ये नहीं है तो हम डॉक्टर बन के भी डॉक्टर नहीं, इसलिए हमको इसका क्लेम नहीं करना है। लेकिन इस बात पे मैं बहुत दिन से कोशिश कर रहा हूँ कि वॉयलेंस अगेंस्ट द डॉक्टर जो है इस पे कुछ कृपा की जाए, ताकि जो काम बच्चे हमारे कर रहे हैं इस वक्त एक्सपोज्ड है वो एक सोसाइटी में जो सोसाइटी बहुत ज्यादा बर्बाद भी हो चुकी है, उसमें मैनर्स खत्म हो रहे हैं, उसमें बहुत ज्यादा मेटेरियलिज्म आ गया है, वो डॉक्टर को भगवान भगवान कुछ नहीं समझ रही है, कहने की बातें हैं, डॉक्टर को वो एक कंज्यूमेबल समझ रही है, और हम पैसे दे रहे हैं कि आपको, आप काम कर रहे हो। पेड हॉस्पिटल्स में ये कॉन्सेप्ट है, सरकारी हॉस्पिटल में ये कि आप जी ड्यूटी पे नहीं हो, डॉक्टर कुर्सी पे नहीं मिला, अरे भाई डॉक्टर पेशाब भी आएगा, डॉक्टर को कुर्सी से जा भी सकता है, कितना तो कृपा करिए उस पे। और हमारे यहाँ तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, जो मैं जोर दे के कह रहा हूँ, हमारे यहाँ डॉक्टर के पास मरीज कब जाता है, जब बिल्कुल भगवान के आधे रास्ते को तय कर लेता है, सेहत पे नहीं जाता है डॉक्टर मरीज के पास। यू शुड विजिट द डॉक्टर इन हेल्थ, नॉट इन द एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ डिजीज। तो फिर डॉक्टर बहुत कम कर पाता है, तो फिर वो बहुत कम मुतमईन हो पाता है, फिर वो उसको गाली देता हुआ निकलता है, ये होता है। तो हमको अपनी सेहत को अगर ठीक रखना है और डॉक्टरों की सेहत को भी ठीक रखना है, तो भैया स्वास्थ्य कॉन्शियस बनो, हेल्थ कॉन्शियस बनो, अपनी बीमारी को पढ़ने से पहले डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर का भी स्ट्रेस कम रहेगा, तुम्हारा भी कम रहेगा, तुम्हारा खर्चा भी कम रहेगा, और डॉक्टर साहब टेंशन में भी नहीं आएंगे, आईसीयू में बैठे 30, इमरजेंसी में पड़े 60, तो डिस्पैरिटी हो गई। ये सब डिस्पैरिटीज होती है, प्रैक्टिकली होती है। हमारे, मैं एक लास्ट बात कह दूं, हमारे डॉक्टर्स आज भी वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर्स हैं, हमारी चिकित्सा पद्धति, हमारे हॉस्पिटल्स, हमारी सरकारी सेवाएं, हमारी अवेलेबल मेडिकल सर्विसेज आज भी वर्ल्ड चीपेस्ट एंड बेस्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये ऑन रिकॉर्ड में कह रहा हूँ और ये सच्चाई है।
0: ठीक है, यहाँ पर एक डॉक्टर भानुशाली आपके पास आना चाहूंगी, डॉक्टर्स के लॉन्ग वर्किंग आवर्स को लेकर भी सर्वे में बहुत सारी बातें कही गई हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या उस पर कुछ लिमिट होनी चाहिए?
2: इस डॉक्टर के वर्किंग आवर्स पे काफी कुछ चर्चा हुई है, और जो जिनके ये जानकार है, जिनके ये जो बनाते हैं, उन लोगों ने गाइडलाइंस दिया है कि इतना घंटे काम करना है, इतने घंटे उनको आराम मिलना है, ये सुविधा होनी चाहिए, उनको आराम करने के लिए सेपरेट रूम होना चाहिए। जैसे आपने देखा आरजी का केस में कलकत्ता में जो चीज हुई है, तो लेडी डॉक्टर के लिए उसके रेस्ट करने के लिए कोई जगह नहीं थी, और उसके 32 आवर्स काम करके वो लेडी जब आई थी, तो ये काफी सारी चीजें हैं जिसके ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो वर्किंग आवर्स तो फिक्स किए गए हैं, और कितने उसमें अमल हो रहे हैं वो बहुत मुश्किल है कहना।
0: इस बात को डॉक्टर भगई, यही सवाल है, एक बार आपसे भी जानना चाहूंगी, इसको कौन सुनिश्चित करेगा? एक वर्किंग आवर्स अगर बना दिए गए हैं, बावजूद इसके देखते हैं कि डॉक्टर्स लॉन्ग वर्किंग आवर्स में काम करते हैं, अब दूसरी सवाल ये भी इसी के साथ जुड़ा हुआ है, ये तो क्वालिटी ऑफ वर्क पे भी फिर असर करता है कहीं ना कहीं।
3: अगर आप देखें, मैं दोबारा ये कह रहा हूं कि पिछले 10 साल में हमने बहुत अच्छा प्रोग्रेस किया है, कोई इसमें डाउट है ही नहीं। हमने जो मेडिकल सीट्स इंक्रीज की है 100% इंक्रीज की है, पर फिर भी जो प्रीवियस जो शॉर्टफॉल है, वो डेफिशिएंसी है, इतनी ज्यादा है, स्पेशली जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में है, जो वर्कलोड इतना ज्यादा है कि आपका काम कभी खत्म होता ही नहीं। आप दूसरी चीज देखिए कि आप वार्ड को किस तरह से छोड़ के जा सकते हैं, अगर आप 5 बजे भी सुबह वार्ड में पहुंचे, जैसे हम पहुंचते थे, आपका काम रात के 10 बजे 11 बजे 12 बजे 1 बजे तक भी खत्म नहीं होता, क्योंकि नई पेशेंट्स एडमिशंस आती ही रहती हैं। अगर हमारे पास वर्कलोड कम है, वर्कफोर्स कम है और वर्कलोड ज्यादा है, आप वार्ड नहीं छोड़ सकते, वो आप अपने आप के साथ बेईमानी करेंगे। दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर्स आम तौर के जैसे कोई और लाइन नहीं है, ये कोई एमबीए की लाइन नहीं है, ये लॉयर की लाइन नहीं है, ये सीए या आर्किटेक्चरल की लाइन नहीं है। आप यकीन करिए, कोई भी डॉक्टर जो हॉस्पिटल में या इंटेंसिव केयर प्रैक्टिस कर रहा है, उसको ऑफ द हेड, मतलब ऑन द फिंगर टिप्स, कम से कम 2-3 हजार मेडिसिन, डोजेस, साइड इफेक्ट्स, कैलकुलेशंस एब्सोल्युटली रेडी रखना है। जब आपको फोन आता है या क्रिटिकल पेशेंट होता है, आप अपना बुक पढ़ के तब दवाई नहीं दे सकते, पेशेंट तब तक मर जाएगा। आपको ये इमीडिएटली एक्ट करना है, मतलब आपको मिलीग्राम पर किलोग्राम पर डे, ml पर किलोग्राम पर आर पर मिनट, इस तरह के हमें कैलकुलेशंस मेंटली विद इन फ्यू सेकंड्स करके डिसीजन लेना होता है। ये प्रेशर है, ये हाई स्ट्रेस जॉब है, जो लोग इससे बिल्कुल कमिटेड है वही डॉक्टर बने, नहीं तो आप बहुत डिससैटिस्फाइड रहेंगे, अगर आप मेडिसिन में जा रहे हैं, यंग स्टूडेंट्स को मेरा ये मैसेज है कि बहुत से पैसे बनेंगे, बहुत सा ग्लोरी मिलेगा, बहुत सा रिकॉग्निशन मिलेगा, वो गलत है। मेडिसिन ये हमारा मंदिर है, ये हमारा टेम्पल है, ये हमारा मस्जिद है, ये हमारा चर्च है। यहाँ हम अपने पेशेंट्स को अपने फैमिली मेंबर्स के जैसे ट्रीट करते हैं, और ये बहुत जरूरी बात है। कंपैशन, एम्पैथी, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। हमें भी मदद चाहिए, हमें भी काउंसलिंग की जरूरत चाहिए होती है, हमारी फैमिली को के लिए टाइम निकालना पड़ता है। ये एक हाई प्रेशर जॉब है, इसको आप रिस्पेक्ट के साथ करें और कम्युनिटी डॉक्टर्स को रिस्पेक्ट करें।
0: बिल्कुल, जिम्मेदारी बनती है। और आपने जिसका जिक्र किया, जो सर्वे हुआ है डॉक्टर साहब, उसी में आंकड़ा ये भी बता रहा है कि 811 मरीजों पर एक डॉक्टर है, तो प्रेशर कितना ज्यादा है हम यहीं से समझ सकते हैं। मनीषा जी, अब आखिरी सीधा आपके पास आऊंगी, डॉक्टर्स अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल कैसे रख सकते हैं? डॉक्टर्स के साथ साथ मैं उनके परिवार की भी बात करूंगी, क्योंकि हमारे तीनों डॉक्टर्स ने यहां पर जिक्र किया है कि फैमिली भी उतना ही सफर करती है जितना कि डॉक्टर्स यहां पर परेशान होते हैं।
4: बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एक चेन है। अगर कोई एक इंसान परेशान है, स्पेशली डॉक्टर्स की हम आज बात कर रहे हैं, सो डॉक्टर अगर परेशान है तो डॉक्टर, उस डॉक्टर से कनेक्टेड जितने भी लोग हैं वो सब परेशान होंगे। तो कैसे ख्याल रखें उसमें, जैसे कि यहाँ पर सभी सीनियर डॉक्टर्स ने कहा है कि उनकी काउंसलिंग भी होनी चाहिए और उनको भी नी टाइम मिलना चाहिए, क्योंकि जो सिम्टम्स होते हैं, अब डॉक्टर्स हम सबके सिम्टम्स बताते हैं, लेकिन मुझे कुछ साइंस एंड सिम्टम्स दिखाई देते हैं डॉक्टर्स में, तो उसमें एक डीपर्सनलाइजेशन, जिसमें डॉक्टर अपने से ही डिस्टेंस करने लगता है, क्योंकि वो इतने इन्वॉल्व हैं, इतना उनका वर्क का प्रेशर है और बर्नआउट के साथ में वो डील कर रहे हैं, तो उसमें उनको स्ट्रेस तो एक कॉमन एक टर्म है, इसके अलावा एंग्जाइटी, स्लीप उनकी डिस्टर्ब अगर रह रही है और प्रोलॉन्ग्ड टाइम ऐसा चल रहा है कि काफी टाइम हो गया है उनकी स्लीप डिस्टर्ब चल रही है, तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होगा उनके काम पे। और डॉक्टर्स के साथ प्रॉब्लम यह है कि अगर मरीज सामने है तो वो खुद एक जमाई भी नहीं ले सकते हैं, अगर उनको उबासी आ रही है क्योंकि उनकी नींद पूरी नहीं हुई है, तो उनको जैसे कि डॉक्टर बली ने कहा कि उनको बिल्कुल फ्रेश और फिट दिखना चाहिए सामने, तो उनकी फिटनेस का ख्याल रखने के लिए जरूरी है कि उनको टाइम दिया जाए और उनके वर्किंग आवर्स, ठीक है उनका जो प्रोफेशन है वो ह्यूमंस को ट्रीट करना है, लेकिन अगर उसी के अकॉर्डिंग स्टाफ बढ़ा दिया जाए थोड़ा सा, या फिर उनके उनकी अगर उन्हें अगर उनकी हेल्थ कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो रही है तो उनकी हेल्थ को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस देनी चाहिए जितना कि पेशेंट की हेल्थ को इम्पोर्टेंट दी जा रही है।
0: बिल्कुल, और इसमें दारोमदार अगर मैं गलत नहीं हूं तो सबसे बड़ा पेशेंट्स का भी है, उन लोगों का भी है जो वहां पर जा रहे हैं डॉक्टर को दिखाने के लिए, क्योंकि अगर आप खुद को ठीक करने के लिए जा रहे हैं तो वहां पर बहुत जरूरी है कि डॉक्टर की सेहत, चाहे वो मेंटल या फिजिकल, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी अपनी सेहत भी अच्छी होनी चाहिए, इसलिए ख्याल हमें डॉक्टर्स का भी रखना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ यहां पर जुड़ने के लिए। वक्त अभी इतना ही है, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप रहिए हमारे साथ।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: भीषण गर्मी और उमस से दिल्ली जूझ रही है, एनसीआर के लोगों को जल्द राहत मिलने वाली है। मॉनसून का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, दिल्ली में 4 जुलाई तक मॉनसून के पहुंचने की संभावना है और उसके पहले प्री मॉनसून बारिश दिल्ली एनसीआर के मौसम को सुहावना बना सकती है। मॉनसून अब तक 26 राज्यों में दस्तक दे चुका है। मौसम विभाग का कहना है कि 5 जुलाई तक मॉनसून पूरे देश को कवर कर लेगा।

0: मंगलवार शाम को मौसम जरा सा खुशगवार हुआ तो इंडिया गेट पर चहल पहल बढ़ गई। पिछले कई दिनों की गर्मी और उमस से परेशान लोग लुत्फ उठाने के लिए इंडिया गेट पहुंच गए। खुशी की बात यह है कि ऐसा नजारा अब अक्सर देखने को मिल सकता है, क्योंकि राजधानी दिल्ली के मौसम में बदलाव की घड़ी अब करीब आ गई है। दिल्ली NCR समेत उत्तर भारत के लोगों को भीषण गर्मी और उमस से जल्द राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग के मुताबिक मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। कई मौसम प्रणालियों के एक साथ सक्रिय होने से मॉनसून ने दोबारा रफ्तार पकड़ ली है। बंगाल की खाड़ी से नमी भरी हवाएं तेजी से आगे बढ़ रही हैं। अरब सागर से आने वाली तेज हवाएं भी बड़ी मात्रा में नमी लेकर आ रही हैं। लिहाजा पूरी संभावना है कि 2 जुलाई तक मॉनसून उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के शेष हिस्सों में सक्रिय हो जाएगा। 3 से 4 जुलाई तक दक्षिण पश्चिमी मॉनसून दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और पूरे उत्तर प्रदेश को कवर कर लेगा। 5 जुलाई तक मॉनसून पश्चिमी राजस्थान और गुजरात के सभी बचे हुए जिलों को कवर कर लेगा। मध्य प्रदेश और झारखंड के बाकी हिस्सों में भी अगले 2 दिनों में ये पूरी तरह फैल जाएगा। मंगलवार दोपहर को मॉनसून ने जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में एंट्री कर ली। मॉनसून ने देश में अब तक 26 राज्यों को कवर कर लिया है।
1: हिमाचल प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में मॉनसून वर्ष 2026 का आगमन हो चुका है। इसमें अगर हम क्षेत्रों की बात करें तो मॉनसून ने पूरे किन्नौर डिस्ट्रिक्ट को कवर कर लिया है और कुल्लू और लाहौल स्पीति के बहुत से क्षेत्रों में मॉनसून ने दस्तक दे दी है। साथ में जो डिस्ट्रिक्ट हमारे हैं सिरमौर है, यहाँ पे कुछ एक क्षेत्रों में जो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा है, जो बड़ा बंगाल एरिया है, वहाँ पे मॉनसून का आगमन हो चुका है। सिरमौर की बात करें, जो डिस्ट्रिक्ट शिमला के आसपास क्षेत्र जो चूड़धार एरिया है, वहाँ पे आगमन हो चुका है। साथ में जो हमारे शिमला डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें जो नारकंडा और जिसके जो जितने भी क्षेत्र हैं, वहाँ पे मॉनसून की दस्तक हो चुकी है। और जो संभावना ये है कि आगामी 2 से 3 दिनों के भीतर में जो शेष जो क्षेत्र बचे हैं हिमाचल प्रदेश के, जिसमें ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, सोलन है, कांगड़ा का बहुत सा क्षेत्र है, चंबा डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ पे संभावना है कि आगामी 2 से 3 दिनों के भीतर मॉनसून का अराइवल हो सकता है।
0: मौसम विभाग के मुताबिक पूरी संभावना है कि राजस्थान के अंतिम छोर जैसलमेर और बाड़मेर तक पहुंचकर मॉनसून 8 जुलाई तक पूरे देश को कवर कर लेगा। पहले देश के अंतिम छोर तक मॉनसून पहुंचने की सामान्य तारीख 15 जुलाई मानी जाती थी, लेकिन इस बार मॉनसून पूरे देश को करीब 1 हफ्ते पहले ही कवर कर सकता है। हालांकि पूरे देश में मॉनसून के आगमन की खबर के साथ एक टेंशन वाली बात यह है कि इस बार जुलाई में बारिश सामान्य से कम हो सकती है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक प्रशांत महासागर में अलनीनो के लगातार मजबूत होने की वजह से जुलाई के महीने में देश के ज्यादातर हिस्सों में सामान्य से कम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की माने तो मध्य, पश्चिमी और उत्तरी भारत के बड़े हिस्सों समेत देश के ज्यादातर इलाकों में सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है। हालांकि उत्तर पश्चिम भारत जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल और पूर्वोत्तर राज्यों में जुलाई में सामान्य या सामान्य से अधिक बारिश हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: चलिए अब आपको दिखाते हैं ऐसे वीडियोस जिन्हें देखने के बाद आपके चेहरे पर मुस्कान आना लाजमी है।
3: सोशल मीडिया पर वायरल ये तस्वीरें बता रही हैं कि आस्था उम्र से नहीं, सेवा के प्रति आपके जुनून से आंकी जाती है। इस सेवादार का जुनून भी उनकी आस्था की तस्दीक कर रहा है। वो धर्म की राह पर निकले लोगों की राह में जिस खुशी से फूल बिछा रहे हैं, वो साबित करता है कि उनकी आस्था की पैंट कितनी गहरी है। सोशल मीडिया पर फूल बरसाने और बिछाने का ये अंदाज यूजर्स को भावुक कर रहा है। इस बच्चे का एक्शन देखकर कौन कहेगा कि इसमें टैलेंट नहीं। इसके एक्शन सोशल मीडिया पर वायरल है। उसका बैकग्राउंड बता रहा है कि कैसी परिस्थितियों के बावजूद उसने अपनी प्रतिभा को जीवित रखा है और वो अभ्यास कर रही है। इस बच्ची का जुनून देखकर लोग इस पर अपना प्यार बरसा रहे हैं। सोशल मीडिया पर चैन की एक घड़ी, होटल में सीनियर सिटीजन्स की हर पल का आनंद लेते हुए तस्वीर लोगों को खूब पसंद आ रही है। शांत सुंदर जगह पर होटल के ये सीनियर गेस्ट जिंदगी का जश्न मना रहे हैं। हर तरफ उनके हंसी मजाक, संगीत और यादगार पल होटल में एक अजब माहौल पैदा करता है। उनके आराम और मस्ती भरे पलों को देख हर किसी को आनंद आ रहा है। इन तस्वीरों में ये बच्ची दुनिया को सिखा रही है प्यार की भाषा। खुद ही देखिए कैसे वो इस बेजुबान डॉग को भाव विभोर होकर प्यार से बुलाते हुए बैठ जाती है और डॉगी भी बिना किसी संशय के उसकी ओर चला आता है, उसकी गोद में सिर रख लेता है। दोनों का ये अबोला प्रेम बता रहा है कि सिर्फ एक ही भाषा हर कोई समझता है और वो है प्यार की भाषा। अब इन वायरल तस्वीरों को देखिए जिन्हें देख हर कोई इनका फैन बन गया है। बैंड बाजे की धुन पर लग रहा है मानो किसी बतख की बारात है जिसमें दूल्हा बतख को एक शख्स ने हाथ में ऊपर उठाया हुआ है और बाकी बतखें बैंड बाजे की धुन पर एक सीध में इस बारात में चली जा रही हैं। बतखों की ये बारात देख हर किसी को शोर में भी इनका अनुशासन भा रहा है। जाहिर है इंसानों की बारातें कम से कम इन बतखों से सड़क पर चलने की सीख ले ही सकती है।
4: Soccer's biggest stage is here, and we've got everything you need to be plugged into the action. Stay connected to the World Cup with live commentary, expert analysis, and all the moments everyone's talking about. From pre-match buzz to post-match breakdowns, we bring you closer to the game with insights you won't want to miss. No matter where you are, take the World Cup with you. Search World Cup on TuneIn to find the stations and podcasts covering your favorite team.
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।

0: Need a good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you nonstop stand-up bits by the best comics in the game. From all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today.
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे।
1: स्वागत है आपका चाय पर चर्चा में, आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। देखिए साउथ सुपरस्टार यश की फिल्म टॉक्सिक की इन दिनों बहुत चर्चा हो रही है। आज इस फिल्म का एक और टीजर रिलीज हुआ है, तो फिल्म के लिए दर्शकों की बेसब्री और बढ़ गई है, और इस नए टीजर में फिल्म की फीमेल स्टार कास्ट पर फोकस है। क्या खास है टॉक्सिक में और इस टीजर में, आगे बात करेंगे।
8: नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। देखिए टॉक्सिक के साथ ही बात होगी वाराणसी की भी, क्योंकि एसएस राजामौली की इस फिल्म का दर्शकों को काफी समय यानी कि बेसब्री से इंतजार है। और अब गुड न्यूज जो सामने आई है वो ये कि फिल्म की लगभग शूटिंग जो है करीब करीब पूरी हो गई, सिर्फ 80% एक तरह से कह लीजिए या 90% लगभग पूरी हो गई है। 80 दिनों का शूट जो है वो बाकी है। इस फिल्म में महेश बाबू और प्रियंका चोपड़ा लीड रोल में है, क्या खास है वाराणसी में, इस पर भी बात करेंगे।
9: नमस्कार, मैं शिव गुप्ता, स्वागत है आप सभी का चाय पर चर्चा में। तो चाय पर चर्चा में आज अमरनाथ में अनंत आस्था की तस्वीरें भी देखेंगे। 3 जुलाई से यात्रा शुरू होने वाली है और श्रद्धालुओं का जत्था बेस कैंप तक पहुंच चुका है। इस बार यात्रा में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, सुरक्षा के साथ साथ यात्रियों के सहूलियत के क्या कुछ खास इंतजाम है ये भी बताएंगे आपको।
10: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव। तो देखिए एंटरटेनमेंट की ढेर सारी खबरें होंगी आज के कार्यक्रम में, और साथ ही में आस्था के रंग भी आपको दिखाएंगे। और चाय पे चर्चा में आज बात मौसम की भी करेंगे। देखिए देश के कई राज्यों में तो झमाझम बारिश हो ही रही है, मॉनसून ने दस्तक दे ही दिया है, लेकिन दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों को अभी मॉनसून का इंतजार है। तो दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों को कब मिलेगी गर्मी से राहत, इस पर भी आगे करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले सुर्खियों पे एक नजर।
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
12: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। टीआईटी भोपाल, जेन ज़ीज गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स।
8: आर्थिक मोर्चे पर देश के लिए गुड न्यूज, जून में 1,94,00,000 जीएसटी कलेक्शन, पिछले साल से 14% ज्यादा, इंपोर्ट से होने वाली कमाई बढ़ी।
5: मॉनसून के चलते केदारनाथ के लिए संचालित हेली सेवाओं पर 5 जुलाई तक लगी रोक। केदारनाथ धाम के लिए 8 हेली सेवाएं हो रही थी संचालित। पहाड़ों पर मॉनसून का दिखने लगा असर। रुद्रप्रयाग में लगातार हो रही बारिश से अलकनंदा नदी का बढ़ा जलस्तर। नदी के किनारे बनी भगवान शिव की मूर्ति तक पहुंचा पानी। बद्रीनाथ में भगवान विष्णु के भक्तों ने अब तक के सारे रिकॉर्ड किए ध्वस्त। 14 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन। हर रोज 15 से 20 हजार श्रद्धालु कर रहे दर्शन। केंद्रीय कैबिनेट की दिल्ली और यूपी को 14,000 करोड़ से ज्यादा के सड़क परियोजनाओं को मंजूरी। दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंड से जोड़ेगी 6 लेन वाली टनल। वहीं कानपुर से करबई के बीच बनेगा एक्सेस कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड हाईवे। चलिए चाय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं और शुरुआत लेडीज करेंगी। लेडीज एंड लेडीज की, जी हाँ, क्योंकि टॉक्सिक का देखिए नया टीजर जो है वो रिलीज हो चुका है, जो है लेडीज एंड लेडीज। क्योंकि इससे पहले का जो टीजर आपने देखा होगा, आप लोगों ने भी देखा होगा, उसमें सिर्फ आपको यश नजर आए होंगे और उनका पूरा जो लुक है वो नजर आया होगा। लेकिन इस बार जो टॉक्सिक का टीजर नया आया है उसमें सिर्फ लेडीज दिख रही है। क्या खास आपको लगा शगुप्ता?
9: लेडीज एंड यश भी दिख रहे हैं। मुझे तो यश बहुत अच्छे लगे, बट इट्स मोर टॉक्सिक। It's a toxic, it's toxic, a unique toxic way. Toxicity का another level
5: है
9: ये.
5: Intoxic.
9: ये intoxication है. Intoxication है another way में.
5: Exactly.
10: देखो अब पहले teaser को देखकर तो हम बात कर रहे थे राया राया राया, और अब देखकर लग रहा है कि जैसे आपने कहा ना कि यहाँ पर जो खूबसूरत महिला ब्रिगेड है उस पर नजर जा रही है, वैसे ही कितनी सारी फीमेल लीड्स है इसमें।
5: क्या है,
10: उमा है, उमा कुरैशी
5: है,
10: रुक्मणी वसंत है, नयनतारा है, तारा सुतारिया है, और क्या चाहिए आपको एक टीजर में।
13: मुझे लग रहा है कि अब कुड़ियों का जमाना आ गया। अल्फा में देख लीजिए लीडिंग रोल में लड़कियां लड़के, और यहाँ पर भी आपको लड़कियां ही नजर आ रही हैं।
5: बिल्कुल, और खास करके इसमें जब आप देखेंगे ना तो ये जितनी लड़कियों का हमने नाम लिया है सब बिल्कुल अलग बोल्ड अंदाज में और आपको एक्शन पैक्ड सारी नजर आएंगी। तो देखिए जो इंतजार है मच अवेटेड इस फिल्म का टॉक्सिक फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स, ये आपको बता दें ये इसका नाम है खास करके, तो वो अब सामने आ चुका है। और एक और बात शगुप्ता, अगर आपने भी चूंकि आपने टीजर देखा ही है, उसमें बार बार ये कहा गया है, आपको एडवाइजरी एक तरह से वो जारी की गई है कि दिस इज ओनली फॉर ग्रोन अप्स, बच्चों के लिए नहीं है, तो इसलिए बच्चे ना देखें।
9: खतरा है, आप देखिएगा भी मत, क्योंकि ये फैमिली फिल्म तो बिल्कुल नहीं है। फिलहाल तो देखिए मच अवेटेड फिल्म इसी साल 26 अगस्त को बड़े पर्दे पर आएगी। कन्नड़ समेत हिंदी, तमिल, मलयालम, तेलुगु भाषाओं में ये फिल्म रिलीज होगी, जिसमें राया के खूंखार अंदाज के साथ खूबसूरत लेडीज गैंग आपको नजर आएगा।

0: साउथ सुपरस्टार यश की फिल्म टॉक्सिक सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली फिल्मों में से एक है। पहले टॉक्सिक का वो टीजर रिलीज हुआ था जिसमें यश का रोल और स्वैग उनके फैंस को एक्साइटेड कर गया। काफी समय से टॉक्सिक को लेकर तैयारियों में लगे मेकर्स ने अब नई रिलीज डेट के बाद टॉक्सिक अ फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स का एक नया टीजर आज रिलीज किया, जिसमें जाहिर तौर पर खतरनाक एक्शन का तड़का तो है, साथ में ब्यूटी एंड बोल्डनेस की भी भरमार है। जी हाँ, इंटरेस्टिंग पहलू ही यही है कि टॉक्सिक के इस लेटेस्ट टीजर में फिल्म की लेडी स्टार कास्ट की पहली झलक रिवील हुई है, जिसमें खूबसूरत और बोल्ड लेडीज गैंग राया बने यश के साथ खतरनाक और इंप्रेसिव एक्शन करती दिख रही हैं।
1: लेडीज एंड लेडीज,
0: 1:41 के इस टीजर का आगाज एक मजेदार डिस्क्लेमर के साथ होता है, जिसमें लिखा गया, बच्चों दूर रहो, पेरेंट्स ध्यान रखें कि बच्चे दूर रहें, ग्रैंड पेरेंट्स ध्यान रखें कि उनके बच्चे दूर रहें, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स अपने रिस्क पर देखें। जहां टीजर में नयनतारा के किरदार को बाइक चलाते दिखाया गया, तो ब्यूटीफुल कियारा आडवाणी भी सर्कस में परफॉर्मर बनी नजर आ रही हैं, तो वहीं तारा सुतारिया बार में आत्मविश्वास के साथ खड़ी एक बॉस लेडी के तौर पर काफी इंप्रेसिव नजर आ रही हैं। यही नहीं, इस लेडीज गैंग में शामिल रुक्मणी बसंत को हाथ में बंदूक लिए एक दमदार अंदाज में और हुमा कुरैशी को धोखे भरी बॉडी लैंग्वेज के साथ दर्शाया गया है। वैसे हुमा टॉक्सिक कहानी का एक और अहम किरदार लग रही हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि इस फिल्म में उनके पास काफी पावर है। टीजर के आखिर में यश और कुछ महिला फाइटर्स के बीच लड़ाई होती भी दिखती है, जिसमें वो कहते हैं, लेडीज एंड लेडीज, क्या आप एक एक कर आना चाहती हैं या सब एक साथ?
1: लेडीज एंड लेडीज, एक एक करके आओगे या एक साथ आओगे?
0: वैसे इससे पहले रिलीज हुआ यश का टीजर भी काफी बोल्ड था, जिसमें राया का किरदार निभा रहे यश का खूंखार किरदार हर किसी को प्रभावित कर गया। उसमें भी यश का स्वैग और जबरदस्त एक्शन अवतार देखने को मिला था।
2: जिद छोड़ दो, गिव अप राया। इट्स ओवर।
1: इट्स ओवर। व्हेन आई से इट्स ओवर।
0: और अब टॉक्सिक मूवी के ऑफिशियल एक्स हैंडल पर अलग अलग भाषाओं में रिलीज हुआ ये लेटेस्ट टीजर नयनतारा, कियारा आडवाणी, रुक्मणी बसंत, तारा सुतारिया और हुमा कुरैशी जैसी फीमेल कास्ट के इंप्रेसिव सीन, स्टाइलिश एक्शन और रहस्य से भरा माहौल एक अलग तरह का सिनेमाई अनुभव देने का वादा कर रहा है। ये नया प्रेजेंटेशन टॉक्सिक अ फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स की एक ऐसी दुनिया को और विस्तार देता है जो जितनी खतरनाक है तो उतनी ही अट्रैक्टिव भी। फिलहाल तो गीतू मोहनदास के निर्देशन में बनी टॉक्सिक एक गैंगस्टर एक्शन ड्रामा बताई जा रही है, जिसमें एक्शन किस लेवल का होगा वो भी टॉक्सिक का ये नया टीजर साफ दर्शा रहा है।
1: लेडीज एंड लेडीज, एक एक करके आओगे या एक साथ आओगे?
0: बता दें कि यश की मच अवेटेड ये फिल्म इस साल 26 अगस्त को सिनेमा घरों में आ रही है। जाहिर है KGF चैप्टर 2 की रिलीज के करीब 4 साल बाद यश इस एक्शन फिल्म से बड़े पर्दे पर वापसी करने जा रहे हैं, जो यकीनन उनके फैंस के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। यही वजह भी है कि इस फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच बेकरारी भी खूब देखी जा रही है।
3: And yet here we are.
0: Bureau Report, Good News Today.
3: Fighting for his scraps of devotion.
1: Ladies and ladies.
4: Class, सब जबरदस्त लग रही हैं। कियारा और हुमा मुझे सबसे अच्छी लगी। मुझे वो रुक्मणी भी अच्छी लगी,
5: मुझे नयनतारा भी बहुत अच्छी लगी,
6: सारी बहुत
5: अमेजिंग.
4: वैसे तो हम भी अच्छे हैं लड़कियां.
6: क्यों ऐसी फिल्म दी गल करी
4: जाने, फिल्म देखो लड़कियां ही बता रही हैं मूवी के बारे में, आप देखो ना.
6: नहीं तो सब अच्छी लग रही है, सब अच्छी लग रही है. वाराणसी आपको लिए चलते हैं. टॉक्सिक की बात तो हमने कर ली, अब जरा वाराणसी फिल्म की बात कर लेते हैं. इंतजार देखिए यहाँ पर भी बहुत ज्यादा हो रहा है दर्शकों को पिछले काफी समय से. साउथ एक्टर महेश बाबू है, प्रियंका चोपड़ा स्टारर. ये एक भव्य एक्शन एडवेंचर और टाइम ट्रेवल फिल्म है जिसके लिए काशी के बड़े सेट्स को हैदराबाद और ओडिशा में बनाया गया है.
7: बिल्कुल, मुझे लगता है बात अगर वाराणसी की हो रही है तो उस पर डिस्कशन तो बनता है, क्योंकि इतना ज्यादा बस जितना टॉक्सिक का है ना, मुझे लगता है वाराणसी का भी इक्वल बज है. आपको लगता है कि इट विल बी

RRR और बाहुबली जैसी धमाकेदार फिल्मों से सिनेमा के पर्दे पर अपनी धाक जमाने वाले SS राजामौली अपनी फिल्म वाराणसी को लेकर चर्चाओं में। अलग अलग स्टार्स के साथ फिल्मी पर्दे पर धमाका करने वाले राजामौली इस बार एक नई स्टार कास्ट के साथ लौट रहे हैं और इस बार फिल्म का स्केल भी बड़ा है और फिल्म की तैयारी भी। फिल्म वाराणसी की चर्चा पिछले कुछ समय से होती रही है, चाहे उसको लेकर सोशल मीडिया में बस बना हुआ हो या फिर वाराणसी में हुआ मेगा इवेंट। लेकिन अब फिल्म से जुड़ा एक नया अपडेट सामने आया है।

खबरें हैं कि इस एपिक टाइम ट्रैवल एडवेंचर फिल्म की शूटिंग अभी भी जारी है। हालांकि शूटिंग का एक बड़ा हिस्सा लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन अभी भी 80 दिन का शूट बाकी है। ये जानकारी किसी और ने नहीं बल्कि फिल्म के निर्देशक राजामौली ने दी है। फ्रांस में आयोजित फिल्म RRR के रिलीज कार्यक्रम के दौरान निर्देशक राजामौली ने इस बात का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि वाराणसी फिल्म के सारे एक्शन सीन शूट किए जा चुके हैं, फिल्म के छोटे मोटे हिस्सों को ही शूट करना रह गया है, जिसे लगभग 80 दिनों में पूरा कर लिया जाएगा। मतलब ये कि फिल्म वाराणसी की शूटिंग का काम इसी साल के सितंबर या अक्टूबर महीने तक कंप्लीट हो जाएगा।

वाराणसी में महेश बाबू समेत पृथ्वीराज सुकुमारन और प्रियंका चोपड़ा जोनस लीड रोल्स में हैं। टाइम ट्रैवल पर आधारित इस फिल्म की कहानी एक ऐसे शिव भक्त की है जो असीम शक्ति वाली ब्रह्मांडीय कलाकृति को खोजने के लिए समय के पार एक खतरनाक यात्रा पर निकलता है।

0: वाराणसी 7 अप्रैल 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। रिपोर्ट गुड न्यूज टुडे।
1: देखिए अल्फा बीटा गामा वैसे तो आजकल की जनरेशन है जिन्होंने नाक में दम कर रखा है, लेकिन ये मूवी है अल्फा जिसकी ग्रैंड प्रमोशन की जा रही है। शुक्रवार फाइनली ये रिलीज होने जा रही है, लेकिन फिल्म को लेकर चर्चाएं लगातार तेज हैं। अच्छा आलिया या शर्वरी, यू हैव टू चूज वन।
2: मुझे लगता है आई विल चूज आलिया। आलिया ओवर शर्वरी, ऑल्दो मुझे शर्वरी पसंद है, ठीक है, अच्छा काम है।
1: नवजोत,
3: मुझे लग रहा है कि शर्वरी ओवरशैडो कर जाएगी।
1: श्वेता,
4: मुझे लगता है यार आलिया बहुत देखा, शर्वरी देखना चाहती हूँ, क्योंकि अब तक जो शर्वरी का काम देखा है वो बहुत अच्छा काम करती है, उन्हें मौका मिलना चाहिए।
1: ब्रिलियंट है उनका काम। मेरा भी यही कहना है कि मेरा वोट भी उन्हीं को जाता है। लेट्स वेट कि क्या करके दिखाती हैं। आलिया के एक्शन को लेकर तो तारीफ हो ही रही है, शर्वरी भी इक्वली उनकी बराबरी कर रही है।
4: बिल्कुल, लेकिन अब आपको बता दें कि फिल्म की जो स्टार कास्ट है उससे जुड़ी एक बड़ी अपडेट सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया कि देखिए 100 करोड़ की ये मूवी है, जिसमें आपको शगुफ्ता बताऊं 25 करोड़ आलिया ने ले लिए हैं। तो एक चौथाई मूवी जो है ना, मूवी का हिस्सा, पैसे जो खर्च हुए हैं वो आलिया ने लिए हैं, जिसमें बताया जा रहा है और बाकी जो शर्वरी हैं उन्होंने 3 करोड़ और बॉबी देओल ने 6 करोड़ रुपए लिए हैं। अब देखते हैं मूवी कितना कमाल कर पाती है, तो देखने वाली बात होगी।
5: सीता आज लंका खुद जलाने आई।
6: पलक झपकते ही दुश्मन को धूल चटा देना, हाथों में बंदूक थामे बेखौफ दुश्मनों के बीच घुस जाना।
5: शुरू करो अग्नि परीक्षा।
6: आलिया भट्ट इस शुक्रवार सिल्वर स्क्रीन पर राज करने आ रही है। सामने आए अल्फा के ट्रेलर में आलिया पावर पैक एक्शन करती नजर आएंगी। हर पंच और हथियार चलाने का स्वैग ये बता रहा है कि पर्दे पर एक नए एक्शन स्टार का जन्म होने वाला है।
7: ये क्या है?
8: अल्फा।
7: अल्फा मतलब
8: सीक्रेट प्रोग्राम है इंडिया के नेक्स्ट जनरेशन सोल्जर्स तैयार करने के लिए।
6: आलिया ने 2012 में स्टूडेंट ऑफ द ईयर जैसी ग्लैमरस और बेहद स्टाइलिश फिल्म से डेब्यू किया था, लेकिन अब

0: बड़े पर्दे पर उनका एक अलग अवतार देखने को मिलेगा।
1: तो भी वही है हमारी एकलौती
2: अल्फा।
0: कल तक पर्दे पर अपनी मासूमियत, रोमांस और इमोशन से दर्शकों को रुलाने वाली आलिया अब अपनी रफ्तार और एक्शन से स्क्रीन पर कोहराम मचाने के लिए तैयार है।
1: इसकी माँ का नाम जानकी था, हम इसे सीता बुलावेंगे।
0: एक तरफ अल्फा में आलिया के एक्शन सीक्वेंस की चर्चा है, तो दूसरी तरफ फिल्म की स्टार कास्ट की फी को लेकर भी बाजार में चर्चाओं का दौर है।
3: वो धोखे से राज करता था और झूठ से जीतता था।
0: रिपोर्ट्स की मानी जाए तो 1000 करोड़ के बजट वाली इस मेगा स्टार फिल्म में आलिया ने सबसे ज्यादा फी चार्ज की है।
3: Hi boys.
0: दावा किया जा रहा है कि स्पाई थ्रिलर फिल्म के लिए आलिया भट्ट ने तकरीबन 25 करोड़ रुपए की भारी भरकम फी चार्ज की है, यानी फिल्म के पूरे बजट का 1/4 हिस्सा सिर्फ और सिर्फ आलिया के नाम रहा, जबकि आलिया की को स्टार शर्वरी ने 3 करोड़ रुपए की फी चार्ज की है। दूसरी तरफ बॉबी देओल फिल्म में विलेन के रोल में नजर आने वाले हैं और उन्हें इसके लिए करीब 6 करोड़ रुपए मिले हैं। वहीं फिल्म में एक अहम भूमिका निभाने वाले अनिल कपूर को भी तकरीबन 6 करोड़ रुपए मिले हैं। बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर फिल्में देने के बाद आलिया आज बॉलीवुड की सबसे भरोसेमंद फीमेल स्टार्स में से एक हो चुकी है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं है कि आलिया की ही कंधों पर इस 100 करोड़ बजट वाली फिल्म का भार है।
3: It really means a lot to me.
1: चौथीसवां फ्लोर, 3418।
3: मैं समझी नहीं बाबा, वहाँ करना क्या है?
1: वही जिसके लिए मैंने तुझे ट्रेनिंग दी है।
0: अब देखना यह है कि 25 करोड़ की फी लेने वाली अल्फा गर्ल आलिया इस शुक्रवार बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ की कमाई कर पाती है।
1: दुनिया में सिर्फ दो तरह के लोग हुए हैं, वुल्फ और शीप। मैं वुल्फ हूँ। तो क्या है?
3: वुल्फ की बेटी वुल्फ ही होती है सर।
0: ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
4: तो चलिए बात अमरनाथ यात्रा की, जिसकी शुरुआत का भोलेनाथ के भक्तों को बेसब्री से इंतजार है।

0: चलिए अब आपको लिए चलते हैं बाबा बर्फानी के पावन धाम की ओर, जहां आस्था का सबसे बड़ा कारवां बस शुरू होने वाला है और इस शुक्रवार से शुरू हो रही पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर पूरे जम्मू कश्मीर में उत्साह है। देश के कोने कोने से श्रद्धालु जम्मू पहुंचने लगे हैं, कोई माथे पर तिलक लगाए हैं तो कोई हाथों में तिरंगा और भोलेनाथ का ध्वज लिए बाबा के दर्शन की आस में आगे बढ़ रहा है। जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से लेकर बालटाल और पहलगाम मार्ग तक हर तरफ सिर्फ और सिर्फ रंग ही रंग नजर आ रहा है। भोले की भक्ति का रंग, लंगरों में सेवा का भाव, शिव भक्तों में अपार उत्साह और हर चेहरे पर बाबा बर्फानी के दर्शन की प्रतीक्षा साफ नजर आ रही है।
1: बिल्कुल, देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। वैसे बाबा बर्फानी के दर तक पहुंचने का कठिन पहाड़ी रास्ता, मौसम की चुनौतियां, दुश्वारियां और लंबी यात्रा भी श्रद्धालुओं के उत्साह को कम नहीं कर पाती है। इस बार यात्रा सिर्फ आस्था का ही नहीं बल्कि यात्रियों के लिए सुरक्षा और व्यवस्थाओं की भी बड़ी मिसाल बनने जा रही है। यात्रा मार्ग से लेकर बेस कैंप तक, सड़क से लेकर आसमान तक और संवेदनशील इलाकों से लेकर पवित्र गुफा तक सुरक्षा एजेंसियां 24 घंटे अलर्ट मोड पर है।

हर हर महादेव की गूंज से जम्मू कश्मीर की वादियां शिवमय हो गई।

0: 3 जुलाई से शुरू होने वाली पवित्र श्री अमरनाथ यात्रा के लिए देश के कोने कोने से शिव भक्तों का जत्था बालटाल और पहलगाम बेस कैंप पहुंच चुका है। बाबा के दर्शनों को लेकर भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है। लंबी और कठिन चढ़ाई की फिक्र छोड़ हर कोई बस जल्दी से जल्दी पवित्र गुफा के दर्शन कर लेना चाहता है, लेकिन आस्था के इस महाकुंभ में किसी भी तरह की कोई खलल न पड़े इसके लिए सुरक्षा बल भी पूरी तरह से तैयार है। 670 से ज्यादा अर्धसैनिक बलों की कंपनियां सुरक्षा में तैनात की गई हैं। यात्रा मार्ग से लेकर बेस कैंप और हाईवे तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और भारतीय सेना के जवान दिन रात मोर्चे पर डटे हैं। बालटाल हो या पहलगाम, बाबा बर्फानी के धाम तक जाने वाला हर रास्ता एक अभेद किले में तब्दील कर दिया गया है। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड और डॉग स्क्वाड को विशेष रूप से तैनात किया गया है। ये टीमें लगातार यात्रा मार्गों, टेंटों और पार्किंग एरिया की तलाशी ले रही हैं।
1: जो स्मेल करते हैं उसे डिटेक्ट करते हैं, कोई भी अगर सामान में कुछ भी होता है तो यहाँ जैसे आप देख पा रहे हैं कि सीधा पहले व्हीकल्स आती हैं। व्हीकल्स आने के बाद एक तो हमारे पास DSMD होता है और एक दूसरा डॉग होता है। तो डॉग जो है स्मेल करता है और कुछ भी अगर संदिग्ध वस्तु अगर पाई जाती है तो वो तुरंत डिटेक्ट कर लेता है। और साथ में उसी के साथ में हमारे BDDS का जो HSMD होता है वो भी एक टूल होता है, अगर कुछ भी होता है तो वो डिटेक्ट करने में हेल्पफुल रहता है।
0: इसी के साथ सुरक्षा ग्रिड को मजबूत करने के लिए टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल हो रहा है। चप्पे चप्पे पर CCTV कैमरे लगाए गए हैं और चप्पे चप्पे की निगरानी की जा रही है। जमीन से लेकर आसमान तक कड़ा पहरा है। घने जंगलों और दुर्गम रास्तों की निगरानी ड्रोन के जरिए की जा रही है। सुरक्षा के लिहाज से इस बार हर एक श्रद्धालु को RFID टैग अनिवार्य कर दिया गया है ताकि बेस कैंप से लेकर पवित्र गुफा तक उनकी लोकेशन को कंट्रोल रूम से ट्रैक किया जा सके।
2: बड़ी सुरक्षा के बीच अमरनाथ यात्रा की शुरुआत 3 जुलाई से पहला जत्था पवित्र अमरनाथ गुफा तक पहुंचेगा। मैं इस वक्त पंथा चौक ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूं और यहां पर आपको तस्वीरों में दिखाएंगे कि इस बार सरकार के द्वारा ये व्यवस्था की गई है कि RFID ऑन द स्पॉट भी लोग ले सकते हैं। इसके साथ साथ जिन लोगों ने पहले से रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है उनको भी वह RFID और इसके साथ साथ QR कोड आधारित उनकी जो सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ तमाम जो दस्तावेज हैं वो मिल सकती हैं। यहाँ पर आप देखिए कि RFID और इसके साथ साथ EKYC डेस्क और रजिस्ट्रेशन काउंटर भी यहाँ पर तैयार किया गया है।
0: मौसम की चुनौती हो या फिर सुरक्षा की, प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, लेकिन मकसद सिर्फ एक है, भोले के भक्तों की ये यात्रा सुरक्षित, सुगम और बिना किसी परेशानी के सम्पन्न हो। श्रीनगर से अश्रपानी और जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: इस बार से सुरक्षा ही नहीं बल्कि श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा दोनों पर ही खास जोर दिया जा रहा है। देखिए, यात्रा पर निकलने से पहले नियम और सावधानियां जानना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है ये जानना कि इस बार प्रशासन ने श्रद्धालुओं के लिए क्या क्या नई व्यवस्थाएं की हैं।

0: बाबा के भक्तों का ये उत्साह यूं ही नहीं है। बाबा बर्फानी के दर्शनों की महिमा अपरंपार बताई गई है। भोले के भक्तों के लिए अमरनाथ यात्रा एक ऐसी कठिन साधना है जिसे आप शिवत्व को साधने की सबसे कड़ी तपस्या कह सकते हैं। बस कुछ घंटों बाद बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए पहला जत्था रवाना हो जाएगा। भक्त तैयार हैं तो प्रशासन ने भी यात्रा को सकुशल संपन्न करने की पूरी तैयारी कर रखी है। इस बार केवल सुरक्षा के कड़े इंतजाम ही नहीं किए गए हैं, बल्कि अमरनाथ यात्रा के दौरान सुविधाएं बढ़ाई गई हैं और कुछ नए नियम भी लागू किए गए हैं। अगर आप भी इस साल बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जा रहे हैं तो पहले जान लीजिए कि इस बार यात्रा में क्या बदला है और किन नियमों का पालन करना जरूरी है। अगर यात्रा के दौरान सुविधाओं की बात करें तो इस बार बालटाल से पवित्र गुफा तक पूरे रास्ते पर बिजली और लाइट की व्यवस्था की गई है, ताकि खराब मौसम या रात के समय भी श्रद्धालुओं को परेशानी न हो। ट्रैकिंग रूट को भी पहले से ज्यादा बेहतर बनाया गया है, जिससे कठिन चढ़ाई कुछ आसान हो सके। यात्रियों की सुविधा के लिए पोनी, पालकी और पोर्टर की प्री पेड बुकिंग शुरू की गई है, यानी अब तय किराए पर ही ये सेवाएं मिलेंगी। रहने की व्यवस्था भी पहले से बेहतर हुई है। बालटाल, नुनवान, श्रीनगर और चंद्रकोट के यात्री निवासों का विस्तार किया गया है। वहीं जम्मू में बने नए सेंटर में करीब 4000 भक्तों को ठहरने की व्यवस्था की गई है।
1: जहां तक सुविधाओं की बात है तो यात्री निवास भवन में पीने का ठंडा पानी रखा गया है, फ्रिज लगे हुए हैं, साथ ही में बिजली जो है 2400 घंटों वहां है, शौचालय की व्यवस्था है, क्योंकि जम्मू में इस समय उमस भरी गर्मी है, इसीलिए जो एसीज हैं यात्री निवास भवन के कमरों के अंदर उनको सर्विसिंग उनकी कराई गई है। पंखे भी चेक किए गए हैं कि किसी पंखे में कोई दिक्कत तो नहीं है, तो उन पंखों की मरम्मत भी की गई है। यात्री निवास भवन में जो कमरे हैं उनकी साफ सफाई भी हो चुकी है, रंग रोगन भी हो चुका है, और जो श्रद्धालु यहां जम्मू शहर में अब पहुंच रहे हैं काफी व्याकुल हैं भगवान भोलेनाथ के दर्शनों के लिए।
0: अगर कोई श्रद्धालु ज्यादा थक गया है या बीमार है या फिर किसी कारण से रुकना पड़ रहा है तो यहां पर आराम कर सकता है। ये पूरी तरह से निःशुल्क होगा। जम्मू के तवी रिवर फ्रंट पर नया इंटीग्रेटेड फैसिलिटेशन सेंटर बनाया गया है। यहाँ रजिस्ट्रेशन, मेडिकल जांच, हेल्थ सर्टिफिकेट और दस्तावेजों की जांच जैसे सभी जरूरी प्रक्रियाएं एक ही जगह पूरी की जा रही हैं। इस बार अमरनाथ यात्रा के दौरान हर रजिस्टर्ड श्रद्धालु को RFID कार्ड दिया जा रहा है। इस कार्ड की मदद से प्रशासन यात्रा के दौरान हर यात्री की लोकेशन पर नजर रख सकेगा। किसी भी आपात स्थिति में तुरंत राहत और बचाव टीम मौके पर पहुंच सकेगी। एक तरफ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं बढ़ाई गई हैं, तो वहीं श्रद्धालुओं को भी कुछ नियमों का पालन करना होगा। मसलन अमरनाथ यात्रा के लिए पहले से रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। यात्रा में वही श्रद्धालु शामिल हो सकते हैं जिनकी उम्र 13 से 70 वर्ष के बीच हो। इस बार अधिकृत डॉक्टर से जारी कंपल्सरी हेल्थ सर्टिफिकेट यानी CHC भी जरूरी है। इसे श्रद्धालुओं को अपने साथ ही रखना होगा। बड़ी बात यह है कि रजिस्ट्रेशन कराने वाले सभी श्रद्धालुओं को इस बार 10 लाख तक का बीमा कवर दिया जाएगा। साथ ही अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की ओर से पंजीकृत यात्रियों को दुर्घटना बीमा कवर भी मिलेगा। जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे चार धाम यात्रा के रंग, जहां हर रोज नए नए कीर्तिमान बन रहे हैं।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
1: Third period comes to an end. Game two headed to overtime.
0: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and nonstop sports talk so you don't miss a second of action.
2: They score!
0: Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
10: ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, आप देख रहे हैं चाय पे चर्चा। इससे पहले आगे बढ़े नजर इस वक्त के हेडलाइंस पर।
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
12: ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
13: आर्थिक मोर्चे पर देश के लिए गुड न्यूज, जून में 1.94 लाख करोड़ GST कलेक्शन, पिछले साल से 14% ज्यादा, इंपोर्ट से होने वाली कमाई बढ़ी। मॉनसून के चलते केदारनाथ के लिए संचालित हेली सेवाओं पर 5 जुलाई तक लगी रोक, केदारनाथ धाम के लिए 8 हेली सेवाएं हो रही थी संचालित। पहाड़ों पर मॉनसून का दिखने लगा असर, रुद्रप्रयाग में लगातार हो रही बारिश से अलकनंदा नदी का बढ़ा जलस्तर, नदी के किनारे बनी भगवान शिव की मूर्ति तक पहुंचा पानी। बद्रीनाथ में भगवान विष्णु के भक्तों ने अब तक के सारे रिकॉर्ड किए ध्वस्त, 14 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन, हर रोज 15 से 20 हजार श्रद्धालु कर रहे दर्शन। केंद्रीय कैबिनेट की दिल्ली और यूपी को 14,000 करोड़ से ज्यादा की सड़क परियोजनाओं की मंजूरी, दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ेगी 6 लेन वाली टनल, वहीं कानपुर से करबई के बीच बनेगा एक्सेस कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड हाईवे।
5: चलिए अब आपको तस्वीर दिखाते हैं चारधाम यात्रा की। खराब मौसम के बावजूद बाबा केदार के दरबार में रौनक बनी हुई है, सड़कों से लेकर धाम तक तीर्थ यात्रियों की अच्छी खासी भीड़ है।
14: आपको बता दें यहाँ रोजाना करीबन 7 से 8 हजार श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, पिछले 2 महीने में श्रद्धालुओं का आंकड़ा 13 लाख को पार कर गया है।

0: केदारनाथ धाम में रौनक है। सड़क से लेकर धाम तक तीर्थयात्रियों का हुजूम है। कोई पैदल, कोई घोड़े से, तो कोई पालकी पर सवार होकर बाबा के दरबार में हाजिरी लगाने आया है। मॉनसून की दस्तक के साथ ही श्रद्धालुओं के लिए चुनौतियां बढ़ गई हैं। हालांकि उत्साह में कोई कमी नहीं। हर रोज करीब 7 से 8 हजार श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन की आस लिए उनके धाम पहुंच रहे हैं। हर रोज नया रिकॉर्ड बन रहा है। बाबा केदार में आस्था ऐसी कि 2 महीने में ही श्रद्धालुओं का आंकड़ा 13 लाख को पार कर गया। 29 जून तक यहाँ 13,61,000 श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। हालांकि यात्रा पर मौसम का थोड़ा असर दिखा है। प्रशासन के मुताबिक मॉनसून की दस्तक के साथ ही केदारनाथ धाम यात्रा की रफ्तार धीमी पड़ने लगी है। हालांकि प्रशासन हर चुनौतियों से निपटने के लिए मुस्तैद है।
1: 29 जून 2026 तक 13,61,000 श्रद्धालु यहाँ पर केदारनाथ धाम में दर्शन कर चुके हैं। यात्रा की जो संख्या है उसमें थोड़ी सी हमें कमी देखने को मिली है, जो कि मौसम के दृष्टिगत भी है। हमारे यहाँ पर प्रशासन और पुलिस की जो टीम है और जो भी हमारी आपदा की यहाँ पर टीम्स हैं वो यहाँ पर सुचारू रूप से व्यवस्थित हैं। यहाँ पर सारा काम प्रगति पर है मॉनसून के दृष्टिगत और सभी तैयारियाँ की जा चुकी हैं।
0: मॉनसून सीजन को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड में है। श्रद्धालुओं को यात्रा में किसी तरह की दिक्कत न आए, इसके लिए मार्ग पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है, ताकि किसी भी आपात संकट का तत्काल समाधान किया जा सके।
2: समय समय पर बारिश भी हो रही है, जिसको लेकर प्रशासन अलर्ट है और यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए यात्रा मार्ग पर अतिरिक्त सुरक्षा जवानों की तैनाती की गई है, ताकि धाम पहुँचने वाले यात्रियों को किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग कर जो भी डेंजर जोन है, उन जोनों के दोनों छोरों पर सुरक्षा जवान हर समय मुस्तैद हैं, जो कि अलर्ट होने पर यात्रियों को भी सुरक्षित आवाजाही करा रहे हैं।
0: केदारनाथ की तरह ही बद्रीनाथ धाम में भी श्रद्धालु बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं। वहीं गंगोत्री और यमुनोत्री में भी श्रद्धालुओं का जमावड़ा है। मॉनसून को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से सावधानियां बरतने की सलाह दी है, ताकि उनकी यात्रा सुखद और मंगलमय हो। प्रवीण सेमवाल, रुद्रप्रयाग, गुड न्यूज टुडे।
3: अगर आप तीर्थ यात्रा कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर किन्हीं कारणों से अपने आराध्य के दर्शन नहीं कर पा रहे तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। अब आपके लिए एक खास विकल्प मौजूद है, जिसका नाम है दुर्लभ दर्शन।
4: दरअसल ये एक आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म है, जिसमें 6D VR तकनीक के जरिए देश के प्रमुख मंदिरों के दर्शन का एक अनूठा अनुभव उपलब्ध कराया जाता है। आशुतोष राणा को देश के पहले 6D मंदिर दर्शन सेवा तकनीक का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है।
5: आशुतोष राणा और मैं आपको लेकर चल रहा हूँ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या।
0: अब दुर्लभ मंदिरों के दर्शन भी सुलभ होंगे।
5: मन में तुलसी की सुगंध लिए हम अपने आराध्य प्रभु श्री राम के धाम की ओर चलते हैं।
0: घर बैठे ही तीर्थों की यात्रा होगी। देर तक निहार सकेंगे आराध्य।
5: दर्शनार्थ उनके विग्रह या मूर्ति के समक्ष उपस्थित होते हैं तो
0: दूर रहकर भी गर्भगृह की पूजा में शामिल हो सकेंगे।
6: इसमें है 50 से ज्यादा तीर्थ यात्रा
0: और ये सब संभव है दुर्लभ दर्शन। दुर्लभ दर्शन एक ऐसा पिटारा जिसमें हर धाम समाया है,
5: बल्कि अनुभूत भी कर सकते हैं।
0: भगवान समाये हैं एक खास एहसास के साथ।
5: आपके और परमात्मा के बीच में कोई नहीं, वहां पर घटित होने वाली समस्त क्रियाकलापों में आप सहभागी होंगे, ऐसी अनुभूति हमारी करवाने का मन था। कि अगर मान लीजिए पानी गिर रहा है, अगर हमने जल चढ़ाया, जलाभिषेक किया, तो पानी के छींटे हमारे ऊपर आते हैं, तो वो भी आपको अनुभूत हो। अगर आपने उनको सुगंधिम पुष्टिवर्धनम की बात, अगर हम सुगंध उनको लगा रहे हैं अभिषेक करते समय, तो सुगंध भी आपको महसूस होगी। यदि हवा की बात है तो हवा भी आपको महसूस होगी। तो इस तरीके से पूरा इस अनुभव को बिल्कुल एक जो दुर्लभ अनुभव है उसको सुलभ करने के लिए हमने ये किया।
7: लाखों
0: असल में दुर्लभ दर्शन एक आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म जिसमें 6D VR तकनीक के जरिए देश के प्रमुख मंदिरों के दर्शन का एक अनूठा अनुभव उपलब्ध कराया जाता है। इसमें वर्चुअल रियलिटी के साथ साथ जल, वायु, सुगंध और पौराणिक कथाओं के मेल से साक्षात गर्भगृह में होने का एहसास कराया जाता है। यूं कहिए कि यहाँ आस्था और तकनीक के मेल से एक सुंदर आध्यात्मिक वातावरण का निर्माण किया जाता है। यहाँ एक और भगवान राम और उनकी अयोध्या की कहानी है तो काशी विश्वनाथ का इतिहास भी है और माँ वैष्णो देवी की आरती भी। बस इसे आँखों पर लगाइए और यात्रा पर निकल पड़िए। अभिनेता आशुतोष राणा आपको धर्मस्थलों की कहानी सुनाते भी नजर आएंगे।
5: हमें तो अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए। क्यों होता है ऐसा? वो इसलिए कि जब हम भाव विभोर होकर भगवान के दर्शन।
0: फिलहाल ये सुविधा अयोध्या, काशी समेत देश के 11 प्रसिद्ध मंदिरों में उपलब्ध है, जहां आप सुकून से बैठकर अपने आराध्य देव को करीब से महसूस कर सकेंगे,
5: ध्यान में लीन हो सकते हैं। और यदि किसी कारणवश
0: अभिनेता आशुतोष राणा को देश के पहले 6D मंदिर दर्शन सेवा तकनीक का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है।
5: 50 से अधिक तीर्थ यात्राएं और अनेक सिद्ध और दिव्य मंदिरों के दैनिक दर्शन कर सकते।
8: हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आपका ही मचाएगा। ब्रेक के बाद देखेंगे मॉनसून की चाल, क्योंकि दिल्ली समेत कई राज्यों को जल्द मिलने वाली है गर्मी से राहत।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
8: मानसूनी फुहारों के इंतजार में देश के कई इलाकों में प्री मानसून फुहारों ने मौसम का मिजाज बदल दिया है, तो पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट है। ऐसे में 1 जून को केरलम से शुरू हुआ मानसून का सफर देश के 90% से ज्यादा हिस्से को कवर कर चुका है।
4: देखिए, पिछले कुछ दिनों में मानसून की चाल तेज हुई है, जिसके बरसने का सबसे ज्यादा इंतजार देखिए दिल्ली NCR वालों को है। तो अब मौसम विभाग का अनुमान है कि राजधानी में मानसून 3 या फिर 4 जुलाई के आसपास पहुंच सकता है। ऐसे में कहा जा सकता है कि अब दिल्ली से भी मानसून दूर नहीं है।

0: मानसूनी बादलों की आवाजाही से पूरे उत्तर भारत में मौसम ने करवट ले ली है। जिन इलाकों में मानसून ने अभी तक दस्तक नहीं दी है, वहां भी प्री मानसून की बारिश राहत का पैगाम ला रही है। चंडीगढ़ में आज सुबह से ही आसमान में बादलों का डेरा था। गर्मी और उमस से परेशान लोगों को बड़ी बेसब्री से रिमझिम फुहारों का इंतजार था। गर्मी की तपिश झेल रही लोगों की ख्वाहिश भी जल्द ही पूरी हो गई। चंडीगढ़ में जब बादल बरसे तो खूब बरसे, कुछ ही देर में बारिश से गर्मी छू मंतर हो गई और उमस से भी लोगों को राहत मिली।
1: कहा जा सकता है कि मॉनसून की जो पहली बरसात है, और आप देख सकते हैं किस तरह कल से ही जो कंडीशंस थी वो ओवरकास्ट थी। हालांकि कल बारिश नहीं हुई थी, लेकिन आज सुबह से बादल छाए हुए थे और यहाँ पर बारिश जो है चल रही है। और इसके अलावा पंजाब में पठानकोट में भी हमने देखा किस तरह काफी बारिश हुई। कांगड़ा जिला में, हिमाचल प्रदेश में बारिश हुई। सो मॉनसून का जिसको कह सकते हैं अराइवल जो है वो हो गया है। ना सिर्फ जो है हीट वेव से गर्मी से राहत है लोगों को, बल्कि जिस तरह की बिजली का क्राइसिस भी पंजाब में सामने आ रहा था, किसान लगातार सड़कों पे थे कि कह रहे थे कि बिजली की पूरी सप्लाई नहीं हो रही है, तो इससे उसमें भी थोड़ी सी राहत मिलने की उम्मीद है। लेकिन जो हीट वेव से राहत है और बारिश जो है वो लगातार यहां पर हो रही है। सो आने वाले दिनों में मौसम विभाग का भी कहना है भी मौसम में जो है तब्दीली हुई है वो जारी रहेगी, बारिशें जो है अलग अलग हिस्सों में होंगी।
0: पहाड़ी राज्यों में भी बारिश ने दस्तक दे दी है। देहरादून में आज दिन की शुरुआत रिमझिम फुहारों के साथ हुई। सुबह हुई बारिश से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। दिन में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी रहा। मुंबई समेत महाराष्ट्र के तमाम इलाकों में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है। गुजरात के कुछ इलाकों में भी बारिश की शुरुआत हो चुकी है। अब देश की राजधानी दिल्ली में भी लोगों को जल्द ही गर्मी और उमस से राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। कई वेस्टर्न डिस्टरबेंसेस के एक साथ सक्रिय होने से मॉनसून ने दोबारा रफ्तार पकड़ ली है। बंगाल की खाड़ी से नमी भरी हवाएं तेजी से आगे बढ़ रही हैं। अरब सागर से आने वाली तेज हवाएं भी बड़ी मात्रा में नमी लेकर आ रही हैं। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले कुछ ही दिनों में मॉनसून की दस्तक का असर दिखने लगेगा।
2: तो आने वाले दो दिनों में हमारा अनुमान है जो पंजाब के ज्यादातर हिस्से बचे हुए हैं उसमें से कवर होने का अनुमान है। एनसीआर दिल्ली कवर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर हिस्से कवर हो जाएंगे, और इसके साथ ही अगर वेस्ट कोस्ट की बात करें तो गुजरात के भी ज़्यादातर हिस्से कवर होने का अनुमान है, और साउथ ईस्ट राजस्थान भी कवर होने का अनुमान है। ये तो हमारा फोरकास्ट है। उसके बाद एक अच्छी न्यूज़ ये है कि अभी पूरा मानसून एक्टिव फेज में है। ऑलमोस्ट पूरा वीक जितना भी कोर जोन है वहाँ अच्छी खासी रेनफॉल एक्टिविटी होती रहेगी।
0: मौसम विभाग के अनुसार पूरी संभावना है कि राजस्थान के अंतिम छोर जैसलमेर और बाड़मेर तक पहुंचकर मॉनसून 8 जुलाई तक पूरे देश को कवर कर लेगा। पहले देश के अंतिम छोर तक मॉनसून पहुंचने की सामान्य तारीख 15 जुलाई मानी जाती थी, लेकिन इस बार मॉनसून पूरे देश को करीब एक हफ्ते पहले ही कवर कर सकता है। हालांकि इस बार जुलाई महीने में बारिश सामान्य से कुछ कम हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार प्रशांत महासागर में अल नीनो के लगातार मजबूत होने की वजह से जुलाई में ज्यादा बारिश की उम्मीद नहीं है, लेकिन मानसूनी बादलों का असर पूरे देश में जरूर दिखेगा। उत्तर और पश्चिम भारत के राज्यों में तेज बारिश भले ही न हो, लेकिन हल्की बारिश का दौर आने वाले दिनों में जारी रहेगा। दिल्ली से मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: चलिए खेलकूद की बात कर लेते हैं। तो आज टीम इंडिया और इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज का आगाज होगा, लेकिन क्या प्लेइंग 11 में सबसे बड़ा सरप्राइज हम सबको मिलेगा या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या करोड़ों क्रिकेट फैंस का इंतजार आज खत्म होगा, क्योंकि हर किसी की नजरें एक ही नाम पर हैं, वो नाम है वैभव सूर्यवंशी का।
4: तो आज भारत और इंग्लैंड के बीच पहला T20 मुकाबला होना है, लेकिन मैच से पहले सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात को हो रही कि क्या वैभव को डेब्यू का मौका मिलेगा। आइए देखते हैं।
5: आयरलैंड के खिलाफ घुटने टेकने के बाद टीम इंडिया सवालों के बाउंसर झेल रही है। जो सवाल टीम मैनेजमेंट के लिए चुनौती बना है वो ये कि क्या आज वैभव सूर्यवंशी को टीम इंडिया का कैप पहनने का मौका मिलेगा। फिलहाल तो करोड़ों फैंस की निगाहें आज स्कोर बोर्ड से ज्यादा टीम इंडिया के प्लेइंग 11 पर रहने वाली है, क्योंकि वैभव को आयरलैंड के खिलाफ ना खिलाए जाने का मलाल अभी भी फैंस को कचोट रहा है।
6: हमको उम्मीद लगता है कि अभी तो वैभव सूर्यवंशी के खौफ से सामने वाले टीम की हालत खराब हो जाती है, और खिलाने से हम उम्मीद करते थे कि इंडिया मैच जीतता।
7: गौतम गंभीर से मांग करता हूं कि ऐसे उभरते हुए खिलाड़ी को अगर पानी पिलाने के लिए रखते हैं तो ये क्रिकेट जगत के लिए बहुत बड़ा धब्बा है।
8: लेकिन वैभव जैसे हीरे को तराशने के लिए उन्हें मैदान पर खिलाना बहुत जरूरी है। ये तो टीम मैनेजमेंट का अपना फैसला है, लेकिन पूरी दुनिया के लोग उन्हें मैदान पर, उस नन्हे सितारे को मैदान पर खेलते हुए देखना चाहते हैं।
5: करोड़ों क्रिकेट फैंस वैभव को आज मैदान में देखने के लिए बेताब हैं। वजह उनके वो रिकॉर्ड्स हैं जिन्होंने उन्हें 15 साल की उम्र में क्रिकेट का करिश्मा बना दिया है। आईपीएल में वैभव दुनिया के सबसे खतरनाक माने जाने वाले बुमराह और पैट कमिंस जैसे गेंदबाजों की पहली गेंद को बाउंड्री पार भेजकर अपना लोहा मनवा चुके हैं। वैभव ने आईपीएल के बीते सीजन में सबसे ज्यादा छक्कों का क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ा है और करीब करीब हर गेंदबाज के खिलाफ आक्रामक बल्लेबाजी से अपनी अलग पहचान बनाई है। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर वैभव के लिए लगातार आवाजें उठ रही हैं। फैंस का कहना है कि वैभव सूर्यवंशी को अब मौका नहीं मिलेगा तो फिर कब मिलेगा। आयरलैंड सीरीज में भारतीय बल्लेबाजों ने जिस तरह घुटने टेके हैं उसके बाद तो वैभव के इंटरनेशनल डेब्यू की डिमांड और तेज हो गई है। हालांकि वैभव को लेकर टीम इंडिया का ड्रेसिंग रूम सोच अलग है। असिस्टेंट कोच रयान टेन डोशेट साफ कह चुके हैं कि वैभव को भी बाकी खिलाड़ियों की तरह चयन की पूरी प्रक्रिया से गुजरना होगा। उनका कहना है कि सिर्फ प्रतिभा के दम पर किसी को प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिल सकती। कप्तान श्रेयस अय्यर भी टीम मैनेजमेंट के फैसले के साथ खड़े हैं। श्रेयस का मानना है कि टीम में मौजूद हर खिलाड़ी ने प्रदर्शन के दम पर जगह बनाई है और जिन्होंने भारत को T20 वर्ल्ड कप जिताया उन पर भरोसा बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। वहीं वैभव को लेकर पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर की राय बिल्कुल अलग है। गावस्कर का मानना है कि वैभव जैसे टैलेंट को जितनी जल्दी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का अनुभव मिलेगा उतना ही फायदा भारतीय क्रिकेट को होगा।
9: एक महीने पहले से मैं कह रहा था कि ये आयरलैंड की जो दो मैचेस है वहां पे जिस तरह के वैभव सूर्यवंशी का फॉर्म था तो उसको दोनों मैचेस में खिलाया जा सकता था, क्योंकि एक मैच में आप अभिषेक शर्मा को लेते और सूर्य के साथ ओपनिंग करने के लिए, और दूसरे मैच में आप अभिषेक को ड्रॉप कर दिया, नीचे करके सैमसन को लेते, वैसा आप कर सकते थे पर वैसा हुआ नहीं।
5: ऐसे में आज इंग्लैंड के खिलाफ फैंस की नजरें सिर्फ टॉस पर नहीं होंगी बल्कि टीम इंडिया की प्लेइंग 11 पर सबकी नजर होगी। देखना होगा कि क्या टीम इंडिया आयरलैंड की तरह फिर अनुभव को तवज्जो देगी या फिर पिछले सीरीज में मिली हार से सबक लेकर वैभव सूर्यवंशी को इंटरनेशनल क्रिकेट में हाथ आजमाने का मौका देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: तो चलिए इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, फौरन हाजिर होंगे।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
11: From the biggest names in sports talk to the biggest moments in sports, this is NBC Sports Radio. Get your daily football fix with Mike Florio. Spend your mornings with Dan Patrick and the Danettes, and dive deep with Dan Le Batard. Live, unfiltered, and always on, Monday through Friday. Then when the games are on, we've got you covered with live events from NBC Sports. Search NBC Sports Radio or tell your device to play NBC Sports Radio on TuneIn to listen.
12: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
13: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
14: और दुर्भाग्य कहता है
13: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
12: अविश्वास में विश्वास बसता है,
13: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
15: गुड न्यूज टुडे।
13: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
13: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
4: चले आखिर में आपको जम्मू कश्मीर के पूंछ लिए चलते हैं, जहां पीर की गली आपके स्वागत के लिए तैयार है और इन दिनों यहां गर्मियों के दौरान पर्यटकों की काफी रौनक बिखरी हुई है। खासकर यहां बनी मशहूर सूफी दरगाह में लोग जरूर पहुंचते हैं।
3: जी हाँ, देखिए खूबसूरत वादियों के बीच में ये हिडन टूरिस्ट प्लेस है, यही वजह है कि इस बार हरे भरे घास के मैदानों पर खुशनुमा मौसम के बीच सैलानी खूबसूरत पलों को एंजॉय कर रहे हैं। पीर की गली ऐतिहासिक मुगल रोड का हाईएस्ट पॉइंट है, जो कश्मीर घाटी को पूंछ और राजौरी से जोड़ता है।
15: चलिए, जिस तकनीक के लिए भारत अभी तक अमेरिका और इसराइल पर निर्भर था, वो तकनीक अब आईआईटी दिल्ली और डीआरडीओ ने देश में ही विकसित यानी कि डेवलप कर ली है। देखिए हम बात कर रहे हैं एरोस्टेट टेक्नोलॉजी की। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक विशाल गुब्बारे की शक्ल में होता है, जिसे बॉर्डर पर सर्विलेंस और दूसरी जगहों पर निगरानी के लिए खास तौर पर इस्तेमाल किया जाता है।
16: आपको बता दें, दरअसल इस बलून में हीलियम गैस भरा जाता है और हीलियम को रोकने के लिए एक अलग से कपड़ा तैयार किया जाता है, जो कि बहुत मुश्किल से तैयार होता है। हमें ऐसा ही टेक्सटाइल तैयार करना था जो कि गैस के लीकेज को कम से कम कर सके। अब इस एरोस्टेट तकनीक को इंडस्ट्री को सौंप दिया गया है ताकि वो इसका प्रोडक्शन कर सके।

0: मेरे पीछे जो आप बड़ा सा बलून देख रहे हैं, इसे एरोस्टेट टेक्नोलॉजी बोलते हैं। इसका इस्तेमाल अमूमन सर्विलांस के लिए किया जाता है और आर्मी भी इसका इस्तेमाल करती है, सेना इसका इस्तेमाल करती है और बॉर्डर पर सर्विलांस के लिए। लेकिन अभी ये जो बलून आप देख रहे हैं, ये बाहर के देशों से आता है, यूएस से आता है, इसराइल से आता है, लेकिन अब आईआईटी दिल्ली ने इसे खुद तैयार किया है।
1: तो चाय पर चर्चा में अभी के लिए बस इतना ही। रखिए अपना ख्याल, कल फिर मिलेंगे शाम 5 बजे चाय पर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: Hear what the world is listening to. Global Hits brings together music in motion. From pop to K-pop, Latin dance and Afro beats. Chart-topping tracks to hidden gems. Whatever the globe is listening to, it's all right here. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Today's Global Hits to start listening now.
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
9: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। TIT Bhopal, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
1: आर्थिक मोर्चे पर देश के लिए गुड न्यूज। जून में 1.94 लाख करोड़ GST कलेक्शन, पिछले साल से 14% ज्यादा, इंपोर्ट से होने वाली कमाई भी बढ़ी। मॉनसून के चलते केदारनाथ के लिए संचालित हेली सेवाओं पर 5 जुलाई तक लगी रोक, केदारनाथ धाम के लिए 8 हेली सेवाएं हो रही थी संचालित। पहाड़ों पर मॉनसून का दिखने लगा असर, रुद्रप्रयाग में लगातार हो रही बारिश से अलकनंदा नदी का बढ़ा जलस्तर, नदी के किनारे बनी भगवान शिव की मूर्ति तक पहुंचा पानी।
10: बद्रीनाथ में भगवान विष्णु के भक्तों ने अब तक के सारे रिकॉर्ड्स किए ध्वस्त। 14 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन। हर रोज 15 से 20 हजार श्रद्धालु कर रहे दर्शन। केंद्रीय कैबिनेट की दिल्ली और यूपी को 14,000 करोड़ से ज्यादा की सड़क परियोजनाओं की मंजूरी। दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ेगी 6 लेन वाली टनल, तो वहीं कानपुर से गरबई के बीच बनेगा एक्सप्रेस कंट्रोल्ड ग्रीन फील्ड हाईवे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना
10: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात अमरनाथ यात्रा की। अब से 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा का श्री गणेश होने जा रहा है। जम्मू कश्मीर में स्थित पवित्र श्री अमरनाथ गुफा से बाबा बर्फानी की पहली पूजा तो 29 जून को ही शुरू हो चुकी है, लेकिन अब आम भक्तों के लिए बाबा बर्फानी के साक्षात दर्शन का पावन अवसर भी आ पहुंचा है। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि यानी 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है। ये यात्रा करीब 2 महीनों तक चलेगी और 28 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन के दिन संपन्न हो जाएगी। हमेशा की तरह इस बार भी पवित्र गुफा में महादेव के दिव्य हिमलिंग का निर्माण हुआ है। श्रद्धालुओं में बाबा बर्फानी के दर्शन की खास उत्सुकता है और माना जा रहा है कि बड़ी तादाद में लोग अमरनाथ गुफा पहुंच सकते हैं, लिहाजा श्रद्धालुओं की सुविधा और सहूलियत के खास इंतजाम किए गए हैं। अब से कुछ ही घंटों में अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था रवाना होने वाला है।

0: बाबा बर्फानी के दर पर लगा भक्तों का मेला। अमरनाथ यात्रा मार्ग पर फिर हो रहा बम बम भोले का जयघोष। शिव भक्तों पर बरसेगी बाबा बर्फानी की कृपा।
1: हमें मन के अंदर इतनी खुशी है कि भोले बाबा मिल गए। एक स्टेप हमने पार कर लिया है और ये एक स्टेप पार कर किया है, भोले बाबा हमारा आगे का स्टेप भी पार करवाएंगे।
0: आस्था के शिखर पर गूंज रहे बाबा बर्फानी के जयकारे।

0: जमीन से 13,000 फीट की ऊंचाई पर बर्फ से लगदग अमरनाथ गुफा की खूबसूरत वादियाँ फिर से आस्था, भक्ति और विश्वास का पवित्र संगम बनने जा रही हैं। यूं तो इन वादियों का कण कण शिव शक्ति का ही स्वरूप है, लेकिन बाबा बर्फानी के इस दिव्य और दुर्लभ स्वरूप के दर्शन के लिए दूर दूर से भोले के भक्त खींचे चले आते हैं। शिव भक्ति में आकंठ डूबे महादेव की लगन में गाते गुनगुनाते अब की बार भी शिव के मतवालों का मजमा जुट चुका है।
1: ए भोला शंकरा।

0: ए बोल्या शंकरा, हे बोल्या शंकरा, त्रिशूळ डमरू हाती संगनाचे पार्वती हो।
1: बाबा बर्फानी की प्रथम पूजा हो चुकी है, अब यात्रा का श्री गणेश होना है। बता दें कि इस बार अमरनाथ यात्रा करीब 2 महीने तक चलने वाली है। अमरनाथ यात्रा 2026 की शुरुआत 3 जुलाई से हो रही है और यात्रा का समापन श्रावण पूर्णिमा रक्षाबंधन के दिन यानी 28 अगस्त को होगा। चूंकि अब पहले जत्थे की रवानगी में कुछ ही घंटे बचे हैं, सो देश भर के श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए कश्मीर में जुटने लगे हैं। यात्रियों के लिए श्रीनगर के पंथा चौक में ट्रांजिट कैंप बनाया गया है।
2: अमरनाथ यात्रा को लेकर के 3 जुलाई से जो पहला जत्था सीधे अमरनाथ गुफा तक पहुंचेगा, उसके लिए जम्मू से जो कॉन्वाय यहां पर चलेगा उसके लिए पूरी तैयारियां यहां श्रीनगर में भी की गई हैं। मैं इस वक्त पंथा चौक पर मौजूद हूं और आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लोगों की संख्या यहां भारी संख्या में मौजूद है और लोग जो है ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहां पर जुट रहे हैं। ये सारा ट्रांजिट कैंप बनाया गया है और इस ट्रांजिट कैंप में किस तरीके से लोग यहां भारी संख्या में मौजूद हैं, ये आपको दिखा रहे हैं। दूसरा, तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग इतनी संख्या में आज से ही जुटने लगे हैं। पहला जत्था जो है वो सुबह सुबह 3 जुलाई को बालटाल से रवाना होगा, साथ ही पहलगाम रूट जो है वहां से भी रवाना होगा। अगर इस ट्रांजिट कैंप की बात करें तो यहां पर सिक्योरिटी के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। सीआरपीएफ, आप देख रहे हैं कि यहां सीआरपीएफ के कमांडोज भी मौजूद हैं। इसके साथ साथ यहां पर जो श्रद्धालु हैं उनकी संख्या आप देख करके ये पता चल जाएगा कि किस तरीके से यहां पर लोगों में इस वक्त उत्साह है, क्योंकि लोग यही चाहते हैं कि जो पहली यात्रा है और जो शुरुआत हो रही है 3 तारीख से, उसमें सारे लोग भारी से भारी संख्या में पहुंचे।
1: वैसे तो 15 अप्रैल से ही अमरनाथ यात्रा का रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया गया था, लेकिन ट्रांजिट कैंप में भी रजिस्ट्रेशन काउंटर्स बनाए गए हैं ताकि जो तीर्थयात्री पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो। ट्रांजिट कैंप में करंट यानी तत्काल टोकन और रजिस्ट्रेशन के लिए शिव भक्तों का तांता लगा है। इसी तरह तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए कैंप में EKYC और RFID कार्ड काउंटर भी बनाए गए हैं।
2: कड़ी सुरक्षा के बीच अमरनाथ यात्रा की शुरुआत 3 जुलाई से पहला जत्था पवित्र अमरनाथ गुफा तक पहुंचेगा। मैं इस वक्त पंथा चौक ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूं और यहां पर आपको तस्वीरों में दिखाएंगे कि इस बार सरकार के द्वारा ये व्यवस्था की गई है कि RFID ऑन द स्पॉट भी लोग ले सकते हैं। इसके साथ साथ जिन लोगों ने पहले से रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है उनको भी वह RFID और इसके साथ साथ QR कोड आधारित उनकी जो सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ तमाम जो दस्तावेज हैं वो मिल सकती हैं। यहां पर आप देखिए कि RFID और इसके साथ साथ EKYC डेस्क और रजिस्ट्रेशन काउंटर भी यहां पर तैयार किया गया है। बहुत सारे लोग हैं यहां पर, इनसे बातचीत करते हैं कि RFID जो है इस बार ये व्यवस्था की गई है कि तत्काल जो है लोगों को अगर जरूरत है तो कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन करा के आए, क्या प्रक्रिया है यहां पर?
3: सर, तत्काल में इसमें आप डायरेक्टली आके यहाँ पे भी करवा सकते हैं, अपना जो भी रिपोर्ट्स है वो लेके आ सकते हैं आप, और यहाँ पे आके आपका EKYC हो जाता है और इमीडिएटली आपको RFID मिल जाता है। और जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन भी करवा रखा है, जैसे हमने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करवा रखा था, तो इमीडिएटली यहाँ आए हम, विद इन 1 मिनट में हमको RFID मिल गया था हमारा देख के KYC।
4: सिक्योरिटीज वाइज भी बहुत अच्छी व्यवस्था है। जो हम निकले थे हमारे जर्नलिस्ट से तो कह रहे थे कि आपको सारी चीजों का ध्यान रखें, पर बहुत अच्छा वो व्यवस्था है और इजीली, कोई कह रहा था कि RFID कार्ड में 2 घंटे 3 घंटे लग सकता, हमें मैक्सिमम 10 से 15 मिनट में सारा काम इजीली होके निकल गया। व्यवस्था में कोई भी प्रॉब्लम ऐसा कुछ हमें लगा नहीं जो सुन के आए थे जिस तरह से।
2: RFID यहाँ पर जिन लोगों को दिया जा रहा है उसकी खास बात यह है कि उसमें एक नंबर दिया जा रहा है, उससे लोगों की ट्रैकिंग भी हो सकती है। अगर उनको किसी भी तरीके से रास्ते में दिक्कत आती है या फिर वो कहीं पर रास्ता भटक जाते हैं तो उसकी भी दिक्कतों को पूरी तरीके से यहाँ पर देखा जाता है और उसके लिए पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। आप तस्वीरों में देखिए कि ये काउंटर जो बनाया गया है RFID के लिए, यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं। जिन लोगों को नया RFID बनवाना है या फिर रजिस्ट्रेशन यहीं पर आकर के उनको कराना है तत्काल रजिस्ट्रेशन के लिए, उसके लिए भी व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है वो EKYC डेस्क में जा करके, जो श्रीनगर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इसकी व्यवस्था दी गई है, साथ ही रजिस्ट्रेशन काउंटर भी एक यहां पर तैयार किया गया है। ये आप देखिए कि इस रजिस्ट्रेशन काउंटर के जरिए भी लोग तुरंत ही रजिस्ट्रेशन करवा करके अपनी अमरनाथ यात्रा को कर सकते हैं।
1: टोकन आसानी से मिले और सुरक्षा को लेकर कोई चूक ना हो, इसके लिए पुलिस और प्रशासन दोनों अलर्ट हैं। भारी तादाद में पुलिस की टीम है और अधिकारियों की भी पूरी प्रक्रिया पर नजर है। बालटाल और पहलगाम यात्रा के दोनों रूटों के लिए टोकन लेने की होड़ में महिला, पुरुष, युवा, बुजुर्ग, साधु संत सभी शामिल हैं। कोई पहली बार यात्रा पर जा रहा है, कोई दूसरी या तीसरी बार, तो कोई पांचवी बार भी पहुंचा है।
2: ये अयोध्या से अमरनाथ के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। हर साल आप आते हैं यात्रा करने के लिए?
5: जी, मैं विगत 5 वर्षों से लगातार मैं आ रहा हूँ और इस बार हम पहली बार पंथा चौक पर आए हुए हैं। यहाँ पर बहुत ही अच्छी व्यवस्था है सरकार के द्वारा। हम लोग वंदे भारत से जम्मू है, जम्मू से सभी यात्रियों को सरकार ने स्पेशली बस से लाकर पंथा चौक पर छोड़ा और यहाँ पर खाने पीना सिक्योरिटी हर एक व्यवस्था बहुत ही चकाचौंध है। हम सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और अमरनाथ यात्रियों को बहुत बहुत बधाई देते हैं।
6: बहुत अच्छे मैनेजमेंट है सर, बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है यहाँ पे। मैं तो बहुत इम्प्रेस हो चुकी हूँ यहाँ की व्यवस्था से। बहुत

0: का है, आप ये बताइए कि कहाँ से आई हैं और यहाँ पर?
1: इंदौर से आए हुए और बहुत अच्छी सुविधा है और बहुत अच्छा खाना है यहाँ पे।
0: इतने सालों से ये लगा रहे हैं?
2: ये कम से कम 39 साल से, 34 35 सालों से। हाँ, 34 35 साल राजस्थान से, रायसी नगर से।
3: राजस्थान से लगता है, श्रीगंगानगर जिले से। 34 साल से लंगर लग रहा है, ये सबसे पुराना लंगर।
0: आप देखिए कि जो लोग दर्शन करने के लिए आते हैं उनको इसी तरीके के भंडारे में उनको व्यवस्था होती है, लंगर उनके द्वारा लगाया जाता है और खास तरीके के पकवान यहाँ पर बनाए जाते हैं। बाबा बर्फानी के दर्शन करने वाले लोग उनको किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होती है। ऐसे जो अलग अलग जगहों पर ट्रांजिट कैंप बने हुए हैं वहाँ पर ये सुविधाएं दी जा रही हैं।
4: हजारों फीट की ऊंचाई पर बाबा बर्फानी के दरबार तक पहुंचने का ये सफर जितना कठिन है उतना ही अलौकिक और आध्यात्मिक भी है। कहते हैं जीवन में बड़े भाग्य से ये मौका मिलता है, सो जिनका भाग्य चमका है यात्रा के हर पल का पूरा आनंद ले रहे हैं। जीवन के इस अनोखे और अभूतपूर्व अनुभव को हमेशा के लिए यादों में कैद कर सकें इसके लिए तस्वीरें भी ले रहे हैं। शायद इसी भाव को समझकर श्राइन बोर्ड ने ट्रांजिट कैंप में ये शानदार सेल्फी पॉइंट भी बनाया है।
0: यहाँ पर सेल्फी पॉइंट्स भी बनाए गए हैं। आप देखिए कि यहाँ पर जो अलग अलग राज्यों से आकर के महिलाएं हैं वो सेल्फी पॉइंट पर जा करके अपनी तस्वीरें यहाँ पर खिंचवाती हैं। इनके पास RFID भी है, तमाम रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया इन्होंने पूरी कर ली है। अब किस तरीके से आप लोग आगे बढ़ रहे हैं?
5: ये हम सभी लोगों का रजिस्ट्रेशन जब हो जाएगा साथ में तो ये पहलगांव से हम लोग सब लोग यहाँ से जाएंगे।
0: सेल्फी पॉइंट यहाँ पर बनाया गया है जो पंथा चौक ट्रांजिट कैंप है, तो आप लोग तस्वीरें ले रही हैं, कितना अच्छा लग रहा है?
6: बहुत ज्यादा ही अनुभव, एक आदर्श अनुभव है हमारे लिए कि इतनी अच्छी सरकार ने हमें व्यवस्था करके दी है कि हमें किसी चीज की भी कोई भी जरूरत महसूस नहीं हो रही है। बहुत अच्छा और बहुत अच्छा प्रबंध है हर चीज का।
4: कहते हैं शिवो भूत्वा शिवम जयेत, यानी शिव की पूजा शिव बनकर करो। जिन महादेव ने कभी जगत के कल्याण के लिए हलाहल विष को अपने कंठ में धारण किया उनकी भक्त के लिए उनकी ही तरह कठोर तप संकल्प और समर्पण की यात्रा से गुजरने का नाम है अमरनाथ यात्रा। भोले के भक्त भी शायद यही समझते हैं। यात्रा की शुरुआत हो रही है, तमाम व्यवस्था है पर श्रद्धालुओं की संख्या इतनी है कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ कम पड़ता ही रहेगा, पर शिव भक्तों को बस भोले बाबा के नाम से काम है। कहते हैं अगर कष्ट नहीं तो फिर तीर्थ कैसा।
7: श्राइन बोर्ड की जो व्यवस्था है यहाँ की सिक्योरिटी के लिए, चाहे यहाँ पर जो लंगर की जो व्यवस्था है वो भी एक्यूरेट है और इसमें हमें कोई प्रकार की कोई विशेष परेशानी नहीं हुई। और छोटी मोटी परेशानियाँ तो ये क्या है कि जीवन का एक हिस्सा है और ये भोले का दरबार है और इसमें अगर ये परेशानियाँ नहीं आएगी तो फिर उस यात्रा का एंजॉय नहीं होगा।
4: तो अब बस कुछ ही घंटों का इंतजार है जब बाबा बर्फानी के ये भक्त मन में अपार आस्था लिए उनके पवित्र धाम अमरनाथ गुफा की ओर रवाना होंगे और अपने आराध्य के दर्शन करेंगे। श्रीनगर से जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
8: सनातन धर्म में अमरनाथ यात्रा का बेहद महत्व है, इसी के चलते हर साल लाखों श्रद्धालु इस पावन यात्रा पर जाते हैं और शायद यही वजह है कि हर साल आतंकियों की बुरी नजर इस यात्रा पर रहती है। लेकिन आतंकी चाहे लाख कोशिश कर लें लेकिन सुरक्षा बलों की चाक चौबंद तैयारियों के बीच वो अपने मंसूबों में कभी कामयाब नहीं हो पाते। इस बार भी अमरनाथ यात्रा के रूट पर सुरक्षा का बेहद कड़ा बंदोबस्त है। यात्रा के दौरान रूट मार्ग पर CRPF, BSF और जम्मू कश्मीर पुलिस के अलावा ITBP की भी तैनाती की गई है। इसके अलावा पूरे मार्ग पर CCTV कैमरा और ड्रोन के जरिए कड़ी निगरानी भी रखी जाएगी। यानी इस साल यात्रा में न केवल सुविधाएं बेहतर होंगी बल्कि सुरक्षा भी अभूतपूर्व है।

0: की पूरी तैयारी कर रखी है। इस बार अमरनाथ यात्रा के दौरान सुविधाएं बढ़ाई गई हैं और कुछ नए नियम भी लागू किए गए हैं। अगर आप भी इस साल बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जा रहे हैं तो पहले जान लीजिए कि इस बार यात्रा में क्या बदला है और किन नियमों का पालन करना जरूरी है। अगर यात्रा के दौरान सुविधाओं की बात करें तो इस बार बालटाल से पवित्र गुफा तक पूरे रास्ते पर बिजली और लाइट की व्यवस्था की गई है ताकि खराब मौसम या रात के समय भी श्रद्धालुओं को परेशानी ना हो। ट्रैकिंग रूट को भी पहले से बेहतर बनाया गया है जिससे कठिन चढ़ाई कुछ आसान हो सके। यात्रियों की सुविधा के लिए पोनी, पालकी और पोर्टर की प्रीपेड बुकिंग शुरू की गई है, यानी अब तय किराए पर ही ये सेवाएं मिलेंगी। रहने की व्यवस्था भी पहले से बेहतर हुई है। बालटाल, नुनवान, श्रीनगर और चंद्रकोट के यात्री निवासों का विस्तार किया गया है। वहीं जम्मू में बने नए सेंटर में करीब 4000 भक्तों को ठहरने की व्यवस्था भी की गई है। अगर कोई श्रद्धालु ज्यादा थक गया है, बीमार है या फिर किसी कारणवश रुकना पड़ रहा है तो यहाँ पर आराम कर सकता है। ये पूरी तरह से निःशुल्क होगा। जम्मू के तवी रिवर फ्रंट पर बने नए इंटीग्रेटेड फैसिलिटेशन सेंटर में रजिस्ट्रेशन, मेडिकल जांच, हेल्थ सर्टिफिकेट और दस्तावेजों की जांच जैसी सभी जरूरी प्रक्रियाएं एक ही जगह पर पूरी की जा रही है। एक तरफ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं बढ़ाई गई हैं, तो वहीं सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। दरअसल पूरा सावन चलने वाली अमरनाथ यात्रा में यूं तो कई चुनौतियां होती हैं, लेकिन इनमें सबसे बड़ी चुनौती होती है यात्रियों की सुरक्षा, क्योंकि हर बार अमरनाथ यात्रा पर आतंकियों की बुरी नजर रहती है। लेकिन बाबा बर्फानी के प्रति लोगों की ऐसी आस्था है कि तमाम खतरों के बावजूद हर साल लाखों की संख्या में भक्त बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में देश की सुरक्षा एजेंसियां उन्हें सुरक्षित घर वापस भेजने की पूरी जिम्मेदारी उठाती हैं। इस बार भी आस्था के इस महाकुंभ में कोई खलल न पड़े, इसके लिए सुरक्षा बल पूरी तरह तैयार है। 670 से ज्यादा अर्धसैनिक बलों की कंपनियां सुरक्षा में तैनात की गई हैं। यात्रा मार्ग से लेकर बेस कैंप और हाईवे तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और भारतीय सेना के जवान दिन रात मोर्चे पर डटे हैं। बालटाल हो या पहलगाम, बाबा बर्फानी के धाम तक जाने वाला हर रास्ता एक अवैध किले में तब्दील कर दिया गया है। बम डिस्पोजर स्क्वाड और डॉग स्क्वाड को विशेष रूप से तैनात किया गया है। ये टीमें लगातार यात्रा मार्गों, टेंट्स और पार्किंग एरिया की तलाशी ले रही हैं।
1: जो स्मेल करते हैं उसे डिटेक्ट करते हैं, कोई भी अगर सामान में कुछ भी होता है तो यहाँ जैसे आप देख पा रहे हैं कि सीधा पहले व्हीकल्स आती हैं। व्हीकल्स आने के बाद एक तो हमारे पास DSMD होता है और एक दूसरा डॉग होता है। तो डॉग जो है स्मेल करता है और कुछ भी अगर संदिग्ध वस्तु अगर पाई जाती है तो वो तुरंत डिटेक्ट कर लेता है। और साथ में उसी के साथ में हमारे BDDS का जो HSMD होता है वो भी एक टूल होता है, अगर कुछ भी होता है तो वो डिटेक्ट करने में हेल्पफुल रहता है।
0: इसके साथ ही सुरक्षा ग्रिड को मजबूत करने के लिए टेक्नोलॉजी का भी खूब इस्तेमाल हो रहा है। जमीन से लेकर आसमान तक कड़ा पहरा है। घने जंगल और दुर्गम रास्तों की निगरानी ड्रोन के जरिए की जा रही है। आखिरी समय में तमाम सिक्योरिटी इंतजामों का मुआयना करने के लिए फिलहाल जम्मू कश्मीर पुलिस महकमा ग्राउंड जीरो पर नजर आ रहा है। बुधवार सुबह से ही जम्मू कश्मीर पुलिस के तमाम सीनियर ऑफिसर्स अलग अलग यात्रा डिस्ट्रिक्ट में सुरक्षा तैयारियों का जायजा लेते नजर आए।
2: आज जम्मू कश्मीर पुलिस के जितने भी सीनियर ऑफिसर्स हैं, जो भी सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट है आज वो उसका मुआयना कर रहे हैं। इसका ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि कोई भी कमी पेशी होती है तो उसको लूपहोल्स को प्लग करना और उसको और रिफाइन करना अपने रिस्पॉन्सेज के लिए। तो इसी लिहाज से ये जो है आज के जो काफ़ी अलग अलग मुख्तलिफ जो यात्रा डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ सीनियर अफसर सारे इंतजाम को फिर से देख रहे हैं ताकि उसकी अच्छे तरीके से सुपरविजन हो सके।
0: यानी चुनौती कोई भी हो, प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। मकसद सिर्फ एक, भोले के भक्तों की ये यात्रा सुरक्षित, सुगम और बिना किसी परेशानी के संपन्न हो। दरअसल शिव भक्तों के लिए अमरनाथ यात्रा एक ऐसी कठिन साधना है जिसे आप शिवत्व को साधने की सबसे कड़ी तपस्या कह सकते हैं और इस तपस्या को निर्बाध पूरा करवाने के लिए देश की सिक्योरिटी फोर्सेज पूरे जी जान से जुटी हैं। जम्मू से सुनील जी भट्ट, श्रीनगर से अशरफ वाली और जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: तो हजारों लोग अमरनाथ यात्रा पर निकल चुके हैं और हजारों जाने की तैयारियों में जुटे हैं। अब इसके बीच में उनका जो तीर्थ यात्रा पर जाने में या तो सक्षम नहीं है या किसी और वजह से चाहकर भी नहीं जा सकते, ठीक इसी तरह कई लोग चाहकर भी चारधाम यात्रा पर जा नहीं पाते। ऐसे लोगों के लिए वर्चुअल रियलिटी तकनीक की मदद से एक अनोखी सौगात तैयार की गई है। इसका नाम है दुर्लभ दर्शन। ये एक आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म है जिसमें 6D VR तकनीक के जरिए देश के प्रमुख मंदिरों के दर्शन का एक अनूठा अनुभव उपलब्ध करवाया जाता है। यानी दूर होकर भी आपको इस तकनीक के जरिए अपने आराध्य के पास होने का एहसास होगा। अभिनेता आशुतोष राणा को देश के पहले 6D मंदिर दर्शन सेवा तकनीक का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है।
4: आशुतोष राणा और मैं आपको लेकर चल रहा हूं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या।
5: अब दुर्लभ मंदिरों के दर्शन भी सुलभ होंगे।
4: मन में तुलसी की सुगंध लिए हम अपने आराध्य प्रभु श्री राम के धाम की ओर चलते हैं।
5: घर बैठे ही तीर्थों की यात्रा होगी। देर तक निहार सकेंगे आराध्य
4: दर्शनार्थ उनके विग्रह या मूर्ति के समक्ष उपस्थित होते हैं तो
5: दूर रहकर भी गर्भगृह की पूजा में शामिल हो सकेंगे।
6: इसमें है 50 से ज्यादा तीर्थ यात्रा
5: और ये सब संभव है दुर्लभ दर्शन। दुर्लभ दर्शन एक ऐसा पिटारा जिसमें हर धाम समाया है
4: बल्कि अनुभूत भी कर सकते हैं।
5: भगवान समाये हैं एक खास एहसास के साथ।
4: आपके और परमात्मा के बीच में कोई नहीं, वहां पर घटित होने वाली समस्त क्रियाकलापों में आप सहभागी होंगे, ऐसी अनुभूति हमारी करवाने का मन था कि अगर मान लीजिए पानी गिर रहा है, अगर हमने जल चढ़ाया, जलाभिषेक किया, तो पानी के छींटे हमारे ऊपर आते हैं, तो वो भी आपको अनुभूत हो। अगर आपने उनको सुगंधिम पुष्टिवर्धनम की बात, अगर हम सुगंध उनको लगा रहे हैं अभिषेक करते समय, तो सुगंध भी आपको महसूस होगी। यदि हवा की बात है तो हवा भी आपको महसूस होगी। तो इस तरीके से पूरा इस अनुभव को बिल्कुल एक जो दुर्लभ अनुभव है उसको सुलभ करने के लिए हमने ये किया।
5: लाखों असल में दुर्लभ दर्शन एक आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म जिसमें 6D VR तकनीक के जरिए देश के प्रमुख मंदिरों के दर्शन का एक अनूठा अनुभव उपलब्ध कराया जाता है। इसमें वर्चुअल रियलिटी के साथ साथ जल, वायु, सुगंध और पौराणिक कथाओं के मेल से साक्षात गर्भगृह में होने का एहसास कराया जाता है। यूँ कहिए कि यहाँ आस्था और तकनीक के मेल से एक सुंदर आध्यात्मिक वातावरण का निर्माण किया जाता है। यहाँ एक और भगवान राम और उनकी अयोध्या की कहानी है तो काशी विश्वनाथ का इतिहास भी है और माँ वैष्णो देवी की आरती भी। बस इसे आँखों पर लगाइए और यात्रा पर निकल पड़िए। अभिनेता आशुतोष राणा आपको धर्मस्थलों की कहानी सुनाते भी नजर आएंगे।
4: हमें तो अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए। क्यों होता है ऐसा? वो इसलिए कि जब हम भाव विभोर होकर भगवान के दर्शन।
5: फिलहाल ये सुविधा अयोध्या, काशी समेत देश के 11 प्रसिद्ध मंदिरों में उपलब्ध है, जहां आप सुकून से बैठकर अपने आराध्य देव को करीब से महसूस कर सकेंगे,
4: ध्यान में लीन हो सकते हैं। और यदि किसी कारणवश
5: अभिनेता आशुतोष राणा को देश के पहले 6D मंदिर दर्शन सेवा तकनीक का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है।
4: 50 से अधिक तीर्थ यात्राएं और अनेक सिद्ध और दिव्य मंदिरों के दैनिक दर्शन कर सकते।
3: तो चलिए इसी के साथ जीएनटी स्पेशल की इस बेहद खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरें जारी हैं, देखते रहिए जीएनटी।
7: एमपी में गौरक्षकों की उम्र कैद सजा का विरोध, हजारों वकीलों ने कोर्ट परिसर में किया प्रदर्शन, वेनेजुएला में भूकंप से ताश के पत्तों की तरह ढही इमारत, क्यूट बातचीत ने जीते लाखों दिन, वायरल खबरों की पूरी और पक्की पड़ताल देखिए नवजोत के साथ फैक्ट चेक शाम 7:34 पर।
8: Whatever you're in the mood for, TuneIn has the music to match. From today's hits, to timeless favorites and new discoveries. It's all streaming in one place. Discover stations that fit your vibe and keep the music going all day long. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
9: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
11: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।

मान्यता है कि अमरनाथ गुफा वही पवित्र स्थान है जहां भगवान शिव ने माँ पार्वती को अमरता की रहस्य कथा सुनाई थी। यही वजह है कि बेहद मुश्किल भरा और दुर्गम रास्ता होने के बावजूद श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा पर जाना चाहते हैं। अब की बार भी भक्तों का जोश हाई है, तो वहीं प्रशासन ने भी यात्रा को सकुशल संपन्न करवाने

0: क्या सुगंध के प्रयोग से साधना पूजा बेहतर हो जाती है? क्या सुगंध का प्रयोग करने से मन की चिंताएं दूर हो जाती हैं? क्या है सुगंध का महत्व और क्या है सुगंध के चमत्कारी प्रयोग, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: Tune in's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
3: Tune in is your MVP for everything sports audio. With live sports and a full lineup of podcasts and sports talk shows, you'll get all the sports action you'll ever need. Get updates on your favorite sports teams and alerts when they play. Just follow your favorite teams on TuneIn and you'll receive notifications. Plus, you'll also get recommendations based on your favorite teams. Start following your team and stay in the loop.
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
5: ज्वाइन SRM ISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
6: आर्थिक मोर्चे पर देश के लिए गुड न्यूज, जून में 1,94,000 करोड़ GST कलेक्शन, पिछले साल से 14% ज्यादा, इंपोर्ट से होने वाली कमाई बढ़ी। मॉनसून के चलते केदारनाथ के लिए संचालित हेली सेवाओं पर 5 जुलाई तक लगी रोक, केदारनाथ धाम के लिए 8 हेली सेवाएं हो रही थी संचालित। पहाड़ों पर मॉनसून का दिखने लगा है असर, रुद्रप्रयाग में लगातार हो रही बारिश से अलकनंदा नदी में बढ़ा जलस्तर, नदी के किनारे बनी भगवान शिव की मूर्ति तक पहुंच गया पानी। बद्रीनाथ में भगवान विष्णु के भक्तों ने अब तक के सारे रिकॉर्ड्स की ध्वस्त, 14 लाख से ज्यादा भक्तों ने किया दर्शन, हर रोज 15,000 से 20,000 श्रद्धालु कर रहे हैं दर्शन। केंद्रीय कैबिनेट की दिल्ली और उत्तर प्रदेश को 14,000 करोड़ से ज्यादा की सड़क परियोजनाओं की मिली मंजूरी, दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ेगी 6 लेन वाली टनल, वहीं कानपुर से करवई के बीच बनेगा एक्सेस कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड हाईवे।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
6: दिल्ली NCR में जल्द होगा खत्म मॉनसून का इंतजार, मौसम विभाग ने अगले 2 घंटों में दिल्ली NCR के कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने की जताई संभावना। MD के मुताबिक दिल्ली NCR में तेज हुई प्री मॉनसून गतिविधियां, दिल्ली के साथ साथ आसपास के प्रदेशों में भी कुछ इलाकों में बरसात के साथ तेज हवाओं का अलर्ट। अगले 2 से 3 दिन में आ सकता है मॉनसून, उमस भरी गर्मी से मिलेगी जल्द राहत। उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी, रुद्रप्रयाग में अगले 4 दिनों तक होगी जोरदार बारिश। मूसलाधार बारिश को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में, लोगों से नदियां, नाले और भूस्खलन की आशंका वाले इलाकों में जाने से बचने की अपील। हिमाचल के लगभग सभी हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज, अगले 4 से 5 दिनों तक पूरे प्रदेश में मॉनसून के अत्यधिक सक्रिय रहने की संभावना। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में हुई मूसलाधार बारिश, तेज हवाओं के बीच पहाड़ों पर ठंड का एहसास। भारी बारिश से फसलों को मिली संजीवनी, तापमान में भी आई गिरावट। शिमला में भी हुई राहत की बारिश, तापमान में गिरावट से पहाड़ियों पर छाई धुंध। पठानकोट में भारी बारिश, कई रिहायशी इलाकों में जलजमाव। मॉनसून के चलते केदारनाथ में संचालित हेली सेवाओं पर 5 जुलाई तक लगी रोक, केदारनाथ धाम के लिए 8 हेली सेवाएं हो रही थी संचालित। रुद्रप्रयाग में लगातार हो रही बारिश से अलकनंदा नदी का बढ़ा जलस्तर, नदी के किनारे बनी शिव मूर्ति तक पहुंच गया पानी। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी किनारे स्थित सभी घाट भी पानी से डूब गए। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन अलर्ट मोड में। अरुणाचल प्रदेश के केई पान्यूर जिले के दौरे पर शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू। शिवराज सिंह चौहान ने विस्थापित परिवारों से भी मुलाकात की। राहत और पुनर्वास के लिए केंद्र सरकार की ओर से पूरी मदद का भरोसा जताया। उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा जिले की तुलेल घाटी में बादल फटने से खेती की जमीन और मवेशियों को नुकसान पहुंचा। कश्मीर के राजौरी जिले में भी भारी बारिश, कई जगह भूस्खलन। डोडा में अचानक फट गया बादल, सड़कों पर आया मलबा। बादल फटने से फसलों को भारी नुकसान पहुंचा, कई सड़कें क्षतिग्रस्त, कई गांवों का संपर्क टूट गया। प्रशासन ने रास्ता साफ करने और नुकसान का आकलन करने का काम शुरू कर दिया। लोगों से मौसम देखकर यात्रा करने की अपील की। चंबा में भारी बारिश से सड़कों पर पसरा मलबा, आवाजाही रुकी, वाहनों की लंबी कतारें। देहरादून में हुई मूसलाधार बारिश, सड़कों पर जल जमाव। मुंबई में लगातार बारिश का दौर लगातार जारी, कई इलाकों में जोरदार बारिश से गिर गया तापमान, लोगों को गर्मी से राहत। मुंबई में भारी बारिश से सड़क पर गिरा पेड़, ट्रैफिक पुलिस ने सड़क से पेड़ हटाकर आवाजाही फिर से चालू की। मुंबई में अगले 6 जुलाई तक बारिश का ऑरेंज अलर्ट। IMD के पूर्वानुमान के मुताबिक मुंबई में शुक्रवार तक भारी बारिश से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। दिल्ली और उत्तर प्रदेश वासियों के लिए गुड न्यूज निकल कर आई। कैबिनेट ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ से ज्यादा की सड़क प्रोजेक्ट का मंजूरी दी। NH 148 AE के लिए 6 लेन वाली सड़क सुरंग के निर्माण को मिल गई मंजूरी। करीब 7,000 करोड़ की लागत से पूरा होगा 8.1 किलोमीटर लंबा यह प्रोजेक्ट, सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी। राजधानी से लगे उत्तर प्रदेश को भी मिली केंद्र के विकास की सौगात। उत्तर प्रदेश में NH 34 के कानपुर कबराई सेक्शन के निर्माण को मंजूरी मिली। 4 से 6 लेन वाला होगा ये 117.7 किलोमीटर लंबा एक्सेस कंट्रोल सेक्शन। दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण करने के लिए पेट्रोल और डीजल वाहनों का दौर धीरे धीरे खत्म करने की तैयारी शुरू। राजधानी में आज लागू हुई नई EV पॉलिसी। इलेक्ट्रिक बाइक्स खरीदने पर मिलेगी सरकार सब्सिडी भी देगी। 2.25 लाख रुपए तक की एक्स शोरूम कीमत वाली इलेक्ट्रिक दोपहिया पर पहले साल अधिकतम 30,000, दूसरे साल 20,000 और तीसरे साल 10,000 रुपए की सब्सिडी। नई नीति के तहत दिल्ली में खरीदे और रजिस्टर्ड अधिकांश इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को जीवन भर के लिए 100% रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फी से मिलेगी छूट। दिल्ली में सर्दियों के लिए सबसे बड़ा प्रदूषण एक्शन प्लान, बिना PUC नहीं मिलेगा पेट्रोल, 50% कर्मचारी घर से करेंगे काम। 1 नवंबर से 31 जनवरी तक दिल्ली के बाहर पंजीकृत और BS6 से नीचे के सभी वाहनों के प्रवेश पर रोक। आर्थिक मोर्चे पर देश के लिए गुड न्यूज, जून में 1,94,000 करोड़ GST कलेक्शन हुआ, पिछले साल से 14% ज्यादा। महंगाई के मोर्चे पर राहत की खबर, नायरा एनर्जी ने पेट्रोल डीजल के दाम घटाए, पेट्रोल 5 रुपए और डीजल 3 रुपए सस्ता हुआ। देश में कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में 183 रुपए की गिरावट, 5 किलो का छोटू सिलेंडर भी सस्ता। आज जुलाई के पहले दिन से देश भर के कई बड़े बदलाव अब लागू हो चुके हैं। पासपोर्ट फीस बढ़ी, रेलवे आधार बैंकिंग से जुड़े नए नियम प्रभावी। बीते हफ्ते से बंद पड़ी EPFO की डिजिटल सेवाएं आज से बहाल और RBI का नया फ्रेमवर्क लागू। नया आर्मी चीफ धीरज सेठ को साउथ ब्लॉक में दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने गार्ड ऑफ ऑनर के बाद पिता को किया सैल्यूट। सहारनपुर दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, करीब 613 करोड़ की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरसावा से स्कूल चलो अभियान के दूसरे चरण का भी शुभारंभ कर दिया। इंडिगो ने स्कॉन क्लास के यात्रियों के लिए शुरू की इंडिगो लाइट फेयर। इसके तहत यात्री सिर्फ उन सेवाओं के लिए पैसे देंगे जिनका वे इस्तेमाल करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर में बढ़ाना महोत्सव का रंगारंग आयोजन किया गया। मशहूर कवियों और शायरों ने बांधा समा। अरावली में इंद्रदेव को मनाने पहुंचे बारिश न होने से परेशान ग्रामीण। मान्यता है कि ऐसा करने से महादेव होते हैं प्रसन्न और देते हैं जल्द झमाझम बारिश का वरदान। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के दौरे पर मुख्यमंत्री मोहन यादव किसानों के साथ धान की रोपाई में लिया हिस्सा। इस दौरान देखने को मिला मुख्यमंत्री मोहन यादव का पारंपरिक अंदाज। उन्होंने पूरी तन्मयता के साथ किसानों के साथ कृषि कार्यों में लिया हिस्सा। चारधाम यात्रा में उमड़ा आस्था का जनसैलाब। अब तक करीब 42 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। केदारनाथ में लगा भक्तों का मेला। अब तक 14 लाख से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किए। बद्रीनाथ धाम में पहुंचे रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु। अब तक 14 लाख से ज्यादा भक्त कर चुके हैं बद्रीनाथ के दर्शन। चारधाम में ट्रांसपोर्ट और लोकल कारोबार को मिला बूस्ट। अब तक 4 लाख वाहन धाम पहुंचे। केदारनाथ हेली सेवाओं पर 5 जुलाई तक रोक। मानसून के चलते प्रशासन ने लिया फैसला। बाबा बर्फानी की पवित्र यात्रा की तैयारियां पूरी। 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा का हो रहा है शुभारंभ। जम्मू से कल रवाना होगा बाबा बर्फानी के भक्तों का पहला जत्था। एलजी मनोज सिन्हा ने दिखाई हरी झंडी। अमरनाथ यात्रा को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह। बड़ी संख्या में अमरनाथ बेस कैंप पहुंचे श्रद्धालु। जमकर लगाया जयकारे। अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम। श्रद्धालुओं की सुरक्षा करने के लिए लगाए गए हैं 650 सुरक्षा बल की कंपनियां। इस बार 57 दिनों तक चलेगी अमरनाथ यात्रा। 28 अगस्त तक हो सकता है समापन। चमोली स्थित फूलों की घाटी में पहुंचे रिकॉर्ड पर्यटक। अब तक 7,000 से ज्यादा सैलानियों ने दर्शन किए। चौंतीस विदेशी सैलानियों ने फूलों की घाटी का दीदार किया। पिछले साल के मुकाबले 1.5 गुना बड़ी संख्या। दिल्ली के चितरंजन पार्क में मैंगो फेस्टिवल का आयोजन किया गया। पश्चिम बंगाल के 12 किस्म के आमों की प्रदर्शनी। हिमसागर लंगड़ा लखनभोग समेत तमाम वैरायटीज उपलब्ध। मैंगो फेस्टिवल के साथ साथ हैंडलूम और हैंडक्राफ्ट से बनी चीजों की भी लगी है प्रदर्शनी। बड़ी संख्या में लोग कर रहे हैं खरीदारी। नए आर्मी चीफ धीरज सेठ को साउथ ब्लॉक में दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। वॉर मेमोरियल पर जाकर शहीदों को याद किया। हैदराबाद में रायतू भरोसा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी शामिल हुए। ईटानगर में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पौधारोपण किया। लोगों से पौधा लगाने की अपील की। विजयवाड़ा में इंजीनियरिंग कॉलेज में युवा संसद कार्यक्रम हुआ। डिप्टी सीएम शामिल हुए। बिहार के 18 जिलों में केंद्रीय विद्यालय में खोलने की केंद्र सरकार की अनुमति मिल गई है। राजस्व और भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने जानकारी दी। सैलानियों से गुलजार हुआ पुंछ। बड़ी संख्या में पीर की गली पहुंचे सैलानी। गांधीनगर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन की नई इमारत का शिलान्यास हुआ। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भूमि पूजन किया। उज्जैन में महर्षि पाणिनि संस्कृत और वैदिक विश्वविद्यालय के 6वें दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ। राज्यपाल शामिल हुए। कन्नूर में सांसद शफी परमपिल ने स्नेह विदु की चाबियां लाभार्थियों को सौंपी। अगरतला में साइबर सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने पर राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। बड़गाम रेलवे स्टेशन पर एसडीआरएफ और सुरक्षा बलों ने आपातकालीन तैयारियों का मॉक ड्रिल किया। आतंकवादी हमले आपात स्थिति या आपदा से निपटने के लिए बलों की तैयारियों को परखा गया। मॉक ड्रिल में जवानों ने आपसी तालमेल को परखा। पुंछ में आगामी मानसून के मौसम को लेकर सुरक्षा बलों ने मॉक ड्रिल किया, आपदा की तैयारियों को जांचने के लिए अभ्यास। अचानक आई बाढ़, भूस्खलन और हादसों के समय लोगों को सुरक्षित निकालने की ट्रेनिंग की। बाढ़ के दौरान पानी में फंसे लोगों को रस्सी और विशेष उपकरणों की मदद से सुरक्षित बाहर निकालने का अभ्यास किया गया। आज से इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज का होगा आगाज। भारत और इंग्लैंड के बीच सीरीज में खेले जाएंगे 5 T20। चेस्टरली स्ट्रीट में भारतीय समय अनुसार रात 10 बजे से हो जाएगा मैच। आयरलैंड के खिलाफ खेली गई पिछली सीरीज में हार गया था इंडिया। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में पहली T20 सीरीज जीतने पर होगी इंडिया की निगाहें। तिलक वर्मा टीम के कप्तान। इंग्लैंड दौरे पर एक बार फिर से वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू पर रहेगी सभी की नजरें। आयरलैंड दौरे पर नहीं मिला था मौका।

0: वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू पर रहेगी सस्पेंस, मिलेगा मौका। आईसीसी की ताजा मेंस टी20 बल्लेबाजी रैंकिंग में ईशान किशन का बड़ा धमाका, दुनिया के नंबर वन बल्लेबाज बने भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन। ईशान ने करीब 12 महीने से टॉप पर काबिज अभिषेक शर्मा को पीछे छोड़ दिया, दोनों भारतीय बल्लेबाजों के बीच फिलहाल सिर्फ 7 रेटिंग पॉइंट्स का अंतर। ईशान टी20 रैंकिंग में नंबर वन बने भारत के चौथे बल्लेबाज, उनसे पहले विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव और अभिषेक शर्मा हासिल कर चुके हैं ये उपलब्धि। टी20 गेंदबाजी की रैंकिंग में भारत के वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह को मिला नुकसान। टेस्ट में बुमराह की बादशाहत कायम, 870 रेटिंग पॉइंट्स के साथ गेंदबाजी में टॉप पर। फिल्म जय हिंद जय सिंध का फर्स्ट लुक निकलकर सामने आया, फिल्म में महेश मांजरेकर नजर आए। फिल्म अल्फा का नया प्रोमो रिलीज हो गया, 3 जुलाई को फिल्म सिनेमाघरों में देने जा रही है दस्तक। फिल्म तेरा यार हूं मैं का दूसरा गाना तुम ही से प्यार रिलीज, 24 जुलाई को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। फिल्म भाई तेरा स्टार है का फर्स्ट लुक हुआ रिलीज, फिल्म में राघव जोयाल नजर आए। देहरादून में बाबा नीब करोली पर आधारित फिल्म हनुमान अंश के निर्माताओं ने फिल्म के प्रचार के लिए देश भर में सामुदायिक भंडारे का आयोजन किया। बेबी डूडाडू का नया ट्रेलर हुआ रिलीज, बिना शोर हुमा कुरैशी ने मचाया कोहराम।
1: वो
0: वेब सीरीज रक्तांचल का फर्स्ट लुक हुआ जारी, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में 80 के दशक के माफिया और टेंडर राज पर आधारित है फिल्म।
2: कुछ जख्म कभी भरते नहीं।
0: फराह खान और रितेश देशमुख के साथ लॉकअप 2 में एंट्री करेंगी कंगना रनौत, जनता की आवाज के तौर पर आएंगी नजर। तांत्रिक विवाह के बीच अब प्रलय की शूटिंग शुरू करेंगे रणवीर सिंह, दिखाएंगे ज़ॉम्बीज की दुनिया। वेलकम टू द जंगल पर हो रही है नोटों की बरसात, फिल्में चौथे दिन 9.5 करोड़ की कमाई की, फिल्म अब तक 82 करोड़ का कलेक्शन पार कर चुकी है।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
4: एमपी में गौ रक्षकों की उम्र कैद सजा का विरोध, हजारों वकीलों ने कोर्ट परिसर में किया प्रदर्शन। वेनेजुएला में भूकंप से ताश के पत्तों की तरह ढही इमारत, क्यूट बातचीत ने जीते लाखों दिन। वायरल खबरों की पूरी और पक्की पड़ताल देखिए नवजोत के साथ फैक्ट चेक शाम 7:34 पर।
5: Hey, it's Billy Bush. Tune into my show, Hot Mics, Monday to Thursday at noon Eastern, 9 a.m. Pacific for the latest in politics, entertainment, tech, sports, pop culture, and much more. Just tell your device to play Hot Mics on TuneIn to listen.
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
0: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि
1: क्योंकि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
0: भारत की बेटियां अब सिर्फ खेल के मैदान में ही नहीं बल्कि खेलों के संचालन और फैसलों की सबसे बड़ी जिम्मेदारियों में भी नया इतिहास लिख रही हैं। उत्तर प्रदेश की मंजू नयाल ने कुछ ऐसा मुकाम हासिल किया है। मंजू नयाल ने वो उपलब्धि हासिल कर ली है जिसे अब तक देश की कोई महिला हासिल नहीं कर पाई। वो भारत की पहली 3-स्टार इंटरनेशनल महिला कुराश रेफरी बन चुकी हैं और इसी के साथ उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय खेल जगत में देश का नाम रोशन किया है।
10: बरसों की साधना और कठिन परिश्रम से हासिल ये अवार्ड और मेडल्स कामयाबी की कहानी खुद ब खुद बयां करने के लिए मुकम्मल है। गाजियाबाद के वैशाली की रहने वाली मंजू नयाल ने अपनी प्रतिभा के दम पर हासिल इन तमगों के साथ अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत का मान अब और बढ़ा दिया है। मंजू नयाल ने देश की पहली महिला 3-स्टार इंटरनेशनल कुराश रेफरी बनकर इतिहास रच दिया है।
11: मैम, देश की पहली 3-स्टार रेफरी कुराश गेम में, सुनकर कैसा लग रहा है? देश की पहली महिला रेफरी।
12: सर बहुत अच्छा लग रहा है, प्राउड मूवमेंट हो रही है कि देश की पहली महिला रेफरी बनी हूँ, तो काफ़ी लोगों की विशेज भी आ रही हैं और मतलब सपोर्ट भी मिला काफ़ी, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है पहली 3-स्टार रेफरी बन के कुराश की।
10: 2023 में 1-स्टार इंटरनेशनल कुराश रेफरी, 2025 में 2-स्टार इंटरनेशनल रेफरी और अब पिछले दिनों जून महीने में मंजू ने उज्बेकिस्तान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय रेफरी परीक्षा पास की और भारत की पहली 3-स्टार अंतर्राष्ट्रीय महिला कुराश रेफरी बनने का मुकाम हासिल किया।
12: पहले स्टेट रेफरी का एग्जाम दिया कुराश के अंदर, फिर नेशनल रेफरी का, फिर अब इंटरनेशनल रेफरी में, तो फिर वही, फिर 1-स्टार 2-स्टार, अब मैं 3-स्टार हो गई हूँ। तो ये बिग अचीवमेंट्स है इंडिया के अंदर। मैं अभी तक 3-स्टार रेफरी कोई वुमेन नहीं थी, फर्स्ट रेफरी मैं बनी हूँ इस बार, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है इस चीज के लिए।
10: मंजू नयाल ने ये उपलब्धि कैसे हासिल की, आगे उनका क्या लक्ष्य है, ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कुराश खेल क्या है। कुराश मध्य एशिया से जुड़ी एक प्राचीन और लोकप्रिय कुश्ती शैली है जिसकी उत्पत्ति करीब 3500 साल पहले उज्बेकिस्तान में हुई थी। इस खेल में दो खिलाड़ी एक दूसरे को पकड़कर पीठ के बल जमीन पर गिराने का प्रयास करते हैं। कुराश अब एक वैश्विक खेल बन चुका है जिसे 130 से अधिक देशों में खेला जाता है। इसे 2018 के एशियाई खेलों में भी शामिल किया गया था जहाँ भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पदक जीते थे। मंजू नयाल फिलहाल गाजियाबाद में गुरुकुल द स्कूल के शारीरिक शिक्षा विभाग की कोऑर्डिनेटर हैं और कई बड़े अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में रेफरी की भूमिका निभा चुके हैं।
12: वैसे मैं जूडो में भी नेशनल रेफरी हूँ थी, तो वहाँ पर हमारे सर थे रवि कपूर सर, जो दिल्ली के जनरल सेक्रेटरी थे, तब उन्होंने स्विच करा कुराश के अंदर, तो अब उनका साथ था, उन्हें जानते थे दिल्ली के अंदर, बाकी को नहीं इतना हमारा वो था, जब उन्होंने स्विच करा तो उनके साथ साथ हमने कुराश में भी स्विच कर लिया था उन्हीं के उससे।
10: मंजू ने कजाकिस्तान में नोमैड गेम्स 2024, रूस के याकुत्स में चिल्ड्रन ऑफ एशिया गेम्स 2024, बहरीन में तीसरे एशियन यूथ गेम्स 2025 में रेफरी की भूमिका निभाई है। उज्बेकिस्तान में जूनियर एशियन इंटरनेशनल कुराश कप 2026 और जापान ओपन कुराश चैंपियनशिप जैसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में रेफरी के रूप में जिम्मेदारी निभाई है। 2015 में चीनी ताइपे में आयोजित जूनियर एशियन कुराश चैंपियनशिप में भारतीय टीम की कोच के रूप में भी मंजू ने देश का प्रतिनिधित्व किया है। मंजू नायर का लक्ष्य अब इसी साल सितंबर में होने जा रहे एशियन गेम्स में रेफरी के तौर पर भारत का प्रतिनिधित्व करने का है।
12: एशियन गेम्स जो अब सितंबर में होने वाले हैं 22 से, उसमें अभी हम दिल्ली इंडिया से गए थे और वहाँ ट्रायल इवेंट्स देखने गए थे कि क्या क्या कमियाँ हैं, क्या क्या होना वाला है, तो उसका एक रन थ्रू था वहाँ पर। तो वहाँ पे मैं एज ए इंडिया से रिप्रेजेंट करा था मैंने वहाँ पर, और काफ़ी चीज़ें वहाँ मुझे सीखने को भी मिली, बहुत सारी चीज़ें देखी, क्या कमियाँ थी, क्या है, ये सारी चीज़ें हम वहाँ देख के आए हैं। और अब हम सितंबर में अगर हुआ तो सितंबर में हम वहाँ जाएंगे।
10: मंजू नयाल की ये उपलब्धि न सिर्फ उनके लंबे अनुभव और मेहनत का परिणाम है, बल्कि देश के उन महिलाओं के लिए प्रेरणा भी है जो खेलों में कुछ अलग पहचान बनाना चाहती हैं। गाजियाबाद से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
8: TuneIn has all of your favorite audio in one spot, so you can enjoy listening to anything, anywhere. From breaking news,
13: after multiple assassination attempts, they can't even get...
14: They're reliable.
15: Always when I need them.
8: To live sports action.
16: One-hand jam by LeBron on the break.
17: That's another three, Steph Curry.
8: And your favorite music.
18: Well, the dawn begins to crack. It's
8: TuneIn has got it all. Discover new stations in the app. Or ask your device to play TuneIn.
7: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर रात सच्चाई की रात 9 बजे।
19: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
20: और दुर्भाग्य कहता है
21: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
19: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
22: गुड न्यूज टुडे।
19: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
19: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
20: और दुर्भाग्य कहता है
21: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
19: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
22: गुड न्यूज टुडे।
23: सुगंध के प्रयोग से साधना पूजा बेहतर हो जाती है? क्या सुगंध का प्रयोग करने से मन की चिंताएं दूर हो जाती हैं? क्या है सुगंध का महत्व और क्या है सुगंध के चमत्कारी प्रयोग, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
24: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
25: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements।
1: भारत और इंग्लैंड के बीच थोड़ी ही देर में शुरू होगा पहला टी20 मुकाबला। प्लेइंग 11 पर होगी सबकी निगाहें। वैभव के डेब्यू का फैंस को बेसब्री से इंतजार। आर्थिक मोर्चे के लिए देश के लिए गुड न्यूज। जून में 1.94 लाख करोड़ जीएसटी कलेक्शन, पिछले साल से 14% ज्यादा। इंपोर्ट से होने वाली कमाई बढ़ी। मॉनसून के चलते केदारनाथ के लिए संचालित हेली सेवाओं पर 5 जुलाई तक लगी रोक। केदारनाथ धाम के लिए 8 हेली सेवाएं हो रही थी संचालित। पहाड़ों पर मॉनसून का दिखने लगा असर। रुद्रप्रयाग में लगातार हो रही बारिश से अलकनंदा नदी का बढ़ा जलस्तर। नदी के किनारे बनी भगवान शिव की मूर्ति तक पहुंचा पानी। बद्रीनाथ में भगवान विष्णु के भक्तों ने अब तक के सारे रिकॉर्ड किए ध्वस्त। 14 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन। हर रोज 15 से 20 हजार श्रद्धालु कर रहे दर्शन। केंद्रीय कैबिनेट की दिल्ली और यूपी को 14,000 करोड़ से ज्यादा के सड़क परियोजनाओं को मंजूरी। दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ेगी 6 लेन वाली टनल। वहीं कानपुर के करबई के बीच बनेगा एक्सप्रेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड हाईवे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मात्रा।
1: नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ श्वेता झा। शाम के 7 बज चुके हैं और 7 गुड न्यूज के साथ हम हाजिर हैं। तो हम आपको आज के 7 गुड न्यूज के बारे में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज की, जो है अमरनाथ यात्रा से जुड़ी। इस पवित्र यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों का इंतजार अब से कुछ ही घंटों बाद खत्म होने जा रहा है, क्योंकि कल सुबह तड़के जम्मू बेस कैंप से तीर्थयात्रियों का पहला जत्था रवाना होने वाला है। और यही है आज की हमारी आज की पहली गुड न्यूज। खत्म हुआ इंतजार, चलो बाबा के द्वार। तीर्थयात्रियों के इस पहले जत्थे को पूजा पाठ के बाद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा झंडा दिखाकर रवाना करेंगे। इन सभी तीर्थयात्रियों को बसों के जरिए कड़ी सुरक्षा में ले जाया जाएगा। इस यात्रा के शुरू होने से पहले जम्मू समेत दूसरे बेस कैंपों में माहौल पूरी तरह से भक्तिमय हो चुका है।
2: उत्साह, ये उमंग, ये जयकारों का उद्घोष बता रहा है कि बाबा बर्फानी के भक्तों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। श्री अमरनाथ जी के दर्शन और पूजन की शुभ घड़ी नजदीक आ गई है, जिसके लिए तमाम श्रद्धालु जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप में पहुंचते हैं, जहां से सुबह पहला जत्था पूजा पाठ के बाद रवाना किया जाएगा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा तीर्थ यात्रियों के इस पहले जत्थे को झंडा दिखाकर रवाना करेंगे।
4: इस समय हम मौजूद हैं जम्मू शहर के भगवती नगर इलाके में स्थित यात्री निवास भवन के बाहर, और यहां पर श्रद्धालुओं का आना जो है वो शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं में खासा उत्साह है। श्रमना जी की यात्रा को लेकर यहाँ पर बम बम भोले का जयघोष हो रहा है, हर हर महादेव का जयघोष हो रहा है। देश के अलग अलग भागों से श्रद्धालु जो है यहाँ जम्मू शहर पहुँच रहे हैं। हर तरह के प्रबंध पूरे कर लिए जा चुके हैं। अब बस जो इंतजार है वो बृहस्पतिवार की सुबह का इंतजार है, जब यहाँ पर जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा यात्रियों के पहले जत्थे को रवाना करेंगे, और शुक्रवार को विधिवत तौर पर ये यात्रा शुरू हो जाएगी।
2: यात्रा पर जाने से पहले जम्मू बेस कैंप पहुंचे सैकड़ों तीर्थ यात्रियों में कई ऐसे भी हैं जो ऑन द स्पॉट यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कराकर RFID कार्ड हासिल कर रहे हैं, जो इस पवित्र यात्रा के लिए बहुत जरूरी है। टोकन, रजिस्ट्रेशन और RFID के लिए घंटों लाइन में लगे रहने के बावजूद इन तीर्थ यात्रियों के जोश और उत्साह में कोई कमी नजर नहीं आई। सबके मन में बस बाबा बर्फानी के पवित्र दर्शनों की आस है, जो इन्हें यहाँ तक खींच लाई है।
5: सर, मैं पहली बार आई हूँ और मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है मुझे भोले बाबा के दर्शन करने की, और फाइनली हमें टोकन भी मिल चुका है। अभी
14: अमरनाथ श्राइन बोर्ड की जो व्यवस्था है यहाँ की सिक्योरिटी के लिए, चाहे यहाँ पर जो लंगर की जो व्यवस्था है वो भी एक्यूरेट है।
2: जम्मू की तरह ही दूसरे ट्रांजिट कैंपों में ऐसा ही भक्तिमय माहौल देखने को मिल रहा है, जिसकी एक तस्वीर श्रीनगर के पंथा चौक पर मौजूद ट्रांजिट कैंप से सामने आई, जहां देश भर से आने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन के साथ लंगर, मेडिकल और सेल्फी पॉइंट जैसी व्यवस्था की गई है।
0: यहाँ पर आप देखिए कि RFID और इसके साथ साथ EKYC डेस्क और रजिस्ट्रेशन काउंटर भी यहाँ पर तैयार किया गया है। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, इनसे बातचीत करते हैं कि RFID जो है, इस बार ये व्यवस्था की गई है कि तत्काल जो है लोगों को अगर जरूरत है तो कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन करा के आए, क्या प्रक्रिया है यहाँ पर?
6: सर, तत्काल में इसमें आप डायरेक्टली आके यहाँ पे भी करवा सकते हैं, अपना जो भी रिपोर्ट्स है वो लेके आ सकते हैं आप, और यहाँ पे आके आपका EKYC हो जाता है और इमीडिएटली आपको RFID मिल जाता है।
2: 57 दिनों तक चलने वाली इस पवित्र यात्रा के लिए सुरक्षा का अभेद्य चक्र तैयार किया गया है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल के जवान और पुलिस की तैनाती की गई है, साथ ही ड्रोन और CCTV कैमरों से 24 घंटे निगरानी की जा रही है, ताकि यात्रा में कोई खलल न पड़े और तीर्थ यात्री सुलभ और सुरक्षित यात्रा कर पाए। जम्मू से सुनील जी भट्ट और श्रीनगर से जितेंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: अगर आप तीर्थ यात्रा करने में सक्षम नहीं हैं या फिर भीड़ में भगवान के दर्शन कर संतुष्टि नहीं मिलती है, तो आपके लिए एक खास विकल्प मौजूद है। इसका नाम है दुर्लभ दर्शन। ये एक आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म है जिसमें 6D VR तकनीक के जरिए देश के प्रमुख मंदिरों के दर्शन का एक अनूठा अनुभव उपलब्ध कराया जाता है। तो आज की हमारी अगली, यानी कि जो दूसरी गुड न्यूज है, वो है आस्था में तकनीक का तड़का। जी हाँ, अभी ये सुविधा अयोध्या, काशी समेत देश के 11 प्रसिद्ध मंदिरों में उपलब्ध है, जहां आप सुकून से बैठकर अपने आराध्य देव को करीब से महसूस कर सकेंगे। अभिनेता आशुतोष राणा को देश के इस पहले 60 मंदिर दर्शन सेवा तकनीक का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है।
10: आशुतोष राणा, और मैं आपको लेकर चल रहा हूं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या।
11: अब दुर्लभ मंदिरों के दर्शन भी सुलभ होंगे।
10: मन में तुलसी की सुगंध लिए हम अपने आराध्य प्रभु श्री राम के धाम की ओर चलते हैं।
11: घर बैठे ही तीर्थों की यात्रा होगी। देर तक निहार सकेंगे
10: आराध्य। उनके विग्रह या मूर्ति के समक्ष उपस्थित होते हैं तो
11: दूर रहकर भी गर्भगृह की पूजा में शामिल हो सकेंगे।
12: इसमें है 50 से ज्यादा तीर्थ यात्रा,
11: और ये सब संभव है दुर्लभ दर्शन। दुर्लभ दर्शन एक ऐसा पिटारा जिसमें हर धाम समाया है,
10: बल्कि अनुभूत भी कर सकते हैं।
11: भगवान समाये है एक खास एहसास के साथ।
10: आपके और परमात्मा के बीच में कोई नहीं, वहां पर घटित होने वाली समस्त क्रियाकलापों में आप सहभागी होंगे, ऐसी अनुभूति हमारी करवाने का मन था। कि अगर मान लीजिए पानी गिर रहा है, अगर हमने जल चढ़ाया, जलाभिषेक किया, तो पानी के छींटे हमारे ऊपर आते हैं, तो वो भी आपको अनुभूत हो। अगर आपने उनको सुगंधिम पुष्टिवर्धनम की बात, अगर हम सुगंध उनको लगा रहे हैं अभिषेक करते समय, तो सुगंध भी आपको महसूस होगी। यदि हवा की बात है तो हवा भी आपको महसूस होगी। तो इस तरीके से पूरा इस अनुभव को बिल्कुल एक जो दुर्लभ अनुभव है उसको सुलभ करने के लिए हमने ये किया।
11: लाखों असल में दुर्लभ दर्शन एक आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म जिसमें 6D VR तकनीक के जरिए देश के प्रमुख मंदिरों के दर्शन का एक अनूठा अनुभव उपलब्ध कराया जाता है। इसमें वर्चुअल रियलिटी के साथ साथ जल, वायु, सुगंध और पौराणिक कथाओं के मेल से साक्षात गर्भगृह में होने का एहसास कराया जाता है। यूँ कहिए कि यहाँ आस्था और तकनीक के मेल से एक सुंदर आध्यात्मिक वातावरण का निर्माण किया जाता है। यहाँ एक और भगवान राम और उनकी अयोध्या की कहानी है, तो काशी विश्वनाथ का इतिहास भी है और माँ वैष्णो देवी की आरती भी। बस इसे आँखों पर लगाइए और यात्रा पर निकल पड़िए। इसमें अभिनेता आशुतोष राणा आपको धर्म स्थलों की कहानी सुनाते भी नजर आएंगे।
8: हमें तो अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए। क्यों होता है ऐसा? वो इसलिए कि जब हम भाव विभोर होकर भगवान के दर्शन,
11: फिलहाल ये सुविधा अयोध्या काशी समेत देश के 11 प्रसिद्ध मंदिरों में उपलब्ध है, जहां आप सुकून से बैठकर अपने आराध्य देव को करीब से महसूस कर सकेंगे,
8: ध्यान में लीन हो सकते हैं। और यदि किसी कारणवश
11: अभिनेता आशुतोष राणा को देश के पहले 6D मंदिर दर्शन सेवा तकनीक का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है।
8: 50 से अधिक तीर्थयात्राएं और अनेक सिद्ध और दिव्य मंदिरों के दैनिक दर्शन कर सकते।
1: उमस भरी गर्मी से बेहाल दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए खुशखबरी, गुड न्यूज ये है कि दक्षिण पश्चिम मानसून देर से ही सही दिल्ली की दहलीज पर पहुंच गया है। मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली एनसीआर में 3 से 4 जुलाई के बीच मानसून दस्तक दे सकता है। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो तीसरी गुड न्यूज है वो है दिल्ली में मानसून का काउंट डाउन शुरू। जी हाँ, सामान्य तौर पर दिल्ली में मानसून 27 जून के आसपास दस्तक देता है। इस साल इसमें थोड़ी देरी हुई है। IMD के मुताबिक अगले कुछ दिनों में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में मानसून के आगे बढ़ने की अच्छी संभावना है।
11: उमस से बेहाल लोग और आसमान की तरफ टिकी निगाहें, लेकिन इस बीच आखिरकार राहत की खबर आ ही गई है। दक्षिण से चला मानसून अब उत्तर भारत के बड़े हिस्से तक पहुंच चुका है और राजधानी दिल्ली की दहलीज पर दस्तक देने वाला है। बीते कुछ घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। कई जगह तेज बौछारों ने गर्मी की रफ्तार थामी हुई है।
13: देश के अलग अलग हिस्सों में जो है इस वक्त जो बारिश है वो देखी जा रही है। अगर हम मानसून की स्थिति की बात करें तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अभी हालात जो है वो बने हुए। हालांकि दिल्ली एनसीआर की सबसे पहले हम बात करेंगे, दिल्ली एनसीआर की में भी लोगों को जल्द ही राहत मिलने वाली है। आने वाले 102 दिन में जो है अच्छी खासी बारिश जो है वो देखी जा सकती है। उसके अलावा अगर आप पूरे इस मैप को देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि हर तरीके का अलर्ट जो है वो दे रखा है। सबसे ज्यादा आपको जो है सेंट्रल इंडिया में आपको जो है ऑरेंज अलर्ट दिखेगा, क्योंकि लगातार बारिश जो है वहां पर वो देखी जा रही है। और उसके साथ ही आपको गुजरात, कोंकण, गोवा में जो है बारिश का रेड अलर्ट जो है मौसम विभाग द्वारा जो है वो जारी किया गया है। तो आने वाले एक हफ्ता में जो है मौसम पूरी तरीके से बदलता हुआ आपको नजर आएगा।
11: 3 दिन की देरी से केरलम से शुरू हुआ मानसून अब देश के 90% से ज्यादा हिस्से को कवर कर चुका है। पिछले कुछ दिनों में इसकी चाल तेज हुई और 30 जून को ये यूपी, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कई नए क्षेत्रों तक पहुंच गया। वहीं हरियाणा और पंजाब के कुछ भागों में भी प्री मानसून बारिश की गतिविधियां बढ़ गई हैं। सबसे ज्यादा इंतजार दिल्ली एनसीआर को है। मौसम विभाग का अनुमान है कि राजधानी में मानसून 3 या 4 जुलाई के आसपास पहुंच सकता है। सामान्य तौर पर दिल्ली में मानसून की बारिश

0: दिल्ली के आसपास के जिन राज्यों में मॉनसून पहुंचा है वहां फुल रफ्तार से बादल बरस रहे हैं। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू जैसे पहाड़ी राज्यों में मौसम विभाग की ओर से भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है और लोगों से सावधानी बरतने की भी अपील की गई है। कुल मिलाकर मौसम का जो मिजाज अभी देखने को मिल रहा है उसे देखते हुए अनुमान यही है कि उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों में मौसम की ये मेहरबानी बनी रहेगी और लोगों को झुलसा देने वाली गर्मी का सामना फिर से करना नहीं पड़ेगा। दिल्ली से मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: अगली खबर यूपी के गाजियाबाद से है, जहां की रहने वाली एक बेटी ने देश का मान बढ़ाया है। इस बेटी का नाम मंजू रयाल है, जो कि भारत की पहली 3-स्टार इंटरनेशनल महिला कुराश रेफरी बन गई है। मूल रूप से उत्तराखंड की रहने वाली मंजू रयाल अभी गाजियाबाद में रहती हैं। वर्षों की मेहनत और खेल के प्रति समर्पण ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है। ऐसे में हमारी अगली यानी कि चौथी गुड न्यूज इसी से जुड़ी है, मंजू ने बढ़ाया देश का मान। आपको बता दें कि मंजू रयाल ने मई 2026 में उज़्बेकिस्तान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कुराश रेफरी परीक्षा में हिस्सा लिया था, जिसमें विश्व के कई देशों से आए उम्मीदवारों ने भाग लिया था। परीक्षा पूरी होने के लगभग महीने भर बाद घोषित परिणाम में मंजू सफल घोषित हुई। ये परीक्षा तकनीकी ज्ञान, खेल नियमों की समझ, निर्णय लेने की क्षमता और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर आयोजित की जाती है, जिसमें सफल होने के बाद ही रेफरी को विश्व स्तरीय प्रतियोगिताओं में ऑफिशियल रूप में काम करने का मौका मिलता है। मंजू ने अपनी इस सफलता का श्रेय अपने परिवार के साथ साथ उन सभी लोगों को दिया है जिन्होंने उनके सफर में अहम भूमिका निभाई है। मंजू के लिए ये उपलब्धि न केवल उनकी कड़ी मेहनत और लगन का परिणाम है, बल्कि भारत में कुराश खेल के बढ़ते स्तर और महिलाओं की बढ़ती भागीदारी का भी प्रतीक मानी जाती है।
2: इससे स्पोर्ट्स में अब बहुत सारे मेडल आते हैं। देश के बेटे बेटियां कई अलग अलग नेशनल इंटरनेशनल गेम्स में भारत का नाम हमेशा ऊंचा करते रहते हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाएंगे जो कि खिलाड़ी से आगे जाकर रेफरी की भूमिका में अब देश का नाम रोशन करने जा रही हैं।
3: बहुत अच्छा लग रहा है, प्राउड मूवमेंट हो रही है कि देश की पहली महिला रेफरी बनी हूँ, तो काफ़ी लोगों की विशेस भी आ रही हैं और मतलब सपोर्ट भी मिला काफ़ी, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। 1998 से स्टार्ट करी थी जूडो एज ए प्लेयर, फिर मैं स्कूल में भी मेरा कंटिन्यू रहा जूडो, स्टेडियम ज्वाइन करा मैंने दिल्ली में पूनम राणा मैम के अंडर जूडो की कोचिंग करी, फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी में गई वहाँ भी जूडो की एक कोचिंग करी, फिर जब धीरे धीरे करके फिर यूनिवर्सिटी में गई तो बोर्ड में देखा कि नाम लिखा हुआ है, तो मैं जब कॉलेज में गई अपने नोएडा फिजिकल एजुकेशन वहाँ पे बोर्ड में नाम लिखा होता था, मुझे होता था कि एज ए प्लेयर मेरा नाम इस बोर्ड पे होना चाहिए, तो मैंने ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में मेडल जीते तो मेरा नाम उस बोर्ड पे आज भी लिखा हुआ है। कभी कॉलेज का जाती हूँ तो वहां पे मेरे को नाम दिखता है तो बड़ा अच्छा लगता है मंजू रयाल लिखा हुआ।
1: और अब आपको लिए चलते हैं देवभूमि उत्तराखंड, जहां चमोली जिले में मौजूद फूलों की घाटी इन दिनों अपनी मनमोहक खूबसूरती से सैलानियों को लुभा रही है। अब तक 7,294 लोग फूलों की घाटी की प्राकृतिक सुंदरता का दीदार कर चुके हैं, जिनमें 34 विदेशी पर्यटक भी शामिल हैं। यही है आज की हमारी अगली यानी कि पांचवी गुड न्यूज, फूलों की घाटी में रिकॉर्ड सैलानी। आपको बता दें कि फूलों की घाटी में 500 से अधिक प्रजाति के फूल खिलते हैं, जिसके चलते फूलों की घाटी का आकर्षण कभी भी कम नहीं होता। यहाँ पर हर 15 दिनों में फूलों की अलग प्रजाति खिलने से घाटी का रंग भी बदल जाता है, जिसका दीदार करने के लिए इस साल अब तक रिकॉर्ड संख्या में सैलानी पहुंच चुके हैं, जिससे वन विभाग बहुत उत्साहित है।

पहाड़ों के बीच फैली हरियाली, बादलों से बातें करती वादियाँ, और जहाँ तक नजर जाए वहाँ तक रंग बिरंगे फूलों की दुनिया। ये नज़ारा किसी कल्पना का नहीं बल्कि चमोली की विश्व धरोहर फूलों की घाटी का है। हर साल मॉनसून के साथ यहाँ प्रकृति अपनी सबसे खूबसूरत तस्वीर पेश करती है। इस बार भी घाटी ने अपने रंग बिखेरने शुरू किए तो लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है। फूलों की घाटी में 1 जून को पर्यटकों के लिए प्रवेश शुरू हुआ था। अभी सिर्फ 1 महीना ही बीता है, लेकिन यहाँ आने वालों की संख्या ने सभी पुराने आंकड़े पीछे छोड़ दिए हैं। अब तक 7,294 लोग घाटी की प्राकृतिक सुंदरता का दीदार कर चुके हैं। इनमें 34 विदेशी पर्यटक भी शामिल हैं। वन विभाग का कहना है कि

0: सीजन की शुरुआत इतनी शानदार पहले बहुत कम देखने को मिली है। अगर पिछले साल से तुलना करें तो अंतर साफ दिखाई देता है। बीते साल इसी महीने में 3,893 पर्यटक पहुंचे थे।
1: कुल एक महीने बीतने के बाद हमारे पास कुल 7,294 लोग आ गए हैं, जिसमें 34 फॉरेनर्स हैं। और इसके साथ ही पिछले वर्ष की तुलना की जाए तो ये संख्या 1.5 गुना है। पिछले बार इस समय तक 3,893 लोग आए थे, जिसमें 63 फॉरेनर्स थे। तो अगर देखा जाए तो इस बार काफी अच्छा पर्यटन सीजन रहा है।
0: यानी इस बार शुरुआती एक महीने में ही करीब 1.5 गुना अधिक लोग यहां पहुंचे हैं। यही वजह है कि वन विभाग को इस पूरे सीजन में रिकॉर्ड संख्या की उम्मीद दिखाई दे रही है।
2: विश्व धरोहर फूलों की घाटी इस बार पहले ही पर्यटकों से गुलजार हो चुकी है, जबकि मुख्य सीजन 15 जुलाई से 15 अगस्त का होता है। सबसे ज्यादा फूल इस दौरान फूलों की घाटी में खुलते हैं। इस बार 1.5 गुना, पिछले वर्षों के अनुसार 1.5 गुना अधिक जो पर्यटक हैं वो अब तक फूलों की घाटी का दीदार कर चुके हैं।
0: अभी तो ये केवल शुरुआत है। फूलों की घाटी का असली आकर्षण 15 जुलाई से 15 अगस्त के बीच दिखाई देता है। इसी समय सबसे अधिक प्रजातियों के फूल एक साथ खिलते हैं। चारों ओर रंगों का ऐसा संसार बन जाता है, जिसे देखने के लिए देश विदेश से प्रकृति प्रेमी यहाँ पहुँचते हैं। फूलों की घाटी की सबसे खास बात ये है कि यहाँ केवल एक तरह के फूल नहीं खिलते। इस पूरी घाटी में करीब 500 प्रजातियों के फूल पाए जाते हैं। हर 15 दिन बाद नई किस्में खिलती हैं और पहले वाले धीरे धीरे विदा हो जाते हैं। यही वजह है कि यहाँ का नज़ारा लगातार बदलता रहता है। यही बदलता रूप इस जगह को दुनिया की सबसे खास प्राकृतिक धरोहर में शामिल करता है। जैसे जैसे जुलाई का ये महीना आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे ये पूरी घाटी और अधिक रंगों से भरती जाएगी। आने वाले दिनों में यहाँ प्रकृति का सबसे मनोहरी रूप दिखाई देगा। यही वजह है कि फूलों की घाटी केवल एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि धरती पर सजे उस जीवन कैनवस का नाम है, जहाँ हर मौसम नई तस्वीर बनाता है। चमोली से कमल नैन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: बुजुर्गों से जुड़ी एक अच्छी खबर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से आई है, जहां पर मुरादाबाद नगर निगम ने वरिष्ठ नागरिकों यानी कि बुजुर्गों के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त वातानुकूलित सीनियर सिटीजन केयर सेंटर तैयार किया है। इस केंद्र का उद्देश्य बुजुर्गों को ऐसा आत्मीय माहौल देना है जहां वो अकेलेपन से बाहर निकलकर अपनी उम्र के लोगों के साथ समय बिता सके। और यही है आज की हमारी अगली यानी कि छठी गुड न्यूज। तो हमारी गुड न्यूज है अकेलेपन से बचाने वाला केयर सेंटर। केयर सेंटर में आरामदायक बैठने की व्यवस्था, एसी, स्वच्छ वातावरण और मनोरंजन के साथ सामाजिक गतिविधियों की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। वरिष्ठ नागरिक आपस में बात कर सकेंगे, अपने अनुभव साझा कर सकेंगे और दिन भर सकारात्मक माहौल में समय गुजार सकेंगे। परिवारों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बच्चों के लिए भी विशेष इंतजाम किए गए हैं, ताकि एक ही स्थान पर सभी पीढ़ियां साथ समय बिता सके। बदलती सामाजिक परिस्थितियों और संयुक्त परिवारों के कम होते दायरे और कारण बुजुर्गों में बढ़ते अकेलेपन को देखते हुए इस परियोजना की शुरुआत की गई है।
4: सिटीजन केयर सेंटर जो इस बात के लिए बनाया गया था कि दिन में जो जितने सारे एक एज के लोग, खासतौर से जो ओल्ड एज के लोग हैं, वो आपस में एक दूसरे से बातचीत कर सके, एक दूसरे के साथ समय बिता सके, क्योंकि कई बार आप एक जनरेशन गैप और एक दूसरे का अकेलापन वो देखने को मिलता है। तो उसमें इस तरीके की व्यवस्थाएं दी गई कि वहाँ चाहे तो कोई गेम खेल ले, चाहे तो पढ़ना चाहे तो पुस्तकें पढ़े, दिन भर रहना चाहे तो दिन भर रहे, आपस में बातें करें। और अगर कई बार ऐसा होता है कि अगर दादी नानी आती हैं तो अपनी बच्चों के साथ भी आना चाहती है वहाँ पर, तो बच्चों के लिए भी वहाँ व्यवस्था दी गई कि अगर बच्चों का की सुविधाएं हैं।
5: हाँ, योगा की भी सुविधा देंगे और जो भी सीनियर सिटीजन के लिए हमारी तरफ से कुछ होगा तो उसको भी करेंगे। मैं लेक्चर से रिटायर हुआ हूँ, ज्योग्राफी लेक्चर था समाज कल्याण में। अब बहुत ही सुंदर, अति सुंदर, इतना बढ़िया बिल्डिंग मैं पहली बार देख रहा हूँ।
6: और बड़ी बड़ी जगह उन्होंने क्या क्या किया है, आज अंदाज लगता है कि बहुत कुछ हो रहा है। योगी जी जो जिस दिशा में ले जा रहे हैं, उस दिशा को मजबूत बनाने का काम पीछे जनता का है।
3: चलिए अब आपको लिए चलते हैं दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु, जहां कोयम्बटूर का एक फॉरेस्ट कॉलेज इन दिनों अपनी अनोखी पहल को लेकर चर्चा में है। यहां कैंपस के दीवारों को जंगल, जंगली जानवरों और दुर्लभ वनस्पतियों की आकर्षक पेंटिंग से सजाया गया है। इन रंग बिरंगी कलाकृतियों में प्रकृति की खूबसूरती के साथ साथ जैव विविधता संरक्षण का संदेश भी छिपा है। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि सातवीं और आखिरी गुड न्यूज है, रंगों के जरिए पर्यावरण संरक्षण का संदेश। तो आपको बता दें कि फॉरेस्ट कॉलेज के कैंपस में आने वाले छात्र, शोधार्थी और पर्यटक इन चित्रों को देखने के लिए रुकते हैं और इनके साथ तस्वीरें भी खिंचवाते हैं। कॉलेज का मकसद कला के माध्यम से लोगों में पर्यावरण और वन संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है, और यही वजह है कि फॉरेस्ट कैंपस अब शिक्षा के साथ साथ कला और प्रकृति प्रेम का भी एक अनूठा केंद्र बन गया है। इसी के साथ 7 बजे 7 गुड न्यूज में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छा।
8: Hey there, it's Stormy Warren, and on my podcast called The Stormy Cast, I talk to artists like Luke Bryan, Tim McGraw, and Miranda Lambert about their journey from their hometowns to their first big break in Nashville. Thomas Rhett called his episode of The Stormy Cast the best therapy session he's ever had. And during my conversation with Little Big Town, he needed tissues, and a lot of them. Yeah, the conversations go that deep. You'll find The Stormy Cast wherever you listen to your favorite podcasts, in the TuneIn app or at TuneIn.com.
9: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
10: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
9: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
11: गुड न्यूज टुडे।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
9: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
10: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
9: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
11: गुड न्यूज टुडे।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे। अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
9: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
10: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
9: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
11: गुड न्यूज टुडे।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: Hey, it's Billy Bush. Tune into my show, Hot Mics, Monday to Thursday at noon Eastern, 9 a.m. Pacific for the latest in politics, entertainment, tech, sports, pop culture, and much more. Just tell your device to play Hot Mics on TuneIn to listen.
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
8: ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
1: भारत और इंग्लैंड के बीच थोड़ी देर में शुरू होगा पहला T20 मुकाबला, प्लेइंग 11 में होगी सबकी निगाहें। वैभव के डेब्यू पर फीजी ज्यादा, डेब्यू पर फैंस को बेसब्री से इंतजार। आर्थिक मोर्चे पर देश के लिए गुड न्यूज, जून में 1.94 लाख करोड़ GST कलेक्शन, पिछले साल के 14% ज्यादा इम्पोर्ट से होने वाली कमाई बढ़ी। मॉनसून के चलते केदारनाथ के लिए संचालित हेली सेवाओं पर 5 जुलाई तक लगी रोक, केदारनाथ धाम के लिए 8 हेली सेवाएं हो रही थी संचालित। पहाड़ों पर मॉनसून का दिखने लगा असर, रुद्रप्रयाग में लगातार हो रही बारिश से अलकनंदा नदी का बढ़ा जलस्तर, नदी के किनारे बनी भगवान शिव की मूर्ति तक पहुंचा पानी। बद्रीनाथ में भगवान विष्णु के भक्तों ने अब तक के सारे रिकॉर्ड किए, 14 लाख से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किए, हर रोज 15,000 से 20,000 श्रद्धालु कर रहे दर्शन। केंद्रीय कैबिनेट की दिल्ली और यूपी को 14,000 करोड़ से ज्यादा की सड़क परियोजनाओं की मंजूरी, दिल्ली से द्वारका एक्सप्रेसवे को बसंत कुंज से जोड़ेगी 6 लेन वाली टनल, वही कानपुर से करबई के बीच बनेगा एक्सप्रेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड हाईवे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ला।
1: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा, फैक्ट चेक में आपका स्वागत है। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां, झूठे दावे बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है तो कभी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर पेश किया जाता है। लोग बिना जांचे पर खेने सच मान लेते हैं क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं है। हर किसी के हाथ में कैमरा है, हर घटना हर तस्वीर कुछ ही सेकेंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाती है, लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नहीं बताकर लगे लोग बिना जांच समझे इन्हें सच मान लेते हैं। तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नहीं बताकर पेश की जाती है, किसी वीडियो को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है ताकि कहानी असलियत से कोसों दूर लगे। लोग बिना जांच समझे इन्हें सच मान लेते हैं, उन्हें लगातार शेयर करते हैं, लेकिन फैक्ट चेक के जरिए हम हर तस्वीर हर वीडियो की पड़ताल करते हैं। हर तस्वीर और हर वीडियो के पीछे की सच्चाई आप तक लेकर आते ताकि आपको सही और सटीक जानकारी मिले। तो फैक्ट चेक में आज जिन दो खबरों की पड़ताल हम करेंगे उसमें सबसे पहले सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो की बात होगी जिसके जरिए दावा यह किया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में गौ रक्षकों को उम्र कैद की सजा सुनाए जाने के विरोध में हुए वकीलों के प्रदर्शन का वीडियो है। सच्चाई क्या है आगे जानिए। हमारी अगली खबर उस वायरल वीडियो से जुड़ी होगी जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि बिल्डिंग ढहने का ये वीडियो वेनेजुएला में आए हालिया भूकंप से संबंधित है। अब इस दावे की सच्चाई क्या है आगे पड़ताल करेंगे। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
6: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़। और
1: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो को शेयर करते हुए कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में गौरक्षकों को उम्र कैद की सजा सुनाए जाने के विरोध में हुए वकीलों के प्रदर्शन का वीडियो है। वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है पड़ताल करती रिपोर्ट।

0: किसी बड़ी सी इमारत के परिसर में इकट्ठा सैकड़ों वकीलों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर यह कहते हुए शेयर किया जा रहा है कि इन लोगों ने मध्य प्रदेश में गौ रक्षकों को आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने के विरोध में प्रदर्शन किया। दरअसल नर्मदापुर मध्य प्रदेश के सेशन कोर्ट ने 12 जून को 14 गौ रक्षकों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी और इसके बाद से ही देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। इसी संदर्भ में वकीलों वाला वीडियो भी वायरल हो रहा है। एक थ्रेड्स यूजर ने इसे शेयर करते हुए लिखा है, धन्यवाद आपको देश की न्यायपालिका, 5000 वकीलों ने 14 गौ सेवकों को दिया समर्थन, जल्द जमानत होगी। कुछ लोग तो इस वीडियो को शेयर करते हुए यहां तक दावा कर रहे हैं कि गौ रक्षकों के समर्थन में 5000 वकीलों ने प्रदर्शन किया। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में गौ रक्षकों को उम्र कैद की सजा सुनाए जाने के बाद वकीलों के प्रदर्शन का वीडियो है और वीडियो में किसी बड़ी सी इमारत के परिसर में सैकड़ों वकीलों को इकट्ठा देखा भी जा सकता है। साथ ही साथ इस दौरान कुछ वकीलों को वीडियो रिकॉर्ड करते हुए भी देखा गया। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। ऐसे में इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमारा ध्यान वीडियो में नजर आ रही बिल्डिंग पर गया। जब हमने इसे गौर से देखा और फिर इस इमारत के बारे में सर्च किया तो यह जानकारी सामने आई कि बिल्डिंग लखनऊ हाईकोर्ट की है। इसके बाद फैक्ट चेक टीम ने यह जानने की भी कोशिश की कि क्या लखनऊ में वकीलों ने गौर रक्षकों को उम्र कैद सुनाए जाने के को लेकर कोई प्रदर्शन किया है, लेकिन सर्च के दौरान ऐसी कोई प्रमाणिक रिपोर्ट नहीं मिले जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके। क्योंकि अगर वाकई ऐसा हुआ होता तो ये कहीं ना कहीं खबर जरूर बनती, किसी मीडिया आउटलेट्स में भी जरूर यह आती। लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा। हमारा पहला सवाल यही था कि क्या लखनऊ हाईकोर्ट में सैकड़ों वकील जमा हुए तो क्यों हुए। दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा। सच और झूठ क्या है इस रिपोर्ट में जानिए। इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वीडियो की जांच में जुटी। वायरल वीडियो को गौ रक्षकों से जुड़ा प्रदर्शन बताने वाले एक पोस्ट में हमें एक इंस्टाग्राम अकाउंट के हैंडल का वॉटरमार्क दिखा। इस जानकारी की मदद से सर्च करने पर हमें पता चला कि इस हैंडल से वायरल वीडियो 25 मई को शेयर किया गया था। इस पोस्ट में वीडियो की लोकेशन लखनऊ हाईकोर्ट बताई गई थी। सर्च के दौरान यह भी जानकारी सामने आई कि वीडियो लखनऊ हाईकोर्ट गोमती नगर का है और बार काउंसिल ऑफ यूपी के चुनाव से संबंधित है। ये वीडियो मार्च 2026 में बनाया गया। वीडियो में कुछ लोग नंबरों वाली तख्तियां पकड़े नजर आ रहे हैं। ये वो नंबर्स हैं जो प्रत्याशियों को अलॉट किए जाते हैं। लखनऊ हाईकोर्ट में हाल फिलहाल में गौ रक्षकों के मामले को लेकर वकीलों का कोई प्रदर्शन नहीं हुआ। साफ है कि लखनऊ का एक पुराना वीडियो अब मध्य प्रदेश के गौ रक्षकों को मिली सजा के विरोध में हो रहे प्रदर्शन का बताकर शेयर किया जा रहा है। ज्योति द्विवेदी के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा यह कर रहे हैं कि बिल्डिंग ढहने का यह वीडियो है वेनेजुएला में आए हालिया भूकंप का। वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती रिपोर्ट।
2: हाल ही में वेनेजुएला की राजधानी कराकास में कुछ ही सेकंड्स के अंतराल पर दो बड़े भूकंप आए। पहला भूकंप 7.2 तीव्रता का था और दूसरा 7.5 तीव्रता का था। वेनेजुएला प्रशासन के अनुसार इस भूकंप में कई लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 700 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार ये साल 1900 से लेकर अब तक का सबसे भीषण भूकंप है। इन सब के बीच सोशल मीडिया पर बिल्डिंग ढहने का ये वीडियो इस दावे के साथ शेयर किया जा रहा है कि ये वेनेजुएला में आए हालिया भूकंप का दृश्य है। वायरल वीडियो करीब 9 सेकंड्स का है जिसमें एक बहुमंजिला इमारत ताश के पत्तों की तरह ढहती हुई नजर आई। इस दौरान यहां मौजूद लोग भागते हुए भी नजर आ रहे हैं। एक एक्स यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि 126 साल में सबसे खतरनाक भूकंप, वेनेजुएला के भूकंप में कम से कम 10,000 की मौत। यूएसजीएस का चौंकाने वाला दावा। वेनेजुएला के भूकंप में कम से कम 10,000 लोगों की मौत की खबर निकलकर सामने आई है। यूएसजीएस का चौंकाने वाला दावा किया गया है। कराकास एयरपोर्ट भी इस भूकंप से तबाह हो गया है। वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानने बगैर लोग इस वीडियो को धड़ल्ले से शेयर कर रहे हैं।
1: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में एक बहुमंजिला इमारत ताश के पत्तों की तरह ढहती हुई नजर आ रही है। इस दौरान वहां मौजूद लोग भागते हुए दिख रहे हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है और यूजर्स इसे वेनेजुएला में आए हालिया भूकंप का बता रहे हैं। ऐसे में इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो फैक्ट चेक टीम ने वायरल वीडियो की पड़ताल शुरू की। वेनेजुएला में पिछले हफ्ते आए दो भूकंपों ने तबाही का ऐसा मंजर पैदा किया जिसकी कल्पना वाकई डरावनी वाली है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी के सैटेलाइट डेटा पर आधारित एक शुरुआती आंकलन से पता चलता है कि प्राकृतिक आपदा में देश की 58,000 से ज्यादा इमारतें पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो गई, उन्हें भारी नुकसान पहुंचा। सदी के सबसे भीषण भूकंप ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। ऐसे में वायरल हो रहे इस वीडियो की जांच करना जरूरी हो गया था। दावे की सच्चाई जानने के लिए सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो को हमने गौर से देखा और सुना। इस दौरान हमारा ध्यान वीडियो में आ रही कुछ आवाजों पर गया। हमने इसे गौर से सुना। बैकग्राउंड में जो आवाजें आ रही हैं वो स्पेनिश या फिर अंग्रेजी नहीं है, ये कोई और ही भाषा है, क्योंकि अगर वेनेजुएला का ये वीडियो होता तो फिर जाहिर सी बात है वहां स्पेनिश या फिर अंग्रेजी सुनाई देती, लेकिन यहां पर कोई और भाषा सुनने को मिल रही। मतलब ये कि वायरल वीडियो कहीं और का हो सकता है। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई विश्वसनीय रिपोर्ट भी नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके, लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा। पहला सवाल यही कि वायरल हो रहा वीडियो कब का है और कहां का है। हमारा अगला सवाल कि कहीं जानबूझकर किसी पुराने वीडियो को हालिया वेनेजुएला भूकंप से जोड़कर वायरल तो नहीं किया जा रहा, सच और झूठ क्या है इस रिपोर्ट में जानिए।
2: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक की टीम वीडियो की जांच में जुटी। सबसे पहले हमने वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को गौर से देखा, सर्च किया। इस दौरान हमें ये वीडियो एक अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी के यूट्यूब अकाउंट से 6 फरवरी 2023 को अपलोड किया गया मिला। वीडियो के साथ मौजूद कैप्शन के अनुसार तुर्की के सान डियोर्फा प्रांत के हालिलियो जिले में आए 7.8 तीव्रता के भीषण भूकंप के बाद एक इमारत ढह गई थी और इसका दृश्य स्थानीय टीवी के जारी किए गए वीडियो फुटेज में भी दिखाई दिया। इसके अलावा हमें एक आधिकारिक वेबसाइट पर भी 6 फरवरी 2023 को अपलोड किया गया ये वीडियो मिला, जिसमें इसे 2023 में तुर्की में आए भूकंप के दौरान हालिलिये जिले में बिल्डिंग ढहने का बताया गया था। जांच में हमें इसी घटना का दूसरा एंगल से लिया गया वीडियो एक पत्रकार के एक्स अकाउंट से भी 6 फरवरी 2023 को अपलोड किया गया मिला। साथ ही इसी पोस्ट के रिप्लाई सेक्शन में वायरल वीडियो भी मौजूद था। दरअसल 6 फरवरी 2023 को दक्षिणी तुर्की में 9 घंटे के भीतर 7.7 और 7.6 तीव्रता के दो बड़े भूकंप आए, जिसके बाद 20 फरवरी को एक और भयंकर झटका महसूस किया गया था। इस आपदा में कई लोगों की मौत हो गई थी। हमारी जांच में मिले साक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि वेनेजुएला में आए हालिया भूकंप का बताकर वायरल हो रहा ये वीडियो असल में 3 साल पहले तुर्की में आए भूकंप का है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: फैक्ट चेक में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के उस पर आपको ले चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे तमाम ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
1: दिल्ली में आने वाली है बारिश, दिल्ली एनसीआर में 3 दिन दूर मॉनसून, भारत का अपना जासूसी गुब्बारा, 3-स्टार रेफरी मंजू नायाल का कमाल, देखिए अच्छी खबर सच्ची खबर रात 8 बजे।
4: Need a good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you non-stop stand-up bits by the best comics in the game. From all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today.
5: खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला
1: है। फैक्ट चेक के आखिरी सफर का, जहां आपको दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हैं।
2: सोशल मीडिया पर एक बहुत क्यूट और दिल छू लेने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें ट्रेन में टिकट चेकिंग के दौरान एक टीटीई और नन्ही बच्ची के बीच मजेदार बातचीत देखने को मिल रही है।
10: टिकट किधर है? टिकट नहीं है। आओ पैसा दीजिए, पर्ची लिखना, पैसा दो।
2: वीडियो में टीटीई जब बच्ची से टिकट मांगता है तो वो अपने मासूम अंदाज में टिकट दिखाने से साफ मना कर देती है।
10: टिकट नहीं है ना? हाँ पैसा है, पूछो पापा मां को, पूछो पैसा।
2: इसके बाद टीटी मजाक में पैसे मांगता है, जिस पर बच्ची के बेबाक और प्यारे जवाब सुनकर आसपास बैठे यात्री भी मुस्कुराने लगते हैं। बच्ची की मासूमियत, आत्मविश्वास और चुलबुले अंदाज ने लाखों लोगों का दिल जीत दिया है।
10: आपको पापा का नाम क्या? मम्मा का नाम? आपका नाम?
2: इस वीडियो को बार बार देख रहे हैं और कमेंट्स में बच्ची की खूब तारीफ भी कर रहे हैं।
10: टिकट नहीं है। आओ पैसा दीजिए, पर्ची लिखना, पैसा दो। पैसा दे। हाँ पैसा, वो पर्ची लिखता हूँ मैंने। टिकट नहीं है ना? हाँ पैसा है, पूछो पापा माँ को, पूछो पैसा, पूछो पैसा, पूछो पर्ची लिखने के लिए।
11: पैसे देने?
10: टिकट नहीं है इनको।
11: टिकट नहीं है?
10: टिकट नहीं है। 10 रुपए, 10 रुपए दीजिए।
2: भाई बहन के प्यार से जुड़ा ये प्यारा सा वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रहा है। वीडियो में एक छोटी बच्ची अपने भाई के साथ हल्की फुल्की नोकझोंक करती हुई नजर आ रही है, लेकिन कुछ ही क्षण बाद वो अचानक उसकी ओर दौड़ती है और उसे प्यार से गले लगा लेती है। नन्ही बच्ची की इस मासूम और स्नेह भरे हाव भाव ने पल भर में माहौल को बदल दिया और दोनों के बीच का प्यार साफ झलकने लगा। ये भावुक दृश्य इंटरनेट पर लोगों को खूब पसंद आ रहा है और कई यूजर्स इसे भाई बहन के अटूट रिश्ते की खूबसूरत मिसाल भी बता रहे हैं। वीडियो को देखने के बाद लोग बच्ची की भावनात्मक समझ और उसके मासूम दिल की जमकर सराहना कर रहे हैं। कई लोगों का मानना है कि प्यार और अपनापन छोटी मोटी नाराजगी को भी आसानी से दूर कर सकते हैं। वीडियो इतना क्यूट है कि लोग इसे एक बार नहीं बल्कि बार बार देख रहे हैं। यही वजह है कि ये क्लिप सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है और यूजर्स इसके दीवाने बने हुए हैं। वीडियो में एक बहुत प्यारी और छोटी सी बच्ची दिखाई दे रही है। वो बड़े ही आत्मविश्वास के साथ टैं टैं टू टू टी टी गा रही है।

0: उसकी तोतली आवाज और उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस इतने ज्यादा मजेदार हैं कि कोई भी शख्स अपना तनाव भूल सकता है। बच्ची जिस तरह से अपनी आंखों को घुमाकर और चेहरे पर अलग अलग भाव लाकर गा रही है, ये इसके क्यूट एक्सप्रेशंस ही हैं जो इस वीडियो को इतना खास बना रहे हैं। जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स खासकर इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अपलोड हुआ, लोगों ने इसे हाथों हाथ लिया। वीडियो पर लाखों की संख्या में व्यूज और लाइक्स आ चुके हैं। लोग कमेंट्स में बच्ची की मासूमियत की खूब तारीफ कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक बच्चे और पुलिस डॉग की ये प्यारी मुलाकात लोगों का दिल जीत रही है। वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक मासूम बच्चा पुलिस K9 डॉग के पास पहुंचा तो किसी ने नहीं सोचा था कि इतना प्यारा पल देखने को मिल जाएगा। बच्चे की मासूम मुस्कान और कुत्ते की दोस्ताना प्रतिक्रिया ने वहां मौजूद सभी लोगों का दिल जीत लिया। ये वीडियो हमें याद दिलाता है कि प्यार, भरोसा और दोस्ती की कोई भाषा नहीं होती। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो छाया हुआ है जिसे देखकर लोग हैरान भी हैं और थोड़े डरे हुए भी हैं। दरअसल जिस खतरनाक जीप को देखकर बड़े बड़ों के पसीने छूट जाते हैं, एक छोटा सा बच्चा उसके साथ बड़े आराम से डॉक्टर खेलता हुआ नजर आ रहा है। ये जीप कोई पालतू कुत्ता या बिल्ली नहीं बल्कि मगरमच्छ है। बच्चे की इस निडरता को देखते हुए नेटिजंस दांतों तले उंगलियां दबा रहे हैं। ये हैरान कर देने वाला वीडियो कोलंबिया का बताया जा रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक छोटा सा बच्चा जमीन पर बैठे मगरमच्छ के पास बिल्कुल बेखौफ होकर बैठा है। बच्चा खुद को डॉक्टर समझकर उस जंगली जीव का इलाज करने का नाटक कर रहा है। वो कभी उसके शरीर को सहलाता है तो कभी उससे इंसानों की तरह बातें करने लग जाता है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि वो खतरनाक जीव भी पूरी तरह शांत लेटा हुआ है। उसने बच्चे को नुकसान पहुंचाने की एक भी कोशिश नहीं की, मानो वो सचमुच अपना इलाज करवा रहा हो। एक छात्र एग्जाम टाइम में मोबाइल से चीटिंग करते हुए पकड़ा जाता है। इसके बाद वो जो करता है उससे पूरे क्लासरूम में मौजूद बाकी छात्रों की भी पोल खुल जाती है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एग्जाम चल रहा होता है, इसी दौरान एक स्टूडेंट मोबाइल में चीटिंग करते हुए पकड़ा जाता है। टीचर उसका मोबाइल अपने कब्जे में ले लेती है और उसे क्लासरूम से बाहर जाने के लिए कहती है। जैसे ही टीचर छात्र को लेकर क्लास से बाहर निकलने लगती है, तभी छात्र अचानक क्लासरूम की सभी लाइटें बंद कर देता है। कमरे में अंधेरा हो जाता है। एक ऐसा नजारा दिखाई देता है जिसने सभी को चौंका दिया। अंधेरे में कई छात्रों के मोबाइल फोन की स्क्रीन चमकने लगती है, जिसे पता चल जाता है कि क्लास में मौजूद कई दूसरे छात्र भी मोबाइल की मदद से नकल कर रहे थे। इसकी वजह से पूरे क्लासरूम में चीटिंग कर रहे बाकी छात्रों की भी पोल खुल जाती है और यहीं वीडियो भी खत्म हो जाता है। पहाड़ों में घूमने के दौरान एक भारतीय शख्स ने अपनी चलती कार से प्लास्टिक की खाली बोतल को फेंक दिया। कार के पीछे बाइक पर चल रहे एक विदेशी पर्यटक को देश की इस खूबसूरत प्रकृति का ऐसा अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने तुरंत वो बोतल उठाई और कार सवार के पास जाकर बोतल वापस उसकी कार के अंदर फेंकते हुए उसे जमकर फटकार लगाई। वीडियो में साफ दिख रहा है कि विदेशी पर्यटक पहाड़ों की खूबसूरत इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचता देख बहुत गुस्से में था। उसने ठान लिया था वो इस लापरवाही को बिना टोके नहीं जाने देगा। इस वीडियो को यूजर्स बार बार देख रहे हैं, युवक के सिविक सेंस पर सवाल उठा रहे हैं। आमतौर पर जब कोई जानवर बाघ को सामने से देखता है तो वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसने लोगों को हैरान कर दिया। इस वीडियो में एक साधारण गाय बाघ के सामने डटकर खड़ी हो जाती है। इतना ही नहीं, गाय का हौसला देखकर खुद टाइगर को पीछे हटना पड़ता है। वीडियो देखने के बाद लोग यही कह रहे हैं कि शायद ऐसा नजारा पहले कभी देखने को नहीं मिला होगा। इंटरनेट पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग गाय की बहादुरी की जमकर तारीफ कर रहे हैं।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़। और
2: क्या सुगंध के प्रयोग से साधना पूजा बेहतर हो जाती है? क्या सुगंध का प्रयोग करने से मन की चिंताएं दूर हो जाती हैं? क्या है सुगंध का महत्व और क्या है सुगंध के चमत्कारी प्रयोग, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
3: Every city has hidden stories. The building you pass every day. the park where history was made, the person no one remembers who changed everything. Audio brings those stories to life, and now we're on TuneIn. Explore 15 unique cities. Discover what you've been missing. Audio, now on TuneIn. Search Audio on TuneIn to start exploring.
4: समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर,
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा।
2: अच्छी खबर में किंतु की गुंजाइश न रह जाए और बुरी खबर से परंतु सच्चाई ढूंढ कर लाए, ऐसी अच्छी और सच्ची खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं नवजोत संधावा। एक ऐसा शो जहां दिन की बड़ी खबर हम आपको आसान शब्दों में पॉइंट बाय पॉइंट समझाएंगे, यानी बड़ी खबर का सच्चा और अच्छा विश्लेषण। अच्छी और सच्ची खबरों में आज सबसे पहले बात होगी तपती दिल्ली के लिए मॉनसून वाली गुड न्यूज की, क्योंकि मौसम विभाग का कहना है कि बस 3 दिन का इंतजार और फिर बरसेंगे बदरा। देश की सुरक्षा के लिए मिलेगी स्वदेशी एरोस्टेट की निगरानी, देखिए भारत का अपना जासूसी गुब्बारा, और मिले अंतर्राष्ट्रीय मुकाम हासिल करने वाली 3-स्टार रेफरी मंजू नायल से, कैसे वो बनी सबके लिए प्रेरणा, आगे जानिए शुरुआत हेडलाइंस के साथ।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
4: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
2: भारत और इंग्लैंड के बीच थोड़ी देर में शुरू होगा पहला T20 मुकाबला। प्लेइंग 11 पर होंगी सबकी निगाहें, वैभव के डेब्यू का फैंस को बेसब्री से इंतजार। आर्थिक मोर्चे पर देश के लिए गुड न्यूज, जून में 1.94 लाख करोड़ GST कलेक्शन, पिछले साल के 14% ज्यादा इंपोर्ट से होने वाली कमाई बढ़ी। पहाड़ों पर मॉनसून का दिखने लगा असर, रुद्रप्रयाग में लगातार हो रही बारिश से अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ा, नदी के किनारे बनी भगवान शिव की मूर्ति तक पहुंचा पानी। बद्रीनाथ में भगवान विष्णु के भक्तों ने अब तक के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त किए, 14 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन, हर रोज 15,000 से 20,000 श्रद्धालु कर रहे हैं दर्शन। केंद्रीय कैबिनेट की दिल्ली और यूपी को 14,000 करोड़ से ज्यादा के सड़क परियोजनाओं को मंजूरी, दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ेगी 6 लेन वाली टनल, वहीं कानपुर से करबई के बीच बनेगा एक्सेस कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड हाईवे। अच्छी और सच्ची खबरों में सबसे पहले मॉनसून वाली गुड न्यूज आपको दे देते हैं। दरअसल अपडेट ये है कि बारिश जल्दी दिल्ली NCR को तरबतर करने वाली है। मॉनसून की तेज होती रफ्तार ने करोड़ों लोगों के चेहरे पर राहत की मुस्कान ला दी है। कई दिनों से भीषण गर्मी और उमस तपती धूप का सामना लोग कर रहे हैं, लेकिन अब खबर अच्छी है। गुड न्यूज ये है कि मॉनसून अब तेजी से उत्तर भारत की ओर बढ़ रहा है और राजधानी दिल्ली में इसकी एंट्री जल्द होने वाली है। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल और जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए मौसम पूरी तरह से अनुकूल बना हुआ है, यानी अब ज्यादा इंतजार नहीं है और जल्दी ही बारिश की बौछार गर्मी का असर कम करेगी, मौसम को खुशनुमा बनाएगी और लोगों को उमस और लू से राहत दिलाएगी।

0: दिल्ली NCR के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। कई दिनों से उमस और तेज गर्मी झेल रहे लोगों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। मौसम विभाग के ताजा अनुमान के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून 3 या 4 जुलाई तक दिल्ली पहुंच सकता है। इसके साथ ही राजधानी में हल्की से मध्यम बारिश का दौर शुरू होने की संभावना है, जिससे तापमान में गिरावट आएगी और गर्मी से बड़ी राहत मिलेगी।
1: आने वाले दिनों की अगर NCR दिल्ली की बात करें तो आने वाले 2 दिनों में हमारा अनुमान है, जो पंजाब के ज्यादातर हिस्से बचे हुए हैं उसमें से कवर होने का अनुमान है। NCR दिल्ली कवर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के ज्यादातर हिस्से कवर हो जाएंगे और इसके साथ ही अगर वेस्ट कोस्ट की बात करें तो गुजरात के भी ज्यादातर हिस्से कवर होने का अनुमान है और साउथ ईस्ट राजस्थान भी कवर होने का अनुमान है, जो तो हमारा फोरकास्ट है। उसके बाद एक अच्छी न्यूज़ ये है कि अभी पूरा मानसून एक्टिव फेज में है, ऑलमोस्ट पूरा वीक जितना भी कोर जोन है वहाँ अच्छी खासी रेनफॉल एक्टिविटी होती रहेगी। उसका रीज़न क्या है कि एक जहाँ सर्कुलेशंस हैं, अगर आप सैटेलाइट पिक्चर्स देखेंगे सैटेलाइट्स में आपको पूरा क्लाउड्स दिखाई दे रहा है इधर से लेके नीचे से, ये पूरा क्लाउड्स है।
0: आमतौर पर दिल्ली में मानसून 27 जून के आसपास पहुंच जाता है, लेकिन इस बार इसकी रफ्तार थोड़ी धीमी रही। हालांकि अब मौसम की परिस्थितियां तेजी से मानसून के पक्ष में बन रही हैं। IMD का कहना है कि अगले कुछ दिनों में मानसून दिल्ली समेत उत्तर भारत के बड़े हिस्से को कवर कर लेगा। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों में मानसून के मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली तक आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश का भी अनुमान है।
1: अगर आप आने वाले दिनों की बात करें तो हमारा 5 दिनों का अनुमान है कोंकण, गोवा, साउथ गुजरात, वहाँ पे एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल एक्टिविटी होगी। उसके लिए हमारा रेड अलर्ट है और जो साउथ वेस्ट MP के रीजन है वहाँ भी वेरी हैवी रेनफॉल रहेगा 2 दिन। उसके बाद सब्सिक्वेंट 1-2 दिन वहाँ भी 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल हो सकती है और बाकी हिस्सों में जितना हो गया छत्तीसगढ़, उड़ीसा में भी ऑलमोस्ट 5-6 दिन वेरी हैवी रेनफॉल होने का अनुमान है। अगर आप नेट शेल में बात करें तो पूरा का पूरा जो जोन है वो एक्टिव मानसून फेज में रहेगा।
0: IMD के अनुसार इस समय मानसून टर्फ यानी कम दबाव की रेखा पंजाब से लेकर उत्तर बंगाल की खाड़ी तक फैली हुई है। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक चक्रवाती हवा का घेरा बना हुआ है। इसके असर से एक कम दबाव का क्षेत्र बनेगा जो पश्चिम की ओर बढ़ेगा। इससे बिहार से लेकर उत्तर पंजाब तक के इलाकों में अच्छी बारिश होने की उम्मीद है।
2: पूरे इस मैप को देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि हर तरीके का अलर्ट जो है वो दे रखा है। सबसे ज्यादा आपको जो है सेंट्रल इंडिया में आपको जो है ऑरेंज अलर्ट दिखेगा क्योंकि लगातार बारिश जो है वहां पर वो देखी जा रही है और इसके साथ ही आपको गुजरात, कोंकण, गोवा में जो है बारिश का रेड अलर्ट जो है मौसम विभाग द्वारा जो है वो जारी किया गया है। तो आने वाले एक हफ्ता में जो है मौसम पूरी तरीके से बदलता हुआ आपको नजर आएगा। जिस जो दक्षिणी पश्चिम से जो मानसून की जो शुरुआत हुई केरल से आगे बढ़ते बढ़ते अब पूरे भारत की तरफ जो है वो कवर होती हुई नजर आ रही है।
0: राजस्थान की बात करें तो इस साल यहां 8 दिन की देरी से मानसून की एंट्री के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटे में मानसून प्रदेश के पूर्वी हिस्से से प्रवेश कर सकता है।
3: राजस्थान में इस बार मानसून 8 दिन की देरी के बाद अगले 24 से 48 घंटों के बीच में एंटर कर चुका होगा और ये जो मानसून है ये 13 साल बाद तीसरी बार जुलाई के महीने में एंटर करेगा और दावा ये किया जा रहा है कि ये जो 24 से 48 घंटे हैं इसमें ये मानसून कोटा, बारा और उदयपुर संभाग से एंटर करेगा जिसकी वजह से वहां पे भारी बारिश हो सकती है। वहीं ये जो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई है ये खत्म होते होते मानसून पूरे राजस्थान को कवर कर लेगा जिसकी वजह से आने वाले 3 से 4 दिन जगह जगह पे भारी बारिश के अलर्ट है।
0: इस बीच मुंबई सहित देश के अलग अलग हिस्सों से बारिश की अच्छी तस्वीरें आ रही हैं। यहाँ पिछले 2 दिनों में लगातार बारिश हो रही है। देहरादून में भी राहत की बौछार ने लोगों को तर किया है। जम्मू कश्मीर के डोडा में भी भारी बारिश हुई है। चंडीगढ़ में भी बादल जमकर बरसे हैं।
4: चंडीगढ़ में मौसम ने करवट ली है। पिछले काफी दिनों से लगातार जो है हीट वेव चल रही थी, गर्मी चल रही थी काफी, लेकिन अब जो है बारिश जो है शुरू हुई है चंडीगढ़ में। ये कहा जा सकता है कि मानसून की जो पहली बरसात है और आप देख सकते हैं कि किस तरह कल से ही जो कंडीशंस थी वो ओवरकास्ट थी। हालांकि कल बारिश नहीं हुई थी लेकिन आज सुबह से बादल छाए हुए थे और यहाँ पर बारिश जो है चल रही है। और इसके अलावा पंजाब में पठानकोट में भी हमने देखा भी किस तरह काफी बारिश हुई, कांगड़ा जिला में, हिमाचल प्रदेश में बारिश हुई। सो मानसून का जिसको कह सकते हैं अराइवल जो है वो हो गया है।
0: इस साल मानसून करीब 3 दिन की देरी से 4 जून को केरल पहुंचा था। इसके बाद उसने तेजी पकड़ते हुए दक्षिण भारत के तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में अच्छी बारिश कराई। फिर पूर्वोत्तर भारत में सक्रिय होने के बाद पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार तक पहुंच गया। मानसून के पहुंचते ही राजधानी में कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। अधिकतम तापमान में 3 से 6 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है। लू का दौर पूरी तरह खत्म होने की उम्मीद है। बारिश और ठंडी हवाओं से उमस में भी धीरे धीरे कमी आएगी। हवा की गुणवत्ता में सुधार होने की संभावना है क्योंकि बारिश वातावरण में मौजूद धूल और प्रदूषण के कणों को नीचे बैठा देती है। पेड़ पौधों और नदी तालाबों को भी नई जिंदगी मिलेगी जिससे पूरे शहर का मौसम ज्यादा सुहावना महसूस होगा। अगर मौसम विभाग का अनुमान सही रहा तो 3 या 4 जुलाई से दिल्ली वासियों को लंबे इंतजार के बाद आखिरकार तपती गर्मी से राहत मिलने लगेगी और राजधानी में मानसून का असली रंग दिखाई देगा। दिल्ली से मनीषा लड्डा, जयपुर से रिदम जैन और चंडीगढ़ से असीम बस्सी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: चलिए बात करते हैं भारत के अपने जासूसी गुब्बारे की। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि IIT दिल्ली की तरफ से देश में बने एक कम लागत वाले टेक्टिकल एरोस्टेट का प्रदर्शन किया गया जिसे उसने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO और स्टार्टअप के साथ मिलकर बनाया है। 200 मीटर की ऊंचाई से 20 किलोमीटर एरिया तक निगरानी करने वाले इस बलून से जरूरत पड़ने पर कम्युनिकेशन नेटवर्क भी तैयार किया जा सकता है। हर तरह के पेलोड को ले जाने में सक्षम इस सिस्टम की वजह से देश की निर्भरता अमेरिका जैसे देशों पर कम होगी जहां से अब तक इसकी सप्लाई हुआ करती थी।

0: इसे गर्म हवा से उड़ने वाला गुब्बारा मानने की भूल न करें, जो पर्यटकों को खुले आसमान में चक्कर लगवाने के काम आता है। इसमें यात्रियों के बैठने के लिए नीचे एक टोकरी या गोंडोला नहीं लगती, बल्कि हवा से हल्की गैस हीलियम भरने के बाद ये सर्विलांस यानी निगरानी में भी काम आती है। DRDO, IIT दिल्ली और एक स्टार्टअप ने मिलकर एयरोस्टेट टेक्नोलॉजी तैयार की है, वो भी पूरी तरह स्वदेशी।
1: मेरे पीछे जो आप बड़ा सा बलून देख रहे हैं, इसे एयरोस्टेट टेक्नोलॉजी बोलते हैं। इसका इस्तेमाल अमूमन सर्विलांस के लिए किया जाता है और आर्मी भी इसका इस्तेमाल करती है, सेना इसका इस्तेमाल करती है बॉर्डर पर सर्विलांस के लिए। लेकिन अभी ये जो बलून आप देख रहे हैं, ये बाहर के देशों से आता है, US से आता है, इसराइल से आता है। लेकिन अब IIT दिल्ली ने इसे खुद तैयार किया है, अब ये पूरी तरह से मेक इन इंडिया हो गया है। आज इसका डेमो आपको हम दिखा रहे हैं। मुश्किल काम ये था कि इसमें जो गैस भरी जाती है हीलियम को रोकने के लिए बलून का जो कंटेंट होना चाहिए, जो उसका कपड़ा होना चाहिए, टेक्सटाइल होना चाहिए, वही मेन रिसर्च का मुद्दा था। और अभी तक इसीलिए इसे बाहर के देशों से मंगाया जा रहा था, लेकिन अब IIT दिल्ली ने DRDO के साथ मिलकर इसे खुद इस्टेब्लिश कर लिया है। किस तरह से ये काम करता है, कितना फायदेमंद है, सब कुछ आपको इस स्टोरी में हम बताने वाले हैं।
0: अभी तक इस तरह के मटेरियल एयरोस्टेट या एयरशिप टेक्नोलॉजी के लिए विदेश, खासकर अमेरिका पर निर्भर रहना पड़ता था, जिसके लिए भारी कीमत भी चुकानी पड़ती थी।
2: ये एक मैंडेट था DRDO की तरफ से, हमें एक ऐसा मटेरियल डेवलप करने का जो कि एयरोस्टेट और एयरशिप की टेक्नोलॉजी में यूज होता है। अभी तक इस तरह के मटेरियल, इस तरह के एयरोस्टेट या एयरशिप्स अमेरिका सप्लाई करता था काफ़ी हाई कॉस्ट में। सो हमें DRDO ने दो प्रोजेक्ट दिए थे, उनमें से हमने ये टेक्नोलॉजी डेवलप की और ये हमने DRDO को हैंड ओवर कर दिए।
0: हालांकि स्वदेशी एयरोस्टेट टेक्नोलॉजी को तैयार करना इतना आसान काम नहीं था। गुब्बारे के लिए मटेरियल

0: के अलावा इसका इस्तेमाल दूर दराज या पहाड़ी इलाकों में 5G नेटवर्क के लिए भी किया जा सकता है। सिर्फ यही नहीं, आपदा के दौरान बचाव और राहत कार्य में भी ये काम आ सकती है। ड्रोन की तुलना में ये बिना ईंधन के लंबे समय तक हवा में तैर सकता है और अधिक वजन वाले उपकरण उठा सकता है।
1: एक तो ये बात रही कि आप डिजास्टर में इसको यूज कर सकते हैं, NDRF इसका इस्तेमाल कर सकती है, आर्मी इसका इस्तेमाल कर सकती है, आम लोगों की जिंदगी में भी क्या है कुछ राहत ला सकता है ट्रैफिक के लिहाज से?
2: सो बेसिकली डिपेंडिंग ऑन आप क्या पेलोड यूज करते हैं, इसमें वेदर फोरकास्टिंग और वेदर मॉनिटरिंग, ट्रैफिक मैनेजमेंट, क्राउड मैनेजमेंट, काउंट मॉनिटरिंग, ये सब हो सकता है। तो इस तरह के इवेंट जहाँ भीड़ काफी ज्यादा बढ़ जाती है, जहाँ
1: कुंभ का एग्जांपल ले सकते हैं।
2: एग्जैक्टली, बिल्कुल सही आपने कहा कि कुंभ के एग्जांपल में ड्रोन भी काम कर सकता है, बट ये एयरबोर्न ज्यादा देर तक रहता है, क्योंकि इसको सबसे बड़ी बात यह है ड्रोन से डिफरेंट है कि इसका जो एयरबोर्न कैपेसिटी है टाइम के हिसाब से वो काफी ज्यादा है। ड्रोन करीब 2 या 3 घंटे, ज्यादा से ज्यादा ये 24 घंटा, 48 घंटा, 72 घंटा रह सकता हुआ।
0: देश के किसी हिस्से में सीमाओं की निगरानी, दुश्मन की गतिविधियों का पता लगाने और आपदा प्रबंधन जैसे मुश्किल काम के लिए इसको महज आधे घंटे में डिप्लॉय यानी तैनात किया जा सकता है।
1: इसको डिप्लॉय करने में कितना टाइम लगेगा?
3: सर, इसको डिप्लॉय करने के लिए तो अगर आप इसको पूरा सिस्टम लेके जाते हैं तो लेस देन हाफ एन आवर में ये डिप्लॉय हो जाता है।
1: Yes. आधे घंटे से भी कम समय में?
3: आधे घंटे से कम
1: व्हीकल पर कैरी कर सकते,
3: किसी भी व्हीकल में आप कैरी कर सकते हैं। और इसको नॉट नेसेसरी कि यू नीड द पावर रिक्वायरमेंट, इफ राइट नाउ इट इज रन बाय पावर, बट वी कैन डू इट द मैकेनिकल रन भी हम बना सकते हैं, जिसमें कि किसी टाइप के पावर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, किसी टाइप के एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, जैसे कि आपको इन केस ऑफ इन मैनी हाई जो बड़ी गाड़ियां होती हैं उन उसके केस में ऐसा होता है कि आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर, प्राइमरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, फिर ये काम करता है। लेकिन इसके केस में कोई ऐसा नहीं है, दिस इज लाइक यू कैन जस्ट वाइंड अप इन वेरी स्मॉल स्पेस ऑफिस, पूरे सिस्टम को लेकर जाके आप कहीं भी डिप्लॉय कर सकते हैं, चाहे वो रेगिस्तान एरिया हो, चाहे लद्दाख का एरिया हो, चाहे सीसोर का एरिया हो।
0: खास बात है कि +60 से -80 डिग्री के तापमान तक ये बलून आसानी से काम आ सकता है। सर्विलांस बलून के तौर पर इसे इस्तेमाल करना बेहद सस्ता पड़ता है, क्योंकि इसमें हाई टेक कैमरे और रडार उपकरण लग सकते हैं जो उपग्रहों यानी सैटेलाइट की तुलना में बहुत सस्ते होने के साथ ही कम ऊंचाई पर उड़कर लंबे समय तक किसी खास इलाके पर नजर रख सकते हैं।
4: अब इसके 2 तरीके के मैनिफेस्टेशन होते हैं। एक, हम ऑन बोर्ड इन फ्लाइट कंप्यूटिंग जिसे एज AI बोलते हैं, वो मॉडल्स हमने इसमें ऑलरेडी लोड कर दिए हैं एंड इट कैन एक्टिवेट, इट सेंड्स डाउन डेटा एंड डज ऑन एज कंप्यूट फॉर डिफरेंट एप्लीकेशन। अब जैसे क्राउड मैनेजमेंट इज वन, बट सर्वेलेंस के बहुत सारे यूज केसेस हो जाते हैं, इनफिल्ट्रेशन डिटेक्शन हो गया या सस्पिशियस एक्टिविटी, सस्पिशियस जेस्चर्स डिटेक्शन हो गया, ये तो पूरा सर्वेलेंस क्राउड मैनेजमेंट साइड पे है, बट देर आर अदर सिविलियन एप्लीकेशन ऑल्सो। अब इस पर आप कम्युनिकेशन पेलोड अगर डालते हैं या रेडियो फ्रिक्वेंसी डिटेक्शन पेलोड भी हमने वैलिडेट किया है इस पे, सो हाउ डू वी डिटेक्ट सिग्नल्स विच आर सस्पिशियस अराउंड अस, राइट? इसके जो आसपास में सिग्नल्स हैं जो could be reasons for suspicious behavior. Then आपका weather monitoring हो गया, disaster control में you can put this up quickly, activate wireless communication and also हमारा कहाँ कहाँ disaster impact हुआ है to very quickly judge all of that.
0: 24-hour हवाई निगरानी, दूर संचार और रडार कवरेज के लिए एयर स्टेट बैलून का इस्तेमाल आसानी से हो सकता है। कम लागत और लंबे समय तक हवा में रहने की क्षमता के कारण ये रक्षा के साथ मौसम की जानकारी जुटाने में भी कारगर है। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: किस्मत की लकीरों से नहीं, हौसलों की उड़ान से इतिहास लिखे जाते हैं, और जब भारत की बेटियां ठान लेती हैं तो दुनिया का कोई भी मुकाम छोटा पड़ जाता है। खेल के मैदान से ऐसी ही एक अच्छी खबर आई है जो हर युवा में जोश भरती है। खिलाड़ियों के मेडल जीतने की कहानियां तो आपने बहुत सुनी होंगी, लेकिन आज कहानी उस बेटी की है जिसने देश की पहली 3-स्टार इंटरनेशनल महिला क्रैश रेफरी बनकर एक नया इतिहास रचा है। नाम है मंजू नयाल।

0: भारत की बेटियां अब सिर्फ मेडल जीतकर ही नहीं बल्कि खेलों के सबसे अहम फैसले लेने वाली कुर्सी तक पहुंचकर भी इतिहास रच रही हैं। उत्तर प्रदेश के मंजू नयाल ने ऐसी उपलब्धि हासिल की है जो आज तक देश की कोई महिला हासिल नहीं कर सकी। मंजू नयाल भारत की पहली 3-स्टार इंटरनेशनल महिला कुराश रेफरी बन गई है। ये सिर्फ उनकी व्यक्तिगत सफलता नहीं बल्कि भारतीय खेल जगत के लिए भी गर्व का पल है।
1: मैम, देश की पहली 3-स्टार रेफरी कुराश गेम में, सुनकर कैसा लग रहा है? देश की पहली महिला रेफरी।
2: सर, बहुत अच्छा लग रहा है, प्राउड मोमेंट हो रही है कि देश की पहली महिला रेफरी बनी हूँ, तो काफ़ी लोगों की विशेज भी आ रही हैं और मतलब सपोर्ट भी मिला काफ़ी, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है पहली 3-स्टार रेफरी बन के कुराश की।
0: कामयाबी का यह शिखर रातों रात नहीं मिला। मंजू नयाल का यह सफर उनकी लगातार कोशिशों का नतीजा है। साल 2023 में नयाल 1-स्टार इंटरनेशनल कुराश रेफरी बनी। इसके बाद साल 2025 में उन्होंने 2-स्टार इंटरनेशनल रेफरी का दर्जा हासिल किया और अब इसी जून महीने में उज्बेकिस्तान में आयोजित बेहद कठिन अंतर्राष्ट्रीय रेफरी परीक्षा को पास करके मंजू ने 3-स्टार का वो मुकाम हासिल किया जहाँ आज तक कोई भारतीय महिला नहीं पहुँच सकी थी।
2: पहले स्टेट रेफरी का एग्जाम दिया कुराश के अंदर, फिर नेशनल रेफरी का, फिर अब इंटरनेशनल रेफरी में, तो फिर वही, फिर 1-स्टार, 2-स्टार, अब मैं 3-स्टार हो गई हूँ। तो ये बिग अचीवमेंट्स हैं इंडिया के अंदर। मैं अभी तक 3-स्टार रेफरी कोई वुमेन नहीं थी, 1st रेफरी मैं बनी हूँ इस बार, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है इस चीज के लिए।
0: आपको बता दें कि कुराश मध्य एशिया से जुड़ी एक प्राचीन और बेहद लोकप्रिय कुश्ती शैली है। कुराश आज दुनिया भर में लोकप्रिय हो चुका है। इसकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये 130 से अधिक देशों में खेला जाता है। कुराश की शुरुआत 3500 साल पहले उज्बेकिस्तान में हुई थी। इस खेल में दो खिलाड़ी एक दूसरे को पकड़कर पीठ के बल जमीन पर गिराने की कोशिश करते हैं। इसे 2018 के एशियाई खेलों में भी शामिल किया गया था जहां भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पदक जीते थे। मंजू नयाल ने अपने खेल करियर की शुरुआत जूडो से की थी लेकिन वक्त के साथ कुराश के प्रति उनकी दिलचस्पी बढ़ती गई और फिर उन्होंने खुद को पूरी तरह इसी खेल के लिए समर्पित कर दिया।
2: वैसे मैं जूडो में भी नेशनल रेफरी हूँ थी, तो वहाँ पर हमारे सर थे रवि कपूर सर, जो दिल्ली के जनरल सेक्रेटरी थे, तब उन्होंने स्विच करा कुराश के अंदर, तो अब उनका साथ था, उन्हें जानते थे दिल्ली के अंदर, बाकी को नहीं इतना हमारा वो था, जब उन्होंने स्विच करा तो उनके साथ साथ हमने कुराश में भी स्विच कर लिया था उन्हीं के उससे।
0: मंजू नयाल फिलहाल गाजियाबाद में गुरुकुल द स्कूल की शारीरिक शिक्षा विभाग की कोऑर्डिनेटर है और कई बड़े अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में रेफरी की भूमिका निभा चुकी है।
2: अभी तक मैं नोमैड्स गेम कजाकिस्तान में मैंने 2024 में एज ए रेफरी की भूमिका निभाई, फिर चिल्ड्रन एशियन गेम में युकोत्सव रशिया में 2024 में मैं ऑफिशिएटिंग करी वहाँ पर, 3rd एशियन यूथ बहरीन में भी मैं एज ए ऑफिशियल गई, उसके बाद अभी हमारा करंट जापान में ट्रायल इवेंट हुए थे उसके अंदर भी मैंने एज ए ऑफिशियल की भूमिका निभाई।
1: इस गेम का रेफरी होना है, किसी भी गेम का रेफरी होना, आपके हिसाब से कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, खासकर तब जब आप एक इंटरनेशनल स्टेज पर अपने देश को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं?
2: बहुत प्रेशर होता है, सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है, क्योंकि अगर आप दो कंट्री की बाउट करा रहे हो, उन दो कंट्रियों के बीच में उन दो कंट्रियों का रेफरी नहीं होता, तीसरी कंट्री का रेफरी होता है, तो वहाँ पे जजमेंट देना बहुत वो रहता है, बड़े दिमाग से देखना पड़ता है, एक एक जेस्चर देखना पड़ता है, कैसी लैंडिंग हुई है, किस पे हुई है, प्लेयर किस एरिया में जा रहा है, ये सारी चीज़ें हमें बहुत ध्यान से देखनी पड़ती है।
0: मंजू नयाल का लक्ष्य अब इसी साल सितंबर में होने जा रहे एशियन गेम्स में रेफरी के तौर पर भारत का प्रतिनिधित्व करने का है।
2: एशियन गेम्स जो अब सितंबर में होने वाले हैं 22 से, उसमें अभी हम दिल्ली इंडिया से गए थे और वहाँ ट्रायल इवेंट्स देखने गए थे कि क्या क्या कमियाँ हैं, क्या क्या होना वाला है, तो उसका एक रन थ्रू था वहाँ पर, तो वहाँ पे मैं एज ए इंडिया से रिप्रेजेंट करा था मैंने वहाँ पर, और काफ़ी चीज़ें वहाँ मुझे सीखने को भी मिली, बहुत सारी चीज़ें देखी, क्या कमियाँ थी, क्या है, ये सारी चीज़ें हम वहाँ देख के आए हैं, और अब हम सितंबर में अगर हुआ तो सितंबर में हम वहाँ जाएंगे।
0: खेल शिक्षा रेफरी और खेल प्रबंधन के क्षेत्र में मंजू नयाल को 22 सालों से भी ज्यादा समय का लंबा अनुभव है। साल 2003 से वो लगातार जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों को तैयार करने और खेल के विकास में जुटी हैं। थ्री स्टार रेफरी बनने के बाद अब मंजू नयाल की नजरें एक नए और बड़े लक्ष्य पर टिकी है। उनका अगला मिशन इसी साल सितंबर में होने जा रहे एशियन गेम्स में रेफरी के तौर पर भारत का प्रतिनिधित्व करना और देश का तिरंगा बुलंद करना है।
1: एक मैसेज जो हाउसवाइफ्स हैं या फिर वो महिलाएं जो रुक गई हैं, जो आपकी तरह दौड़ नहीं रही क्योंकि आप कभी रुकी नहीं, उनके लिए कोई मैसेज आपकी तरफ से?
2: हाँ, मैसेज ये है कि देखो, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। छोटी छोटी उपलब्धियां जो आप हासिल करोगे तो एक दिन अपने मकाम तक पहुंच जाओगे, मगर अगर आप छोटी छोटी चीज़ों को छोड़ते चले जाओगे, नहीं इसने ऐसे बोल दिया, इसने ऐसे कर दिया, फैमिली क्या कहेगी, हमारे रिलेटिव क्या कहेंगे, उसे नहीं सुनना है। आपको आगे बढ़ना है और बढ़ते रहना है। अगर आप एक बार रुक गए तो फिर रुक ही जाओगे।
1: विश यू ऑल द वेरी बेस्ट मैम। हम उम्मीद करते हैं कि आपने जिस तरह से एज अ प्लेयर हम सबका नाम रोशन किया उन दिनों में, अब आप जाकर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर देश का नाम रोशन करेंगी एज अ रेफरी। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, गाजियाबाद।
3: खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत संधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
5: Listening to your favorite station just got even easier with Google Assistant and TuneIn. Your go-to station is just a voice away. Just tell Google to play your favorite station on TuneIn and you're instantly connected.
6: This is 80s hits exclusively on TuneIn.
5: You're listening to Fox News Radio. Classic rock hits.
7: You're listening to MSNBC.
5: No scrolling, no typing. Just the shows, music, and news you love. Anytime you want. Try it now and thank us later.
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
9: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
10: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
9: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
10: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
9: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
10: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।

स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। सुगंध जो है, खुशबू जो है, वो आपके मन को मोह लेती है और मन पर बड़ा गहरा असर डालती है। तो आज हम बात करेंगे सुगंध के बारे में और सुगंध के चमत्कारी प्रयोगों के बारे में। इसके अलावा बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 2 जुलाई 2026 दिन बृहस्पतिवार, तिथि है आषाढ़ कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि, प्रातः 9:37 तक। नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, प्रातः 9:27 तक। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 2 जुलाई 2026 दिन बृहस्पतिवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य देव विद्यमान हैं मिथुन राशि में, शुक्र बुध और बृहस्पति कर्क राशि में, केतु सिंह राशि में, चंद्रमा मकर राशि में, राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में और मंगल फिलहाल संचरण कर रहे हैं वृषभ राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशि फल कैसा रहने वाला है। सबसे पहले ये जानते हैं कि सुगंध का हमारे जीवन में महत्व क्या है और सुगंध का असर हमारे ऊपर कैसे पड़ता है। देखिए, मानव का जीवन मन से प्रभावित होता है और मन से ही चलता है। मन मुख्य रूप से शरीर के चक्रों से प्रभावित होता है जो कुल मिलाकर 7 हैं। 7 चक्र आपके मानसिक शरीर में हैं जिनसे आपका मन प्रभावित होता है। दुनिया में 3 चीजें ऐसी हैं जो चक्रों पर सीधा असर डालती हैं, रंग, सुगंध और शब्द यानी मंत्र। रंग, सुगंध और शब्दों का या मंत्रों का आपके शरीर के चक्रों पर गहरा असर पड़ता है। मन की अवस्था के अनुसार, मन की स्थिति के अनुसार अगर अलग अलग तरह के सुगंध का प्रयोग किया जाए तो मन की चिंताओं को, मन की जटिलताओं को दूर किया जा सकता है। सुगंध के सही प्रयोग से एकाग्रता बढ़ाई जा सकती है, स्नायु तंत्र नर्वस सिस्टम
और अवसाद डिप्रेशन जैसी बीमारियों को दूर किया जा सकता है। सुगंध का जब आप प्रयोग करते हैं तो सुगंध आपके सोच और विचार की क्षमता पर असर डालती है, इसीलिए पूजा और उपासना के दौरान सुगंध का बहुत प्रयोग होता है ताकि मन एकाग्र हो सके, मन पवित्र हो सके और उस पवित्र मन से आप साधना कर सकें। सुगंध पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, करियर में आपको सफलता मिलेगी, धन की स्थिति में सुधार होगा, यात्रा के योग बन रहे हैं, भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, करियर में सफलता मिलेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी, निर्णय लेने में जल्दबाजी ना करें, केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कर्क राशि, करियर में व्यस्तता रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार की चिंता दूर होगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि जब आप सुगंध का प्रयोग करते हैं, जब आप सुगंध का इस्तेमाल करते हैं तो इसके नियम क्या हैं और इसकी सावधानियां क्या हैं। देखिए, जहां तक हो सके प्राकृतिक सुगंध का या फूलों की सुगंध का प्रयोग करना चाहिए। अपने पढ़ने के स्थान पर, काम करने की जगह पर और पूजा स्थान पर सुगंध का प्रयोग जरूर करना चाहिए। सुगंध जितनी हल्की होगी और जितने देर तक ठहरेगी उसका प्रभाव उतना ही ज्यादा होगा। अगर शरीर पर सुगंध का प्रयोग करना है तो सुगंध को अपनी कलाइयों पर, गर्दन के पीछे और अपनी नाभि पर लगा सकते हैं। जिन लोगों को तनाव पालने की आदत है या जो लोग बहुत चिंता करते हैं, वो जल में भी सुगंध डालकर स्नान करें, लाभ होगा। जो लोग विद्यार्थी हैं या अविवाहित हैं उनको केवल चंदन की सुगंध का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि चंदन की सुगंध सात्विक है। गुलाब की, बेले की, मोगरे की सुगंध राजसिक है।
ये मन की भावनाओं में निगेटिविटी पैदा कर सकती है। इसीलिए विद्यार्थी जीवन में अगर सुगंध का प्रयोग करना है तो केवल चंदन की सुगंध का प्रयोग करना अच्छा होगा। सुगंध पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, संपत्ति का लाभ होगा, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रुका हुआ काम बनेगा, खान पान में सावधानी रखें, अनाज का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी, धन का नुकसान हो सकता है, करियर में कोई रिस्क कोई जोखिम ना लें, केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृश्चिक राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, चिंताएं समाप्त होंगी, भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि पूजा स्थान पर, पढ़ने लिखने की जगह पर और काम के स्थान पर सुगंध का प्रयोग कैसे करेंगे। देखिए, काम करने की शुरुआत करने जा रहे हैं तो उसके पहले धूप बत्ती जला लें ताकि धुआं छट जाए, सुगंध बनी रहे, या प्लेन सुगंध का प्रयोग भी कर सकते हैं। जब धुआं समाप्त हो जाए तब पूजा करिए, तब काम करिए, तब ध्यान लगाइए तो ज्यादा बेहतर होगा। काम की जगह पर, पढ़ने की जगह पर और पूजा की जगह पर चंदन या गुग्गल की सुगंध लाभकारी मानी जाती है। खास तौर से अगर आप पूजा करते हैं या ध्यान करते हैं तो चंदन की सुगंध लगाकर या चंदन की धूप बत्ती जलाकर तब पूजा करें, तब ध्यान करें, आपको ज्यादा लाभ होगा। आप बेहतर स्वास्थ्य चाहते हैं और मानसिक तनाव दूर करना चाहते हैं तो सुगंध का प्रयोग कैसे करेंगे। अपने शयन कक्ष में यानी बेडरूम में और स्नान के दौरान गुलाब या मोगरे की सुगंध का प्रयोग करिएगा। नहाने के पानी में एक ढक्कन दो ढक्कन गुलाब जल डालकर भी नहा सकते हैं। सोने के पहले अपनी नाभि पर भी सुगंध लगाइएगा। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि सुगंध हल्की हो, देर तक ठहरती हो तो ज्यादा बेहतर होगा। तेज सुगंध का प्रयोग बिल्कुल मत करिएगा।
अपने घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर करने के लिए, निगेटिव एनर्जी दूर करने के लिए सुगंध का प्रयोग कैसे करेंगे? घर में सुबह और शाम या तो मिट्टी के पात्र में रखकर लोबान जलाएं या लोबान की सुगंध वाली धूप बत्ती जलाइएगा। एक मिट्टी के पात्र में लोबान जलाएं और उसको पूरे घर में घुमाएं ताकि पूरे घर में उसकी सुगंध फैले। रोज शाम को पूजा करने के बाद अगर आप नियमित रूप से ऐसा करें तो घर से हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, धन की स्थिति में सुधार होगा, परिवार में अशांति से बचें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, सेहत की स्थिति अच्छी होती जाएगी, मन की चिंताएं दूर होंगी, भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, करियर में तनाव हो सकता है, पारिवारिक समस्या के योग बन रहे हैं, चोट चपेट से सावधान रहें, केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मीन राशि, मानसिक चिंताएं दूर होंगी, धन की स्थिति में सुधार होगा, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, अनाज का दान कर दें तो दिन और भी बेहतर होगा। तो आज हमने आपको बताया सुगंध के बारे में और सुगंध के चमत्कारी प्रयोग के बारे में। अब आपको बताते हैं आपके भाग्य को बेहतर करने के लिए एक लकी टिप। अगर बार बार नकारात्मक ऊर्जा से परेशानी होती हो, आपको बार बार नजर लग जाती हो या बार बार बड़ी जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाते हो, तो नियमित रूप से रोज नहाने के बाद अपने शरीर पर और अपने कपड़ों पर अगर चंदन की सुगंध लगाएं तो आपको लाभ होगा। अब जान लेते हैं दिनांक 2 जुलाई 2026 दिन बृहस्पतिवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल अपने ईष्ट देव को, देवी देवता को, भगवान को पीला फूल अर्पित करिएगा। घर से निकलते समय उस फूल को अपने पास रख लीजिएगा। अगर प्रातः काल आप ऐसा कर लेते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो,
इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: summer hits. Blends old school jams with fresh favorites so you can get the party started. Listen to your summer soundtrack made for sunshine, vibes, and summer heat. Hear all your favorites and more right here on TuneIn. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Summer Hits and start listening now.
1: ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ Good News Today.
2: Good News Today इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है. इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है. इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर.
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं. खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर. खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है. खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है. ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे.
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से
1: चलिए आपको देवभूमि उत्तराखंड लिए चलते हैं, जहां चमोली जिले में मौजूद फूलों की घाटी इन दिनों गुलजार है मनमोहक खूबसूरत फूलों से. बड़ी बात यह है कि इस बार यहां रिकॉर्ड संख्या में लोग भी पहुंचे हैं इसका दीदार करने के लिए. अब तक 7294 लोग फूलों की घाटी की सुंदरता का दीदार कर चुके हैं.

0: पहाड़ों के बीच फैली हरियाली, बादलों से बातें करती वादियाँ, और जहाँ तक नजर जाए वहाँ तक रंग बिरंगे फूलों की दुनिया। ये नज़ारा किसी कल्पना का नहीं बल्कि चमोली की विश्व धरोहर फूलों की घाटी का है। हर साल मॉनसून के साथ यहाँ प्रकृति अपनी सबसे खूबसूरत तस्वीर पेश करती है। इस बार भी घाटी ने अपने रंग बिखेरने शुरू किए तो लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है। घाटी में 1 जून को पर्यटकों के लिए प्रवेश शुरू हुआ था, अभी सिर्फ 1 महीना ही बीता है, लेकिन यहां आने वालों की संख्या ने सभी पुराने आंकड़े पीछे छोड़ दिए हैं। अब तक 7,294 लोग घाटी की प्राकृतिक सुंदरता का दीदार कर चुके हैं, इनमें 34 विदेशी पर्यटक भी शामिल हैं। वन विभाग का कहना है कि सीजन की शुरुआत इतनी शानदार पहले बहुत कम देखने को मिली है। अगर पिछले साल से तुलना करें तो अंतर साफ दिखाई देता है। बीते साल इसी महीने में 3,893 पर्यटक पहुंचे थे, यानी इस बार शुरुआती 1 महीने में ही करीब 1.5 गुना अधिक लोग यहां पहुंचे हैं। यही वजह है कि वन विभाग को इस पूरे सीजन में रिकॉर्ड संख्या की उम्मीद दिखाई दे रही है। अभी तो ये केवल शुरुआत है, फूलों की घाटी का असली आकर्षण 15 जुलाई से 15 अगस्त के बीच दिखाई देता है। इसी समय सबसे अधिक प्रजातियों के फूल एक साथ खिलते हैं। चारों ओर रंगों का ऐसा संसार बन जाता है जिसे देखने के लिए देश विदेश से प्रकृति प्रेमी यहां पहुंचते हैं। फूलों की घाटी की सबसे खास बात ये है कि यहां केवल एक तरह के फूल नहीं खिलते। इस पूरी घाटी में करीब 500 प्रजातियों के फूल पाए जाते हैं। हर 15 दिन बाद नई किस्में खिलती हैं और पहले वाले धीरे धीरे विदा हो जाते हैं। यही वजह है कि यहां का नज़ारा लगातार बदलता रहता है। यही बदलता रूप इस जगह को दुनिया की सबसे खास प्राकृतिक धरोहर में शामिल करता है। जैसे जैसे जुलाई का ये महीना आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे ये पूरी घाटी और अधिक रंगों से भरती जाएगी। आने वाले दिनों में यहाँ प्रकृति का सबसे मनोहरी रूप दिखाई देगा। यही वजह है कि फूलों की घाटी केवल एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि धरती पर सजे उस जीवन कैनवस का नाम है जहाँ हर मौसम नई तस्वीर बनाता है। चमोली से कमल नैन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। स्वागत है आपका न्यूज पथ में। राह जिंदगी की हो या खबरों की, उसमें कई मोड़ होते हैं, कई रफ्तार होती है, कई पड़ाव होते हैं। देश और दुनिया से जुड़ी पॉजिटिव खबरों के साथ आपको लिए चलेंगे न्यूज पथ पर, लेकिन सबसे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
5: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। TIT भोपाल, जेन ज़ीज गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स।
3: भारत और इंग्लैंड के बीच थोड़ी देर में शुरू होगा पहला T20 मुकाबला। प्लेइंग 11 पर होगी सबकी निगाहें, वैभव के डेब्यू का फैंस को बेसब्री से इंतजार। आर्थिक मोर्चे पर देश के लिए गुड न्यूज, जून में 1.94 लाख करोड़ GST कलेक्शन, पिछले साल से 14% ज्यादा इंपोर्ट से होने वाली कमाई बढ़ी। पहाड़ों पर मॉनसून का दिखने लगा असर, रुद्रप्रयाग में लगातार हो रही बारिश से अलकनंदा नदी का बढ़ा जलस्तर, नदी के किनारे बनी भगवान शिव की मूर्ति तक पहुंचना पानी। बद्रीनाथ में भगवान विष्णु के भक्तों ने अब तक के सारे रिकॉर्ड किए ध्वस्त, 14 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन, हर रोज 15 से 20 हजार श्रद्धालु कर रहे दर्शन। केंद्रीय कैबिनेट की दिल्ली और यूपी को 14,000 करोड़ से ज्यादा के सड़क परियोजनाओं को मंजूरी। दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ेगी 6 लेन वाली टनल। वहीं कानपुर से करबई के बीच बनेगा एक्सेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड हाईवे। तो शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर। सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा केदारनाथ धाम में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की भी है।
6: चारधाम यात्रा में केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा हुआ है। मॉनसून सीजन शुरू होने के बाद भी यहां हर दिन 7,000 से 8,000 यात्री पहुंच रहे हैं। 22 अप्रैल को धाम के कपाट खुलने के बाद से लगातार यात्री बाबा केदार के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लेने आ रहे हैं। 2 महीने 8 दिन की यात्रा में यहाँ 13,61,000 से अधिक यात्री बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। धाम समेत पैदल यात्रा मार्ग पर बीच बीच में बारिश भी हो रही है। बावजूद इसके श्रद्धालुओं का उत्साह देखते बन रहा है। प्रशासन की ओर से बारिश को देखते हुए ही यात्रा मार्ग पर यात्रियों की सुरक्षा के लिए और जवान तैनात किए गए हैं ताकि धाम पहुंचने वाले किसी भी श्रद्धालु को असुविधा झेलनी न पड़े। ये जवान यात्रियों की सुरक्षित आवाजाही को सुनिश्चित करने में जुटे हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में पहाड़ी चोटी पर स्थित नैना देवी मंदिर में इन दिनों आस्थावानों की भीड़ उमड़ रही है। इस प्रसिद्ध शक्तिपीठ पर पहुंचकर श्रद्धालु दर्शन पूजन कर रहे हैं। बीते 3 दिनों में यहां लगभग 1,00,000 श्रद्धालु मां के दरबार में शीश नवा चुके हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ समेत देश के अलग अलग हिस्सों से पहुंचे श्रद्धालुओं ने यहां विधिवत पूजा अर्चना कर मां का आशीर्वाद लिया। दर्शन पूजन के साथ श्रद्धालुओं को यहां के खूबसूरत नजारों का दीदार करने का भी सौभाग्य मिल रहा है। मंदिर परिसर से दिखाई देने वाली शिवालिक पर्वत की मनमोहक प्राकृतिक खूबसूरती यहां पहुंच रहे श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दे रही है। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मंदिर न्यास की ओर से विशेष प्रबंध किए गए हैं ताकि किसी को किसी भी तरह की असुविधा झेलनी न पड़े। ये तस्वीरें बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी की हैं, जहां मिशन शक्ति फेज 5.0 के तहत पुलिस के मदद से पहली बार ग्रामीण महिलाएं वाराणसी शहर घूमने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बाबा विश्वनाथ समेत कई मंदिरों में दर्शन पूजन किए। चंदौली जिले के नौगढ़ इलाके के पंडी गांव की महिलाएं पहली बार अपनी गांव की सीमा से बाहर निकलकर पुलिस की ओर से उपलब्ध कराई गई बस से श्री काशी विश्वनाथ धाम, विशालाक्षी शक्तिपीठ, संकट मोचन मंदिर और दुर्गा कुंड मंदिर पर दर्शन पूजन करने गई। इसके अलावा ये सब एक मॉल में भी गई। 49 महिलाओं और बच्चों के इस दल ने एक रेस्टोरेंट में भोजन भी किया। पुलिस उप महानिरीक्षक वैभव कृष्ण और चंदौली के एसपी आकाश पटेल बीते दिनों पंडी गांव पहुंचे हुए थे, जहां महिलाओं ने शहर देखने की इच्छा जताई थी। इसके बाद ही इन महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण की दिशा में ये भावपूर्ण और सार्थक पहल की गई। तमिलनाडु के कोयम्बटूर के फॉरेस्ट कॉलेज कैंपस में कला और संरक्षण का संगम देखने को मिल रहा है। वनस्पति और जीव जंतुओं से सजी भित्ति चित्र यहाँ खास आकर्षण के केंद्र बने हुए हैं। यहाँ की दीवारों पर कलाकारों ने लुप्तप्राय और मौजूदा प्रजातियों को दर्शाते हुए बेहद खूबसूरत और ज्ञानवर्धक भित्ति चित्र बनाए हैं, जिसका मकसद आने वाली पीढ़ियों को पर्यावरण, विलुप्त हो रहे जीवों और जैव विविधता के प्रति जागरूक करना है। दीवारों पर पक्षियों, जानवरों, समुद्री जीवों, कीटों और फूलों को हाथ से बेहतरीन अंदाज में कलाकारों ने उकेरा है। इन चित्रों के साथ जीवों के वैज्ञानिक नाम और उनके बारे में संक्षिप्त जानकारी भी लिखी गई है। ये तस्वीर देश की राजधानी दिल्ली के चितरंजन पार्क की है। यहाँ आयोजित आम महोत्सव का लोग लुत्फ उठा रहे हैं और खरीदारी भी कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से आयोजित इस मैंगो फेस्टिवल में अलग अलग किस्मों के आम मौजूद हैं, जिनमें मालदा, जिसे लंगड़ा भी कहते हैं, वो आम लोगों को खूब पसंद आ रहे हैं। इसके अलावा मालदा जिला का फजली आम भी यहां है, तो हिमसागर से लेकर जैस्मीन आम भी मौजूद है, जो खासकर बंगाल के लोगों की पसंद है। इस मेले में 12 तरह के आम हैं जो पश्चिम बंगाल से लाए गए हैं। लोग इन आमों की खरीदारी करने के साथ ही हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट से बनी चीजों को भी देखने आ रहे हैं। लोग इस प्रदर्शनी का दीदार कर सामान की खरीदारी भी करते नजर आ रहे हैं।
3: और अब बात करते हैं अमरनाथ यात्रा की। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों का इंतजार अब से बस कुछ ही घंटों बाद खत्म होने जा रहा है, क्योंकि गुरुवार यानी कि कल सुबह तड़के जम्मू बेस कैंप से तीर्थयात्रियों का पहला जत्था रवाना होने वाला है। तीर्थयात्रियों के इस पहले जत्थे को पूजा पाठ के बाद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा झंडी दिखाकर रवाना करेंगे और इन तीर्थयात्रियों को बसों के जरिए कड़ी सुरक्षा में ले जाया जाएगा। बाबा बर्फानी के दर्शन को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है।

हर हर महादेव की गूंज से जम्मू कश्मीर की वादियां शिवमय हो गई हैं। अमरनाथ यात्रा के शुरू होने से पहले ही जम्मू कश्मीर पूरी तरह भक्ति के रंग से सराबोर हो चुका है। श्रीनगर में हजारों भक्तों के आने से पूरा माहौल शिवमय हो गया है।

0: ಕೃಷ್ಣ ಕೋಯನ ಬದರ ಗೋದಾವರಿಯ ಏಕ ಪಣಾಚೆ ಭರತಿ ಪಾಣಿ ಮಾತಿ ಚಾ ಘಾಗರಿಯ ಏಕ ಪಣಾಚೆ
1: ಬಿಲ್ಕುಲ್. ತೋ ಯಹಾಂ ಪರ ಆಪ್ ತಸ್ವೀರೋ ಮೇ ದೇಖ್ ರಹೇ ಕಿ ಕಿಸ್ ತರೀಕೆ ಸೇ ಲೋಗ್ ಯಹಾಂ ಬಾಬಾ ಬರ್ಫಾನಿ ಕೆ ದರ್ಶನ್ ಕರ್ನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಆಯೇ ಹೈ ಔರ್ ಅಲಗ್ ಅಲಗ್ ತರೀಕೆ ಕೆ ಯಹಾಂ ಪರ ಗೀತ ಸಂಗೀತ ಕೆ ಸಾಥ್ ಇಸ್ ಪೂರಿ ಘಾಟಿ ಕೋ ಯೇ ಲೋಗ್ ಬಡೆ ಅಸ್ತರ್ ಪರ್ ಯಹಾಂ ಪರ್ ಯೇ ಐಸಿ ತಸ್ವೀರೆ ಪೇಶ್ ಕರ್ ರಹೇ ಹೈ ಜಿಸ್ಸೆ ದಿಖಾಯಿ ಪಡ್ ರಹಾ ಹೈ ಕಿ ಕಿತ್ನಾ ಹರ್ಷೋಲ್ಲಾಸ್ ಇನ್ಕೆ ಅಂದರ್ ಇಸ್ ವಕ್ತ ಮೌಜೂದ್ ಹೈ. ಕೋಯಿ ಗುಜರಾತ್ ಸೇ ಆಯಾ ಹುವಾ ಹೈ ತೋ ಕೋಯಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸೇ ಆಯಾ ಹುವಾ ಹೈ ಕುಛ್ ಲೋಗ್ ಐಸೆ ಹೈ ಜೋ ಲಗಾತಾರ್ ಯಹಾಂ ಪರ್ ಗೀತ ಸಂಗೀತ ಕೆ ಸಾಥ್ ಬಾಬಾ ಬರ್ಫಾನಿ ಕೆ ದರ್ಶನ್ ಕರ್ನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಯಹಾಂ ಜೋ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಪಂಥಾ ಚೌಕ್ ಶ್ರೀನಗರ ಮೇ ಮೌಜೂದ್ ಹೈ ಯಹಾಂ ಸೇ ಯೇ ಲೋಗ್ ಆಗೆ ಕಿ ತರಫ್ ಬಢೆಂಗೆ. ಔರ್ ಸಬ್ಸೇ ಖಾಸ್ ಬಾತ್ ಯೇ ಹೈ ಕಿ ಕಲ್ ಸುಬಹ ಸೇ ಜಿಸ್ ತರೀಕೆ ಸೇ ಯಹಾಂ ಪರ್ ಲೋಗ್ ಕಾಫಿ ಸಂಖ್ಯಾ ಮೇ ಲೋಗ್ ಇಕಠ್ಠಾ ಹೋ ರಹೇ ಹೈ ತೀನ್ ತಾರೀಖ್ ಸೇ ಜೋ ಪಹಲಾ ಜತ್ಥಾ ಜಾಯೇಗಾ ಉಸ್ಕೆ ಲಿಯೆ ಯಹಾಂ ಪರ್ ಲೋಗ್ ಪಹುಂಚೆ ಹುವೆ ಹೈ. ಕುಛ್ ಲೋಗ್ ರಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕರ್ವಾ ರಹೇ ಹೈ ತೋ ಕುಛ್ ಲೋಗ್ RFID ಯಹಾಂ ಪರ್ ಲೇ ರಹೇ ಔರ್ ಇಸಿ ತರೀಕೆ ಸೇ ಗೀತ ಔರ್ ಸಂಗೀತ್ ಕೆ ಸಾಥ್ ಯಹಾಂ ಪರ್ ಆಪ್ಕೋ ಯೇ ಲೋಗ್ ದಿಖಾಯಿ ಪಡ್ ರಹೇ ಹೈ. ಜೈಕಾರಾ ಭೀ ಇನ್ಕೆ ಯಹಾಂ ಪರ್ ಲಗ್ ರಹೇ ಹೈ. ಬಾಬಾ ಬರ್ಫಾನಿ ಕೆ ಜೈಕಾರಾ ಲಗಾ ಕರ್ಕೆ ಯೇ ಸಾರೇ ಲೋಗ್ ಆಗೆ ಪಹಾಡಿಯೋ ಕಿ ತರಫ್ ಬಡ್ ರಹೇ ಹೈ.
2: जम्मू के भगवती नगर इलाके में यात्री भवन को श्रद्धालुओं के लिए पूरी तरह तैयार कर दिया गया है, जहां अमरनाथ यात्रियों के पहले जत्थे को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा बृहस्पतिवार की सुबह रवाना करेंगे.
3: इस समय हम मौजूद हैं जम्मू शहर के भगवती नगर इलाके में स्थित यात्री निवास भवन के बाहर और श्री अमरनाथ जी की यात्रा जो है शुक्रवार को शुरू होने जा रही है. बृहस्पतिवार को यात्रियों का पहला जत्था यहीं जम्मू के यात्री निवास भवन से रवाना होगा. अगर हम देखें यात्री निवास भवन में जो है सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, चप्पे चप्पे पर पहरा है, चाहे केंद्रीय सशस्त्र बल हो, केंद्रीय बल जो है साथ ही में जम्मू कश्मीर पुलिस हो, भारतीय सेना हो, चप्पे चप्पे पर पहरा है और यहाँ की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है. और ये जो यात्री निवास भवन है अगर हम देखें तो इसको CRPF के हवाले कर दिया गया है और खासतौर पर जो CRPF के जवान हैं वो भारी संख्या में यहाँ पर तैनात है. प्राथमिकता यही है कि यहाँ पर जो सुरक्षा है वो चाक चौबंद रहे. बृहस्पतिवार को तड़के यही से यात्रियों का जो पहला जत्था है वो कश्मीर घाटी की तरफ रवाना होगा. शुक्रवार को जो श्री अमरनाथ जी की यात्रा है वो विधिवत तौर पर शुरू होगी दोनों मार्गों से, पारंपरिक पहलगाम मार्ग से और साथ ही में बालटाल मार्ग से भी. जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, जो कि श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के चेयरमैन भी है, वो यात्रियों के पहले जत्थे को बृहस्पतिवार को यही यात्री निवास भवन से रवाना करेंगे.
2: बाबा बर्फानी के दर्शन से पहले पूरा श्रीनगर भक्तिमय वातावरण में रंगा नजर आ रहा है. हर तरफ बम बम भोले और हर हर महादेव के जय घोष सुनाई दे रहे हैं. जम्मू से चलकर श्रद्धालुओं का पहला जत्था यहां पहुंचेगा, लिहाजा यहां के ट्रांजिट कैंप में उनके ठहरने की पूरी तैयारी कर ली गई है.
1: अमरनाथ यात्रा को लेकर के 3 जुलाई से जो पहला जत्था सीधे अमरनाथ गुफा तक पहुंचेगा उसके लिए जम्मू से जो कॉन्वाय यहां पर चलेगा उसके लिए पूरी तैयारियां यहां श्रीनगर में भी की गई हैं. मैं इस वक्त पंथा चौक पर मौजूद हूं और आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लोगों की संख्या यहां भारी संख्या में मौजूद है और लोग जो है ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहां पर जुट रहे हैं. ये सारा ट्रांजिट कैंप बनाया गया है और इस ट्रांजिट कैंप में किस तरीके से लोग यहाँ भारी संख्या में मौजूद हैं ये आपको दिखा रहे हैं. दूसरा, तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग इतनी संख्या में आज से ही जुटने लगे हैं. पहला जत्था जो है वो सुबह सुबह 3 जुलाई को बालटाल से रवाना होगा, साथ ही पहलगाम रूट जो है वहां से भी रवाना होगा. अगर इस ट्रांजिट कैंप की बात करें तो यहां पर सिक्योरिटी के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं. CRPF आप देख रहे हैं कि यहां CRPF के कमांडोज भी मौजूद हैं. इसके साथ साथ यहां पर जो श्रद्धालु हैं उनकी संख्या आप देख करके ये पता चल जाएगा कि किस तरीके से यहां पर लोगों में इस वक्त उत्साह है.
2: 3 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में श्रद्धालुओं का पहुंचना जारी है और इस पवित्र यात्रा को लेकर उनमें गजब का उत्साह नजर आ रहा है. बालटाल में तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। बालटाल इस यात्रा का सबसे अहम पड़ाव है, जिसे यात्रा के बेस कैंप के तौर पर जाना जाता है। यहाँ हर बार की तरह एक पूरी टेंट सिटी को बसा दिया गया है, जहाँ यात्रियों के रहने और खाने पीने की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।
4: इस साल की अमरनाथ यात्रा में मात्र अब कुछ घंटे बचे हुए हैं। इस बीच प्रथम पूजा के बाद अब पूरे कश्मीर में अमरनाथ यात्रियों का इंतजार हो रहा है। 3 जुलाई से शुरू होने वाली इस साल की अमरनाथ यात्रा में श्रद्धालुओं का उत्साह देखने को मिल रहा है। दरअसल यात्रा शुरू होने से पहले कई यात्री जम्मू, बालटाल और पहलगाम के बेस कैंप्स पर पहुंच चुके हैं। इस बीच अब की बार ये उम्मीद जताई जा रही है कि जिस अंदाज से व्यापक इंतजाम किए गए हैं और जिस अंदाज से रजिस्ट्रेशन को लेकर श्रद्धालुओं में पूरे देश में जोश देखा जा रहा है कि अब की बार अमरनाथ यात्रा में रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे। मौसम भी फिलहाल जो है अमरनाथ यात्रा के लिए साजगार है और साथ ही साथ जो है अब कश्मीर में तापमान भी बढ़ने लगा है। इस बीच इस बार अमरनाथ यात्रा श्राइन बोर्ड की तरफ से विशेष इंतजाम किए गए हैं श्रद्धालुओं के लिए, जहां पर हर श्रद्धालु को जो है वो उनको हर तरह की सुविधा जो है अमरनाथ यात्रा के अलग अलग पड़ावों के साथ अमरनाथ गुफा में भी मिलेगी, जिसमें रहने और रुकने और वहां पर जो है सभी तरह के इंतजाम किए गए हैं।
2: श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर है, वहीं यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह मुस्तैद है। अमरनाथ यात्रा मार्ग पर चप्पे चप्पे पर जवानों का कड़ा पहरा है। संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बलों की अतिरिक्त तैनाती की गई है और सीसीटीवी की निगरानी के साथ ही चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड और डॉग स्क्वाड को विशेष रूप से तैनात किया गया है। ये टीमें लगातार यात्रा मार्गों, टेंटों

0: मैं इस वक्त पंथा चौक ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूं और यहां पर आपको तस्वीरों में दिखाएंगे कि इस बार सरकार के द्वारा ये व्यवस्था की गई है कि RFID ऑन द स्पॉट भी लोग ले सकते हैं। इसके साथ साथ जिन लोगों ने पहले से रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है उनको भी वह RFID और इसके साथ साथ QR कोड आधारित उनकी जो सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ तमाम जो दस्तावेज हैं वो मिल सकती हैं। यहाँ पर आप देखिए कि RFID और इसके साथ साथ EKYC डेस्क और रजिस्ट्रेशन काउंटर भी यहाँ पर तैयार किया गया है। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, इनसे बातचीत करते हैं कि RFID जो है इस बार ये व्यवस्था की गई है कि तत्काल जो है लोगों को अगर जरूरत है तो कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन करा के आए, क्या प्रक्रिया है यहाँ पर?
1: सर, तत्काल में इसमें आप डायरेक्टली आके यहाँ पे भी करवा सकते हैं, अपना जो भी रिपोर्ट्स है वो लेके आ सकते हैं आप, और यहाँ पे आके आपके EKYC हो जाता है और इमीडिएटली आपको RFID मिल जाता है। और जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन भी करवा रखा है, जैसे हमने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करवा रखा था, तो इमीडिएटली यहाँ आए हम, विद इन 1 मिनट में हमको RFID मिल गया था हमारा देख के KYC।
2: कोई कह रहा था कि RFID कार्ड में 2 घंटे 3 घंटे लग सकता, हमें मैक्सिमम 10 से 15 मिनट में सारा काम इजिली होके निकल गया।
3: RFID टैग और रजिस्ट्रेशन को लेकर इंतजाम चाक चौबंद है। बावजूद इसके कुछ श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें घंटों लाइन में लगकर इंतजार करने के लिए विवश होना पड़ा।
0: RFID और रजिस्ट्रेशन के लिए जो तत्काल व्यवस्था की गई है उसमें कुछ लोगों का, जिन्होंने की रजिस्ट्रेशन कर रखा है, वो KYC करा करके तुरंत अपना RFID ले सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो कि काउंटर पर पहुंच रहे हैं उनको दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है इस वक्त। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके की व्यवस्था यहाँ पर हो रही है और क्या आप लोगों को दिक्कत हो रही है।
4: सर, मैं 2 दिन से यहाँ पर हूँ। मेरा नाम शुभम है, मैं यूपी मुरादाबाद से आया हुआ हूँ। मुझे 2 दिन यहाँ पर होगा लेकिन अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। 2 दिन से यहीं पर लाइन में लगे हुए थे लेकिन कभी लाइन हटवा देते हैं, कभी कुछ करवा देते हैं, कहते हैं कल खुलेगा, परसों खुलेगा, अब कह रहे हैं कल सुबह खुलेगा।
0: तत्काल रजिस्ट्रेशन जिनको कराना है उसके लिए दिक्कत,
5: हाँ दिक्कत हो रही है, कह रहे हैं कल सुबह होगा, रात भर लाइन में आदमी लगा हुआ है, फिर सुबह से परेशान है और कल होगा तो परसों 3 तारीख का रजिस्ट्रेशन मिलेगा, कैसे यात्रा आदमी करेगा, बहुत सारी दिक्कतें हो रही है।
3: मौसम की चुनौती हो या सुरक्षा की, प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है क्योंकि मकसद सिर्फ एक है, भोले के भक्तों की ये यात्रा सुरक्षित, सुगम और बिना किसी परेशानी के संपन्न हो। फिलहाल अमरनाथ यात्रा शुरू होने में अब बस 2 दिन शेष हैं। जम्मू से लेकर पवित्र गुफा तक तैयारियां अंतिम चरण में हैं। बेस कैंपों पर श्रद्धालुओं के लिए बेहतर सुविधाएं जुटाई गई हैं। अब हर किसी की निगाहें 3 जुलाई की सुबह पर टिकी है, जब बम बम भोले के जयकारों के साथ अमरनाथ यात्रा की विधिवत शुरुआत होगी। जम्मू से सुनील जी भट्ट और श्रीनगर से जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ अशरफ वानी, गुड न्यूज टुडे। केंद्र सरकार ने दिल्ली और यूपी को 14,115 करोड़ रुपए की लागत वाली 2 बड़ी सड़क परियोजनाओं को दी मंजूरी। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। दिल्ली और उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए सड़क कनेक्टिविटी से जुड़ी बड़ी खुशखबरी। कैबिनेट ने दिल्ली और यूपी में 14,000 करोड़ से ज्यादा के 2 बड़े हाईवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। इनमें द्वारका एक्सप्रेसवे को दक्षिण दिल्ली से जोड़ने वाली 6 लेन सुरंग और उत्तर प्रदेश के कानपुर से कबरई को जोड़ने वाली ग्रीन फील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे शामिल है। इन प्रोजेक्ट का उद्देश्य शहरी ट्रैफिक को आसान बनाना, लॉजिस्टिक्स नेटवर्क को मजबूत करना और रीजनल इकोनॉमी ग्रोथ को बढ़ावा देना है। आज जुलाई महीने के पहले दिन से देश भर में कई बड़े बदलाव लागू हो गए, जिसके तहत पासपोर्ट फीस बढ़ गई है, साथ ही रेलवे, आधार और बैंकिंग से जुड़े नए नियम प्रभावी हुए हैं। बीते हफ्ते से बंद पड़ी EPFO की डिजिटल सेवाएं आज से फिर बहाल हो गई हैं और साथ ही RBI का नया फ्रेमवर्क भी लागू हो गया है। देश में आज महंगाई के मोर्चे पर भी राहत की खबर आई है। प्राइवेट ईंधन कंपनी नायरा एनर्जी ने ग्राहकों को बड़ी राहत देते हुए पेट्रोल की कीमतों में 5 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की कटौती की है। नई कीमतें देश भर में कंपनी के 7,000 से ज्यादा पेट्रोल पंपों पर लागू हो चुकी हैं। हालांकि अभी दूसरी तेल कंपनियां IOC, HPCL, BPCL ने पेट्रोल डीजल के दामों में कटौती नहीं की है, उनके दाम स्थिर हैं। साथ ही देश में कमर्शियल सिलेंडर्स की कीमतें भी कम हो गई हैं। कमर्शियल सिलेंडर की कीमतें

183 रुपए तक घट गई है। वहीं 5 किलो का छोटा सिलेंडर भी सस्ता हो गया है। चार धाम यात्रा में इस साल आस्था का सैलाब उमड़ा है। अब तक करीब 42 लाख श्रद्धालुओं ने चार धाम में दर्शन किए हैं। बद्रीनाथ धाम में अब की बार रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु पहुंचे। यहां अब तक 14 लाख से ज्यादा भक्तों ने बद्री विशाल के दर्शन किए हैं। करीब 4 लाख वाहन चार धाम पहुंचे हैं, जिससे ट्रांसपोर्ट और लोकल कारोबार को चार धाम में बूस्ट मिला है। केदारनाथ धाम में भी 14 लाख से ज्यादा भक्तों ने बाबा केदार के दर्शन किए। मॉनसून के चलते केदारनाथ धाम में चल रही हेली सेवाओं पर 5 जुलाई तक रोक भी लगा दी गई है। न्यूज वक्त में अब बात करते हैं पर्यटन की। देश में कई ऐसी जगहें हैं जो कि पर्यटकों को खूब पसंद आती है, खास करके पहाड़ों की प्राकृतिक छटा उन्हें खूब लुभाती है। उत्तराखंड से जम्मू कश्मीर तक कई ऐसी जगहें हैं। जम्मू कश्मीर में खूबसूरत वादियों की कमी नहीं है। कई ऐसी जगहें हैं जो कि पर्यटन स्थल के तौर पर तेजी से उभर रहे हैं। वहीं राजस्थान का सरिस्का टाइगर रिजर्व भी सैलानियों की पसंदीदा जगह है, जहां अब सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है।

0: हरी भरी वादियां हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती हैं, और जब बात पहाड़ों की प्राकृतिक खूबसूरती की हो तो उसका दीदार कर चेहरे का खिल उठना लाजमी है। उत्तराखंड के चमोली जनपद में स्थित विश्व धरोहर फूलों की घाटी ऐसी ही जगह है जहां खिले खिले फूल पर्यटकों का स्वागत करते हुए उन्हें अपनी ओर खींचते हैं। इस वर्ष 1 जून को फूलों की घाटी के खुलने के बाद से लगातार पर्यटक पहुंच रहे हैं। हालांकि यहां का मुख्य सीजन 15 जुलाई से शुरू होता है, लेकिन इस बार उससे पहले ही पर्यटकों की इतनी आमद हो चुकी है जो पिछले साल के मुकाबले लगभग 1.5 गुना है, जिसने इस घाटी में खिले फूलों की ही तरह पार्क प्रशासन से जुड़े लोगों के चेहरे भी खिला दिए हैं।
1: एक महीने बीतने के बाद हमारे पास कुल 7,294 लोग आ गए हैं, जिसमें 34 फॉरेनर्स हैं, और इसके साथ ही पिछले वर्ष की तुलना की जाए तो यह संख्या 1.5 गुना है। पिछले बार इस समय तक 3,893 लोग आए थे, जिसमें 63 फॉरेनर्स थे। तो अगर देखा जाए तो इस बार काफी अच्छा पर्यटन सीजन रहा है, और इसमें इस बार भी हमें जो हमारे आइकॉनिक स्पीसीज जो होते हैं वैली ऑफ फ्लावर्स के, जैसे कि लेडी स्लीपर ऑर्किड, ब्लू पॉपी, डेक्टोराइजा हत्थाजड़ी, ब्लू पॉपी एंड लिलियम, इनके बहुत सारे अच्छी फ्लावरिंग रही है अभी तक। अभी जो पीक सीजन है वो जनरली जून और अगस्त में होता है, और इस बार हमने टूरिस्ट फैसिलिटी के लिए हमने इस बार मिनी इंटरप्रिटेशन सेंटर और फोटो पॉइंट्स और जो टूरिस्ट के लिए और एमिनिटीज है जैसे टॉयलेट है उनको भी सुधार कर रहे हैं।
0: फूलों की घाटी में लगभग 500 किस्मों के फूलों के दीदार होते हैं। अभी यहाँ दुर्लभ प्रजातियों के फूलों की शानदार फ्लावरिंग देखने को मिल रही है। इस बार यहाँ आने वालों का स्लीपर ऑर्किड, ब्लू पॉपी, डेक्टिलोराइसा यानी हत्था जड़ी और लिली जैसे फूल स्वागत कर रहे हैं। हालांकि मुख्य सीजन 15 जुलाई से शुरू होता है जब सबसे ज्यादा फूल खिलते हैं, और उसी दौरान यहाँ बड़ी तादाद में पर्यटक पहुँचते हैं।
2: मानसून का मुख्य सीजन होता है, उसी दौरान फूलों की घाटी का भी सीजन होता है। ऐसे में जो ट्रैकिंग के शौकीन होते हैं देश भर से और विदेशों से जो पर्यटक पहुंचते हैं वो 15 जुलाई और 15 अगस्त के बीच इस घाटी में पहुंचते हैं। ऐसे में इस बार फूलों की घाटी अलग ही रंगत में दिखाई दे रही है। हालांकि फूल अभी से खिल चुके हैं, लगातार खिल रहे हैं, अलग अलग प्रजाति के खिल रहे हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा फूल खिलते हैं वो 15 जुलाई से खिलते हैं, लेकिन जो घाटी है वो इस बार पहले ही गुलजार दिखाई दे रही है।
0: उत्तराखंड की तरह ही जम्मू कश्मीर के भी कई इलाकों की छटा पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। कश्मीर के बांदीपुरा जिले में हिमालय की गोद में बसी गुरेज घाटी जम्मू कश्मीर के सबसे पसंदीदा टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर तेजी से उभर रही है। एलओसी से सटी इस खूबसूरत घाटी में पर्यटकों की तादाद लगातार बढ़ रही है, जो यहाँ के शानदार नजारों को देखकर मुग्ध नजर आते हैं। यहाँ की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, गर्मजोशी से भरे स्वागत सत्कार और शांत वातावरण पर्यटकों को खूब रास आते हैं।
3: भैया जलंधर पंजाब से आए हैं और यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लग रहा है। जैसा हम वहाँ पर तो 40-45 डिग्री टेम्परेचर जा रहा था, ये वन ऑफ द बेस्ट व्यूज है जो हमने लाइफ में देखा है। लाइक इतना पोल्यूशन फ्री और इतना अच्छा व्यू तो मैंने तो नहीं आज तक देखा।
4: नेचर का जो टेक्सचर है दिस इज अनपैरेलल। अभी भी बंगाल पे बहुत ही ह्यूमिडिटी है, लोगों ने ये जो हम मैसेज दे रहे हैं अगर वो देखे तो उनका थोड़ा सा यहाँ का ठंडा एक हवा जाके शायद टच करेगा। बहुत ही ह्यूमिडिटी है और ये यहाँ पे तो फर्स्ट क्लास एक वेदर है, मौसम है, एंजॉय करने के लायक है।
0: प्राकृतिक खूबसूरती, साफ पानी वाली नदियाँ, हरे भरे घास के मैदानों और बर्फ से ढके पहाड़ों के लिए मशहूर गुरेज घाटी उन लोगों को एक ऐसा शानदार अनुभव देती है जो भीड़ भाड़ वाली जगहों से दूर शांति की तलाश में रहते हैं। इस घाटी की अनछुई खूबसूरती और मनमोहक नजारों ने इसे प्रकृति प्रेमियों, एडवेंचर के शौकीनों, फोटोग्राफर्स और संस्कृति को जानने समझने वालों के लिए एक पसंदीदा जगह बना दिया है।
5: गर्मी से राहत पाने के लिए हजारों की तादाद में कश्मीर पहुंच रहे टूरिस्ट अब गुरेज घाटी का रुख कर रहे हैं, क्योंकि गुरेज घाटी में मौसम भी खुशगवार है और हर तरफ हरियाली है। नियंत्रण रेखा से सटे गुरेज इलाके में पिछले कुछ सालों के दौरान पर्यटक ने पंख पकड़ लिए। अब कश्मीर आने वाले सभी पर्यटकों में से अधिकतर की पसंद गुरेज घाटी बन रही है।
0: जम्मू और कश्मीर में ऐसी कई जगह हैं जहां पर पहुंचकर पर्यटक प्रकृति की गोद में होने का एहसास पाते हैं। पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला में स्थित पीर की गली एक बहुत खूबसूरत और पर्वतीय दर्रा है। ये समुद्र तल से लगभग 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित सबसे ऊंचे दर्रे में से एक है। ये खूबसूरत दर्रा कश्मीर के शोपिया को जम्मू संभाग के पुंछ और राजौरी जिलों से जोड़ता है। पीर की गली गर्मी में घूमने की एक बेहतरीन जगह बनकर उभरी है। ठंडे मौसम और शानदार नजारों का दीदार करने के लिए पर्यटक यहाँ का रुख करते हैं। यहाँ गर्मी के दौरान पर्यटन में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। यहाँ की ठंडी हवाएं और हरी भरी पहाड़ियाँ पर्यटकों को खूब आकर्षित कर रही हैं।
6: ये टूरिस्ट प्लेस भी है और ये 11,450 फीट समुद्री सतह से ऊंचाई पे है, तो यहाँ बड़ा अच्छा व्यू है। अभी गर्मियों का मौसम है, हमारी रिक्वेस्ट है सब लोग यहाँ आए।
7: ये काफी हिली एरिया है और बहुत अच्छा है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो आते हैं, स्पेशली गर्मियों में, जून टू जुलाई में, क्योंकि एंजॉय करते हैं यहाँ पे। ये बहुत अच्छी ज़ियारत है, मानी हुई ज़ियारत है, यहाँ पर लोग आके दुआएं करते हैं।
0: जम्मू कश्मीर का स्थल एक बहुत खूबसूरत इलाका है। कठुआ जिले की बानी तहसील में करीब 7,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये जगह अपने घास के मैदानों के लिए मशहूर है। देवदार के जंगलों और प्राकृतिक खूबसूरती से भरी इस वादी के प्राकृतिक नजारे पर्यटकों को अपनी ओर खूब आकर्षित कर रहे हैं, जिससे ये तेजी से उभरता हुआ पर्यटन स्थल बन रहा है। मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी के बावजूद ये इलाका ठंडा बना रहता है, इसीलिए पर्यटक यहाँ की प्राकृतिक छटाओं को देखकर मुग्ध होते हैं और शांति का अनुभव करते हैं। राजस्थान के अलवर का सरिस्का टाइगर रिजर्व भी पर्यटकों की पसंदीदा जगहों में से एक है। यहाँ बाघों की अटकेलियाँ पर्यटकों को खूब आकर्षित करती हैं। पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरिस्का प्रशासन ने यहाँ विकास कार्यों की रफ्तार तेज कर दी है।
8: गेट बनाने का प्रस्ताव दिया है, सरकार से बजट प्राप्त होते हुए काम शुरू हो जाएगा। ऐसे प्रतापबंध गेट के सुदृढ़ीकरण का भी प्रस्ताव में दिया है, साथ ही साथ जो टहला और सरिस्का के दोनों गेट्स हैं उसको भी सुदृढ़ीकरण के प्रस्ताव में सरकार को दिया है। संभवतः हमें बजट इस साल प्राप्त हो जाएगा तो सुंदर जो गेट हैं वो बन जाएंगे। टूरिस्ट को बैठने के लिए, उनकी छाया के लिए जो है वो व्यवस्था हमने की है, रोड ठीक किए हैं। इसके अलावा एंटरप्रेन सेंटर का काम भी चल रहा है, तो टूरिस्ट को सुविधाएं प्रोवाइड करने के लिए हमने सारे प्रयास किए। साथ ही साथ जंगल के अंदर जहाँ टॉयलेट्स की सुविधा नहीं थी, उनको टॉयलेट की सुविधा भी हमने उपलब्ध कराई है। कई जगह नए टॉयलेट्स बनाए हैं, पुराने जो टॉयलेट्स हैं उनको भी ठीक किया है, और साथ ही साथ हमने टेंडर के माध्यम से इन टॉयलेट्स की साफ सफाई के लिए भी हम लगातार व्यवस्था कर रहे हैं, जिससे पर्यटकों को एक अच्छा अनुभव।
0: पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटकों की सुविधा का ध्यान रखना जरूरी है, यही वजह है कि ऐसी जगहों में विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है। चमोली से कमल नयन सिलोड़े, अलवर से हिमांशु शर्मा और श्रीनगर से अशरफ बानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
9: न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहाँ शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार।
10: आज शेयर मार्केट में सेंसेक्स और निफ्टी में दो दिन की गिरावट के बाद रिकवरी देखी गई। सेंसेक्स बढ़कर 76,922.64 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 140.10 अंक चढ़कर 24,005.85 पर बंद हुआ। ग्लोबल मार्केट में पॉजिटिव ट्रेंड और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के बीच बाजार में ये उछाल दर्ज हुआ है। आज राजधानी में सोने की कीमतों में जहां गिरावट देखी गई, वहीं चांदी की कीमतों में लगातार तेजी नजर आई। दिल्ली में सोना जहां 1,300 रुपए घटकर 1,44,500 रुपए प्रति 10 ग्राम हुआ, वहीं चांदी की कीमत 5,000 रुपए बढ़कर 2,35,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया फिर नीचे आ गया है। एक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 67 पैसे गिरकर 95.23 पर बंद हुआ, क्योंकि डॉलर इंडेक्स के मजबूत होने से स्थानीय मुद्रा पर दबाव आया है।
9: चलिए न्यूज पथ में खबरों के सफर को आगे बढ़ाया जाए, उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर।
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
12: ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
9: आर्थिक मोर्चे पर देश के लिए गुड न्यूज, जून में 1.94 लाख करोड़ जीएसटी कलेक्शन, पिछले साल से 14% ज्यादा, इंपोर्ट से होने वाली कमाई बढ़ी। मॉनसून के चलते केदारनाथ के लिए संचालित हेली सेवाओं पर 5 जुलाई तक लगी रोक, केदारनाथ धाम के लिए 8 हेली सेवाएं हो रही थी संचालित। पहाड़ों पर मॉनसून का दिखने लगा असर, रुद्रप्रयाग में लगातार हो रही बारिश से अलकनंदा नदी का बढ़ा जलस्तर, नदी के किनारे बसी भगवान शिव की मूर्ति तक पहुंचा पानी। चले न्यूज पथ पर खबरों के सफर को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन उससे पहले हमें रुकना होगा यहाँ, यानी कि वायरल चौक पर। यहाँ देख लेते हैं उन वीडियोस को जो कि सोशल मीडिया में धमाल मचाए हुए हैं। इनमें से कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो आपको इमोशनल कर देंगे और कुछ आपको हंसने पर मजबूर।
13: सोशल मीडिया पर वायरल ये तस्वीरें निर्माण कार्य में लगे मजदूरों के जबरदस्त तजुर्बे को तस्दीक करती हैं। तस्वीरों में देखिए एक नीचे काम कर रहा मजदूर कैसे ऊपर काम कर रहे मजदूर को रॉ मटेरियल देता है और कैसे दूसरा मजदूर उसे कैच करता है। ये वीडियो बता रहा है कि दोनों न सिर्फ अपने काम में परफेक्ट है बल्कि दोनों को जबरदस्त तजुर्बा भी है और दोनों अपना काम एंजॉय भी कर रहे हैं। तिब्बती आध्यात्मिक परंपराओं में बकरी और उसके सींग बहुत अहम होते हैं, इसीलिए यहाँ लोग अक्सर बकरी पालते दिखाई देते हैं। इन तस्वीरों में इस तिब्बती बच्ची को बकरी के इन बच्चों के साथ देखिए जरा, आपस में इनका प्यार सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। बकरी के बच्चे इस प्यारी सी बच्ची के साथ खूब मस्ती कर रहे हैं और बच्ची उनके स्पर्श का एहसास ले रही है। लोग इस वीडियो को देख कर काफी खुश हो रहे हैं। दुनिया भले ही पति पत्नी के बीच सूरत को अहम माने, लेकिन ये रिश्ते वही लंबे चलते हैं जहां सीरत अहम होती है। इस वीडियो को देखकर आप इस बात की सत्यता को महसूस कर पाएंगे। इस बुजुर्ग कपल को ही देख लीजिए जरा, ये वृद्ध पति अपनी बूढ़ी पत्नी को जिसे चलने फिरने में दिक्कत है ठेले पर बिठा कर ले जा रहा है और अपनी वफादारी सिद्ध कर रहा है। सोशल मीडिया पर लोग इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हुस्न कुछ देर का तमाशा है, वफादारी सारी उम्र का किस्सा। इन वायरल तस्वीरों में इस महिला को देखिए, इसे प्यास लगी है और ये रेलवे स्टेशन पर लगे नल से पानी पीना चाहती है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी से ज्यादा अवगत नहीं है। लेकिन फिर जब महिला का दिमाग चलता है तो वो ऐसा जुगाड़ लगाती है कि देखने वाला उसके दिमाग की सराहना किए बिना नहीं रहता। क्या कभी रेलवे स्टेशन पर आपके साथ भी ऐसा हुआ है? अगर हुआ है तो आप इनसे कुछ प्रेरणा ले सकते हैं, आखिर दिमाग है तो इस्तेमाल तो करना ही चाहिए। सोशल मीडिया पर जिस किसी की भी नजर इन तस्वीरों पर गई, हंसते मुस्कुराते हुए नहीं रहा। पहली नजर में अपनी ताकत का जलवा दिखाते हुए इस पहलवान को देखकर लगता है कि ये इतना वजन उठाकर ही मानेगा, लेकिन इतने दिखावे के बाद जब ये हल्का वाला डंबल उठाता है तो सबकी हंसी छूट जाती है। वैसे है ना पहलवान का डंबल दिखाने का अनोखा अंदाज।
9: न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी दिल्ली में बिना पीयूसी नहीं मिलेगा पेट्रोल। जी हां, दिल्ली सरकार ने हर साल सर्दियों में बढ़ने वाले पॉल्यूशन पर लगाम लगाने के लिए कड़े नियमों की घोषणा की है। ऐसे में इस साल दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण पर नियंत्रण करने के लिए विंटर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क प्लान लागू किया है। इसके तहत दिल्ली के लोगों को कुछ खास बातों का ध्यान रखना होगा। जिन लोगों के पास पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट यानी कि पीओसी का वैध सर्टिफिकेट नहीं होगा, उन्हें दिल्ली के पेट्रोल पंपों से डीजल, पेट्रोल, सीएनजी या फिर एलपीजी नहीं मिलेगी। 1 नवंबर से 28 फरवरी तक लागू रहने वाले इन निर्देशों में वाहनों, निर्माण कार्यों, दफ्तरों, पार्किंग और खुले में आग जलाने पर सख्त नियंत्रण शामिल है। सरकार का कहना है कि पिछले 3 वर्षों में सर्दियों के दौरान AQI लगातार बहुत खराब से गंभीर श्रेणी तक पहुंच जाता है, इसलिए अब स्थायी और सख्त उपाय लागू किए जा रहे हैं। प्लान में कहा गया है कि दिल्ली के सभी पेट्रोल, डीजल और सीएनजी पंपों पर पूरे साल केवल उन्हीं वाहनों को ईंधन मिलेगा जिनके पास वैध पीयूसी होगा। वहीं बिना पीयूसी वाले वाहन पकड़े जाने पर जुर्माना लगाया जाएगा। 1 नवंबर से 28 फरवरी तक अधिकृत पार्किंग स्थलों की फीस दोगुनी कर दी जाएगी। डीएमआरसी की पार्किंग सुविधा को इस बढ़ोतरी से बाहर रखा गया है ताकि लोग मेट्रो का अधिक उपयोग करें। 1 नवंबर से 31 जनवरी तक सरकारी और निजी कार्यालयों में केवल 50% कर्मचारी ही उपस्थित रह सकेंगे, बाकी कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य होगा। इसके साथ ही निजी कंपनियों को कारपूलिंग, सार्वजनिक परिवहन और अलग अलग शिफ्ट लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली में हर साल सर्दियों में होने वाले प्रदूषण संकट को रोकने के लिए ये प्लान हर साल लागू किया जाएगा, क्योंकि सर्दियों के मौसम में दिल्ली में प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ता है। ऐसे में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये जानने के लिए हमारी सहयोगी मनीषा लड्डा ने दिल्ली में कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी।
14: हर साल समस्या रहती है, गैस चैम्बर जो है सर्दियों में बन जाता है, दिल्ली किस तरीके से घुटती है वो हम सभी ने देखा है, और हर साल जो है कुछ ना कुछ नियम जो है लागू किए जाते हैं, लेकिन इस बार पहले से, हालांकि गर्मी है लेकिन कुछ महीने पहले से ये तैयारी जो है वो शुरू कर दी है कि POC सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आपको CNG पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। तो आपको लगता है कि ये कुछ महीनों से पहले जो तैयारी शुरू की जा रही है वो एकदम परफेक्ट है?
15: आप ये देखिए कि अगर हम इस वक्त भी देखें तो हमारा AQI दिल्ली का 109 से लेके 256 के बीच होवर कर रहा है, पिछले एक हफ्ते की एवरेज निकाल लें।
14: सर ज्यादा ही है इससे।
15: 252 का मान लीजिए आप जो ऊंचा चल रहा है, तो ये कोई अपने आप में कोई बढ़िया पोल्यूशन की कंडीशन तो है नहीं। और इसके अंदर जो है हमने पिछले साल भी देखा है कि जब पूरे पोल्यूशन के जो मीटर्स थे AQI के मॉनिटरिंग स्टेशन सब फेल हो गए थे, 500 से ऊपर की रीडिंग सब जगह पहुंच गई थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार ने पिछली बार से सबक लेते हुए इस बार कोशिश करी है कि एडहॉक बेसिस पे पहले से ही कोई पॉलिसीज जो है वो डिक्लेयर की जाए ताकि जनमानस तक वो चीजें पहुंच सके और इम्प्लीमेंट हो सके, जो अपने आप में एक अच्छा प्रयास है। अब आप ये देखिए कि जैसे उन्होंने पोल्यूशन के लिए कहा कि आप गाड़ी के अंदर पेट्रोल डीजल आपको तब मिलेगा या CNG तब मिलेगी जब आपके पास पॉल्यूशन सर्टिफिकेट हो, लेकिन इसके साथ में ना दो चीजें आपके लिए एक जरूर ऐड करना चाहता हूं। पहली चीज तो यह है कि जो पोल्यूशन सर्टिफिकेट्स हैं पहले तो उसकी मॉनिटरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ताकि जो गुड व्हीकल्स हैं उन्हें ही सर्टिफिकेट अवेलेबल हो पाए, ना कि ऐसा कि जैसे कोई भी व्हीकल जाके पोल्यूशन सर्टिफिकेट को बाय कर लेता है या पीछे से पैसा देके उनकी जेब गरम करके वो सर्टिफिकेट्स को ले लेता है। दूसरा सबसे ज़्यादा ज़रूरत है दिल्ली के अंदर जो ट्रैफिक मैनेजमेंट की है, ट्रैफिक मैनेजमेंट की वजह से हमारे दिल्ली के अंदर जो व्हीकुलर पोल्यूशन है वो इतना हाई रेट पे चलता है कि जो अनप्रिसिडेंटेड है पूरे हिंदुस्तान के अंदर क्या पूरे वर्ल्ड वाइड। सबसे ज़्यादा मोस्ट पोल्यूटेड सिटी बनने में व्हीकुलर पोल्यूशन का सबसे ज़्यादा हाथ है। आप ये देखिए हर चौराहे के ऊपर जो बड़े चौराहे हैं उनके ऊपर इतना ज़्यादा कंजेशन खड़ा हो जाता है, रेड लाइट्स की मॉनिटरिंग जो है अब सारे पूरी सरकारें कहती हैं हम AI है, AI आ गया, तो आप सब AI से जो है कम से कम जो है व्हीकुलर पोल्यूशन जो हो रहा है, व्हीकल की जो मूवमेंट्स है उसको ट्रैक करके उसी हिसाब से रेड लाइट्स को मैनेज करें, और उससे एरिया के अंदर से व्हीकल्स अगर निकलने चालू हो जाते हैं तो अनडाउटेडली उन एरियाज के अंदर जहां पे जो है रेड जोन्स हैं वो कम हो जाएंगे।
14: तभी EV पॉलिसी भी जो है वो भी लेकर आई गई है, लेकिन एक सवाल ये भी कि पार्किंग जो होती है उसका जो फी होती है वो भी चार्जेस डबल कर दिए जाएंगे सो दैट पब्लिक जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें ना कि अपने निजी वाहन। तो आपको लगता है ये ठीक है कि पार्किंग के जो चार्जेस है वो बढ़ा दिए जाए? तो
16: मेरे ख्याल से ये सही नहीं है कि आप पार्किंग के चार्जेस बढ़ा दें, क्योंकि आप ये देखिए प्राइम टाइम पे इस समय जो है मेट्रोज के अंदर इतनी भयंकर भीड़ है, जो मंडी हाउस हो गया या अपना राजीव चौक हो गया वहाँ लोग एक के ऊपर एक पड़े हुए हैं, तो ये मेरे को लगता है कि ये सही नहीं है, बल्कि इससे क्या है ये पार्किंग माफियाज हैं उनको बढ़ावा मिलेगा जो लोग अलग अलग जगह अपने वैसे ही काटने लगते हैं। ये सही नहीं है कि आप पार्किंग को बढ़ाएं चार्जेस को, क्योंकि आम आदमी पे ही हैं जी।
14: उसके अलावा जो है ऑप्शन देखने चाहिए, लेकिन मैम आपको लगता है कि हमारी दिल्ली में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो इतना स्ट्रांग है कि अगर लोगों से अपील की जाए कि निजी वाहन छोड़ के पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करो तो इतने हैं कि पूरी दिल्ली सफर कर सके?
17: देखिए सरकार तो बराबर प्रयास कर रही है, इवन इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में हम देखें तो बसेस भी आ गई हैं 100% स्मोक फ्री बसेस, तो उनका जनरल पब्लिक यूज़ कर सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकती है, ताकि देखिए पॉल्यूशन से तो सबको प्रॉब्लम है, सबको ही खराब हवा मिल रही है, तो एक्चुअली उससे तो मतलब हेल्थ पे बहुत बड़ा हैजर्ड है ये। और इसके साथ ही बल्कि मेट्रो है या ये इलेक्ट्रिक बसेस हैं या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट होने चाहिए और पब्लिक की सुविधा के लिए होने चाहिए कि हम बहुत इजीली एक्सेस कर सकें इनको, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को। इसके अलावा मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी, जैसे हम लोग भी चाहते हैं इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स खरीद लें ताकि पॉल्यूशन फ्री दिल्ली में थोड़ा हमारा सहयोग हो सके, लेकिन इलेक्ट्रिक चार्जिंग जो है व्हीकल्स की वो भी तो इतनी आसान और सबके लिए मुहैया हो कि हम अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल है हमारे पास तो हम उसको इजीली चार्जिंग स्टेशन ज्यादा होने चाहिए।
14: और ये है भी क्योंकि इस जब ईवी पॉलिसी लागू होने की बात हुई तो बहुत लोगों का यही था कि ईवी पॉलिसी ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल ठीक है, लेकिन चार्जिंग स्टेशन भी उतने होने चाहिए ताकि हर कोई इजिली चार्ज कर सके।
18: आई थिंक फॉर मी पर्सनली आई वुड नॉट ऑप्ट फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट कंसिडरिंग आई एम अ फीमेल इंडिविजुअल। आई अंडरस्टैंड कि मेट्रो है सब है बट आई थिंक सेफ्टी इज अ बिग इशू इन दिल्ली एंड व्हेन आई एम ट्रैवलिंग बैक फ्रॉम वर्क सपोजिंगली आई वुड नॉट प्रेफर टू टेक अ मेट्रो, आई वुड स्टिल ऑप्ट फॉर एन ऊबर जस्ट बिकॉज ऑफ लाइक सेफ्टी पर्पसेज। अभी भी मेट्रो में एक फर्स्ट कोच होता है वो फीमेल्स के लिए, बट आई थिंक अगर इफ वी आर प्रमोटिंग दैट पीपल शुड नॉट यूज लाइक private vehicles, I think it's very important to pay attention to women's safety as well.
14: Safety पे मतलब ध्यान देना चाहिए अगर आप निजी वाहनों को छोड़कर public transport की बात कर रहे हो। लेकिन साथ ही साथ ये भी बोला है कि अब कोई भी कहीं पर भी कुछ भी जलाएगा, किसी भी तरीके का कचरा जला रहा है या कुछ भी ऐसा चीज हो रहा है तो फाइन लगेगा, तुरंत एक्शन लिया जाएगा, FIR तक हो सकती है और साथ ही साथ ड्रोन से भी निगरानी की जाएगी।
19: हाँ जी हाँ, तो ये एक अच्छा एक रूल है इन लोगों का बिकॉज उसके वजह से भी बहुत ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ता है और बहुत सारी डिजीजेज उससे लोगों में आती है जिस वजह से हार्ट अटैक हो गए और ब्रीदिंग बहुत लोगों के लिए बहुत इशू हो जाते हैं। तो आई थिंक दैट्स अ गुड स्टेप बाय द गवर्नमेंट।
14: तो पोल्यूशन के लिए जो तैयारी की जा रही है निपटने की, तो आप मानते हो कि ये चीज़ ठीक हो रहा है?
19: जी, ये पोल्यूशन के लिए बिल्कुल ठीक है और ज़्यादा से ज़्यादा आग को जलाने से रोकना चाहिए जिससे कि जो ज़्यादा एज के लोग हैं उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होती थी पोल्यूशन की वजह से और हमारा नेचर में भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा था, पेड़ पौधे नुकसान हो रहे थे।
9: फिल्म उत्तर दा पुत्तर का ट्रेलर हुआ रिलीज, इसके साथ ही फिल्म जगत से जुड़ी कुछ और खबरों को जानने के लिए आइए सीधे आपको लिए चले फिल्मी मोड पर।
20: फिल्म उत्तर दा पुत्तर का ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। इसे अभिनेता मनोज वाजपेयी ने लॉन्च किया। ट्रेलर में इमोशन, ट्विस्ट और मनोरंजन का मिश्रण देखने को मिल रहा है। इस फिल्म में अनु कपूर, पवन मल्होत्रा, रुखसार रहमान, ब्रिजेंद्र काला, जिवेशु अहलुवालिया, राजेंद्र सेठी, समित गुलाटी और नितिन अरोड़ा जैसे कलाकार नजर आएंगे। रविन्द्र सिवाच के निर्देशन वाली फिल्म उत्तर दा पुत्तर 24 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। आयुष्मान खुराना की नई फिल्म का हुआ आधिकारिक ऐलान। मोपापा नाम से बनने वाली इस फिल्म का निर्माण यशराज फिल्म्स और पोषंपा पिक्चर्स मिलकर कर रहे हैं, जिसमें आयुष्मान खुराना मुख्य किरदार में नजर आएंगे। समीर सक्सेना के निर्देशन में बनने वाली ये फिल्म 19 फरवरी 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। साउथ सिनेमा के सुपरस्टार यश की फिल्म टॉक्सिक का नया टीजर रिलीज कर दिया गया है, जिसमें तेज एक्शन और बोल्ड सीन देखने को मिल रहे हैं। टीजर के साथ फिल्म की लेडी स्टार कास्ट की पहली झलक भी रिवील की गई है। वीडियो में कियारा आडवाणी, हुमा कुरैशी, नयनतारा, तारा सुतारिया और रुक्मिणी वसंत अपने किलर अंदाज से फैंस का ध्यान खींचती दिख रही है। टीजर में बच्चों को इससे दूर रखने की वार्निंग दी गई है। ये फिल्म 26 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी। मिलाप जावेरी की निर्देशन वाली फिल्म तेरा यार हूँ मैं का तुम ही से प्यार पूरा गाना रिलीज कर दिया गया है। इस गाने में अमन इंद्र कुमार और आकांक्षा शर्मा की रोमांटिक केमिस्ट्री नजर आ रही है। इस फिल्म से अमन बॉलीवुड में डेब्यू कर रहे हैं, जो निर्देशक इंद्र कुमार के बेटे हैं। उनके साथ मुख्य किरदार में आकांक्षा शर्मा दिखाई देंगी। फिल्म तेरा यार हूँ मैं 24 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

0: महेश मांजरेकर, जयप्रदा, जरीन वहाब स्टारर फिल्म जय हिंद जय सिंध का फर्स्ट लुक पोस्टर रिलीज कर दिया गया है, जिसमें विभाजन के दौर का दर्द और उस समय के माहौल की झलक मिलती है। इंद्रजीत लंकेश निर्देशित ये फिल्म अक्टूबर में रिलीज होगी। इस फिल्म में विक्रम कोचर, उपासना सिंह, इंदिरा तिवारी, छाया कदम, राहुल देव, अमित बहल जैसे कलाकार भी नजर आएंगे। रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। आज बात बिहार के सहरसा की, जहां कोसी के मखाने को अपना नाम मिलने वाला है, इसलिए यहां मखाना किसानों में खुशी की लहर है। दरअसल सहरसा जिले के नवहट्टा ब्लॉक में मुरादपुर गांव में पहला मखाना प्रोसेसिंग प्लांट शुरू हो गया है। इसके खुलने से अब किसानों को सही दाम मिल सकेगा। यही नहीं, इससे रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। ये सहरसा जिले के नवहट्टा ब्लॉक में शुरू किए गए पहले मखाना प्रोसेसिंग प्लांट की तस्वीरें हैं। हाल ही में इस प्लांट का शुभारंभ हो गया, जिससे इलाके के मखाना किसानों के चेहरों पर खुशी की लहर है। कोसी इलाके में मखाना का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है, लेकिन जब ये मखाना घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुँचता है तो वो तो मशहूर हो जाता है, लेकिन जहाँ से वो पनपा है उस इलाके की पहचान खो जाती है। बस इसलिए सहरसा और कोसी इलाके को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने के लिए यहाँ के एक किसान के बेटे अमित ठाकुर ने मुरादपुर के छोटे से गांव में स्थानीय मखाना किसानों को मखाना प्रोसेसिंग प्लांट का तोहफा दे दिया है।
1: हम लोग बचपन से सुनते आ रहे थे कि हमारे गांव में मखाना का उत्पादन बहुत अच्छा होता है, लेकिन जब हम लोग बाहर गए, हम लोग ने जब दिल्ली में पता किया, बैंगलोर में पता किया, तो उस मानचित्र पर, मखाना के जो मानचित्र पर सहरसा का नाम हमें बहुत धूमिल दिखाई देता था। यहाँ पे जो है पूर्णिया, मधुबनी, दरभंगा, यही के मखानों की वहाँ पे गूंज थी। सहरसा के मखान हम लोग बहुत कम जगह सुनते थे कि सहरसा से बहुत अच्छा क्वालिटी का मखान आता है, लेकिन जब यहाँ के हमने लोकल किसानों से बात की तो उन्होंने बताया कि यहाँ का क्वालिटी जो है वो वन ऑफ द फाइनेस्ट है। तो उसको फिर हमने आगे बढ़ाने के लिए हमने यहीं पर प्रोसेसिंग प्लांट का सोचा कि हम लोग यहाँ पर स्थापित करेंगे, ताकि यहाँ के जो लोकल किसान हैं वो डायरेक्टली हमें यहाँ पे बेच सके और उस मखाना को हम वैश्विक स्तर तक लेकर जाएगा।
0: नवहट्टा ब्लॉक मखाना की खेती का एक बड़ा केंद्र है और सैकड़ों किसान अपनी आजीविका के लिए इस पर निर्भर है। इस प्लांट की दैनिक उत्पादन क्षमता 1 टन की है, यानी एक महीने में यहाँ 30 टन मखाना प्रोसेस किया जाएगा। प्लांट में ऑटोमेटिक मशीन से सभी तरह के फ्लेवर मिक्सिंग की भी व्यवस्था की गई है, साथ ही पैकेजिंग की व्यवस्था भी ऑटोमेटिक है। इस प्लांट पर करीब 25 से 30 परिवारों को रोजगार मिलेगा। किसानों को मिलाकर लगभग 250 से 300 लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से यहां काम मिलेगा। कंपनी प्रोसेसिंग प्लांट के कर्मचारियों को ट्रेनिंग की व्यवस्था करेगी। यहां से प्रोसेस किया हुआ मखाना शंघाई तक भेजने का प्लान है। फिलहाल सहरसा का ये मखाना दुबई, कनाडा में एक्सपोर्ट का प्लान हो रहा है। देश में कर्नाटक, महाराष्ट्र, बंगाल और दिल्ली NCR में प्रोसेस मखाना भेजा जाएगा। इस प्लांट को तैयार करने में 3.5 से 4 करोड़ रुपए लगे हैं। स्थानीय किसानों की अगर फायदे की बात करें तो पहले यहां के किसान बिचौलियों के जरिए पूर्णिया या दरभंगा जैसे जगहों पर जाकर मखाना बेचने को मजबूर थे, लेकिन अब स्थानीय किसानों से डायरेक्ट प्लांट के लिए मखाना खरीदा जाएगा, जिससे किसानों को अच्छी कीमत मिलेगी।
1: अभी फिलहाल हम लोग अगर भारत में बात करें तो कर्नाटका, महाराष्ट्र, दिल्ली NCR और वेस्ट बंगाल, ये 4 हम लोग प्लान कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। और हम लोग का प्लान ये भी है कि हम दुबई और कनाडा तक पहुँचें, और हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि हम सहरसा से संघाई तक हम पहुँचें और सहरसा के मखान की धूम जो है वो संघाई तक जाए।
0: प्लांट के शुभारंभ से मखाना की खेती करने वाले स्थानीय किसानों में खुशी है, क्योंकि इससे सैकड़ों लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे और विकास के दरवाजे खुल गए हैं।
2: किसान को बहुत बड़ा इसमें फायदा मिलना गया, इसलिए मिलेगा कि जो आज पहले हम लोग गुड़ी बहार करके गांव-गांव से पैकार आता था, पैसा जो उचित दाम था वो मिलता नहीं था। आज ये उद्योग लगने से किसान को भारी फायदा होने वाला है और गांव में किसान बड़ा खुशहाल है। जो हम लोग के गांव में इस तरह का मखान का, मिथिला मखान का उद्योग लगा है, ये बहुत बड़ा बात हुआ।
0: इसके अलावा भी किसानों को प्लांट से जुड़ने के कई फायदे होंगे। प्लांट से जुड़ने वाले स्थानीय किसानों को 3 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस का कवर भी दिया जाएगा। इन किसानों की ट्रेनिंग मुरादपुर में ही करने की व्यवस्था की जाएगी। अहम बात यह है कि अभी तक जो किसान मखाना बेचते थे वो उन्हें पता ही नहीं चलता था कि उनका मखाना गया कहाँ और उनको क्या मुनाफा हुआ। लेकिन अब मुनाफा और सारा मार्केट सपोर्ट किसानों में बराबर बराबर बांटा जाएगा। हालांकि यहाँ के हर किसान की ये बात ज्यादा बड़ी है कि कोसी का मखाना अब अपने खुद के नाम से ही पहचाना जाएगा। जाहिर है इससे इलाके की भी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और मेहनत को पूरा मान सम्मान मिलेगा। बिहार के सहरसा से धीरज कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ब्रेक प्लाजा पर हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आपका ही मजा आएगा। ब्रेक के बाद लिए चलेंगे खेल चक्कर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छा।
4: Tune in how to. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
5: TuneIn has got your favorite podcast. From sports to special interests, did you know that you can listen to all your favorites offline? It's simple. Just head to any podcast page, tap the 3 little dots next to the episode title, and hit download. Whether it's true crime, lifestyle, health, and science, or anything else, stream your favorite podcasts and listen to them anytime, anywhere.
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के।
0: आईसीसी T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में टॉप पर पहुंचे ईशान किशन। जी हां, खेल जगत से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चले खेल चक्कर।
11: भारतीय क्रिकेट टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन आईसीसी की जारी मेंस T20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में टॉप पर पहुंच गए हैं। ईशान T20 रैंकिंग में नंबर 1 बनने वाले भारत के चौथे बल्लेबाज हैं। उनसे पहले विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव और अभिषेक शर्मा ये उपलब्धि हासिल कर चुके हैं। इसके साथ ही रैंकिंग में करीब 1 साल से इस पोजीशन पर काबिज अभिषेक शर्मा नंबर 2 पर आ गए हैं। ताजा रैंकिंग में ईशान के 876 रेटिंग पॉइंट्स हैं। उन्हें आयरलैंड के खिलाफ बेलफास्ट में खेली गई दो मैचों की T20 सीरीज और उससे पहले T20 वर्ल्ड कप में लगातार शानदार प्रदर्शन का फायदा मिला है। वहीं T20 गेंदबाजों की रैंकिंग में भारत के दो खिलाड़ी वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह टॉप 10 में शामिल हैं। ICC की ताजा टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग में जसप्रीत बुमराह फिर से 870 रेटिंग पॉइंट्स के साथ टॉप पर पहुंच गए हैं। वो न्यूजीलैंड के मैट हेनरी को पछाड़कर फिर से नंबर 1 टेस्ट गेंदबाज बन गए हैं, जबकि टेस्ट बैटिंग रैंकिंग में भारत के दो खिलाड़ी शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल टॉप 10 में शामिल हैं। शुभमन छठे तो यशस्वी 9वें नंबर पर हैं। यूपी के प्रयागराज के धावक बजरंग पांडे का कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए हुआ चयन। फेडरेशन कप 2026 में बजरंग ने 100 मीटर की रेस में अपना ही पुराना रिकॉर्ड तोड़ते हुए कॉमनवेल्थ गेम्स की टीम में अपनी जगह पक्की की। अब वो 23 जुलाई से 2 अगस्त तक आयोजित होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में 100 मीटर रेस में अपनी प्रतिभा दिखाएंगे, जिसके अभ्यास में वो जुटे हुए हैं। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी।
12: इस तरह के बालों का स्टाइल जीवन में संघर्ष बढ़ा देता है। किस तरह के बालों के स्टाइल वाले लोग लापरवाह होते हैं, और अगर सर पर बाल ना हो या कम हो तो ये किस ग्रह का प्रभाव होता है? आपके बालों का, बालों के स्टाइल का आपके भाग्य से क्या है संबंध, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
13: यू हियर इट वंस एंड रिमेंबर एवरीथिंग। One Hit Wonders brings back the songs that hit fast but stay forever. They own the moment, rule the charts, and live forever in our hearts every time they play. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search One Hit Wonders to start listening now.
7: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
8: अविश्वास में विश्वास बसता है।
6: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पथ राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: Whatever you're in the mood for, tune in has the music to match. From today's hits,
2: somebody save me,
1: to timeless favorites,
2: and life is like a song,
1: and new discoveries.
2: So much more than a history. Wake up.
1: It's all streaming in one place. Discover stations that fit your vibe and keep the music going all day long. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
3: देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। टीआईटी भोपाल, जेन जी'स गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स।
3: भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे पहले टी20 मुकाबले में टीम इंडिया ने टॉस जीतकर चुनी बल्लेबाजी। वैभव सूर्यवंशी को टीम में नहीं मिली जगह, वैभव के फैंस का बढ़ा इंतजार। आर्थिक मोर्चे पर देश के लिए गुड न्यूज, जून में 1,94,000 करोड़ जीएसटी कलेक्शन, पिछले साल से 14% ज्यादा, इंपोर्ट से होने वाली कमाई बढ़ी। पहाड़ों पर मानसून का दिखने लगा असर, रुद्रप्रयाग में लगातार हो रही है बारिश से अलकनंदा नदी का बढ़ा जलस्तर, नदी के किनारे बनी भगवान शिव की मूर्ति तक पहुंचा पानी। बद्रीनाथ में भगवान विष्णु के भक्तों ने अब तक के सारे रिकॉर्ड्स किए ध्वस्त, 14,00,000 से ज्यादा भक्तों ने किया दर्शन हर रोज, 15,000 से 20,000 श्रद्धालु कर रहे हैं दर्शन। केंद्रीय कैबिनेट की दिल्ली और उत्तर प्रदेश को 14,000 करोड़ से ज्यादा की सड़क परियोजनाओं को मिली मंजूरी। दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को बसंत कुंज से जोड़ेगी 6 लेन वाली टनल, वहीं कानपुर से करबई के बीच बनेगा एक्सेस कंट्रोल्ड ग्रीन हाईवे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना

0: नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। आपका स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं अमरनाथ यात्रा की। कुछ घंटों बाद ही यात्रा का श्री गणेश होने जा रहा है। जम्मू से शिव भक्तों का पहला जत्था बालटाल और पहलगाम के बेस कैंप के लिए निकलने वाला है, और इसलिए जम्मू यात्री निवास पर जबरदस्त चहल पहल जारी है। शिव भक्तों में गजब का जोश देखने को मिल रहा है, और जिनको पहले जत्थे में पवित्र गुफा जाने का अवसर मिला है, उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं है। आपको सबसे पहले लिए चलेंगे जम्मू के भगवती नगर में मौजूद यात्री निवास पर। इसके अलावा आपको श्रीनगर के पंथा चौक पर मौजूद यात्री निवास की हलचल भी दिखाएंगे, जहां पर हजारों की तादाद में मौजूद शिव भक्त सुबह ही यात्रा शुरू होने जा रही है, और यात्रा को लेकर क्या तैयारियां की गई हैं, बेस कैंप पर सुरक्षा के क्या इंतजाम हैं, आपको विस्तार से बताएंगे। देखिए, सबसे पहले आपको लिए चलते हैं जम्मू के यात्री निवास पर, जहां से कुछ घंटे बाद ही यात्रियों का पहला जत्था निकलने वाला है। देखिए, इसलिए इस वक्त भगवती नगर इलाके में जबरदस्त सुरक्षा है। इस पूरे इलाके को सील कर दिया गया है, चारों तरफ सीआरपीएफ की निगरानी देखने को मिल रही है। थोड़ी देर पहले देखिए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी यात्री निवास पहुंचे और यात्रा की तैयारियों का उन्होंने जायजा लिया। उन्होंने शिव भक्तों से मुलाकात की और उनको भोजन भी परोसा। तस्वीरें देखिए, कुछ घंटे बाद उपराज्यपाल पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाने जा रहे हैं। हमारे संवाददाता भी यात्री निवास पर मौजूद हैं, आपको दिखाते हैं तस्वीरें।
1: 3 जुलाई को बाबा अमरनाथ जी की यात्रा जो है वो शुरू हो रही है, और इस समय हम हैं भगवती नगर बेस कैंप में, यानी जो यात्री निवास है। देश भर से जितने भी श्रद्धालु बाबा अमरनाथ जी की यात्रा के लिए यहां पर पहुंच रहे हैं, और ठीक कुछ ही घंटों के बाद जो है पहला जत्था यहां से रवाना होगा। पहला जत्था रवाना होने में लगभग कुछ ही समय जो है वो बचा है, और बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहां पर प्रॉपर सिक्योरिटी के बंदोबस्त जो है वो यहां पर किए गए हैं, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस हो, सीआरपीएफ, और साथ में सिक्योरिटी के आप देख सकते हैं कि इस यात्री निवास की ओर अगर किसी को जाना है तो प्रॉपर यहां पर फ्रिस्किंग होती है, और इसके बाद ही अंदर प्रवेश मिलता है, या फिर उन लोगों को अनुमति दी जा रही है जिनके पास RIFD कार्ड है, या फिर जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, या फिर यात्री यहां पर जो है वो निवास स्थान में जो है वो रहेंगे। इस तरफ में अगर आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि यहां से प्रॉपर इन यात्रियों की जो स्लिप है वो चेक करके इनको जो है वो भेजा जा रहा है, क्योंकि कल सुबह ठीक 4 बजे बाबा अमरनाथ जी की यात्रा के लिए पहला जत्था जो है वो यहाँ से रवाना होगा, जो कि बालटाल और पहलगाम के रास्ते जो है वो 3 तारीख को दर्शनों के लिए बाबा के वहाँ पर जाएगा। और सुबह जो फ्लैग ऑफ है वो LG मनोज सिन्हा, जो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल हैं, वो करेंगे, और यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए, क्योंकि ये यात्री निवास जो है ये बेस कैंप यहाँ पर बनाया गया है। बेस कैंप के साथ तवी रिवर फ्रंट जहाँ पर रजिस्ट्रेशन जो है वो आज हो रही है, क्योंकि वहां पर नए काउंटर जो है एस्टेब्लिश किए हैं। आप देख सकते हैं कि यहां पर सिक्योरिटी के जो प्रॉपर बंदोबस्त हैं, और यहां पर जो है वो चेक किया जा रहा है। और आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ये सबसे जो जम्मू का प्रमुख जो बेस कैंप है, यहां पर ही सुबह LG मनोज सिन्हा जो है वो फ्लैग ऑफ करेंगे। यहां से यात्रा का पहला जत्था, जम्मू कश्मीर का जो पूरा प्रशासन है वो यहां पर मौजूद रहेगा, और यात्रियों को जो है प्रॉपर तरीके से जो व्यवस्था है वो यहाँ पर दी जा रही है। अब है आपका रजिस्ट्रेशन हो गया?
2: हो गया।
1: तो कब सुबह जा रहे हैं?
2: हाँ, सुबह।
1: कितने उत्साहित हैं कि बाबा के दर्शनों के लिए?
2: बहुत ज्यादा।
1: पहलगाम से जा रहे हैं, बालटाल से?
2: पहलगाम
1: से जा रहे हैं। आप कहाँ से सर?
3: रोहतक से ही।
1: रोहतक से ही है। तो कैसा लग रहा है इस बार व्यवस्था? आप आए हैं इस समय यात्री निवास में है, तो कैसा लग रहा है?
3: मैं स्टार्टिंग में 2022 में आया था, उससे 23 में भी आया, 24 में, 25 में, 26 में, तो 5वीं यात्रा है। हर बार कुछ न कुछ अच्छा मिलता है यहाँ पे, कुछ न कुछ अच्छी व्यवस्था करते हैं, तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। बहुत अच्छा समय वो कर रखा है यहाँ पर। बहुत सरकार, यहाँ की गवर्नमेंट, जम्मू की जो गवर्नमेंट है, वो हमारे लिए, यात्रियों के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है यहाँ पे।
1: कैसा लग रहा है कि सुबह आप दर्शनों के लिए जा रहे हैं बाबा के?
2: बहुत अच्छा लग रहा है जी। हम हर बार, हर साल आते हैं और उत्साह के साथ आते हैं, त्योहार की तरह मनाते हैं हम इसको, यात्रा को।
0: देखिए, शिव भक्तों का जमघट जो है यात्री निवास पर ही नहीं, आपको बता दें तवी रिवर फ्रंट पर भी देखने को मिल रहा है, जहां पर श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का सबसे बड़ा केंद्र महाआरती रहा। देश भर से आए भक्त इस पवित्र नदी के तट पर मौजूद हैं और उत्सव से भरे हुए हैं। हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट देखिए।
1: काफी वर्षों से यहाँ पर बाबा की यात्रा करने आ रहे हैं और इस समय हम सूर्यपुत्र तवी यानी तवी रिवर फ्रंट पर मौजूद है और यहाँ का जो दृश्य है वो अलौकिक है। मैं एक बार वीडियो जर्नलिस्ट से कहूंगा कि ये तवी का जो है एक नजारा जरूर दिखाएंगे, क्योंकि इतिहास में पहली बार हुआ है कि बाबा अमरनाथ जी की यात्रा में यहाँ पर जो देश भर से क्या पूरे विश्व भर से जो श्रद्धालु आएंगे उनके लिए यहाँ पर अलौकिक आरती, उनके यहाँ पर रहने का बंदोबस्त वो अपने आप में देखने को बनता है और बड़ी संख्या में हजारों की संख्या में श्रद्धालु जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और ऐसा अनुमान जो है वो जताया जा रहा है कि आने वाले समय में इस बार की जो यात्रा होगी वो ऐतिहासिक यात्रा होगी और जितने भी रिकॉर्ड है यात्रा के वो इस बार जो है वो यात्रा के रिकॉर्ड जो है वो बीट हो सकते हैं। तो ऐसे में साफ तौर पर ये तस्वीरें बदलते जम्मू कश्मीर की, देश भर से श्रद्धालु पर्यटक जो है वो बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, बाबा के जयकोषों के साथ जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काशी विश्वनाथ जी के और यहाँ पर नज़ारा दर्शनों दर्शन करने के लिए यहाँ पर जो है वो पहुँचे हैं और अपने आप में जो है वो एक ऐतिहासिक पल है। हर किसी को इंतज़ार है कि बाबा की इस यात्रा में पहुँच कर जो है उनके दर्शन किए जाए, उस अलौकिक शिवलिंग के दर्शन किए जाए।
0: देखिए अमरनाथ यात्रा का शुभारंभ अब बस कुछ ही घंटों पे दूर है। बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए पहला जत्था गुरुवार सुबह जम्मू से रवाना होगा। जम्मू श्रीनगर और पहलगाम बेस कैंप पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। यात्रियों को टोकन, रजिस्ट्रेशन और RFID कार्ड दिए जा रहे हैं, जबकि सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। इस बार भी लाखों शिव भक्त पवित्र गुफा में बर्फ से बने प्राकृतिक शिवलिंग के दर्शन करके बाबा का आशीर्वाद लेने पहुंचेंगे।

अपने धाम में बाबा बर्फानी विराजमान। पवित्र गुफा और गुफा का रास्ता, दोनों को शिव भक्तों का इंतजार। बस कुछ घंटों की बात है जब दुर्गम पर्वत का ये शिखर हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठेगा। जब बाबा बर्फानी का ये अलौकिक धाम भक्ति से सराबोर होगा। अनंतनाग में करीब 13,000 फीट की ऊंचाई पर, जहां बाबा बर्फानी इस साल करीब 6 से 7 फीट के बर्फ से बने शिवलिंग के रूप में मौजूद हैं। उनके दर्शन के लिए हजारों हजार भक्तों का कारवां बस जम्मू और श्रीनगर से निकलने ही वाला है। बाबा बर्फानी के दर्शन का अवसर जो साल में बमुश्किल 2 महीने के लिए मिलता है, उसे शिव भक्त गंवाना नहीं चाहते। जम्मू और श्रीनगर के ट्रांसिट कैंप पर जरा शिव भक्तों का जोश तो देखिए।

0: इस समय हम मौजूद हैं जम्मू शहर के भगवती नगर इलाके में स्थित यात्री निवास भवन के बाहर और यहां पर श्रद्धालुओं का आना जो है वो शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं में खासा उत्साह है। श्यामाना जी की यात्रा को लेकर यहां पर बम बम भोले का जयघोष हो रहा है, हर हर महादेव का जयघोष हो रहा है। देश के अलग अलग भागों से श्रद्धालु जो है यहां जम्मू शहर पहुंच रहे हैं और आप देख सकते हैं कि बम बम भोले का जयघोष हो रहा है, हर हर महादेव का जयघोष हो रहा है और जो श्रद्धालु है काफी व्याकुल है भगवान भोलेनाथ के दर्शनों के लिए। हम सीधा यहाँ पर श्रद्धालुओं से बात करते हैं। जी आप बताए, आप करते
1: हैं अंकित उपलाउदिया,
0: कहाँ के रहने वाले?
1: शाजापुर के।
0: ये बताएं मन में कितनी प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि आप इस यात्रा के लिए आए हैं?
1: जी जी बहुत हो रही है, बहुत उत्साहित है जाने के लिए बाबा बर्फानी के यहाँ पे।
0: जी पंजीकरण हो चुका है?
1: जी हो चुका है।
0: अच्छा आपको कौन सा तारीख मिली है, किस जत्थे में जा रहे हैं?
1: 4 तारीख।
0: अच्छा अच्छा
1: जी,
0: 4 तारीख में, तो मन में कितनी प्रसन्नता की अनुभूति?
1: जी जी बहुत हो रही है। जी
0: आप कहाँ के रहने वाले?
2: आप MP इंदौर।
0: अच्छा मन में कितनी खुशी है, क्या भाव है?
2: बहुत है।
0: अच्छा तो पहली बार यात्रा के लिए?
2: नहीं चौथी बार है।
0: अच्छा अच्छा, तो कैसा रहा है अब तक का आपका अनुभव, आप 4 बार यहाँ यात्रा करने के लिए?
2: अच्छा, बहुत अच्छा लगता है, सुविधा भी बहुत बढ़िया है, सब आइए, सुरक्षा भी बहुत है, कुछ नहीं होता है।

0: आनंद बोलले तो प्रसन्न असं वाटून राहिलं की कुठं आलो आपण असं, म्हणजे घरदार काशाची आठवण नाही काही नाही, आणि असं भोलेनाथचं एवढा आनंद की असं म्हणजे फर्स्ट टाइम बघत आहे लंगर जाई पण सर्व आणि सेवाई पण ठीक आहे.
1: आप बताइए आपका नाम.
2: मैं महाराष्ट्र से हूँ.
1: अकोला में कितनी खुशी है.
2: हमें बहुत खुशी है. परिवार सुनागोरे शंकर जी. हाँ
1: क्या मांगेंगे भगवान भोलेनाथ.
2: बकुली देवी मांगेंगे सुख शांति समृद्धि हो.
1: हाँ मन में कोई डर भय तो नहीं है.
2: नहीं नहीं कोई नहीं.
1: यहाँ पर देखिए श्रद्धालु जो है लगातार पहुँच रहे हैं यहाँ जम्मू में यात्री निवास के भवन के बाहर. और ये जो जत्था है, ये जो यात्रियों का समूह है, इनका कहना है कि इनको 4 तारीख मिली है यात्रा के लिए, यानी कि जत्था रवाना होने के लिए 4 तारीख इनको मिली है, यानी कि दूसरे जत्थे में जाएंगे. काफी खुश है, प्रसन्न है, मन में कोई ये डर तो भय तो नहीं है.
3: नहीं सर, बहुत पिछली बार भी हम आए थे, पिछली भी बहुत सुरक्षा का बहुत कड़ी इंतजामत थी.
1: पहली बार दूसरी बार आ रहे
3: हैं. सेकंड बार आयो मैं.
1: सेकंड बार आ रहे. कैसा अनुभव रहा पिछली बार?
3: बहुत अच्छा रहा. बहुत.
1: एक बार सभी जयघोष कर दीजिए.
0: बम बम
4: भोले,
0: बम बम
4: भोले,
0: जय बाबा
4: बर्फानी की जय हो,
0: जय बाबा
4: बर्फानी की जय हो,
0: बम बम
4: भोले,
0: बम बम
3: भोले. चले इंद्र जन का.
1: कहाँ के रहने वाले?
3: MP इंदौर.
1: अच्छा, पहली बार आ रहे हैं?
3: नहीं सेकंड ईयर.
1: सेकंड बार. पिछली बार कैसा अनुभव रहा आपका?
3: बहुत बढ़िया.
1: तो इस बार मन में कितनी प्रसन्नता है दूसरी बार आ रहे हैं?
3: बहुत प्रसन्नता है बाबा से मिलने के लिए.
1: पंजीकरण हो गया आपका?
3: हाँ अभी हो गया पंजीकरण.
1: तारीख को आपका जत्था?
3: 4 तारीख का है.
1: दूसरे जत्थे में? हाँ
3: हाँ.
1: एक बार सभी जयघोष कर दीजिए जोश के साथ.
3: चल आ जाओ.
1: देख सकते हैं कि यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं उनके मन में काफी प्रसन्नता है, काफी व्याकुल है सभी श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ के दर्शनों के लिए. लगातार यहाँ श्रद्धालु पहुँच रहे हैं.
5: जम्मू के यात्री निवास से शिव भक्तों का पहला जत्था गुरुवार की सुबह निकलने वाला है, लेकिन उसके बाद हर रोज यहाँ से पहलगाम और बालटाल के लिए यात्रियों को सुरक्षा के घेरे में भेजा जाएगा. ये जो हुजूम है इसमें देश के अलग अलग इलाकों के लोग शामिल हैं, बुजुर्ग हैं, साधु और सन्यासी भी हैं.
6: सन्यासी महाराज कहीं कोई कृपा हो जाए तो बस वहीं चल देते हैं.
1: कहाँ के रहने वाले?
6: कानपुर.
1: पहली बार यात्रा के लिए आए? आते
6: रहते. जुड़े हुए हैं.
1: पहली बार आए यात्रा के लिए? आते रहते.
6: आते रहते हैं हमेशा. आते रहते.
1: मन में क्या भाव रहता है?
6: पूरा गदगद रहता है. गदगद वो अंतर चेतना जागृत करते हैं.
1: अच्छा. इस बार मन में कितनी प्रसन्नता है इस बार जो आप यात्रा करने जा रहे हैं? इस बार की यात्रा के
6: अभी हम 5 केदार करके आए हैं.
1: अच्छा.
6: उसके बाद में अब इधर आ गए.
5: यात्री निवास पर जोश है और जम्मू के ही तवी रिवर फ्रंट पर जबरदस्त उमंग. ऐसा लगता है जैसे विराट उत्सव हो. कतारों में खड़े लोग, सभी को टोकन और रजिस्ट्रेशन के लिए अपनी बारी का इंतजार है. प्रक्रिया आसान है लेकिन थोड़ा सा धीरज रखना होगा और शिव भक्तों को इससे कोई परेशानी भी नहीं है.
7: कोशिश है कि हम बस वहाँ दर्शन कर ले और कोई इच्छा नहीं अभी तो. बस एक इच्छा है कि बस बाबा बर्फानी के यहाँ पहुँच जाए बस.
8: अमरनाथ श्राइन बोर्ड की जो व्यवस्था है यहाँ की सिक्योरिटी के लिए, चाहे यहाँ पर जो लंगर की जो व्यवस्था है वो भी एक्यूरेट है और इसमें हमें कोई प्रकार की कोई विशेष परेशानी नहीं हुई. और छोटी मोटी परेशानियाँ तो ये क्या है कि जीवन का एक हिस्सा है और ये भोले का दरबार है और इसमें अगर ये परेशानियाँ नहीं आएगी तो फिर उस वाइल का उस यात्रा का एंजॉय नहीं होगा.
5: टोकन और रजिस्ट्रेशन के साथ यात्रियों को RFID कार्ड दिए जा रहे हैं. यात्रा में सुरक्षा के नजरिए से ये कार्ड बहुत अनिवार्य है क्योंकि इसी के जरिए भीड़ को मैनेज भी किया जाएगा और हर यात्री की पहचान भी तुरंत हो जाएगी.
1: तो आप यात्रा के लिए पहली बार आए हैं? पहले भी आते रहे?
9: नहीं, मैं 2003 से लगभग 22 साल से आ रहा हूँ.
1: लगातार
9: जी.
1: तो क्या भाव रहता है मन?
9: भाव यही रहता है कि अपने जो भी भक्त पहली बार आ रहे हैं, नए भक्त जो आ रहे हैं हमारे साथ, वो बाबा बर्फानी के अद्भुत दर्शन जो इस धरातल पे भगवान अपरूप रूप से यहाँ प्रकट होते हैं, प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होते हैं और प्रत्यक्ष रूप से विलीन भी होते हैं, तो वो दर्शन देखने के लिए वो सभी भक्तों से मैं निवेदन करूंगा कि ये बाबा बर्फानी का एक बार दर्शन करें और ये अपने जीवन की जो भी मनोकामना है वो पूर्ण करें. आज पूरा शहर शिवमय हो गया है और भोलेनाथ की जय जयकार और जय घोष पूरे धरती से लेकर आकाश तक पूरा गूंजमान हो रहा है.
10: जमशेदपुर से हैं और बाबा की असीम कृपा है कि हम लोगों को ये मौका

0: मिला जो हम लोग पहले जत्थे में बाबा का दर्शन करेंगे।
1: अभी तक जो आपने व्यवस्थाएं यहाँ देखी है उससे संतुष्ट हैं?
2: बिल्कुल पूरी तरह संतुष्ट हैं, लेकिन कुछ जगह है यात्री कुछ परेशान हो जाते हैं कि यहाँ नहीं ये होगा वहाँ वो होगा। अब जैसे रिवर फ्रंट गए तो वहाँ पे बताया कि ये हो रहा है, फिर बोले कि नहीं भगवती नगर में होगा, कुछ लोग बोले स्टेशन पे होगा, तो थोड़े यात्री परेशान होते हैं, लेकिन बाबा के दर्शन के
1: दर्शन करने के लिए हर पीड़ा हर परेशानी
2: सहने के लिए तैयार हैं। अच्छा, अच्छा। कोई दुख दर्द नहीं है। अच्छा, मन में खुशी है।
1: अच्छा, आप हर वर्ष आते हैं यात्रा?
2: जी मेरी दसवीं बार रही है।
1: दसवीं बार
2: जी।
1: तो क्या भाव रहता है मन में?
2: यही भाव कि वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे संत निरामय, अपनी कोई इच्छा कामना बिल्कुल नहीं।
3: जम्मू में तवी किनारे ये जो भक्तों का महामेला है वो अगले करीब 2 महीने तक यूं ही चलने वाला है। देश भर से भक्तों की भीड़ जम्मू या फिर सीधे श्रीनगर पहुंचने वाली है। काफिले आते रहेंगे और बेस कैंप यानी बालटाल और पहलगाम तक पहुंचते रहेंगे, जहां हमेशा की तरह सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम है। हर शख्स हर गाड़ी की मुस्तैदी से जांच हो रही है। डॉग स्क्वाड के साथ सीआरपीएफ के जवानों ने एक मजबूत सुरक्षा घेरा बनाया है।
4: जो स्मेल करते हैं और उसे डिटेक्ट करते हैं कोई भी अगर सामान में कुछ भी होता है तो यहाँ जैसे आप देख पा रहे हैं कि सीधा पहले व्हीकल्स आती हैं। व्हीकल्स आने के बाद एक तो हमारे पास DSMD होता है और एक दूसरा डॉग होता है। तो डॉग जो है स्मेल करता है और कुछ भी अगर संदिग्ध वस्तु अगर पाई जाती है तो वो तुरंत डिटेक्ट कर लेता है। और साथ में उसी के साथ में हमारे BDDS का जो HSMD होता है वो भी एक टूल होता है, अगर कुछ भी होता है तो वो डिटेक्ट करने में हेल्पफुल।
3: हालांकि पहला जत्था गुरुवार को पहुंचेगा, पर पहले से ही श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है। पहलगाम बेस कैंप से सबसे ज्यादा श्रद्धालु पवित्र गुफा के लिए जाते हैं, क्योंकि दूरी ज्यादा होने के बावजूद ये रास्ता थोड़ा आसान है। इस साल भी यहाँ लाखों भक्तों के आने की उम्मीद है। श्रीनगर से अशरफ आनी, जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि यानी 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू होने जा रही है। ये यात्रा करीब 2 महीनों तक चलेगी और 28 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन के दिन संपन्न होगी। हमेशा की तरह इस बार भी पवित्र गुफा में महादेव के दिव्य हिमलिंग का निर्माण हुआ है। श्रद्धालुओं में बाबा बर्फान के दर्शन की खास उत्सुकता है और माना यह जा रहा है कि बड़ी तादाद में लोग अमरनाथ गुफा पहुंच सकते हैं, लिहाजा श्रद्धालुओं की सुविधा और सहूलियत के लिए खास इंतजाम किए गए हैं।

बाबा बर्फानी के दर पर लगा भक्तों का मेला। अमरनाथ यात्रा मार्ग पर फिर हो रहा बम बम भोले का जयघोष। शिव भक्तों पर बरसेगी बाबा बर्फानी की कृपा। आस्था के शिखर पर गूंज रहे बाबा बर्फानी के जयकारे।

0: जमीन से 13,000 फीट की ऊंचाई पर बर्फ से लगदग अमरनाथ गुफा की खूबसूरत वादियाँ फिर से आस्था, भक्ति और विश्वास का पवित्र संगम बनने जा रही हैं। यूं तो इन वादियों का कण कण शिव शक्ति का ही स्वरूप है, लेकिन बाबा बर्फानी के इस दिव्य और दुर्लभ स्वरूप के दर्शन के लिए दूर दूर से भोले के भक्त खींचे चले आते हैं। शिव भक्ति में आकंठ डूबे महादेव की लगन में गाते गुनगुनाते अब की बार भी शिव के मतवालों का मजमा जुट चुका है। बाबा बर्फानी की प्रथम पूजा हो चुकी है, अब यात्रा का श्री गणेश होना है। बता दें कि इस बार अमरनाथ यात्रा करीब 2 महीने तक चलने वाली है। अमरनाथ यात्रा 2026 की शुरुआत 3 जुलाई से हो रही है और यात्रा का समापन श्रावण पूर्णिमा रक्षाबंधन के दिन यानी 28 अगस्त को होगा। चूंकि अब पहले जत्थे की रवानगी में कुछ ही घंटे बचे हैं, सो देश भर के श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए कश्मीर में जुटने लगे हैं। यात्रियों के लिए श्रीनगर के पंथा चौक में ट्रांजिट कैंप बनाया गया है।
1: अमरनाथ यात्रा को लेकर के 3 जुलाई से जो पहला जत्था सीधे अमरनाथ गुफा तक पहुंचेगा, उसके लिए जम्मू से जो कॉन्वाय यहां पर चलेगा उसके लिए पूरी तैयारियां यहां श्रीनगर में भी की गई हैं। मैं इस वक्त पंथा चौक पर मौजूद हूं और आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लोगों की संख्या यहां भारी संख्या में मौजूद है और लोग जो है ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहां पर जुट रहे हैं। ये सारा ट्रांजिट कैंप बनाया गया है और इस ट्रांजिट कैंप में किस तरीके से लोग यहां भारी संख्या में मौजूद हैं, ये आपको दिखा रहे हैं। दूसरा, तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग इतनी संख्या में आज से ही जुटने लगे हैं। पहला जत्था जो है वो सुबह सुबह 3 जुलाई को बालटाल से रवाना होगा, साथ ही पहलगाम रूट जो है वहां से भी रवाना होगा। अगर इस ट्रांजिट कैंप की बात करें तो यहां पर सिक्योरिटी के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। सीआरपीएफ, आप देख रहे हैं कि यहां सीआरपीएफ के कमांडोज भी मौजूद हैं। इसके साथ साथ यहां पर जो श्रद्धालु हैं उनकी संख्या आप देख करके ये पता चल जाएगा कि किस तरीके से यहां पर लोगों में इस वक्त उत्साह है, क्योंकि लोग यही चाहते हैं कि जो पहली यात्रा है और जो शुरुआत हो रही है 3 तारीख से, उसमें सारे लोग भारी से भारी संख्या में पहुंचे।
2: खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज़ टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: Hi, everyone. Super Bowl champ Vernon Davis here from Legal Help Center. If you've been injured in an accident and think you deserve compensation, listen up, because we have legal professionals standing by right now to answer your questions for free. You can find out if you have a case and how much it's potentially worth.
1: Thanks, Vernon. You heard it, folks. If you've been injured, call and find out how much you qualify for. Call 800-702-1400. Advertisement sponsored by Legal Help Center. May not be available in all states. Not available in California.
2: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
3: Ready to listen to all your favorite audio? With TuneIn, you can catch your favorite music, news, sports, and more anytime, anywhere, across all your devices. From your smart speakers to smartphone, from your car to your TV. With TuneIn, you can enjoy all your favorite stations wherever you are. Plus, you can fire it up with voice command. Just ask your smart device to play TuneIn and start listening.
4: और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।

0: Hey, this is Freddie Coleman from Freddie and Harry. Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
1: Third period comes to an end. Game two headed to overtime.
0: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and nonstop sports talk so you don't miss a section of action.
1: They score!
0: Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
2: किस तरह के बालों का स्टाइल जीवन में संघर्ष बढ़ा देता है? किस तरह के बालों के स्टाइल वाले लोग लापरवाह होते हैं? और अगर सर पर बाल ना हो या कम हो तो ये किस ग्रह का प्रभाव होता है? आपके बालों का, बालों के स्टाइल का आपके भाग्य से क्या है संबंध, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
5: ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
6: कल रवाना होगा अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था। गहन सुरक्षा के बीच जम्मू से बालटाल और पहलगाम के बेस कैंप के लिए रवाना होंगे शिव भक्त। यात्रा को लेकर बाबा बर्फानी के भक्तों का जोश आए। आर्थिक मोर्चे पर देश के लिए गुड न्यूज। जून में 1,94,000 करोड़ GST कलेक्शन, पिछले साल से 14% ज्यादा। इम्पोर्ट से होने वाली कमाई बढ़ी। मॉनसून के चलते केदारनाथ के लिए संचालित हेली सेवाओं पर 5 जुलाई तक लगी रोक। केदारनाथ धाम के लिए 8 हेली सेवाएं हो रही थी संचालित। पहाड़ों पर मॉनसून का दिखने लगा असर। रुद्रप्रयाग में लगातार हो रही बारिश से अलकनंदा नदी का बढ़ा जलस्तर। नदी के किनारे बनी भगवान शिव की मूर्ति तक पहुंचा पानी। केंद्रीय कैबिनेट की दिल्ली और उत्तर प्रदेश को 14,000 करोड़ से ज्यादा के सड़क परियोजनाओं को मिली मंजूरी। दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को बसंत कुंज से जोड़ेगी 6 लेन वाली टनल। वहीं कानपुर से करबई के बीच बनेगी एक्सेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
6: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों का इंतजार अब कुछ घंटों के बाद हो जाएगा खत्म। कल सुबह तड़के जम्मू बेस कैंप से तीर्थयात्रियों का पहला जत्था किया जाएगा रवाना। एलजी मनोज सिन्हा हरी झंडी दिखाकर पहले जत्थे को करेंगे रवाना। यात्रा को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह। यात्रा से पहले भगवती नगर यात्री निवास पहुंचे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। तीर्थयात्रियों के लिए व्यवस्थाओं का जायजा लिया। एलजी ने बाबा बर्फानी के श्रद्धालुओं से बातचीत की, उनकी यात्रा सुरक्षित, शांतिपूर्ण और मंगलमय होने की कामना की। 57 दिनों तक चलने वाली श्री अमरनाथ जी यात्रा 3 जुलाई को दोनों मार्गों पर बेस कैंप पर होगी शुरू। 28 अगस्त 2026 को संपन्न होगी पवित्र यात्रा। चारधाम यात्रा में उमड़ा आस्था का जनसैलाब, अब तक करीब 42 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। केदारनाथ में लगा भक्तों का तांता, अब तक 14 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। बद्रीनाथ धाम में पहुंचे रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु, अब तक 14 लाख से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किए। चारधाम में ट्रांसपोर्ट और लोकल कारोबार को मिला बूस्ट, अब तक 4 लाख वाहन पहुंच चुके। हेमकुंड साहिब में भी भक्तों का तांता, अब तक 1.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने टेका मत्था। मॉनसून को लेकर मोदी सरकार का एक्शन प्लान, सूत्रों के हवाले से खबर। मंत्रालयों की तैयारी करने के लिए निर्देश, अल नीनो के कारण कम बारिश की आशंका। आज से 3 महीने के लिए सरिस्का, रणथंबोर, मुकुंदरा और वेशधारी समेत सभी टाइगर रिजर्व हुए बंद। मॉनसून के दौरान बफर जोन में पर्यटकों को मिलेगी सफारी का आनंद। 1 अक्टूबर से नए पर्यटन सीजन में लोगों को मिलेगी प्रवेश। चमोली में नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क में चौथा नंदा देवी एक्सपीडिशन अभियान संपन्न। हर 10 वर्षों में नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क में भेजा जाता है खास दल हिमालयी बदलाव और जैव विविधता को पढ़ने जाते हैं चुने हुए वैज्ञानिक। उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा जिले की तुलेल घाटी में बादल फटने से खेती की जमीन और मवेशियों को भारी नुकसान। पहाड़ों पर भारी बारिश की वजह से अचानक आई बाढ़, नालों और जलधाराओं का जलस्तर अचानक बढ़ा। कश्मीर के राजौरी जिले में भी भारी बारिश, कई जगहों पर भूस्खलन, सड़कें में मलबा जमा हुआ। बादल फटने से फसलों को भारी नुकसान पहुंचा, कई सड़कें क्षतिग्रस्त, कई गांवों में संपर्क टूटा। प्रशासन ने रास्ता साफ करने और नुकसान का आकलन जुटाने के लिए शुरू कर दिया काम, लोगों से मौसम देखकर यात्रा करने की अपील की। हिमाचल के लगभग सभी हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज, अगले 4 से 5 दिनों तक पूरे प्रदेश में मॉनसून की अत्यधिक सक्रिय रहने की संभावना। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में हुई मूसलाधार बारिश, तेज हवाओं के बीच पहाड़ों पर ठंड का एहसास। भारी बारिश से फसलों को मिली संजीवनी, तापमान में गिरावट। शिमला में भी हुई रात की बारिश, तापमान में गिरावट, पहाड़ियों पर छाई धुंध। पठानकोट में भारी बारिश, कई रिहायशी इलाकों में जलजमाव। मानसून के चलते केदारनाथ के लिए संचालित हेली सेवाओं पर 5 जुलाई तक का प्रतिबंध, केदारनाथ धाम के लिए 8 हेली सेवाएं चल रही थी। रुद्रप्रयाग में लगातार हो रही बारिश से अलकनंदा नदी पर बढ़ा जलस्तर, नदी के किनारे बनी भगवान शिव की मूर्ति तक पहुंच गया पानी। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी किनारे स्थित सभी घाट पानी से लबालब, किसी आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन अलर्ट। अरुणाचल प्रदेश के कई पानियोर जिले के दौरे पर शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान ने विस्थापित परिवारों से भी मुलाकात की, राहत और पुनर्विकास के लिए केंद्र सरकार की ओर से पूरी मदद करने का भरोसा जताया। जामनगर में मौसम ने अचानक करवट ली, कई गांवों में अच्छी बारिश दर्ज। अकोला में अगले 5 दिनों भारी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट, पूर्णा नदी में छोड़ा गया पानी। इंदौर में हुई जबरदस्त बारिश, गर्मी से मिली राहत, ट्रैफिक की धीमी हुई रफ्तार। देहरादून में हुई मूसलाधार बारिश, सड़कों पर जलजमाव। मुंबई में अगले 6 जुलाई तक बारिश का ऑरेंज अलर्ट, IMD ने पूर्वानुमान के मुताबिक मुंबई में शुक्रवार तक भारी बारिश से बहुत बारिश होने की संभावना। दिल्ली और उत्तर प्रदेश वासियों के लिए आई गुड न्यूज, कैबिनेट ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश के 14,000 करोड़ से ज्यादा के सड़क प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी। NH-148AE के लिए 6 लेन वाली सड़क सुरंग के निर्माण को मिल गई मंजूरी। करीब 7,000 करोड़ की लागत से पूरा होगा 8.1 किलोमीटर लंबा ये प्रोजेक्ट। राजधानी से लगे उत्तर प्रदेश को भी मिली केंद्र से विकास की सौगात, उत्तर प्रदेश में NH-34 के कानपुर काबराई सेक्शन के निर्माण को मंजूरी मिल गई। 4 से 6 लेन वाला होगा ये 117.7 किलोमीटर लंबा एक्सेस कंट्रोल्ड सेक्शन। दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण करने के लिए पेट्रोल और डीजल वाहनों का दौर धीरे धीरे में खत्म करने की तैयारी शुरू, राजधानी में आज लागू हो गई नई ईवी पॉलिसी। इलेक्ट्रिक बाइक खरीदने पर मिलेगी सरकार सब्सिडी भी देगी। नई नीति के तहत दिल्ली में खरीदे और रजिस्टर्ड अधिकांश इलेक्ट्रिक का वाहनों को जीवन भर के लिए 100% रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस से मिल गई छूट। दिल्ली में सर्दियों के लिए सबसे बड़ा प्रदूषण एक्शन प्लान, बिना PUC नहीं मिलेगा पेट्रोल, 50% कर्मचारी घर से करेंगे काम। 1 नवंबर से 31 जनवरी तक दिल्ली के बाहर पंजीकृत और BS6 से नीचे के सभी वाहनों के प्रवेश पर रोक। बिहार में बाहरी विज्ञापनों के लिए नए नियम हो जाएंगे लागू, सम्राट कैबिनेट ने बिहार ब्रह्म विज्ञापन नियमावली लागू कर दी। पीरपुर हवाई अड्डे के लिए भी खरीदी जमीन, एयरपोर्ट के विकास के लिए करीब 89 एकड़ जमीन अधिकृत की। अब सेना समेत कई दूसरी एजेंसी इस्तेमाल कर सकेंगी स्वदेशी एरोस्टेट टेक्नोलॉजी। एरोस्टेट तकनीक के तहत इस्तेमाल होता है एक बड़ा गुब्बारा। इस तकनीक की इजाजत के बाद एक साल से ज्यादा का शोध किया गया। अब तक अमेरिका और इसराइल से तकनीक लेकर इस्तेमाल कर रहे थे। आर्थिक मोर्चे पर देश के लिए गुड न्यूज, जून में 1,94,000 करोड़ जीएसटी कलेक्शन, पिछले साल से 14% ज्यादा। महंगाई के मोर्चे पर राहत की खबर, नायरा एनर्जी ने पेट्रोल डीजल के दाम घटाए। देश में कमर्शियल सिलेंडर की कीमतें 183 रुपए तक घटी, 5 किलो का छोटू सिलेंडर भी सस्ता हुआ। आज जुलाई के पहले दिन के देश भर में कई बड़े बदलाव हो गए लागू, पासपोर्ट फीस बढ़ी, रेलवे आधार बैंकिंग से जुड़े नए नियम प्रभावी हुए। बीते हफ्ते से बंद पड़ी ईपीएफओ की डिजिटल सेवाएं आज से बहाल हो गई, आरबीआई का नया फ्रेमवर्क लागू। नए आर्मी चीफ धीरज सेठ को साउथ ब्लॉक में दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने गार्ड ऑफ ऑनर के बाद पिता को किया सैल्यूट। सहारनपुर दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, करीब 613 करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं की शिलान्यास और उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरसावा के स्कूल चलो अभियान के दूसरे चरण का भी शुभारंभ किया। इंडिगो ने इकोनॉमी क्लास के यात्रियों के लिए शुरू की इंडिगो लाइट फेयर। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में बुढ़ाना महोत्सव का रंगारंग आयोजन हुआ, मशहूर कवियों और शायरों ने बांधा समा। अरावली में इंद्रदेव को मनाने पहुंचे, बारिश ना होने से परेशान ग्रामीण महिलाओं ने कंटेश्वर महादेव मंदिर में शिवलिंग का जलाभिषेक किया। मान्यता है कि ऐसा करने से महादेव प्रसन्न हो जाते हैं और देते हैं जल्द झमाझम बारिश का वरदान। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के दौरे पर मुख्यमंत्री मोहन यादव, किसानों के साथ धान की रोपाई में लिया हिस्सा। मुख्यमंत्री मोहन यादव का पारंपरिक अंदाज देखने को मिला, उन्होंने पूरी तन्मयता के साथ किसानों के साथ कृषि कार्यों में हिस्सा लिया। चमोली स्थित फूलों की घाटी में पहुंचे रिकॉर्ड पर्यटक, अब तक 7,000 से ज्यादा सैलानियों ने दीदार किया। 34 विदेशी सैलानियों ने फूलों की घाटी का किया दीदार, पिछले साल के मुकाबले 1.5 गुना बढ़ी संख्या। दिल्ली के चितरंजन पार्क में मैंगो फेस्टिवल का आयोजन, पश्चिम बंगाल के 12 किस्म के आमों की लगी प्रदर्शनी। हिमसागर लंगड़ा लखन भोग समेत तमाम वैरायटीज उपलब्ध। मैंगो फेस्टिवल के साथ साथ हैंडलूम और हैंडक्राफ्ट से बनी चीजों का भी लगा हुआ है प्रदर्शन। आईसीसी की ताजा मेंस T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में ईशान किशन का बड़ा धमाका, दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज बने। ईशान ने करीब 12 महीने से टॉप पर काबिज अभिषेक शर्मा को पीछे छोड़ दिया। ईशान T20 रैंकिंग में नंबर 1 बनने वाले भारत के चौथे बल्लेबाज बन गए, उनसे पहले विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव और अभिषेक शर्मा हासिल कर चुके हैं यह उपलब्धि। T20 गेंदबाजी की रैंकिंग में भारत के वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह को नुकसान। टेस्ट में बुमराह की बादशाहत कायम, 870 रेटिंग पॉइंट के साथ गेंदबाजी पर टॉप पर। अमेरिका में आयोजित की जाएगी एक स्पोर्ट्स ऑक्शन, स्पोर्ट्स लेजेंड्स द पिच टू द कोर्ट नाम से आयोजित होगी यह ऑक्शन। इस नीलामी में रखी जाएगी सॉकर, बास्केटबॉल, टेनिस और बेसबॉल से जुड़ी चीजें। सॉकर के अलावा अन्य खेलों की चीजों में लेब्रोन जेम्स की पहनी हुई और साइन की हुई जर्सी भी शामिल। सॉकर से जुड़ी चीजों में अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में पहनी गई जर्सी और जूते भी शामिल हैं। अमेरिका में हो रहे 2026 फीफा वर्ल्ड कप के समय को ध्यान में रखते हुए आयोजित की जा रही है ये नीलामी। लॉस एंजलिस में लाइव होगी ये नीलामी, जिसमें पूरे अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलेक्टर्स शामिल होंगे। मशहूर अमेरिकी सिंगर सॉन्ग राइटर ओलिविया रोड्रिगो ने लेगो के साथ किया कोलैब। रोड्रिगो पहली ऐसी आर्टिस्ट हैं जो लेगो के साथ मिलकर कर रही हैं काम। सिंगर के म्यूजिक परफॉर्मेंस और उनके सबसे मशहूर लुक से प्रेरित हैं ये कलेक्शन, इसमें 5 सेट। ओलिविया रोड्रिगो की डुअल गिटार और ओलिविया रोड्रिगो की सीक्रेट स्टोरेज जैसी चीजें इस कलेक्शन में शामिल है। ब्रिटेन में बायू टेपेस्ट्री की प्रदर्शनी के लिए टिकटों की बिक्री हो रही है शुरू। ये 11वीं सदी की कलाकृति है जो लगभग 1000 साल पहली बार फ्रांस से इंग्लैंड लौट रही है। इस टेपेस्ट्री में दर्शाई गई 1066 इंग्लैंड पर नॉर्मन कब्जे की कहानी है। हजारों साल पहले अंग्रेज कारीगरों ने बनाई थी ये 70 मीटर लंबी बायू टेपेस्ट्री। अंतरिक्ष में पृथ्वी की सुरक्षा के लिए चीन का एक बड़ा ऐलान। पृथ्वी के पास मौजूद एस्टेरॉइड्स के लिए जल्द निगरानी प्रणाली स्थापित करेगा चीन। भविष्य में एस्टेरॉइड्स और पृथ्वी के बीच संभावित टक्कर की चेतावनी और सहायता प्रदान करना है मकसद। फिल्म जय हिंद जय सिंध का फर्स्ट लुक हुआ रिलीज। फिल्म में महेश मांजरेकर नजर आए। फिल्म अल्फा का नया प्रोमो हुआ रिलीज। 3 जुलाई को फिल्म सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है। फिल्म तेरा यार हूं मैं का दूसरा गाना तुम से ही प्यार रिलीज हुआ। 24 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म भाई तेरा स्टार है का फर्स्ट लुक हुआ रिलीज। फिल्म में राघव जुयाल नजर आए। देहरादून में बाबा नीम करोली पर आधारित फिल्म हरमान अंश के निर्माताओं ने फिल्म के प्रचार के लिए देश भर में सामुदायिक भंडारे का आयोजन किया। बेबी डूडा डू का नया ट्रेलर हुआ रिलीज। बेनाशुर उमा कुरैशी ने मचाया कोहराम। वेब सीरीज रक्तांचल का फर्स्ट लुक हुआ रिलीज। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में 80 के दशक के माफिया और टेंडर राज पर आधारित है फिल्म। फराह खान और रितेश देशमुख के साथ लॉकअप 2 में एंट्री लेंगी कंगना रनौत। नौकरी विवाद के बीच अब प्रलय की शूटिंग शुरू करेंगे रणवीर सिंह। वेलकम टू द जंगल पर हो रही है नोटों की बरसात। फिल्म ने चौथे दिन कमाए 9.5 करोड़ से ज्यादा। अब तक कुल 82 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबर
2: किस तरह के बालों का स्टाइल जीवन में संघर्ष बढ़ा देता है। किस तरह के बालों के स्टाइल वाले लोग लापरवाह होते हैं और अगर सर पर बाल ना हो या कम हो तो ये किस ग्रह का प्रभाव होता है। आपके बालों का, बालों के स्टाइल का आपके भाग्य से क्या है संबंध, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
7: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
8: TuneIn has got your favorite podcast, from sports to special interests. Did you know that you can listen to all your favorites offline? It's simple. Just head to any podcast page, tap the 3 little dots next to the episode title, and hit download. Whether it's true crime, lifestyle, health, and science, or anything else, stream your favorite podcasts and listen to them anytime, anywhere.
9: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
10: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
11: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है
10: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम।
6: अब एक ही जगह से कीजिए देश के प्रसिद्ध मंदिरों के दुर्लभ दर्शन। जी हाँ, 6D VR तकनीक के जरिए मिलेगा मंदिर में मौजूद होने जैसा दिव्य अनुभव। दर्शन के साथ आरती, पूजा और आध्यात्मिक कथाओं का भी साक्षात्कार होगा। फिलहाल इस सुविधा का आनंद देश के 11 प्रसिद्ध मंदिरों में लिया जा सकेगा। आस्था और तकनीक के इस अद्भुत संगम के ब्रांड एम्बेसडर हैं आशुतोष राणा, और इन 11 आध्यात्मिक कहानियों को साहित्यकार आलोक श्रीवास्तव ने लिखा है। दुर्लभ दर्शन और उसके संस्थापक प्रशांत मिश्रा के साथ मिलकर आशुतोष राणा दुनिया के पहले 100 से ज्यादा 6D आध्यात्मिक अनुभव केंद्र लॉन्च करेंगे।
12: आशुतोष राणा और मैं आपको लेकर चल रहा हूं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या।
13: अब दुर्लभ मंदिरों के दर्शन भी सुलभ होंगे।
12: मन में तुलसी की सुगंध लिए हम अपने आराध्य प्रभु श्री राम के धाम की ओर चलते हैं।
13: घर बैठे ही तीर्थों की यात्रा होगी। देर तक निहार सकेंगे
12: दर्शनार्थ उनके विग्रह या मूर्ति के समक्ष उपस्थित होते हैं तो
13: दूर रहकर भी गर्भगृह की पूजा में शामिल हो सकेंगे।
14: इसमें है 50 से ज्यादा तीर्थ यात्रा
13: और ये सब संभव है दुर्लभ दर्शन। दुर्लभ दर्शन एक ऐसा पिटारा जिसमें हर धाम समाया है
12: बल्कि अनुभूत भी कर सकते हैं।
13: भगवान समाये हैं एक खास एहसास के साथ।
12: आपके और परमात्मा के बीच में कोई नहीं, वहां पर घटित होने वाली समस्त क्रियाकलापों में आप सहभागी होंगे, ऐसी अनुभूति हमारी करवाने का मन था कि अगर मान लीजिए पानी गिर रहा है, अगर हमने जल चढ़ाया, जलाभिषेक किया तो पानी के छींटे हमारे ऊपर आते हैं तो वो भी आपको अनुभूत हो। अगर आपने उनको सुगंधिम पुष्टिवर्धनम की बात, अगर हम सुगंध उनको लगा रहे हैं अभिषेक करते समय तो सुगंध भी आपको महसूस होगी। यदि हवा की बात है तो हवा भी आपको महसूस होगी। तो इस तरीके से पूरा इस अनुभव को बिल्कुल एक जो दुर्लभ अनुभव है उसको सुलभ करने के लिए हमने ये किया।
13: लाखों असल में दुर्लभ दर्शन एक आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म जिसमें 6D VR तकनीक के जरिए देश के प्रमुख मंदिरों के दर्शन का एक अनूठा अनुभव उपलब्ध कराया जाता है। इसमें वर्चुअल रियलिटी के साथ साथ जल, वायु, सुगंध और पौराणिक कथाओं के मेल से साक्षात गर्भगृह में होने का एहसास कराया जाता है। यूँ कहिए कि यहाँ आस्था और तकनीक के मेल से एक सुंदर आध्यात्मिक वातावरण का निर्माण किया जाता है। यहाँ एक और भगवान राम और उनकी अयोध्या की कहानी है तो काशी विश्वनाथ का इतिहास भी है और माँ वैष्णो देवी की आरती भी। बस इसे आँखों पर लगाइए और यात्रा पर निकल पड़िए। अभिनेता आशुतोष राणा आपको धर्मस्थलों की कहानी सुनाते भी नजर आएंगे।
12: हमें तो अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए। क्यों होता है ऐसा? वो इसलिए कि जब हम भाव विभोर होकर भगवान के दर्शन।
13: फिलहाल ये सुविधा अयोध्या, काशी समेत देश के 11 प्रसिद्ध मंदिरों में उपलब्ध है, जहां आप सुकून से बैठकर अपने आराध्य देव को करीब से महसूस कर सकेंगे,
12: ध्यान में लीन हो सकते हैं। और यदि किसी कारणवश
13: अभिनेता आशुतोष राणा को देश के पहले 6D मंदिर दर्शन सेवा तकनीक ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है।
12: 50 से अधिक तीर्थ यात्राएं और अनेक सिद्ध और दिव्य मंदिरों के दैनिक दर्शन कर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
2: किस तरह के बालों का स्टाइल जीवन में संघर्ष बढ़ा देता है, किस तरह के बालों के स्टाइल वाले लोग लापरवाह होते हैं, और अगर सर पर बाल ना हो या कम हो तो ये किस ग्रह का प्रभाव होता है? आपके बालों का, बालों के स्टाइल का आपके भाग्य से क्या है संबंध, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
15: Talk Sport presents The S Word with Will Gavin and Master Tesfasion.
16: We're finally giving North American football fans the show they deserve.
17: Fiery fan debate, in-depth analysis, and plenty of fun along the way.
16: We're here Monday to Friday, 8 till 10 Eastern, and every single day of the World Cup.
17: Remember, around here, we use the F Word.
16: Never The S Word.
15: The S Word, available now on TuneIn,
18: wherever you get your podcasts,
15: and on the S Word YouTube channel.
19: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए. मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है. इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
20: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.
19: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है. इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर. असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
11: और दुर्भाग्य कहता है
21: कि भाग्य कहीं दूर नहीं.
22: अविश्वास में विश्वास बसता है.
21: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
15: गुड न्यूज टुडे.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को.
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच.
5: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन. टीआईटी भोपाल, जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स.
6: कल रवाना होगा अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था. गहन सुरक्षा के बीच जम्मू से बालटाल और पहलगाम के बेस कैंप के लिए रवाना होंगे शिव भक्त. यात्रा को लेकर बाबा बर्फानी के भक्तों में जबरदस्त जोश. आर्थिक मोर्चे पर देश के लिए गुड न्यूज. जून में 1,94,000 करोड़ जीएसटी कलेक्शन, पिछले साल से 14% ज्यादा. इंपोर्ट से होने वाली कमाई बढ़ी. पहाड़ों पर मॉनसून का दिखने लगा असर. रुद्रप्रयाग में लगातार हो रही है बारिश से अलकनंदा नदी का बढ़ा जलस्तर. नदी के किनारे बनी भगवान शिव की मूर्ति तक पहुंच गया पानी. बद्रीनाथ में भगवान विष्णु के भक्तों ने अब तक के सारे रिकॉर्ड्स किए ध्वस्त. 14 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन. हर रोज 15,000 से 20,000 श्रद्धालु कर रहे हैं दर्शन. केंद्रीय कैबिनेट की दिल्ली और उत्तर प्रदेश को 14,000 करोड़ से ज्यादा की सड़क परियोजनाओं को मिली मंजूरी. दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ेगी 6 लेन वाली टनल. वहीं कानपुर से करबई के बीच बनेगा एक्सेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड हाईवे.

0: नमस्कार, स्वागत है आपका गुड लक टुडे में और मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: नमस्कार।
0: तो आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे आपके हेयर स्टाइल के बारे में। आपने अक्सर देखा होगा लोग अलग अलग तरह के हेयर स्टाइल बनाते हैं, कोई स्पाइक बनाता है तो कोई नॉर्मल हेयर कट लेता है। तो आपका हेयर स्टाइल बताएगा कि आपका स्वभाव कैसा और आपका होने वाला भविष्य, आने वाला भविष्य जो है वो कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से करेंगे हम पंडित जी से चर्चा। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज का गुड लक मंत्र।
1: अगर आप को सेवकों से या सहायकों से समस्या हो रही है, आपके घर की मेड है, आपके घर के सर्वेंट हैं, सहायक हैं, उनसे अगर समस्या हो रही है तो हर शनिवार को निर्धनों को मीठी वस्तु का दान करिएगा। अगर ऐसा नियमित रूप से आप करें तो सेवकों से और सहायकों से होने वाली समस्या समाप्त हो जाएगी।
0: और आइए अब जान लेते हैं 2 जुलाई 2026 यानी कि बृहस्पतिवार का पंचांग क्या है।
1: दिनांक 2 जुलाई 2026 दिन बृहस्पतिवार, तिथि है आषाढ़ कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि, प्रातः 9:37 तक। नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, प्रातः 9:27 तक। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
0: और आइए अब जानते हैं कि आपके हेयर स्टाइल से आपके भाग्य और स्वभाव का आखिर संबंध क्या है।
1: जी देखिए, आज हम आपको बता रहे हैं कि आपके हेयर स्टाइल का आपके भाग्य से क्या संबंध है। आपके बालों को रखने का तरीका, केश विन्यास आपके भाग्य और आपके जीवन पर कैसे असर डालता है। देखिए, किसी भी व्यक्ति के बालों का संबंध होता है बुध के साथ, मरकरी के साथ। लेकिन बालों का जो स्टाइल होगा, बाल कैसे रखे जाएंगे, इसका संबंध होता है शुक्र के साथ। बुध और शुक्र मिल करके आपके हेयर स्टाइल के बारे में बताते हैं। सूर्य और शनि आपके बालों के बारे में बताते हैं, बाल कैसे होंगे और बालों के स्टाइल पर भी असर डालते हैं। आपके जो बाल हैं वो आपकी बुद्धि, स्वभाव और संघर्ष के बारे में बता सकते हैं। खास तौर से आप सोचते कैसा हैं, आपके विचार कैसे हैं, ये बात आप बालों के स्टाइल से जान सकते हैं।
0: तो चलिए जानते हैं पंडित जी से कि अगर हम अपना हेयर स्टाइल जो होता है, अगर आप अपनी दाहिनी तरफ मांग निकालते हैं तो इसका आखिर अर्थ क्या है।
1: देखिए, अगर आप दाहिनी तरफ मांग निकालते हैं तो इसका विशेष अर्थ है। क्या अर्थ है? जो लोग दाहिनी तरफ मांग निकालते हैं आम तौर पर ऐसे लोग शनि प्रधान होते हैं, शनि की प्रधानता होती है। ऐसे लोग बड़े दृढ़ निश्चयी और बड़े कर्मठ होते हैं। जो लोग दाहिनी तरफ मांग निकालते हैं ऐसे लोगों को आयु के 32वें और 48वें साल में विशेष लाभ होता हुआ देखा जाता है। अगर आपके जीवन में जरूरत से ज्यादा संघर्ष है, जरूरत से ज्यादा स्ट्रगल है, तो ये स्टाइल बदल दीजिए।
0: और अब वक्त हो गया आज के राशिफल के बारे में जानने का, तो चलिए जानते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि वालों का क्या है राशिफल।
1: मेष राशि, करियर में आपको सफलता मिलेगी, धन की स्थिति में सुधार होगा, यात्रा के योग बन रहे हैं, भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80% अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, करियर में सफलता मिलेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी, निर्णय लेने में जल्दबाजी ना करें, केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा।
0: तो चलिए जान लेते हैं, हमने इससे पहले जाना कि अगर हम अपनी दाई तरफ मांग निकालते हैं तो उसका अर्थ क्या होता है। अब बारी है बाई तरफ की, तो अगर आप बाई तरफ मांग निकालते हैं तो इसका आपके भाग्य पर क्या असर पड़ता है, आइए देखते हैं।
1: अब उन लोगों की बात करते हैं जो बाई तरफ मांग निकालते हैं, इसका अर्थ क्या है। जो बृहस्पति प्रधान लोग हैं या चंद्रमा प्रधान लोग हैं आम तौर पर बाई ओर मांग निकालते हैं। ऐसे लोग बुद्धिमान बहुत होते हैं, सरल बहुत होते हैं, लेकिन घनघोर लापरवाह भी होते हैं। भाग्य और ईश्वर की कृपा इनके पास दोनों होती है और कम उम्र में सफलता पा जाते हैं। जो लोग बाई तरफ मांग निकालते हैं उम्र के 23वें और 33वें साल में ये लोग विशेष सफल होते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा लापरवाह हैं, बहुत ज्यादा आलसी हैं, तो बाईं तरफ मांग निकालना बंद कर दीजिए। ये स्टाइल आपको बदल देना चाहिए।
0: और अब वक्त हो गया है कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों के राशिफल को जानने का।
1: कर्क राशि, करियर में आपके व्यस्तता बनी रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार की चिंता दूर होगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, करियर में लाभ के योग हैं, संपत्ति का लाभ होगा, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रुका हुआ काम बनेगा इस समय, खान पान में सावधानी रखें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: और गुड लक में अब वक्त हो गया आज के सवालों का और उनके जवाब देने का। तो चलिए जानते हैं पंडित जी से ही कि आज का पहला सवाल वो किसका ले रहे हैं।
1: जी, आज का पहला प्रश्न अमिता ने हमें लिखा है और अमिता हमें मेल लिखती हैं जयपुर से। 4 अप्रैल 1981 का जन्म है, सुबह 11:45, जन्म स्थान है दिल्ली। अमिता कह रही हैं कि मुझे नौकरी में परिवर्तन का एक ऑफर मिल रहा है मुंबई से, क्या मुझे नौकरी में परिवर्तन करना चाहिए और आने वाला समय मेरा कैसा रहेगा। अमिता, आपकी कुंडली के हिसाब से आपको अभी नौकरी में परिवर्तन नहीं करना चाहिए। मार्च 2027 तक अभी इंतजार करिए। मार्च 2027 के बाद अगर आप परिवर्तन करें तो आपके लिए काफी बेहतर होगा। आपका आने वाला समय अगले साल करियर के लिहाज से बेहतर दिख रहा है। अभी जल्दबाजी में निर्णय लेने से आपको दिक्कत हो सकती है। करियर में स्थिरता बनी रहे और करियर में आप सफल हों, इसके लिए एक पन्ना बनवा करके पहन लीजिए, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना पहने, रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का अगर आप जप करें तो आपको लाभ होगा।
0: अगर आपके मन में भी कोई सवाल है और आप चाहते हैं पंडित जी से उसका जवाब, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं और हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो चलिए अब वक्त हो गया आज के दूसरे सवाल का, तो जानेंगे पंडित जी से आज का दूसरा सवाल वो किसका लेने वाले हैं।
1: जी अगला प्रश्न मीना जी ने हमें लिखा है और मीना जी हमें मेल लिखती हैं लखनऊ से, अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्र की जन्म तारीख है 6 अक्टूबर सन 2003, जन्म का समय सुबह के 7:55, जन्म स्थान है लखनऊ। ये पूछ रही हैं कि मेरा पुत्र आगे किस करियर में जाएगा, अभी उसने ग्रेजुएशन किया है और एक कंपनी में इंटर्नशिप कर रहा है। मीना जी, आपके पुत्र की कुंडली के हिसाब से अगर ये मैनेजमेंट में जाएं, फाइनेंस में जाएं, एचआर में जाएं, तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इनको मैनेजमेंट की पढ़ाई करवाइए, उसमें सफलता मिलने की संभावना कुंडली में बढ़िया है और आगे पढ़ाई करने के लिए ये लखनऊ से दूर जाएंगे, करियर भी दूर बनाएंगे, ऐसी संभावना कुंडली में दिखाई दे रही है। आपके बेटे का स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, तो आप ऐसा करें, एक मोटी

0: बीच से मांग निकालते हैं। जो लोग सर के बीच से मांग निकालते हैं ऐसे लोग बड़े चंचल स्वभाव के होते हैं और बार बार उनके जीवन में उतार चढ़ाव आता रहता है। ऐसे लोगों के पास धन बहुत आता है लेकिन धन बचा पाना इनके लिए संभव नहीं होता। अक्सर इनको धन की किल्लत होती है, धन आने के बावजूद धन की कमी बनी रहती है। उम्र के 35वें, 42वें और 50वें वर्ष में इनको विशेष सफलता मिलती है। जिन लोगों को छोटी छोटी बातों पर अपयश मिलता हो, जिनको छोटी छोटी बातों पर बदनामी मिलती हो, उनको बीच से मांग नहीं निकालना चाहिए, उनको ये स्टाइल नहीं रखना चाहिए।
1: और चलिए अब जान लेते हैं कि अगर आप बालों में मांग ही नहीं निकालते, यानी बाल या तो ऊपर की ओर होते हैं या फिर बिखरे हुए होते हैं, तो इसका आपके जीवन पर असर क्या पड़ता है?
0: देखिए, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बालों में मांग नहीं निकालते, यानी बाल या तो ऊपर की तरफ होते हैं या बिखरे हुए होते हैं, बाल में मांग नहीं होती। इसका अर्थ क्या है? आम तौर पर जो लोग बुद्ध प्रधान होते हैं या जिनके जीवन में बुद्ध की प्रधानता होती है, ऐसे लोग या तो मांग नहीं निकालते या उनके बाल बिखरे होते हैं। जो लोग बाल में मांग नहीं निकालते, बाल ऊपर की तरफ रखते हैं या थोड़ा बिखरे हुए बाल रखते हैं, ऐसे लोग कला, संगीत, साहित्य और लेखन में बहुत रुचि रखते हैं और इन क्षेत्रों में बड़ी सफलता पाते हैं। जो लोग मांग नहीं निकालते, बाल बिखरे रखते हैं, ऐसे लोगों को उम्र के 31वें, 45वें और 55वें वर्ष में जीवन में विशेष सफलता मिलती है। अगर आपके जीवन में उतार चढ़ाव बहुत है, अप्स एंड डाउन्स बार बार होता है, तब ये स्टाइल बदल देना चाहिए।
1: और अब वक्त हो गया है तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों के राशिफल को जानने का।
0: तुला राशि, व्यर्थ की दौड़ भाग आपकी रहेगी, धन का नुकसान हो सकता है, करियर में कोई जोखिम कोई रिस्क ना लें, केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, चिंताएं समाप्त होंगी। भगवान को पीले फूल अर्पित करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी,

0: और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, धन की स्थिति में सुधार होगा, परिवार में अशांति से बचाव करें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और अब जानते हैं कि जिनके बाल घुंघराले हैं उनका भाग्य किस तरह से होता है, क्योंकि अगर आपकी दाईं तरफ की मांग है, आपकी बाईं तरफ की मांग है, आप बीच में से मांग निकालते हैं तो उसका असर क्या पड़ता है, तो आपने पंडित जी से जान लिया। लेकिन अगर आपके बाल घुंघराले हैं तो इसका आपके भाग्य पर क्या असर पड़ता है, आइए जानते हैं पंडित जी से।
0: देखिए, बहुत सारे लोगों के बाल घुंघराले होते हैं, कर्ली होते हैं। अगर आपके बाल घुंघराले हैं तो इसका अर्थ क्या है? देखिए, जिनकी कुंडली में शुक्र और चंद्र की प्रधानता होती है उनके बाल कर्ली यानी घुंघराले होते हैं। ये बाल शुक्र और चंद्रमा से संबंध रखते हैं। जिनके बाल घुंघराले होते हैं उनके जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा होने के बावजूद भी उनको भावनात्मक समस्याएं, इमोशनल प्रॉब्लम परेशान करती हैं। उम्र के 25वें, 38वें और 45वें साल में इनको बहुत सफलता मिलती है। अगर आप बहुत ज्यादा भावुक हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल हैं, तो घुंघराले बाल रखने से आपको बचना चाहिए।
1: तो आइए अब जानते हैं कि अगर आपके सर पर बाल ही नहीं है, जी हां, अगर आपके सर पर बाल नहीं है, आप गंजे हैं, तो इसका आपके भाग्य पर क्या असर पड़ता है?
0: देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके सर पर बाल नहीं होते या गंजापन होता है या बहुत थोड़े से बाल होते हैं। इसका क्या मतलब है? सूर्य अगर कुंडली में प्रधान हो गया, सूर्य अगर कुंडली में लीडिंग कंडीशन में आ गया तो सर पर या तो बाल नहीं होंगे या कम से कम बाल होते चले जाएंगे। जिनके सर पर बाल कम होते हैं या नहीं होते हैं इनको पिता का सुख जीवन में कम मिलता है, ऐसा देखा गया है। ऐसे लोग राजनीति में, प्रशासन में और चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत उन्नति करते हैं, लेकिन ऐसे लोगों की वाणी बड़ी कठोर होती है और आम तौर पर इससे संबंध इनके वाणी की वजह से बिगड़ते हैं। उम्र के 29वें, 34वें और 40वें साल में इनको ज्यादा लाभ होता है। लेकिन ध्यान रखिए, सर को एकदम चिकना मत रखिए, एकदम चिकना रखने से सूर्य आपका कमजोर होगा।
1: और अब जानेंगे आज के अंतिम राशि के राशिफल को, यानी कि मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के राशिफल के बारे में।
0: मकर राशि, आर्थिक स्थिति में आपके सुधार होता दिख रहा है, सेहत की स्थिति अच्छी होती जाएगी, मन की चिंताएं दूर होंगी। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%, यानी बहुत अच्छा भाग्य, सबसे अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, करियर में तनाव हो सकता है, पारिवारिक समस्या के योग बन रहे हैं, चोट चपेट से सावधान रहें। केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, मानसिक चिंताएं दूर होंगी, धन की स्थिति में सुधार होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और आइए जानते हैं पंडित जी से आज का तीसरा सवाल, उन्हें कहां से और किसने भेजा है।
0: जी, अगला प्रश्न अजय कुमार ने हमें लिखा है और अजय जी हमें मेल लिखते हैं गुजरात अहमदाबाद से। इनकी जन्म की तारीख है 17 अगस्त 1990, जन्म का समय रात में 8:30, जन्म स्थान है अहमदाबाद। ये कह रहे हैं कि मेरा विवाह अब तक नहीं हो पाया है और तमाम प्रयास करने के बावजूद विवाह के मामले में कोई सफलता नहीं मिल पा रही है, तो मेरा विवाह कब होगा और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। अजय जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके विवाह का योग शुरू हो गया है और अगले 4 से 5 महीने में आपकी शादी फाइनल होगी, ऐसी संभावना कुंडली में दिखाई दे रही है। अगले साल के शुरुआत में आपका विवाह होगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि एक बार विवाह के पहले कुंडली मिला लीजिएगा। एक ओपल बनवा करके पहनिए, 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल धारण करें, सुबह और शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो काफी अच्छा रहेगा।
1: गुड लक में अब वक्त हो गया आज के अंतिम प्रश्न का, तो जानेंगे पंडित जी से आज का अंतिम और चौथा सवाल पंडित जी किसका लेंगे।
0: जी, आज का अंतिम प्रश्न लक्ष्मण दास जी ने हमें लिखा है और लक्ष्मण दास जी हमें ऋषिकेश से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 9 अक्टूबर 1969। जन्म का समय दोपहर के 3 बजे और जन्म का स्थान है पिथौरागढ़ उत्तराखंड। मेल लिखते हैं ऋषिकेश से। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से मेरे स्वास्थ्य में लगातार दिक्कतें चली आ रही हैं और तमाम दवाइयां और तमाम उपचार करने के बाद भी मुझे कोई बहुत फायदा नहीं हो रहा है, तो मैं अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए कौन सा उपाय करूं? लक्ष्मण दास जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपको कोई ज्यादा स्वास्थ्य की समस्या नहीं है, केवल आपकी कुंडली में हड्डियों की समस्या की संभावना बनती है, तो केवल आपको आपकी हड्डियां परेशान कर सकती हैं, अन्यथा आपकी चीजें बेहतर हैं। एक माणिक्य बनवा के पहनिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का माणिक्य, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, रविवार को प्रातः माणिक्य धारण करें। रोज सुबह और रोज शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करें, निश्चित रूप से आपका स्वास्थ्य बेहतर होना शुरू हो जाएगा।
1: जिनका जन्मदिन आने वाला है उन्हें हमारी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे टू यू। आइए जानते हैं पंडित जी से कि आपका आने वाला भविष्य कैसा रहेगा।
0: जिन लोगों का जन्मदिन 2 जुलाई को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर में बदलाव के योग बन रहे हैं, धन की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी। अगर आप अविवाहित हैं तो अविवाहितों का विवाह हो सकता है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर भगवान शिव की अगर उपासना करें तो वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: और गुड लक में अब वक्त हो गया आज की जिज्ञासा के बारे में जानने का, तो चलिए जान लेते हैं आज की जिज्ञासा क्या है।
0: आज की जिज्ञासा है कि क्या मंदिर में देवी देवताओं को भोग लगाना जरूरी है? देखिए, देवी देवता को भोग आप अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार लगाते हैं, लेकिन ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि आपको भोग लगाना ही लगाना है। देवी देवता को अपना मन समर्पित करिए, वो सबसे ज्यादा उत्तम होगा। अपनी मन और अपनी श्रद्धा समर्पित करना ही सबसे ज्यादा उत्तम है।
1: और आइए अब जानते हैं 2 जुलाई 2026 यानी कि बृहस्पतिवार का शुभ पहर कौन सा है।
0: दिनांक 2 जुलाई 2026 दिन बृहस्पतिवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में भगवान को पीले फूल अर्पित करें, ऐसा करने से संतान और शिक्षा की समस्याएं दूर होंगी।
1: गुडलक में हम जानेंगे आज की गुडलक राशि के बारे में, तो आइए जानते हैं आज की गुडलक राशि कौन सी है।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों के लिए आजकल समय कैसा चल रहा है। आज की गुड लक राशि है मेष। इस समय आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना चाहिए। हालांकि धन और संपत्ति का लाभ इस समय आपको हो सकता है।
1: गुड लक में हम पहुंच गए आज के अंतिम पड़ाव पर, जहां पंडित जी रोज हमें एक नया महा उपाय बताते हैं। तो चलिए जानते हैं पंडित जी से कि आज का महा उपाय क्या है।
0: जी

0: वैवाहिक जीवन में बेवजह के विवाद होते हैं तो क्या करेंगे, रोज सुबह और शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करिए, अपने बेडरूम में अपने शयन कक्ष में रंग बिरंगे फूलों के चित्र लगाइए और घर में नियमित रूप से खास तौर से शाम के समय चंदन की सुगंध वाली धूप बत्तियां जलाइए, आपके लिए बेहतर होगा।
1: पंडित जी, तमाम जानकारी के लिए और महा उपाय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: तो पंडित जी से महा उपाय तो आपने जान लिया, बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव और अच्छी खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
3: भारत की बेटियां अब सिर्फ खेल के मैदान में ही नहीं बल्कि खेलों के संचालन और फैसलों की सबसे बड़ी जिम्मेदारियों में भी नया इतिहास लिख रही हैं। उत्तर प्रदेश की मंजू नयाल ने कुछ ऐसा ही मुकाम हासिल किया है। मंजू नयाल ने वो उपलब्धि हासिल की है जिसे अब तक देश की कोई महिला हासिल नहीं कर पाई थी। वो भारत की पहली 3-स्टार इंटरनेशनल महिला कुरैश रेफरी बन गई हैं और इसी के साथ उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय खेल जगत में देश का नाम रोशन किया है।

0: भारत की बेटियां अब सिर्फ मेडल जीतकर ही नहीं बल्कि खेलों के सबसे अहम फैसले लेने वाली कुर्सी तक पहुंचकर भी इतिहास रच रही हैं। उत्तर प्रदेश के मंजू नयाल ने ऐसी उपलब्धि हासिल की है जो आज तक देश की कोई महिला हासिल नहीं कर सकी। मंजू नयाल भारत की पहली 3-स्टार इंटरनेशनल महिला कुराश रेफरी बन गई है। ये सिर्फ उनकी व्यक्तिगत सफलता नहीं बल्कि भारतीय खेल जगत के लिए भी गर्व का पल है।
1: मैम, देश की पहली 3-स्टार रेफरी कुराश गेम में, सुनकर कैसा लग रहा है? देश की पहली महिला रेफरी।
2: सर, बहुत अच्छा लग रहा है, प्राउड मोमेंट हो रही है कि देश की पहली महिला रेफरी बनी हूँ, तो काफ़ी लोगों की विशेज भी आ रही हैं और मतलब सपोर्ट भी मिला काफ़ी, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है पहली 3-स्टार रेफरी बन के कुराश की।
0: कामयाबी का यह शिखर रातों रात नहीं मिला। मंजू नयाल का यह सफर उनकी लगातार कोशिशों का नतीजा है। साल 2023 में नयाल 1-स्टार इंटरनेशनल कुराश रेफरी बनी। इसके बाद साल 2025 में उन्होंने 2-स्टार इंटरनेशनल रेफरी का दर्जा हासिल किया और अब इसी जून महीने में उज्बेकिस्तान में आयोजित बेहद कठिन अंतर्राष्ट्रीय रेफरी परीक्षा को पास करके मंजू ने 3-स्टार का वो मुकाम हासिल किया जहाँ आज तक कोई भारतीय महिला नहीं पहुँच सकी थी।
2: पहले स्टेट रेफरी का एग्जाम दिया कुराश के अंदर, फिर नेशनल रेफरी का, फिर अब इंटरनेशनल रेफरी में, तो फिर वही, फिर 1-स्टार, 2-स्टार, अब मैं 3-स्टार हो गई हूँ। तो ये बिग अचीवमेंट्स है इंडिया के अंदर। मैं अभी तक 3-स्टार रेफरी कोई वुमेन नहीं थी, 1st रेफरी मैं बनी हूँ इस बार, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है इस चीज के लिए।
0: आपको बता दें कि कुराश मध्य एशिया से जुड़ी एक प्राचीन और बेहद लोकप्रिय कुश्ती शैली है। कुराश आज दुनिया भर में लोकप्रिय हो चुका है। इसकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये 130 से अधिक देशों में खेला जाता है। कुराश की शुरुआत 3500 साल पहले उज्बेकिस्तान में हुई थी। इस खेल में दो खिलाड़ी एक दूसरे को पकड़कर पीठ के बल जमीन पर गिराने की कोशिश करते हैं। इसे 2018 के एशियाई खेलों में भी शामिल किया गया था जहां भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पदक जीते थे। मंजू नयाल ने अपने खेल करियर की शुरुआत जूडो से की थी लेकिन वक्त के साथ कुराश के प्रति उनकी दिलचस्पी बढ़ती गई और फिर उन्होंने खुद को पूरी तरह इसी खेल के लिए समर्पित कर दिया।
2: वैसे मैं जूडो में भी नेशनल रेफरी हूँ थी, तो वहाँ पर हमारे सर थे रवि कपूर सर, जो दिल्ली के जनरल सेक्रेटरी थे, तब उन्होंने स्विच करा कुराश के अंदर, तो अब उनका साथ था, उन्हें जानते थे दिल्ली के अंदर, बाकी को नहीं इतना हमारा वो था, जब उन्होंने स्विच करा तो उनके साथ साथ हमने कुराश में भी स्विच कर लिया था उन्हीं के उससे।
0: मंजू नयाल फिलहाल गाजियाबाद में गुरुकुल द स्कूल की शारीरिक शिक्षा विभाग की कोऑर्डिनेटर है और कई बड़े अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में रेफरी की भूमिका निभा चुकी है।
2: अभी तक मैं नोमैड्स गेम कजाकिस्तान में मैंने 2024 में एज ए रेफरी की भूमिका निभाई, फिर चिल्ड्रन एशियन गेम में युकोत्सव रशिया में 2024 में मैं ऑफिशिएटिंग करी वहाँ पर, 3rd एशियन यूथ बहरीन में भी मैं एज ए ऑफिशियल गई, उसके बाद अभी हमारा करंट जापान में ट्रायल इवेंट हुए थे उसके अंदर भी मैंने एज ए ऑफिशियल की भूमिका निभाई।
1: इस गेम का रेफरी होना है, किसी भी गेम का रेफरी होना, आपके हिसाब से कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, खासकर तब जब आप एक इंटरनेशनल स्टेज पर अपने देश को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं?
2: बहुत प्रेशर होता है, सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है, क्योंकि अगर आप दो कंट्री की बाउट करा रहे हो, उन दो कंट्रियों के बीच में उन दो कंट्रियों का रेफरी नहीं होता, तीसरी कंट्री का रेफरी होता है, तो वहाँ पे जजमेंट देना बहुत वो रहता है, बड़े दिमाग से देखना पड़ता है, एक एक जेस्चर देखना पड़ता है, कैसी लैंडिंग हुई है, किस पे हुई है, प्लेयर किस एरिया में जा रहा है, ये सारी चीज़ें हमें बहुत ध्यान से देखनी पड़ती है।
0: मंजू नयाल का लक्ष्य अब इसी साल सितंबर में होने जा रहे एशियन गेम्स में रेफरी के तौर पर भारत का प्रतिनिधित्व करने का है।
2: एशियन गेम्स जो अब सितंबर में होने वाले हैं 22 से, उसमें अभी हम दिल्ली इंडिया से गए थे और वहाँ ट्रायल इवेंट्स देखने गए थे कि क्या क्या कमियाँ हैं, क्या क्या होना वाला है, तो उसका एक रन थ्रू था वहाँ पर, तो वहाँ पे मैं एज ए इंडिया से रिप्रेजेंट करा था मैंने वहाँ पर, और काफ़ी चीज़ें वहाँ मुझे सीखने को भी मिली, बहुत सारी चीज़ें देखी, क्या कमियाँ थी, क्या है, ये सारी चीज़ें हम वहाँ देख के आए हैं, और अब हम सितंबर में अगर हुआ तो सितंबर में हम वहाँ जाएंगे।
0: खेल शिक्षा रेफरी और खेल प्रबंधन के क्षेत्र में मंजू नयाल को 22 सालों से भी ज्यादा समय का लंबा अनुभव है। साल 2003 से वो लगातार जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों को तैयार करने और खेल के विकास में जुटी हैं। थ्री स्टार रेफरी बनने के बाद अब मंजू नयाल की नजरें एक नए और बड़े लक्ष्य पर टिकी है। उनका अगला मिशन इसी साल सितंबर में होने जा रहे एशियन गेम्स में रेफरी के तौर पर भारत का प्रतिनिधित्व करना और देश का तिरंगा बुलंद करना है।
1: एक मैसेज जो हाउसवाइफ्स हैं या फिर वो महिलाएं जो रुक गई हैं, जो आपकी तरह दौड़ नहीं रही क्योंकि आप कभी रुकी नहीं, उनके लिए कोई मैसेज आपकी तरफ से?
2: हाँ, मैसेज ये है कि देखो, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। छोटी छोटी उपलब्धियां जो आप हासिल करोगे तो एक दिन अपने मकाम तक पहुंच जाओगे, मगर अगर आप छोटी छोटी चीज़ों को छोड़ते चले जाओगे, नहीं इसने ऐसे बोल दिया, इसने ऐसे कर दिया, फैमिली क्या कहेगी, हमारे रिलेटिव क्या कहेंगे, उसे नहीं सुनना है, आपको आगे बढ़ना है और बढ़ते रहना है। अगर आप एक बार रुक गए तो फिर रुक ही जाओगे।
1: विश यू ऑल द वेरी बेस्ट मैम। हम उम्मीद करते हैं कि आपने जिस तरह से एज अ प्लेयर हम सबका नाम रोशन किया उन दिनों में, अब आप जाकर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर देश का नाम रोशन करेंगी एज अ रेफरी। कैमरामैन शैलेन के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, गाजियाबाद।
3: बात करेंगे अब अल्फा मूवी की जो इस शुक्रवार रिलीज होने जा रही है, लेकिन फिल्म को लेकर चर्चाओं का दौर लगातार जारी है। यहां तक कि फिल्म में आलिया के एक्शन की भी जबरदस्त तारीफ हो रही है, लेकिन अब फिल्म की स्टार कास्ट से जुड़ी एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक 100 करोड़ के मेगा बजट वाली इस फिल्म के लिए सबसे ज्यादा फीस आलिया ने ही ली है।
4: सीता आज लंका खुद जलाने आई। हाय बॉयज।
5: पलक झपकते ही दुश्मन को धूल चटा देना, हाथों में बंदूक थामे बेखौफ दुश्मनों के बीच घुस जाना।
4: शुरू करो अग्नि परीक्षा।
5: आलिया भट्ट इस शुक्रवार सिल्वर स्क्रीन पर राज करने आ रही है। सामने आए अल्फा के ट्रेलर में आलिया पावर पैक एक्शन करती नजर आएगी। हर पंच और हथियार चलाने का स्वैग ये बता रहा है कि पर्दे पर एक नए एक्शन स्टार का जन्म होने वाला है।
6: ये क्या है?
7: अल्फा।
6: अल्फा मतलब
7: सीक्रेट प्रोग्राम है इंडिया के नेक्स्ट जनरेशन सोल्जर्स तैयार करने के लिए।
5: आलिया ने 2012 में स्टूडेंट ऑफ द ईयर जैसी ग्लैमरस और बेहद स्टाइलिश फिल्म से डेब्यू किया था, लेकिन अब बड़े पर्दे पर उनका एक अलग अवतार देखने को मिलेगा।
7: तो भी वही है हमारी इकलौती
6: अल्फा।
5: कल तक पर्दे पर अपनी मासूमियत, रोमांस और इमोशन से दर्शकों को रुलाने वाली आलिया अब अपनी रफ्तार और एक्शन से स्क्रीन पर कोहराम मचाने के लिए तैयार है।
7: इसकी माँ का नाम जानकी था, हम इसे सीता बुलावेंगे।
5: एक तरफ अल्फा में आलिया के एक्शन सीक्वेंस की चर्चा है, तो दूसरी तरफ फिल्म की स्टार कास्ट की फी को लेकर भी बाजार में चर्चाओं का दौर है।
4: वो धोखे से राज करता था और झूठ से जीतता था।
5: रिपोर्ट्स की मानी जाए तो 1000 करोड़ के बजट वाली इस मेगा स्टार फिल्म में आलिया ने सबसे ज्यादा फी चार्ज की है।
4: Hi boys.
5: दावा किया जा रहा है कि स्पाई थ्रिलर फिल्म के लिए आलिया भट्ट ने तकरीबन 25 करोड़ रुपए की भारी भरकम फी चार्ज की है, यानी फिल्म के पूरे बजट का 1/4 हिस्सा सिर्फ और सिर्फ आलिया के नाम रहा, जबकि आलिया की को स्टार शर्वरी ने 3 करोड़ रुपए की फी चार्ज की है। दूसरी तरफ बॉबी देओल फिल्म में विलेन के रोल में नजर आने वाले हैं और उन्हें इसके लिए करीब 6 करोड़ रुपए मिले हैं। वहीं फिल्म में एक अहम भूमिका निभाने वाले अनिल कपूर को भी तकरीबन 6 करोड़ रुपए मिले हैं। बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर फिल्में देने के बाद आलिया आज बॉलीवुड की सबसे भरोसेमंद फीमेल स्टार्स में से एक हो चुकी है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं है कि आलिया के ही कंधों पर इस 100 करोड़ बजट वाली फिल्म का भार है।
4: It really means a lot to me.
7: चौथीसवा फ्लोर, 3418।
4: मैं समझी नहीं बाबा, वहाँ करना क्या है?
7: वही जिसके लिए मैंने तुझे ट्रेनिंग दी है।
5: अब देखना यह है कि 25 करोड़ की फी लेने वाली अल्फा गर्ल आलिया इस शुक्रवार बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ की कमाई कर पाती है।
7: दुनिया में सिर्फ दो तरह के लोग हुए हैं, वुल्फ और शीप। मैं वुल्फ हूँ। तो क्या है?
4: वुल्फ की बेटी वुल्फी होती है सर।
5: ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
3: अब एक ही जगह से कीजिए देश के प्रसिद्ध मंदिरों के दुर्लभ दर्शन। जी हाँ, 6D VR तकनीक के जरिए मिलेगा मंदिर में मौजूद होने जैसा दिव्य अनुभव। दर्शन के साथ आरती, पूजा और आध्यात्मिक कथाओं का भी साक्षात्कार होगा। फिलहाल इस सुविधा का आनंद देश के 11 प्रसिद्ध मंदिरों में लिया जा सकेगा। आस्था और तकनीक के इस अद्भुत संगम के ब्रांड एम्बेसडर हैं आशुतोष राणा, और इन 11 आध्यात्मिक कहानियों को साहित्यकार आलोक श्रीवास्तव ने लिखा है। दुर्लभ दर्शन और उसके संस्थापक प्रशांत मिश्रा के साथ मिलकर आशुतोष राणा दुनिया के पहले 100 से ज्यादा 60 आध्यात्मिक अनुभव केंद्र लॉन्च करेंगे।
8: हूँ आशुतोष राणा और मैं आपको लेकर चल रहा हूँ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या।
9: अब दुर्लभ मंदिरों के दर्शन भी सुलभ होंगे।
8: मन में तुलसी की सुगंध लिए हम अपने आराध्य प्रभु श्री राम के धाम की ओर चलते हैं।
9: घर बैठे ही तीर्थों की यात्रा होगी। देर तक निहार सकेंगे
8: आराध्य। उनके विग्रह या मूर्ति के समक्ष उपस्थित होते हैं तो
9: दूर रहकर भी गर्भगृह की पूजा में शामिल हो सकेंगे।
10: इसमें है 50 से ज्यादा तीर्थ यात्रा
9: और ये सब संभव है दुर्लभ दर्शन। दुर्लभ दर्शन एक ऐसा पिटारा जिसमें हर धाम समाया है
8: बल्कि अनुभूत भी कर सकते हैं।
9: भगवान समाये हैं एक खास एहसास के साथ।
8: आपके और परमात्मा के बीच में कोई नहीं, वहां पर घटित होने वाली समस्त क्रियाकलापों में आप सहभागी होंगे। ऐसी अनुभूति हमारी करवाने का मन था कि अगर मान लीजिए पानी गिर रहा है, अगर हमने जल चढ़ाया, जलाभिषेक किया तो पानी के छींटे हमारे ऊपर आते हैं, तो वो भी आपको अनुभूत हो। अगर आपने उनको सुगंधिम पुष्टिवर्धनम की बात, अगर हम सुगंध उनको लगा रहे हैं अभिषेक करते समय, तो सुगंध भी आपको महसूस होगी। यदि हवा की बात है तो हवा भी आपको महसूस होगी। तो इस तरीके से पूरा इस अनुभव को बिल्कुल एक जो दुर्लभ अनुभव है उसको सुलभ करने के लिए हमने ये किया।
9: लाखों असल में दुर्लभ दर्शन एक आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म जिसमें 6D VR तकनीक के जरिए देश के प्रमुख मंदिरों के दर्शन का एक अनूठा अनुभव उपलब्ध कराया जाता है। इसमें वर्चुअल रियलिटी के साथ साथ जल, वायु, सुगंध और पौराणिक कथाओं के मेल से साक्षात गर्भगृह में होने का एहसास कराया जाता है। यूँ कहिए कि यहाँ आस्था और तकनीक के मेल से एक सुंदर आध्यात्मिक वातावरण का निर्माण किया जाता है। यहाँ एक और भगवान राम और उनकी अयोध्या की कहानी है तो काशी विश्वनाथ का इतिहास भी है और माँ वैष्णो देवी की आरती थी। बस इसे आँखों पर लगाइए और यात्रा पर निकल पड़िए। अभिनेता आशुतोष राणा आपको धर्मस्थलों की कहानी सुनाते भी नजर आएंगे।
8: हमें तो अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए। क्यों होता है ऐसा? वो इसलिए कि जब हम भाव विभोर होकर भगवान के दर्शन।
9: फिलहाल ये सुविधा अयोध्या, काशी समेत देश के 11 प्रसिद्ध मंदिरों में उपलब्ध है, जहां आप सुकून से बैठकर अपने आराध्य देव को करीब से महसूस कर सकेंगे,
8: ध्यान में लीन हो सकते हैं। और यदि किसी कारणवश
9: अभिनेता आशुतोष राणा को देश के पहले 6D मंदिर दर्शन सेवा तकनीक का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है।
8: 50 से अधिक तीर्थ यात्राएं और अनेक सिद्ध और दिव्य मंदिरों के दैनिक दर्शन कर सकते।
3: आपको लेकर चलते हैं देवभूमि उत्तराखंड, जहां पर चमोली जिले में मौजूद फूलों की घाटी इन दिनों अपनी मनमोहक खूबसूरती से सैलानियों को खूब लुभा रही है। अब तक 7294 लोग फूलों की इस घाटी की प्राकृतिक सुंदरता का दीदार कर चुके हैं, जिसमें से 34 विदेशी पर्यटक भी शामिल हैं।

0: पहाड़ों के बीच फैली हरियाली, बादलों से बातें करती वादियाँ, और जहाँ तक नजर जाए वहाँ तक रंग बिरंगे फूलों की दुनिया। ये नज़ारा किसी कल्पना का नहीं बल्कि चमोली की विश्व धरोहर फूलों की घाटी का है। हर साल मानसून के साथ यहाँ प्रकृति अपनी सबसे खूबसूरत तस्वीर पेश करती है। इस बार भी घाटी ने अपने रंग बिखेरने शुरू किए तो लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है। फूलों की घाटी में 1 जून को पर्यटकों के लिए प्रवेश शुरू हुआ था। अभी सिर्फ 1 महीना ही बीता है, लेकिन यहाँ आने वालों की संख्या ने सभी पुराने आंकड़े पीछे छोड़ दिए हैं। अब तक 7,294 लोग घाटी की प्राकृतिक सुंदरता का दीदार कर चुके हैं। इनमें 34 विदेशी पर्यटक भी शामिल हैं। वन विभाग का कहना है कि सीजन की शुरुआत इतनी शानदार पहले बहुत कम देखने को मिली है। अगर पिछले साल से तुलना करें तो अंतर साफ दिखाई देता है। बीते साल इसी महीने में 3,893 पर्यटक पहुंचे थे।
1: कुल 1 महीने बीतने के बाद हमारे पास कुल 7,294 लोग आ गए हैं, जिसमें 34 फॉरेनर्स हैं। और इसके साथ ही पिछले वर्ष की तुलना की जाए तो ये संख्या 1.5 गुना है। पिछले बार इस समय तक 3,893 लोग आए थे, जिसमें 65 फॉरेनर्स थे। तो अगर देखा जाए तो इस बार काफी अच्छा पर्यटन सीजन रहा है।
0: यानी इस बार शुरुआती 1 महीने में ही करीब 1.5 गुना अधिक लोग यहाँ पहुँचे हैं। यही वजह है कि वन विभाग को इस पूरे सीजन में रिकॉर्ड संख्या की उम्मीद दिखाई दे रही है।
2: विश्व धरोहर फूलों की घाटी इस बार पहले ही पर्यटकों से गुलजार हो चुकी है, जबकि मुख्य सीजन 15 जुलाई से 15 अगस्त का होता है। सबसे ज्यादा फूल इस दौरान फूलों की घाटी में खुलते हैं। इस बार 1.5 गुना, पिछले वर्षों के अनुसार 1.5 गुना अधिक जो पर्यटक हैं वो अब तक फूलों की घाटी का दीदार कर चुके हैं।
0: अभी तो ये केवल शुरुआत है। फूलों की घाटी का असली आकर्षण 15 जुलाई से 15 अगस्त के बीच दिखाई देता है। इसी समय सबसे अधिक प्रजातियों के फूल एक साथ खिलते हैं। चारों ओर रंगों का ऐसा संसार बन जाता है जिसे देखने के लिए देश विदेश से प्रकृति प्रेमी यहाँ पहुँचते हैं। फूलों की घाटी की सबसे खास बात ये है कि यहाँ केवल एक तरह के फूल नहीं खिलते। इस पूरी घाटी में करीब 500 प्रजातियों के फूल पाए जाते हैं। हर 15 दिन बाद नई किस्में खिलती हैं और पहले वाले धीरे धीरे विदा हो जाते हैं। यही वजह है कि यहाँ का नज़ारा लगातार बदलता रहता है। यही बदलता रूप इस जगह को दुनिया की सबसे खास प्राकृतिक धरोहर में शामिल करता है। जैसे जैसे जुलाई का ये महीना आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे ये पूरी घाटी और अधिक रंगों से भरती जाएगी। आने वाले दिनों में यहाँ प्रकृति का सबसे मनोहरी रूप दिखाई देगा। यही वजह है कि फूलों की घाटी केवल एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि धरती पर सजे उस जीवंत कैनवस का नाम है, जहाँ हर मौसम नई तस्वीर बनाता है। चमोली से कमल नैन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: It's Stormy, and previously on my show, Carly Pierce shared why she loves award show season.
5: For me, celebrating the people who create country music is about celebrating each other and rooting each other on and being a country music family and community and knowing that we are the generation right now that is going to influence many generations to come.
4: Listen to the Stormy Warren Show on the Big 615 weekdays 7 a.m. to 1 p.m. Central right here on TuneIn.

0: किस तरह के बालों का स्टाइल जीवन में संघर्ष बढ़ा देता है? किस तरह के बालों के स्टाइल वाले लोग लापरवाह होते हैं? और अगर सर पर बाल ना हो या कम हो तो ये किस ग्रह का प्रभाव होता है? आपके बालों का, बालों के स्टाइल का आपके भाग्य से क्या है संबंध, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
4: बाबा बर्फानी के दर्शन की आई शुभ घड़ी, शिव भक्तों का जोश आए गहन सुरक्षा के बीच, अमरनाथ यात्रा के लिए तैयार पहला जत्था। आर्थिक मोर्चे पर देश के लिए गुड न्यूज, जून में 1,94,000 करोड़ जीएसटी कलेक्शन, पिछले साल से 14% ज्यादा, इंपोर्ट से होने वाली कमाई बढ़ी। पहाड़ों पर मानसून का दिखने लगा असर, रुद्रप्रयाग में लगातार हो रही है बारिश से अलकनंदा नदी का बड़ा जलस्तर, नदी के किनारे बनी भगवान शिव की मूर्ति तक पहुंचा पानी। बद्रीनाथ में भगवान विष्णु के भक्तों ने अब तक के सारे रिकॉर्ड्स किए ध्वस्त, 14,00,000 से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन, हर रोज 15,000 से 20,000 श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। केंद्रीय कैबिनेट की दिल्ली और उत्तर प्रदेश को 14,000 करोड़ से ज्यादा की सड़क परियोजनाओं को मिली मंजूरी, दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ेगी 6 लेन वाली टनल, वहीं कानपुर से करबई के बीच बनेगा एक्सेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड हाईवे।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात अमरनाथ यात्रा की। अब से 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा का श्री गणेश होने जा रहा है। जम्मू कश्मीर में स्थित पवित्र श्री अमरनाथ गुफा से बाबा बर्फानी की पहली पूजा तो 29 जून को ही शुरू हो चुकी है, लेकिन अब आम भक्तों के लिए बाबा बर्फानी के साक्षात दर्शन का पावन अवसर भी आ पहुंचा है। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि यानी 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है। ये यात्रा करीब 2 महीनों तक चलेगी और 28 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन के दिन संपन्न हो जाएगी। हमेशा की तरह इस बार भी पवित्र गुफा में महादेव के दिव्य हिमलिंग का निर्माण हुआ है। श्रद्धालुओं में बाबा बर्फानी के दर्शन की खास उत्सुकता है और माना जा रहा है कि बड़ी तादाद में लोग अमरनाथ गुफा पहुंच सकते हैं, लिहाजा श्रद्धालुओं की सुविधा और सहूलियत के खास इंतजाम किए गए हैं। अब से कुछ ही घंटों में अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था रवाना होने वाला है।

0: बाबा बर्फानी के दर पर लगा भक्तों का मेला। अमरनाथ यात्रा मार्ग पर फिर हो रहा बम बम भोले का जय घोष। शिव भक्तों पर बरसेगी बाबा बर्फानी की कृपा।
1: हमें मन के अंदर इतनी खुशी है कि भोले बाबा मिल गए, एक स्टेप हमने पार कर लिया है और ये एक स्टेप पार कर किया है, भोले बाबा हमारा आगे का स्टेप भी पार करवाएंगे।
0: आस्था के शिखर पर गूंज रहे बाबा बर्फानी के जयकारे।

0: जमीन से 13,000 फीट की ऊंचाई पर बर्फ से लगदग अमरनाथ गुफा की खूबसूरत वादियाँ फिर से आस्था, भक्ति और विश्वास का पवित्र संगम बनने जा रही हैं। यूं तो इन वादियों का कण कण शिव शक्ति का ही स्वरूप है, लेकिन बाबा बर्फानी के इस दिव्य और दुर्लभ स्वरूप के दर्शन के लिए दूर दूर से भोले के भक्त खींचे चले आते हैं। शिव भक्ति में आकंठ डूबे महादेव की लगन में गाते गुनगुनाते अब की बार भी शिव के मतवालों का मजमा जुट चुका है।
1: ए भोला शंकरा।

0: शंकरा, हे भोळ्या शंकरा, त्रिशूळ डमरू हाती, संगणाचे पार्वती, हो हो।
1: बाबा बर्फानी की प्रथम पूजा हो चुकी है, अब यात्रा का श्री गणेश होना है। बता दें कि इस बार अमरनाथ यात्रा करीब 2 महीने तक चलने वाली है। अमरनाथ यात्रा 2026 की शुरुआत 3 जुलाई से हो रही है और यात्रा का समापन श्रावण पूर्णिमा रक्षाबंधन के दिन यानी 28 अगस्त को होगा। चूंकि अब पहले जत्थे की रवानगी में कुछ ही घंटे बचे हैं, सो देश भर के श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए कश्मीर में जुटने लगे हैं। यात्रियों के लिए श्रीनगर के पंथा चौक में ट्रांजिट कैंप बनाया गया है।
2: अमरनाथ यात्रा को लेकर के 3 जुलाई से जो पहला जत्था सीधे अमरनाथ गुफा तक पहुंचेगा, उसके लिए जम्मू से जो कॉन्वाय यहां पर चलेगा उसके लिए पूरी तैयारियां यहां श्रीनगर में भी की गई हैं। मैं इस वक्त पंथा चौक पर मौजूद हूं और आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लोगों की संख्या यहां भारी संख्या में मौजूद है और लोग जो है ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहां पर जुट रहे हैं। ये सारा ट्रांजिट कैंप बनाया गया है और इस ट्रांजिट कैंप में किस तरीके से लोग यहां भारी संख्या में मौजूद हैं, ये आपको दिखा रहे हैं। दूसरा, तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग इतनी संख्या में आज से ही जुटने लगे हैं। पहला जत्था जो है वो सुबह सुबह 3 जुलाई को बालटाल से रवाना होगा, साथ ही पहलगाम रूट जो है वहां से भी रवाना होगा। अगर इस ट्रांजिट कैंप की बात करें तो यहां पर सिक्योरिटी के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। सीआरपीएफ, आप देख रहे हैं कि यहां सीआरपीएफ के कमांडोज भी मौजूद हैं। इसके साथ साथ यहां पर जो श्रद्धालु हैं उनकी संख्या आप देख करके ये पता चल जाएगा कि किस तरीके से यहां पर लोगों में इस वक्त उत्साह है, क्योंकि लोग यही चाहते हैं कि जो पहली यात्रा है और जो शुरुआत हो रही है 3 तारीख से, उसमें सारे लोग भारी से भारी संख्या में पहुंचे।
1: वैसे तो 15 अप्रैल से ही अमरनाथ यात्रा का रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया गया था, लेकिन ट्रांजिट कैंप में भी रजिस्ट्रेशन काउंटर्स बनाए गए हैं ताकि जो तीर्थयात्री पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो। ट्रांजिट कैंप में करंट यानी तत्काल टोकन और रजिस्ट्रेशन के लिए शिव भक्तों का तांता लगा है। इसी तरह तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए कैंप में EKYC और RFID कार्ड काउंटर भी बनाए गए हैं।
2: कड़ी सुरक्षा के बीच अमरनाथ यात्रा की शुरुआत 3 जुलाई से पहला जत्था पवित्र अमरनाथ गुफा तक पहुंचेगा। मैं इस वक्त पंथा चौक ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूं और यहां पर आपको तस्वीरों में दिखाएंगे कि इस बार सरकार के द्वारा ये व्यवस्था की गई है कि RFID ऑन द स्पॉट भी लोग ले सकते हैं। इसके साथ साथ जिन लोगों ने पहले से रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है उनको भी वह RFID और इसके साथ साथ QR कोड आधारित उनकी जो सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ तमाम जो दस्तावेज हैं वो मिल सकती हैं। यहां पर आप देखिए कि RFID और इसके साथ साथ EKYC डेस्क और रजिस्ट्रेशन काउंटर भी यहां पर तैयार किया गया है। बहुत सारे लोग हैं यहां पर, इनसे बातचीत करते हैं कि RFID जो है इस बार ये व्यवस्था की गई है कि तत्काल जो है लोगों को अगर जरूरत है तो कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन करा के आए, क्या प्रक्रिया है यहां पर?
3: सर, तत्काल में इसमें आप डायरेक्टली आके यहाँ पे भी करवा सकते हैं, अपना जो भी रिपोर्ट्स है वो लेके आ सकते हैं आप, और यहाँ पे आके आपका EKYC हो जाता है और इमीडिएटली आपको RFID मिल जाता है। और जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन भी करवा रखा है, जैसे हमने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करवा रखा था, तो इमीडिएटली यहाँ आए हम, विद इन 1 मिनट में हमको RFID मिल गया था हमारा देख के KYC।
4: सिक्योरिटीज वाइज भी बहुत अच्छी व्यवस्था है। जो हम निकले थे हमारे जर्नलिस्ट से तो कह रहे थे कि आपको सारी चीजों का ध्यान रखें, पर बहुत अच्छा वो व्यवस्था है और इजीली कोई कह रहा था कि RFID कार्ड में 2 घंटे 3 घंटे लग सकता है, मैक्सिमम 10-15 मिनट में सारा काम इजीली होके निकल गया। व्यवस्था में कोई भी प्रॉब्लम ऐसा कुछ हमें लगा नहीं जो सुन के आए थे। जिस तरह से
2: RFID यहां पर जिन लोगों को दिया जा रहा है उसकी खास बात यह है उसमें एक नंबर दिया जा रहा है, उससे लोगों की ट्रैकिंग भी हो सकती है। अगर उनको किसी भी तरीके से रास्ते में दिक्कत आती है या फिर वो कहीं पर रास्ता भटक जाते हैं तो उसकी भी दिक्कतों को पूरी तरीके से यहां पर देखा जाता है और उसके लिए पूरी व्यवस्था यहां पर की गई है। आप तस्वीरों में देखिए कि ये काउंटर जो बनाया गया है RFID के लिए, यहां पर लोग पहुंच रहे हैं। जिन लोगों को नया RFID बनवाना है या फिर रजिस्ट्रेशन यहीं पर आकर के उनको कराना है तत्काल रजिस्ट्रेशन के लिए, उसके लिए भी व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है वो EKYC डेस्क में जाकर के, जो श्रीनगर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इसकी व्यवस्था दी गई है, साथ ही रजिस्ट्रेशन काउंटर भी एक यहां पर तैयार किया गया है। ये आप देखिए कि इस रजिस्ट्रेशन काउंटर के जरिए भी लोग तुरंत ही रजिस्ट्रेशन करवा करके अपनी अमरनाथ यात्रा को कर सकते हैं।
1: सनातन धर्म में अमरनाथ यात्रा का बेहद महत्व है, इसी के चलते हर साल लाखों श्रद्धालु इस पावन यात्रा पर जाते हैं और शायद यही वजह है कि हर साल आतंकियों की बुरी नजर इस यात्रा पर रहती है। लेकिन आतंकी चाहे लाख कोशिश कर लें, लेकिन सुरक्षा बलों की चाक चौबंद तैयारियों के बीच वो अपने मंसूबों में कभी कामयाब नहीं हो पाते। इस बार भी अमरनाथ यात्रा के रूट पर सुरक्षा का बेहद कड़ा बंदोबस्त है। यात्रा के दौरान रूट मार्ग पर CRPF, BSF और जम्मू कश्मीर पुलिस के अलावा ITBP की भी तैनाती की गई है। इसके अलावा पूरे मार्ग पर CCTV कैमरा और ड्रोन के जरिए कड़ी निगरानी भी रखी जाएगी। यानी इस साल यात्रा में न केवल सुविधाएं बेहतर होंगी बल्कि सुरक्षा भी अभूतपूर्व है।

0: मान्यता है कि अमरनाथ गुफा वही पवित्र स्थान है जहां भगवान शिव ने माँ पार्वती को अमरता की रहस्य कथा सुनाई थी। यही वजह है कि बेहद मुश्किल भरा और दुर्गम रास्ता होने के बावजूद श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा पर जाना चाहते हैं। अब की बार भी भक्तों का जोश हाई है तो वहीं प्रशासन ने भी यात्रा को सकुशल संपन्न करवाने की पूरी तैयारी कर रखी है। इस बार अमरनाथ यात्रा के दौरान सुविधाएं बढ़ाई गई हैं और कुछ नए नियम भी लागू किए गए हैं। अगर आप भी इस साल बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जा रहे हैं तो पहले जान लीजिए कि इस बार यात्रा में क्या बदला है और किन नियमों का पालन करना जरूरी है। अगर यात्रा के दौरान सुविधाओं की बात करें तो इस बार बालटाल से पवित्र गुफा तक पूरे रास्ते पर बिजली और लाइट की व्यवस्था की गई है ताकि खराब मौसम या रात के समय भी श्रद्धालुओं को परेशानी ना हो। ट्रैकिंग रूट को भी पहले से बेहतर बनाया गया है जिससे कठिन चढ़ाई कुछ आसान हो सके। यात्रियों की सुविधा के लिए पोनी, पालकी और पोर्टर की प्रीपेड बुकिंग शुरू की गई है, यानी अब तय किराए पर ही ये सेवाएं मिलेंगी। रहने की व्यवस्था भी पहले से बेहतर हुई है। बालटार, नुनवान, श्रीनगर और चंदरकोट के यात्री निवासों का विस्तार किया गया है। वहीं जम्मू में बने नए सेंटर में करीब 4000 भक्तों को ठहरने की व्यवस्था भी की गई है। अगर कोई श्रद्धालु ज्यादा थक गया है, बीमार है या फिर किसी कारणवश रुकना पड़ रहा है तो यहाँ पर आराम कर सकता है। ये पूरी तरह से निशुल्क होगा। जम्मू के तवी रिवर फ्रंट पर बने नए इंटीग्रेटेड फैसिलिटेशन सेंटर में रजिस्ट्रेशन, मेडिकल जांच, हेल्थ सर्टिफिकेट और दस्तावेजों की जांच जैसी सभी जरूरी प्रक्रियाएं एक ही जगह पर पूरी की जा रही है। एक तरफ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं बढ़ाई गई हैं, तो वहीं सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। दरअसल पूरा सावन चलने वाली अमरनाथ यात्रा में यूं तो कई चुनौतियां होती हैं, लेकिन इनमें सबसे बड़ी चुनौती होती है यात्रियों की सुरक्षा, क्योंकि हर बार अमरनाथ यात्रा पर आतंकियों की बुरी नजर रहती है। लेकिन बाबा बर्फानी के प्रति लोगों की ऐसी आस्था है कि तमाम खतरों के बावजूद हर साल लाखों की संख्या में भक्त बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में देश की सुरक्षा एजेंसियां उन्हें सुरक्षित घर वापस भेजने की पूरी जिम्मेदारी उठाती हैं। इस बार भी आस्था के इस महाकुंभ में कोई खलल न पड़े, इसके लिए सुरक्षा बल पूरी तरह तैयार है। 670 से ज्यादा अर्धसैनिक बलों की कंपनियां सुरक्षा में तैनात की गई हैं। यात्रा मार्ग से लेकर बेस कैंप और हाईवे तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और भारतीय सेना के जवान दिन रात मोर्चे पर डटे हैं। बालटाल हो या पहलगाम, बाबा बर्फानी के धाम तक जाने वाला हर रास्ता एक अवैध किले में तब्दील कर दिया गया है। बम डिस्पोजर स्क्वाड और डॉग स्क्वाड को विशेष रूप से तैनात किया गया है। ये टीमें लगातार यात्रा मार्गों, टेंट्स और पार्किंग एरिया की तलाशी ले रही हैं।
1: जो स्मेल करते हैं और उसे डिटेक्ट करते हैं, कोई भी अगर सामान में कुछ भी होता है तो यहाँ जैसे आप देख पा रहे हैं कि सीधा पहले व्हीकल्स आती हैं। व्हीकल्स आने के बाद एक तो हमारे पास DSMD होता है और एक दूसरा डॉग होता है। तो डॉग जो है स्मेल करता है और कुछ भी अगर संदिग्ध वस्तु अगर पाई जाती है तो वो तुरंत डिटेक्ट कर लेता है। और साथ में उसी के साथ में हमारे BDDS का जो HSMD होता है वो भी एक टूल होता है, अगर कुछ भी होता है तो वो डिटेक्ट करने में हेल्पफुल रहता है।
0: इसके साथ ही सुरक्षा ग्रिड को मजबूत करने के लिए टेक्नोलॉजी का भी खूब इस्तेमाल हो रहा है। जमीन से लेकर आसमान तक कड़ा पहरा है। घने जंगल और दुर्गम रास्तों की निगरानी ड्रोन के जरिए की जा रही है। आखिरी समय में तमाम सिक्योरिटी इंतजामों का मुआयना करने के लिए फिलहाल जम्मू कश्मीर पुलिस महकमा ग्राउंड जीरो पर नजर आ रहा है। बुधवार सुबह से ही जम्मू कश्मीर पुलिस के तमाम सीनियर ऑफिसर्स अलग अलग यात्रा डिस्ट्रिक्ट्स में सुरक्षा तैयारियों का जायजा लेते नजर आए।
2: आज जम्मू कश्मीर पुलिस के जितने भी सीनियर ऑफिसर्स हैं, जो भी सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट है आज वो उसका मुआयना कर रहे हैं। इसका ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि कोई भी कमी पेशी होती है तो उसको लूप होल्स को प्लग करना और उसको और रिफाइन करना अपने रिस्पॉन्सेज के लिए। तो इसी लिहाज से ये जो है आज के

0: और बिना किसी परेशानी के संपन्न हो। दरअसल शिव भक्तों के लिए अमरनाथ यात्रा एक ऐसी कठिन साधना है जिसे आप शिवत्व को साधने की सबसे कड़ी तपस्या कह सकते हैं, और इस तपस्या को निर्वाध पूरा करवाने के लिए देश की सिक्योरिटी फोर्सेज पूरे जी जान से जुटी हैं। जम्मू से सुनील जी भट्ट, श्रीनगर से अशरफ वाली और जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: तो हजारों लोग अमरनाथ यात्रा पर निकल चुके हैं और हजारों जाने की तैयारियों में जुटे हैं। अब इसके बीच में उनका जो तीर्थ यात्रा पर जाने में या तो सक्षम नहीं है या किसी और वजह से चाहकर भी नहीं जा सकते, ठीक इसी तरह कई लोग चाहकर भी चारधाम यात्रा पर जा नहीं पाते। ऐसे लोगों के लिए वर्चुअल रियलिटी तकनीक की मदद से एक अनोखी सौगात तैयार की गई है। इसका नाम है दुर्लभ दर्शन। ये एक आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म है जिसमें 6D VR तकनीक के जरिए देश के प्रमुख मंदिरों के दर्शन का एक अनूठा अनुभव उपलब्ध करवाया जाता है। यानी दूर होकर भी आपको इस तकनीक के जरिए अपने आराध्य के पास होने का एहसास होगा। अभिनेता आशुतोष राणा को देश के पहले 6D मंदिर दर्शन सेवा तकनीक का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है।
2: हूं आशुतोष राणा और मैं आपको लेकर चल रहा हूं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या।
3: अब दुर्लभ मंदिरों के दर्शन भी सुलभ होंगे।
2: मन में तुलसी की सुगंध लिए हम अपने आराध्य प्रभु श्री राम के धाम की ओर चलते हैं।
3: घर बैठे ही तीर्थों की यात्रा होगी। देर तक निहार सकेंगे आराध्य।
2: दर्शनार्थ उनके विग्रह या मूर्ति के समक्ष उपस्थित होते हैं तो
3: दूर रहकर भी गर्भगृह की पूजा में शामिल हो सकेंगे।
4: इसमें है 50 से ज्यादा तीर्थ यात्रा
3: और ये सब संभव है दुर्लभ दर्शन। दुर्लभ दर्शन एक ऐसा पिटारा जिसमें हर धाम समाया है
2: बल्कि अनुभूत भी कर सकते हैं।
3: भगवान समाये हैं एक खास एहसास के साथ।
2: आपके और परमात्मा के बीच में कोई नहीं, वहां पर घटित होने वाली समस्त क्रियाकलापों में आप सहभागी होंगे। ऐसी अनुभूति हमारी करवाने का मन था कि अगर मान लीजिए पानी गिर रहा है, अगर हमने जल चढ़ाया, जलाभिषेक किया तो पानी के छींटे हमारे ऊपर आते हैं तो वो भी आपको अनुभूत हो। अगर आपने उनको सुगंधिम पुष्टिवर्धनम की बात, अगर हम सुगंध उनको लगा रहे हैं अभिषेक करते समय तो सुगंध भी आपको महसूस होगी। यदि हवा की बात है तो हवा भी आपको महसूस होगी। तो इस तरीके से पूरा इस अनुभव को बिल्कुल एक जो दुर्लभ अनुभव है उसको सुलभ करने के लिए हमने ये किया।
3: लाखों असल में दुर्लभ दर्शन एक आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म जिसमें 6D VR तकनीक के जरिए देश के प्रमुख मंदिरों के दर्शन का एक अनूठा अनुभव उपलब्ध कराया जाता है। इसमें वर्चुअल रियलिटी के साथ साथ जल, वायु, सुगंध और पौराणिक कथाओं के मेल से साक्षात गर्भगृह में होने का एहसास कराया जाता है। यूँ कहिए कि यहाँ आस्था और तकनीक के मेल से एक सुंदर आध्यात्मिक वातावरण का निर्माण किया जाता है। यहाँ एक और भगवान राम और उनकी अयोध्या की कहानी है तो काशी विश्वनाथ का इतिहास भी है और माँ वैष्णो देवी की आरती थी। बस इसे आँखों पर लगाइए और यात्रा पर निकल पड़िए। अभिनेता आशुतोष राणा आपको धर्मस्थलों की कहानी सुनाते भी नजर आएंगे।
2: हमें तो अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए। क्यों होता है ऐसा? वो इसलिए कि जब हम भाव विभोर होकर भगवान के दर्शन।
3: फिलहाल ये सुविधा अयोध्या, काशी समेत देश के 11 प्रसिद्ध मंदिरों में उपलब्ध है, जहां आप सुकून से बैठकर अपने आराध्य देव को करीब से महसूस कर सकेंगे,
2: ध्यान में लीन हो सकते हैं। और यदि किसी कारणवश
3: अभिनेता आशुतोष राणा को देश के पहले 6D मंदिर दर्शन सेवा तकनीक का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है।
2: 50 से अधिक तीर्थ यात्राएं और अनेक सिद्ध और दिव्य मंदिरों के दैनिक दर्शन कर सकते।
1: तो चलिए इसी के साथ GNT स्पेशल की इस बेहद खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरें जारी हैं, देखते रहिए GNT।
5: All sports, all the time, right here on TuneIn. Catch live sports talk, expert analysis, and nonstop discussion from your favorite stations, like ESPN Radio.
6: Not missed out on one player that the Yankees wanted.
5: Big 12 Radio.
7: Today is Big 12 Insiders Game Day. We're breaking
5: and
7: down.
5: And talk sports.
8: I just can't see a turnaround in the way that we're going to perform and result.
5: And much more. Get your head in the game and never miss a minute of the action. Just search sports or ask your device to play your favorite sports talk station.

0: on TuneIn.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: बात करेंगे अब अल्फा मूवी की, जो इस शुक्रवार रिलीज होने जा रही है, लेकिन फिल्म को लेकर चर्चाओं का दौर लगातार जारी है। यहां तक कि फिल्म में आलिया के एक्शन की भी जबरदस्त तारीफ हो रही है, लेकिन अब फिल्म की स्टार कास्ट से जुड़ी एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक 100 करोड़ के मेगा बजट वाली इस फिल्म के लिए सबसे ज्यादा फीस आलिया ने ही ली है।
3: गीता आज लंका खुद जलाने आई। हाय बॉयज।
4: पलक झपकते ही दुश्मन को धूल चटा देना, हाथों में बंदूक थामे बेखौफ दुश्मनों के बीच घुस जाना।
3: शुरू करो अग्नि परीक्षा।
4: आलिया भट्ट इस शुक्रवार सिल्वर स्क्रीन पर राज करने आ रही है। सामने आए अल्फा के ट्रेलर में आलिया पावर पैक एक्शन करती नजर आएंगी। हर पंच और हथियार चलाने का स्वैग ये बता रहा है कि पर्दे पर एक नए एक्शन स्टार का जन्म होने वाला है।
5: ये क्या है?
6: अल्फा।
5: अल्फा मतलब
6: सीक्रेट प्रोग्राम है इंडिया के नेक्स्ट जनरेशन सोल्जर्स तैयार करने के लिए।
4: आलिया ने 2012 में स्टूडेंट ऑफ द ईयर जैसी ग्लैमरस और बेहद स्टाइलिश फिल्म से डेब्यू किया था, लेकिन अब बड़े पर्दे पर उनका एक अलग अवतार देखने को मिलेगा।
6: तो भी वही है हमारी एकलौती
5: अल्फा।
4: कल तक पर्दे पर अपनी मासूमियत, रोमांस और इमोशन से दर्शकों को रुलाने वाली आलिया अब अपनी रफ्तार और एक्शन से स्क्रीन पर कोहराम मचाने के लिए तैयार है।
6: इसकी माँ का नाम जानकी था, हम इसे सीता बुलावेंगे।
4: एक तरफ अल्फा में आलिया के एक्शन सीक्वेंस की चर्चा है, तो दूसरी तरफ फिल्म की स्टार कास्ट की फी को लेकर भी बाजार में चर्चाओं का दौर है।
3: वो धोखे से राज करता था और झूठ से जीतता था।
4: रिपोर्ट्स की मानी जाए तो 1000 करोड़ के बजट वाली इस मेगा स्टार फिल्म में आलिया ने सबसे ज्यादा फी चार्ज की है। दावा किया जा रहा है कि स्पाई थ्रिलर फिल्म के लिए आलिया भट्ट ने तकरीबन 25 करोड़ रुपए की भारी भरकम फी चार्ज की है, यानी फिल्म के पूरे बजट का 1/4 हिस्सा सिर्फ और सिर्फ आलिया के नाम रहा, जबकि आलिया की को स्टार शर्वरी ने 3 करोड़ रुपए की फी चार्ज की है। दूसरी तरफ बॉबी देओल फिल्म में विलेन के रोल में नजर आने वाले हैं और उन्हें इसके लिए करीब 6 करोड़ रुपए मिले हैं। वहीं फिल्म में एक अहम भूमिका निभाने वाले अनिल कपूर को भी तकरीबन 6 करोड़ रुपए मिले हैं। बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर फिल्में देने के बाद आलिया आज बॉलीवुड की सबसे भरोसेमंद फीमेल स्टार्स में से एक हो चुकी है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं है कि आलिया की ही कंधों पर इस 100 करोड़ बजट वाली फिल्म का भार है।
5: It really means a lot to me.
6: चौथीसवां फ्लोर, 3418।
5: मैं समझी नहीं बाबा, वहाँ करना क्या है?
6: वही जिसके लिए मैंने तुझे ट्रेनिंग दी है।
4: अब देखना यह है कि 25 करोड़ की फी लेने वाली अल्फा गर्ल आलिया इस शुक्रवार बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ की कमाई कर पाती है।
6: दुनिया में सिर्फ 2 तरह के लोग होते हैं, वुल्फ और शीप। मैं वुल्फ हूँ। तो क्या है?
3: वुल्फ की बेटी वुल्फ ही होती है सर।
4: ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
7: चलिए आपको देवभूमि उत्तराखंड लिए चलते हैं, जहां चमोली जिले में मौजूद फूलों की घाटी इन दिनों गुलजार है मनमोहक खूबसूरत फूलों से। बड़ी बात यह है कि इस बार यहां रिकॉर्ड संख्या में लोग भी पहुंचे हैं इसका दीदार करने के लिए। अब तक 7294 लोग फूलों की घाटी की सुंदरता का दीदार कर चुके हैं।

0: पहाड़ों के बीच फैली हरियाली, बादलों से बातें करती वादियाँ, और जहाँ तक नजर जाए वहाँ तक रंग बिरंगे फूलों की दुनिया। ये नज़ारा किसी कल्पना का नहीं बल्कि चमोली की विश्व धरोहर फूलों की घाटी का है। हर साल मानसून के साथ यहाँ प्रकृति अपनी सबसे खूबसूरत तस्वीर पेश करती है। इस बार भी घाटी ने अपने रंग बिखेरने शुरू किए तो लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है। फूलों की घाटी में 1 जून को पर्यटकों के लिए प्रवेश शुरू हुआ था। अभी सिर्फ 1 महीना ही बीता है लेकिन यहाँ आने वालों की संख्या ने सभी पुराने आंकड़े पीछे छोड़ दिए हैं। अब तक 7,294 लोग घाटी की प्राकृतिक सुंदरता का दीदार कर चुके हैं। इनमें 34 विदेशी पर्यटक भी शामिल हैं। वन विभाग का कहना है कि सीजन की शुरुआत इतनी शानदार पहले बहुत कम देखने को मिली है। अगर पिछले साल से तुलना करें तो अंतर साफ दिखाई देता है। बीते साल इसी महीने में 3,893 पर्यटक पहुँचे थे, यानी इस बार शुरुआती 1 महीने में ही करीब 1.5 गुना अधिक लोग यहां पहुंचे हैं। यही वजह है कि वन विभाग को इस पूरे सीजन में रिकॉर्ड संख्या की उम्मीद दिखाई दे रही है। अभी तो ये केवल शुरुआत है। फूलों की घाटी का असली आकर्षण 15 जुलाई से 15 अगस्त के बीच दिखाई देता है। इसी समय सबसे अधिक प्रजातियों के फूल एक साथ खिलते हैं। चारों ओर रंगों का ऐसा संसार बन जाता है जिसे देखने के लिए देश विदेश से प्रकृति प्रेमी यहाँ पहुँचते हैं। फूलों की घाटी की सबसे खास बात ये है कि यहाँ केवल एक तरह के फूल नहीं खिलते। इस पूरी घाटी में करीब 500 प्रजातियों के फूल पाए जाते हैं। हर 15 दिन बाद नई किस्में खिलती हैं और पहले वाले धीरे धीरे विदा हो जाते हैं। यही वजह है कि यहाँ का नज़ारा लगातार बदलता रहता है। यही बदलता रूप इस जगह को दुनिया की सबसे खास प्राकृतिक धरोहर में शामिल करता है। जैसे जैसे जुलाई का ये महीना आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ये पूरी घाटी और अधिक रंगों से भरती जाएगी। आने वाले दिनों में यहाँ प्रकृति का सबसे मनोहरी रूप दिखाई देगा। यही वजह है कि फूलों की घाटी केवल एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि धरती पर सजे उस जीवन कैनवस का नाम है जहाँ हर मौसम नई तस्वीर बनाता है। चमोली से कमल नैन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: If you're serious about sports, NBC Sports Radio is the place for you. Start your day with NFL updates from Mike Florio. Then join Dan Patrick and the Danettes for in-depth discussions and the biggest guests in sports. Plus, don't miss Dan Le Batard at the intersection of sports and pop culture. Then when the games are on, tune in for live events and highlights from NBC Sports. Search NBC Sports Radio or tell your device to play NBC Sports Radio on TuneIn to listen.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: बाबा बर्फानी के दर्शन की आई शुभ घड़ी, शिव भक्तों का जोश आए गहन सुरक्षा के बीच अमरनाथ यात्रा के लिए तैयार पहला जत्था। आर्थिक मोर्चे पर देश के लिए गुड न्यूज, जून में 1,94,000 करोड़ जीएसटी कलेक्शन, पिछले साल से 14% ज्यादा, इंपोर्ट से होने वाली कमाई बढ़ी। पहाड़ों पर मानसून का दिखने लगा असर, रुद्रप्रयाग में लगातार हो रही है बारिश से अलकनंदा नदी का बड़ा जलस्तर, नदी के किनारे बनी भगवान शिव की मूर्ति तक पहुंचा पानी। बद्रीनाथ में भगवान विष्णु के भक्तों ने अब तक के सारे रिकॉर्ड्स किए ध्वस्त, 14,00,000 से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन, हर रोज 15,000 से 20,000 श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। केंद्रीय कैबिनेट की दिल्ली और उत्तर प्रदेश को 14,000 करोड़ से ज्यादा की सड़क परियोजनाओं को मिली मंजूरी, दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ेगी 6 लेन वाली टनल, वहीं कानपुर से करबई के बीच बनेगा एक्सेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड हाईवे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
4: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा, फैक्ट चेक में आपका स्वागत है। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां, झूठे दावे बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है तो कभी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर पेश किया जाता है। लोग बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते हैं क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं है। हर किसी के हाथ में कैमरा है, हर घटना हर तस्वीर कुछ ही सेकेंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाती है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नहीं बताकर पेश की जाती है, किसी वीडियो को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है ताकि कहानी असलियत से कोसों दूर लगे। लोग बिना जांचे समझे इन्हें सच मान लेते हैं, उन्हें लगातार शेयर करते हैं। लेकिन फैक्ट चेक के जरिए हम हर तस्वीर हर वीडियो की पड़ताल करते हैं, हर तस्वीर और हर वीडियो के पीछे की सच्चाई आप तक लेकर आते ताकि आपको सही और सटीक जानकारी मिले। तो फैक्ट चेक में आज जिन दो खबरों की पड़ताल हम करेंगे उसमें सबसे पहले सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो की बात होगी जिसके जरिए दावा यह किया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में गौ रक्षकों को उम्र कैद की सजा सुनाए जाने के विरोध में हुए वकीलों के प्रदर्शन का वीडियो है। सच्चाई क्या है आगे जानिए। हमारी अगली खबर उस वायरल वीडियो से जुड़ी होगी जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि बिल्डिंग ढहने का ये वीडियो वेनेजुएला में आए हालिया भूकंप से संबंधित है। अब इस दावे की सच्चाई क्या है आगे पड़ताल करेंगे। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ला।
4: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो को शेयर करते हुए कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में गौ रक्षकों को उम्र कैद की सजा सुनाए जाने के विरोध में हुए वकीलों के प्रदर्शन का वीडियो है। वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती रिपोर्ट।

0: किसी बड़ी सी इमारत के परिसर में इकट्ठा सैकड़ों वकीलों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर ये कहते हुए शेयर किया जा रहा है कि इन लोगों ने मध्य प्रदेश में गौ रक्षकों को आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने के विरोध में प्रदर्शन किया। दरअसल नर्मदापुर मध्य प्रदेश के सेशन कोर्ट ने 12 जून को 14 गौ रक्षकों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी और इसके बाद से ही देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। इसी संदर्भ में वकीलों वाला वीडियो भी वायरल हो रहा है। एक थ्रेड्स यूजर ने इसे शेयर करते हुए लिखा है, धन्यवाद आपको देश की न्यायपालिका, 5000 वकीलों ने 14 गौ सेवकों को दिया समर्थन, जल्द जमानत होगी। कुछ लोग तो इस वीडियो को शेयर करते हुए यहां तक दावा कर रहे हैं कि गौ रक्षकों के समर्थन में 5000 वकीलों ने प्रदर्शन किया। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में गौ रक्षकों को उम्र कैद की सजा सुनाए जाने के बाद वकीलों के प्रदर्शन का वीडियो है और वीडियो में किसी बड़ी सी इमारत के परिसर में सैकड़ों वकीलों को इकट्ठा देखा भी जा सकता है। साथ ही साथ इस दौरान कुछ वकीलों को वीडियो रिकॉर्ड करते हुए भी देखा गया। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। ऐसे में इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमारा ध्यान वीडियो में नजर आ रही बिल्डिंग पर गया। जब हमने इसे गौर से देखा और फिर इस इमारत के बारे में सर्च किया तो ये जानकारी सामने आई कि बिल्डिंग लखनऊ हाईकोर्ट की है। इसके बाद फैक्ट चेक टीम ने यह जानने की भी कोशिश की कि क्या लखनऊ में वकीलों ने गौ रक्षकों को उम्र कैद सुनाए जाने के को लेकर कोई प्रदर्शन किया है, लेकिन सर्च के दौरान ऐसी कोई प्रमाणिक रिपोर्ट नहीं मिली जिससे वारे दावे की पुष्टि हो सके। क्योंकि अगर वाकई ऐसा हुआ होता तो ये कहीं ना कहीं खबर जरूर बनती, किसी मीडिया आउटलेट्स में भी जरूर आती। लिहाजा हमने ऐसे सवालों की कसौटी पर कसा। हमारा पहला सवाल यही था कि क्या लखनऊ हाईकोर्ट में सैकड़ों वकील जमा हुए तो क्यों हुए। दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा। सच और झूठ क्या है इस रिपोर्ट में जानिए। इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वीडियो की जांच में जुटी। वायरल वीडियो को गौ रक्षकों से जुड़ा प्रदर्शन बताने वाले एक पोस्ट में हमें एक इंस्टाग्राम अकाउंट के हैंडल का वॉटरमार्क दिखा। इस जानकारी की मदद से सर्च करने पर हमें पता चला कि इस हैंडल से वायरल वीडियो 25 मई को शेयर किया गया था। इस पोस्ट में वीडियो की लोकेशन लखनऊ हाईकोर्ट बताई गई थी। सर्च के दौरान ये भी जानकारी सामने आई कि वीडियो लखनऊ हाईकोर्ट गोमती नगर का है और बार काउंसिल ऑफ यूपी के चुनाव से संबंधित है। ये वीडियो मार्च 2026 में बनाया गया। वीडियो में कुछ लोग नंबरों वाली तख्तियां पकड़े नजर आ रहे हैं। ये वो नंबर्स हैं जो प्रत्याशियों को अलॉट किए जाते हैं। लखनऊ हाईकोर्ट में हाल फिलहाल में गौ रक्षकों के मामले को लेकर वकीलों का कोई प्रदर्शन नहीं हुआ। साफ है कि लखनऊ का एक पुराना वीडियो अब मध्य प्रदेश के गौ रक्षकों को मिली सजा के विरोध में हो रहे प्रदर्शन का बताकर शेयर किया जा रहा है। ज्योति द्विवेदी के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा ये कर रहे हैं कि बिल्डिंग ढहने का ये वीडियो है वेनेजुएला में आए हालिया भूकंप का। वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती रिपोर्ट।
2: हाल ही में वेनेजुएला की राजधानी कराकास में कुछ ही सेकंड्स के अंतराल पर दो बड़े भूकंप आए। पहला भूकंप 7.2 तीव्रता का था और दूसरा 7.5 तीव्रता का था। वेनेजुएला प्रशासन के अनुसार इस भूकंप में कई लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 700 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार ये साल 1900 से लेकर अब तक का सबसे भीषण भूकंप है। इन सब के बीच सोशल मीडिया पर बिल्डिंग ढहने का ये वीडियो इस दावे के साथ शेयर किया जा रहा है कि ये वेनेजुएला में आए हालिया भूकंप का दृश्य है। वायरल वीडियो करीब 9 सेकंड्स का है जिसमें एक बहुमंजिला इमारत ताश के पत्तों की तरह ढहती हुई नजर आई। इस दौरान यहाँ मौजूद लोग भागते हुए भी नजर आ रहे हैं। एक एक्स यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि 126 साल में सबसे खतरनाक भूकंप, वेनेजुएला के भूकंप में कम से कम 10,000 की मौत। यूएसजीएस का चौंकाने वाला दावा। वेनेजुएला के भूकंप में कम से कम 10,000 लोगों की मौत की खबर निकलकर सामने आई है। यूएसजीएस का चौंकाने वाला दावा किया गया है। कराकास एयरपोर्ट भी इस भूकंप से तबाह हो गया है। वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानने बगैर लोग इस वीडियो को धड़ल्ले से शेयर कर रहे हैं।
1: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में एक बहुमंजिला इमारत ताश के पत्तों की तरह ढहती हुई नजर आ रही है। इस दौरान वहां मौजूद लोग भागते हुए दिख रहे हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है और यूजर्स इसे वेनेजुएला में आए हालिया भूकंप का बता रहे हैं। ऐसे में इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो फैक्ट चेक टीम ने वायरल वीडियो की पड़ताल शुरू की। वेनेजुएला में पिछले हफ्ते आए दो भूकंपों ने तबाही का ऐसा मंजर पैदा किया जिसकी कल्पना वाकई डरावनी वाली है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी के सैटेलाइट डेटा पर आधारित एक शुरुआती आंकलन से पता चलता है कि प्राकृतिक आपदा में देश की 58,000 से मलबे में तब्दील हो गए, उन्हें भारी नुकसान पहुंचा। सदी के सबसे भीषण भूकंप ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। ऐसे में प्राकृतिक आपदा में देश की 58,000 से ज्यादा इमारतें पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो गए, उन्हें भारी नुकसान पहुंचा। सदी के सबसे भीषण भूकंप ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। ऐसे में वायरल हो रहे इस वीडियो की जांच करना जरूरी हो गया था। दावे की सच्चाई जानने के लिए सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो को हमने गौर से देखा और सुना। इस दौरान हमारा ध्यान वीडियो में आ रही कुछ आवाजों पर गया। हमने इसे गौर से सुना। बैकग्राउंड में जो आवाजें आ रही हैं वो स्पेनिश या फिर अंग्रेजी नहीं है, ये कोई और ही भाषा है, क्योंकि अगर वेनेजुएला का ये वीडियो होता तो फिर जाहिर सी बात है वहां स्पेनिश या फिर अंग्रेजी सुनाई देती, लेकिन यहां पर कोई और भाषा सुनने को मिल रही। मतलब ये कि वायरल वीडियो कहीं और का हो सकता है। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई विश्वसनीय रिपोर्ट भी नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके, लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा। पहला सवाल यही कि वायरल हो रहा वीडियो कब का है और कहां का है। हमारा अगला सवाल कि कहीं जानबूझकर किसी पुराने वीडियो को हालिया वेनेजुएला भूकंप से जोड़कर वायरल तो नहीं किया जा रहा, सच और झूठ क्या इस रिपोर्ट में जानिए।
2: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक की टीम वीडियो की जांच में जुटी। सबसे पहले हमने वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को गौर से देखा, सर्च किया। इस दौरान हमें ये वीडियो एक अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी के YouTube अकाउंट से 6 फरवरी 2023 को अपलोड किया गया मिला। वीडियो के साथ मौजूद कैप्शन के अनुसार तुर्की के सान डियोर्फा प्रांत के हालिलियो जिले में आए 7.8 तीव्रता के भीषण भूकंप के बाद एक इमारत ढह गई थी और इसका दृश्य स्थानीय टीवी के जारी किए गए वीडियो फुटेज में भी दिखाई दिया। इसके अलावा हमें एक आधिकारिक वेबसाइट पर भी 6 फरवरी 2023 को अपलोड किया गया ये वीडियो मिला, जिसमें इसे 2023 में तुर्की में आए भूकंप के दौरान हालिलिये जिले में बिल्डिंग ढहने का बताया गया था। जांच में हमें इसी घटना का दूसरा एंगल से लिया गया वीडियो एक पत्रकार के एक्स अकाउंट से भी 6 फरवरी 2023 को अपलोड किया गया मिला। साथ ही इसी पोस्ट के रिप्लाई सेक्शन में वायरल वीडियो भी मौजूद था। दरअसल 6 फरवरी 2023 को दक्षिणी तुर्की में 9 घंटे के भीतर 7.7 और 7.6 तीव्रता के दो बड़े भूकंप आए, जिसके बाद 20 फरवरी को एक और भयंकर झटका महसूस किया गया था। इस आपदा में कई लोगों की मौत हो गई थी। हमारी जांच में मिले साक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि वेनेजुएला में आए हालिया भूकंप का बताकर वायरल हो रहा ये वीडियो असल में 3 साल पहले तुर्की में आए भूकंप का है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: फैक्ट चेक में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के उस पर आपको ले चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे तमाम ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
4: If you love podcasts, you never want to be without your favorite shows. That's where TuneIn comes in. Here's a quick tip. You can listen anytime, even without the internet. Just open a podcast, tap the 3 dots next to an episode, and hit download. Simple as that. Now you're free to listen wherever you are. On a flight, underground, or totally offline. Your downloads are always waiting on your library page. From true crime to lifestyle to health and science, TuneIn makes it easy to take your podcasts anywhere.
3: Good news today is really good. It's in this उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला
1: फैक्ट चेक के आखिरी सफर का, जहां आपको दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हैं।
2: सोशल मीडिया पर एक बहुत क्यूट और दिल छू लेने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें ट्रेन में टिकट चेकिंग के दौरान एक टीटीई और नन्ही बच्ची के बीच मजेदार बातचीत देखने को मिल रही है।
5: टिकट किधर है? टिकट नहीं है। पैसा दीजिए।
2: वीडियो में टीटी जब बच्ची से टिकट मांगता है तो वो अपने मासूम अंदाज में टिकट दिखाने से साफ मना कर देती है।
5: टिकट नहीं है ना? हाँ पैसा है। पूछो पापा माँ को, पूछो पैसा पूछो।
2: इसके बाद टीटी मजाक में पैसे मांगता है, जिस पर बच्ची के बेबाक और प्यारे जवाब सुनकर आसपास बैठे यात्री भी मुस्कुराने लगते हैं। बच्ची की मासूमियत, आत्मविश्वास और चुलबुले अंदाज ने लाखों लोगों का दिल जीत दिया है।
5: आपको पापा का नाम क्या? मम्मा का नाम? आपका नाम?
2: इस नाम नहीं है। बार बार देख रहे हैं और कॉमेंट्स में बच्ची की खूब तारीफ भी कर रहे हैं।
5: टिकट नहीं है। पैसा दीजिए। पर्ची लिखना। पैसा दे। हाँ पैसा है। वो पर्ची लिखता हूँ मैंने। टिकट नहीं है ना? हाँ पैसा है। पूछो पापा माँ को, पूछो पैसा पूछो। पर्ची लिखने के लिए
6: पैसे देने।
5: टिकट नहीं है इनको।
6: टिकट नहीं है?
5: टिकट नहीं है। दस रुपए दीजिए।
2: भाई बहन के प्यार से जुड़ा ये प्यारा सा वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रहा है। वीडियो में एक छोटी बच्ची अपने भाई के साथ हल्की फुल्की नोकझोंक करती हुई नजर आ रही है, लेकिन कुछ ही क्षण बाद वो अचानक उसकी ओर दौड़ती है और उसे प्यार से गले लगा लेती है। नन्ही बच्ची की इस मासूम और स्नेह भरे हाव भाव ने पल भर में माहौल को बदल दिया और दोनों के बीच का प्यार साफ झलकने लगा। ये भावुक दृश्य इंटरनेट पर लोगों को खूब पसंद आ रहा है और कई यूजर्स इसे भाई बहन के अटूट रिश्ते की खूबसूरत मिसाल भी बता रहे हैं। वीडियो को देखने के बाद लोग बच्ची की भावनात्मक समझ और उसके मासूम दिल की जमकर सराहना कर रहे हैं। कई लोगों का मानना है कि प्यार और अपनापन छोटी मोटी नाराजगी को भी आसानी से दूर कर सकते हैं। वीडियो इतना क्यूट है कि लोग इसे एक बार नहीं बल्कि बार बार देख रहे हैं। यही वजह है कि ये क्लिप सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है और यूजर्स इसके दीवाने बने हुए हैं। वीडियो में एक बहुत प्यारी और छोटी सी बच्ची दिखाई दे रही है। वो बड़े ही आत्मविश्वास के साथ टें टें टू टू टी टी गा रही है। उसकी तोतली आवाज और उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस इतने ज्यादा मजेदार हैं कि कोई भी शख्स अपना तनाव भूल सकता है। बच्ची जिस तरह से अपनी आंखों को घुमाकर और चेहरे पर अलग अलग भाव लाकर गा रही है, ये इसके क्यूट एक्सप्रेशंस ही हैं जो इस वीडियो को इतना खास बना रहे हैं। जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स खासकर इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अपलोड हुआ, लोगों ने इसे हाथों हाथ लिया। वीडियो पर लाखों की संख्या में व्यूज और लाइक्स आ चुके हैं। लोग कमेंट्स में बच्ची की मासूमियत की खूब तारीफ कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक बच्चे और पुलिस डॉग की ये प्यारी मुलाकात लोगों का दिल जीत रही है। वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक मासूम बच्चा पुलिस K9 डॉग के पास पहुंचा तो किसी ने नहीं सोचा था कि इतना प्यारा पल देखने को मिल जाएगा। बच्चे की मासूम मुस्कान और कुत्ते की दोस्ताना प्रतिक्रिया ने वहां मौजूद सभी लोगों का दिल जीत लिया। ये वीडियो हमें याद दिलाता है कि प्यार, भरोसा और दोस्ती की कोई भाषा नहीं होती। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो छाया हुआ है जिसे देखकर लोग हैरान भी हैं और थोड़े डरे हुए भी हैं। दरअसल जिस खतरनाक जीप को देखकर बड़े बड़ों के पसीने छूट जाते हैं, एक छोटा सा बच्चा उसके साथ बड़े आराम से डॉक्टर खेलता हुआ नजर आ रहा है। ये जीप कोई पालतू कुत्ता या बिल्ली नहीं बल्कि मगरमच्छ है। बच्चे की इस निडरता को देखते हुए नेटिजंस दांतों तले उंगलियां दबा रहे हैं। ये हैरान कर देने वाला वीडियो कोलंबिया का बताया जा रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक छोटा सा बच्चा जमीन पर बैठे मगरमच्छ के पास बिल्कुल बेखौफ होकर बैठा है। बच्चा खुद को डॉक्टर समझकर उस जंगली जीव का इलाज करने का नाटक कर रहा है।
7: वो कभी उसके शरीर को सहलाता है तो कभी उससे इंसानों की तरह बातें करने लग जाता है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि वो खतरनाक जीव भी पूरी तरह शांत लेटा हुआ है। उसने बच्चे को नुकसान पहुंचाने की एक भी कोशिश नहीं की, मानो वो सचमुच अपना इलाज करवा रहा हो। एक छात्र एग्जाम टाइम में मोबाइल से चीटिंग करते हुए पकड़ा जाता है। इसके बाद वो जो करता है उससे पूरे क्लासरूम में मौजूद बाकी छात्रों की भी पोल खुल जाती है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एग्जाम चल रहा होता है, इसी दौरान एक स्टूडेंट मोबाइल में चीटिंग करते हुए पकड़ा जाता है। टीचर उसका मोबाइल अपने कब्जे में ले लेती हैं और उसे क्लासरूम से बाहर जाने के लिए कहती हैं। जैसे ही टीचर छात्र को लेकर क्लास से बाहर निकलने लगती हैं, तभी छात्र अचानक क्लासरूम की सभी लाइटें बंद कर देता है। कमरे में अंधेरा हो जाता है। एक ऐसा नजारा दिखाई देता है जिसने सभी को चौंका दिया। अंधेरे में कई छात्रों के मोबाइल फोन की स्क्रीन चमकने लगती है, जिसे पता चल जाता है कि क्लास में मौजूद कई दूसरे छात्र भी मोबाइल की मदद से नकल कर रहे थे। इसकी वजह से पूरे क्लासरूम में चीटिंग कर रहे बाकी छात्रों की भी पोल खुल जाती है और यहीं वीडियो भी खत्म हो जाता है। पहाड़ों में घूमने के दौरान एक भारतीय शख्स ने अपनी चलती कार से प्लास्टिक की खाली बोतल को फेंक दिया। कार के पीछे बाइक पर चल रहे एक विदेशी पर्यटक को देश की इस खूबसूरत प्रकृति का ऐसा अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने तुरंत वो बोतल उठाई और कार सवार के पास जाकर बोतल वापस उसकी कार के अंदर फेंकते हुए उसे जमकर फटकार लगाई। वीडियो में साफ दिख रहा है कि विदेशी पर्यटक पहाड़ों की खूबसूरत इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचता देख बहुत गुस्से में था। उसने ठान लिया था वो इस लापरवाही को बिना टोके नहीं जाने देगा। इस वीडियो को यूजर्स बार बार देख रहे हैं, युवक के सिविक सेंस पर सवाल उठा रहे हैं। आमतौर पर जब कोई जानवर बाघ को सामने से देखता है तो वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसने लोगों को हैरान कर दिया। इस वीडियो में एक साधारण गाय बाघ के सामने डटकर खड़ी हो जाती है। इतना ही नहीं, गाय का हौसला देखकर खुद टाइगर को पीछे हटना पड़ता है। वीडियो देखने के बाद लोग यही कह रहे हैं कि शायद ऐसा नजारा पहले कभी देखने को नहीं मिला होगा। इंटरनेट पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग गाय की बहादुरी की जमकर तारीफ कर रहे हैं।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
8: Want to hear something funny? Check out Just for Laughs Radio, your destination for all things comedy. Enjoy non-stop stand-up from your favorite comics, plus the ones you haven't discovered yet. Get your daily dose of laughter on Just for Laughs Radio, now on TuneIn.
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज़ टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: भारत की बेटियां अब सिर्फ खेल के मैदान में ही नहीं बल्कि खेलों के संचालन और फैसलों की सबसे बड़ी जिम्मेदारियों में भी नया इतिहास लिख रही हैं। उत्तर प्रदेश की मंजू नयाल ने कुछ ऐसा ही मुकाम हासिल किया है। मंजू नयाल ने वो उपलब्धि हासिल की है जिसे अब तक देश की कोई महिला हासिल नहीं कर पाई थी। वो भारत की पहली 3-स्टार इंटरनेशनल महिला कुरैश रेफरी बन गई हैं और इसी के साथ उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय खेल जगत में देश का नाम रोशन किया है।

0: भारत की बेटियां अब सिर्फ मेडल जीतकर ही नहीं बल्कि खेलों के सबसे अहम फैसले लेने वाली कुर्सी तक पहुंचकर भी इतिहास रच रही हैं। उत्तर प्रदेश के मंजू नयाल ने ऐसी उपलब्धि हासिल की है जो आज तक देश की कोई महिला हासिल नहीं कर सकी। मंजू नयाल भारत की पहली 3-स्टार इंटरनेशनल महिला कुराश रेफरी बन गई है। ये सिर्फ उनकी व्यक्तिगत सफलता नहीं बल्कि भारतीय खेल जगत के लिए भी गर्व का पल है।
1: मैम, देश की पहली 3-स्टार रेफरी कुराश गेम में, सुनकर कैसा लग रहा है? देश की पहली महिला रेफरी।
2: सर, बहुत अच्छा लग रहा है, प्राउड मोमेंट हो रही है कि देश की पहली महिला रेफरी बनी हूँ, तो काफ़ी लोगों की विशेस भी आ रही हैं और मतलब सपोर्ट भी मिला काफ़ी, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है पहली 3-स्टार रेफरी बन के कुराश की।
0: कामयाबी का यह शिखर रातों रात नहीं मिला। मंजू नयाल का यह सफर उनकी लगातार कोशिशों का नतीजा है। साल 2023 में नयाल 1-स्टार इंटरनेशनल कुराश रेफरी बनी। इसके बाद साल 2025 में उन्होंने 2-स्टार इंटरनेशनल रेफरी का दर्जा हासिल किया और अब इसी जून महीने में उज्बेकिस्तान में आयोजित बेहद कठिन अंतर्राष्ट्रीय रेफरी परीक्षा को पास करके मंजू ने 3-स्टार का वो मुकाम हासिल किया जहाँ आज तक कोई भारतीय महिला नहीं पहुँच सकी थी।
2: पहले स्टेट रेफरी का एग्जाम दिया कुराश के अंदर, फिर नेशनल रेफरी का, फिर अब इंटरनेशनल रेफरी में, तो फिर वही, फिर 1-स्टार, 2-स्टार, अब मैं 3-स्टार हो गई हूँ। तो ये बिग अचीवमेंट्स है इंडिया के अंदर। मैं अभी तक 3-स्टार रेफरी कोई वुमेन नहीं थी, 1st रेफरी मैं बनी हूँ इस बार, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है इस चीज के लिए।
0: आपको बता दें कि कुराश मध्य एशिया से जुड़ी एक प्राचीन और बेहद लोकप्रिय कुश्ती शैली है। कुराश आज दुनिया भर में लोकप्रिय हो चुका है। इसकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये 130 से अधिक देशों में खेला जाता है। कुराश की शुरुआत 3500 साल पहले उज्बेकिस्तान में हुई थी। इस खेल में दो खिलाड़ी एक दूसरे को पकड़कर पीठ के बल जमीन पर गिराने की कोशिश करते हैं। इसे 2018 के एशियाई खेलों में भी शामिल किया गया था जहां भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पदक जीते थे। मंजू नयाल ने अपने खेल करियर की शुरुआत जूडो से की थी, लेकिन वक्त के साथ कुराश के प्रति उनकी दिलचस्पी बढ़ती गई और फिर उन्होंने खुद को पूरी तरह इसी खेल के लिए समर्पित कर दिया।
2: वैसे मैं जूडो में भी नेशनल रेफरी हूँ थी, तो वहाँ पर हमारे सर थे रवि कपूर सर, जो दिल्ली के जनरल सेक्रेटरी थे, तब उन्होंने स्विच करा कुराश के अंदर, तो अब उनका साथ था, उन्हें जानते थे दिल्ली के अंदर, बाकी को नहीं इतना हमारा वो था। जब उन्होंने स्विच करा तो उनके साथ साथ हमने कुराश में भी स्विच कर लिया था उन्हीं के उससे।
0: मंजू नयाल फिलहाल गाजियाबाद में गुरुकुल द स्कूल की शारीरिक शिक्षा विभाग की कोऑर्डिनेटर हैं और कई बड़े अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में रेफरी की भूमिका निभा चुकी है।
2: अभी तक मैं नोमाड्स गेम कजाकिस्तान में मैंने 2024 में एज ए रेफरी की भूमिका निभाई, फिर चिल्ड्रन एशियन गेम में युकोत्सव रशिया में 2024 में मैं ऑफिशिएटिंग करी वहाँ पर, 3rd एशियन यूथ बहरीन में भी मैं एज ए ऑफिशियल गई, उसके बाद अभी हमारा करंट जापान में ट्रायल इवेंट हुए थे उसके अंदर भी मैंने एज ए ऑफिशियल की भूमिका निभाई।
1: इस गेम का रेफरी होना है, किसी भी गेम का रेफरी होना, आपके हिसाब से कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, खासकर तब जब आप एक इंटरनेशनल स्टेज पर अपने देश को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं?
2: बहुत प्रेशर होता है, सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है, क्योंकि अगर आप दो कंट्री की बाउट करा रहे हो, उन दो कंट्रियों के बीच में उन दो कंट्रियों का रेफरी नहीं होता, तीसरी कंट्री का रेफरी होता है, तो वहाँ पे जजमेंट देना बहुत वो रहता है, बड़े दिमाग से देखना पड़ता है, एक एक जेस्चर देखना पड़ता है, कैसी लैंडिंग हुई है, किस पे हुई है, प्लेयर किस एरिया में जा रहा है, ये सारी चीज़ें हमें बहुत ध्यान से देखनी पड़ती है।
0: मंजू नयाल का लक्ष्य अब इसी साल सितंबर में होने जा रहे एशियन गेम्स में रेफरी के तौर पर भारत का प्रतिनिधित्व करने का है।
2: एशियन गेम्स जो अब सितंबर में होने वाले हैं 22 से, उसमें अभी हम दिल्ली इंडिया से गए थे और वहाँ ट्रायल इवेंट्स देखने गए थे कि क्या क्या कमियाँ हैं, क्या क्या होना वाला है, तो उसका एक रन थ्रू था वहाँ पर, तो वहाँ पे मैं एज ए इंडिया से रिप्रेजेंट करा था मैंने वहाँ पर, और काफ़ी चीज़ें वहाँ मुझे सीखने को भी मिली, बहुत सारी चीज़ें देखी, क्या कमियाँ थी, क्या है, ये सारी चीज़ें हम वहाँ देख के आए हैं, और अब हम सितंबर में अगर हुआ तो सितंबर में हम वहाँ जाएंगे।
0: खेल शिक्षा रेफरी और खेल प्रबंधन के क्षेत्र में मंजू नयाल को 22 सालों से भी ज्यादा समय का लंबा अनुभव है। साल 2003 से वो लगातार जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों को तैयार करने और खेल के विकास में जुटी हैं। थ्री स्टार रेफरी बनने के बाद अब मंजू नयाल की नजरें एक नए और बड़े लक्ष्य पर टिकी है। उनका अगला मिशन इसी साल सितंबर में होने जा रहे एशियन गेम्स में रेफरी के तौर पर भारत का प्रतिनिधित्व करना और देश का तिरंगा बुलंद करना है।
1: एक मैसेज जो हाउसवाइफ्स हैं या फिर वो महिलाएं जो रुक गई हैं, जो आपकी तरह दौड़ नहीं रही क्योंकि आप कभी रुकी नहीं, उनके लिए कोई मैसेज आपकी तरफ से?
2: हाँ, मैसेज ये है कि देखो, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। छोटी छोटी उपलब्धियां जो आप हासिल करोगे तो एक दिन अपने मकाम तक पहुंच जाओगे, मगर अगर आप छोटी छोटी चीज़ों को छोड़ते चले जाओगे, नहीं इसने ऐसे बोल दिया, इसने ऐसे कर दिया, फैमिली क्या कहेगी, हमारे रिलेटिव क्या कहेंगे, उसे नहीं सुनना है। आपको आगे बढ़ना है और बढ़ते रहना है। अगर आप एक बार रुक गए तो फिर रुक ही जाओगे।
1: विश यू ऑल द वेरी बेस्ट मैम। हम उम्मीद करते हैं कि आपने जिस तरह से एज अ प्लेयर हम सबका नाम रोशन किया उन दिनों में, अब आप जाकर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर देश का नाम रोशन करेंगी एज अ रेफरी। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, गाजियाबाद।
3: किस तरह के बालों का स्टाइल जीवन में संघर्ष बढ़ा देता है? किस तरह के बालों के स्टाइल वाले लोग लापरवाह होते हैं? और अगर सर पर बाल ना हो या कम हो तो ये किस ग्रह का प्रभाव होता है? आपके बालों का, बालों के स्टाइल का आपके भाग्य से क्या है संबंध, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: बाबा बर्फानी के दर्शन की आई शुभ घड़ी, शिव भक्तों का जोश आए गहन सुरक्षा के बीच, अमरनाथ यात्रा के लिए तैयार पहला जत्था। आर्थिक मोर्चे पर देश के लिए गुड न्यूज, जून में 1,94,000 करोड़ जीएसटी कलेक्शन, पिछले साल से 14% ज्यादा, इंपोर्ट से होने वाली कमाई बढ़ी। पहाड़ों पर मानसून का दिखने लगा असर, रुद्रप्रयाग में लगातार हो रही है बारिश से अलकनंदा नदी का बड़ा जल स्तर, नदी के किनारे बनी भगवान शिव की मूर्ति तक पहुंचा पानी। बद्रीनाथ में भगवान विष्णु के भक्तों ने अब तक के सारे रिकॉर्ड्स किए ध्वस्त, 14,00,000 से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन, हर रोज 15,000 से 20,000 श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। केंद्रीय कैबिनेट की दिल्ली और उत्तर प्रदेश को 14,000 करोड़ से ज्यादा की सड़क परियोजनाओं को मिली मंजूरी, दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेस वे को वसंत कुंज से जोड़ेगी 6 लेन वाली टनल, वहीं कानपुर से करबई के बीच बनेगा एक्सेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड हाईवे।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात अमरनाथ यात्रा की। अब से 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा का श्री गणेश होने जा रहा है। जम्मू कश्मीर में स्थित पवित्र श्री अमरनाथ गुफा से बाबा बर्फानी की पहली पूजा तो 29 जून को ही शुरू हो चुकी है, लेकिन अब आम भक्तों के लिए बाबा बर्फानी के साक्षात दर्शन का पावन अवसर भी आ पहुंचा है। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि यानी 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है। ये यात्रा करीब 2 महीनों तक चलेगी और 28 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन के दिन संपन्न हो जाएगी। हमेशा की तरह इस बार भी पवित्र गुफा में महादेव के दिव्य हिमलिंग का निर्माण हुआ है। श्रद्धालुओं में बाबा बर्फानी के दर्शन की खास उत्सुकता है और माना जा रहा है कि बड़ी तादाद में लोग अमरनाथ गुफा पहुंच सकते हैं, लिहाजा श्रद्धालुओं की सुविधा और सहूलियत के खास इंतजाम किए गए हैं। अब से कुछ ही घंटों में अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था रवाना होने वाला है।

0: बाबा बर्फानी के दर पर लगा भक्तों का मेला। अमरनाथ यात्रा मार्ग पर फिर हो रहा बम बम भोले का जय घोष। शिव भक्तों पर बरसेगी बाबा बर्फानी की कृपा।
1: हमें मन के अंदर इतनी खुशी है कि भोले बाबा मिल गए, एक स्टेप हमने पार कर लिया है और ये एक स्टेप पार कर लिया है, भोले बाबा हमारा आगे का स्टेप भी पार करवाएंगे।
0: आस्था के शिखर पर गूंज रहे बाबा बर्फानी के जयकारे।

0: जमीन से 13,000 फीट की ऊंचाई पर बर्फ से लगदग अमरनाथ गुफा की खूबसूरत वादियाँ फिर से आस्था, भक्ति और विश्वास का पवित्र संगम बनने जा रही हैं। यूं तो इन वादियों का कण कण शिव शक्ति का ही स्वरूप है, लेकिन बाबा बर्फानी के इस दिव्य और दुर्लभ स्वरूप के दर्शन के लिए दूर दूर से भोले के भक्त खींचे चले आते हैं। शिव भक्ति में आकंठ डूबे महादेव की लगन में गाते गुनगुनाते अब की बार भी शिव के मतवालों का मजमा जुट चुका है।
1: ए भोला शंकरा।

0: शंकरा, हे भोळ्या शंकरा, त्रिशूळ डमरू हाती, संगणाचे पार्वती, हो हो।
1: बाबा बर्फानी की प्रथम पूजा हो चुकी है, अब यात्रा का श्री गणेश होना है। बता दें कि इस बार अमरनाथ यात्रा करीब 2 महीने तक चलने वाली है। अमरनाथ यात्रा 2026 की शुरुआत 3 जुलाई से हो रही है और यात्रा का समापन श्रावण पूर्णिमा रक्षाबंधन के दिन यानी 28 अगस्त को होगा। चूंकि अब पहले जत्थे की रवानगी में कुछ ही घंटे बचे हैं, सो देश भर के श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए कश्मीर में जुटने लगे हैं। यात्रियों के लिए श्रीनगर के पंथा चौक में ट्रांजिट कैंप बनाया गया है।
2: अमरनाथ यात्रा को लेकर के 3 जुलाई से जो पहला जत्था सीधे अमरनाथ गुफा तक पहुंचेगा, उसके लिए जम्मू से जो कॉन्वाय यहां पर चलेगा उसके लिए पूरी तैयारियां यहां श्रीनगर में भी की गई हैं। मैं इस वक्त पंथा चौक पर मौजूद हूं और आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लोगों की संख्या यहां भारी संख्या में मौजूद है और लोग जो है ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहां पर जुट रहे हैं। ये सारा ट्रांजिट कैंप बनाया गया है और इस ट्रांजिट कैंप में किस तरीके से लोग यहां भारी संख्या में मौजूद हैं, ये आपको दिखा रहे हैं। दूसरा, तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग इतनी संख्या में आज से ही जुटने लगे हैं। पहला जत्था जो है वो सुबह सुबह 3 जुलाई को बालटाल से रवाना होगा, साथ ही पहलगाम रूट जो है वहां से भी रवाना होगा। अगर इस ट्रांजिट कैंप की बात करें तो यहां पर सिक्योरिटी के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। सीआरपीएफ, आप देख रहे हैं कि यहां सीआरपीएफ के कमांडोज भी मौजूद हैं। इसके साथ साथ यहां पर जो श्रद्धालु हैं उनकी संख्या आप देख करके ये पता चल जाएगा कि किस तरीके से यहां पर लोगों में इस वक्त उत्साह है, क्योंकि लोग यही चाहते हैं कि जो पहली यात्रा है और जो शुरुआत हो रही है 3 तारीख से, उसमें सारे लोग भारी से भारी संख्या में पहुंचे।
1: वैसे तो 15 अप्रैल से ही अमरनाथ यात्रा का रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया गया था, लेकिन ट्रांजिट कैंप में भी रजिस्ट्रेशन काउंटर्स बनाए गए हैं ताकि जो तीर्थयात्री पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो। ट्रांजिट कैंप में करंट यानी तत्काल टोकन और रजिस्ट्रेशन के लिए शिव भक्तों का तांता लगा है। इसी तरह तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए कैंप में EKYC और RFID कार्ड काउंटर भी बनाए गए हैं।
2: कड़ी सुरक्षा के बीच अमरनाथ यात्रा की शुरुआत 3 जुलाई से पहला जत्था पवित्र अमरनाथ गुफा तक पहुंचेगा। मैं इस वक्त पंथा चौक ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूं और यहां पर आपको तस्वीरों में दिखाएंगे कि इस बार सरकार के द्वारा ये व्यवस्था की गई है कि RFID ऑन द स्पॉट भी लोग ले सकते हैं। इसके साथ साथ जिन लोगों ने पहले से रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है उनको भी वह RFID और इसके साथ साथ QR कोड आधारित उनकी जो सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ तमाम जो दस्तावेज हैं वो मिल सकती हैं। यहां पर आप देखिए कि RFID और इसके साथ साथ EKYC डेस्क और रजिस्ट्रेशन काउंटर भी यहां पर तैयार किया गया है। बहुत सारे लोग हैं यहां पर, इनसे बातचीत करते हैं कि RFID जो है इस बार ये व्यवस्था की गई है कि तत्काल जो है लोगों को अगर जरूरत है तो कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन करा के आए, क्या प्रक्रिया है यहां पर?
3: सर, तत्काल में इसमें आप डायरेक्टली आके यहाँ पे भी करवा सकते हैं, अपना जो भी रिपोर्ट्स है वो लेके आ सकते हैं आप, और यहाँ पे आके आपके EKYC हो जाता है और इमीडिएटली आपको RFID मिल जाता है। और जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन भी करवा रखा है, जैसे हमने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करवा रखा था, तो इमीडिएटली यहाँ आए हम, विद इन 1 मिनट में हमको RFID मिल गया था हमारा देख के KYC।
4: सिक्योरिटीज वाइज भी बहुत अच्छी व्यवस्था है। जो हम निकले थे हमारे जर्नलिस्ट से तो कह रहे थे कि आपको सारी चीजों का ध्यान रखें, पर बहुत अच्छा वो व्यवस्था है और इजीली, कोई कह रहा था कि RFID कार्ड में 2 घंटे 3 घंटे लग सकता है, हमें मैक्सिमम 10-15 मिनट में सारा काम इजीली होके निकल गया। व्यवस्था में कोई भी प्रॉब्लम ऐसा कुछ हमें लगा नहीं जो सुन के आए थे। जिस तरह से
2: RFID यहां पर जिन लोगों को दिया जा रहा है उसकी खास बात यह है कि उसमें एक नंबर दिया जा रहा है, उससे लोगों की ट्रैकिंग भी हो सकती है। अगर उनको किसी भी तरीके से रास्ते में दिक्कत आती है या फिर वो कहीं पर रास्ता भटक जाते हैं तो उसकी भी दिक्कतों को पूरी तरीके से यहां पर देखा जाता है और उसके लिए पूरी व्यवस्था यहां पर की गई है। आप तस्वीरों में देखिए कि ये काउंटर जो बनाया गया है RFID के लिए, यहां पर लोग पहुंच रहे हैं, जिन लोगों को नया RFID बनवाना है या फिर रजिस्ट्रेशन यहीं पर आकर के उनको कराना है तत्काल रजिस्ट्रेशन के लिए, उसके लिए भी व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है वो EKYC डेस्क में जा करके, जो श्रीनगर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इसकी व्यवस्था दी गई है, साथ ही रजिस्ट्रेशन काउंटर भी एक यहां पर तैयार किया गया है। ये आप देखिए कि इस रजिस्ट्रेशन काउंटर के जरिए भी लोग तुरंत ही रजिस्ट्रेशन करवा करके अपनी अमरनाथ यात्रा को कर सकते हैं।
1: सनातन धर्म में अमरनाथ यात्रा का बेहद महत्व है, इसी के चलते हर साल लाखों श्रद्धालु इस पावन यात्रा पर जाते हैं और शायद यही वजह है कि हर साल आतंकियों की बुरी नजर इस यात्रा पर रहती है। लेकिन आतंकी चाहे लाख कोशिश कर ले, लेकिन सुरक्षा बलों की चाक चौबंद तैयारियों के बीच वो अपने मंसूबों में कभी कामयाब नहीं हो पाते। इस बार भी अमरनाथ यात्रा के रूट पर सुरक्षा का बेहद कड़ा बंदोबस्त है। यात्रा के दौरान रूट मार्ग पर CRPF, BSF और जम्मू कश्मीर पुलिस के अलावा ITBP की भी तैनाती की गई है। इसके अलावा पूरे मार्ग पर CCTV कैमरा और ड्रोन के जरिए कड़ी निगरानी भी रखी जाएगी। यानी इस साल यात्रा में न केवल सुविधाएं बेहतर होंगी बल्कि सुरक्षा भी अभूतपूर्व है।
5: जल्दी से जल्दी।

0: मान्यता है कि अमरनाथ गुफा वही पवित्र स्थान है जहां भगवान शिव ने माँ पार्वती को अमरता की रहस्य कथा सुनाई थी। यही वजह है कि बेहद मुश्किल भरा और दुर्गम रास्ता होने के बावजूद श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा पर जाना चाहते हैं। अब की बार भी भक्तों का जोश हाई है तो वहीं प्रशासन ने भी यात्रा को सकुशल संपन्न करवाने की पूरी तैयारी कर रखी है। इस बार अमरनाथ यात्रा के दौरान सुविधाएं बढ़ाई गई हैं और कुछ नए नियम भी लागू किए गए हैं। अगर आप भी इस साल बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जा रहे हैं तो पहले जान लीजिए कि इस बार यात्रा में क्या बदला है और किन नियमों का पालन करना जरूरी है। अगर यात्रा के दौरान सुविधाओं की बात करें तो इस बार बालटाल से पवित्र गुफा तक पूरे रास्ते पर बिजली और लाइट की व्यवस्था की गई है ताकि खराब मौसम या रात के समय भी श्रद्धालुओं को परेशानी ना हो। ट्रैकिंग रूट को भी पहले से बेहतर बनाया गया है जिससे कठिन चढ़ाई कुछ आसान हो सके। यात्रियों की सुविधा के लिए पोनी, पालकी और पोर्टर की प्रीपेड बुकिंग शुरू की गई है, यानी अब तय किराए पर ही ये सेवाएं मिलेंगी। रहने की व्यवस्था भी पहले से बेहतर हुई है। बालटार, नुनवान, श्रीनगर और चंद्रकोट के यात्री निवासों का विस्तार किया गया है। वहीं जम्मू में बने नए सेंटर में करीब 4000 भक्तों को ठहरने की व्यवस्था भी की गई है। अगर कोई श्रद्धालु ज्यादा थक गया है, बीमार है या फिर किसी कारणवश रुकना पड़ रहा है तो यहाँ पर आराम कर सकता है। ये पूरी तरह से निशुल्क होगा। जम्मू के तवी रिवर फ्रंट पर बने नए इंटीग्रेटेड फैसिलिटेशन सेंटर में रजिस्ट्रेशन, मेडिकल जांच, हेल्थ सर्टिफिकेट और दस्तावेजों की जांच जैसी सभी जरूरी प्रक्रियाएं एक ही जगह पर पूरी की जा रही है। एक तरफ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं बढ़ाई गई हैं, तो वहीं सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। दरअसल पूरा सावन चलने वाली अमरनाथ यात्रा में यूं तो कई चुनौतियां होती हैं, लेकिन इनमें सबसे बड़ी चुनौती होती है यात्रियों की सुरक्षा, क्योंकि हर बार अमरनाथ यात्रा पर आतंकियों की बुरी नजर रहती है। लेकिन बाबा बर्फानी के प्रति लोगों की ऐसी आस्था है कि तमाम खतरों के बावजूद हर साल लाखों की संख्या में भक्त बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में देश की सुरक्षा एजेंसियां उन्हें सुरक्षित घर वापस भेजने की पूरी जिम्मेदारी उठाती हैं। इस बार भी आस्था के इस महाकुंभ में कोई खलल न पड़े, इसके लिए सुरक्षा बल पूरी तरह तैयार है। 670 से ज्यादा अर्धसैनिक बलों की कंपनियां सुरक्षा में तैनात की गई हैं। यात्रा मार्ग से लेकर बेस कैंप और हाईवे तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और भारतीय सेना के जवान दिन रात मोर्चे पर डटे हैं। बालटाल हो या पहलगाम, बाबा बर्फानी के धाम तक जाने वाला हर रास्ता एक अवैध किले में तब्दील कर दिया गया है। बम डिस्पोजर स्क्वाड और डॉग स्क्वाड को विशेष रूप से तैनात किया गया है। ये टीमें लगातार यात्रा मार्गों, टेंट्स और पार्किंग एरिया की तलाशी ले रही हैं।
1: जो स्मेल करते हैं और उसे डिटेक्ट करते हैं, कोई भी अगर सामान में कुछ भी होता है तो यहाँ जैसे आप देख पा रहे हैं कि सीधा पहले व्हीकल्स आती हैं। व्हीकल्स आने के बाद एक तो हमारे पास DSMD होता है और एक दूसरा डॉग होता है। तो डॉग जो है स्मेल करता है और कुछ भी अगर संदिग्ध वस्तु अगर पाई जाती है तो वो तुरंत डिटेक्ट कर लेता है। और साथ में उसी के साथ में हमारे BDDS का जो HSMD होता है वो भी एक टूल होता है, अगर कुछ भी होता है तो वो डिटेक्ट करने में हेल्पफुल रहता है।
0: इसके साथ ही सुरक्षा ग्रिड को मजबूत करने के लिए टेक्नोलॉजी का भी खूब इस्तेमाल हो रहा है। जमीन से लेकर आसमान तक कड़ा पहरा है। घने जंगल और दुर्गम रास्तों की निगरानी ड्रोन के जरिए की जा रही है। आखिरी समय में तमाम सिक्योरिटी इंतजामों का मुआयना करने के लिए फिलहाल जम्मू कश्मीर पुलिस महकमा ग्राउंड जीरो पर नजर आ रहा है। बुधवार सुबह से ही जम्मू कश्मीर पुलिस के तमाम सीनियर ऑफिसर्स अलग अलग यात्रा डिस्ट्रिक्ट्स में सुरक्षा तैयारियों का जायजा लेते नजर आए।
2: आज जम्मू कश्मीर पुलिस के जितने भी सीनियर ऑफिसर्स हैं, जो भी सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट है आज वो उसका मुआयना कर रहे हैं। इसका ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि कोई भी कमी पेशी होती है तो उसको लूपहोल्स को प्लग करना और उसको और रिफाइन करना अपने रिस्पॉन्सेज के लिए। तो इसी लिहाज से ये जो है आज के जो काफ़ी अलग अलग मुख्तलिफ जो यात्रा डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ सीनियर अफसर सारे इंतजाम को फिर से देख रहे हैं ताकि उसकी अच्छे तरीके से सुपरविजन हो सके।
0: यानी चुनौती कोई भी हो, प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। मकसद सिर्फ एक, भोले के भक्तों की ये यात्रा सुरक्षित, सुगम और बिना किसी परेशानी के संपन्न हो। दरअसल शिव भक्तों के लिए अमरनाथ यात्रा एक ऐसी कठिन साधना है जिसे आप शिवत्व को साधने की सबसे कड़ी तपस्या कह सकते हैं, और इस तपस्या को निर्वाध पूरा करवाने के लिए देश की सिक्योरिटी फोर्सेज पूरे

0: ठीक इसी तरह कई लोग चाहकर भी चारधाम यात्रा पर जा नहीं पाते। ऐसे लोगों के लिए वर्चुअल रियलिटी तकनीक की मदद से एक अनोखी सौगात तैयार की गई है। इसका नाम है दुर्लभ दर्शन। ये एक आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म है जिसमें 6D VR तकनीक के जरिए देश के प्रमुख मंदिरों के दर्शन का एक अनूठा अनुभव उपलब्ध करवाया जाता है। यानी दूर होकर भी आपको इस तकनीक के जरिए अपने आराध्य के पास होने का एहसास होगा। अभिनेता आशुतोष राणा को देश के पहले 6D मंदिर दर्शन सेवा तकनीक का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है।
1: आशुतोष राणा और मैं आपको लेकर चल रहा हूं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या।
2: अब दुर्लभ मंदिरों के दर्शन भी सुलभ होंगे।
1: मन में तुलसी की सुगंध लिए हम अपने आराध्य प्रभु श्री राम के धाम की ओर चलते हैं।
2: घर बैठे ही तीर्थों की यात्रा होगी। देर तक निहार सकेंगे
1: दर्शनार्थ उनके विग्रह या मूर्ति के समक्ष उपस्थित होते हैं तो
2: दूर रहकर भी गर्भगृह की पूजा में शामिल हो सकेंगे।
3: इसमें है 50 से ज्यादा तीर्थ यात्रा
2: और ये सब संभव है दुर्लभ दर्शन। दुर्लभ दर्शन एक ऐसा पिटारा जिसमें हर धाम समाया है
1: बल्कि अनुभूत भी कर सकते हैं।
2: भगवान समाये हैं एक खास एहसास के साथ।
1: आपके और परमात्मा के बीच में कोई नहीं, वहां पर घटित होने वाली समस्त क्रियाकलापों में आप सहभागी होंगे। ऐसी अनुभूति हमारी करवाने का मन था कि अगर मान लीजिए पानी गिर रहा है, अगर हमने जल चढ़ाया, जलाभिषेक किया तो पानी के छींटे हमारे ऊपर आते हैं तो वो भी आपको अनुभूत हो। अगर आपने उनको सुगंधिम पुष्टिवर्धनम की बात, अगर हम सुगंध उनको लगा रहे हैं अभिषेक करते समय तो सुगंध भी आपको महसूस होगी। यदि हवा की बात है तो हवा भी आपको महसूस होगी। तो इस तरीके से पूरा इस अनुभव को बिल्कुल एक जो दुर्लभ अनुभव है उसको सुलभ करने के लिए हमने ये किया।
2: लाखों असल में दुर्लभ दर्शन एक आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म जिसमें 6D VR तकनीक के जरिए देश के प्रमुख मंदिरों के दर्शन का एक अनूठा अनुभव उपलब्ध कराया जाता है। इसमें वर्चुअल रियलिटी के साथ साथ जल, वायु, सुगंध और पौराणिक कथाओं के मेल से साक्षात गर्भगृह में होने का एहसास कराया जाता है। यूँ कहिए कि यहाँ आस्था और तकनीक के मेल से एक सुंदर आध्यात्मिक वातावरण का निर्माण किया जाता है। यहाँ एक और भगवान राम और उनकी अयोध्या की कहानी है तो काशी विश्वनाथ का इतिहास भी है और माँ वैष्णो देवी की आरती भी। बस इसे आँखों पर लगाइए और यात्रा पर निकल पड़िए। अभिनेता आशुतोष राणा आपको धर्मस्थलों की कहानी सुनाते भी नजर आएंगे।
1: हमें तो अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए। क्यों होता है ऐसा? वो इसलिए कि जब हम भाव विभोर होकर भगवान के दर्शन।
2: फिलहाल ये सुविधा अयोध्या, काशी समेत देश के 11 प्रसिद्ध मंदिरों में उपलब्ध है, जहां आप सुकून से बैठकर अपने आराध्य देव को करीब से महसूस कर सकेंगे,
1: ध्यान में लीन हो सकते हैं। और यदि किसी कारणवश
2: अभिनेता आशुतोष राणा को देश के पहले 6D मंदिर दर्शन सेवा तकनीक के माध्यम से ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं।
1: 50 से अधिक तीर्थ यात्राएं और अनेक सिद्ध और दिव्य मंदिरों के दैनिक दर्शन कर सकते।
0: तो चलिए इसी के साथ जीएनटी स्पेशल की इस बेहद खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरें जारी हैं, देखते रहिए जीएनटी।
4: You may already think of TuneIn as your go-to audio app, but it's also your go-everywhere audio app. Because TuneIn works on just about every device you already use. Smart speakers? Yep. In your car? Absolutely. Phone or tablet? Yeah, of course. Wherever you are, your audio comes with you. And if you want to go hands-free, just say open TuneIn Live on your Alexa-enabled device and follow the interactive prompts to find the station you're looking for. No tapping, no searching. Just press play with your voice.
5: Good news today is really अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: बात करेंगे अब अल्फा मूवी की जो इस शुक्रवार रिलीज होने जा रही है, लेकिन फिल्म को लेकर चर्चाओं का दौर लगातार जारी है। यहां तक कि फिल्म में आलिया के एक्शन की भी जबरदस्त तारीफ हो रही है, लेकिन अब फिल्म की स्टार कास्ट से जुड़ी एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक 100 करोड़ के मेगा बजट वाली इस फिल्म के लिए सबसे ज्यादा फीस आलिया ने ही ली है।
7: सीता आज लंका खुद जलाने आई।

0: हाय बॉयज, व्हाट्स अप डॉग्स।
1: पलक झपकते ही दुश्मन को धूल चटा देना, हाथों में बंदूक थामे बेखौफ दुश्मनों के बीच घुस जाना।
2: शुरू करो अग्नि परीक्षा।
1: आलिया भट्ट इस शुक्रवार सिल्वर स्क्रीन पर राज करने आ रही है। सामने आए अल्फा के ट्रेलर में आलिया पावर पैक एक्शन करती नजर आएंगी। हर पंच और हथियार चलाने का स्वैग ये बता रहा है कि पर्दे पर एक नए एक्शन स्टार का जन्म होने वाला है।
3: ये क्या है?
4: अल्फा।
3: अल्फा मतलब
4: सीक्रेट प्रोग्राम है इंडिया के नेक्स्ट जनरेशन सोल्जर्स तैयार करने के लिए।
1: आलिया ने 2012 में स्टूडेंट ऑफ द ईयर जैसी ग्लैमरस और बेहद स्टाइलिश फिल्म से डेब्यू किया था, लेकिन अब बड़े पर्दे पर उनका एक अलग अवतार देखने को मिलेगा।
4: तो भी वही है हमारी एकलौती
3: अल्फा।
1: कल तक पर्दे पर अपनी मासूमियत, रोमांस और इमोशन से दर्शकों को रुलाने वाली आलिया अब अपनी रफ्तार और एक्शन से स्क्रीन पर कोहराम मचाने के लिए तैयार है।
4: इसकी माँ का नाम जानकी था, हम इसे सीता बुलावेंगे।
1: एक तरफ अल्फा में आलिया के एक्शन सीक्वेंस की चर्चा है, तो दूसरी तरफ फिल्म की स्टार कास्ट की फी को लेकर भी बाजार में चर्चाओं का दौर है।
2: वो धोखे से राज करता था और झूठ से जीतता था।
1: रिपोर्ट्स की मानी जाए तो 1,000 करोड़ के बजट वाली इस मेगा स्टार फिल्म में आलिया ने सबसे ज्यादा फी चार्ज की है।
0: Hi boys.
1: दावा किया जा रहा है कि स्पाई थ्रिलर फिल्म के लिए आलिया भट्ट ने तकरीबन 25 करोड़ रुपए की भारी भरकम फी चार्ज की है, यानी फिल्म के पूरे बजट का 1/4 हिस्सा सिर्फ और सिर्फ आलिया के नाम रहा, जबकि आलिया की को स्टार शर्वरी ने 3 करोड़ रुपए की फी चार्ज की है। दूसरी तरफ बॉबी देओल फिल्म में विलेन के रोल में नजर आने वाले हैं और उन्हें इसके लिए करीब 6 करोड़ रुपए मिले हैं। वहीं फिल्म में एक अहम भूमिका निभाने वाले अनिल कपूर को भी तकरीबन 6 करोड़ रुपए मिले हैं। बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर फिल्में देने के बाद आलिया आज बॉलीवुड की सबसे भरोसेमंद फीमेल स्टार्स में से एक हो चुकी है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं है कि आलिया की ही कंधों पर इस 100 करोड़ बजट वाली फिल्म का भार है।
5: It really means a lot to me.
4: चौथीसवां फ्लोर, 3418।
5: मैं समझी नहीं बाबा, वहाँ करना क्या है?
4: वही जिसके लिए मैंने तुझे ट्रेनिंग दी है।
1: अब देखना यह है कि 25 करोड़ की फी लेने वाली अल्फा गर्ल आलिया इस शुक्रवार बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ की कमाई कर पाती है।
4: दुनिया में सिर्फ दो तरह के लोग हुए हैं, वुल्फ और शीप। मैं वुल्फ हूँ। तो क्या है?
2: वुल्फ की बेटी वुल्फ ही होती है सर।
1: ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
6: चलिए आपको देवभूमि उत्तराखंड लिए चलते हैं, जहां चमोली जिले में मौजूद फूलों की घाटी इन दिनों गुलजार है मनमोहक खूबसूरत फूलों से। बड़ी बात यह है कि इस बार यहां रिकॉर्ड संख्या में लोग भी पहुंचे हैं इसका दीदार करने के लिए। अब तक 7,294 लोग फूलों की घाटी की सुंदरता का दीदार कर चुके हैं।

0: पहाड़ों के बीच फैली हरियाली, बादलों से बातें करती वादियाँ, और जहाँ तक नजर जाए वहाँ तक रंग बिरंगे फूलों की दुनिया। ये नज़ारा किसी कल्पना का नहीं बल्कि चमोली की विश्व धरोहर फूलों की घाटी का है। हर साल मॉनसून के साथ यहाँ प्रकृति अपनी सबसे खूबसूरत तस्वीर पेश करती है। इस बार भी घाटी ने अपने रंग बिखेरने शुरू किए तो लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है। फूलों की घाटी में 1 जून को पर्यटकों के लिए प्रवेश शुरू हुआ था। अभी सिर्फ 1 महीना ही बीता है लेकिन यहाँ आने वालों की संख्या ने सभी पुराने आंकड़े पीछे छोड़ दिए हैं। अब तक 7,294 लोग घाटी की प्राकृतिक सुंदरता का दीदार कर चुके हैं। इनमें 34 विदेशी पर्यटक भी शामिल हैं। वन विभाग का कहना है कि सीजन की शुरुआत इतनी शानदार पहले बहुत कम देखने को मिली है। अगर पिछले साल से तुलना करें तो अंतर साफ दिखाई देता है। बीते साल इसी महीने में 3,893 पर्यटक पहुँचे थे, यानी इस बार शुरुआती 1 महीने में ही करीब 1.5 गुना अधिक लोग यहां पहुंचे हैं। यही वजह है कि वन विभाग को इस पूरे सीजन में रिकॉर्ड संख्या की उम्मीद दिखाई दे रही है। अभी तो ये केवल शुरुआत है। फूलों की घाटी का असली आकर्षण 15 जुलाई से 15 अगस्त के बीच दिखाई देता है। इसी समय सबसे अधिक प्रजातियों के फूल एक साथ खिलते हैं। चारों ओर रंगों का ऐसा संसार बन जाता है जिसे देखने के लिए देश विदेश से प्रकृति प्रेमी यहां पहुंचते हैं। फूलों की घाटी की सबसे खास बात ये है कि यहाँ केवल 1 तरह के फूल नहीं खिलते। इस पूरी घाटी में करीब 500 प्रजातियों के फूल पाए जाते हैं। हर 15 दिन बाद नई किस्में खिलती हैं और पहले वाले धीरे धीरे विदा हो जाते हैं। यही वजह है कि यहाँ का नज़ारा लगातार बदलता रहता है। यही बदलता रूप इस जगह को दुनिया की सबसे खास प्राकृतिक धरोहर में शामिल करता है। जैसे जैसे जुलाई का ये महीना आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ये पूरी घाटी और अधिक रंगों से भरती जाएगी। आने वाले दिनों में यहाँ प्रकृति का सबसे मनोहरी रूप दिखाई देगा। यही वजह है कि फूलों की घाटी केवल एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि धरती पर सजे उस जीवन कैनवस का नाम है जहाँ हर मौसम नई तस्वीर बनाता है। चमोली से कमल नैन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: Summer hits, blends old school jams with fresh favorites, so you can get the party started. Listen to your summer soundtrack, made for sunshine, vibes, and summer heat. Hear all your favorites and more right here on TuneIn. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Summer Hits and start listening now.
1: Good news today is really अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: बाबा बर्फानी के दर्शन की आई शुभ घड़ी, शिव भक्तों का जोश आए गहन सुरक्षा के बीच अमरनाथ यात्रा के लिए तैयार पहला जत्था। आर्थिक मोर्चे पर देश के लिए गुड न्यूज, जून में 1,94,000 करोड़ जीएसटी कलेक्शन, पिछले साल से 14% ज्यादा, इंपोर्ट से होने वाली कमाई बढ़ी। पहाड़ों पर मॉनसून का दिखने लगा असर, रुद्रप्रयाग में लगातार हो रही है बारिश से अलकनंदा नदी का बड़ा जल स्तर, नदी के किनारे बनी भगवान शिव की मूर्ति तक पहुंचा पानी। बद्रीनाथ में भगवान विष्णु के भक्तों ने अब तक के सारे रिकॉर्ड्स किए ध्वस्त, 14,00,000 से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन, हर रोज 15,000 से 20,000 श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। केंद्रीय कैबिनेट की दिल्ली और उत्तर प्रदेश को 14,000 करोड़ से ज्यादा की सड़क परियोजनाओं को मिली मंजूरी, दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ेगी 6 लेन वाली टनल, वहीं कानपुर से करबई के बीच बनेगा एक्सेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड हाईवे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
4: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा, फैक्ट चेक में आपका स्वागत है। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां, झूठे दावे बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है तो कभी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर पेश किया जाता है। लोग बिना जांचे पर खेले सच मान लेते हैं क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं है। हर किसी के हाथ में कैमरा है, हर घटना हर तस्वीर कुछ ही सेकेंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाती है, लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नहीं बताकर पेश की जाती है, किसी वीडियो को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है ताकि कहानी असलियत से कोसों दूर लगे। लोग बिना जांच समझे उन्हें सच मान लेते हैं, उन्हें लगातार शेयर करते हैं, लेकिन फैक्ट चेक के जरिए हम हर तस्वीर हर वीडियो की पड़ताल करते हैं। हर तस्वीर और हर वीडियो के पीछे की सच्चाई आप तक लेकर आते ताकि आपको सही और सटीक जानकारी मिले। तो फैक्ट चेक में आज जिन दो खबरों की पड़ताल हम करेंगे उसमें सबसे पहले सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो की बात होगी जिसके जरिए दावा यह किया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में गौ रक्षकों को उम्र कैद की सजा सुनाए जाने के विरोध में हुए वकीलों के प्रदर्शन का वीडियो है। सच्चाई क्या है आगे जानिए। हमारी अगली खबर उस वायरल वीडियो से जुड़ी होगी जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि बिल्डिंग ढहने का ये वीडियो वेनेजुएला में आए हालिया भूकंप से संबंधित है। अब इस दावे की सच्चाई क्या है आगे पड़ताल करेंगे। शुरुआत करते फैक्ट चेक की।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ला।
4: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो को शेयर करते हुए कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में गौरक्षकों को उम्र कैद की सजा सुनाए जाने के विरोध में हुए वकीलों के प्रदर्शन का वीडियो है। वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती रिपोर्ट।

0: किसी बड़ी सी इमारत के परिसर में इकट्ठा सैकड़ों वकीलों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर ये कहते हुए शेयर किया जा रहा है कि इन लोगों ने मध्य प्रदेश में गौ रक्षकों को आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने के विरोध में प्रदर्शन किया। दरअसल नर्मदापुर मध्य प्रदेश के सेशन कोर्ट ने 12 जून को 14 गौ रक्षकों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी और इसके बाद से ही देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। इसी संदर्भ में वकीलों वाला वीडियो भी वायरल हो रहा है। एक थ्रेड्स यूजर ने इसे शेयर करते हुए लिखा है, धन्यवाद आपको देश की न्यायपालिका, 5000 वकीलों ने 14 गौ सेवकों को दिया समर्थन, जल्द जमानत होगी। कुछ लोग तो इस वीडियो को शेयर करते हुए यहां तक दावा कर रहे हैं कि गौ रक्षकों के समर्थन में 5000 वकीलों ने प्रदर्शन किया। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में गौ रक्षकों को उम्र कैद की सजा सुनाए जाने के बाद वकीलों के प्रदर्शन का वीडियो है और वीडियो में किसी बड़ी सी इमारत के परिसर में सैकड़ों वकीलों को इकट्ठा देखा भी जा सकता है। साथ ही साथ इस दौरान कुछ वकीलों को वीडियो रिकॉर्ड करते हुए भी देखा गया। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। ऐसे में इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमारा ध्यान वीडियो में नजर आ रही बिल्डिंग पर गया। जब हमने इसे गौर से देखा और फिर इस इमारत के बारे में सर्च किया तो यह जानकारी सामने आई कि बिल्डिंग लखनऊ हाईकोर्ट की है। इसके बाद फैक्ट चेक टीम ने यह जानने की भी कोशिश की कि क्या लखनऊ में वकीलों ने गौ रक्षकों को उम्र कैद सुनाए जाने के को लेकर कोई प्रदर्शन किया है, लेकिन सर्च के दौरान ऐसी कोई प्रमाणिक रिपोर्ट नहीं मिली जिससे वारे दावे की पुष्टि हो सके। क्योंकि अगर वाकई ऐसा हुआ होता तो ये कहीं ना कहीं खबर जरूर बनती, किसी मीडिया आउटलेट्स में भी जरूर यह आती। लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा। हमारा पहला सवाल यही था कि क्या लखनऊ हाईकोर्ट में सैकड़ों वकील जमा हुए तो क्यों हुए। दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा। सच और झूठ क्या है इस रिपोर्ट में जानिए। इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वीडियो की जांच में जुटी। वायरल वीडियो को गौ रक्षकों से जुड़ा प्रदर्शन बताने वाले एक पोस्ट में हमें एक इंस्टाग्राम अकाउंट के हैंडल का वॉटरमार्क दिखा। इस जानकारी की मदद से सर्च करने पर हमें पता चला कि इस हैंडल से वायरल वीडियो 25 मई को शेयर किया गया था। इस पोस्ट में वीडियो की लोकेशन लखनऊ हाईकोर्ट बताई गई थी। सर्च के दौरान ये भी जानकारी सामने आई कि वीडियो लखनऊ हाईकोर्ट गोमती नगर का है और बार काउंसिल ऑफ यूपी के चुनाव से संबंधित है। ये वीडियो मार्च 2026 में बनाया गया। वीडियो में कुछ लोग नंबरों वाली तख्तियां पकड़े नजर आ रहे हैं। ये वो नंबर्स हैं जो प्रत्याशियों को अलॉट किए जाते हैं। लखनऊ हाईकोर्ट में हाल फिलहाल में गौ रक्षकों के मामले को लेकर वकीलों का कोई प्रदर्शन नहीं हुआ। साफ है कि लखनऊ का एक पुराना वीडियो अब मध्य प्रदेश के गौ रक्षकों को मिली सजा के विरोध में हो रहे प्रदर्शन का बताकर शेयर किया जा रहा है। ज्योति द्विवेदी के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा यह कर रहे हैं कि बिल्डिंग ढहने का यह वीडियो है वेनेजुएला में आए हालिया भूकंप का। वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती रिपोर्ट।
2: हाल ही में वेनेजुएला की राजधानी कराकास में कुछ ही सेकंड्स के अंतराल पर दो बड़े भूकंप आए। पहला भूकंप 7.2 तीव्रता का था और दूसरा 7.5 तीव्रता का था। वेनेजुएला प्रशासन के अनुसार इस भूकंप में कई लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 700 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार ये साल 1900 से लेकर अब तक का सबसे भीषण भूकंप है। इन सब के बीच सोशल मीडिया पर बिल्डिंग ढहने का ये वीडियो इस दावे के साथ शेयर किया जा रहा है कि ये वेनेजुएला में आए हालिया भूकंप का दृश्य है। वायरल वीडियो करीब 9 सेकंड्स का है जिसमें एक बहुमंजिला इमारत ताश के पत्तों की तरह ढहती हुई नजर आई। इस दौरान यहां मौजूद लोग भागते हुए भी नजर आ रहे हैं। एक एक्स यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि 126 साल में सबसे खतरनाक भूकंप, वेनेजुएला के भूकंप में कम से कम 10,000 की मौत। यूएसजीएस का चौंकाने वाला दावा। वेनेजुएला के भूकंप में कम से कम 10,000 लोगों की मौत की खबर निकलकर सामने आई है। यूएसजीएस का चौंकाने वाला दावा किया गया है। कराकास एयरपोर्ट भी इस भूकंप से तबाह हो गया है। वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानने बगैर लोग इस वीडियो को धड़ल्ले से शेयर कर रहे हैं।
1: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में एक बहुमंजिला इमारत ताश के पत्तों की तरह ढहती हुई नजर आ रही है। इस दौरान वहां मौजूद लोग भागते हुए दिख रहे हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है और यूजर्स इसे वेनेजुएला में आए हालिया भूकंप का बता रहे हैं। ऐसे में इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो फैक्ट चेक टीम ने वायरल वीडियो की पड़ताल शुरू की। वेनेजुएला में पिछले हफ्ते आए दो भूकंपों ने तबाही का ऐसा मंजर पैदा किया जिसकी कल्पना वाकई डरावनी वाली है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी के सैटेलाइट डेटा पर आधारित एक शुरुआती आंकलन से पता चलता है कि प्राकृतिक आपदा में देश की 58,000 से ज्यादा इमारतें पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो गई, उन्हें भारी नुकसान पहुंचा। सदी के सबसे भीषण भूकंप ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। ऐसे में वायरल हो रहे इस वीडियो की जांच करना जरूरी हो गया था। दावे की सच्चाई जानने के लिए सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो को हमने गौर से देखा और सुना। इस दौरान हमारा ध्यान वीडियो में आ रही कुछ आवाजों पर गया। हमने इसे गौर से सुना। बैकग्राउंड में जो आवाजें आ रही हैं वो स्पेनिश या फिर अंग्रेजी नहीं है, ये कोई और ही भाषा है, क्योंकि अगर वेनेजुएला का ये वीडियो होता तो फिर जाहिर सी बात है वहां स्पेनिश या फिर अंग्रेजी सुनाई देती, लेकिन यहां पर कोई और भाषा सुनने को मिल रही। मतलब ये कि वायरल वीडियो कहीं और का हो सकता है। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई विश्वसनीय रिपोर्ट भी नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके, लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा। पहला सवाल यही कि वायरल हो रहा वीडियो कब का है और कहां का है। हमारा अगला सवाल कि कहीं जानबूझकर किसी पुराने वीडियो को हालिया वेनेजुएला भूकंप से जोड़कर वायरल तो नहीं किया जा रहा, सच और झूठ क्या है इस रिपोर्ट में जानिए।
2: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक की टीम वीडियो की जांच में जुटी। सबसे पहले हमने वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को गौर से देखा, सर्च किया। इस दौरान हमें ये वीडियो एक अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी के यूट्यूब अकाउंट से 6 फरवरी 2023 को अपलोड किया गया मिला। वीडियो के साथ मौजूद कैप्शन के अनुसार तुर्की के सान डियोर्फा प्रांत के हालिलियो जिले में आए 7.8 तीव्रता के भीषण भूकंप के बाद एक इमारत ढह गई थी और इसका दृश्य स्थानीय टीवी के जारी किए गए वीडियो फुटेज में भी दिखाई दिया। इसके अलावा हमें एक आधिकारिक वेबसाइट पर भी 6 फरवरी 2023 को अपलोड किया गया ये वीडियो मिला, जिसमें इसे 2023 में तुर्की में आए भूकंप के दौरान हालिलिये जिले में बिल्डिंग ढहने का बताया गया था। जांच में हमें इसी घटना का दूसरा एंगल से लिया गया वीडियो एक पत्रकार के एक्स अकाउंट से भी 6 फरवरी 2023 को अपलोड किया गया मिला। साथ ही इसी पोस्ट के रिप्लाई सेक्शन में वायरल वीडियो भी मौजूद था। दरअसल 6 फरवरी 2023 को दक्षिणी तुर्की में 9 घंटे के भीतर 7.7 और 7.6 तीव्रता के दो बड़े भूकंप आए, जिसके बाद 20 फरवरी को एक और भयंकर झटका महसूस किया गया था। इस आपदा में कई लोगों की मौत हो गई थी। हमारी जांच में मिले साक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि वेनेजुएला में आए हालिया भूकंप का बताकर वायरल हो रहा ये वीडियो असल में 3 साल पहले तुर्की में आए भूकंप का है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: फैक्ट चेक में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के उस पर आपको ले चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे तमाम ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
4: You're listening Uninterrupted. With TuneIn Premium, enjoy commercial-free news and music, plus ad-free ESPN Radio, and fewer ads across other stations. Whether you're listening for the latest news or the next big game, never miss a beat. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices, at home, in the car, or on the go. So you can hear more. Ready to upgrade your listening? Upgrade to TuneIn Premium now.
5: Sachi Khabar.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़
1: है। फैक्ट चेक के आखिरी सफर का, जहां आपको दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हैं।
2: सोशल मीडिया पर एक बहुत क्यूट और दिल छू लेने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें ट्रेन में टिकट चेकिंग के दौरान एक टीटीई और नन्ही बच्ची के बीच मजेदार बातचीत देखने को मिल रही है।
6: टिकट किधर है? टिकट नहीं है। पैसा दीजिए, पर्ची लिखना, पैसा दो।
2: वीडियो में टीटीई जब बच्ची से टिकट मांगता है तो वो अपने मासूम अंदाज में टिकट दिखाने से साफ मना कर देती है।
6: टिकट नहीं है ना? हाँ, पैसा है। पूछो पापा माँ को, पूछो पैसा, पूछो पैसा, पूछो।
2: इसके बाद टीटी मजाक में पैसे मांगता है, जिस पर बच्ची के बेबाक और प्यारे जवाब सुनकर आसपास बैठे यात्री भी मुस्कुराने लगते हैं। बच्ची की मासूमियत, आत्मविश्वास और चुलबुले अंदाज ने लाखों लोगों का दिल जीत दिया है।
6: आपको पापा का नाम क्या? मम्मा का नाम? आपका नाम?
2: यूजर्स इस नाम नहीं को बार बार देख रहे हैं और कमेंट्स में बच्ची की खूब तारीफ भी कर रहे हैं।
6: टिकट नहीं है। पैसा दीजिए, पर्ची लिखना, पैसा दे। हाँ पैसा है, वो पर्ची लिखता हूँ मैंने। टिकट नहीं है ना? हाँ पैसा है। पूछो पापा माँ को, पूछो पैसा, पूछो पैसा, पूछो पर्ची लिखने के लिए।
7: पैसे देने?
6: टिकट नहीं है इनको।
7: टिकट नहीं है?
6: टिकट नहीं है। ₹10 दीजिए।
2: भाई बहन के प्यार से जुड़ा ये प्यारा सा वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रहा है। वीडियो में एक छोटी बच्ची अपने भाई के साथ हल्की फुल्की नोकझोंक करती हुई नजर आ रही है, लेकिन कुछ ही क्षण बाद वो अचानक उसकी ओर दौड़ती है और उसे प्यार से गले लगा लेती है। नन्ही बच्ची के इस मासूम और स्नेह भरे हाव भाव ने पल भर में माहौल को बदल दिया और दोनों के बीच का प्यार साफ झलकने लगा। ये भावुक दृश्य इंटरनेट पर लोगों को खूब पसंद आ रहा है और कई यूजर्स इसे भाई बहन के अटूट रिश्ते की खूबसूरत मिसाल भी बता रहे हैं। वीडियो को देखने के बाद लोग बच्ची की भावनात्मक समझ और उसके मासूम दिल की जमकर सराहना कर रहे हैं। कई लोगों का मानना है कि प्यार और अपनापन छोटी मोटी नाराजगी को भी आसानी से दूर कर सकते हैं। वीडियो इतना क्यूट है कि लोग इसे एक बार नहीं बल्कि बार बार देख रहे हैं। यही वजह है कि ये क्लिप सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है और यूजर्स इसके दीवाने बने हुए हैं। वीडियो में एक बहुत प्यारी और छोटी सी बच्ची दिखाई दे रही है, वो बड़े ही आत्मविश्वास के साथ टैं टैं टू टू टी टी गा रही है।

0: उसकी तोतली आवाज और उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस इतने ज्यादा मजेदार हैं कि कोई भी शख्स अपना तनाव भूल सकता है। बच्ची जिस तरह से अपनी आंखों को घुमाकर और चेहरे पर अलग अलग भाव लाकर गा रही है, ये इसके क्यूट एक्सप्रेशंस ही हैं जो इस वीडियो को इतना खास बना रहे हैं। जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स खासकर इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अपलोड हुआ, लोगों ने इसे हाथों हाथ लिया। वीडियो पर लाखों की संख्या में व्यूज और लाइक्स आ चुके हैं। लोग कमेंट्स में बच्ची की मासूमियत की खूब तारीफ कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक बच्चे और पुलिस डॉग की ये प्यारी मुलाकात लोगों का दिल जीत रही है। वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक मासूम बच्चा पुलिस K9 डॉग के पास पहुंचा तो किसी ने नहीं सोचा था कि इतना प्यारा पल देखने को मिल जाएगा। बच्चे की मासूम मुस्कान और कुत्ते की दोस्ताना प्रतिक्रिया ने वहां मौजूद सभी लोगों का दिल जीत लिया। ये वीडियो हमें याद दिलाता है कि प्यार, भरोसा और दोस्ती की कोई भाषा नहीं होती। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो छाया हुआ है जिसे देखकर लोग हैरान भी हैं और थोड़े डरे हुए भी हैं। दरअसल जिस खतरनाक जीप को देखकर बड़े बड़ों के पसीने छूट जाते हैं, एक छोटा सा बच्चा उसके साथ बड़े आराम से डॉक्टर खेलता हुआ नजर आ रहा है। ये जीप कोई पालतू कुत्ता या बिल्ली नहीं बल्कि मगरमच्छ है। बच्चे की इस निडरता को देखते हुए नेटिजंस दांतों तले उंगलियां दबा रहे हैं। ये हैरान कर देने वाला वीडियो कोलंबिया का बताया जा रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक छोटा सा बच्चा जमीन पर बैठे मगरमच्छ के पास बिल्कुल बेखौफ होकर बैठा है। बच्चा खुद को डॉक्टर समझकर उस जंगली जीव का इलाज करने का नाटक कर रहा है। वो कभी उसके शरीर को सहलाता है तो कभी उससे इंसानों की तरह बातें करने लग जाता है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि वो खतरनाक जीव भी पूरी तरह शांत लेटा हुआ है। उसने बच्चे को नुकसान पहुंचाने की एक भी कोशिश नहीं की, मानो वो सचमुच अपना इलाज करवा रहा हो। एक छात्र एग्जाम टाइम में मोबाइल से चीटिंग करते हुए पकड़ा जाता है। इसके बाद वो जो करता है उससे पूरे क्लासरूम में मौजूद बाकी छात्रों की भी पोल खुल जाती है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एग्जाम चल रहा होता है, इसी दौरान एक स्टूडेंट मोबाइल में चीटिंग करते हुए पकड़ा जाता है। टीचर उसका मोबाइल अपने कब्जे में ले लेती है और उसे क्लासरूम से बाहर जाने के लिए कहती है। जैसे ही टीचर छात्र को लेकर क्लास से बाहर निकलने लगती है, तभी छात्र अचानक क्लासरूम की सभी लाइटें बंद कर देता है। कमरे में अंधेरा हो जाता है। एक ऐसा नजारा दिखाई देता है जिसने सभी को चौंका दिया। अंधेरे में कई छात्रों के मोबाइल फोन की स्क्रीन चमकने लगती है, जिसे पता चल जाता है कि क्लास में मौजूद कई दूसरे छात्र भी मोबाइल की मदद से नकल कर रहे थे। इसकी वजह से पूरे क्लासरूम में चीटिंग कर रहे बाकी छात्रों की भी पोल खुल जाती है और यही वीडियो भी खत्म हो जाता है। पहाड़ों में घूमने के दौरान एक भारतीय शख्स ने अपनी चलती कार से प्लास्टिक की खाली बोतल को फेंक दिया। कार के पीछे बाइक पर चल रहे एक विदेशी पर्यटक को देश की इस खूबसूरत प्रकृति का ऐसा अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने तुरंत वो बोतल उठाई और कार सवार के पास जाकर बोतल वापस उसकी कार के अंदर फेंकते हुए उसे जमकर फटकार लगाई। वीडियो में साफ दिख रहा है कि विदेशी पर्यटक पहाड़ों की खूबसूरत इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचता देख बहुत गुस्से में था। उसने ठान लिया था वो इस लापरवाही को बिना टोके नहीं जाने देगा। इस वीडियो को यूजर्स बार बार देख रहे हैं, युवक के सिविक सेंस पर सवाल उठा रहे हैं। आमतौर पर जब कोई जानवर बाघ को सामने से देखता है तो वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसने लोगों को हैरान कर दिया। इस वीडियो में एक साधारण गाय बाघ के सामने डटकर खड़ी हो जाती है। इतना ही नहीं, गाय का हौसला देखकर खुद टाइगर को पीछे हटना पड़ता है। वीडियो देखने के बाद लोग यही कह रहे हैं कि शायद ऐसा नजारा पहले कभी देखने को नहीं मिला होगा। इंटरनेट पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग गाय की बहादुरी की जमकर तारीफ कर रहे हैं।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
2: Hot Mics now streaming on TuneIn, your go-to show for explosive sports showdowns, bare-knuckle politics, raw Hollywood gossip, tech power plays, and pop culture chaos. Hosted by yours truly, Billy Bush. Want to catch the latest episodes on your connected device? It's easy. One, set a reminder with your smart speaker by saying, remind me to listen to Hot Mics, Monday through Thursday at 12 p.m. Eastern, 9 a.m. Pacific. Two, when it's time, just say, play Hot Mics on TuneIn. And you're in.
3: for unfiltered takes, A-list guests, and the stories everyone else is too scared to touch.
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
0: भारत की बेटियां अब सिर्फ खेल के मैदान में ही नहीं बल्कि खेलों के संचालन और फैसलों की सबसे बड़ी जिम्मेदारियों में भी नया इतिहास लिख रही हैं। उत्तर प्रदेश की मंजू नयाल ने कुछ ऐसा ही मुकाम हासिल किया है। मंजू नयाल ने वो उपलब्धि हासिल की है जिसे अब तक देश की कोई महिला हासिल नहीं कर पाई थी। वो भारत की पहली 3-स्टार इंटरनेशनल महिला कुरैश रेफरी बन गई हैं और इसी के साथ उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय खेल जगत में देश का नाम रोशन किया है।

0: भारत की बेटियां अब सिर्फ मेडल जीतकर ही नहीं बल्कि खेलों के सबसे अहम फैसले लेने वाली कुर्सी तक पहुंचकर भी इतिहास रच रही हैं। उत्तर प्रदेश के मंजू नयाल ने ऐसी उपलब्धि हासिल की है जो आज तक देश की कोई महिला हासिल नहीं कर सकी। मंजू नयाल भारत की पहली 3-स्टार इंटरनेशनल महिला कुराश रेफरी बन गई है। ये सिर्फ उनकी व्यक्तिगत सफलता नहीं बल्कि भारतीय खेल जगत के लिए भी गर्व का पल है।
1: मैम, देश की पहली 3-स्टार रेफरी कुराश गेम में, सुनकर कैसा लग रहा है? देश की पहली महिला रेफरी।
2: सर, बहुत अच्छा लग रहा है, प्राउड मोमेंट हो रही है कि देश की पहली महिला रेफरी बनी हूँ, तो काफ़ी लोगों की विशेज भी आ रही हैं और मतलब सपोर्ट भी मिला काफ़ी, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है पहली 3-स्टार रेफरी बन के कुराश की।
0: कामयाबी का यह शिखर रातों रात नहीं मिला। मंजू नयाल का यह सफर उनकी लगातार कोशिशों का नतीजा है। साल 2023 में नयाल 1-स्टार इंटरनेशनल कुराश रेफरी बनी। इसके बाद साल 2025 में उन्होंने 2-स्टार इंटरनेशनल रेफरी का दर्जा हासिल किया और अब इसी जून महीने में उज्बेकिस्तान में आयोजित बेहद कठिन अंतर्राष्ट्रीय रेफरी परीक्षा को पास करके मंजू ने 3-स्टार का वो मुकाम हासिल किया जहां आज तक कोई भारतीय महिला नहीं पहुंच सकी थी।
2: पहले स्टेट रेफरी का एग्जाम दिया कुराश के अंदर, फिर नेशनल रेफरी का, फिर अब इंटरनेशनल रेफरी में, तो फिर वही, फिर 1-स्टार, 2-स्टार, अब मैं 3-स्टार हो गई हूँ। तो ये बिग अचीवमेंट्स हैं इंडिया के अंदर। मैं अभी तक 3-स्टार रेफरी कोई वुमेन नहीं थी, 1st रेफरी मैं बनी हूँ इस बार, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है इस चीज के लिए।
0: आपको बता दें कि कुराश मध्य एशिया से जुड़ी एक प्राचीन और बेहद लोकप्रिय कुश्ती शैली है। कुराश आज दुनिया भर में लोकप्रिय हो चुका है। इसकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये 130 से अधिक देशों में खेला जाता है। कुराश की शुरुआत 3500 साल पहले उज्बेकिस्तान में हुई थी। इस खेल में दो खिलाड़ी एक दूसरे को पकड़कर पीठ के बल जमीन पर गिराने की कोशिश करते हैं। इसे 2018 के एशियाई खेलों में भी शामिल किया गया था जहां भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पदक जीते थे। मंजू नयाल ने अपने खेल करियर की शुरुआत जूडो से की थी लेकिन वक्त के साथ कुराश के प्रति उनकी दिलचस्पी बढ़ती गई और फिर उन्होंने खुद को पूरी तरह इसी खेल के लिए समर्पित कर दिया।
2: वैसे मैं जूडो में भी नेशनल रेफरी हूँ थी, तो वहाँ पर हमारे सर थे रवि कपूर सर, जो दिल्ली के जनरल सेक्रेटरी थे, तब उन्होंने स्विच करा कुराश के अंदर, तो अब उनका साथ था, उन्हें जानते थे दिल्ली के अंदर, बाकी को नहीं इतना हमारा वो था, जब उन्होंने स्विच करा तो उनके साथ साथ हमने कुराश में भी स्विच कर लिया था उन्हीं के उससे।
0: मंजू नयाल फिलहाल गाजियाबाद में गुरुकुल द स्कूल की शारीरिक शिक्षा विभाग की कोऑर्डिनेटर है और कई बड़े अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में रेफरी की भूमिका निभा चुकी है।
2: अभी तक मैं नोमैड्स गेम कजाकिस्तान में मैंने 2024 में एज ए रेफरी की भूमिका निभाई, फिर चिल्ड्रन एशियन गेम में युकोत्सव रशिया में 2024 में मैं ऑफिशिएटिंग करी वहाँ पर, 3rd एशियन यूथ बहरीन में भी मैं एज ए ऑफिशियल गई, उसके बाद अभी हमारा करंट जापान में ट्रायल इवेंट हुए थे उसके अंदर भी मैंने एज ए ऑफिशियल की भूमिका निभाई।
1: इस गेम का रेफरी होना है, किसी भी गेम का रेफरी होना, आपके हिसाब से कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, खासकर तब जब आप एक इंटरनेशनल स्टेज पर अपने देश को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं?
2: बहुत प्रेशर होता है, सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है, क्योंकि अगर आप दो कंट्री की बाउट करा रहे हो, उन दो कंट्रियों के बीच में उन दो कंट्रियों का रेफरी नहीं होता, तीसरी कंट्री का रेफरी होता है, तो वहाँ पे जजमेंट देना बहुत वो रहता है, बड़े दिमाग से देखना पड़ता है, एक एक जेस्चर देखना पड़ता है, कैसी लैंडिंग हुई है, किस पे हुई है, प्लेयर किस एरिया में जा रहा है, ये सारी चीज़ें हमें बहुत ध्यान से देखनी पड़ती है।
0: मंजू नयाल का लक्ष्य अब इसी साल सितंबर में होने जा रहे एशियन गेम्स में रेफरी के तौर पर भारत का प्रतिनिधित्व करने का है।
2: एशियन गेम्स जो अब सितंबर में होने वाले हैं 22 से, उसमें अभी हम दिल्ली इंडिया से गए थे और वहाँ ट्रायल इवेंट्स देखने गए थे कि क्या क्या कमियाँ हैं, क्या क्या होना वाला है, तो उसका एक रन थ्रू था वहाँ पर, तो वहाँ पे मैं एज ए इंडिया से रिप्रेजेंट करा था मैंने वहाँ पर, और काफ़ी चीज़ें वहाँ मुझे सीखने को भी मिली, बहुत सारी चीज़ें देखी, क्या कमियाँ थी, क्या है, ये सारी चीज़ें हम वहाँ देख के आए हैं, और अब हम सितंबर में अगर हुआ तो सितंबर में हम वहाँ जाएंगे।
0: खेल शिक्षा रेफरी और खेल प्रबंधन के क्षेत्र में मंजू नयाल को 22 सालों से भी ज्यादा समय का लंबा अनुभव है। साल 2003 से वो लगातार जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों को तैयार करने और खेल के विकास में जुटी हैं। थ्री स्टार रेफरी बनने के बाद अब मंजू नयाल की नजरें एक नए और बड़े लक्ष्य पर टिकी है। उनका अगला मिशन इसी साल सितंबर में होने जा रहे एशियन गेम्स में रेफरी के तौर पर भारत का प्रतिनिधित्व करना और देश का तिरंगा बुलंद करना है। रेफरी के तौर पर भारत का प्रतिनिधित्व करना और देश का तिरंगा बुलंद करना है।
1: दौड़ नहीं रही क्योंकि आप कभी रुकी नहीं, उनके लिए कोई मैसेज आपकी तरफ से?
2: हाँ, मैसेज ये है कि देखो, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, छोटी छोटी उपलब्धियां जो आप हासिल करोगे तो एक दिन अपने मकाम तक पहुंच जाओगे। मगर अगर आप छोटी छोटी चीजों को छोड़ते चले जाओगे, नहीं इसने ऐसे बोल दिया, इसने ऐसे कर दिया, फैमिली क्या कहेगी, हमारे रिलेटिव क्या कहेंगे, उसे नहीं सुनना है, आपको आगे बढ़ना है और बढ़ते रहना है। अगर आप एक बार रुक गए तो फिर रुक ही जाओगे।
1: विश यू ऑल द वेरी बेस्ट मैम। हम उम्मीद करते हैं कि आपने जिस तरह से एज अ प्लेयर हम सबका नाम रोशन किया उन दिनों में, अब आप जाकर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर देश का नाम रोशन करेंगी एज अ रेफरी। कैमरामैन शैलेन के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, गाजियाबाद।
3: किस तरह के बालों का स्टाइल जीवन में संघर्ष बढ़ा देता है? किस तरह के बालों के स्टाइल वाले लोग लापरवाह होते हैं? और अगर सर पर बाल ना हो या कम हो तो ये किस ग्रह का प्रभाव होता है? आपके बालों का, बालों के स्टाइल का आपके भाग्य से क्या है संबंध, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: बाबा बर्फानी के दर्शन की आई शुभ घड़ी, शिव भक्तों का जोश आए गहन सुरक्षा के बीच, अमरनाथ यात्रा के लिए तैयार पहला जत्था। आर्थिक मोर्चे पर देश के लिए गुड न्यूज, जून में 1,94,000 करोड़ जीएसटी कलेक्शन, पिछले साल से 14% ज्यादा, इंपोर्ट से होने वाली कमाई बढ़ी। पहाड़ों पर मानसून का दिखने लगा असर, रुद्रप्रयाग में लगातार हो रही है बारिश से अलकनंदा नदी का बड़ा जलस्तर, नदी के किनारे बनी भगवान शिव की मूर्ति तक पहुंचा पानी। बद्रीनाथ में भगवान विष्णु के भक्तों ने अब तक के सारे रिकॉर्ड्स किए ध्वस्त, 14,00,000 से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन, हर रोज 15,000 से 20,000 श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। केंद्रीय कैबिनेट की दिल्ली और उत्तर प्रदेश को 14,000 करोड़ से ज्यादा की सड़क परियोजनाओं को मिली मंजूरी, दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेस वे को वसंत कुंज से जोड़ेगी 6 लेन वाली टनल, वहीं कानपुर से करबई के बीच बनेगा एक्सेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड हाईवे।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात अमरनाथ यात्रा की। अब से 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा का श्री गणेश होने जा रहा है। जम्मू कश्मीर में स्थित पवित्र श्री अमरनाथ गुफा से बाबा बर्फानी की पहली पूजा तो 29 जून को ही शुरू हो चुकी है, लेकिन अब आम भक्तों के लिए बाबा बर्फानी के साक्षात दर्शन का पावन अवसर भी आ पहुंचा है। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि यानी 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है। ये यात्रा करीब 2 महीनों तक चलेगी और 28 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन के दिन संपन्न हो जाएगी। हमेशा की तरह इस बार भी पवित्र गुफा में महादेव के दिव्य हिमलिंग का निर्माण हुआ है। श्रद्धालुओं में बाबा बर्फानी के दर्शन की खास उत्सुकता है और माना जा रहा है कि बड़ी तादाद में लोग अमरनाथ गुफा पहुंच सकते हैं, लिहाजा श्रद्धालुओं की सुविधा और सहूलियत के खास इंतजाम किए गए हैं। अब से कुछ ही घंटों में अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था रवाना होने वाला है।

0: बाबा बर्फानी के दर पर लगा भक्तों का मेला। अमरनाथ यात्रा मार्ग पर फिर हो रहा बम बम भोले का जय घोष। शिव भक्तों पर बरसे की बाबा बर्फानी की कृपा।
1: हमें मन के अंदर इतनी खुशी है कि भोले बाबा मिल गए हो। एक स्टेप हमने पार कर लिया है और ये एक स्टेप पार कर किया है, भोले बाबा हमारा आगे का स्टेप भी पार करवाएंगे।
0: आस्था के शिखर पर गूंज रहे बाबा बर्फानी के जयकारे।

0: जमीन से 13,000 फीट की ऊंचाई पर बर्फ से लगदग अमरनाथ गुफा की खूबसूरत वादियाँ फिर से आस्था, भक्ति और विश्वास का पवित्र संगम बनने जा रही हैं। यूं तो इन वादियों का कण कण शिव शक्ति का ही स्वरूप है, लेकिन बाबा बर्फानी के इस दिव्य और दुर्लभ स्वरूप के दर्शन के लिए दूर दूर से भोले के भक्त खींचे चले आते हैं। शिव भक्ति में आकंठ डूबे महादेव की लगन में गाते गुनगुनाते अब की बार भी शिव के मतवालों का मजमा जुट चुका है।
1: ए भोला शंकरा।

0: शंकरा, हे भोळ्या शंकरा, त्रिशूळ डमरू हाती, संगणाचे पार्वती, हो हो।
1: बाबा बर्फानी की प्रथम पूजा हो चुकी है, अब यात्रा का श्री गणेश होना है। बता दें कि इस बार अमरनाथ यात्रा करीब 2 महीने तक चलने वाली है। अमरनाथ यात्रा 2026 की शुरुआत 3 जुलाई से हो रही है और यात्रा का समापन श्रावण पूर्णिमा रक्षाबंधन के दिन यानी 28 अगस्त को होगा। चूंकि अब पहले जत्थे की रवानगी में कुछ ही घंटे बचे हैं, सो देश भर के श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए कश्मीर में जुटने लगे हैं। यात्रियों के लिए श्रीनगर के पंथा चौक में ट्रांजिट कैंप बनाया गया है।
2: अमरनाथ यात्रा को लेकर के 3 जुलाई से जो पहला जत्था सीधे अमरनाथ गुफा तक पहुंचेगा, उसके लिए जम्मू से जो कॉन्वाय यहां पर चलेगा उसके लिए पूरी तैयारियां यहां श्रीनगर में भी की गई हैं। मैं इस वक्त पंथा चौक पर मौजूद हूं और आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लोगों की संख्या यहां भारी संख्या में मौजूद है और लोग जो है ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहां पर जुट रहे हैं। ये सारा ट्रांजिट कैंप बनाया गया है और इस ट्रांजिट कैंप में किस तरीके से लोग यहां भारी संख्या में मौजूद हैं, ये आपको दिखा रहे हैं। दूसरा, तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग इतनी संख्या में आज से ही जुटने लगे हैं। पहला जत्था जो है वो सुबह सुबह 3 जुलाई को बालटाल से रवाना होगा, साथ ही पहलगाम रूट जो है वहां से भी रवाना होगा। अगर इस ट्रांजिट कैंप की बात करें तो यहां पर सिक्योरिटी के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। सीआरपीएफ, आप देख रहे हैं कि यहां सीआरपीएफ के कमांडोज भी मौजूद हैं। इसके साथ साथ यहां पर जो श्रद्धालु हैं उनकी संख्या आप देख करके ये पता चल जाएगा कि किस तरीके से यहां पर लोगों में इस वक्त उत्साह है, क्योंकि लोग यही चाहते हैं कि जो पहली यात्रा है और जो शुरुआत हो रही है 3 तारीख से, उसमें सारे लोग भारी से भारी संख्या में पहुंचे।
1: वैसे तो 15 अप्रैल से ही अमरनाथ यात्रा का रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया गया था, लेकिन ट्रांजिट कैंप में भी रजिस्ट्रेशन काउंटर्स बनाए गए हैं ताकि जो तीर्थयात्री पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो। ट्रांजिट कैंप में करंट यानी तत्काल टोकन और रजिस्ट्रेशन के लिए शिव भक्तों का तांता लगा है। इसी तरह तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए कैंप में EKYC और RFID कार्ड काउंटर भी बनाए गए हैं।
2: कड़ी सुरक्षा के बीच अमरनाथ यात्रा की शुरुआत 3 जुलाई से पहला जत्था पवित्र अमरनाथ गुफा तक पहुंचेगा। मैं इस वक्त पंथा चौक ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूं और यहां पर आपको तस्वीरों में दिखाएंगे कि इस बार सरकार के द्वारा ये व्यवस्था की गई है कि RFID ऑन द स्पॉट भी लोग ले सकते हैं। इसके साथ साथ जिन लोगों ने पहले से रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है उनको भी वह RFID और इसके साथ साथ QR कोड आधारित उनकी जो सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ तमाम जो दस्तावेज हैं वो मिल सकती हैं। यहां पर आप देखिए कि RFID और इसके साथ साथ EKYC डेस्क और रजिस्ट्रेशन काउंटर भी यहां पर तैयार किया गया है। बहुत सारे लोग हैं यहां पर, इनसे बातचीत करते हैं कि RFID जो है इस बार ये व्यवस्था की गई है कि तत्काल जो है लोगों को अगर जरूरत है तो कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन करा के आए, क्या प्रक्रिया है यहां पर?
3: सर, तत्काल में इसमें आप डायरेक्टली आके यहाँ पे भी करवा सकते हैं, अपना जो भी रिपोर्ट्स है वो लेके आ सकते हैं आप, और यहाँ पे आके आपके EKYC हो जाता है और इमीडिएटली आपको RFID मिल जाता है। और जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन भी करवा रखा है, जैसे हमने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करवा रखा था, तो इमीडिएटली यहाँ आए हम, विद इन 1 मिनट में हमको RFID मिल गया था हमारा देख के KYC।
4: सिक्योरिटीज वाइज भी बहुत अच्छी व्यवस्था है। जो हम निकले थे हमारे जर्नलिस्ट से तो कह रहे थे कि आपको सारी चीजों का ध्यान रखें, पर बहुत अच्छा वो व्यवस्था है और इजीली, कोई कह रहा था कि RFID कार्ड में 2 घंटे 3 घंटे लग सकता, हमें मैक्सिमम 10 से 15 मिनट में सारा काम इजीली होके निकल गया। व्यवस्था में कोई भी प्रॉब्लम ऐसा कुछ हमें लगा नहीं जो सुन के आए थे। जिस तरह से
2: RFID यहां पर जिन लोगों को दिया जा रहा है उसकी खास बात यह है उसमें एक नंबर दिया जा रहा है, उससे लोगों की ट्रैकिंग भी हो सकती है। अगर उनको किसी भी तरीके से रास्ते में दिक्कत आती है या फिर वो कहीं पर रास्ता भटक जाते हैं तो उसकी भी दिक्कतों को पूरी तरीके से यहां पर देखा जाता है और उसके लिए पूरी व्यवस्था यहां पर की गई है। आप तस्वीरों में देखिए कि ये काउंटर जो बनाया गया है RFID के लिए, यहां पर लोग पहुंच रहे हैं। जिन लोगों को नया RFID बनवाना है या फिर रजिस्ट्रेशन यहीं पर आकर के उनको कराना है तत्काल रजिस्ट्रेशन के लिए, उसके लिए भी व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है वो EKYC डेस्क में जाकर के, जो श्रीनगर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इसकी व्यवस्था दी गई है, साथ ही रजिस्ट्रेशन काउंटर भी एक यहां पर तैयार किया गया है। ये आप देखिए कि इस रजिस्ट्रेशन काउंटर के जरिए भी लोग तुरंत ही रजिस्ट्रेशन करवा करके अपनी अमरनाथ यात्रा को कर सकते हैं।
1: सनातन धर्म में अमरनाथ यात्रा का बेहद महत्व है, इसी के चलते हर साल लाखों श्रद्धालु इस पावन यात्रा पर जाते हैं और शायद यही वजह है कि हर साल आतंकियों की बुरी नजर इस यात्रा पर रहती है। लेकिन आतंकी चाहे लाख कोशिश कर ले, लेकिन सुरक्षा बलों की चाक चौबंद तैयारियों के बीच वो अपने मंसूबों में कभी कामयाब नहीं हो पाते। इस बार भी अमरनाथ यात्रा के रूट पर सुरक्षा का बेहद कड़ा बंदोबस्त है। यात्रा के दौरान रूट मार्ग पर CRPF, BSF और जम्मू कश्मीर पुलिस के अलावा ITBP की भी तैनाती की गई है। इसके अलावा पूरे मार्ग पर CCTV कैमरा और ड्रोन के जरिए कड़ी निगरानी भी रखी जाएगी। यानी इस साल यात्रा में न केवल सुविधाएं बेहतर होंगी बल्कि सुरक्षा भी अभूतपूर्व है। जल्दी से, जल्दी।

0: मान्यता है कि अमरनाथ गुफा वही पवित्र स्थान है जहां भगवान शिव ने माँ पार्वती को अमरता की रहस्य कथा सुनाई थी। यही वजह है कि बेहद मुश्किल भरा और दुर्गम रास्ता होने के बावजूद श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा पर जाना चाहते हैं। अब की बार भी भक्तों का जोश हाई है तो वहीं प्रशासन ने भी यात्रा को सकुशल संपन्न करवाने की पूरी तैयारी कर रखी है। इस बार अमरनाथ यात्रा के दौरान सुविधाएं बढ़ाई गई हैं और कुछ नए नियम भी लागू किए गए हैं। अगर आप भी इस साल बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जा रहे हैं तो पहले जान लीजिए कि इस बार यात्रा में क्या बदला है और किन नियमों का पालन करना जरूरी है। अगर यात्रा के दौरान सुविधाओं की बात करें तो इस बार बालटाल से पवित्र गुफा तक पूरे रास्ते पर बिजली और लाइट की व्यवस्था की गई है ताकि खराब मौसम या रात के समय भी श्रद्धालुओं को परेशानी न हो। ट्रैकिंग रूट को भी पहले से बेहतर बनाया गया है जिससे कठिन चढ़ाई कुछ आसान हो सके। यात्रियों की सुविधा के लिए पोनी पालकी और पोर्टर की प्रीपेड बुकिंग शुरू की गई है, यानी अब तय किराए पर ही ये सेवाएं मिलेंगी। रहने की व्यवस्था भी पहले से बेहतर हुई है। बालटाल, नुनवान, श्रीनगर और चंद्रकोट के यात्री निवासों का विस्तार किया गया है। वहीं जम्मू में बने नए सेंटर में करीब 4000 भक्तों को ठहरने की व्यवस्था भी की गई है। अगर कोई श्रद्धालु ज्यादा थक गया है, बीमार है या फिर किसी कारणवश रुकना पड़ रहा है तो यहाँ पर आराम कर सकता है। ये पूरी तरह से निशुल्क होगा। जम्मू के तवी रिवर फ्रंट पर बने नए इंटीग्रेटेड फैसिलिटेशन सेंटर में रजिस्ट्रेशन, मेडिकल जांच, हेल्थ सर्टिफिकेट और दस्तावेजों की जांच जैसी सभी जरूरी प्रक्रियाएं एक ही जगह पर पूरी की जा रही है। एक तरफ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं बढ़ाई गई हैं, तो वहीं सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। दरअसल पूरा सावन चलने वाली अमरनाथ यात्रा में यूं तो कई चुनौतियां होती हैं, लेकिन इनमें सबसे बड़ी चुनौती होती है यात्रियों की सुरक्षा, क्योंकि हर बार अमरनाथ यात्रा पर आतंकियों की बुरी नजर रहती है। लेकिन बाबा बर्फानी के प्रति लोगों की ऐसी आस्था है कि तमाम खतरों के बावजूद हर साल लाखों की संख्या में भक्त बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में देश की सुरक्षा एजेंसियां उन्हें सुरक्षित घर वापस भेजने की पूरी जिम्मेदारी उठाती हैं। इस बार भी आस्था के इस महाकुंभ में कोई खलल न पड़े, इसके लिए सुरक्षा बल पूरी तरह तैयार है। 670 से ज्यादा अर्धसैनिक बलों की कंपनियां सुरक्षा में तैनात की गई हैं। यात्रा मार्ग से लेकर बेस कैंप और हाईवे तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और भारतीय सेना के जवान दिन रात मोर्चे पर डटे हैं। बालटाल हो या पहलगाम, बाबा बर्फानी के धाम तक जाने वाला हर रास्ता एक अवैध किले में तब्दील कर दिया गया है। बम डिस्पोजर स्क्वाड और डॉग स्क्वाड को विशेष रूप से तैनात किया गया है। ये टीमें लगातार यात्रा मार्गों, टेंट्स और पार्किंग एरिया की तलाशी ले रही हैं।
1: जो स्मेल करते हैं और उसे डिटेक्ट करते हैं, कोई भी अगर सामान में कुछ भी होता है तो यहाँ जैसे आप देख पा रहे हैं कि सीधा पहले व्हीकल्स आती हैं। व्हीकल्स आने के बाद एक तो हमारे पास DSMD होता है और एक दूसरा डॉग होता है। तो डॉग जो है स्मेल करता है और कुछ भी अगर संदिग्ध वस्तु अगर पाई जाती है तो वो तुरंत डिटेक्ट कर लेता है। और साथ में उसी के साथ में हमारे BDDS का जो HSMD होता है वो भी एक टूल होता है, अगर कुछ भी होता है तो वो डिटेक्ट करने में हेल्पफुल रहता है।
0: इसके साथ ही सुरक्षा ग्रिड को मजबूत करने के लिए टेक्नोलॉजी का भी खूब इस्तेमाल हो रहा है। जमीन से लेकर आसमान तक कड़ा पहरा है। घने जंगल और दुर्गम रास्तों की निगरानी ड्रोन के जरिए की जा रही है। आखिरी समय में तमाम सिक्योरिटी इंतजामों का मुआयना करने के लिए फिलहाल जम्मू कश्मीर पुलिस महकमा ग्राउंड जीरो पर नजर आ रहा है। बुधवार सुबह से ही जम्मू कश्मीर पुलिस के तमाम सीनियर ऑफिसर्स अलग अलग यात्रा डिस्ट्रिक्ट में सुरक्षा तैयारियों का जायजा लेते नजर आए।
2: आज जम्मू कश्मीर पुलिस के जितने भी सीनियर ऑफिसर्स हैं, जो भी सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट है आज वो उसका मुआयना कर रहे हैं। इसका ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि कोई भी कमी पेशी होती है तो उसको लूप होल्स को प्लग करना और उसको और रिफाइन करना अपने रिस्पॉन्सेज के लिए। तो इसी लिहाज से ये जो है आज के जो काफ़ी अलग अलग मुख्तलिफ जो यात्रा डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ सीनियर अफसर सारे इंतजाम को फिर से देख रहे हैं ताकि उसकी अच्छे तरीके से सुपरविजन हो सके।
0: यानी चुनौती कोई भी हो, प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। मकसद सिर्फ एक, भोले के भक्तों की ये यात्रा सुरक्षित, सुगम और बिना किसी परेशानी के संपन्न हो। दरअसल शिव भक्तों के लिए अमरनाथ यात्रा एक ऐसी कठिन साधना है जिसे आप शिवत्व को साधने की सबसे कड़ी तपस्या कह सकते हैं, और इस तपस्या को निर्वाध पूरा करवाने के लिए देश की सिक्योरिटी फोर्सेज पूरे जी जान से जुटी हैं। जम्मू से सुनील जी भट्ट, श्रीनगर से अशरफ वाली और जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: तो हजारों लोग अमरनाथ यात्रा पर निकल चुके हैं और हजारों जाने की तैयारियों में जुटे हैं। अब इसके बीच में उनका जो तीर्थ यात्रा पर जाने में या तो सक्षम नहीं है या किसी और वजह से चाहकर भी नहीं जा सकते, ठीक इसी तरह कई लोग चाहकर भी चारधाम यात्रा पर जा नहीं पाते। ऐसे लोगों के लिए वर्चुअल रियलिटी तकनीक की मदद से एक अनोखी सौगात तैयार की गई है। इसका नाम है दुर्लभ दर्शन। ये एक आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म है जिसमें 6D VR तकनीक के जरिए देश के प्रमुख मंदिरों के दर्शन का एक अनूठा अनुभव उपलब्ध करवाया जाता है। यानी दूर होकर भी आपको इस तकनीक के जरिए अपने आराध्य के पास होने का एहसास होगा। अभिनेता आशुतोष राणा को देश के पहले 6D मंदिर दर्शन सेवा तकनीक का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है।
4: मैं आशुतोष राणा और मैं आपको लेकर चल रहा हूं

0: सुगंध लिए हम अपने आराध्य प्रभु श्री राम के धाम की ओर चलते हैं।
1: घर बैठे ही तीर्थों की यात्रा होगी। देर तक निहार सकेंगे आराध्य।
2: दर्शनार्थ उनके विग्रह या मूर्ति के समक्ष उपस्थित होते हैं तो
1: दूर रहकर भी गर्भगृह की पूजा में शामिल हो सकेंगे।
3: इसमें है 50 से ज्यादा तीर्थ यात्रा
1: और ये सब संभव है दुर्लभ दर्शन। दुर्लभ दर्शन एक ऐसा पिटारा जिसमें हर धाम समाया है
2: बल्कि अनुभूत भी कर सकते हैं।
1: भगवान समाये हैं एक खास एहसास के साथ।
0: आपके और परमात्मा के बीच में कोई नहीं, वहां पर घटित होने वाली समस्त क्रियाकलापों में आप सहभागी होंगे, ऐसी अनुभूति हमारी करवाने का मन था कि अगर मान लीजिए पानी गिर रहा है, अगर हमने जल चढ़ाया, जलाभिषेक किया तो पानी के छींटे हमारे ऊपर आते हैं तो वो भी आपको अनुभूत हो। अगर आपने उनको सुगंधिम पुष्टिवर्धनम की बात, अगर हम सुगंध उनको लगा रहे हैं अभिषेक करते समय तो सुगंध भी आपको महसूस होगी। यदि हवा की बात है तो हवा भी आपको महसूस होगी। तो इस तरीके से पूरा इस अनुभव को बिल्कुल एक जो दुर्लभ अनुभव है उसको सुलभ करने के लिए हमने ये किया।
2: लाखों
1: असल में दुर्लभ दर्शन एक आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म जिसमें 6DVR तकनीक के जरिए देश के प्रमुख मंदिरों के दर्शन का एक अनूठा अनुभव उपलब्ध कराया जाता है। इसमें वर्चुअल रियलिटी के साथ साथ जल, वायु, सुगंध और पौराणिक कथाओं के मेल से साक्षात गर्भगृह में होने का एहसास कराया जाता है। यूँ कहिए कि यहाँ आस्था और तकनीक के मेल से एक सुंदर आध्यात्मिक वातावरण का निर्माण किया जाता है। यहाँ एक और भगवान राम और उनकी अयोध्या की कहानी है तो काशी विश्वनाथ का इतिहास भी है और माँ वैष्णो देवी की आरती भी। बस इसे आँखों पर लगाइए और यात्रा पर निकल पड़िए। इसमें अभिनेता आशुतोष राणा आपको धर्मस्थलों की कहानी सुनाते भी नजर आएंगे।
2: हमें तो अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए। क्यों होता है ऐसा? वो इसलिए कि जब हम भाव विभोर होकर भगवान के दर्शन।
1: फिलहाल ये सुविधा अयोध्या, काशी समेत देश के 11 प्रसिद्ध मंदिरों में उपलब्ध है, जहां आप सुकून से बैठकर अपने आराध्य देव को करीब से महसूस कर सकेंगे,
2: ध्यान में लीन हो सकते हैं। और यदि किसी कारणवश
1: अभिनेता आशुतोष राणा को देश के पहले 6D मंदिर दर्शन सेवा तकनीक का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है।
2: 50 से अधिक तीर्थयात्राएं और अनेक सिद्ध और दिव्य मंदिरों के दैनिक दर्शन कर सकते।
4: तो चलिए इसी के साथ जीएनटी स्पेशल की इस बेहद खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरें जारी हैं, देखते रहिए जीएनटी।
5: TuneIn has got all your favorite audio in one spot, so you can enjoy listening to anything, anywhere, from breaking news.
6: You know, the breaking news is this started long before he even announced for president. It was
5: to live sports action.
7: To the near side corner, to wrap around, he scores!
5: And your favorite music.
8: You and I start guessing.
5: TuneIn has got it all. Discover new stations in the app or ask your device to play TuneIn.
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
10: बात करेंगे अब अल्फा मूवी की जो इस शुक्रवार रिलीज होने जा रही है, लेकिन फिल्म को लेकर चर्चाओं का दौर लगातार जारी है। यहां तक कि फिल्म में आलिया के एक्शन की भी जबरदस्त तारीफ हो रही है, लेकिन अब फिल्म की स्टारकास्ट से जुड़ी एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक 100 करोड़ के मेगा बजट वाली इस फिल्म के लिए सबसे ज्यादा फीस आलिया ने ही ली है।
11: सीता आज लंका खुद जलाने आई।
12: हाय बॉयज।
13: पलक झपकते ही दुश्मन को धूल चटा देना, हाथों में बंदूक थामे बेखौफ दुश्मनों के बीच घुस जाना।
11: शुरू करो अग्नि परीक्षा।
13: आलिया भट्ट इस शुक्रवार सिल्वर स्क्रीन पर राज करने आ रही है। सामने आए अल्फा के ट्रेलर में आलिया पावर पैक एक्शन करती नजर आएंगी। हर पंच और हथियार चलाने का स्वैग ये बता रहा है कि पर्दे पर एक नए एक्शन स्टार का जन्म होने वाला है।
14: ये क्या है?
15: अल्फा।
14: अल्फा मतलब
15: सीक्रेट प्रोग्राम है इंडिया के नेक्स्ट जनरेशन सोल्जर्स तैयार करने के लिए।

0: आलिया ने 2012 में स्टूडेंट ऑफ द ईयर जैसी ग्लैमरस और बेहद स्टाइलिश फिल्म से डेब्यू किया था, लेकिन अब बड़े पर्दे पर उनका एक अलग अवतार देखने को मिलेगा।
1: तो भी वही है हमारी इकलौती
2: अल्फा।
0: कल तक पर्दे पर अपनी मासूमियत, रोमांस और इमोशन से दर्शकों को रुलाने वाली आलिया अब अपनी रफ्तार और एक्शन से स्क्रीन पर कोहराम मचाने के लिए तैयार है।
1: इसकी माँ का नाम जानकी था, हम इसे सीता बुलावेंगे।
0: एक तरफ अल्फा में आलिया के एक्शन सीक्वेंस की चर्चा है, तो दूसरी तरफ फिल्म की स्टार कास्ट की फी को लेकर भी बाजार में चर्चाओं का दौर है।
3: वो धोखे से राज करता था और झूठ से जीतता था।
0: रिपोर्ट्स की मानी जाए तो 1000 करोड़ के बजट वाली इस मेगा स्टार फिल्म में आलिया ने सबसे ज्यादा फी चार्ज की है।
3: Hi boys.
0: दावा किया जा रहा है कि स्पाई थ्रिलर फिल्म के लिए आलिया भट्ट ने तकरीबन 25 करोड़ रुपए की भारी भरकम फी चार्ज की है, यानी फिल्म के पूरे बजट का 1/4 हिस्सा सिर्फ और सिर्फ आलिया के नाम रहा, जबकि आलिया की को स्टार शर्वरी ने 3 करोड़ रुपए की फी चार्ज की है। दूसरी तरफ बॉबी देओल फिल्म में विलेन के रोल में नजर आने वाले हैं और उन्हें इसके लिए करीब 6 करोड़ रुपए मिले हैं। वहीं फिल्म में एक अहम भूमिका निभाने वाले अनिल कपूर को भी तकरीबन 6 करोड़ रुपए मिले हैं। बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर फिल्में देने के बाद आलिया आज बॉलीवुड की सबसे भरोसेमंद फीमेल स्टार्स में से एक हो चुकी है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं है कि आलिया के ही कंधों पर इस 100 करोड़ बजट वाली फिल्म का भार है।
3: It really means a lot to me. मैं समझी नहीं बाबा, वहाँ करना क्या है?
1: वही जिसके लिए मैंने तुझे ट्रेनिंग दी है।
0: अब देखना यह है कि 25 करोड़ की फी लेने वाली अल्फा गर्ल आलिया इस शुक्रवार बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ की कमाई कर पाती है।
1: दुनिया में सिर्फ दो तरह के लोग हुए हैं, वुल्फ और शीप। मैं वुल्फ हूँ। तो क्या है?
3: वुल्फ की बेटी वुल्फ ही होती है सर।
0: ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
4: चलिए आपको देवभूमि उत्तराखंड लिए चलते हैं, जहां चमोली जिले में मौजूद फूलों की घाटी इन दिनों गुलजार है मनमोहक खूबसूरत फूलों से। बड़ी बात यह है कि इस बार यहां रिकॉर्ड संख्या में लोग भी पहुंचे हैं इसका दीदार करने के लिए। अब तक 7294 लोग फूलों की घाटी की सुंदरता का दीदार कर चुके हैं।

0: पहाड़ों के बीच फैली हरियाली, बादलों से बातें करती वादियाँ, और जहाँ तक नजर जाए वहाँ तक रंग बिरंगे फूलों की दुनिया। ये नज़ारा किसी कल्पना का नहीं बल्कि चमोली की विश्व धरोहर फूलों की घाटी का है। हर साल मॉनसून के साथ यहाँ प्रकृति अपनी सबसे खूबसूरत तस्वीर पेश करती है। इस बार भी घाटी ने अपने रंग बिखेरने शुरू किए तो लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है। फूलों की घाटी में 1 जून को पर्यटकों के लिए प्रवेश शुरू हुआ था। अभी सिर्फ 1 महीना ही बीता है, लेकिन यहाँ आने वालों की संख्या ने सभी पुराने आंकड़े पीछे छोड़ दिए हैं। अब तक 7,294 लोग घाटी की प्राकृतिक सुंदरता का दीदार कर चुके हैं। इनमें 34 विदेशी पर्यटक भी शामिल हैं। वन विभाग का कहना है कि सीजन की शुरुआत इतनी शानदार पहले बहुत कम देखने को मिली है। अगर पिछले साल से तुलना करें तो अंतर साफ दिखाई देता है। बीते साल इसी महीने में 3,893 पर्यटक पहुँचे थे, यानी इस बार शुरुआती 1 महीने में ही करीब 1.5 गुना अधिक लोग यहां पहुंचे हैं। यही वजह है कि वन विभाग को इस पूरे सीजन में रिकॉर्ड संख्या की उम्मीद दिखाई दे रही है। अभी तो ये केवल शुरुआत है। फूलों की घाटी का असली आकर्षण 15 जुलाई से 15 अगस्त के बीच दिखाई देता है। इसी समय सबसे अधिक प्रजातियों के फूल एक साथ खिलते हैं। चारों ओर रंगों का ऐसा संसार बन जाता है जिसे देखने के लिए देश विदेश से प्रकृति प्रेमी यहां पहुंचते हैं। फूलों की घाटी की सबसे खास बात ये है कि यहाँ केवल 1 तरह के फूल नहीं खिलते। इस पूरी घाटी में करीब 500 प्रजातियों के फूल पाए जाते हैं। हर 15 दिन बाद नई किस्में खिलती हैं और पहले वाले धीरे धीरे विदा हो जाते हैं। यही वजह है कि यहाँ का नज़ारा लगातार बदलता रहता है। यही बदलता रूप इस जगह को दुनिया की सबसे खास प्राकृतिक धरोहर में शामिल करता है। जैसे जैसे जुलाई का ये महीना आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे ये पूरी घाटी और अधिक रंगों से भरती जाएगी। आने वाले दिनों में यहाँ प्रकृति का सबसे मनोहरी रूप दिखाई देगा। यही वजह है कि फूलों की घाटी केवल एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि धरती पर सजे उस जीवन कैनवस का नाम है जहाँ हर मौसम नई तस्वीर बनाता है। चमोली से कमल नैन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: Summer hits, blends old school jams with fresh favorites, so you can get the party started. Listen to your summer soundtrack, made for sunshine, vibes, and summer heat. Hear all your favorites and more right here on TuneIn. Explore the new Stingray music collection with stations like this. Just search Summer Hits and start listening now.
1: Good news today इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: बाबा बर्फानी के दर्शन की आई शुभ घड़ी, शिव भक्तों का जोश आए गहन सुरक्षा के बीच अमरनाथ यात्रा के लिए तैयार पहला जत्था। आर्थिक मोर्चे पर देश के लिए गुड न्यूज, जून में 1,94,000 करोड़ जीएसटी कलेक्शन, पिछले साल से 14% ज्यादा, इंपोर्ट से होने वाली कमाई बढ़ी। पहाड़ों पर मॉनसून का दिखने लगा असर, रुद्रप्रयाग में लगातार हो रही है बारिश से अलकनंदा नदी का बड़ा जल स्तर, नदी के किनारे बनी भगवान शिव की मूर्ति तक पहुंचा पानी। बद्रीनाथ में भगवान विष्णु के भक्तों ने अब तक के सारे रिकॉर्ड्स किए ध्वस्त, 14,00,000 से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन, हर रोज 15,000 से 20,000 श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। केंद्रीय कैबिनेट की दिल्ली और उत्तर प्रदेश को 14,000 करोड़ से ज्यादा की सड़क परियोजनाओं को मिली मंजूरी, दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ेगी 6 लेन वाली टनल, वहीं कानपुर से करबई के बीच बनेगा एक्सेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड हाईवे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
4: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा, फैक्ट चेक में आपका स्वागत है। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां, झूठे दावे बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है तो कभी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर पेश किया जाता है। लोग बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते हैं क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं है। हर किसी के हाथ में कैमरा है, हर घटना हर तस्वीर कुछ ही सेकेंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाती है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नहीं बताकर पेश की जाती है, किसी वीडियो को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है ताकि कहानी असलियत से कोसों दूर लगे। लोग बिना जांचे समझे उन्हें सच मान लेते हैं, उन्हें लगातार शेयर करते हैं। लेकिन फैक्ट चेक के जरिए हम हर तस्वीर हर वीडियो की पड़ताल करते हैं, हर तस्वीर और हर वीडियो के पीछे की सच्चाई आप तक लेकर आते ताकि आपको सही और सटीक जानकारी मिले। तो फैक्ट चेक में आज जिन दो खबरों की पड़ताल हम करेंगे उसमें सबसे पहले सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो की बात होगी जिसके जरिए दावा यह किया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में गौ रक्षकों को उम्र कैद की सजा सुनाए जाने के विरोध में हुए वकीलों के प्रदर्शन का वीडियो है। सच्चाई क्या है आगे जानिए। हमारी अगली खबर उस वायरल वीडियो से जुड़ी होगी जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि बिल्डिंग ढहने का ये वीडियो वेनेजुएला में आए हालिया भूकंप से संबंधित है। अब इस दावे की सच्चाई क्या है आगे पड़ताल करेंगे। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
4: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो को शेयर करते हुए कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में गौ रक्षकों को उम्र कैद की सजा सुनाए जाने के विरोध में हुए वकीलों के प्रदर्शन का वीडियो है। वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है पड़ताल करती रिपोर्ट।

0: किसी बड़ी सी इमारत के परिसर में इकट्ठा सैकड़ों वकीलों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर ये कहते हुए शेयर किया जा रहा है कि इन लोगों ने मध्य प्रदेश में गौ रक्षकों को आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने के विरोध में प्रदर्शन किया। दरअसल नर्मदापुर मध्य प्रदेश के सेशन कोर्ट ने 12 जून को 14 गौ रक्षकों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी और इसके बाद से ही देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। इसी संदर्भ में वकीलों वाला वीडियो भी वायरल हो रहा है। एक थ्रेड्स यूजर ने इसे शेयर करते हुए लिखा है, धन्यवाद आपको देश की न्यायपालिका, 5000 वकीलों ने 14 गौ सेवकों को दिया समर्थन, जल्द जमानत होगी। कुछ लोग तो इस वीडियो को शेयर करते हुए यहां तक दावा कर रहे हैं कि गौ रक्षकों के समर्थन में 5000 वकीलों ने प्रदर्शन किया। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में गौ रक्षकों को उम्र कैद की सजा सुनाए जाने के बाद वकीलों के प्रदर्शन का वीडियो है और वीडियो में किसी बड़ी सी इमारत के परिसर में सैकड़ों वकीलों को इकट्ठा देखा भी जा सकता है। साथ ही साथ इस दौरान कुछ वकीलों को वीडियो रिकॉर्ड करते हुए भी देखा गया। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। ऐसे में इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमारा ध्यान वीडियो में नजर आ रही बिल्डिंग पर गया। जब हमने इसे गौर से देखा और फिर इस इमारत के बारे में सर्च किया तो यह जानकारी सामने आई कि बिल्डिंग लखनऊ हाईकोर्ट की है। इसके बाद फैक्ट चेक टीम ने यह जानने की भी कोशिश की कि क्या लखनऊ में वकीलों ने गौ रक्षकों को उम्र कैद सुनाए जाने के को लेकर कोई प्रदर्शन किया है, लेकिन सर्च के दौरान ऐसी कोई प्रमाणिक रिपोर्ट नहीं मिली जिससे वारे दावे की पुष्टि हो सके। क्योंकि अगर वाकई ऐसा हुआ होता तो ये कहीं ना कहीं खबर जरूर बनती, किसी मीडिया आउटलेट्स में भी जरूर यह आती। लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा। हमारा पहला सवाल यही था कि क्या लखनऊ हाईकोर्ट में सैकड़ों वकील जमा हुए तो क्यों हुए। दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा। सच और झूठ क्या है इस रिपोर्ट में जानिए। इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वीडियो की जांच में जुटी। वायरल वीडियो को गौ रक्षकों से जुड़ा प्रदर्शन बताने वाले एक पोस्ट में हमें एक इंस्टाग्राम अकाउंट के हैंडल का वॉटरमार्क दिखा। इस जानकारी की मदद से सर्च करने पर हमें पता चला कि इस हैंडल से वायरल वीडियो 25 मई को शेयर किया गया था। इस पोस्ट में वीडियो की लोकेशन लखनऊ हाईकोर्ट बताई गई थी। सर्च के दौरान ये भी जानकारी सामने आई कि वीडियो लखनऊ हाईकोर्ट गोमती नगर का है और बार काउंसिल ऑफ यूपी के चुनाव से संबंधित है। ये वीडियो मार्च 2026 में बनाया गया। वीडियो में कुछ लोग नंबरों वाली तख्तियां पकड़े नजर आ रहे हैं। ये वो नंबर्स हैं जो प्रत्याशियों को अलॉट किए जाते हैं। लखनऊ हाईकोर्ट में हाल फिलहाल में गौ रक्षकों के मामले को लेकर वकीलों का कोई प्रदर्शन नहीं हुआ। साफ है कि लखनऊ का एक पुराना वीडियो अब मध्य प्रदेश के गौ रक्षकों को मिली सजा के विरोध में हो रहे प्रदर्शन का बताकर शेयर किया जा रहा है। ज्योति द्विवेदी के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा ये कर रहे हैं कि बिल्डिंग ढहने का ये वीडियो है वेनेजुएला में आए हालिया भूकंप का। वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती रिपोर्ट।
2: हाल ही में वेनेजुएला की राजधानी कराकास में कुछ ही सेकंड्स के अंतराल पर दो बड़े भूकंप आए। पहला भूकंप 7.2 तीव्रता का था और दूसरा 7.5 तीव्रता का था। वेनेजुएला प्रशासन के अनुसार इस भूकंप में कई लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 700 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार ये साल 1900 से लेकर अब तक का सबसे भीषण भूकंप है। इन सब के बीच सोशल मीडिया पर बिल्डिंग ढहने का ये वीडियो इस दावे के साथ शेयर किया जा रहा है कि ये वेनेजुएला में आए हालिया भूकंप का दृश्य है। वायरल वीडियो करीब 9 सेकंड्स का है जिसमें एक बहुमंजिला इमारत ताश के पत्तों की तरह ढहती हुई नजर आई। इस दौरान यहां मौजूद लोग भागते हुए भी नजर आ रहे हैं। एक एक्स यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि 126 साल में सबसे खतरनाक भूकंप, वेनेजुएला के भूकंप में कम से कम 10,000 की मौत। यूएसजीएस का चौंकाने वाला दावा। वेनेजुएला के भूकंप में कम से कम 10,000 लोगों की मौत की खबर निकलकर सामने आई है। यूएसजीएस का चौंकाने वाला दावा किया गया है। कराकास एयरपोर्ट भी इस भूकंप से तबाह हो गया है। वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानने बगैर लोग इस वीडियो को धड़ल्ले से शेयर कर रहे हैं।
1: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में एक बहुमंजिला इमारत ताश के पत्तों की तरह ढहती हुई नजर आ रही है। इस दौरान वहां मौजूद लोग भागते हुए दिख रहे हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है और यूजर्स इसे वेनेजुएला में आए हालिया भूकंप का बता रहे हैं। ऐसे में इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो फैक्ट चेक टीम ने वायरल वीडियो की पड़ताल शुरू की। वेनेजुएला में पिछले हफ्ते आए दो भूकंपों ने तबाही का ऐसा मंजर पैदा किया जिसकी कल्पना वाकई डरावनी वाली है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी के सैटेलाइट डेटा पर आधारित एक शुरुआती आंकलन से पता चलता है कि एक प्राकृतिक आपदा में देश की 58,000 से ज्यादा इमारतें पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो गई, उन्हें भारी नुकसान पहुंचा। सदी के सबसे भीषण भूकंप ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। ऐसे में वायरल हो रहे इस वीडियो की जांच करना जरूरी हो गया था। दावे की सच्चाई जानने के लिए सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो को हमने गौर से देखा और सुना। इस दौरान हमारा ध्यान वीडियो में आ रही कुछ आवाजों पर गया। हमने इसे गौर से सुना। बैकग्राउंड में जो आवाजें आ रही हैं वो स्पेनिश या फिर अंग्रेजी नहीं है, ये कोई और ही भाषा है, क्योंकि अगर वेनेजुएला का ये वीडियो होता तो फिर जाहिर सी बात है वहां स्पेनिश या फिर अंग्रेजी सुनाई देती, लेकिन यहां पर कोई और भाषा सुनने को मिल रही। मतलब ये कि वायरल वीडियो कहीं और का हो सकता है। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई विश्वसनीय रिपोर्ट भी नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके, लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा। पहला सवाल यही कि वायरल हो रहा वीडियो कब का है और कहां का है। हमारा अगला सवाल कि कहीं जानबूझकर किसी पुराने वीडियो को हालिया वेनेजुएला भूकंप से जोड़कर वायरल तो नहीं किया जा रहा। सच और झूठ क्या, इस रिपोर्ट में जानिए।
2: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक की टीम वीडियो की जांच में जुटी। सबसे पहले हमने वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को गौर से देखा, सर्च किया। इस दौरान हमें ये वीडियो एक अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी के यूट्यूब अकाउंट से 6 फरवरी 2023 को अपलोड किया गया मिला। वीडियो के साथ मौजूद कैप्शन के अनुसार तुर्की के सान डियोरफा प्रांत के हालिलियो जिले में आए 7.8 तीव्रता के भीषण भूकंप के बाद एक इमारत ढह गई थी और इसका दृश्य स्थानीय टीवी के जारी किए गए वीडियो फुटेज में भी दिखाई दिया। इसके अलावा हमें एक आधिकारिक वेबसाइट पर भी 6 फरवरी 2023 को अपलोड किया गया ये वीडियो मिला, जिसमें इसे 2023 में तुर्की में आए भूकंप के दौरान हालिलिये जिले में बिल्डिंग ढहने का बताया गया था। जांच में हमें इसी घटना का दूसरा एंगल से लिया गया वीडियो एक पत्रकार के एक्स अकाउंट से भी 6 फरवरी 2023 को अपलोड किया गया मिला। साथ ही इसी पोस्ट के रिप्लाई सेक्शन में वायरल वीडियो भी मौजूद था। दरअसल 6 फरवरी 2023 को दक्षिणी तुर्की में 9 घंटे के भीतर 7.7 और 7.6 तीव्रता के दो बड़े भूकंप आए, जिसके बाद 20 फरवरी को एक और भयंकर झटका महसूस किया गया था। इस आपदा में कई लोगों की मौत हो गई थी। हमारी जांच में मिले साक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि वेनेजुएला में आए हालिया भूकंप का बताकर वायरल हो रहा ये वीडियो असल में 3 साल पहले तुर्की में आए भूकंप का है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: फैक्ट चेक में फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के उस पर आपको ले चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे तमाम ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
4: Tune in how to. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
5: TuneIn has got your favorite podcast. From sports to special interests. Did you know that you can listen to all your favorites offline? It's simple. Just head to any podcast page, tap the 3 little dots next to the episode title, and hit download. Whether it's true crime, lifestyle, health, and science, or anything else, stream your favorite podcasts and listen to them anytime, anywhere.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़।
1: फैक्ट चेक के आखिरी सफर का, जहां आपको दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हैं।
2: सोशल मीडिया पर एक बहुत क्यूट और दिल छू लेने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। जिसमें ट्रेन में टिकट चेकिंग के दौरान एक टीटीई और नन्ही बच्ची के बीच मजेदार बातचीत देखने को मिल रही है।
6: टिकट किधर है? टिकट नहीं है। पैसा दीजिए।
2: वीडियो में टीटी जब बच्ची से टिकट मांगता है तो वो अपने मासूम अंदाज में टिकट दिखाने से साफ मना कर देती है।
6: टिकट नहीं है ना? हाँ पैसा है। पूछो पापा माँ को, पूछो पैसा पूछो।
2: इसके बाद टीटी मजाक में पैसे मांगता है, जिस पर बच्ची के बेबाक और प्यारे जवाब सुनकर आसपास बैठे यात्री भी मुस्कुराने लगते हैं। बच्ची की मासूमियत, आत्मविश्वास और चुलबुले अंदाज ने लाखों लोगों का दिल जीत दिया है।
6: आपको पापा का नाम क्या? मम्मा का नाम? आपका नाम? टिकट नहीं है।
2: यूजर्स इस नाम को बार बार देख रहे हैं और कॉमेंट्स में बच्ची की खूब तारीफ भी कर रहे हैं।
6: टिकट नहीं है। पैसा दीजिए। पर्ची लिखना। पैसा दे। हाँ पैसा वो पर्ची लिखता हूँ मैंने। टिकट नहीं है ना? हाँ पैसा है। पूछो पापा माँ को, पूछो पैसा पूछो पर्ची लिखने के लिए।
7: पैसा देने
6: टिकट नहीं है।
2: भाई बहन के प्यार से जुड़ा ये प्यारा सा वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रहा है। वीडियो में एक छोटी बच्ची अपने भाई के साथ हल्की फुल्की नोकझोंक करती हुई नजर आ रही है, लेकिन कुछ ही क्षण बाद वो अचानक उसकी ओर दौड़ती है और उसे प्यार से गले लगा लेती है। नन्ही बच्ची की इस मासूम और स्नेह भरे हाव भाव ने पल भर में माहौल को बदल दिया और दोनों के बीच का प्यार साफ झलकने लगा। ये भावुक दृश्य इंटरनेट पर लोगों को खूब पसंद आ रहा है और कई यूजर्स इसे भाई बहन के अटूट रिश्ते की खूबसूरत मिसाल भी बता रहे हैं। वीडियो को देखने के बाद लोग बच्ची की भावनात्मक समझ और उसके मासूम दिल की जमकर सराहना कर रहे हैं। कई लोगों का मानना है कि प्यार और अपनापन छोटी मोटी नाराजगी को भी आसानी से दूर कर सकते हैं। वीडियो इतना क्यूट है कि लोग इसे एक बार नहीं बल्कि बार बार देख रहे हैं। यही वजह है कि ये क्लिप सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है और यूजर्स इसके दीवाने बने हुए हैं। वीडियो में एक बहुत प्यारी और छोटी सी बच्ची दिखाई दे रही है। वो बड़े ही आत्मविश्वास के साथ टैं टैं टू टू टी टी गा रही है।

0: उसकी तोतली आवाज और उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस इतने ज्यादा मजेदार हैं कि कोई भी शख्स अपना तनाव भूल सकता है। बच्ची जिस तरह से अपनी आंखों को घुमाकर और चेहरे पर अलग अलग भाव लाकर गा रही है, ये इसके क्यूट एक्सप्रेशंस ही हैं जो इस वीडियो को इतना खास बना रहे हैं। जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स खासकर इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अपलोड हुआ, लोगों ने इसे हाथों हाथ लिया। वीडियो पर लाखों की संख्या में व्यूज और लाइक्स आ चुके हैं। लोग कमेंट्स में बच्ची की मासूमियत की खूब तारीफ कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक बच्चे और पुलिस डॉग की ये प्यारी मुलाकात लोगों का दिल जीत रही है। वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक मासूम बच्चा पुलिस K9 डॉग के पास पहुंचा तो किसी ने नहीं सोचा था कि इतना प्यारा पल देखने को मिल जाएगा। बच्चे की मासूम मुस्कान और कुत्ते की दोस्ताना प्रतिक्रिया ने वहां मौजूद सभी लोगों का दिल जीत लिया। ये वीडियो हमें याद दिलाता है कि प्यार, भरोसा और दोस्ती की कोई भाषा नहीं होती। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो छाया हुआ है जिसे देखकर लोग हैरान भी हैं और थोड़े डरे हुए भी हैं। दरअसल जिस खतरनाक जीप को देखकर बड़े बड़ों के पसीने छूट जाते हैं, एक छोटा सा बच्चा उसके साथ बड़े आराम से डॉक्टर खेलता हुआ नजर आ रहा है। ये जीप कोई पालतू कुत्ता या बिल्ली नहीं बल्कि मगरमच्छ है। बच्चे की इस निडरता को देखते हुए नेटिजंस दांतों तले उंगलियां दबा रहे हैं। ये हैरान कर देने वाला वीडियो कोलंबिया का बताया जा रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक छोटा सा बच्चा जमीन पर बैठे मगरमच्छ के पास बिल्कुल बेखौफ होकर बैठा है। बच्चा खुद को डॉक्टर समझकर उस जंगली जीव का इलाज करने का नाटक कर रहा है। वो कभी उसके शरीर को सहलाता है तो कभी उससे इंसानों की तरह बातें करने लग जाता है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि वो खतरनाक जीव भी पूरी तरह शांत लेटा हुआ है। उसने बच्चे को नुकसान पहुंचाने की एक भी कोशिश नहीं की, मानो वो सचमुच अपना इलाज करवा रहा हो। एक छात्र एग्जाम टाइम में मोबाइल से चीटिंग करते हुए पकड़ा जाता है। इसके बाद वो जो करता है उससे पूरे क्लासरूम में मौजूद बाकी छात्रों की भी पोल खुल जाती है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एग्जाम चल रहा होता है, इसी दौरान एक स्टूडेंट मोबाइल में चीटिंग करते हुए पकड़ा जाता है। टीचर उसका मोबाइल अपने कब्जे में ले लेती है और उसे क्लासरूम से बाहर जाने के लिए कहती है। जैसे ही टीचर छात्र को लेकर क्लास से बाहर निकलने लगती है, तभी छात्र अचानक क्लासरूम की सभी लाइटें बंद कर देता है। कमरे में अंधेरा हो जाता है। एक ऐसा नजारा दिखाई देता है जिसने सभी को चौंका दिया। अंधेरे में कई छात्रों के मोबाइल फोन की स्क्रीन चमकने लगती है, जिसे पता चल जाता है कि क्लास में मौजूद कई दूसरे छात्र भी मोबाइल की मदद से नकल कर रहे थे। इसकी वजह से पूरे क्लासरूम में चीटिंग कर रहे बाकी छात्रों की भी पोल खुल जाती है और यहीं वीडियो भी खत्म हो जाता है। पहाड़ों में घूमने के दौरान एक भारतीय शख्स ने अपनी चलती कार से प्लास्टिक की खाली बोतल को फेंक दिया। कार के पीछे बाइक पर चल रहे एक विदेशी पर्यटक को देश की इस खूबसूरत प्रकृति का ऐसा अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने तुरंत वो बोतल उठाई और कार सवार के पास जाकर बोतल वापस उसकी कार के अंदर फेंकते हुए उसे जमकर फटकार लगाई। वीडियो में साफ दिख रहा है कि विदेशी पर्यटक पहाड़ों की खूबसूरत इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचता देख बहुत गुस्से में था। उसने ठान लिया था वो इस लापरवाही को बिना टोके नहीं जाने देगा। इस वीडियो को यूजर्स बार बार देख रहे हैं, युवक के सिविक सेंस पर सवाल उठा रहे हैं। आमतौर पर जब कोई जानवर बाघ को सामने से देखता है तो वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसने लोगों को हैरान कर दिया। इस वीडियो में एक साधारण गाय बाघ के सामने डटकर खड़ी हो जाती है। इतना ही नहीं, गाय का हौसला देखकर खुद टाइगर को पीछे हटना पड़ता है। वीडियो देखने के बाद लोग यही कह रहे हैं कि शायद ऐसा नजारा पहले कभी देखने को नहीं मिला होगा। इंटरनेट पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग गाय की बहादुरी की जमकर तारीफ कर रहे हैं।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
2: इस तरह के बालों का स्टाइल जीवन में संघर्ष बढ़ा देता है। किस तरह के बालों के स्टाइल वाले लोग लापरवाह होते हैं, और अगर सर पर बाल ना हो या कम हो तो ये किस ग्रह का प्रभाव होता है? आपके बालों का, बालों के स्टाइल का आपके भाग्य से क्या है संबंध, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
3: Whatever you're in the mood for, there's always something to listen to on TuneIn. Music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world. All in one place. Enjoy over 100,000 stations, from local favorites to global voices. So you never miss a beat. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices. At home, in the car, or on the go. Hear it all and more right here on TuneIn.
1: गुड़नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
0: भारत की बेटियां अब सिर्फ खेल के मैदान में ही नहीं बल्कि खेलों के संचालन और फैसलों की सबसे बड़ी जिम्मेदारियों में भी नया इतिहास लिख रही हैं। उत्तर प्रदेश की मंजू नयाल ने कुछ ऐसा ही मुकाम हासिल किया है। मंजू नयाल ने वो उपलब्धि हासिल की है जिसे अब तक देश की कोई महिला हासिल नहीं कर पाई थी। वो भारत की पहली 3-स्टार इंटरनेशनल महिला कुरैश रेफरी बन गई हैं और इसी के साथ उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय खेल जगत में देश का नाम रोशन किया है।

0: भारत की बेटियां अब सिर्फ मेडल जीतकर ही नहीं बल्कि खेलों के सबसे अहम फैसले लेने वाली कुर्सी तक पहुंचकर भी इतिहास रच रही हैं। उत्तर प्रदेश के मंजू नयाल ने ऐसी उपलब्धि हासिल की है जो आज तक देश की कोई महिला हासिल नहीं कर सकी। मंजू नयाल भारत की पहली 3-स्टार इंटरनेशनल महिला कुराश रेफरी बन गई है। ये सिर्फ उनकी व्यक्तिगत सफलता नहीं बल्कि भारतीय खेल जगत के लिए भी गर्व का पल है।
1: मैम, देश की पहली 3-स्टार रेफरी कुराश गेम में, सुनकर कैसा लग रहा है? देश की पहली महिला रेफरी।
2: सर, बहुत अच्छा लग रहा है, प्राउड मोमेंट हो रही है कि देश की पहली महिला रेफरी बनी हूँ, तो काफ़ी लोगों की विशेस भी आ रही हैं और मतलब सपोर्ट भी मिला काफ़ी, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है पहली 3-स्टार रेफरी बन के कुराश की।
0: कामयाबी का यह शिखर रातों रात नहीं मिला, मंजू नयाल का यह सफर उनकी लगातार कोशिशों का नतीजा है। साल 2023 में नयाल 1-स्टार इंटरनेशनल कुराश रेफरी बनी। इसके बाद साल 2025 में उन्होंने 2-स्टार इंटरनेशनल रेफरी का दर्जा हासिल किया और अब इसी जून महीने में उज्बेकिस्तान में आयोजित बेहद कठिन अंतर्राष्ट्रीय रेफरी परीक्षा को पास करके मंजू ने 3-स्टार का वो मुकाम हासिल किया जहाँ आज तक कोई भारतीय महिला नहीं पहुँच सकी थी।
2: पहले स्टेट रेफरी का एग्जाम दिया कुराश के अंदर, फिर नेशनल रेफरी का, फिर अब इंटरनेशनल रेफरी में, तो फिर वही, फिर 1-स्टार, 2-स्टार, अब मैं 3-स्टार हो गई हूँ। तो ये बिग अचीवमेंट्स है इंडिया के अंदर। मैं अभी तक 3-स्टार रेफरी कोई वुमेन नहीं थी, 1st रेफरी मैं बनी हूँ इस बार, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है इस चीज के लिए।
0: आपको बता दें कि कुराश मध्य एशिया से जुड़ी एक प्राचीन और बेहद लोकप्रिय कुश्ती शैली है। कुराश आज दुनिया भर में लोकप्रिय हो चुका है। इसकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये 130 से अधिक देशों में खेला जाता है। कुराश की शुरुआत 3500 साल पहले उज्बेकिस्तान में हुई थी। इस खेल में दो खिलाड़ी एक दूसरे को पकड़कर पीठ के बल जमीन पर गिराने की कोशिश करते हैं। इसे 2018 के एशियाई खेलों में भी शामिल किया गया था जहां भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पदक जीते थे। मंजू नयाल ने अपने खेल करियर की शुरुआत जूडो से की थी, लेकिन वक्त के साथ कुराश के प्रति उनकी दिलचस्पी बढ़ती गई और फिर उन्होंने खुद को पूरी तरह इसी खेल के लिए समर्पित कर दिया।
2: वैसे मैं जूडो में भी नेशनल रेफरी हूँ थी, तो वहाँ पर हमारे सर थे रवि कपूर सर, जो दिल्ली के जनरल सेक्रेटरी थे, तब उन्होंने स्विच करा कुराश के अंदर, तो अब उनका साथ था, उन्हें जानते थे दिल्ली के अंदर, बाकी को नहीं इतना हमारा वो था। जब उन्होंने स्विच करा तो उनके साथ साथ हमने कुराश में भी स्विच कर लिया था उन्हीं के उससे।
0: मंजू नयाल फिलहाल गाजियाबाद में गुरुकुल द स्कूल की शारीरिक शिक्षा विभाग की कोऑर्डिनेटर है और कई बड़े अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में रेफरी की भूमिका निभा चुकी है।
2: अभी तक मैं नो मार्ट्स गेम कजाकिस्तान में मैंने 2024 में एज ए रेफरी की भूमिका निभाई, फिर चिल्ड्रन एशियन गेम में युकोत्सव रशिया में 2024 में मैं ऑफिशिएटिंग करी वहाँ पर, 3rd एशियन यूथ बहरीन में भी मैं एज ए ऑफिशियल गई, उसके बाद अभी हमारा करंट जापान में ट्रायल इवेंट हुए थे उसके अंदर भी मैंने एज ए ऑफिशियल की भूमिका निभाई।
1: इस गेम का रेफरी होना है, किसी भी गेम का रेफरी होना, आपके हिसाब से कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, खासकर तब जब आप एक इंटरनेशनल स्टेज पर अपने देश को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं?
2: बहुत प्रेशर होता है, सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है, क्योंकि अगर आप दो कंट्री की बाउट करा रहे हो, उन दो कंट्रियों के बीच में उन दो कंट्रियों का रेफरी नहीं होता, तीसरी कंट्री का रेफरी होता है, तो वहाँ पे जजमेंट देना बहुत वो रहता है, बड़े दिमाग से देखना पड़ता है, एक एक जेस्चर देखना पड़ता है, कैसी लैंडिंग हुई है, किस पे हुई है, प्लेयर किस एरिया में जा रहा है, ये सारी चीज़ें हमें बहुत ध्यान से देखनी पड़ती है।
0: मंजू नयाल का लक्ष्य अब इसी साल सितंबर में होने जा रहे एशियन गेम्स में रेफरी के तौर पर भारत का प्रतिनिधित्व करने का है।
2: एशियन गेम्स जो अब सितंबर में होने वाले हैं 22 से, उसमें अभी हम दिल्ली इंडिया से गए थे और वहाँ ट्रायल इवेंट्स देखने गए थे कि क्या क्या कमियाँ हैं, क्या क्या होने वाला है, तो उसका एक रन थ्रू था वहाँ पर, तो वहाँ पर मैं एज ए इंडिया से रिप्रेजेंट करा था मैंने वहाँ पर, और काफ़ी चीज़ें वहाँ मुझे सीखने को भी मिली, बहुत सारी चीज़ें देखी, क्या कमियाँ थी, क्या है, ये सारी चीज़ें हम वहाँ देख के आए हैं, और अब हम सितंबर में अगर हुआ तो सितंबर में हम वहाँ जाएंगे।
0: खेल, शिक्षा, रेफरी और खेल प्रबंधन के क्षेत्र में मंजू नयाल को 22 सालों से भी ज्यादा समय का लंबा अनुभव है। साल 2003 से वो लगातार जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों को तैयार करने और खेल के विकास में जुटी हैं। थ्री स्टार रेफरी बनने के बाद अब मंजू नयाल की नजरें एक नए और बड़े लक्ष्य पर टिकी है। उनका अगला मिशन इसी साल सितंबर में होने जा रहे एशियन गेम्स में रेफरी के तौर पर भारत का प्रतिनिधित्व करना और देश का तिरंगा बुलंद करना है।
1: एक मैसेज जो हाउसवाइफ्स हैं या फिर वो महिलाएं जो रुक गई हैं, जो आपकी तरह दौड़ नहीं रही क्योंकि आप कभी रुकी नहीं, उनके लिए कोई मैसेज आपकी तरफ से?
2: हाँ, मैसेज ये है कि देखो, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। छोटी छोटी उपलब्धियां जो आप हासिल करोगे तो एक दिन अपने मकाम तक पहुंच जाओगे, मगर अगर आप छोटी छोटी चीज़ों को छोड़ते चले जाओगे, नहीं इसने ऐसे बोल दिया, इसने ऐसे कर दिया, फैमिली क्या कहेगी, हमारे रिलेटिव क्या कहेंगे, उसे नहीं सुनना है। आपको आगे बढ़ना है और बढ़ते रहना है। अगर आप एक बार रुक गए तो फिर रुक ही जाओगे।
1: विश यू ऑल द वेरी बेस्ट मैम। हम उम्मीद करते हैं कि आपने जिस तरह से एज अ प्लेयर हम सबका नाम रोशन किया उन दिनों में, अब आप जाकर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर देश का नाम रोशन करेंगी एज अ रेफरी। कैमरामैन शैलेन के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, गाजियाबाद।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
4: और आपको समझाएंगे
5: किस तरह के बालों का स्टाइल जीवन में संघर्ष बढ़ा देता है, किस तरह के बालों के स्टाइल वाले लोग लापरवाह होते हैं, और अगर सर पर बाल ना हो या कम हो तो ये किस ग्रह का प्रभाव होता है। आपके बालों का, बालों के स्टाइल का आपके भाग्य से क्या है संबंध, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
6: बाबा बर्फानी के दर्शन की आई शुभ घड़ी, शिव भक्तों का जोश आए गहन सुरक्षा के बीच, अमरनाथ यात्रा के लिए तैयार पहला जत्था। आर्थिक मोर्चे पर देश के लिए गुड न्यूज, जून में 1,94,000 करोड़ जीएसटी कलेक्शन, पिछले साल से 14% ज्यादा, इंपोर्ट से होने वाली कमाई बढ़ी। पहाड़ों पर मानसून का दिखने लगा असर, रुद्रप्रयाग में लगातार हो रही है बारिश से अलकनंदा नदी का बड़ा जल स्तर, नदी के किनारे बनी भगवान शिव की मूर्ति तक पहुंचा पानी। बद्रीनाथ में भगवान विष्णु के भक्तों ने अब तक के सारे रिकॉर्ड्स किए ध्वस्त, 14,00,000 से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन, हर रोज 15,000 से 20,000 श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। केंद्रीय कैबिनेट की दिल्ली और उत्तर प्रदेश को 14,000 करोड़ से ज्यादा की सड़क परियोजनाओं को मिली मंजूरी, दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ेगी 6 लेन वाली टनल, वहीं कानपुर से करबई के बीच बनेगा एक्सेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड हाईवे।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात अमरनाथ यात्रा की। अब से 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा का श्री गणेश होने जा रहा है। जम्मू कश्मीर में स्थित पवित्र श्री अमरनाथ गुफा से बाबा बर्फानी की पहली पूजा तो 29 जून को ही शुरू हो चुकी है, लेकिन अब आम भक्तों के लिए बाबा बर्फानी के साक्षात दर्शन का पावन अवसर भी आ पहुंचा है। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि यानी 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है। ये यात्रा करीब 2 महीनों तक चलेगी और 28 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन के दिन संपन्न हो जाएगी। हमेशा की तरह इस बार भी पवित्र गुफा में महादेव के दिव्य हिमलिंग का निर्माण हुआ है। श्रद्धालुओं में बाबा बर्फानी के दर्शन की खास उत्सुकता है और माना जा रहा है कि बड़ी तादाद में लोग अमरनाथ गुफा पहुंच सकते हैं, लिहाजा श्रद्धालुओं की सुविधा और सहूलियत के खास इंतजाम किए गए हैं। अब से कुछ ही घंटों में अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था रवाना होने वाला है।

0: बाबा बर्फानी के दर पर लगा भक्तों का मेला। अमरनाथ यात्रा मार्ग पर फिर हो रहा बम बम भोले का जयघोष। शिव भक्तों पर बरसे की बाबा बर्फानी की कृपा।
1: हमें मन के अंदर इतनी खुशी है कि भोले बाबा मिल गए हो। एक स्टेप हमने पार कर लिया है और ये एक स्टेप पार कर किया है, भोले बाबा हमारा आगे का स्टेप भी पार करवाएंगे।
0: आस्था के शिखर पर गूंज रहे बाबा बर्फानी के जयकारे।

0: जमीन से 13,000 फीट की ऊंचाई पर बर्फ से लगदग अमरनाथ गुफा की खूबसूरत वादियाँ फिर से आस्था, भक्ति और विश्वास का पवित्र संगम बनने जा रही हैं। यूं तो इन वादियों का कण कण शिव शक्ति का ही स्वरूप है, लेकिन बाबा बर्फानी के इस दिव्य और दुर्लभ स्वरूप के दर्शन के लिए दूर दूर से भोले के भक्त खींचे चले आते हैं। शिव भक्ति में आकंठ डूबे महादेव की लगन में गाते गुनगुनाते अब की बार भी शिव के मतवालों का मजमा जुट चुका है।
1: ए भोला शंकरा।

0: भोळ्या शंकरा, हे भोळ्या शंकरा, त्रिशूळ डमरू हाती, संगणाचे पार्वती हो, हो।
1: बाबा बर्फानी की प्रथम पूजा हो चुकी है, अब यात्रा का श्री गणेश होना है। बता दें कि इस बार अमरनाथ यात्रा करीब 2 महीने तक चलने वाली है। अमरनाथ यात्रा 2026 की शुरुआत 3 जुलाई से हो रही है और यात्रा का समापन श्रावण पूर्णिमा रक्षाबंधन के दिन यानी 28 अगस्त को होगा। चूंकि अब पहले जत्थे की रवानगी में कुछ ही घंटे बचे हैं, सो देश भर के श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए कश्मीर में जुटने लगे हैं। यात्रियों के लिए श्रीनगर के पंथा चौक में ट्रांजिट कैंप बनाया गया है।
2: अमरनाथ यात्रा को लेकर के 3 जुलाई से जो पहला जत्था सीधे अमरनाथ गुफा तक पहुंचेगा, उसके लिए जम्मू से जो कॉन्वाय यहां पर चलेगा उसके लिए पूरी तैयारियां यहां श्रीनगर में भी की गई हैं। मैं इस वक्त पंथा चौक पर मौजूद हूं और आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लोगों की संख्या यहां भारी संख्या में मौजूद है और लोग जो है ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहां पर जुट रहे हैं। ये सारा ट्रांजिट कैंप बनाया गया है और इस ट्रांजिट कैंप में किस तरीके से लोग यहाँ भारी संख्या में मौजूद हैं, ये आपको दिखा रहे हैं। दूसरा, तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग इतनी संख्या में आज से ही जुटने लगे हैं। पहला जत्था जो है वो सुबह सुबह 3 जुलाई को बालटाल से रवाना होगा, साथ ही पहलगाम रूट जो है वहां से भी रवाना होगा। अगर इस ट्रांजिट कैंप की बात करें तो यहां पर सिक्योरिटी के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। सीआरपीएफ, आप देख रहे हैं कि यहां सीआरपीएफ के कमांडोज भी मौजूद हैं। इसके साथ साथ यहां पर जो श्रद्धालु हैं उनकी संख्या आप देख करके ये पता चल जाएगा कि किस तरीके से यहां पर लोगों में इस वक्त उत्साह है, क्योंकि लोग यही चाहते हैं कि जो पहली यात्रा है और जो शुरुआत हो रही है 3 तारीख से, उसमें सारे लोग भारी से भारी संख्या में पहुंचे।
1: वैसे तो 15 अप्रैल से ही अमरनाथ यात्रा का रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया गया था, लेकिन ट्रांजिट कैंप में भी रजिस्ट्रेशन काउंटर्स बनाए गए हैं ताकि जो तीर्थयात्री पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो। ट्रांजिट कैंप में करंट यानी तत्काल टोकन और रजिस्ट्रेशन के लिए शिव भक्तों का तांता लगा है। इसी तरह तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए कैंप में EKYC और RFID कार्ड काउंटर भी बनाए गए हैं।
2: कड़ी सुरक्षा के बीच अमरनाथ यात्रा की शुरुआत 3 जुलाई से पहला जत्था पवित्र अमरनाथ गुफा तक पहुंचेगा। मैं इस वक्त पंथा चौक ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूं और यहां पर आपको तस्वीरों में दिखाएंगे कि इस बार सरकार के द्वारा ये व्यवस्था की गई है कि RFID ऑन द स्पॉट भी लोग ले सकते हैं। इसके साथ साथ जिन लोगों ने पहले से रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है उनको भी वह RFID और इसके साथ साथ QR कोड आधारित उनकी जो सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ।
3: सनातन धर्म में अमरनाथ यात्रा का बेहद महत्व है, इसी के चलते हर साल लाखों श्रद्धालु इस पावन यात्रा पर जाते हैं और शायद यही वजह है कि हर साल आतंकियों की बुरी नजर इस यात्रा पर रहती है। लेकिन आतंकी चाहे लाख कोशिश कर ले, लेकिन सुरक्षा बलों की चाक चौबंद तैयारियों के बीच वो अपने मंसूबों में कभी कामयाब नहीं हो पाते। इस बार भी अमरनाथ यात्रा के रूट पर सुरक्षा का बेहद कड़ा बंदोबस्त है। यात्रा के दौरान रूट मार्ग पर CRPF, BSF और जम्मू कश्मीर पुलिस के अलावा ITBP की भी तैनाती की गई है। इसके अलावा पूरे मार्ग पर CCTV कैमरा और ड्रोन के जरिए कड़ी निगरानी भी रखी जाएगी। यानी इस साल यात्रा में न केवल सुविधाएं बेहतर होंगी बल्कि सुरक्षा भी अभूतपूर्व है।
4: जल्दी से जल्दी।

0: मान्यता है कि अमरनाथ गुफा वही पवित्र स्थान है जहां भगवान शिव ने माँ पार्वती को अमरता की रहस्य कथा सुनाई थी। यही वजह है कि बेहद मुश्किल भरा और दुर्गम रास्ता होने के बावजूद श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा पर जाना चाहते हैं। अब की बार भी भक्तों का जोश हाई है, तो वहीं प्रशासन ने भी यात्रा को सकुशल संपन्न करवाने की पूरी तैयारी कर रखी है। इस बार अमरनाथ यात्रा के दौरान सुविधाएं बढ़ाई गई हैं और कुछ नए नियम भी लागू किए गए हैं। अगर आप भी इस साल बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जा रहे हैं तो पहले जान लीजिए कि इस बार यात्रा में क्या बदला है और किन नियमों का पालन करना जरूरी है। अगर यात्रा के दौरान सुविधाओं की बात करें तो इस बार बालटाल से पवित्र गुफा तक पूरे रास्ते पर बिजली और लाइट की व्यवस्था की गई है ताकि खराब मौसम या रात के समय भी श्रद्धालुओं को परेशानी न हो। ट्रैकिंग रूट को भी पहले से बेहतर बनाया गया है जिससे कठिन चढ़ाई कुछ आसान हो सके। यात्रियों की सुविधा के लिए पोनी, पालकी और पोर्टर की प्रीपेड बुकिंग शुरू की गई है, यानी अब तय किराए पर ही ये सेवाएं मिलेंगी। रहने की व्यवस्था भी पहले से बेहतर हुई है। बालटार, नुनवान, श्रीनगर और चंदरकोट के यात्री निवासों का विस्तार किया गया है। वहीं जम्मू में बने नए सेंटर में करीब 4000 भक्तों को ठहरने की व्यवस्था भी की गई है। अगर कोई श्रद्धालु ज्यादा थक गया है, बीमार है या फिर किसी कारणवश रुकना पड़ रहा है तो यहाँ पर आराम कर सकता है। ये पूरी तरह से निशुल्क होगा। जम्मू के तवी रिवर फ्रंट पर बने नए इंटीग्रेटेड फैसिलिटेशन सेंटर में रजिस्ट्रेशन, मेडिकल जांच, हेल्थ सर्टिफिकेट और दस्तावेजों की जांच जैसी सभी जरूरी प्रक्रियाएं एक ही जगह पर पूरी की जा रही है। एक तरफ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं बढ़ाई गई हैं, तो वहीं सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। दरअसल पूरा सावन चलने वाली अमरनाथ यात्रा में यूं तो कई चुनौतियां होती हैं, लेकिन इनमें सबसे बड़ी चुनौती होती है यात्रियों की सुरक्षा, क्योंकि हर बार अमरनाथ यात्रा पर आतंकियों की बुरी नजर रहती है। लेकिन बाबा बर्फानी के प्रति लोगों की ऐसी आस्था है कि तमाम खतरों के बावजूद हर साल लाखों की संख्या में भक्त बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में देश की सुरक्षा एजेंसियां उन्हें सुरक्षित घर वापस भेजने की पूरी जिम्मेदारी उठाती हैं। इस बार भी आस्था के इस महाकुंभ में कोई खलल न पड़े, इसके लिए सुरक्षा बल पूरी तरह तैयार है। 670 से ज्यादा अर्धसैनिक बलों की कंपनियां सुरक्षा में तैनात की गई हैं। यात्रा मार्ग से लेकर बेस कैंप और हाईवे तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और भारतीय सेना के जवान दिन रात मोर्चे पर डटे हैं। बालटाल हो या पहलगाम, बाबा बर्फानी के धाम तक जाने वाला हर रास्ता एक अवैध किले में तब्दील कर दिया गया है। बम डिस्पोजर स्क्वाड और डॉग स्क्वाड को विशेष रूप से तैनात किया गया है। ये टीमें लगातार यात्रा मार्गों, टेंट्स और पार्किंग एरिया की तलाशी ले रही हैं।
1: जो स्मेल करते हैं और उसे डिटेक्ट करते हैं, कोई भी अगर सामान में कुछ भी होता है तो यहाँ जैसे आप देख पा रहे हैं कि सीधा पहले व्हीकल्स आती हैं। व्हीकल्स आने के बाद एक तो हमारे पास DSMD होता है और एक दूसरा डॉग होता है। तो डॉग जो है स्मेल करता है और कुछ भी अगर संदिग्ध वस्तु अगर पाई जाती है तो वो तुरंत डिटेक्ट कर लेता है। और साथ में उसी के साथ में हमारे BDDS का जो HSMD होता है वो भी एक टूल होता है, अगर कुछ भी होता है तो वो डिटेक्ट करने में हेल्पफुल रहता है।
0: इसके साथ ही सुरक्षा ग्रिड को मजबूत करने के लिए टेक्नोलॉजी का भी खूब इस्तेमाल हो रहा है। जमीन से लेकर आसमान तक कड़ा पहरा है। घने जंगल और दुर्गम रास्तों की निगरानी ड्रोन के जरिए की जा रही है। आखिरी समय में इन तमाम सिक्योरिटी इंतजामों का मुआयना करने के लिए फिलहाल जम्मू कश्मीर पुलिस महकमा ग्राउंड जीरो पर नजर आ रहा है। बुधवार सुबह से ही जम्मू कश्मीर पुलिस के तमाम सीनियर ऑफिसर्स अलग अलग यात्रा डिस्ट्रिक्ट में सुरक्षा तैयारियों का जायजा लेते नजर आए।
2: यहाँ आज जम्मू कश्मीर पुलिस के जितने भी सीनियर ऑफिसर्स हैं, जो भी सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट है आज वो उसका मुआयना कर रहे हैं। इसका ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि कोई भी कमी पेशी होती है तो उसको लूप होल्स को प्लग करना और उसको और रिफाइन करना अपने रिस्पॉन्सेज के लिए। तो इसी लिहाज से ये जो है आज के जो काफ़ी अलग अलग मुख्तलिफ जो यात्रा डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ सीनियर अफसर सारे इंतजाम को फिर से देख रहे हैं ताकि उसकी अच्छे तरीके से सुपरविजन हो सके।
0: यानी चुनौती कोई भी हो, प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। मकसद सिर्फ एक, भोले के भक्तों की ये यात्रा सुरक्षित, सुगम और बिना किसी परेशानी के संपन्न हो। दरअसल शिव भक्तों के लिए अमरनाथ यात्रा एक ऐसी कठिन साधना है जिसे आप शिवत्व को साधने की सबसे कड़ी तपस्या कह सकते हैं, और इस तपस्या को निर्वाध पूरा करवाने के लिए देश की सिक्योरिटी फोर्सेज पूरे जी जान से जुटी हैं। जम्मू से सुनील जी भट्ट, श्रीनगर से अशरफ वानी और जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ पूरा रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: तो हजारों लोग अमरनाथ यात्रा पर निकल चुके हैं और हजारों जाने की तैयारियों में जुटे हैं। अब इसके बीच में उनका जो तीर्थ यात्रा पर जाने में या तो सक्षम नहीं है या किसी और वजह से चाहकर भी नहीं जा सकते, ठीक इसी तरह कई लोग चाहकर भी चारधाम यात्रा पर जा नहीं पाते। ऐसे लोगों के लिए वर्चुअल रियलिटी तकनीक की मदद से एक अनोखी सौगात तैयार की गई है। इसका नाम है दुर्लभ दर्शन। ये एक आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म है जिसमें 6D VR तकनीक के जरिए देश के प्रमुख मंदिरों के दर्शन का एक अनूठा अनुभव उपलब्ध करवाया जाता है। यानी दूर होकर भी आपको इस तकनीक के जरिए अपने आराध्य के पास होने का एहसास होगा। अभिनेता आशुतोष राणा को देश के पहले 6D मंदिर दर्शन सेवा तकनीक का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है।
4: हूं आशुतोष राणा और मैं आपको लेकर चल रहा हूं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या।
5: अब दुर्लभ मंदिरों के दर्शन भी सुलभ होंगे।
4: मन में तुलसी की सुगंध लिए हम अपने आराध्य प्रभु श्री राम के धाम की ओर चलते हैं।
5: घर बैठे ही तीर्थों की यात्रा होगी। देर तक निहार सकेंगे आराध्य।
4: उनके विग्रह या मूर्ति के समक्ष उपस्थित होते हैं तो
5: दूर रहकर भी गर्भगृह की पूजा में शामिल हो सकेंगे।
6: इसमें है 50 से ज्यादा तीर्थ यात्रा
5: और ये सब संभव है दुर्लभ दर्शन। दुर्लभ दर्शन एक ऐसा पिटारा जिसमें हर धाम समाया है
4: बल्कि अनुभूत भी कर सकते हैं।
5: भगवान समाये हैं एक खास एहसास के साथ।
4: आपके और परमात्मा के बीच में कोई नहीं, वहां पर घटित होने वाली समस्त क्रियाकलापों में आप सहभागी होंगे। ऐसी अनुभूति हमारी करवाने का मन था कि अगर मान लीजिए पानी गिर रहा है, अगर हमने जल चढ़ाया, जलाभिषेक किया तो पानी के छींटे हमारे ऊपर आते हैं तो वो भी आपको अनुभूत हो। अगर आपने उनको सुगंधिम पुष्टिवर्धनम की बात, अगर हम सुगंध उनको लगा रहे हैं अभिषेक करते समय तो सुगंध भी आपको महसूस होगी। यदि हवा की बात है तो हवा भी आपको महसूस होगी। तो इस तरीके से पूरा इस अनुभव को बिल्कुल एक जो दुर्लभ अनुभव है उसको सुलभ करने के लिए हमने ये किया।
5: लाखों असल में दुर्लभ दर्शन एक आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म जिसमें 6D VR तकनीक के जरिए देश के प्रमुख मंदिरों के दर्शन का एक अनूठा अनुभव उपलब्ध कराया जाता है। इसमें वर्चुअल रियलिटी के साथ साथ जल, वायु, सुगंध और पौराणिक कथाओं के मेल से साक्षात गर्भगृह में होने का एहसास कराया जाता है। यूँ कहिए कि यहाँ आस्था और तकनीक के मेल से एक सुंदर आध्यात्मिक वातावरण का निर्माण किया जाता है। यहाँ एक और भगवान राम और उनकी अयोध्या की कहानी है तो काशी विश्वनाथ का इतिहास भी है और माँ वैष्णो देवी की आरती थी। बस इसे आँखों पर लगाइए और यात्रा पर निकल पड़िए। अभिनेता आशुतोष राणा आपको धर्मस्थलों की कहानी सुनाते भी नजर आएंगे।
4: हमें तो अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए। क्यों होता है ऐसा? वो इसलिए कि जब हम भाव विभोर होकर भगवान के दर्शन।
5: फिलहाल ये सुविधा अयोध्या, काशी समेत देश के 11 प्रसिद्ध मंदिरों में उपलब्ध है, जहां आप सुकून से बैठकर अपने आराध्य देव को करीब से महसूस कर सकेंगे,
4: ध्यान में लीन हो सकते हैं। और यदि किसी कारणवश
5: अभिनेता आशुतोष

0: प्रदोष राणा को देश के पहले 6D मंदिर दर्शन सेवा तकनीक का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है।
1: 50 से अधिक तीर्थ यात्राएं और अनेक सिद्ध और दिव्य मंदिरों के दैनिक दर्शन कर सकते।
2: तो चलिए इसी के साथ जीएनटी स्पेशल की इस बेहद खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरें जारी हैं, देखते रहिए जीएनटी।
3: Hop on board and settle in for an easygoing cruise with sailing on TuneIn. Let the breeze roll in and the rhythm carry you along. Enjoy yacht rock classics from artists like Hall & Oates, Steely Dan, Loggins and Messina, and much more. Only smooth sailing ahead with songs that help you get away. Just search Sailing. Tell your device to play Sailing on TuneIn.
4: अच्छी खबर।
5: गुड न्यूज़ टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: बात करेंगे अब अल्फा मूवी की, जो इस शुक्रवार रिलीज होने जा रही है, लेकिन फिल्म को लेकर चर्चाओं का दौर लगातार जारी है। यहां तक कि फिल्म में आलिया के एक्शन की भी जबरदस्त तारीफ हो रही है, लेकिन अब फिल्म की स्टार कास्ट से जुड़ी एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक 100 करोड़ के मेगा बजट वाली इस फिल्म के लिए सबसे ज्यादा फीस आलिया ने ही ली है।
7: गीता आज लंका खुद जलाने आई। Hi boys.
8: पलक झपकते ही दुश्मन को धूल चटा देना, हाथों में बंदूक थामे बेखौफ दुश्मनों के बीच घुस जाना।
7: शुरू करो अग्नि परीक्षा।
8: आलिया भट्ट इस शुक्रवार सिल्वर स्क्रीन पर राज करने आ रही है। सामने आए अल्फा के ट्रेलर में आलिया पावर पैक एक्शन करती नजर आएंगी। हर पंच और हथियार चलाने का स्वैग ये बता रहा है कि पर्दे पर एक नए एक्शन स्टार का जन्म होने वाला है।
9: ये क्या है?
10: अल्फा।
9: अल्फा मतलब
10: सीक्रेट प्रोग्राम है, इंडिया के नेक्स्ट जनरेशन सोल्जर्स तैयार करने के लिए।
8: आलिया ने 2012 में स्टूडेंट ऑफ द ईयर जैसी ग्लैमरस और बेहद स्टाइलिश फिल्म से डेब्यू किया था, लेकिन अब बड़े पर्दे पर उनका एक अलग अवतार देखने को मिलेगा।
10: तो भी वही है हमारी इकलौती
9: अल्फा।
8: कल तक पर्दे पर अपनी मासूमियत, रोमांस और इमोशन से दर्शकों को रुलाने वाली आलिया अब अपनी रफ्तार और एक्शन से स्क्रीन पर कोहराम मचाने के लिए तैयार है।
10: इसकी माँ का नाम जानकी था, हम इसे सीता बुलावेंगे।
8: एक तरफ अल्फा में आलिया के एक्शन सीक्वेंस की चर्चा है, तो दूसरी तरफ फिल्म की स्टार कास्ट की फी को लेकर भी बाजार में चर्चाओं का दौर है।
7: वो धोखे से राज करता था और झूठ से जीतता था।
8: रिपोर्ट्स की मानी जाए तो 1000 करोड़ के बजट वाली इस मेगा स्टार फिल्म में आलिया ने सबसे ज्यादा फी चार्ज की है। दावा किया जा रहा है कि स्पाई थ्रिलर फिल्म के लिए आलिया भट्ट ने तकरीबन 25 करोड़ रुपए की भारी भरकम फी चार्ज की है, यानी फिल्म के पूरे बजट का 1/4 हिस्सा सिर्फ और सिर्फ आलिया के नाम रहा, जबकि आलिया की को स्टार शर्वरी ने 3 करोड़ रुपए की फी चार्ज की है। दूसरी तरफ बॉबी देओल फिल्म में विलेन के रोल में नजर आने वाले हैं और उन्हें इसके लिए करीब 6 करोड़ रुपए मिले हैं। वहीं फिल्म में एक अहम भूमिका निभाने वाले अनिल कपूर को भी तकरीबन 6 करोड़ रुपए मिले हैं। बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर फिल्में देने के बाद आलिया आज बॉलीवुड की सबसे भरोसेमंद फीमेल स्टार्स में से एक हो चुकी है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं है कि आलिया के ही कंधों पर इस 100 करोड़ बजट वाली फिल्म का भार है।
9: It really means a lot to me.
10: चौथीसवां फ्लोर, 3418।
9: मैं समझी नहीं बाबा, वहाँ करना क्या है?
10: वही जिसके लिए मैंने तुझे ट्रेनिंग दी है।
8: अब देखना यह है कि 25 करोड़ की फी लेने वाली अल्फा गर्ल आलिया इस शुक्रवार बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ की कमाई कर पाती है।

0: दुनिया में सिर्फ दो तरह के लोग होते हैं, वुल्फ और शीप। मैं वुल्फ हूँ। तो क्या है?
1: वुल्फ की बेटी वुल्फ ही होती है सर।
2: ब्यूरो रिपोर्ट गुड यस्टरडे। चलिए आपको देवभूमि उत्तराखंड लिए चलते हैं, जहां चमोली जिले में मौजूद फूलों की घाटी इन दिनों गुलजार है मनमोहक खूबसूरत फूलों से। बड़ी बात यह है कि इस बार यहां रिकॉर्ड संख्या में लोग भी पहुंचे हैं इसका दीदार करने के लिए। अब तक 7294 लोग फूलों की घाटी की सुंदरता का दीदार कर चुके हैं।

0: पहाड़ों के बीच फैली हरियाली, बादलों से बातें करती वादियाँ, और जहाँ तक नजर जाए वहाँ तक रंग बिरंगे फूलों की दुनिया। ये नज़ारा किसी कल्पना का नहीं बल्कि चमोली की विश्व धरोहर फूलों की घाटी का है। हर साल मॉनसून के साथ यहाँ प्रकृति अपनी सबसे खूबसूरत तस्वीर पेश करती है। इस बार भी घाटी ने अपने रंग बिखेरने शुरू किए तो लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है। फूलों की घाटी में 1 जून को पर्यटकों के लिए प्रवेश शुरू हुआ था। अभी सिर्फ 1 महीना ही बीता है लेकिन यहाँ आने वालों की संख्या ने सभी पुराने आंकड़े पीछे छोड़ दिए हैं। अब तक 7,294 लोग घाटी की प्राकृतिक सुंदरता का दीदार कर चुके हैं। इनमें 34 विदेशी पर्यटक भी शामिल हैं। वन विभाग का कहना है कि सीजन की शुरुआत इतनी शानदार पहले बहुत कम देखने को मिली है। अगर पिछले साल से तुलना करें तो अंतर साफ दिखाई देता है। बीते साल इसी महीने में 3,893 पर्यटक पहुँचे थे, यानी इस बार शुरुआती 1 महीने में ही करीब 1.5 गुना अधिक लोग यहां पहुंचे हैं। यही वजह है कि वन विभाग को इस पूरे सीजन में रिकॉर्ड संख्या की उम्मीद दिखाई दे रही है। अभी तो ये केवल शुरुआत है। फूलों की घाटी का असली आकर्षण 15 जुलाई से 15 अगस्त के बीच दिखाई देता है। इसी समय सबसे अधिक प्रजातियों के फूल एक साथ खिलते हैं। चारों ओर रंगों का ऐसा संसार बन जाता है जिसे देखने के लिए देश विदेश से प्रकृति प्रेमी यहाँ पहुँचते हैं। फूलों की घाटी की सबसे खास बात ये है कि यहाँ केवल एक तरह के फूल नहीं खिलते। इस पूरी घाटी में करीब 500 प्रजातियों के फूल पाए जाते हैं। हर 15 दिन बाद नई किस्में खिलती हैं और पहले वाले धीरे धीरे विदा हो जाते हैं। यही वजह है कि यहाँ का नज़ारा लगातार बदलता रहता है। यही बदलता रूप इस जगह को दुनिया की सबसे खास प्राकृतिक धरोहर में शामिल करता है। जैसे जैसे जुलाई का ये महीना आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ये पूरी घाटी और अधिक रंगों से भरती जाएगी। आने वाले दिनों में यहाँ प्रकृति का सबसे मनोहरी रूप दिखाई देगा। यही वजह है कि फूलों की घाटी केवल एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि धरती पर सजे उस जीवन कैनवस का नाम है जहाँ हर मौसम नई तस्वीर बनाता है। चमोली से कमल नैन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: Looking for even more of the audio you love? Upgrade to TuneIn Premium to remove ads like this one and score more of the content you love. That's more curated news.
3: If one party is saying we will never raise taxes, even on millionaires and billionaires.
2: More top sports.
4: And he's gonna go! There's the tying goal!
2: And everything in between.
4: The game is over!
2: Upgrade now for the premium listening experience.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: बाबा बर्फानी के दर्शन की आई शुभ घड़ी, शिव भक्तों का जोश आए गहन सुरक्षा के बीच अमरनाथ यात्रा के लिए तैयार पहला जत्था। आर्थिक मोर्चे पर देश के लिए गुड न्यूज, जून में 1,94,000 करोड़ जीएसटी कलेक्शन, पिछले साल से 14% ज्यादा, इंपोर्ट से होने वाली कमाई बढ़ी। पहाड़ों पर मॉनसून का दिखने लगा असर, रुद्रप्रयाग में लगातार हो रही है बारिश से अलकनंदा नदी का बड़ा जलस्तर, नदी के किनारे बनी भगवान शिव की मूर्ति तक पहुंचा पानी। बद्रीनाथ में भगवान विष्णु के भक्तों ने अब तक के सारे रिकॉर्ड्स किए ध्वस्त, 14,00,000 से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन, हर रोज 15,000 से 20,000 श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। केंद्रीय कैबिनेट की दिल्ली और उत्तर प्रदेश को 14,000 करोड़ से ज्यादा की सड़क परियोजनाओं को मिली मंजूरी, दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ेगी 6 लेन वाली टनल, वहीं कानपुर से करबई के बीच बनेगा एक्सेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड हाईवे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
6: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा, फैक्ट चेक में आपका स्वागत है। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां, झूठे दावे बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है तो कभी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर पेश किया जाता है। लोग बिना जांचे पर खेले सच मान लेते हैं क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं है। हर किसी के हाथ में कैमरा है, हर घटना हर तस्वीर कुछ ही सेकेंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाती है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नहीं बताकर पेश की जाती है, किसी वीडियो को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है ताकि कहानी असलियत से कोसों दूर लगे। लोग बिना जांच समझे इन्हें सच मान लेते हैं, उन्हें लगातार शेयर करते हैं। लेकिन फैक्ट चेक के जरिए हम हर तस्वीर हर वीडियो की पड़ताल करते हैं, हर तस्वीर और हर वीडियो के पीछे की सच्चाई आप तक लेकर आते ताकि आपको सही और सटीक जानकारी मिले। तो फैक्ट चेक में आज जिन दो खबरों की पड़ताल हम करेंगे उसमें सबसे पहले सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो की बात होगी जिसके जरिए दावा यह किया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में गौ रक्षकों को उम्र कैद की सजा सुनाए जाने के विरोध में हुए वकीलों के प्रदर्शन का वीडियो है। सच्चाई क्या है आगे जानिए। हमारी अगली खबर उस वायरल वीडियो से जुड़ी होगी जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि बिल्डिंग ढहने का ये वीडियो वेनेजुएला में आए हालिया भूकंप से संबंधित है। अब इस दावे की सच्चाई क्या है आगे पड़ताल करेंगे। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
6: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो को शेयर करते हुए कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में गौ रक्षकों को उम्र कैद की सजा सुनाए जाने के विरोध में हुए वकीलों के प्रदर्शन का वीडियो है। वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती रिपोर्ट।

0: किसी बड़ी सी इमारत के परिसर में इकट्ठा सैकड़ों वकीलों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर यह कहते हुए शेयर किया जा रहा है कि लोगों ने मध्य प्रदेश में गौ रक्षकों को आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने के विरोध में प्रदर्शन किया। दरअसल नर्मदापुर मध्य प्रदेश के सेशन कोर्ट ने 12 जून को 14 गौ रक्षकों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी और इसके बाद से ही देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। इसी संदर्भ में वकीलों वाला वीडियो भी वायरल हो रहा है। एक थ्रेड्स यूजर ने इसे शेयर करते हुए लिखा है, धन्यवाद आपको देश की न्यायपालिका, 5000 वकीलों ने 14 गौ सेवकों को दिया समर्थन, जल्द जमानत होगी। कुछ लोग तो इस वीडियो को शेयर करते हुए यहां तक दावा कर रहे हैं कि गौ रक्षकों के समर्थन में 5000 वकीलों ने प्रदर्शन किया। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में गौ रक्षकों को उम्र कैद की सजा सुनाए जाने के बाद वकीलों के प्रदर्शन का वीडियो है और वीडियो में किसी बड़ी सी इमारत के परिसर में सैकड़ों वकीलों को इकट्ठा देखा भी जा सकता है। साथ ही साथ इस दौरान कुछ वकीलों को वीडियो रिकॉर्ड करते हुए भी देखा गया। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। ऐसे में इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमारा ध्यान वीडियो में नजर आ रही बिल्डिंग पर गया। जब हमने इसे गौर से देखा और फिर इस इमारत के बारे में सर्च किया तो यह जानकारी सामने आई कि बिल्डिंग लखनऊ हाईकोर्ट की है। इसके बाद फैक्ट चेक टीम ने यह जानने की भी कोशिश की कि क्या लखनऊ में वकीलों ने गौ रक्षकों को उम्र कैद सुनाए जाने को लेकर कोई प्रदर्शन किया है, लेकिन सर्च के दौरान ऐसी कोई प्रमाणिक रिपोर्ट नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके। क्योंकि अगर वाकई ऐसा हुआ होता तो ये कहीं ना कहीं खबर जरूर बनती, किसी मीडिया आउटलेट्स में भी जरूर यह आती। लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा। हमारा पहला सवाल यही था कि क्या लखनऊ हाईकोर्ट में सैकड़ों वकील जमा हुए तो क्यों हुए। दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा। सच और झूठ क्या है, इस रिपोर्ट में जानिए। इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वीडियो की जांच में जुटी। वायरल वीडियो को गौ रक्षकों से जुड़ा प्रदर्शन बताने वाले एक पोस्ट में हमें एक इंस्टाग्राम अकाउंट के हैंडल का वाटरमार्क दिखा। इस जानकारी की मदद से सर्च करने पर हमें पता चला कि इस हैंडल से वायरल वीडियो 25 मई को शेयर किया गया था। इस पोस्ट में वीडियो की लोकेशन लखनऊ हाईकोर्ट बताई गई थी। सर्च के दौरान ये भी जानकारी सामने आई कि वीडियो लखनऊ हाईकोर्ट गोमती नगर का है और बार काउंसिल ऑफ यूपी के चुनाव से संबंधित है। ये वीडियो मार्च 2026 में बनाया गया। वीडियो में कुछ लोग नंबरों वाली तख्तियां पकड़े नजर आ रहे हैं। ये वो नंबर्स हैं जो प्रत्याशियों को अलॉट किए जाते हैं। लखनऊ हाईकोर्ट में हाल फिलहाल में गौ रक्षकों के मामले को लेकर वकीलों का कोई प्रदर्शन नहीं हुआ। साफ है कि लखनऊ का एक पुराना वीडियो अब मध्य प्रदेश के गौ रक्षकों को मिली सजा के विरोध में हो रहे प्रदर्शन का बताकर शेयर किया जा रहा है। ज्योति द्विवेदी के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा ये कर रहे हैं कि बिल्डिंग ढहने का ये वीडियो है वेनेजुएला में आए हालिया भूकंप का। वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती रिपोर्ट।
2: हाल ही में वेनेजुएला की राजधानी कराकास में कुछ ही सेकंड्स के अंतराल पर दो बड़े भूकंप आए। पहला भूकंप 7.2 तीव्रता का था और दूसरा 7.5 तीव्रता का था। वेनेजुएला प्रशासन के अनुसार इस भूकंप में कई लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 700 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार ये साल 1900 से लेकर अब तक का सबसे भीषण भूकंप है। इन सब के बीच सोशल मीडिया पर बिल्डिंग ढहने का ये वीडियो इस दावे के साथ शेयर किया जा रहा है कि ये वेनेजुएला में आए हालिया भूकंप का दृश्य है। वायरल वीडियो करीब 9 सेकंड्स का है जिसमें एक बहुमंजिला इमारत ताश के पत्तों की तरह ढहती हुई नजर आई। इस दौरान यहाँ मौजूद लोग भागते हुए भी नजर आ रहे हैं। एक एक्स यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि 126 साल में सबसे खतरनाक भूकंप, वेनेजुएला के भूकंप में कम से कम 10,000 की मौत। यूएसजीएस का चौंकाने वाला दावा। वेनेजुएला के भूकंप में कम से कम 10,000 लोगों की मौत की खबर निकलकर सामने आई है। यूएसजीएस का चौंकाने वाला दावा किया गया है। कराकास एयरपोर्ट भी इस भूकंप से तबाह हो गया है। वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानने बगैर लोग इस वीडियो को धड़ल्ले से शेयर कर रहे हैं।
1: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में एक बहुमंजिला इमारत ताश के पत्तों की तरह ढहती हुई नजर आ रही है। इस दौरान वहां मौजूद लोग भागते हुए दिख रहे हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है और यूजर्स इसे वेनेजुएला में आए हालिया भूकंप का बता रहे हैं। ऐसे में इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो फैक्ट चेक टीम ने वायरल वीडियो की पड़ताल शुरू की। वेनेजुएला में पिछले हफ्ते आए दो भूकंपों ने तबाही का ऐसा मंजर पैदा किया जिसकी कल्पना वाकई डराने वाली है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी के सैटेलाइट डेटा पर आधारित एक शुरुआती आंकलन से पता चलता है कि एक प्राकृतिक आपदा में देश की 58,000 से ज्यादा इमारतें पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो गए, उन्हें भारी नुकसान पहुंचा। सदी के सबसे भीषण भूकंप ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। ऐसे में वायरल हो रहे इस वीडियो की जांच करना जरूरी हो गया था। दावे की सच्चाई जानने के लिए सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो को हमने गौर से देखा और सुना। इस दौरान हमारा ध्यान वीडियो में आ रही कुछ आवाजों पर गया। हमने इसे गौर से सुना। बैकग्राउंड में जो आवाजें आ रही हैं वो स्पेनिश या फिर अंग्रेजी नहीं है, ये कोई और ही भाषा है, क्योंकि अगर वेनेजुएला का ये वीडियो होता तो फिर जाहिर सी बात है वहां स्पेनिश या फिर अंग्रेजी सुनाई देती, लेकिन यहां पर कोई और भाषा सुनने को मिल रही है। मतलब ये कि वायरल वीडियो कहीं और का हो सकता है। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई विश्वसनीय रिपोर्ट भी नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके, लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा। पहला सवाल यही कि वायरल हो रहा वीडियो कब का है और कहां का है। हमारा अगला सवाल कि कहीं जानबूझकर किसी पुराने वीडियो को हालिया वेनेजुएला भूकंप से जोड़कर वायरल तो नहीं किया जा रहा, सच और झूठ क्या है इस रिपोर्ट में जानिए।
2: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक की टीम वीडियो की जांच में जुटी। सबसे पहले हमने वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को गौर से देखा, सर्च किया। इस दौरान हमें ये वीडियो एक अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी के YouTube अकाउंट से 6 फरवरी 2023 को अपलोड किया गया मिला। वीडियो के साथ मौजूद कैप्शन के अनुसार तुर्की के सान डियोरफा प्रांत के हालिलियो जिले में आए 7.8 तीव्रता के भीषण भूकंप के बाद एक इमारत ढह गई थी और इसका दृश्य स्थानीय टीवी के जारी किए गए वीडियो फुटेज में भी दिखाई दिया। इसके अलावा हमें एक आधिकारिक वेबसाइट पर भी 6 फरवरी 2023 को अपलोड किया गया ये वीडियो मिला, जिसमें इसे 2023 में तुर्की में आए भूकंप के दौरान हालिलिये जिले में बिल्डिंग ढहने का बताया गया था। जांच में हमें इसी घटना का दूसरा एंगल से लिया गया वीडियो एक पत्रकार के एक्स अकाउंट से भी 6 फरवरी 2023 को अपलोड किया गया मिला। साथ ही इसी पोस्ट के रिप्लाई सेक्शन में वायरल वीडियो भी मौजूद था। दरअसल 6 फरवरी 2023 को दक्षिणी तुर्की में 9 घंटे के भीतर 7.7 और 7.6 तीव्रता के दो बड़े भूकंप आए, जिसके बाद 20 फरवरी को एक और भयंकर झटका महसूस किया गया था। इस आपदा में कई लोगों की मौत हो गई थी। हमारी जांच में मिले साक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि वेनेजुएला में आए हालिया भूकंप का बताकर वायरल हो रहा यह वीडियो असल में 3 साल पहले तुर्की में आए भूकंप का है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: फैक्ट चेक में फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के उस पर आपको ले चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे तमाम ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला।
4: Tune in's how to. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
5: TuneIn has got your favorite podcast. From sports to special interests. Did you know that you can listen to all your favorites offline? It's simple. Just head to any podcast page, tap the 3 little dots next to the episode title, and hit download. Whether it's true crime, lifestyle, health, and science, or anything else, stream your favorite podcasts and listen to them anytime, anywhere.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला।
1: फैक्ट चेक के आखिरी सफर का, जहां आपको दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हैं।
2: सोशल मीडिया पर एक बहुत क्यूट और दिल छू लेने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें ट्रेन में टिकट चेकिंग के दौरान एक टीटीई और नन्ही बच्ची के बीच मजेदार बातचीत देखने को मिल रही है।
6: टिकट किधर है? टिकट नहीं है। पैसा दीजिए, पर्ची लिखना है, पैसा दो।
2: वीडियो में टीटीई जब बच्ची से टिकट मांगता है तो वो अपने मासूम अंदाज में टिकट दिखाने से साफ मना कर देती है।
6: टिकट नहीं है ना? हाँ पैसा है, पूछो पापा मां को, पूछो पैसा, पूछो पैसा, पूछो।
2: इसके बाद टीटी मजाक में पैसे मांगता है, जिस पर बच्ची के बेबाक और प्यारे जवाब सुनकर आसपास बैठे यात्री भी मुस्कुराने लगते हैं। बच्ची की मासूमियत, आत्मविश्वास और चुलबुले अंदाज ने लाखों लोगों का दिल जीत लिया है।
6: आपको पापा का नाम क्या? मम्मा का नाम? आपका नाम? टिकट नहीं है।
2: इस नाम नहीं है, बार बार देख रहे हैं और कॉमेंट कर रहे हैं, बच्ची की खूब तारीफ भी कर रहे हैं।
6: टिकट नहीं है। पैसा दीजिए, पर्ची लिखना, पैसा दे। हाँ पैसा, वो पर्ची लिखता हूँ मैंने। टिकट नहीं है ना? हाँ पैसा है, पूछो पापा माँ को, पूछो पैसा, पूछो पैसा, पूछो पर्ची लिखने के लिए।
7: पैसे देने?
6: टिकट नहीं है इनको।
7: टिकट नहीं है?
6: टिकट नहीं है। दस रुपए दीजिए।
2: भाई बहन के प्यार से जुड़ा ये प्यारा सा वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रहा है। वीडियो में एक छोटी बच्ची अपने भाई के साथ हल्की फुल्की नोकझोंक करती हुई नजर आ रही है, लेकिन कुछ ही क्षण बाद वो अचानक उसकी ओर दौड़ती है और उसे प्यार से गले लगा लेती है। नन्ही बच्ची के इस मासूम और स्नेह भरे हाव भाव ने पल भर में माहौल को बदल दिया और दोनों के बीच का प्यार साफ झलकने लगा। ये भावुक दृश्य इंटरनेट पर लोगों को खूब पसंद आ रहा है और कई यूजर्स इसे भाई बहन के अटूट रिश्ते की खूबसूरत मिसाल भी बता रहे हैं। वीडियो को देखने के बाद लोग बच्ची की भावनात्मक समझ और उसके मासूम दिल की जमकर सराहना कर रहे हैं। कई लोगों का मानना है कि प्यार और अपनापन छोटी मोटी नाराजगी को भी आसानी से दूर कर सकते हैं। वीडियो इतना क्यूट है कि लोग इसे एक बार नहीं बल्कि बार बार देख रहे हैं। यही वजह है कि ये क्लिप सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है और यूजर्स इसके दीवाने बने हुए हैं। वीडियो में एक बहुत प्यारी और छोटी सी बच्ची दिखाई दे रही है, वो बड़े ही आत्मविश्वास के साथ टैं टैं टू टू टी टी गा रही है।

उसकी तोतली आवाज और उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस इतने ज्यादा मजेदार हैं कि कोई भी शख्स अपना तनाव भूल सकता है। बच्ची जिस तरह से अपनी आंखों को घुमाकर और चेहरे पर अलग अलग भाव लाकर गा रही है, ये इसके क्यूट एक्सप्रेशंस ही हैं जो इस वीडियो को इतना खास बना रहे हैं। जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स खासकर इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अपलोड हुआ, लोगों ने इसे हाथों हाथ लिया। वीडियो पर लाखों की संख्या में व्यूज और लाइक्स आ चुके हैं। लोग कमेंट्स में बच्ची की मासूमियत की खूब तारीफ कर रहे हैं।

0: सोशल मीडिया पर एक बच्चे और पुलिस डॉग की ये प्यारी मुलाकात लोगों का दिल जीत रही है। वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक मासूम बच्चा पुलिस K9 डॉग के पास पहुंचा तो किसी ने नहीं सोचा था कि इतना प्यारा पल देखने को मिल जाएगा। बच्चे की मासूम मुस्कान और कुत्ते की दोस्ताना प्रतिक्रिया ने वहां मौजूद सभी लोगों का दिल जीत लिया। ये वीडियो हमें याद दिलाता है कि प्यार, भरोसा और दोस्ती की कोई भाषा नहीं होती। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो छाया हुआ है जिसे देखकर लोग हैरान भी हैं और थोड़े डरे हुए भी हैं। दरअसल जिस खतरनाक जीप को देखकर बड़े बड़ों के पसीने छूट जाते हैं, एक छोटा सा बच्चा उसके साथ बड़े आराम से डॉक्टर खेलता हुआ नजर आ रहा है। ये जीप कोई पालतू कुत्ता या बिल्ली नहीं बल्कि मगरमच्छ है। बच्चे की इस निडरता को देखते हुए नेटिजंस दांतों तले उंगलियां दबा रहे हैं। ये हैरान कर देने वाला वीडियो कोलंबिया का बताया जा रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक छोटा सा बच्चा जमीन पर बैठे मगरमच्छ के पास बिल्कुल बेखौफ होकर बैठा है। बच्चा खुद को डॉक्टर समझकर उस जंगली जीव का इलाज करने का नाटक कर रहा है। वो कभी उसके शरीर को सहलाता है तो कभी उससे इंसानों की तरह बातें करने लग जाता है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि वो खतरनाक जीव भी पूरी तरह शांत लेटा हुआ है। उसने बच्चे को नुकसान पहुंचाने की एक भी कोशिश नहीं की, मानो वो सचमुच अपना इलाज करवा रहा हो। एक छात्र एग्जाम टाइम में मोबाइल से चीटिंग करते हुए पकड़ा जाता है। इसके बाद वो जो करता है उससे पूरे क्लासरूम में मौजूद बाकी छात्रों की भी पोल खुल जाती है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एग्जाम चल रहा होता है, इसी दौरान एक स्टूडेंट मोबाइल में चीटिंग करते हुए पकड़ा जाता है। टीचर उसका मोबाइल अपने कब्जे में ले लेती है और उसे क्लासरूम से बाहर जाने के लिए कहती है। जैसे ही टीचर छात्र को लेकर क्लास से बाहर निकलने लगती है, तभी छात्र अचानक क्लासरूम की सभी लाइटें बंद कर देता है। कमरे में अंधेरा हो जाता है। एक ऐसा नजारा दिखाई देता है जिसने सभी को चौंका दिया। अंधेरे में कई छात्रों के मोबाइल फोन की स्क्रीन चमकने लगती है, जिसे पता चल जाता है कि क्लास में मौजूद कई दूसरे छात्र भी मोबाइल की मदद से नकल कर रहे थे। इसकी वजह से पूरे क्लासरूम में चीटिंग कर रहे बाकी छात्रों की भी पोल खुल जाती है और यही वीडियो भी खत्म हो जाता है। पहाड़ों में घूमने के दौरान एक भारतीय शख्स ने अपनी चलती कार से प्लास्टिक की खाली बोतल को फेंक दिया। कार के पीछे बाइक पर चल रहे एक विदेशी पर्यटक को देश की इस खूबसूरत प्रकृति का ऐसा अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने तुरंत वो बोतल उठाई और कार सवार के पास जाकर बोतल वापस उसकी कार के अंदर फेंकते हुए उसे जमकर फटकार लगाई। वीडियो में साफ दिख रहा है कि विदेशी पर्यटक पहाड़ों की खूबसूरत इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचता देख बहुत गुस्से में था। उसने ठान लिया था वो इस लापरवाही को बिना टोके नहीं जाने देगा। इस वीडियो को यूजर्स बार बार देख रहे हैं, युवक के सिविक सेंस पर सवाल उठा रहे हैं। आमतौर पर जब कोई जानवर बाघ को सामने से देखता है तो वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसने लोगों को हैरान कर दिया। इस वीडियो में एक साधारण गाय बाघ के सामने डटकर खड़ी हो जाती है। इतना ही नहीं, गाय का हौसला देखकर खुद टाइगर को पीछे हटना पड़ता है। वीडियो देखने के बाद लोग यही कह रहे हैं कि शायद ऐसा नजारा पहले कभी देखने को नहीं मिला होगा। इंटरनेट पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग गाय की बहादुरी की जमकर तारीफ कर रहे हैं।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला।
2: किस तरह के बालों का स्टाइल जीवन में संघर्ष बढ़ा देता है? किस तरह के बालों के स्टाइल वाले लोग लापरवाह होते हैं? और अगर सर पर बाल ना हो या कम हो तो ये किस ग्रह का प्रभाव होता है? आपके बालों का, बालों के स्टाइल का आपके भाग्य से क्या है संबंध, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
3: Sports fans, TuneIn Premium is the ultimate playbook. From live play-by-play of the biggest leagues all season long.
4: Lee looks for someone, finds the right someone. Curry knocks it down. Tatum lines up the three and nails it.
3: To live sports talk radio to keep you in the game in between games.
5: Because people who all watch games, they hear the voice.
3: The sports action you crave comes alive with TuneIn Premium. Live games, fewer ads, endless action. Upgrade to Premium to get in the game.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
0: भारत की बेटियां अब सिर्फ खेल के मैदान में ही नहीं बल्कि खेलों के संचालन और फैसलों की सबसे बड़ी जिम्मेदारियों में भी नया इतिहास लिख रही हैं। उत्तर प्रदेश की मंजू नयाल ने कुछ ऐसा ही मुकाम हासिल किया है। मंजू नयाल ने वो उपलब्धि हासिल की है जिसे अब तक देश की कोई महिला हासिल नहीं कर पाई थी। वो भारत की पहली 3-स्टार इंटरनेशनल महिला कुरैश रेफरी बन गई हैं और इसी के साथ उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय खेल जगत में देश का नाम रोशन किया है।

0: भारत की बेटियां अब सिर्फ मेडल जीतकर ही नहीं बल्कि खेलों के सबसे अहम फैसले लेने वाली कुर्सी तक पहुंचकर भी इतिहास रच रही हैं। उत्तर प्रदेश के मंजू नयाल ने ऐसी उपलब्धि हासिल की है जो आज तक देश की कोई महिला हासिल नहीं कर सकी। मंजू नयाल भारत की पहली 3-स्टार इंटरनेशनल महिला कुराश रेफरी बन गई है। ये सिर्फ उनकी व्यक्तिगत सफलता नहीं बल्कि भारतीय खेल जगत के लिए भी गर्व का पल है।
1: मैम, देश की पहली 3-स्टार रेफरी कुराश गेम में, सुनकर कैसा लग रहा है? देश की पहली महिला रेफरी।
2: सर, बहुत अच्छा लग रहा है, प्राउड मोमेंट हो रही है कि देश की पहली महिला रेफरी बनी हूँ, तो काफ़ी लोगों की विशेस भी आ रही हैं और मतलब सपोर्ट भी मिला काफ़ी, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है पहली 3-स्टार रेफरी बन के कुराश की।
0: कामयाबी का यह शिखर रातों रात नहीं मिला। मंजू नयाल का यह सफर उनकी लगातार कोशिशों का नतीजा है। साल 2023 में नयाल 1-स्टार इंटरनेशनल कुराश रेफरी बनी। इसके बाद साल 2025 में उन्होंने 2-स्टार इंटरनेशनल रेफरी का दर्जा हासिल किया और अब इसी जून महीने में उज्बेकिस्तान में आयोजित बेहद कठिन अंतर्राष्ट्रीय रेफरी परीक्षा को पास करके मंजू ने 3-स्टार का वो मुकाम हासिल किया जहाँ आज तक कोई भारतीय महिला नहीं पहुँच सकी थी।
2: पहले स्टेट रेफरी का एग्जाम दिया कुराश के अंदर, फिर नेशनल रेफरी का, फिर अब इंटरनेशनल रेफरी में, तो फिर वही, फिर 1-स्टार, 2-स्टार, अब मैं 3-स्टार हो गई हूँ। तो ये बिग अचीवमेंट्स है इंडिया के अंदर। मैं अभी तक 3-स्टार रेफरी कोई वुमेन नहीं थी, 1st रेफरी मैं बनी हूँ इस बार, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है इस चीज के लिए।
0: आपको बता दें कि कुराश मध्य एशिया से जुड़ी एक प्राचीन और बेहद लोकप्रिय कुश्ती शैली है। कुराश आज दुनिया भर में लोकप्रिय हो चुका है। इसकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये 130 से अधिक देशों में खेला जाता है। कुराश की शुरुआत 3500 साल पहले उज्बेकिस्तान में हुई थी। इस खेल में दो खिलाड़ी एक दूसरे को पकड़कर पीठ के बल जमीन पर गिराने की कोशिश करते हैं। इसे 2018 के एशियाई खेलों में भी शामिल किया गया था जहां भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पदक जीते थे। मंजू नयाल ने अपने खेल करियर की शुरुआत जूडो से की थी लेकिन वक्त के साथ कुराश के प्रति उनकी दिलचस्पी बढ़ती गई और फिर उन्होंने खुद को पूरी तरह इसी खेल के लिए समर्पित कर दिया।
2: वैसे मैं जूडो में भी नेशनल रेफरी हूँ थी, तो वहाँ पर हमारे सर थे रवि कपूर सर, जो दिल्ली के जनरल सेक्रेटरी थे, तब उन्होंने स्विच करा कुराश के अंदर, तो अब उनका साथ था, उन्हें जानते थे दिल्ली के अंदर, बाकी को नहीं इतना हमारा वो था, जब उन्होंने स्विच करा तो उनके साथ साथ हमने कुराश में भी स्विच कर लिया था उन्हीं के उससे।
0: मंजू नयाल फिलहाल गाजियाबाद में गुरुकुल द स्कूल की शारीरिक शिक्षा विभाग की कोऑर्डिनेटर है और कई बड़े अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में रेफरी की भूमिका निभा चुकी है।
2: अभी तक मैं नोमाड्स गेम कजाकिस्तान में मैंने 2024 में एज ए रेफरी की भूमिका निभाई, फिर चिल्ड्रन एशियन गेम में युकोत्सव रशिया में 2024 में मैं ऑफिशिएटिंग करी वहाँ पर, 3rd एशियन यूथ बहरीन में भी मैं एज ए ऑफिशियल गई, उसके बाद अभी हमारा करंट जापान में ट्रायल इवेंट हुए थे उसके अंदर भी मैंने एज ए ऑफिशियल की भूमिका निभाई।
1: इस गेम का रेफरी होना है, किसी भी गेम का रेफरी होना, आपके हिसाब से कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, खासकर तब जब आप एक इंटरनेशनल स्टेज पर अपने देश को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं?
2: बहुत प्रेशर होता है, सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है, क्योंकि अगर आप दो कंट्री की बाउट करा रहे हो, उन दो कंट्रियों के बीच में उन दो कंट्रियों का रेफरी नहीं होता, तीसरी कंट्री का रेफरी होता है, तो वहाँ पे जजमेंट देना बहुत वो रहता है, बड़े दिमाग से देखना पड़ता है, एक एक जेस्चर देखना पड़ता है, कैसी लैंडिंग हुई है, किस पे हुई है, प्लेयर किस एरिया में जा रहा है, ये सारी चीज़ें हमें बहुत ध्यान से देखनी पड़ती है।
0: मंजू नयाल का लक्ष्य अब इसी साल सितंबर में होने जा रहे एशियन गेम्स में रेफरी के तौर पर भारत का प्रतिनिधित्व करने का है।
2: एशियन गेम्स जो अब सितंबर में होने वाले हैं 22 से, उसमें अभी हम दिल्ली इंडिया से गए थे और वहाँ ट्रायल इवेंट्स देखने गए थे कि क्या क्या कमियाँ हैं, क्या क्या होना वाला है, तो उसका एक रन थ्रू था वहाँ पर, तो वहाँ पे मैं एज ए इंडिया से रिप्रेजेंट करा था मैंने वहाँ पर, और काफ़ी चीज़ें वहाँ मुझे सीखने को भी मिली, बहुत सारी चीज़ें देखी, क्या कमियाँ थी, क्या है, ये सारी चीज़ें हम वहाँ देख के आए हैं, और अब हम सितंबर में अगर हुआ तो सितंबर में हम वहाँ जाएंगे।
0: खेल, शिक्षा, रेफरी और खेल प्रबंधन के क्षेत्र में मंजू नयाल को 22 सालों से भी ज्यादा समय का लंबा अनुभव है। साल 2003 से वो लगातार जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों को तैयार करने और खेल के विकास में जुटी हैं। थ्री स्टार रेफरी बनने के बाद अब मंजू नयाल की नजरें एक नए और बड़े लक्ष्य पर टिकी है। उनका अगला मिशन इसी साल सितंबर में होने जा रहे एशियन गेम्स में रेफरी के तौर पर भारत का प्रतिनिधित्व करना और देश का तिरंगा बुलंद करना है।
1: एक मैसेज जो हाउसवाइफ्स हैं या फिर वो महिलाएं जो रुक गई हैं, जो आपकी तरह दौड़ नहीं रही क्योंकि आप कभी रुकी नहीं, उनके लिए कोई मैसेज आपकी तरफ से?
2: हाँ, मैसेज ये है कि देखो, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, छोटी छोटी उपलब्धियां जो आप हासिल करोगे तो एक दिन अपने मकाम तक पहुंच जाओगे, मगर अगर आप छोटी छोटी चीज़ों को छोड़ते चले जाओगे, नहीं इसने ऐसे बोल दिया, इसने ऐसे कर दिया, फैमिली क्या कहेगी, हमारे रिलेटिव क्या कहेंगे, उसे नहीं सुनना है, आपको आगे बढ़ना है और बढ़ते रहना है। अगर आप एक बार रुक गए तो फिर रुक ही जाओगे।
1: विश यू ऑल द वेरी बेस्ट मैम। हम उम्मीद करते हैं कि आपने जिस तरह से एज अ प्लेयर हम सबका नाम रोशन किया उन दिनों में, अब आप जाकर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर देश का नाम रोशन करेंगी एज अ रेफरी। कैमरामैन शैलेन के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, गाजियाबाद।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: Need a good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you non-stop stand-up bits by the best comics in the game. From all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today.
5: और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी ना।
6: इस तरह के बालों का स्टाइल जीवन में संघर्ष बढ़ा देता है। किस तरह के बालों के स्टाइल वाले लोग लापरवाह होते हैं, और अगर सर पर बाल ना हो या कम हो तो ये किस ग्रह का प्रभाव होता है? आपके बालों का, बालों के स्टाइल का आपके भाग्य से क्या है संबंध, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
7: बाबा बर्फानी के दर्शन की आई शुभ घड़ी, शिव भक्तों का जोश आए गहन सुरक्षा के बीच, अमरनाथ यात्रा के लिए तैयार पहला जत्था। आर्थिक मोर्चे पर देश के लिए गुड न्यूज, जून में 1,94,000 करोड़ जीएसटी कलेक्शन, पिछले साल से 14% ज्यादा, इंपोर्ट से होने वाली कमाई बढ़ी। पहाड़ों पर मानसून का दिखने लगा असर, रुद्रप्रयाग में लगातार हो रही है बारिश से अलकनंदा नदी का बड़ा जलस्तर, नदी के किनारे बनी भगवान शिव की मूर्ति तक पहुंचा पानी। बद्रीनाथ में भगवान विष्णु के भक्तों ने अब तक के सारे रिकॉर्ड्स किए ध्वस्त, 14,00,000 से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन, हर रोज 15,000 से 20,000 श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। केंद्रीय कैबिनेट की दिल्ली और उत्तर प्रदेश को 14,000 करोड़ से ज्यादा की सड़क परियोजनाओं को मिली मंजूरी, दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेस वे को वसंत कुंज से जोड़ेगी 6 लेन वाली टनल, वहीं कानपुर से करबई के बीच बनेगा एक्सेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड हाईवे।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात अमरनाथ यात्रा की। अब से 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा का श्री गणेश होने जा रहा है। जम्मू कश्मीर में स्थित पवित्र श्री अमरनाथ गुफा से बाबा बर्फानी की पहली पूजा तो 29 जून को ही शुरू हो चुकी है, लेकिन अब आम भक्तों के लिए बाबा बर्फानी के साक्षात दर्शन का पावन अवसर भी आ पहुंचा है। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि यानी 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है। ये यात्रा करीब 2 महीनों तक चलेगी और 28 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन के दिन संपन्न हो जाएगी। हमेशा की तरह इस बार भी पवित्र गुफा में महादेव के दिव्य हिमलिंग का निर्माण हुआ है। श्रद्धालुओं में बाबा बर्फानी के दर्शन की खास उत्सुकता है और माना जा रहा है कि बड़ी तादाद में लोग अमरनाथ गुफा पहुंच सकते हैं, लिहाजा श्रद्धालुओं की सुविधा और सहूलियत के खास इंतजाम किए गए हैं। अब से कुछ ही घंटों में अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था रवाना होने वाला है।

0: बाबा बर्फानी के दर पर लगा भक्तों का मेला। अमरनाथ यात्रा मार्ग पर फिर हो रहा बम बम भोले का जय घोष। शिव भक्तों पर बरसेगी बाबा बर्फानी की कृपा।
1: हमें मन के अंदर इतनी खुशी है कि भोले बाबा मिल गए, एक स्टेप हमने पार कर लिया है और ये एक स्टेप पार कर किया है, भोले बाबा हमारा आगे का स्टेप भी पार करवाएंगे।
0: आस्था के शिखर पर गूंज रहे बाबा बर्फानी के जयकारे।

0: जमीन से 13,000 फीट की ऊंचाई पर बर्फ से लगदग अमरनाथ गुफा की खूबसूरत वादियाँ फिर से आस्था, भक्ति और विश्वास का पवित्र संगम बनने जा रही हैं। यूं तो इन वादियों का कण कण शिव शक्ति का ही स्वरूप है, लेकिन बाबा बर्फानी के इस दिव्य और दुर्लभ स्वरूप के दर्शन के लिए दूर दूर से भोले के भक्त खींचे चले आते हैं। शिव भक्ति में आकंठ डूबे महादेव की लगन में गाते गुनगुनाते अब की बार भी शिव के मतवालों का मजमा जुट चुका है।
1: ए भोला शंकरा।

0: शंकरा, हे भोळ्या शंकरा, त्रिशूळ डमरू हाती, संगणाचे पार्वती, हो हो।
1: बाबा बर्फानी की प्रथम पूजा हो चुकी है, अब यात्रा का श्री गणेश होना है। बता दें कि इस बार अमरनाथ यात्रा करीब 2 महीने तक चलने वाली है। अमरनाथ यात्रा 2026 की शुरुआत 3 जुलाई से हो रही है और यात्रा का समापन श्रावण पूर्णिमा रक्षाबंधन के दिन यानी 28 अगस्त को होगा। चूंकि अब पहले जत्थे की रवानगी में कुछ ही घंटे बचे हैं, सो देश भर के श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए कश्मीर में जुटने लगे हैं। यात्रियों के लिए श्रीनगर के पंथा चौक में ट्रांजिट कैंप बनाया गया है।
2: अमरनाथ यात्रा को लेकर के 3 जुलाई से जो पहला जत्था सीधे अमरनाथ गुफा तक पहुंचेगा, उसके लिए जम्मू से जो कॉन्वाय यहां पर चलेगा उसके लिए पूरी तैयारियां यहां श्रीनगर में भी की गई हैं। मैं इस वक्त पंथा चौक पर मौजूद हूं और आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लोगों की संख्या यहां भारी संख्या में मौजूद है और लोग जो है ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहां पर जुट रहे हैं। ये सारा ट्रांजिट कैंप बनाया गया है और इस ट्रांजिट कैंप में किस तरीके से लोग यहां भारी संख्या में मौजूद हैं, ये आपको दिखा रहे हैं। दूसरा, तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग इतनी संख्या में आज से ही जुटने लगे हैं। पहला जत्था जो है वो सुबह सुबह 3 जुलाई को बालटाल से रवाना होगा, साथ ही पहलगाम रूट जो है वहां से भी रवाना होगा। अगर इस ट्रांजिट कैंप की बात करें तो यहां पर सिक्योरिटी के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। सीआरपीएफ, आप देख रहे हैं कि यहां सीआरपीएफ के कमांडोज भी मौजूद हैं। इसके साथ साथ यहां पर जो श्रद्धालु हैं उनकी संख्या आप देख करके ये पता चल जाएगा कि किस तरीके से यहां पर लोगों में इस वक्त उत्साह है, क्योंकि लोग यही चाहते हैं कि जो पहली यात्रा है और जो शुरुआत हो रही है 3 तारीख से, उसमें सारे लोग भारी से भारी संख्या में पहुंचे।
1: वैसे तो 15 अप्रैल से ही अमरनाथ यात्रा का रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया गया था, लेकिन ट्रांजिट कैंप में भी रजिस्ट्रेशन काउंटर्स बनाए गए हैं ताकि जो तीर्थयात्री पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो। ट्रांजिट कैंप में करंट यानी तत्काल टोकन और रजिस्ट्रेशन के लिए शिव भक्तों का तांता लगा है। इसी तरह तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए कैंप में EKYC और RFID कार्ड काउंटर भी बनाए गए हैं।
2: कड़ी सुरक्षा के बीच अमरनाथ यात्रा की शुरुआत 3 जुलाई से पहला जत्था पवित्र अमरनाथ गुफा तक पहुंचेगा। मैं इस वक्त पंथा चौक ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूं और यहां पर आपको तस्वीरों में दिखाएंगे कि इस बार सरकार के द्वारा ये व्यवस्था की गई है कि RFID ऑन द स्पॉट भी लोग ले सकते हैं। इसके साथ साथ जिन लोगों ने पहले से रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है उनको भी वह RFID और इसके साथ साथ QR कोड आधारित उनकी जो सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ तमाम जो दस्तावेज हैं वो मिल सकती हैं। यहां पर आप देखिए कि RFID और इसके साथ साथ EKYC डेस्क और रजिस्ट्रेशन काउंटर भी यहां पर तैयार किया गया है। बहुत सारे लोग हैं यहां पर, इनसे बातचीत करते हैं कि RFID जो है इस बार ये व्यवस्था की गई है कि तत्काल जो है लोगों को अगर जरूरत है तो कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन करा के आए, क्या प्रक्रिया है यहां पर?
3: सर, तत्काल में इसमें आप डायरेक्टली आके यहाँ पे भी करवा सकते हैं, अपना जो भी रिपोर्ट्स है वो लेके आ सकते हैं आप, और यहाँ पे आके आपके EKYC हो जाता है और इमीडिएटली आपको RFID मिल जाता है। और जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन भी करवा रखा है, जैसे हमने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करवा रखा था, तो इमीडिएटली यहाँ आए हम, विद इन 1 मिनट में हमको RFID मिल गया था हमारा, देख के KYC।
4: सिक्योरिटीज वाइज भी बहुत अच्छी व्यवस्था है। जो हम निकले थे हमारे जर्नलिस्ट से तो कह रहे थे कि आपको सारी चीजों का ध्यान है, पर बहुत अच्छा वो व्यवस्था है और इजीली कोई कह रहा था कि RFID कार्ड में 2 घंटे 3 घंटे लग सकता है, हमें मैक्सिमम 10-15 मिनट में सारा काम इजीली होके निकल गया। व्यवस्था में कोई भी प्रॉब्लम ऐसा कुछ हमें लगा नहीं जो सुन के आए थे। जिस तरह से
2: RFID यहां पर जिन लोगों को दिया जा रहा है उसकी खास बात यह है उसमें एक नंबर दिया जा रहा है, उससे लोगों की ट्रैकिंग भी हो सकती है अगर उनको किसी भी तरीके से रास्ते में दिक्कत आती है या फिर वो कहीं पर रास्ता भटक जाते हैं तो उसकी भी दिक्कतों को पूरी तरीके से यहां पर देखा जाता है और उसके लिए पूरी व्यवस्था यहां पर की गई है। आप तस्वीरों में देखिए कि ये काउंटर जो बनाया गया है RFID के लिए, यहां पर लोग पहुंच रहे हैं। जिन लोगों को नया RFID बनवाना है या फिर रजिस्ट्रेशन यहीं पर आकर के उनको कराना है तत्काल रजिस्ट्रेशन के लिए, उसके लिए भी व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है वो EKYC डेस्क में जाकर के, जो श्रीनगर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इसकी व्यवस्था दी गई है, साथ ही रजिस्ट्रेशन काउंटर भी एक यहां पर तैयार किया गया है। ये आप देखिए कि इस रजिस्ट्रेशन काउंटर के जरिए भी लोग तुरंत ही रजिस्ट्रेशन करवा करके अपनी अमरनाथ यात्रा को कर सकते हैं।
1: सनातन धर्म में अमरनाथ यात्रा का बेहद महत्व है, इसी के चलते हर साल लाखों श्रद्धालु इस पावन यात्रा पर जाते हैं और शायद यही वजह है कि हर साल आतंकियों की बुरी नजर इस यात्रा पर रहती है। लेकिन आतंकी चाहे लाख कोशिश कर ले, लेकिन सुरक्षा बलों की चाक चौबंद तैयारियों के बीच वो अपने मंसूबों में कभी कामयाब नहीं हो पाते। इस बार भी अमरनाथ यात्रा के रूट पर सुरक्षा का बेहद कड़ा बंदोबस्त है। यात्रा के दौरान रूट मार्ग पर CRPF, BSF और जम्मू कश्मीर पुलिस के अलावा ITBP की भी तैनाती की गई है। इसके अलावा पूरे मार्ग पर CCTV कैमरा और ड्रोन के जरिए कड़ी निगरानी भी रखी जाएगी। यानी इस साल यात्रा में न केवल सुविधाएं बेहतर होंगी बल्कि सुरक्षा भी अभूतपूर्व है।

0: मान्यता है कि अमरनाथ गुफा वही पवित्र स्थान है जहां भगवान शिव ने माँ पार्वती को अमरता की रहस्य कथा सुनाई थी। यही वजह है कि बेहद मुश्किल भरा और दुर्गम रास्ता होने के बावजूद श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा पर जाना चाहते हैं। अब की बार भी भक्तों का जोश हाई है, तो वहीं प्रशासन ने भी यात्रा को सकुशल संपन्न करवाने की पूरी तैयारी कर रखी है। इस बार अमरनाथ यात्रा के दौरान सुविधाएं बढ़ाई गई हैं और कुछ नए नियम भी लागू किए गए हैं। अगर आप भी इस साल बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जा रहे हैं तो पहले जान लीजिए कि इस बार यात्रा में क्या बदला है और किन नियमों का पालन करना जरूरी है। अगर यात्रा के दौरान सुविधाओं की बात करें तो इस बार बालटाल से पवित्र गुफा तक पूरे रास्ते पर बिजली और लाइट की व्यवस्था की गई है ताकि खराब मौसम या रात के समय भी श्रद्धालुओं को परेशानी न हो। ट्रैकिंग रूट को भी पहले से बेहतर बनाया गया है जिससे कठिन चढ़ाई कुछ आसान हो सके। यात्रियों की सुविधा के लिए पोनी पालकी और पोर्टर की प्रीपेड बुकिंग शुरू की गई है, यानी अब तय किराए पर ही ये सेवाएं मिलेंगी। रहने की व्यवस्था भी पहले से बेहतर हुई है। बालटार, नुनवान, श्रीनगर और चंदरकोट के यात्री निवासों का विस्तार किया गया है। वहीं जम्मू में बने नए सेंटर में करीब 4000 भक्तों को ठहरने की व्यवस्था भी की गई है। अगर कोई श्रद्धालु ज्यादा थक गया है, बीमार है या फिर किसी कारणवश रुकना पड़ रहा है तो यहाँ पर आराम कर सकता है। ये पूरी तरह से निःशुल्क होगा। जम्मू के तवी रिवर फ्रंट पर बने नए इंटीग्रेटेड फैसिलिटेशन सेंटर में रजिस्ट्रेशन, मेडिकल जांच, हेल्थ सर्टिफिकेट और दस्तावेजों की जांच जैसी सभी जरूरी प्रक्रियाएं एक ही जगह पर पूरी की जा रही है। एक तरफ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं बढ़ाई गई हैं, तो वहीं सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। दरअसल पूरा सावन चलने वाली अमरनाथ यात्रा में यूं तो कई चुनौतियां होती हैं, लेकिन इनमें सबसे बड़ी चुनौती होती है यात्रियों की सुरक्षा, क्योंकि हर बार अमरनाथ यात्रा पर आतंकियों की बुरी नजर रहती है। लेकिन बाबा बर्फानी के प्रति लोगों की ऐसी आस्था है कि तमाम खतरों के बावजूद हर साल लाखों की संख्या में भक्त बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में देश की सुरक्षा एजेंसियां उन्हें सुरक्षित घर वापस भेजने की पूरी जिम्मेदारी उठाती हैं। इस बार भी आस्था के इस महाकुंभ में कोई खलल न पड़े, इसके लिए सुरक्षा बल पूरी तरह तैयार है। 670 से ज्यादा अर्धसैनिक बलों की कंपनियां सुरक्षा में तैनात की गई हैं। यात्रा मार्ग से लेकर बेस कैंप और हाईवे तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और भारतीय सेना के जवान दिन रात मोर्चे पर डटे हैं। बालटाल हो या पहलगाम, बाबा बर्फानी के धाम तक जाने वाला हर रास्ता एक अवैध किले में तब्दील कर दिया गया है। बम डिस्पोजर स्क्वाड और डॉग स्क्वाड को विशेष रूप से तैनात किया गया है। ये टीमें लगातार यात्रा मार्गों, टेंट्स और पार्किंग एरिया की तलाशी ले रही हैं।
1: जो स्मेल करते हैं और उसे डिटेक्ट करते हैं, कोई भी अगर सामान में कुछ भी होता है तो यहाँ जैसे आप देख पा रहे हैं कि सीधा पहले व्हीकल्स आती हैं। व्हीकल्स आने के बाद एक तो हमारे पास DSMD होता है और एक दूसरा डॉग होता है। तो डॉग जो है स्मेल करता है और कुछ भी अगर संदिग्ध वस्तु अगर पाई जाती है तो वो तुरंत डिटेक्ट कर लेता है। और साथ में उसी के साथ में हमारे BDDS का जो HSMD होता है वो भी एक टूल होता है, अगर कुछ भी होता है तो वो डिटेक्ट करने में हेल्पफुल रहता है।
0: इसके साथ ही सुरक्षा ग्रिड को मजबूत करने के लिए टेक्नोलॉजी का भी खूब इस्तेमाल हो रहा है। जमीन से लेकर आसमान तक कड़ा पहरा है। घने जंगल और दुर्गम रास्तों की निगरानी ड्रोन के जरिए की जा रही है। आखिरी समय में तमाम सिक्योरिटी इंतजामों का मुआयना करने के लिए फिलहाल जम्मू कश्मीर पुलिस महकमा ग्राउंड जीरो पर नजर आ रहा है। बुधवार सुबह से ही जम्मू कश्मीर पुलिस के तमाम सीनियर ऑफिसर्स अलग अलग यात्रा डिस्ट्रिक्ट में सुरक्षा तैयारियों का जायजा लेते नजर आए।
2: आज जम्मू कश्मीर पुलिस के जितने भी सीनियर ऑफिसर्स हैं, जो भी सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट है आज वो उसका मुआयना कर रहे हैं। इसका ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि कोई भी कमी पेशी होती है तो उसको लूपहोल्स को प्लग करना और उसको और रिफाइन करना अपने रिस्पॉन्सेज के लिए। तो इसी लिहाज से ये जो है आज के जो काफ़ी अलग अलग मुख्तलिफ जो यात्रा डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ सीनियर अफसर सारे इंतजाम को फिर से देख रहे हैं ताकि उसकी अच्छे तरीके से सुपरविजन हो सके।
0: यानी चुनौती कोई भी हो, प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। मकसद सिर्फ एक, भोले के भक्तों की ये यात्रा सुरक्षित, सुगम और बिना किसी परेशानी के संपन्न हो। दरअसल शिव भक्तों के लिए अमरनाथ यात्रा एक ऐसी कठिन साधना है जिसे आप शिवत्व को साधने की सबसे कड़ी तपस्या कह सकते हैं, और इस तपस्या को निर्वाध पूरा करवाने के लिए देश की सिक्योरिटी फोर्सेज पूरे जी जान से जुटी हैं। जम्मू से सुनील जी भट्ट, श्रीनगर से अशरफ वाली और जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: तो हजारों लोग अमरनाथ यात्रा पर निकल चुके हैं और हजारों जाने की तैयारियों में जुटे हैं। अब इसके बीच में उनका जो तीर्थ यात्रा पर जाने में या तो सक्षम नहीं है या किसी और वजह से चाहकर भी नहीं जा सकते, ठीक इसी तरह कई लोग चाहकर भी चारधाम यात्रा पर जा नहीं पाते। ऐसे लोगों के लिए वर्चुअल रियलिटी तकनीक की मदद से एक अनोखी सौगात तैयार की गई है। इसका नाम है दुर्लभ दर्शन। ये एक आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म है जिसमें 6D VR तकनीक के जरिए देश के प्रमुख मंदिरों के दर्शन का एक अनूठा अनुभव उपलब्ध करवाया जाता है। यानी दूर होकर भी आपको इस तकनीक के जरिए अपने आराध्य के पास होने का एहसास होगा। अभिनेता आशुतोष राणा को देश के पहले 6D मंदिर दर्शन सेवा तकनीक का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है।
4: मैं आशुतोष राणा और मैं आपको लेकर चल रहा हूं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या।
5: अब दुर्लभ मंदिरों के दर्शन भी सुलभ होंगे।
4: मन में तुलसी की सुगंध लिए हम अपने आराध्य प्रभु श्री राम के धाम की ओर चलते हैं।
5: घर बैठे ही तीर्थों की यात्रा होगी। देर तक निहार सकेंगे आराध्य।
4: दर्शनार्थ उनके विग्रह या मूर्ति के समक्ष उपस्थित होते हैं तो
5: दूर रहकर भी गर्भगृह की पूजा में शामिल हो सकेंगे।
6: इसमें है 50 से ज्यादा तीर्थ यात्रा
5: और ये सब संभव है दुर्लभ दर्शन। दुर्लभ दर्शन एक ऐसा पिटारा जिसमें हर धाम समाया है
4: बल्कि अनुभूत भी कर सकते हैं।
5: भगवान समाये हैं एक खास एहसास के साथ।
4: आपके और परमात्मा के बीच में कोई नहीं, वहां पर घटित होने वाली समस्त क्रियाकलापों में आप सहभागी होंगे, ऐसी अनुभूति हमारी करवाने का मन था कि अगर मान लीजिए पानी गिर रहा है, अगर हमने जल चढ़ाया, जलाभिषेक किया तो पानी के छींटे हमारे ऊपर आते हैं तो वो भी आपको अनुभूत हो। अगर आपने उनको सुगंधिम पुष्टिवर्धनम की बात, अगर हम सुगंध उनको लगा रहे हैं अभिषेक करते समय तो सुगंध भी आपको महसूस होगी। यदि हवा की बात है तो हवा भी आपको महसूस होगी। तो इस तरीके से पूरा इस अनुभव को बिल्कुल एक जो दुर्लभ अनुभव है उसको सुलभ करने के लिए हमने ये किया।
5: लाखों असल में दुर्लभ दर्शन एक आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म जिसमें 6D VR तकनीक के जरिए देश के प्रमुख मंदिरों के दर्शन का एक अनूठा अनुभव उपलब्ध कराया जाता है। इसमें वर्चुअल रियलिटी के साथ साथ जल, वायु, सुगंध और पौराणिक कथाओं के मेल से साक्षात गर्भगृह में होने का एहसास कराया जाता है। यूँ कहिए कि यहाँ आस्था और तकनीक के मेल से एक सुंदर आध्यात्मिक वातावरण का निर्माण किया जाता है। यहाँ एक और भगवान राम और उनकी अयोध्या की कहानी है तो काशी विश्वनाथ का इतिहास भी है और माँ वैष्णो देवी की आरती थी। बस इसे आंखों पर लगाइए और यात्रा पर निकल पड़िए। इसमें अभिनेता आशुतोष राणा आपको धर्मस्थलों की कहानी सुनाते भी नजर आएंगे।
4: हमें तो अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए। क्यों होता है ऐसा? वो इसलिए कि जब हम भाव विभोर होकर भगवान के दर्शन।
5: फिलहाल ये सुविधा अयोध्या, काशी समेत देश के 11 प्रसिद्ध मंदिरों में उपलब्ध है, जहां आप सुकून से बैठकर अपने आराध्य देव को करीब से महसूस कर सकेंगे। ध्यान

0: बेहद खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरें जारी हैं, देखते रहिए जीएनटी।
1: TuneIn's how-to. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
2: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed, whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest. You can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today?
3: जी खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम
5: बात करेंगे अब अल्फा मूवी की, जो इस शुक्रवार रिलीज होने जा रही है, लेकिन फिल्म को लेकर चर्चाओं का दौर लगातार जारी है। यहां तक कि फिल्म में आलिया के एक्शन की भी जबरदस्त तारीफ हो रही है, लेकिन अब फिल्म की स्टार कास्ट से जुड़ी एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक 100 करोड़ के मेगा बजट वाली इस फिल्म के लिए सबसे ज्यादा फीस आलिया ने ही ली है।
6: गीता आज लंका खुद जलाने आई। हाय बॉयज।
7: पलक झपकते ही दुश्मन को धूल चटा देना, हाथों में बंदूक थामे बेखौफ दुश्मनों के बीच घुस जाना,
6: शुरू करो अग्नि परीक्षा।
7: आलिया भट्ट इस शुक्रवार सिल्वर स्क्रीन पर राज करने आ रही है। सामने आए अल्फा के ट्रेलर में आलिया पावर पैक एक्शन करती नजर आएगी। हर पंच और हथियार चलाने का स्वैग ये बता रहा है कि पर्दे पर एक नए एक्शन स्टार का जन्म होने वाला है।
8: ये क्या है?
9: अल्फा।
8: अल्फा मतलब
9: सीक्रेट प्रोग्राम है, इंडिया के नेक्स्ट जनरेशन सोल्जर्स तैयार करने के लिए।
7: आलिया ने 2012 में स्टूडेंट ऑफ द ईयर जैसी ग्लैमरस और बेहद स्टाइलिश फिल्म से डेब्यू किया था, लेकिन अब बड़े पर्दे पर उनका एक अलग अवतार देखने को मिलेगा।
9: तो भी वही है हमारी इकलौती
8: अल्फा।
7: कल तक पर्दे पर अपनी मासूमियत, रोमांस और इमोशन से दर्शकों को रुलाने वाली आलिया अब अपनी रफ्तार और एक्शन से स्क्रीन पर कोहराम मचाने के लिए तैयार है।
9: इसकी माँ का नाम जानकी था, हम इसे सीता बुलावेंगे।
7: एक तरफ अल्फा में आलिया के एक्शन सीक्वेंस की चर्चा है, तो दूसरी तरफ फिल्म की स्टार कास्ट की फी को लेकर भी बाजार में चर्चाओं का दौर है।
6: वो धोखे से राज करता था और झूठ से जीतता था।
7: रिपोर्ट्स की मानी जाए तो 1000 करोड़ के बजट वाली इस मेगा स्टार फिल्म में आलिया ने सबसे ज्यादा फी चार्ज की है।
6: Hi boys.
7: दावा किया जा रहा है कि स्पाई थ्रिलर फिल्म के लिए आलिया भट्ट ने तकरीबन 25 करोड़ रुपए की भारी भरकम फी चार्ज की है, यानी फिल्म के पूरे बजट का 1/4 हिस्सा सिर्फ और सिर्फ आलिया के नाम रहा, जबकि आलिया की को स्टार शर्वरी ने 3 करोड़ रुपए की फी चार्ज की है। दूसरी तरफ बॉबी देओल फिल्म में विलेन के रोल में नजर आने वाले हैं और उन्हें इसके लिए करीब 6 करोड़ रुपए मिले हैं। वहीं फिल्म में एक अहम भूमिका निभाने वाले अनिल कपूर को भी तकरीबन 6 करोड़ रुपए मिले हैं। बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर फिल्में देने के बाद आलिया आज बॉलीवुड की सबसे भरोसेमंद फीमेल स्टार्स में से एक हो चुकी है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं है कि आलिया के ही कंधों पर इस 100 करोड़ बजट वाली फिल्म का भार है।
6: It really means a lot to me.
9: चौथीसवा फ्लोर, 3418।
6: मैं समझी नहीं बाबा, वहाँ करना क्या है?
9: वही जिसके लिए मैंने तुझे ट्रेनिंग दी है।
7: अब देखना यह है कि 25 करोड़ की फी लेने वाली अल्फा गर्ल आलिया इस शुक्रवार बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ की कमाई कर पाती है।
9: दुनिया में सिर्फ 2 तरह के लोग हुए हैं, वुल्फ और शीप। मैं वुल्फ हूँ, तो क्या है?
6: वुल्फ की बेटी वुल्फी होती है सर।
7: ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।

चलिए आपको देवभूमि उत्तराखंड लिए चलते हैं, जहां चमोली जिले में मौजूद फूलों की घाटी इन दिनों गुलजार है मनमोहक खूबसूरत फूलों से। बड़ी बात यह है कि इस बार यहां रिकॉर्ड संख्या में लोग भी पहुंचे हैं इसका दीदार करने के लिए। अब तक 7294 लोग फूलों की घाटी की सुंदरता का दीदार कर चुके हैं।

0: पहाड़ों के बीच फैली हरियाली, बादलों से बातें करती वादियाँ, और जहाँ तक नजर जाए वहाँ तक रंग बिरंगे फूलों की दुनिया। ये नज़ारा किसी कल्पना का नहीं बल्कि चमोली की विश्व धरोहर फूलों की घाटी का है। हर साल मॉनसून के साथ यहाँ प्रकृति अपनी सबसे खूबसूरत तस्वीर पेश करती है। इस बार भी घाटी ने अपने रंग बिखेरने शुरू किए तो लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है। फूलों की घाटी में 1 जून को पर्यटकों के लिए प्रवेश शुरू हुआ था। अभी सिर्फ 1 महीना ही बीता है लेकिन यहाँ आने वालों की संख्या ने सभी पुराने आंकड़े पीछे छोड़ दिए हैं। अब तक 7,294 लोग घाटी की प्राकृतिक सुंदरता का दीदार कर चुके हैं। इनमें 34 विदेशी पर्यटक भी शामिल हैं। वन विभाग का कहना है कि सीजन की शुरुआत इतनी शानदार पहले बहुत कम देखने को मिली है। अगर पिछले साल से तुलना करें तो अंतर साफ दिखाई देता है। बीते साल इसी महीने में 3,893 पर्यटक पहुँचे थे, यानी इस बार शुरुआती 1 महीने में ही करीब 1.5 गुना अधिक लोग यहां पहुंचे हैं। यही वजह है कि वन विभाग को इस पूरे सीजन में रिकॉर्ड संख्या की उम्मीद दिखाई दे रही है। अभी तो ये केवल शुरुआत है। फूलों की घाटी का असली आकर्षण 15 जुलाई से 15 अगस्त के बीच दिखाई देता है। इसी समय सबसे अधिक प्रजातियों के फूल एक साथ खिलते हैं। चारों ओर रंगों का ऐसा संसार बन जाता है जिसे देखने के लिए देश विदेश से प्रकृति प्रेमी यहां पहुंचते हैं। फूलों की घाटी की सबसे खास बात ये है कि यहाँ केवल 1 तरह के फूल नहीं खिलते। इस पूरी घाटी में करीब 500 प्रजातियों के फूल पाए जाते हैं। हर 15 दिन बाद नई किस्में खिलती हैं और पहले वाले धीरे धीरे विदा हो जाते हैं। यही वजह है कि यहाँ का नज़ारा लगातार बदलता रहता है। यही बदलता रूप इस जगह को दुनिया की सबसे खास प्राकृतिक धरोहर में शामिल करता है। जैसे जैसे जुलाई का ये महीना आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ये पूरी घाटी और अधिक रंगों से भरती जाएगी। आने वाले दिनों में यहाँ प्रकृति का सबसे मनोहरी रूप दिखाई देगा। यही वजह है कि फूलों की घाटी केवल एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि धरती पर सजे उस जीवन कैनवस का नाम है जहाँ हर मौसम नई तस्वीर बनाता है। चमोली से कमल नैन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: Tune in's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
3: Ready to listen to all your favorite audio? With TuneIn, you can catch your favorite music, news, sports, and more anytime, anywhere, across all your devices. From your smart speakers to smartphone, from your car to your TV. With TuneIn, you can enjoy all your favorite stations wherever you are. Plus, you can fire it up with voice command. Just ask your smart device to play TuneIn and start listening.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: बाबा बर्फानी के दर्शन की आई शुभ घड़ी, शिव भक्तों का जोश आए गहन सुरक्षा के बीच अमरनाथ यात्रा के लिए तैयार पहला जत्था। आर्थिक मोर्चे पर देश के लिए गुड न्यूज, जून में 1,94,000 करोड़ जीएसटी कलेक्शन, पिछले साल से 14% ज्यादा, इंपोर्ट से होने वाली कमाई बढ़ी। पहाड़ों पर मानसून का दिखने लगा असर, रुद्रप्रयाग में लगातार हो रही है बारिश से अलकनंदा नदी का बड़ा जलस्तर, नदी के किनारे बनी भगवान शिव की मूर्ति तक पहुंचा पानी। बद्रीनाथ में भगवान विष्णु के भक्तों ने अब तक के सारे रिकॉर्ड्स किए ध्वस्त, 14,00,000 से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन, हर रोज 15,000 से 20,000 श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। केंद्रीय कैबिनेट की दिल्ली और उत्तर प्रदेश को 14,000 करोड़ से ज्यादा की सड़क परियोजनाओं को मिली मंजूरी, दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ेगी 6 लेन वाली टनल।